0: अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।
1: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
2: कौन सी राशि के लिए शुक्र अच्छे करियर का कारण बनता है? कौन सी राशि वालों को शुक्र पद प्रतिष्ठा का लाभ देता है? और कौन सी राशि वालों के लिए शुक्र लंबी आयु का कारण बनता है? अलग अलग राशियों पर क्या होता है शुक्र का प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: पवित्र अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन बाबर फानी के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह, पहले दिन करीब 20,000 भक्तों ने दर्शन किए। अमरनाथ तीर्थ यात्रा मार्ग पर भंडारे से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा इंतजाम, उधमपुर में NH-44 पर फर्स्ट एंड कैंप लगाए गए, एम्बुलेंस तैनात। प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान गुजरात को देंगे 1,00,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, जोधपुर हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन और पचपदरा में रिफाइनरी का करेंगे उद्घाटन। मुंबई और आसपास के इलाकों में 6 जुलाई तक बारिश का रेड अलर्ट, ठाणे कल्याण और डोंबिवली में स्कूल बंद। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश में चलाया गया रेस्क्यू अभियान, पानी के तेज बहाव में दूसरी ओर वाहनों में बैठे 19 लोगों को बचाया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच आज खेला जाएगा 5 T20 मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला, मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में 7:00 से भिड़ंत। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।

भक्त। एक वो भक्त है जो भगवान से चाहता, एक वो भक्त है जो भगवान को चाहता। अब आपको निर्णय लेना, आप भगवान को चाहते या भगवान से चाहते। कुछ लोग भगवान से चाहते। भगवान से चाहने का मतलब 2 रुपया का दूध चढ़ाएंगे, 1 करोड़ का पर्चा पकड़ा देंगे। हे शंकर जी, हमारी नौकरी चल लग जाए, फैक्ट्री बन जाए, लड़का की शादी हो जाए, घरवाली का दिमाग ठीक हो जाए, पति परमेश्वर सुधर जाए, बच्चों पर कृपा हो जाए। ऐसे भी भगत हैं जो भगवान से चाहते, लेकिन एक दूसरे भक्त हैं जो भगवान को प्रिय हैं। वो कौन हैं? बोले वो भगवान से नहीं चाहते, भगवान को ही चाहते। वो है श्री प्रहलाद जी। नासा भक्तिया सा वही बड़का। प्रहलाद जी कहते, हे भगवान ने कहा, हे प्रहलाद मांगो, क्या चाहते हो? प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु अब हमको क्या चाहिए? लेने देने का काम तो व्यापारियों में होता है, भक्तों में लेने देने का काम नहीं होता। नासा भक्तिया सा वही बड़का। ये सब बिजनेसमैन है जो लेने देने की बातें भक्ति में करें। हम तो आपके चाकर हैं, हम आपसे नहीं चाहते, हम आपको ही चाहते हैं। ये भगवान को अति प्रिय हैं भगत। ऐसे भक्त भगवान को प्रिय हैं, ऐसे भक्तों पर ही दीनानाथ दयालु भगवान कृपा करते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। देखो गीता में 3 योग हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। रामायण में भी 3 योग हैं, ज्ञान योग राम जी, भक्ति योग सीता जी, कर्म योग लक्ष्मण जी। लेकिन हम जिनकी कथा सुना रहे उनमें ये 3 योग हैं। हृदय में राम जी भी हैं, सीता भी हैं, लक्ष्मण जी हैं, तो हनुमान जी में 3 योग व्याप्त हैं। 3 योग व्याप्त होने के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर

ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, और तीनों योग हनुमान जी के अंदर व्याप्त हैं। क्यों? जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। जिनके हृदय में आहा श्री सीता जी और श्री राम जी विराजमान और लक्ष्मण जी भी विराजमान, तो राम जी ज्ञान योग बैठ गए, सीता जी भक्ति योग बैठ गए, और भक्ति योग अंदर बैठने के कारण ही राम

देखो भक्ति भी हनुमान जी के अंदर है, भगवान भी हनुमान जी के अंदर है। अच्छा, या तो भगवान अंदर होते हैं या भक्ति अंदर होती, क्योंकि भक्ति के बस में भगवान नाचते। अच्छा, किसी के अंदर भक्त और भगवान दोनों बैठ जाएं, भक्ति और भगवान, तो कर्मयोग बैठना बहुत कठिन है। पर हनुमान जी के अंदर कर्मयोग भी बैठा, जीवाचार लक्ष्मण जी। तो हनुमान जी से पूछा जाए आपको क्या पसंद है, तो गोस्वामी जी ने

हनुमान जी बोले, भैया हमको तो केवल राम जी का काम करना पसंद है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। एक और नई बात है, हनुमान जी को राम काज करना पसंद है, हनुमान जी को राम जी का चरित्र पसंद है, हनुमान जी में तीनों योग व्याप्त हैं, लेकिन आहा हा हनुमान जी का बल कितना है। बोले अनंत बल है, पर हनुमान जी का प्रभाव कितना है।

हनुमान जी का चारों युगों में। तो तीन चार, पहले तीन से उठाया था, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग, चार पे चारों युग पर ताप तुम्हारा। अब चार के बाद कौन सा अंक आता है, बोलो बोलो। अच्छा शुरू से लो, एक, एको ब्रह्म अस्ति द्वितीयो ना अस्ति, ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा नहीं है। दो, दो क्या है, जीवात्मा और परमात्मा। पर हनुमान जी जीवात्मा है क्या? नहीं नहीं, हनुमान जी जीवात्मा नहीं है, हनुमान जी है महात्मा। तो महात्मा और परमात्मा, हनुमान जी महात्मा कैसे, साधु संत के तुम रखवारे हैं तो महात्मा हो गए। तो हनुमान जी जीवात्मा नहीं है, महात्मा है। तो महात्मा और परमात्मा दो, अगला अंक कौन सा है, तीन, ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग, ये तीनों अंदर हैं। और जय कपीस त्यूं लोक उजागर, तीनों लोकों में एकमात्र हनुमान जी हैं जिन्होंने तीनों लोकों में झंडा गाड़ा। पूछो कैसे, पूछो पूछो पूछो। पाताल लोक में अहिरावण को मार करके झंडा गाड़ा, आकाश लोक में गगन में मारी एक उछाल, खाए रवि भाल गगन में उछाल मार करके बाल्यकाल में ही सूर्य भगवान को ब्रेकफास्ट में खा गए। तो आकाश लोक में भी झंडा गाड़ दिया, अब बचा कौन सा, बोले पृथ्वी। बोले पृथ्वी में तो हजारों काम किए, लंका को जलाकर राम नाम का डंका लंका में भी बजा डाला। तो हो गया जय कपीस तेहू तेहू लोक, हो गया तीनों लोकों में। अच्छा इतना ही नहीं, तिहू लोक का एक और अर्थ है तीन अंक का। बोले क्या, बोले देखो हनुमान जी के जीवन में तीन लोग हैं, राम जी सीता माता और लक्ष्मण जी। राम जी को जीता तो राम जी कौन है, बोले राम जी है भगवान। भगवान का, भगवान की जगह कहाँ है, बोले आकाश की तरफ, तो वहां जीत लिया। सीता माता कहाँ से प्रकट हुई, पृथ्वी से, तो पृथ्वी को जीत लिया। और लक्ष्मण जी कहाँ है, लक्ष्मण जी है शेष अवतार, तो पाताल लोक में जाकर वहां पर भी डंका बजा दिया। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा जय कपीस तेहूं। लेकिन अब अगला तीन के बाद कौन सा अंक है, चार। तो चारों युग परताप, चारों युगों में परताप हो गया, सतयुग में हो गया, त्रेता में हो गया, द्वापर में हो गया। सतयुग में बन गए भगवान शंकर के गण, रुद्र गण। ग्यारहवें रुद्रावतार हनुमान जी महाराज हैं, तो ग्यारहवें रुद्र के रूप में शंकर जी के पास रहे तो सतयुग में भी इनकी पूजा हुई। अच्छा फिर ये त्रेता में हनुमान जी कैसे बने, बोले भैया रावण किसका भगत था, किसका भगत था, बोलो बोलो बोलो बोलो, भोले बाबा का। किसका भगत था, भोले बाबा का। एक दिन भोले बाबा अपनी पत्नी यानी उमा पार्वती जी से, माता पार्वती जी से बोले, देवी जी हम तो बंदर बनने जाएंगे। क्यों, राम जी अवतार लेने वाले हैं तो हम भी सेवा करने जाएंगे, और वो नर बनेंगे तो हम बानर बनेंगे, वो बनेंगे नर हम बनेंगे बानर, तभी करेंगे सेवा। पार्वती जी माता बोली कि आप बानर बनने जाओ तो आप बनो बंदर, हम बनेंगे बंदरिया, आप भी चलो हम भी चलें। हम भगवान भोले बाबा बोले दोनों नहीं जा सकते, एक ही जा सकते हैं। तो पार्वती जी बोली कोई टेंशन की बात नहीं, आप बनो बंदर हम बनेंगे पूंछ। शंकर जी बोले क्यों, पार्वती जी बोली लंका जाकर रावण की उखाड़ेंगे मूंछ। राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है,

0: सर्पों के समूह के समान है। इसलिए नाथ हमारी प्रार्थना है, सर्पों का समूह राक्षसों के मेंढकों के पूरे झुंड के झुंड को खा जाएगा। हे नाथ, हे कंत, हे स्वामी, हे पतिदेव, उसी प्रकार राम जी के बाण राक्षस रूपी पूरी सेना लंका में रहने वाले जितने निशाचर हैं सबको खा जाएंगे। भला इसी में है, अब भी भला हो सकता यदि तुम जानकी माता को वापस कर दो, राम जी से कोई विरोध ना करो, उनके चरणों में जाकर के शरण हो जाओ, सरेंडर हो जाओ। लेकिन अभिमानी व्यक्ति मानता नहीं। पर एक बात याद रखना तुम लोग, मेरे प्रियजनों, मेरे आत्मियों, याद रखना, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। अहमता में मत रहना। रावण की अहमता रावण को खा गई।
1: श्रीवन सुनी सठ ताकर वाणी,
0: रावण
1: बेहसा जगत विदित अभिमान।
0: रावण ने जैसे इन बातों को सुना तो हंस पड़ा। क्या कह रही हो तुम, हमें जानती हो, हमारे स्वभाव को जानती हो, बेफिजूली में भय कर रही हो। भय करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें पता है बानरों, बानर भालू ये सब हमारा आहार है। बानर भालू आहार हमारा। तुम्हें पता है राक्षसों का भोजन क्या, मंदोदरी क्या है? मंदोदरी बोली क्या है? बोले राक्षसों का भोजन है बानर और भालू। मंदोदरी भी बुद्धिमान तो थी ही, रावण की पत्नी थी, ज्ञानी के पास। काजल की कोठरी में कोई कितनों भी जतन करे, काजल को दाग तो लागे ही लागे, काजल का दाग तो लग ही जाता। ज्ञानी के पास रहने वाला व्यक्ति ज्ञानी स्वाभाविक रूप से हो जाता। संगीत के मध्य में रहने वाला व्यक्ति संगीत की पकड़ को, ताल को, सुर को पकड़ने ही लगता, समझ ही जाता। बीड़ी पीने वाले के बगल में बैठने वाला व्यक्ति बीड़ी भले ही ना पिए पर धुआं का मजा तो लेने ही लगता है। वही मंदोदरी का हाल। मंदोदरी ज्ञानी तो नहीं थी, पर रावण के साथ रहते रहते ज्ञानी बन गई। तो रावण रावण कहता आपको पता है निशाचरों का भोजन क्या? मंदोदरी कहती क्या? मंदोदरी रावण कहता निशाचरों का भोजन बानर भालू आहार हमारा। बानर भालू ये सब हमारा भोजन है। मंदोदरी बोली एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले बानर भालू आहार है? बोले हाँ। बोले कितना? रावण बोला बंदर तो ब्रेकफास्ट में खा जाएंगे। मंदोदरी बोली जब एक बंदर आया था तब तुम लोगों का पेट खराब था क्या? यदि बानर भालू भोजन है तो अभी अभी जो बंदर आया था जिसने पूरी लंका जला दी उस समय पेट खराब था क्या? क्यों नहीं खाया? रावण बोला वो तो बात अलग हो गई, पर अब नहीं बचेगा, अब नहीं बचेगा, वो बात अलग हो गई। मंदोदरी बोली ऐसे ही बात अलग होती रहेगी, एक एक करके हम सब अलग हो जाए। अंत में गुजराती में बोले तो पति गए, काम हो जाएगा। राम नाम सत्य क्या हो जाएगा? राम नाम। अच्छा अब अभिमानी आदमी मानते ही नहीं, जब तक निपट ना जाए तब तक मानते ही नहीं। जो ठीक समझाने की बात करे उनसे भी वो चिढ़ने लगता है, उससे भी वो बुरा लगने लगता। अहंकारी व्यक्ति बहुत विचित्र होता। इसलिए हम एक प्रार्थना करना चाहेंगे समझदार व्यक्ति को, यदि किसी को समझाना हो तो एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, जब दो बार ना समझे तो खुद को समझाओ। भाई ये समझने वाला नहीं है, अपन ही समझ लो। बोलो सीताराम। समझ जाना ये तो कुछ दिनों बाद में पति गयो, इसका तो काम होना है। अपन काय को बेफिजूली में माथा पच्ची करे। अच्छा घमंडी आदमी को समझा, तुमने देखा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, गाय को भूख लगी हो, घास की जगह पिज्जा रखा जाए तो क्या खाएगी? बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। अच्छा गाय को भूख लगी हो, भोजन ना मिला हो, और शेर का भोजन मांस रखा जाए तो क्या खाएगी? और शेर को मांस रखा जाए, शेर को पिज्जा रखा जाए, घास रखी जाए तो क्या शेर खाएगा? जोर से बोलो। गाय शेर का भोजन नहीं खाती, शेर गाय का भोजन नहीं खाता, लेकिन आदमी? दोनों का खा लेता, शेर का भी खा लेता। ज्यादा समझाओ तो तुम्हारा भेजा खा जाए। ज्यादा समझाओगे वो तुम्हारा दिमाग खा जाएगा, भेजा खा जाएगा। इसलिए आदमी को समझाना बड़ा कठिन है, खासकर अभिमानी को और ज्यादा समझाना कठिन। दो बार समझाओ, जब ना माना तो तीसरी बार खुद को ही समझाओ, श्रवण सुनी सटता कर वाणी, बहसा जगत बहसा जगत विदित अभिमानी, सवय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल मऊ भय मन अति काचा, उल्टा स्त्रियों के गुणों अवगुणों को देखने लगा, स्त्रियों तो डरपोक होती हैं ऐसा रावण कह रहा, स्त्रियां डरपोक होती हैं ऐसा रावण कह रहा। रावण क्यों कह रहा? अभिमानी है। अब उसे कौन समझाए, स्त्रियां यदि डरपोक होती तो बेटा तुम पैदा ही ना होते। स्त्रियां डरपोक नहीं होती, माताएं डरपोक नहीं होती, माता है शक्ति और शक्ति कभी डरपोक नहीं होती। जननी जने तो दाता जन या सूर, नहीं तो जननी बांज रहे काहे गबावे नूर। माताएं भी परम सूरवीर होती हैं। नारी निंदा मत करो, नारी रतन खदान, नारी से नर उपजे ध्रुव पहलाद समान। बोले राम कृपा बल पाए कपिंदा, भये पच्छ जुत मनहु गिरिंदा। आगे हरस राम तब कीन पयाना। अब राम जी चले, कहां चले? लंका की तरफ। बोलो बोलो बोलो कहां चले, जोर से बोलो। और जैसे ही चले तो एक और कारण हुआ। बोले क्या? सगुन भये सुंदर शुभ नाना। सगुन हुए, ये सगुन क्या है? चलते हुए ब्राह्मण दिखाई पड़े, किसी काम को जा रहे हो, ब्राह्मण के हाथ में वेद पुस्तक दिखाई पड़े, समझना मंगल दर्शन है। गाय बछड़े को दूध पिलाती दिखाई पड़े, समझना मंगल दर्शन है। नाग सांप रास्ता कट जाए, सर्प दर्शन हो, समझना मंगल दर्शन है। कोई छोटी कन्या खिलखिलाती हुई सामने से निकल जाए, समझ जाना शुभ शगुन है, मंगल दर्शन है। दूध का दर्शन हो जाए, समझ जाना शुभ शगुन मंगल दर्शन है। देवालय पर पुष्प चढ़ा हुआ दिखाई पड़ जाए, मंदिर पर, समझना शुभ शगुन मंगल दर्शन है। यही शगुन है। अब शगुन क्या है? अब शगुन कोई विधवा दिखाई पड़े, कोई टोक दे, रोता हुआ दिखाई पड़े।
2: कौन सी राशि के लिए शुक्र अच्छे करियर का कारण बनता है? कौन सी राशि वालों को शुक्र पद प्रतिष्ठा का लाभ देता है? और कौन सी राशि वालों के लिए शुक्र लंबी आयु का कारण बनता है? अलग अलग राशियों पर क्या होता है शुक्र का प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go, so you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है।
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: कौन सी राशि के लिए शुक्र अच्छे करियर का कारण बनता है? कौन सी राशि वालों को शुक्र पद प्रतिष्ठा का लाभ देता है? और कौन सी राशि वालों के लिए शुक्र लंबी आयु का कारण बनता है? अलग अलग राशियों पर क्या होता है शुक्र का प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
9: फ्यूचर वॉर से निपटने वाला सुपर प्लान तैयार, चीन पाक से निपटेंगे मल्टी डोमेन मिशन के महारथी, बैटल ब्रिगेड के सुपर अवतार। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
11: पवित्र अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन, बाबा अरफानी के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह। पहले दिन करीब 20,000 भक्तों ने दर्शन किए। अमरनाथ तीर्थ यात्रा मार्ग पर भंडारे से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा इंतजाम। उधमपुर में NH-44 पर फर्स्ट एड कैंप लगाए गए, एम्बुलेंस तैनात। प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान गुजरात को देंगे 1,00,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। जोधपुर हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन और पचपदरा में रिफाइनरी का करेंगे उद्घाटन। मुंबई और आसपास के इलाकों में 6 जुलाई तक बारिश का रेड अलर्ट। ठाणे, कल्याण और डोंबिवली में स्कूल बंद। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश में चलाया गया रेस्क्यू अभियान। पानी के तेज बहाव में दूसरी ओर वाहनों में बैठे 19 लोगों को बचाया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच आज खेला जाएगा 5 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में 7:00 PM से भिड़ंत।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
11: पवित्र अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन, कल पहले दिन करीब 20,000 भक्तों ने दर्शन किए। बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौटने पर भाव विभोर नजर आए श्रद्धालु। प्रभु के दर्शन को बताया जीवन का यादगार पल। यात्रा मार्ग पर प्रशासन के इंतजामों से संतुष्ट नजर आए भक्त। भंडारे से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा इंतजाम। अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए स्वास्थ्य विभाग की पहल। NH-44 पर फर्स्ट एड कैंप लगाए और एम्बुलेंस तैनात की गई। तीर्थ यात्रा के दौरान ट्रैफिक की आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए NH-44 पर बनी डिगडुल पंथियाल टनल और मगरकोट रामसू वाइडाक को खोला गया। अमरनाथ यात्रा के बीच जम्मू को ग्लोबल आध्यात्मिक हब बनाने की तैयारी। जम्मू नगर निगम ने तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए शुरू की जम्मू तवी रिवरफ्रंट पर बोटिंग सुविधा। जम्मू के तवी रिवर फ्रंट को आकर्षक ढंग से सजाया गया। जम्मू स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत की गई पहल। पहल से बढ़ेगा टूरिज्म। अमरनाथ यात्रा के दौरान जम्मू पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। बोटिंग के अलावा लाइट एंड साउंड शो का भी शुभारंभ। लेजर शो के जरिए दिखाई जा रही है बाबा अमरनाथ की पौराणिक कथा। मां तवी की आरती और रंग बिरंगी रोशनी श्रद्धालुओं को कर रही है मंत्रमुग्ध। यात्री जत्थे को रवाना होने से पहले यहां बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सावन के महीने से पहले कावड़ यात्रा की तैयारियों पर हरिद्वार में मंथन। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों से की चर्चा। कावड़ियों की सुरक्षा सुविधाओं पर हुई चर्चा। इस बार यात्रा में रोड बाइंडिंग और एलिवेटेड ट्रैक का भी किया जाएगा इस्तेमाल। वाटर एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस भी होगी तैनात। दिल्ली सरकार ने ईवी सब्सिडी पोर्टल किया लॉन्च। पोर्टल के जरिए नए इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वाले लोग सब्सिडी के लिए कर पाएंगे आवेदन। 1 जुलाई 2026 के बाद नई ईवी खरीद कर पर मिलेगी सब्सिडी। 30 दिन के अंदर करना होगा आवेदन। उत्तर प्रदेश में ईवी चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए सोलर आवर्स में 20% टैरिफ छूट। सस्ती सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 9:00 AM से 4:00 PM तक छूट। प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान गुजरात को देंगे 1,00,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात। राजस्थान के पचपदरा में रिफाइनरी का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का करेंगे उद्घाटन। बालोतरा में 1,00,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राजस्थान के बाद गुजरात जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। अहमदाबाद के सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। 6 जुलाई से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना मकसद। दौरे के पहले पड़ाव में इंडोनेशिया पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। न्यूजीलैंड है इस यात्रा का सबसे सही पहलू और खास पहलू, करीब 40 साल बाद न्यूजीलैंड जा रहे हैं पीएम। गुजरात के जूनागढ़ में रेस्क्यू अभियान चलाकर 19 लोगों की बचाई गई जान, पानी के तेज बहाव में दूसरी ओर वाहनों में बैठे लोगों का रेस्क्यू किया गया। आनंद में मॉनसून ने धमाकेदार एंट्री ली, कुछ ही घंटों की बारिश में पानी हो गया पूरा शहर। मेहसाणा जिले में भी जमकर बरसे बादल, एक ही रात में 8 से 9 इंच बारिश दर्ज की गई, निचले इलाकों में भरा पानी। राजकोट में भी मूसलाधार बारिश, शहर के कई इलाकों में जलभराव से लोग हुए परेशान। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश का असर, नदी नालों के साथ डैम भी लबालब भरे, बांध से गिरते पानी को देखने पहुंचे लोग। दिल्ली एनसीआर के आसमान में बादलों का डेरा, मौसम विभाग का येलो अलर्ट, झमाझम बारिश के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में कई और राज्यों में सक्रिय होगा मॉनसून, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों में भी बारिश की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान, संवेदनशील इलाकों में लैंडस्लाइड से सावधानी रहने की सलाह दी गई। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी, 6 जुलाई तक बारिश का अलर्ट। अगले 5 दिनों में गुजरात और गोवा में भारी बारिश होने के अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र के लोनावला में भारी बारिश के बाद मशहूर भूशी डैम में ओवरफ्लो, डैम से तेज बहता पानी देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। बारिश के कारण पूरे इलाके में हरियाली, वीकेंड पर उमड़ेगी पर्यटकों की भीड़, प्रशासन के लोगों से सावधानी बरतने की अपील। गुजरात के नवसारी में मूसलाधार बारिश का दौर, उफान पर अंबिका और अन्य नदियां, विकराल रूप में प्रसिद्ध गीरा वाटरफॉल। मॉनसून के दौरान झरने में तेज जल प्रवाह को देखते हुए बड़ी संख्या में आ रहे पर्यटक, सुरक्षित दूरी से इस मनमोहक प्राकृतिक दृश्य का ले रहे हैं आनंद, प्रशासन सतर्क। जूनागढ़ में भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में भरा पानी, उफनते नाले के बीच फंसी बस क्रेन से खींचकर निकाली गई। गुजरात के अंबाजी में अच्छी बारिश के लिए वन भोजन का आयोजन, वरुण देव को खुश करने के लिए व्यापारियों ने दुकानें रखी बंद। आयोजन के बीच सिर्फ अंबाजी मंदिर का भोजनालय खोला रखा गया, मान्यता है कि सारे व्यापारी द्वारा अपनी दुकानें बंद रखकर उजानी करने पर ही होती है अच्छी बारिश। उज्जैन जिले में लगातार हो रही बारिश से तेजी से बढ़ा क्षिप्रा नदी का जलस्तर, रामघाट सहित आसपास के घाटों के कई छोटे मंदिर व देवस्थलों तक पहुंचा पानी। मथुरा में पड़ रही भीषण गर्मी के बाद आज अचानक हुई बारिश, भारी बरसात के बाद जलमग्न हुई सड़कें और प्रमुख मार्ग। गृहमंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की समीक्षा बैठक, अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश और उसके असर पर चर्चा। जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का हुआ एयरपोर्ट जैसा, लोक सुविधाएं भी बड़ी, नॉर्दर्न रेलवे के जीएम ने किया निरीक्षण, जल्द उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। यात्रियों की सुविधा के लिए लगाई गई 10 लिफ्ट और 8 एस्केलेटर्स, पंजाब में भी कई रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना तहत किए जा रहे हैं तैयार। सुरक्षा को लेकर रेलवे की शानदार पहल, चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्कूटर से गश्त करेंगे आरपीएफ के जवान। प्लेटफॉर्म पर निगरानी, मदद और त्वरित कार्रवाई होगी आसान, यात्रियों की सुरक्षा का बेहतर ख्याल रखा जाएगा। नूह में 12 जुलाई को होगा उपमंडल स्तरीय न्यायिक परिसर का शिलान्यास समारोह, तैयारी हो चुकी है पूरी, चीफ जस्टिस सूर्यकांत होंगे मुख्य अतिथि। मोबाइल से ई रिक्शा का इंजन बंद करने की घटनाओं के बाद सरकार का सख्त फैसला, 3 चाइनीज ऐप को हटाने का आदेश जारी, बैटरी ठप होने से रुक जाती थी गाड़ियां। प्रधानमंत्री मोदी आज जोधपुर में उड़ान स्कीम को 10 साल बढ़ाने का करेंगे ऐलान, क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और हवाई यात्रा को सस्ता बनाना इसका मकसद। बिहार में 1,00,000 करोड़ की ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मिली गति, एचयूडीसीओ हटको के साथ एमओयू, 12 आधुनिक टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। लखनऊ में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 आयोजित। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महोत्सव का शुभारंभ कर प्रगतिशील बागवानों को किया सम्मानित। मौके पर निर्यात होने वाले आमों के वाहनों को भी किया फ्लैग ऑफ। किसानों को अपने उत्पाद की गुणवत्ता और समृद्ध कृषि को प्रदर्शित करने का सशक्त मंच प्रदान करता है ये महोत्सव। अमृतसर की बेटी का कमाल, इसरो के शिवभक्ति मिशन के लिए चुनी गई छात्रा। पूरे देश से इकलौती छात्रा है टिया गौरव, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस मिशन में भारत का करेंगी प्रतिनिधित्व। 108 देशों के छात्रों संग बनाएंगी सैटेलाइट। कक्षा 12वीं की छात्रा है टिया, चयन के बाद अलग के पास आयोजित विशेष प्रशिक्षण शिविर में सैटेलाइट डिजाइन, असेंबली और टेस्टिंग की दी जाएगी ट्रेनिंग। छतरपुर में मानव सेवा और सामाजिक सहयोग की मिसाल पेश बनी एक शादी, निर्धन कन्या विवाह महोत्सव धूमधाम से हुआ संपन्न। खास विवाह में जनप्रतिनिधियों के अलावा हजारों लोग हुए शामिल, इस दौरान आयोजित किया गया विशाल भंडारा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: कौन सी राशि के लिए शुक्र अच्छे करियर का कारण बनता है? कौन सी राशि वालों को शुक्र पद प्रतिष्ठा का लाभ देता है? और कौन सी राशि वालों के लिए शुक्र लंबी आयु का कारण बनता है? अलग अलग राशियों पर क्या होता है शुक्र का प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। वेदर यू वांट टू रिलैक्स, फोकस और टर्न थिंग्स अप, यू विल फाइंड द राइट स्टेशन। हियर फ्रॉम द टॉप स्टेशंस लाइक टुडेस हिट्स, क्लासिक रॉक, कॉफी हाउस एंड मोर। Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
0: कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
0: कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

फ्यूचर वॉर से निपटने वाला सुपर प्लान तैयार। चीन पाक से निपटेंगे मल्टी डोमेन मिशन के महारथी। बैटल ब्रिगेड के सुपर अवतार देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे छोटे छोटे सरल उपायों के बारे में जिनको करने से धन की प्राप्ति आसान होगी, सरल होगी। अब जान लेते हैं दिनांक 4 जुलाई 2026 दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है मिथुन राशि में, शुक्र बुध और बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा और राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। अगर आप व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, तो व्यापार कारोबार में धन कैसे प्राप्त करें? शुक्रवार के दिन अपने कारोबार के स्थान पर गुलाबी फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र स्थापित करें। इसके बाद माता लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करें और उस इत्र को अपने पास सुरक्षित रख लें। रोज सुबह जब काम पर जाते हैं या काम की शुरुआत करते हैं तो रुई में जरा सा इत्र लगाकर स्वयं को लगाएं। अगर रोज काम की शुरुआत के पहले माता लक्ष्मी को प्रणाम करके आप गुलाब का वही इत्र लगाएंगे तो कारोबार की स्थिति बेहतर हो जाएगी। अगर आप नौकरी करते हैं और नौकरी में आपको धन पाना है तो क्या करेंगे? शुक्रवार की शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे एक दोने में या पत्ते में एक मिठाई का टुकड़ा और मिट्टी के कुल्हड़ में पानी रख दें। इसके बाद पीपल के वृक्ष की 3 बार या 9 बार परिक्रमा करें और फिर नौकरी में उन्नति की प्रार्थना करिएगा। ऐसा लगातार आप हर शुक्रवार की शाम को करिए। नौकरी के मामले में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। धन प्राप्ति के उपायों पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अगर आपका पैसा कहीं रुक गया है या कहीं फंस गया है, कोई ले करके आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? शुक्रवार के दिन गरीबों में मिठाई और कपड़े बांटिए। कपड़े ना भी बांट पाए तो सफेद मिठाई बांटिए। जल में जरा सा दूध मिला के नाम मात्र का शुक्रवार की रात में चंद्रमा को अर्घ दीजिए और इसके बाद पैसा मिलने की प्रार्थना करिए। जो आपका धन फंसा हुआ है या जो धन आपका रुका हुआ है उसको प्राप्त करने में
सुविधा होगी। अगर विरासत में पैसा मिलना हो, माता पिता का पैसा हो, इनहेरिटेंस का पैसा हो, और विरासत का पैसा मिलने में समस्या आ रही हो, आप विरासत का धन पाना चाहते हो, तो क्या करेंगे? शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल की माला अर्पित करिए या ढेर सारी गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करिए। इसके बाद घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी की आरती करिए और आरती के बाद प्रार्थना करिए कि आपको आपकी विरासत का धन मिले। ऐसा लगातार हर शुक्रवार की शाम को करिएगा। आपको आपकी विरासत का जो जेन्युइन हिस्सा है वो अवश्य प्राप्त होगा।

मंदिर में बैठकर या घर पर आकर शिव जी का एक मंत्र पढ़िएगा, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करिएगा और ये उपाय लंबे समय तक मंगलवार के मंगलवार करते रहिए, कर्ज चुकाना आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि सामान्यतः पैसा तो रहता है लेकिन जरूरत के समय पैसा नहीं आता। धन की बिल्कुल कमी ना हो, धन बिल्कुल कम ना हो, जरूरत के वक्त मौजूद रहे, इसके लिए क्या उपाय करेंगे? एक सफेद स्फटिक की माला ले लें, उसको कुछ देर गुलाब जल में भिगा लें और भिगाने के बाद उसी माला से 108 बार ओम श्रीं श्रियै नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। ये काम शुक्रवार की शाम को करिएगा। अब आपकी इस स्फटिक की माला अभिमंत्रित हो गई है, इस माला को धारण कर लें, रात में सोते समय निकाल दीजिएगा और सुबह स्नान करने के बाद दोबारा इस माला को पहन लीजिएगा। आपको धन का अभाव बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप ये उपाय करें और साथ में जो मंत्र बताया है ओम श्रीं श्रियै नमः, अगर इस मंत्र का हर शुक्रवार की शाम को जप करें तो जरूरत के वक्त पैसे की व्यवस्था जरूर हो जाएगी। तो आज हमने आपको धन प्राप्ति के सरल उपायों के बारे में बताया। अब आपको बताते हैं भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर धन की बचत करने में समस्या आ रही है तो पीले कपड़े में हल्दी की दो गांठें बांध करके अपने धन स्थान पर रखिएगा और इसको 6 महीने या साल भर पर बदल दीजिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो धन की बचत आसानी से हो सकेगी। अब जान लेते हैं 4 जुलाई 2026 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। टीआईटी भोपाल, जेन जी'स गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: पवित्र अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन बाबर फानी के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह। पहले दिन करीब 20,000 भक्तों ने दर्शन किए। अमरनाथ तीर्थ यात्रा मार्ग पर भंडारे से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा इंतजाम। उधमपुर में NH-44 पर फर्स्ट एड कैंप लगाए गए, एम्बुलेंस तैनात। प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान गुजरात को देंगे 1,00,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। जोधपुर हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन और पचपदरा में रिफाइनरी का करेंगे उद्घाटन। मुंबई और आसपास के इलाकों में 6 जुलाई तक बारिश का रेड अलर्ट। ठाणे, कल्याण और डोंबिवली में स्कूल बंद। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश में चलाया गया रेस्क्यू अभियान। पानी के तेज बहाव में दूसरी ओर वाहनों में बैठे 19 लोगों को बचाया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच आज खेला जाएगा 5 T20 मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में शाम 7 बजे से भिड़ंत।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
2: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: नमस्कार।
2: तो आज के इस एपिसोड में हम पंडित जी से जानेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। जी हां, अलग अलग राशियों पर शुक्र का किस तरह से प्रभाव पड़ता है, अलग अलग राशियों के लोगों पर शुक्र ग्रह जो है वो किस तरह से अपना प्रभाव जो है वो छोड़ता है, उस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हम आज का गुड लक मंत्र।
4: अगर आप अपने जीवन में शुक्र को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, शुक्र को शक्ति देना चाहते हैं, तो हाथ के अंगूठे में एक चांदी का छल्ला आपको धारण करना चाहिए। चांदी का छल्ला धारण करेंगे अंगूठे में तो शुक्र को शक्ति मिलेगी और शुक्र से संबंधित लाभ आपको जीवन में प्राप्त होगा।
2: और आइए अब जान लेते हैं 4 जुलाई 2026 यानी कि शनिवार का पंचांग क्या है।
4: दिनांक 4 जुलाई 2026 दिन शनिवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, दोपहर 12:39 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, दोपहर 1:43 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
2: और आइए अब जानते हैं पंडित जी से कि शुक्र का हमारे जीवन पर किस तरह का सामान्य प्रभाव पड़ता है।
4: देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आपकी राशि के अनुसार शुक्र का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि सामान्यतः शुक्र हमारे जीवन पर कैसा असर डालता है। देखिए, शुक्र मुख्य रूप से हमारे जीवन के सुख से, हैप्पीनेस से संबंध रखता है। जीवन में वैभव, ऐश्वर्य, संपदा और ग्लैमर ये आपको शुक्र की कृपा से ही प्राप्त होता है। जीवन में प्रेम, करुणा और सौंदर्य ये किसी भी व्यक्ति के लिए शुक्र के कारण ही आता है। पुरुषों के जीवन में स्त्री सुख, विवाह का सुख और मैरिटल हार्मनी ये शुक्र के कारण आती है। और चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी का भी वैवाहिक जीवन शुक्र की कृपा से ही चल पाता है। यानी आप जीवन में कितने सुखी रहेंगे, कितने चैन से रहेंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कैसी है।
2: और आइए अब जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि पर शुक्र कैसा प्रभाव डालता है।
4: अब ये जानते हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन वालों पर शुक्र का प्रभाव कैसा होता है। देखिए, अगर मेष राशि की बात करें तो इनको जीवन में शुक्र से वाणी मिलती है, धन मिलता है और पारिवारिक सुख मिलता है। मेष वालों का वैवाहिक जीवन पूरी तरह से शुक्र के ऊपर निर्भर करता है। यानी अगर आपकी मेष राशि है और शुक्र बेहतर नहीं हुआ तो आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें अवश्य आएंगी। वृषभ राशि, इनको शुक्र से अच्छा स्वास्थ्य और शानदार व्यक्तित्व, अच्छी पर्सनैलिटी जीवन में प्राप्त होती है। इनकी नौकरी और इनका करियर तभी अच्छे रह सकते हैं जब इनका शुक्र अच्छा हो। अगर आपकी वृषभ राशि है और आपका शुक्र अच्छा है तो आपको जीवन में नाम और यश मिलेगा, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा और आपको करियर में सफलता ज्यादा मिलेगी। मिथुन राशि, मिथुन वालों को शुक्र से संतान, विद्या और बुद्धि का वरदान मिलता है और शुक्र से ही मिथुन वालों को जीवन साथी का प्रेम मिलता है और जीवन में ऐश्वर्य, आराम और आनंद मिल पाता है। मुख्यतः मिथुन वालों की जो सोच है, मिथुन वालों की जो बुद्धि है, उनके जो विचार हैं, वो शुक्र के ऊपर निर्भर करते हैं।
2: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल को जानने का, तो आइए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल।
4: मेष राशि, आर्थिक मजबूती आपकी आती हुई दिख रही है, करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन का लाभ होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
2: और आइए अब आपको बताते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि पर शुक्र कैसा प्रभाव डालता है।
4: अब जानते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों को शुक्र से भावनाएं, करुणा, प्रेम और अच्छा हृदय मिलता है। इनका जो इमोशन होता है, इनकी जो भावनाएं होती हैं, वो शुक्र के ऊपर निर्भर करती हैं और शुक्र इनको अच्छा पैसा देता है, अच्छी अर्निंग देता है और जीवन में अच्छी नौकरी भी इनको शुक्र की वजह से प्राप्त होती है। सिंह राशि, शुक्र से इनको साहस मिलता है, भाई बहन का जुड़ाव, भाई बहन का प्रेम और यात्राओं का सुख जीवन में प्राप्त होता है और शुक्र के कारण ही इनको उच्च पद मिलता है और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। सिंह राशि वालों के जीवन में शुक्र की वजह से रिश्तों की भूमिका बहुत होती है। अगर आपका शुक्र गड़बड़ है और आपकी राशि सिंह है तो रिश्तों की समस्या, रिश्तों की मुश्किल आपको परेशान कर सकती है। कन्या राशि, शुक्र से इनको जीवन में भाग्य, धर्म और विदेश यात्राओं का मौका मिलता है। ये जीवन में कितनी तरक्की करेंगे, इनका भाग्य इनकी कितनी सहायता करेगा, ये शुक्र के ऊपर निर्भर करता है। शुक्र के कारण ही इनको अच्छी वाणी मिलती है, धन मिलता है और पारिवारिक सुख मिलता है। अगर आपकी राशि कन्या है और जीवन में तनाव और संघर्ष ज्यादा है तनाव ज्यादा होता है, स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका शुक्र फेवरेबल यानी अनुकूल नहीं है।
2: और गुड लक में अब वक्त हो गया है कर्क सिंह और कन्या राशि के राशिफल को जानने का।
4: कर्क राशि, बेवजह का तनाव आपको परेशान कर सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन की हानि हो सकती है, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रुका हुआ काम बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, आर्थिक लाभ होगा, सेहत की स्थिति बेहतर होती जाएगी, नए काम की शुरुआत हो सकती है, हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
2: और अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज के पहले सवाल का जवाब वो किसका देने वाले हैं।
4: जी, आज का पहला प्रश्न मीनाक्षी जी ने हमें लिखा है और मीनाक्षी जी हमें बड़ौत बागपत से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 सितंबर 1988, जन्म का समय शाम के 4 बजे, जन्म का स्थान है बड़ौत। ये कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य बेहतर नहीं चल रहा है और इस वजह से मैं अपना काम भी नहीं कर पा रही हूँ, परिवार पर ध्यान भी नहीं दे पा रही हूँ, तो अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। मीनाक्षी जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको मुख्यतः अपनी आँखों का और अपनी हड्डियों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपकी आँखों और हड्डियों के मामले में इस समय दिक्कत होने की संभावना बनती है। मार्च 2027 तक आपको अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान देना है, इसके बाद से आपकी स्थितियाँ बेहतर दिखाई दे रही हैं। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल प्लेन वाटर, और एक माणिक्य बनवा लीजिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः धारण करने से आपको लाभ होगा।
2: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से पूछना, तो आप हमें अपने सवाल ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए, अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, जानेंगे पंडित जी से आज का दूसरा सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
4: जी अगला प्रश्न वैजयंती जी ने हमें लिखा है, हैदराबाद से लिखती हैं। वैजयंती जी की जन्म की तारीख है 21 अप्रैल 1980, जन्म का समय रात के 9:30, जन्म का स्थान है हैदराबाद। वैजयंती जी कह रही हैं कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है और कर्ज हम लोगों के ऊपर बहुत हो गया है, तो जिंदगी कब तक बेहतर होगी और जीवन को बेहतर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। वैजयंती जी, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आप अपने परिवार के साथ स्थान परिवर्तन करेंगी, चेंज ऑफ प्लेस होगा, और स्थान परिवर्तन करना काफी बेहतर होगा, काफी अच्छा रहेगा। मई 2027 के बाद जिंदगी ज्यादा बेहतर होगी और उसके बाद आपकी आर्थिक मुश्किलें कम होनी शुरू हो जाएंगी। रोज सुबह और शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए, परिवार के सारे लोगों के साथ मिलकर करें तो और अच्छा होगा, और हर मंगलवार को गुड़ का या हलवा पूड़ी का दान निर्धनों में करिएगा। अगर ये उपाय निरंतर 6 महीने तक करें तो मुश्किलें कम होनी शुरू हो जाएंगी।
2: तो पहले की 6 राशियों के बारे में तो हमने आपको बता दिया और अब जानेंगे कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि पर शुक्र कैसा प्रभाव डालता है।
4: अब बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि वालों का स्वास्थ्य और इनकी आयु शुक्र के हाथों में होती है, यानी ये कितने स्वस्थ रहेंगे, आयु कितनी लंबी होगी, ये शुक्र के मामले में निर्भर करेगा। इनको पूरा अच्छा व्यक्तित्व और आकर्षण ये शुक्र से ही प्राप्त होता है। इनका बहुत अच्छा व्यक्तित्व, इनकी अट्रैक्ट करने की क्षमता इनके पास शुक्र से आती है। वृश्चिक राशि, इनका विवाह, इनके कारोबार का मामला और इनके रिश्ते शुक्र के ऊपर निर्भर करते हैं। विवाह कब होगा, व्यापार कैसा रहेगा, रिश्ते कितने चलेंगे, ये शुक्र के ऊपर निर्भर करता है। और ये जीवन में कितना मान सम्मान पाएंगे, कितना यश मिलेगा, कितना ग्लैमर मिलेगा, ये भी शुक्र पर निर्भर करता है। यानी वृश्चिक राशि वालों के जीवन का संतुलन, इनकी आर्थिक स्थिति और इनके रिश्तों के लिए ज्यादातर शुक्र जिम्मेदार माना जाता है। धनु राशि, इनकी नौकरी कैसी रहेगी, इनका रोजगार कैसा होगा, उसमें कितनी तरक्की कर पाएंगे, ये शुक्र के हाथों में होता है। इनकी बीमारियां, कर्जे, शत्रु, ये सब शुक्र से ही संबंध रखते हैं। यानी जीवन में नौकरी के मामले में दायित्वों के मामले में ये कैसे रहेंगे, ये बात शुक्र बताएगा। साथ ही साथ इनके कर्जे और इनकी बीमारियां भी शुक्र के ऊपर निर्भर करेंगी।
2: और चलिए अब जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि वालों का क्या है राशिफल।
4: तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, संतान को लेकर समस्या हो सकती है, धन की हानि से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, तनाव समाप्त हो जाएगा, रुका हुआ काम बन जाएगा, लाभकारी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
2: और अब बात कर लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि की, तो जानेंगे कि इन राशियों पर शुक्र कैसा प्रभाव डालता है।
4: देखिए, अगर मकर राशि की बात करें तो इनको जीवन में उच्च पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान ये शुक्र से प्राप्त होता है। शुक्र ही इनको जीवन में उच्च पद तक पहुंचाता है और प्रतिष्ठा देता है। इनको संतान की प्राप्ति और विद्या बुद्धि की प्राप्ति भी शुक्र की कृपा से होती है। शुक्र अगर बेहतर है और मकर राशि है तो आप बड़े बुद्धिमान और ज्ञानवान होंगे और अपने बुद्धि के दम पर ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। देखिए, अगर कुंभ राशि की बात करें तो इनका मन, इनका हृदय, इनकी भावनाएं और इनकी सोच ये शुक्र से नियंत्रित होते हैं। खास तौर से इनके जो इमोशंस हैं, इनकी जो हृदय हैं, गहरी भावनाएं हैं, ये शुक्र से संबंध रखती हैं। और कुंभ राशि वालों को शुक्र ही जीवन में भाग्यवान बनाता है। शुक्र इनको जीवन में भाग्य के रास्ते पर ले जाता है और इनके अंदर आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी पैदा करता है। मीन राशि, मीन राशि वालों की जो आयु है और जो इनकी आकस्मिक सफलता है ये इनको शुक्र से प्राप्त होती है। कितनी लंबी आयु होगी, आयु की स्थिति कैसी होगी, जीवन में कितनी सफलता पाएंगे, ये इनके जीवन में शुक्र से निर्धारित होता है। लेखन, कला, संगीत, बोलने और लिखने की क्षमता, ये मीन वालों को शुक्र प्रदान करता है। इनके जीवन में जो भी कला का पक्ष है, जो भी अभिव्यक्ति का पक्ष है, वो शुक्र से इनके जीवन में आ जाता है।
2: और चलिए गुड लक में वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या है राशिफल।
4: मकर राशि, दौड़ भाग इस समय बढ़ी रहेगी, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, सेहत की स्थिति बेहतर होगी, धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, अनावश्यक तनाव ना पालें, वाद विवाद से बचाव करें, खान पान में सावधानी रखें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
2: और आइए अब जानते हैं आज का तीसरा प्रश्न पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
4: जी, अगला प्रश्न अमित जैन ने हमें लिखा है, जोधपुर से लिखते हैं। अमित की जन्म की तारीख है 16 अक्टूबर 1982, जन्म का समय शाम के 5 बजे, जन्म का स्थान है जोधपुर। अमित कह रहे हैं कि मैं अभी एक व्यापार करता हूं और आगे मैं प्रॉपर्टी के काम में जाना चाहता हूं, क्या प्रॉपर्टी का व्यापार करना मेरे लिए ठीक रहेगा, और आने वाला समय आर्थिक स्थिति से कैसा रहेगा। अमित, आपकी कुंडली के हिसाब से आप भविष्य में प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, लेकिन अकेले काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। पार्टनरशिप में जाने का प्रयास मत करिएगा, पार्टनरशिप आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन कर्ज बांटने में, पैसे के इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सावधानी बनाए रखिएगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करिएगा। सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपको लाभ अवश्य होगा।
2: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
4: जिन लोगों का जन्मदिन 4 जुलाई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, सेहत में लापरवाही मत करिएगा, करियर के मामलों में कोई जोखिम, कोई रिस्क मत लीजिएगा। आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी और साल के अंत में अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
2: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है।
4: आज की जिज्ञासा है कि क्या रात के समय में, खासतौर से मध्य रात्रि में पूजा करना, ध्यान करना ज्यादा लाभकारी होता है? देखिए, मिडनाइट में, मध्य रात्रि में मानसिक स्थिति विशेष हो जाती है। इस समय में मन को एकाग्र कर पाना या मन को गहराई में ले जा पाना ज्यादा आसान होता है। मध्य रात्रि में अगर आप पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ये आपके लिए ज्यादा लाभकारी रहेगी।
2: और अब वक्त हो गया है 4 जुलाई 2026 यानी कि शनिवार के शुभ पहर को जानने का।
4: दिनांक 4 जुलाई 2026 दिन शनिवार का शुभ पहर जानते हैं। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में एक बार या 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 4 जुलाई शनिवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
2: गुडलक में अब जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
4: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वर्तमान समय कैसा चल रहा है। आज की गुडलक राशि है मिथुन राशि। इस समय आपको करियर और धन के मामले में लाभ होगा और इस समय आपके लिए स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं।
2: गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है।
4: जी देखिए, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आप जीवन में शुक्र से लाभ लेना चाहते हैं और लाभ नहीं मिल पा रहा है तो क्या करेंगे। स्नान करने के बाद हल्की सुगंध अपने शरीर पर लगाइएगा। चमकदार वस्त्रों का प्रयोग करिएगा और एक सफेद रंग के स्फटिक की माला अपने गले में अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा।
2: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद।
2: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
5: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
6: Schwarber to right field, and it will leave.
5: From the first pitch of the season to the stretch run,
6: and that's the ball game.
5: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।

0: क्या आप कारोबार में धन नहीं कमा पा रहे हैं? क्या नौकरी में धन की मुश्किल बनी रहती है? क्या जरूरत के समय आपके पास धन नहीं रहता है? क्या है धन प्राप्ति के सरल प्रयोग? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
0: खबरें तो आराम।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: मानसून की बारिश आमतौर पर तो राहत ही लेकर आती है, गर्मी से छुटकारा मिलता है, धरती को तरावट तो खेती बाड़ी को फायदा होता है, यही नहीं पीने के पानी की कमी भी दूर हो जाती है। लेकिन यह भी सच है कि इस दौरान उन इलाकों में आफत भी आ सकती है जहां बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसी आपदाओं का खतरा बना रहता है। ऐसे में यहां पर आने वाली आपदाओं से निपटने की तैयारियां की गई, देखिए रिपोर्ट।
2: पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है जिस कारण नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, इसलिए आप सभी यात्रियों से निवेदन है कि चैन पकड़ कर नहाएं और जलस्तर को देखने ही नहाएं।
3: धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी पर लोगों को सतर्क और सावधान करने के लिए लगातार पुलिस की ओर से मुनादी की जा रही है।
2: पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण जलस्तर बढ़ रहा है, आप पानी भी देख रहे होंगे, काफी वैसे मटमेला टाइप का आ रहा है,
3: स्नान कर रहे श्रद्धालुओं को हर खतरे से बचाने के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां की गई हैं। ये तस्वीरें इसी सिलसिले में हर की पैड़ी पर किए गए मॉक ड्रिल की हैं। इस दौरान आपदा की हालत में लोगों के बचाव और राहत के लिए उठाए जाने वाले कदमों को परखा गया और इन कार्यों में भाग लेने वाली एजेंसियों की क्षमता को भी आंका गया। साथ ही ये दर्शाया गया कि लोगों के डूबने की कोई घटना होने पर कितनी तेजी से एक्शन लिया जा सकता है। NDRF, पुलिस, फायर ब्रिगेड, मेडिकल, होमगार्ड, PRD और PWD समेत तमाम विभागों की टीमों ने इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया।
4: ड्रिल इसलिए की गई है कि हमने जो मानसून आता है कभी भी उससे पहले एक प्रिपेयरनेस तैयारी की जाती है, ऑल स्टेक होल्डर, ऑल डिपार्टमेंट, सभी लोग उसमें किस किस वगैरह क्या काम होता है एक कोऑर्डिनेशन के लिए, इनकेस कोई बड़ी आपदा आ जाती है या कोई जल भराव हो जाता है उस टाइम किस कम्युनिटी का किस डिपार्टमेंट का कौन सा किसका रोल रहता है, इसलिए एक मॉक ड्रिल करवाई गई है। इस दौरान एक यहाँ एक सीनरियो क्रिएट किया गया था ड्रोनिंग का।
3: मानसून में आने वाली आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में इसी तरह से मॉक ड्रिल की गई। आपको दिखा रहे हैं अब बागेश्वर की तस्वीरें। आप यहां देख सकते हैं कि किस तरह से रस्सी के सहारे आपदा में फंसे लोगों को बचाने का इंतजाम किया गया है। बागेश्वर में बचाव और राहत एजेंसियों की टीमों ने तय समय में ऐसी आपदाओं से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और उन्हें फर्स्ट एड देने के साथ साथ जरूरी सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करने का अभ्यास किया।
5: मॉक ड्रिल की एग्जीक्यूशन के माध्यम से जिला प्रशासन की किसी भी आपदा के दृष्टिगत क्या तैयारी है उसका भी एक परीक्षण हुआ और जिला प्रशासन पूर्णतः किसी भी प्रकार के घटनाक्रम के दृष्टिगत तत्काल त्वरित कार्रवाई करने एवं डिजास्टर मैनेजमेंट की जो SOP है उसके अनुरूप कार्रवाई करने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध और सक्षम है।
3: पहाड़ों पर अक्सर बादल फटने और लैंडस्लाइड के बाद सड़क संपर्क टूटने पर ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, तब इस तरह के राहत और बचाव अभियान की जरूरत पड़ती है। ये तस्वीरें चमोली गढ़वाल की हैं, जहां दुर्गम इलाकों में रस्सी के सहारे लोगों के बचाव का अभ्यास किया गया। इस दौरान लामबगड़ में लैंडस्लाइड के बाद भारी मलबे से पुल टूटने के अलावा हाईवे पर बोल्डर गिरने से यातायात ठप होने की स्थिति में लोगों को कैसे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए इसकी भी मॉक ड्रिल की गई।
6: जो हम यहाँ पे रेस्क्यू कर रहे हैं, सिचुएशन हमें जो दी गई है इसमें पुल टूट गया है और नदी का जलस्तर बढ़ गया है और एक और यहाँ पर हम लोगों और टीमें बना के रेस्क्यू करवा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास ITGP और फायर आर्मी और SDRF की सहित टीम बनाई गई है यहाँ पे और इनके द्वारा अपने उपकरणों के द्वारा यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है।
3: वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी 7 ऐसी जगहों पर प्रशासन की तरफ से मेगा मॉक ड्रिल करवाई गई, जहां पर मॉनसून के सीजन में खतरे की आशंका रहती है। इन जगहों पर बाढ़, बारिश और मकान ढहने साथ ही दूसरी आपदाओं में लोगों के बचाव और राहत के लिए की गई तैयारियों का अभ्यास किया गया। दरअसल आपदाएं कभी बताकर नहीं आती, लिहाजा राहत और बचाव को अंजाम देने और मददगार एजेंसियों के लिए ये जरूरी है कि वो हमेशा तैयार रहें और अपने सारे इंतजाम पुख्ता रखें ताकि समय होने पर भी प्रभावित

0: उम्मीद है कि अगले एक दो दिन में पूरा भारत मानसून की आगोश में होगा। फिलहाल उत्तर भारत और खासकर दिल्ली वाले मानसून का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बादलों के आने और बरसने के बाद यहां पारा 5 से 7 डिग्री तक लुढ़का है। मौसम विभाग का तो यहां तक कहना है कि अगले 7 दिनों तक बादलों की आवाजाही से दिल्ली का सुकून यूं ही बना रहेगा। मानसून के बादलों ने राजस्थान के कुछ इलाकों तक घुसपैठ कर ली है, लेकिन बाकी राजस्थान में मानसून के मन भर बरसने का इंतजार है। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान पर मानसून के पूरी तरह मेहरबान होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जिस तरह मानसून की रफ्तार कई बार बीच बीच में थमी, उसके बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि मानसून देश के बाकी हिस्सों में 7 से 8 दिनों की देरी से पहुंचेगा। लेकिन अनुकूल परिस्थितियों के चलते मानसून की स्पीड सुपर स्पीड में बदली और एक ही दिन में मानसून ने यूपी के अलावा पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में एंट्री मार ली। एक तरह से कहें तो देश के 95% हिस्सों तक मानसून पहुंच चुका है और जहां पहुंचा है वहां खूब बरस भी रहा है।
1: जो रेड अलर्ट है वो अभी हम देखेंगे मुख्य रूप से, तो देखेंगे गुजरात के लिए, कोंकण तट के लिए जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल को देखते हुए जो रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ में मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है।
0: मानसून से मुंबई वालों का नाता हाल के सालों में भले मुसीबत से ज्यादा हो गया हो, लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। ये मुंबई की पवई झील है। इस झील की क्षमता 545 करोड़ लीटर की है। ये झील मुंबई के बड़े हिस्से की प्यास बुझाती है। बारिश के शुरुआती दिनों में ही झील का भर जाना मुंबई के लिए अच्छी खबर है। फिलहाल तो बारिश में ये झील खुद में करिश्मा बनी हुई है।
2: मैं इस समय मौजूद हूं पवई झील के दूसरे किनारे पर, जहां की तस्वीरें कुछ इस तरह से हैं। देखिए, ये झरना है और बहुत ज्यादा फेमस है पवई लेक के नाम से। यहां पर वैसे तो लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं बारिश को, लेकिन आज की जो तस्वीर है मुझे नहीं लगता है कि यहां परमिशन मिली होगी कि लोग भीतर की भी तरफ जाएं। आप देखें कि बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहा है इस समय ये पवई लेक, और मुंबई के कोने कोने से लोग यहां इस तरह की तस्वीरें देखने के लिए पहुंचते हैं। यहां पर लोग एंजॉय भी करते हैं और क्वालिटी टाइम बिताते हैं। पवई झील का ये दूसरी तरफ का किनारा है और ऊपर की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बांध है, और उस बांध पर आप देखें छोटे छोटे बोट रखे हुए हैं, छोटी छोटी स्टॉले लगाई गई हैं, जहां पर पवई झील कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो बैठे हुए हैं और अपना व्यवसाय कर रहे हैं मछली पकड़ने का।
0: जाहिर है मानसून ने आने में इस बार देर जरूर की है, लेकिन जिस तरह देश के बड़े हिस्से में बारिश हो रही है उसके संकेत खेती के लिहाज से भी अच्छे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में मानसूनी गतिविधियां आने वाले वक्त में जोर पकड़ेंगी और दिल्ली और आसपास के इलाकों में 5 तारीख के बाद मानसून अपने असल रंग में होगा। दिल्ली से मनीष लड्डा के साथ मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
4: टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती और इस नन्ही बच्ची ने इसे सच साबित कर दिखाया। सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बरकरार है। रस्सी पर संतुलन बनाते हुए वो मुश्किल करतब दिखाती है और लोगों का दिल जीत लेती है। परिवार का सहारा बनने के लिए वो मेहनत कर रही है। ये वीडियो सिर्फ उसके हुनर की नहीं बल्कि उसके संघर्ष और हौसले की कहानी भी बयां करता है। कम उम्र में बड़ा कारनामा करने वाले सोलापुर के 12 साल के छात्र अब्दुल्ला इमरान मंगलगिरी की हर तरफ चर्चा हो रही है। उसने महज 9000 रुपए की लागत से ऐसी सोलर साइकिल तैयार की है जो सौर ऊर्जा और बैटरी दोनों से चलती है। साइकिल में डिजिटल स्पीडोमीटर, जीपीएस ट्रैकिंग और वॉइस कंट्रोल जैसी आधुनिक सुविधाएं भी दी गई हैं। छात्र का यह अनोखा आविष्कार लोगों को खूब प्रेरित कर रहा है। दोस्ती और भरोसे की मिसाल बन चुके ऑफिसर ब्रायन सैंटोस और उनके K9 पार्टनर कायरा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साल 2018 से दोनों साथ मिलकर ड्यूटी निभा रहे हैं। वीडियो में ऑफिसर जो भी मूवमेंट करते हैं, कायरा भी बिल्कुल उसी अंदाज में उनका साथ देती नजर आती है। दोनों के बीच की गजब की समझ और तालमेल देखकर लोग उनकी इस अनोखी जोड़ी की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

0: हौसला अगर बुलंद हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। इसका शानदार उदाहरण एक जंगली बकरी ने पेश किया है, जिसने तेज बहाव वाली उफनती रावी नदी को बेखौफ होकर पार कर लिया। नदी की रफ्तार और खतरनाक हालात के बावजूद बकरी का संतुलन देखने लायक था। ये रोमांचक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग उसकी बहादुरी और आत्मविश्वास की जमकर सराहना कर रहे हैं। छोटी सी उम्र और बड़ा टैलेंट, इस बच्ची का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर छाया है। सुरमेदानी गाने पर उसने शानदार एक्सप्रेशन और बेहतरीन डांस मूव से हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। हर स्टेप में आत्मविश्वास और चेहरे के भाव इतने शानदार हैं कि उसकी ट्रेनर भी हैरान रह गई। लोग बच्ची की मासूमियत, आत्मविश्वास और टैलेंट की खूब तारीफ कर रहे हैं और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Hey there, it's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcast, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
1: खबरें तो आराम से। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: क्या आप कारोबार में धन नहीं कमा पा रहे हैं? क्या नौकरी में धन की मुश्किल बनी रहती है? क्या जरूरत के समय आपके पास धन नहीं रहता है? क्या है धन प्राप्ति के सरल प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, Sage University, transforming your passion into profession.
4: पवित्र अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन, बाबर फानी के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह। पहले दिन करीब 20,000 भक्तों ने दर्शन किए। अमरनाथ तीर्थ यात्रा मार्ग पर भंडारे से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा इंतजाम। उधमपुर में NH-44 पर फर्स्ट एड कैंप लगाए गए, एम्बुलेंस तैनात। प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान गुजरात को देंगे 1,00,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। जोधपुर हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन और पचपदरा में रिफाइनरी का करेंगे उद्घाटन। मुंबई और आसपास के इलाकों में 6 जुलाई तक बारिश का रेड अलर्ट। ठाणे, कल्याण और डोंबिवली में स्कूल बंद। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश में चलाया गया रेस्क्यू अभियान। पानी के तेज बहाव में दूसरी ओर वाहनों में बैठे 19 लोगों को बचाया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच आज खेला जाएगा 5 T20 मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान में 7:00 से भिड़ंत।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम।
4: पवित्र अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन, पहले दिन करीब 20,000 भक्तों ने दर्शन किए।
5: तो बस भोले बाबा से मिलने की है।
4: प्रशासन की व्यवस्था से कुछ दुखे श्रद्धालु, कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता भी जमकर तारीफ की। श्रद्धालुओं में दिखा आध्यात्मिकता, उत्साह, राहत का अनूठा संगम। बाबर फानी के जयकारों ने माहौल में घोली दिव्यता। अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए स्वास्थ्य विभाग की पहल, NH-44 पर फर्स्ट एड कैंप लगाए गए और एम्बुलेंस तैनात की गई। तीर्थयात्रा के दौरान ट्रैफिक की आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए NH-44 पर बनी डिगडुल पंथियाल टनल और मगरकोट रामसू वायाडक्ट को खोला गया। अमरनाथ यात्रा के बीच जम्मू को ग्लोबल आध्यात्मिक हब बनाने की तैयारी। जम्मू नगर निगम ने तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए शुरू की जम्मू तवी रिवर फ्रंट पर बोटिंग सुविधा। जम्मू के तवी रिवर फ्रंट को आकर्षक ढंग से सजाया गया, जम्मू स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत की गई पहल। पहल से बढ़ेगा टूरिज्म, अमरनाथ यात्रा के दौरान जम्मू पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। बोटिंग के अलावा लाइट एंड साउंड शो का भी शुभारंभ। लेजर शो के जरिए दिखाई जा रही बाबा अमरनाथ की पौराणिक कथा। माँ तवी की आरती और रंग बिरंगी रोशनी श्रद्धालुओं को कर रही है मंत्रमुग्ध। यात्री जत्थे के रवाना होने से पहले यहां बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सावन के महीने से पहले कावड़ यात्रा की तैयारियों पर हरिद्वार में मंथन। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों से की चर्चा। कावड़ियों की सुरक्षा सुविधाओं पर हुई चर्चा। इस बार यात्रा में रोड बाइंडिंग और एलिवेटेड ट्रक का भी किया जाएगा इस्तेमाल। वाटर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस भी होगी तैनात। दिल्ली सरकार ने ईवी सब्सिडी पोर्टल किया लॉन्च। पोर्टल के जरिए नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वाले लोग सब्सिडी के लिए कर पाएंगे आवेदन। 1 जुलाई 2026 के बाद नई ईवी खरीद पर मिलेगी सब्सिडी। 30 दिन के अंदर करना होगा आवेदन। उत्तर प्रदेश में ईवी चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए 16 आवर्स में 20% ट्रैफिक टैरिफ छूट, सस्ती सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक छूट। प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान गुजरात को देंगे 1,00,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात, राजस्थान के पचपदरा में रिफाइनरी का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का करेंगे उद्घाटन, बालोतरा में 1,00,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। राजस्थान के बाद गुजरात जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, अहमदाबाद के साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमी कंडक्टर असेंबली एनटेस संयंत्रण का उद्घाटन। 6 जुलाई से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना मकसद। दौरे के पहले पड़ाव में इंडोनेशिया पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, न्यूजीलैंड है इस यात्रा का सबसे खास पहलू, करीब 40 साल बाद न्यूजीलैंड जा रहे हैं प्रधानमंत्री। गुजरात के जूनागढ़ में रेस्क्यू अभियान चलाकर 19 लोगों की बचाई गई जान, पानी के तेज बहाव में दूसरी ओर वाहनों में बैठे लोगों को रेस्क्यू किया गया। आणंद में मानसून ने धमाकेदार एंट्री ली, कुछ ही घंटों की बारिश में पानी पानी हुआ पूरा शहर। मेहसाणा जिले में भी जमकर बरसे बादल, एक ही रात में 8 से 9 इंच बारिश दर्ज की गई, निचले इलाकों में भरा पानी। राजकोट में भी मूसलाधार बारिश, शहर के कई इलाकों में जलभराव से लोग हुए परेशान। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश का असर, नदी नालों के साथ डैम भीलाबाला भरे, बांध से गिरते पानी को देखने पहुंचे लोग। दिल्ली एनसीआर के आसमान में बादलों का डेरा, मौसम विभाग का येलो अलर्ट, झमाझम बारिश के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में कई और राज्यों में सक्रिय होगा मॉनसून, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों में भी बारिश की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बारिश का दौर जारी रहने के अनुमान, संवेदनशील इलाकों में लैंडस्लाइड से सावधानी रहने की सलाह। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी, 6 जुलाई तक बारिश का अलर्ट। अगले 5 दिनों में गुजरात और गोवा में भारी बारिश होने के अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र के लोनावला में भारी बारिश के बाद मशहूर भूशी डैम ओवरफ्लो, डैम में तेजी से बहता पानी देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। बारिश के कारण पूरे इलाके में हरियाली, वीकेंड पर उमड़ेगी पर्यटकों की भीड़, प्रशासन की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। गुजरात के नवसारी में मूसलाधार बारिश का दौर, उफान पर अंबिका और अन्य नदियां, विकराल रूप में प्रसिद्ध गीरा वाटरफॉल। मॉनसून के दौरान झरने में तेज जलप्रवाह को देखते हुए बड़ी संख्या में आ रहे हैं पर्यटक, सुरक्षित दूरी से इस मनमोहक प्राकृतिक दृश्य का ले रहे हैं आनंद। जूनागढ़ में भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में भरा पानी, उफनते नाले के बीच फंसी बस क्रेन से खींचकर निकाली गई। गुजरात के अंबाजी में अच्छी बारिश के लिए वन भोजन का आयोजन, वरुण देव को खुश रखने के लिए व्यापारियों ने दुकानें रखी बंद। आयोजन के बीच सिर्फ अंबाजी मंदिर का भोजनालय खुला रखा गया, मान्यता है कि सारे व्यापारी द्वारा अपनी दुकानें बंद रखना उजानी करने पर ही होती है अच्छी बारिश। उज्जैन जिले में लगातार हो रही बारिश से तेजी से बढ़ा क्षिप्रा नदी का जलस्तर, रामघाट सहित आसपास के घाटों के कई छोटे मंदिर व देवस्थलों तक पहुंचा पानी। मथुरा में पड़ रही भीषण गर्मी के बाद आज अचानक हुई बारिश, भारी बरसात के बाद जलमग्न हुई सड़कें और प्रमुख मार्ग। गृहमंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की समीक्षा बैठक, अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश और उसके असर पर चर्चा। जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का हुआ एयरपोर्ट जैसा लुक, सुविधाएं भी बढ़ी, नॉर्दर्न रेलवे के जीएम ने किया निरीक्षण, जल्द उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। यात्रियों की सुविधा के लिए लगाई गई 10 लिफ्ट और 8 एस्केलेटर्स, पंजाब में भी कई रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना तहत किए जा रहा है तैयार। सुरक्षा को लेकर रेलवे की शानदार पहल, चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्कूटर से गश्त करेंगे आरपीएफ के जवान। प्लेटफॉर्म पर निगरानी, मदद और त्वरित कार्रवाई होगी आसान, यात्रियों की सुरक्षा का बेहतर ख्याल। नू में 12 जुलाई को होगा उपमंडल स्तरीय न्यायिक परिसर का शिलान्यास समारोह, तैयारियां पूरी, चीफ जस्टिस सूर्यकांत होंगे मुख्य अतिथि। मोबाइल से ई रिक्शा का इंजन बंद करने की घटनाओं के बाद सरकार का सख्त फैसला। 3 चाइनीज ऐप को घटाने का आदेश जारी। बैटरी ठप होने से रुक जाती है गाड़ियां। प्रधानमंत्री मोदी आज जोधपुर में उड़ान स्कीम को 10 साल बढ़ाने का करेंगे ऐलान। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और हवाई यात्रा को सस्ता बनाना इसका मकसद। बिहार में 1,00,000 करोड़ की ग्रीन फील्ड सेटेलाइट टाउनशिप योजना को मिली गति। हटको के साथ एमओयू, 12 आधुनिक टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। लखनऊ में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 आयोजन। सीएम योगी ने महोत्सव का शुभारंभ कर प्रगतिशील बागवानों को सम्मानित किया। मौके पर निर्यात होने वाले आमों के वाहनों को भी किया फ्लैग ऑफ। किसानों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता और समृद्ध कृषि को प्रदर्शित करने का सशक्त मंच प्रदान करता है ये महोत्सव। भारतीय बैडमिंटन में नया स्कोरिंग सिस्टम होगा लागू। इसके तहत 21 की जगह 15 पॉइंट्स के होंगे गेम। 7 से 14 जुलाई तक अर्नाकुलम में होने वाले ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग टूर्नामेंट में किया जाएगा नए नियमों का पहला इस्तेमाल। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की। भारत और इंग्लैंड के बीच आज खेला जाएगा दूसरा T20 मैच। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला। मैच जीतने पर दोनों ही टीमों की नजर, बारिश के कारण रद्द हो सकता है। चेस्टरली स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला गया था पहला मैच। कैप्टन श्रेयस अय्यर और अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक बार फिर तूफानी पारी की उम्मीद। पिछले मैच में बारिश होने से पहले दोनों ने खेली थी अर्धशतकीय पारी। अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे। इस मौके पर पेरिस का आइफल टावर US 250 की रोशनी से जगमगा उठा। फ्रांस ने दिया खास सम्मान। अमेरिका के 250 स्वतंत्रता दिवस पर आइफल टावर को विशेष रोशनी से सजाया। आइफल टावर पर दिखा USA 250। अमेरिका की ऐतिहासिक वर्षगांठ पर पेरिस से दोस्ती का दिया गया खास संदेश। 250 साल की दोस्ती का जश्न। फ्रांस ने रोशनी के जरिए अमेरिका के साथ अपने पुराने रिश्ते को सम्मान दिया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी से आइफल टावर तक फ्रांस अमेरिका की ऐतिहासिक दोस्ती एक बार फिर से रोशनी के साथ दुनिया के सामने आई। अमेरिका के कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर। तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। लोग राहत के लिए वाटर पार्क और ठंडी जगहों का लाई रहे हैं सहारा। नॉर्थ कैरोलिना में भीषण गर्मी के बीच परिवार वाटर पार्क पहुंचे। गर्मी से बचने के लिए लोग लगातार पानी पीते नजर आए। फिलाडेल्फिया में भीषण गर्मी के बावजूद ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए आयोजित। हालांकि कई स्थानीय परेड और ब्लॉक पार्टियां रद्द करनी पड़ी। अमेरिका में हीट वेव का असर जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। तेज गर्मी के साथ चलते कई सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। भीषण गर्मी से जूझ रहे अमेरिकी शहरों में लोगों को दिनचर्या प्रभावित इससे हो रही है। प्रशासन लोगों को धूप से बचने और हाइड्रेट रहने की सलाह दे रहा है। चीन के हेनान तट से टकराया टाइफून मेसाक। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित। टाइफून के कारण ट्रेन और फ्लाइट सेवाएं ठप। हैनान आने जाने वाली रेल, उड़ान और फेरी सेवाएं स्थायी रूप से बंद कर दी गई। सावधानी के तहत स्कूल और चाइल्ड केयर सेंटर भी बंद कर दिए गए। सानिया और लेंडोग इलाके में प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए। समुद्र में ऊंची लहरों से एक्वाकल्चर बेस को नुकसान। तेज लहरों से गहरे समुद्र में बने मछली पालन के पिंजरों को बुरी तरह से उस पर प्रभाव पड़ा। अगले कुछ दिनों तक बारिश और गरज चमक का अलर्ट। मौसम विभाग ने लिंगशुई क्षेत्र में खराब मौसम जारी रहने की चेतावनी दी। ब्राजील में वर्ल्ड कप का जुनून बालों में उतरा। रेसेंडे में हेक्सा कट बन गया नया ट्रेंड। बाबर ने बनाया झंडे वाला खास हेयर स्टाइल। ब्राजील के रंगों में सजे फैंस के बाल। हरा पीला नीला डिजाइन बना आकर्षण का केंद्र। बच्चों और युवाओं में हेयर कट की दीवानगी। सलोन बना फुटबॉल फैन का हब। बच्चों में खासा लोकप्रिय हुआ है नया लुक। बालों में उकेरा गया वर्ल्ड कप का सपना। ढलास की घुड़सवार पुलिस वर्ल्ड कप के लिए तैयार, घोड़ों पर सवार पुलिस संभालेंगी भीड़, वर्ल्ड कप सुरक्षा में घुड़सवार यूनिट की अहम भूमिका। घोड़े से भीड़ पर रखी जाएगी पैनी नजर, टेक्सास की काउबॉय परंपरा दिखेगी वर्ल्ड कप में, फैंस को भी काउबॉय अंदाज में दिखा जाएगा। मिनरल डेल मोंटे में फीफा वर्ल्ड कप का छाया उत्साह, मैक्सिको का पहाड़ी शहर फुटबॉल रंग बिरंगा, पुरानी कानश पेस्ट्री की दुकान बनी चर्चा का केंद्र। 1975 से चल रही है पारंपरिक रेसिपी आज भी कायम, फुटबॉल और खाने की परंपरा के साथ साथ चल रही है मिनरल डेल मोंटे में ऐतिहासिक जुड़ाव की झलक। केप वर्डे की राजधानी प्राय में फीफा वर्ल्ड कप का जोश, अर्जेंटीना के खिलाफ मैच से पहले शहर में उत्साह, छोटा अफ्रीकी देश बना बड़ी फुटबॉल की कहानी। प्राय में फुटबॉल बना राष्ट्रीय उत्सव, शहर की गलियों में जश्न और गूंजे नारे, फ्रांस में अर्जेंटीना से मुकाबले को लेकर उत्साह। केप वर्डे ने रचा अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, छोटे देश की बड़ी उपलब्धि में सबको चौंकाया, वैश्विक पहचान बना रहा है अफ्रीकी द्वीपीय देश। अमेरिकी छात्र चीन में सीख रहे हैं पांडा संरक्षण, चेंगदू में विशाल पांडा बना सांस्कृतिक सेतु का प्रतीक, छात्रों में पांडा रिसर्च बेस का किया दौरा। छात्रों को पांडा को करीब से देखने का मिला अनोखा अनुभव, भोजन तैयारी और देखभाल की प्रक्रिया समझाई गई। पांडा की डाइट को लेकर गलतफहमियां हुई दूर, युवाओं ने अनुभव को बताया प्रेरणादायक, छात्रों में देखा जबरदस्त उत्साह। दक्षिण कोरिया से बचाए गए भालुओं को डेनमार्क में मिला नया घर, 6 एशियाई काले भालू सफारी पार्क में शिफ्ट, जानवरों को प्राकृतिक जीवन देने की पहल। नूटेनबॉर्ग सफारी पार्क बना भालुओं का नया ठिकाना, बाइल फार्म से रेस्क्यू के बाद शुरू हुई नई जिंदगी, भालुओं को जंगल जैसे खुले माहौल में छोड़ा गया। चांगशा में पूल के अंदर खेला गया चीन का पारंपरिक खेल महजोंग, भीषण गर्मी से मिल रही ठंडक का अनोखा अंदाज। जल उत्सव में विदेशी पर्यटकों ने भी लिया हिस्सा, खेल के साथ ठंडक का डबल मजा, पानी में खेलते खिलाड़ियों ने जीता दिल। रूस में गर्मियों की रौनक बरकरार, मॉस्को में रेड स्क्वायर पर पर्यटकों की भारी भीड़, सेंट बेसिल कैथेड्रल बना आकर्षण का केंद्र। मॉस्को के पार्क और कैफे में चहल पहल जारी, शहर के बाजार ग्राहकों से गुलजार, ऐतिहासिक स्थलों पर बड़ी संख्या में पर्यटक। मॉस्को सिटी में कारोबार तेजी से जारी, खुशहाल माहौल के साथ गर्मियों का आनंद, राजधानी में पर्यटन को मिला नया रफ्तार। डेनमार्क की राजधानी कोपेहेगन में सुरक्षित साइकिलिंग अभियान शुरू, पर्यटकों को सिखाए जा रहे हैं साइकिल चलाने के नियम। सड़क सुरक्षा पर खास फोकस, सोशल मीडिया से पर्यटकों को दी जा रही है सीख। पोस्टकार्ड के जरिए बताए जा रहे हैं नियम, मोबाइल छोड़ सुरक्षित साइकिल चलाने की सलाह। बीजिंग में एआई बना डिजिटल इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा आकर्षण, एआई आधारित स्टार्टअप्स पर खास फोकस। एआई से एंटरप्रेन्योरशिप को मिली नई उड़ान, डिजिटल इकोनॉमी एक्सपो में नई तकनीकों का प्रदर्शन। स्विस ग्लेशियर्स में बर्फ का नुकसान तेजी से बढ़ा, जून की हीटवेव से पिघलन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। स्विट्जरलैंड में ग्लेशियर लॉस डे जल्दी आया, सर्दियों की जमा बर्फ समय से पहले खत्म। दो हफ्तों में भारी मात्रा में बर्फ खत्म, अब दशकों पुरानी बर्फ खो रहे हैं ग्लेशियर। इटली के सिसिली में माउंट एटना ज्वालामुखी फिर हुआ सक्रिय, ज्वालामुखी की लावा धार ने रात को किया रोशन। इटली के आकाश में लाल चमक दिखाई दी, 3000 मीटर ऊंचाई से लावा बहना शुरू, पहाड़ी ढलानों की ओर बढ़ता लावा प्रवाह।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: क्या आप कारोबार में धन नहीं कमा पा रहे हैं? क्या नौकरी में धन की मुश्किल बनी रहती है? क्या जरूरत के समय आपके पास धन नहीं रहता है? क्या है धन प्राप्ति के सरल प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: और जिस मानसून का इंतजार पूरे जून के महीने हुआ, उसने जुलाई की दूसरी तारीख को दिल्ली एनसीआर में फाइनली दस्तक दे दी। कल दिन भर अलग अलग इलाकों में बारिश हुई और पारे में 5 से 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और जिस उमस से लोग परेशान थे उससे भी उनको राहत मिलेगी।

0: करीब करीब पूरे हिंदुस्तान पर छाए ये बादल बता रहे हैं कि इंडिया का मानसूनी मौसम शुरू हो चुका है। जिस रफ्तार से मानसून आगे बढ़ा है, उम्मीद है कि अगले एक दो दिन में पूरा भारत मानसून की आगोश में होगा। फिलहाल उत्तर भारत और खासकर दिल्ली वाले मानसून का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बादलों के आने और बरसने के बाद यहाँ पारा 5 से 7 डिग्री तक लुढ़का है। मौसम विभाग का तो यहाँ तक कहना है कि अगले 7 दिनों तक बादलों की आवाजाही से दिल्ली का सुकून यूं ही बना रहेगा। मानसून के बादलों ने राजस्थान के कुछ इलाकों तक घुसपैठ कर ली है, लेकिन बाकी राजस्थान में मानसून के मन भर बरसने का इंतजार है। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान पर मानसून के पूरी तरह मेहरबान होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जिस तरह मानसून की रफ्तार कई बार बीच बीच में थमी, उसके बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि मानसून देश के बाकी हिस्सों में 7 से 8 दिनों की देरी से पहुंचेगा। लेकिन अनुकूल परिस्थितियों के चलते मानसून की स्पीड सुपर स्पीड में बदली और एक ही दिन में मानसून ने यूपी के अलावा पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में एंट्री मार ली। एक तरह से कहें तो देश के 95% हिस्सों तक मानसून पहुंच चुका है और जहां पहुंचा है वहां खूब बरस भी रहा है।
1: जो रेड अलर्ट है वो अभी हम देखेंगे मुख्य रूप से, तो अब देखेंगे गुजरात के लिए, कोंकण तट के लिए जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल को देखते हुए जो रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ में मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है।
0: मानसून से मुंबई वालों का नाता हाल के सालों में भले मुसीबत से ज्यादा हो गया हो, लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। ये मुंबई की पवई झील है। इस झील की क्षमता 545 करोड़ लीटर की है। ये झील मुंबई के बड़े हिस्से की प्यास बुझाती है। बारिश के शुरुआती दिनों में ही झील का भर जाना मुंबई के लिए अच्छी खबर है। फिलहाल तो बारिश में ये झील खुद में करिश्मा बनी हुई है।
2: मैं इस समय मौजूद हूं पवई झील के दूसरे किनारे पर, जहां की तस्वीरें कुछ इस तरह से हैं। देखिए, ये झरना है और बहुत ज्यादा फेमस है पवई लेक के नाम से। यहां पर वैसे तो लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं बारिश को, लेकिन आज की जो तस्वीर है मुझे नहीं लगता है कि यहां परमिशन मिली होगी कि लोग भीतर की भी तरफ जाएं। आप देखें कि बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहा है इस समय ये पवई लेक, और मुंबई के कोने कोने से लोग यहाँ इस तरह की तस्वीरें देखने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर लोग एंजॉय भी करते हैं और क्वालिटी टाइम बिताते हैं। पवई झील का ये दूसरी तरफ का किनारा है और ऊपर की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बांध है, और उस बांध पर आप देखें छोटे छोटे बोट रखे हुए हैं, छोटी छोटी स्टॉले लगाई गई हैं, जहाँ पर पवई झील कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो बैठे हुए हैं और अपना व्यवसाय कर रहे हैं मछली पकड़ने का।
0: जाहिर है मानसून ने आने में इस बार देर जरूर की है, लेकिन जिस तरह देश के बड़े हिस्से में बारिश हो रही है उसके संकेत खेती के लिहाज से भी अच्छे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में मानसूनी गतिविधियां आने वाले वक्त में जोर पकड़ेंगी और दिल्ली और आसपास के इलाकों में 5 तारीख के बाद मानसून अपने असल रंग में होगा। दिल्ली से मनीष लड्डा के साथ मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
5: कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है.
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है.
6: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
4: गुड न्यूज टुडे.
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे. मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को.
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी. लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा.
10: पवित्र अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह. पहले दिन करीब 20,000 भक्तों ने दर्शन किए. प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान और गुजरात को देंगे विकास की सौगात. 1 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन. जोधपुर में टर्मिनल भवन का करेंगे उद्घाटन. गुजरात में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी. बिजली तार और लाइन के जमीन देने पर मिलेगा बड़ा मुआवजा. एक साथ होगा पूरा पेमेंट. मॉनसून बारिश के बीच मुंबई में 6 जुलाई तक के लिए आईएमडी का रेड अलर्ट. ठाणे कल्याण और डोंबिवली में स्कूल बंद. लोगों को सावधानी बरतने की सलाह. भारत और इंग्लैंड के बीच आज खेला जाएगा 5 टी20 मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला. मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान में शाम 7 बजे से भिड़ंत. पहला फिल्म अल्फा ने पहले दिन किया 9 करोड़ रुपए का कलेक्शन. ये फिल्म 3 जुलाई को हुई थी रिलीज. फीमेल में आलिया भट्ट निभा रही हैं मुख्य भूमिका. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं इस साल बाबा अरफानी के दिव्य दर्शन की। आज अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन है। शिव भक्तों का जत्था पूरे जोश और उत्साह के साथ पवित्र गुफा की ओर रवाना हो रहा है। इस दौरान गुड न्यूज टुडे की टीम भी मौजूद वहां है और करीब 14 किलोमीटर चढ़ाई के बाद जब श्रद्धालु बाबा अरफानी के दर्शन कर रहे हैं तो उनकी सारी थकान मिटकर जो है वो चेहरे पर खुशी और उल्लास है। हम आपको बाबा अरफानी के दर्शन कराएंगे, बेस कैंप से गुफा तक हर पड़ाव पर पूरी यात्रा दिखाएंगे। जो यात्री दर्शन के बाद बेस कैंप लौटे हैं उनका अनुभव सुनिए। यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं से जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक जरूरी अपील की है, यात्रा से जुड़ी ये जानकारी भी हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं पवित्र गुफा की भव्य तस्वीर और बाबा अरफानी की पहली आरती। अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन है। श्रीनगर में कल अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें पहले जत्थे में लगभग 4,809 श्रद्धालु शामिल रहे। यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। भगवान शिव की पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए प्रशासनिक एवं लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं के बीच यात्रा रवाना हुई। इस साल 57 दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी, जिससे अधिक संख्या में श्रद्धालुओं को इस पवित्र यात्रा में शामिल होने का अवसर मिलेगा।
11: अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। हजारों की तादाद में नुनवन पहलगाम बेस कैंप से भी और बालटल बेस कैंप से भी अमरनाथ यात्रियों का दूसरा जत्था अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ रहा है। सुबह 4 बजे से यहां पर जो है अमरनाथ यात्रियों को अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ने की इजाजत मिल चुकी है। करीब 4 घंटे हो चुके हैं, अभी भी हजारों की तादाद में श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं। अब की बार नियम कानून जो है अमरनाथ यात्रा के वो काफी सख्त कर दिए गए हैं, ताकि सुरक्षा जो है यात्रियों की बनी रहे, उनको कोई क्षति न पहुंचे। कई सारे श्रद्धालु सुबह से यहां पर लाइन में बैठे हुए हैं और ताकि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक हो के फिर वो अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ेंगे। तो कैसे रही अभी तक आपको, कैसे यात्रा? जो
12: सर यात्रा अभी शुरुआत करी है और यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, बाकी मैनेजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से चलता जा रहा है और हर सुविधा अभी तक तो बहुत अच्छी चल रही है।
13: मौसम भी बहुत बढ़िया है, अरेंजमेंट भी बढ़िया है, तो थोड़ा रश होने के कारण थोड़ा हो जाता है, लेकिन अरेंजमेंट बढ़िया है।
11: नहीं, क्योंकि हर उत्साह जो है वो श्रद्धालुओं में। तारिक आपको दिखाएगा कि ये लाइन आप देख लीजिए, थोड़ा सा कितनी लंबी लाइन और कितनी भीड़ है श्रद्धालुओं की। सुबह 4 बजे से ये लाइन लगी हुई है और ये साफ दिखा रहा है कि किस तरह से उत्साह बना हुआ है श्रद्धालुओं में। देश भर के अलग अलग हिस्सों से ये श्रद्धालु साल भर इंतजार करते हैं कि उन्हें कब ये मौका मिलेगा कि वो अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ेंगे और बाबा अरफानी के दर्शन करेंगे। गुड न्यूज टुडे के लिए बालटाल से तारिक लोन के साथ अशरफ।
10: शिव भक्तों में अमरनाथ यात्रा को लेकर जोश बेहद हाई है। आज दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। खराब मौसम के बावजूद भी यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। कल यात्रा के शुरू होने पर बारिश के बाद भी भक्तों ने पूरे उत्साह के साथ बाबा के दर्शन किए। इस यात्रा में बेस कैंप से पवित्र गुफा तक गुड न्यूज की टीम भी शामिल रही। चलिए आपको दिखाते हैं यात्रा की खास रिपोर्ट।

0: इस दिन इस लम्हे का शिद्दत से इंतजार था। होठों पर महादेव का नाम, दिल में बाबा बर्फानी के दर्शन की आस, जयकारा लगाते चल पड़े शिव भक्त अपने आराध्य को देखने पूछने। ये तस्वीरें बालटाल बेस कैंप की है, जहां से एक सुबह हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं का जत्था निकला, ज्यादातर पैदल, कुछ घोड़े खच्चर या पालकी पर सवार। भक्ति की इस धारा के संग चली गुड न्यूज की टीम अगली मंजिल यानी डोमेल के लिए। बेस कैंप से डोमेल की दूरी करीब 5 किलोमीटर की है और इसी पड़ाव पर RFID कार्ड की जांच के बाद ही श्रद्धालुओं को आगे जाने दिया जाता है। लेकिन बारिश ने रास्ता रोक दिया। पहले दिन पहले जत्थे को इस पड़ाव पर इंतजार करना पड़ा
1: कि मौसम जो है रात से ही खराब है, रुक रुक करके बारिश हो रही है। इस वजह से अभी बालटाल रूट पर जो अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालु हैं उनको बीच बीच में रोका जा रहा है और उनको आगे की तरफ रवाना करने से ये कहा जा रहा है कि मौसम खराबी होने की वजह से अभी लोग अपने कैंप में रहें। और इसके साथ ही इस तरीके का अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि जब मौसम खुलेगा तो उसके बाद लोगों को भेजा जाएगा। ये डोमेल जो चेकिंग पॉइंट है, फर्स्ट चेक पॉइंट जो है, जहां से ऊपर बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए आगे की तरफ भेजा जाता है, तो इस जगह पर काफी भीड़ इस वक्त मौजूद है और यही वजह है कि लोग जो हैं यहां पर अभी रुके हुए हैं। इस रूट से जो लोग ऊपर की तरफ जाते हैं उसमें BRO की तरफ से रास्ता भी ठीक बनाया गया है और ये भी जानकारी मिल रही है कि पूरे रास्ते में बिजली की व्यवस्था भी की गई है कि रात अगर हो जाती किसी को वापस आने के दौरान तो उस दौरान जो है उनको बिजली की दिक्कत ना हो, मतलब लाइट रास्ते में हो, इस तरीके की तैयारी की गई है।
0: कुछ देर बाद बारिश थमी तो धीरे धीरे श्रद्धालुओं का कारवा आगे निकलने लगा। बाबा बर्फानी का जयकारा लगाते अमरनाथ के रास्ते पर अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाते।
1: पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए बालटाल होते हुए डोमेल और उसके बाद रेल पथरी से बीच में ये रास्ता पड़ता है बरारी मार्ग के लिए और ऊपर का ये रास्ता काफी कठिन है। लेकिन बाबा बर्फानी के जो भक्त हैं वो आप देखिए कि जयकारा लगाते हुए यहाँ से सारे लोग पहुंच रहे हैं ऊपर की तरफ और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग खच्चर के जरिए यहाँ से जा रहे हैं, तो इसके साथ साथ पैदल भी यात्रा लगातार यहाँ से की जा रही है। बाबा बर्फानी के जो लोग हैं ये यहाँ पर नारा लगाते हुए लोग यहाँ से पहुँच रहे हैं और पूरा आप देखिए ये रास्ता काफ़ी कठिन है, बारिश भी बीच बीच में हो रही है। इसी बीच जो बहुत सारे लोग हैं वो पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा करने के लिए जो पहला जत्था है वो गुफा की तरफ पहुंच रहा है।
0: बालटाल रूट पर सबसे अहम पड़ाव है बरारी टॉप, यहाँ तक पवित्र यात्रा की लगभग आधी दूरी तय हो जाती है और यहाँ से गुफा का रास्ता भी थोड़ा आसान हो जाता है।
1: अमरनाथ यात्रा करते हुए मैं इस वक्त बरारी टॉप पहुँच गया हूँ और यहाँ आप देखिए कि लगातार लोग जयकारे लगा रहे हैं बाबा बर्फानी के, हर हर महादेव का यहाँ पर जयकारा लगाते हुए तमाम लोग जो हैं अलग अलग राज्यों से यहाँ पर जा रहे हैं और ऊपर की तरफ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बाबा बर्फानी की गुफा यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर अब बचता है और आप तस्वीरों में देख रहे हैं सामने जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है इसी रास्ते से होते हुए सब लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कोई खच्चर के जरिए तो कोई पैदल ही ये पूरी यात्रा अपनी कंप्लीट कर रहा है और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए सभी लोग यहां से ऊपर की तरफ पड़े रहे हैं। आधी दूरी तय हो चुकी है।
0: इस साल भी BRO ने इस रूट पर रास्ते को चौड़ा किया है, बेहतर किया है, लेकिन पहाड़ों के उबड़ खाबड़ इन रास्तों पर चढ़ते जाना आसान तो नहीं, लेकिन जब पैर थकने लगते हैं कहीं से एक जयकारा गूंजता है और सभी यात्री जोश से भर जाते हैं। महादेव के धाम तक जाने की इस पवित्र यात्रा में इसी जोश के साथ गुड न्यूज टुडे की टीम भी शामिल है।
1: ऊंचाई है लेकिन इस कठिन ऊंचाई के बीच जो तमाम श्रद्धालु हैं बाबा बर्फानी के वो ऐसे ही ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हम वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सारे लोग जो हैं वो आगे की तरफ जा रहे हैं, और तस्वीरें यही बयां करती हैं कि लोगों के अंदर जिस तरीके की बाबा बर्फानी को लेकर के श्रद्धा है उससे ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि इनको कोई रोक नहीं सकता। जोशो खरोश के साथ ये तमाम जो लोग हैं अलग अलग राज्यों से आकर के आज पहले जत्थे के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज़ टुडे पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए लोग आगे पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, हर एक जगह जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान लगाए गए हैं, ऊंचाई वाले इलाकों में भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैनात हैं, तो दूसरी तरफ अलग अलग जगहों पर माउंटेन रेस्क्यू टीम को भी तैनात किया गया है जिससे कि अगर किसी भी व्यक्ति को दिक्कत होती है तो वो यहाँ से उसको रेस्क्यू किया जा सके। और इस तरीके के पहाड़ी इलाकों में ऐसे ही लगातार यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज और इसके साथ साथ बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले लोग यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं।
0: बाबा बर्फानी के धाम को जाने वाला बालटाल रूट करीब 14 किलोमीटर का है, लेकिन ये छोटा रास्ता ऊंची चढ़ाई वाला है, इसलिए इसमें चुनौतियां तो हैं, खासकर जब बारिश हो रही हो और भूस्खलन का खतरा हो तब सुरक्षा में तैनात एजेंसियों को ज्यादा मुस्तैद रहना पड़ता है। सीआरपीएफ और पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम हर मोड़ पर सतर्क सावधान नजर आई।
1: पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए अलग अलग जगहों पर अगर किसी भी तरीके की लैंडस्लाइड की जैसी सिचुएशन पैदा होती है तो उसके लिए माउंटेन रेस्क्यू टीम लगाई गई है। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और तमाम लोग जो हैं आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से इनके पास वो चीज़ें मौजूद है जिससे कि अगर कोई लैंडस्लाइड जैसी सिचुएशन होती है या कोई नीचे की तरफ जाता है तो उसको किस तरीके से बचाना है। लगातार यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं क्योंकि पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा का जो पहला जत्था है वो आज सुबह रवाना हुआ, और रास्ते में किसी भी तरीके की किसी को दिक्कत ना हो उसके लिए ये रेस्क्यू टीम यहाँ पर मौजूद रहती है। तस्वीरों में आप देखिए कि ये एसएसबी की माउंटेन रेस्क्यू टीम है, इसके साथ ही ऊपर की तरफ एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें भी लगी हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था इस बार की गई है, और अमरनाथ की यात्रा करने के लिए लोग जब ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उनको तकलीफ न हो किसी भी तरीके की उसकी व्यवस्था की गई है।
0: बरारी टॉप से आगे अगला पड़ाव है संगम, जहां से पवित्र गुफा करीब 3 किलोमीटर रह जाती है। जोश से भरा जत्था यूं ही आगे बढ़ता गया। और फिर वो मोड़ आया जहां से पहली बार गुफा के दर्शन होते हैं, हिमालय के विराट शिखर जिनके बीच में है बाबा बर्फानी का भव्य धाम। हजारों सालों से आस्था की इसी पगडंडी से होकर शिव भक्त अपने आराध्य तक पहुंच रहे हैं। इस साल ये दर्शन का पहला अवसर है। अमरनाथ गुफा की ये पहली तस्वीर है जिसे आप सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर देख रहे हैं।
2: भोले भोले
1: गुड न्यूज टुडे ने जैसा कि आपसे वादा किया था कि 14,000 फीट की हाइट पर मौजूद बाबा बर्फानी की गुफा के सबसे पहले दर्शन आपको कराएगा। जी हाँ, मैं यहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ और आपको तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं कि बाबा बर्फानी जो है किस तरीके से यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले पहुंचने वाला न्यूज चैनल गुड न्यूज टुडे यहाँ से वो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से बाबा बर्फानी के जो भक्त हैं वो लाइनों में लग करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और इस वक्त सारे भक्त जो हैं वो बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भी एक तरीके का बड़े स्तर पर इंतजाम जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा किया गया है, क्योंकि यह 14,000 फीट की हाइट पर मौजूद है और यहाँ पर सांस लेने में भी लोगों को दिक्कत होती है, बोलने में भी तकलीफ होती है। ऐसे में यहाँ किसी को कोई परेशानी न हो उसके लिए यहाँ पर बेस कैंप हॉस्पिटल भी तैयार किए गए हैं। आप देखिए कि इस बेस कैंप हॉस्पिटल में तमाम तस्वीरें आपको दिखाई पड़ेंगी, जो लोगों को अगर कोई दिक्कत होती है तो उनको इलाज कराने के लिए भी यहाँ पर लाया जाता है। इसके साथ ही पालकी से लोग जो हैं यहाँ तक पहुँचते हैं, खच्चर के जरिए घोड़े के जरिए पहुँचते हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जयकारे लगाते हुए लोग पूरे रास्ते में यहाँ पर आते हैं और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ जो छटा बिखरी हुई है बाबा बर्फानी की।
0: दर्शन का ये सिलसिला अगले करीब 2 महीने तक यूं ही चलने वाला है। हिमालय की ऊंचाई नापते हुए श्रद्धालुओं के जत्थे इसी तरह आते रहेंगे और ये वादी जयकारों से गूंजती रहेगी। यात्रा के दूसरे मार्ग यानी पहलगाम रूट पर भी इसी तरह का उत्साह है। शुक्रवार की सुबह सूरज निकलने से पहले नुनवान बेस कैंप से भी शिव भक्तों का काफिला निकला।
2: बस बाबा के दर्शन और यात्रा की कठिन यात्राएं हैं, उसका अनुभव देखना चाहते हैं कि इतनी कठिन यात्राएं और हमारे लाइफ में क्या क्या, जीवन में इतनी परेशानियां आती हैं, उसको हम किस तरह सहन कर सकते हैं।
3: मौसम अच्छा है हमारे, अभी मेरी 11वीं बार है, मैं डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर सिरडीपुर सिंगना से आ रहा है। 11वीं बार है मेरी, 11वीं बार। भोलेनाथ को हमने सब हमारी मनोकामना पूरी कर रहा हो, इसलिए हम हर साल आने की कोशिश करे भोलेनाथ के बाबा जी की तरफ।
4: पहली बार आई हूँ यहाँ पर, तो जो अरेंजमेंट यहाँ पे किया हुआ है सिक्योरिटी ने वो बहुत अच्छे से किया हुआ है। हमारा पहला दिन है, पहला जस्ता जा रहा है हमारा यहाँ पे, पर जिस अरेंजमेंट के हिसाब से है वो बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई चिंता नहीं है कि बारिश है, ये तो आशीर्वाद है कि पहला मौसम हमारा बारिश से शुरू हुआ है और ये तो बहुत अच्छा है। मौसम जितना अच्छा होगा उतना अच्छे हमारे दर्शन भी होंगे।
5: जोश तो पूरा भरा हुआ है साहब, क्योंकि हमें भोलेनाथ के दर्शन के चाहत है और हम आए हैं वेस्ट बंगाल बहरमपुर मुर्शिदाबाद से।
6: थकावट
1: यात्रियों का पहला जत्था नुनवन के बेस कैंप से पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो चुका है। अगरचे वर्षा के कारण यात्रा कुछ देर के लिए स्थगित की गई थी, लेकिन मौसम में बेहतरी के साथ ही यात्रियों को आगे जाने की अनुमति दी गई है। यात्रियों में काफी जोश और जज्बा है और वो प्रशासन की तरफ से किए गए इंतजाम को लेकर भी काफी मुतमइन नजर आ रहे हैं।
0: पहलगाम रूट करीब 48 किलोमीटर लंबा है, लेकिन चढ़ाई के लिहाज से आसान है। जो यात्री नुनवान बेस कैंप से निकले हैं, उनको पवित्र गुफा पहुंचने में 3 से 5 दिन का वक्त लगेगा। चंदनवारी तक की यात्रा गाड़ी से तय होती है, लेकिन उसके आगे शेषनाग तक पैदल या खच्चर से जाना होता है। शेषनाग से पंचतरणी और उसके आगे संगम का पड़ाव है, जहां बालटाल वाला रूट भी मिल जाता है। हजारों लोग पवित्र गुफा पर है और इससे ज्यादा लोग रास्ते में, और लाखों की तादाद में शिव भक्त इस यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार हैं। बाबा ने बुलाया है, भक्त भला कैसे ना आए। अमरनाथ पवित्र गुफा से जितेंद्र बहादुर सिंह और नुनवान बेस कैंप से आरिफ बलूच के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: तो यात्रा पूरे जोश और जज्बे के साथ आगे बढ़ रही है। हजारों की भीड़ है, लेकिन ये भीड़ कई बार प्रशासन के लिए परेशानी का सबब भी बन जाती है। इसलिए प्रशासन की तरफ से एक जरूरी अपील की गई है, जिस पर अमरनाथ जाने वाले यात्रियों को ध्यान देना है। प्रशासन ने कहा है कि यात्रा मार्ग पर प्रतिदिन यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं यात्रा के सुचारू संचालन हेतु इस सीमा का पालन करना अनिवार्य है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यात्रा प्रारंभ होने से काफी पहले ही देश भर में बैंक शाखाओं और ऑनलाइन माध्यम से एडवांस रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अधिकांश श्रद्धालुओं ने सुविधा का लाभ उठाकर अपना रजिस्ट्रेशन पहले ही करा लिया, इसलिए तत्काल रजिस्ट्रेशन का स्लॉट अत्यंत सीमित है। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वो पहले अपना एडवांस रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात ही जम्मू कश्मीर आए। प्रतिदिन बड़ी संख्या में बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंचने वाले हजारों श्रद्धालुओं को तत्काल सुविधा के अंतर्गत एडजस्ट करना संभव नहीं है, अतः ऐसे श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वो अपनी बारी की प्रतीक्षा करें तथा प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले तिथि के अनुसार ही यात्रा करें। देखा गया है कि अनेक रजिस्टर्ड श्रद्धालु अपने रजिस्ट्रेशन डेट से पहले ही जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। किसी भी श्रद्धालु को उसके रजिस्ट्रेशन डेट से पहले यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए लोग अपने रजिस्टर्ड डेट के अनुसार ही यात्रा के लिए आए। प्रशासन ने कहा है कि सभी श्रद्धालुओं को यात्रा करने का अवसर मिलेगा, परंतु ये निर्धारित प्रक्रिया एवं उपलब्ध क्षमता के अनुसार ही संभव होगा। आप सभी से अनुरोध है कि व्यवस्था बनाए रखें तथा सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रशासन का सहयोग करें। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
8: फ्यूचर वॉर से निपटने वाला सुपर प्लान तैयार। चीन पाक से निपटेंगे मल्टी डोमेन मिशन के महारथी। बैटल ब्रिगेड के सुपर अवतार देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
9: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
11: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का

0: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
3: गुड न्यूज टुडे.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
7: क्या आप कारोबार में धन नहीं कमा पा रहे हैं? क्या नौकरी में धन की मुश्किल बनी रहती है? क्या जरूरत के समय आपके पास धन नहीं रहता है? क्या है धन प्राप्ति के सरल प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. TIT भोपाल, जेंजीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स. Sage University, transforming your passion into profession.
9: पवित्र अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन बाबा अरफानी के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह. पहले दिन करीब 20,000 भक्तों ने दर्शन किए.

प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान और गुजरात को देंगे विकास की सौगात। 1 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। जोधपुर में टर्मिनल भवन का करेंगे उद्घाटन। गुजरात में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिजली टावर और लाइनों के जमीन देने पर मिलेगा बड़ा हुआ मुआवजा। एक साथ होगा पूरा पेमेंट। मानसूनी बारिश के बीच मुंबई में 6 जुलाई तक के लिए आईएमडी का रेड अलर्ट। ठाणे, कल्याण और डोंबिवली में स्कूल बंद। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। मध्य प्रदेश के बालाघाट पर देवदूत बनी राहत बचाव की टीम। देव नदी में फंसे 16 ग्रामीणों का किया गया रेस्क्यू। जलस्तर बढ़ने के चलते टापू पर फंसे थे लोग। भारत और इंग्लैंड के बीच आज खेला जाएगा 5 T20 मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान में शाम 7 बजे से भिड़ंत। थ्रिलर फिल्म अल्फा ने पहले दिन किया 9 करोड़ रुपए का कलेक्शन। ये फिल्म 3 जुलाई को हुई थी रिलीज। फीमेल में आलिया भट्ट निभा रही है मुख्य भूमिका।

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे छोटे छोटे सरल उपायों के बारे में जिनको करने से धन की प्राप्ति आसान होगी, सरल होगी। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 4 जुलाई 2026 दिन शनिवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, दोपहर 12:39 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, दोपहर 1:43 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः काल 9 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 4 जुलाई 2026 दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है मिथुन राशि में, शुक्र बुध और बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा और राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। अगर आप व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, तो व्यापार कारोबार में धन कैसे प्राप्त करें? शुक्रवार के दिन अपने कारोबार के स्थान पर गुलाबी फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र स्थापित करें। इसके बाद माता लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करें और उस इत्र को अपने पास सुरक्षित रख लें। रोज सुबह जब काम पर जाते हैं या काम की शुरुआत करते हैं तो रुई में जरा सा इत्र लगाकर स्वयं को लगाएं। अगर रोज काम की शुरुआत के पहले माता लक्ष्मी को प्रणाम करके आप गुलाब का वही इत्र लगाएंगे तो कारोबार की स्थिति बेहतर हो जाएगी। अगर आप नौकरी करते हैं और नौकरी में आपको धन पाना है तो क्या करेंगे? शुक्रवार की शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे एक दोने में या पत्ते में एक मिठाई का टुकड़ा और मिट्टी के कुल्हड़ में पानी रख दें। इसके बाद पीपल के वृक्ष की 3 या 9 परिक्रमा करें और फिर नौकरी में उन्नति की प्रार्थना करिएगा।
ऐसा लगातार आप हर शुक्रवार की शाम को करिए। नौकरी के मामले में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। धन प्राप्ति के उपायों पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करने तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन का लाभ होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन हानि हो सकती है, शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अगर आपका पैसा कहीं रुक गया है या कहीं फंस गया है, कोई ले करके आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? शुक्रवार के दिन गरीबों में मिठाई और कपड़े बांटिए। कपड़े ना भी बांट पाए तो सफेद मिठाई बांटिए। जल में जरा सा दूध मिला के नाम मात्र का शुक्रवार की रात में चंद्रमा को अर्घ दीजिए और इसके बाद पैसा मिलने की प्रार्थना करिए। जो आपका धन फंसा हुआ है या जो धन आपका रुका हुआ है, उसको प्राप्त करने में सुविधा होगी। अगर विरासत में पैसा मिलना हो, माता पिता का पैसा हो, इनहेरिटेंस का पैसा हो, और विरासत का पैसा मिलने में समस्या आ रही हो, आप विरासत का धन पाना चाहते हो, तो क्या करेंगे? शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल की माला अर्पित करिए या ढेर सारी गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करिए। इसके बाद घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी की आरती करिए और आरती के बाद प्रार्थना करिए कि आपको आपकी विरासत का धन मिले। ऐसा लगातार हर शुक्रवार की शाम को करिएगा। आपको आपकी विरासत का जो जेन्युइन हिस्सा है वो अवश्य प्राप्त होगा। धन प्राप्ति के उपायों पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे
एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, आर्थिक लाभ होगा, सेहत की स्थिति बेहतर होती जाएगी, नए काम की शुरुआत हो सकती है, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, संतान को लेकर समस्या हो सकती है, धन की हानि से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, धन से संबंधित एक बड़ी मुश्किल है कर्ज। अगर आपने कर्ज लिया हो और आप तमाम प्रयास कर रहे हो लेकिन कर्ज चुकाने में मुश्किलें आ रही हो तो क्या करेंगे? मंगलवार को शिव जी के मंदिर जाएं और साथ में गुड़ मिला हुआ जल और लाल फूल लेकर जाइएगा। शिव जी के मंदिर जाकर गुड़ मिला हुआ जल और लाल फूल शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। अगर संभव हो तो मंदिर में बैठकर या घर पर आकर शिव जी का एक मंत्र पढ़िएगा, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करिएगा और ये उपाय लंबे समय तक मंगलवार के मंगलवार करते रहिए। कर्ज चुकाना आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि सामान्यतः पैसा तो रहता है लेकिन जरूरत के समय पैसा नहीं आता। धन की बिल्कुल कमी ना हो, धन बिल्कुल कम ना हो, जरूरत के वक्त मौजूद रहे, इसके लिए क्या उपाय करेंगे? एक सफेद स्फटिक की माला ले लें, उसको कुछ देर गुलाब जल में भिगा लें और भिगाने के बाद उसी माला से 108 बार ओम श्रीं श्रियै नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। ये काम शुक्रवार की शाम को करिएगा। अब आपकी इस स्फटिक की माला अभिमंत्रित हो गई है, इस माला को धारण कर लें, रात में सोते समय निकाल दीजिएगा
और सुबह स्नान करने के बाद दोबारा इस माला को पहन लीजिएगा, आपको धन का अभाव बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप ये उपाय करें और साथ में जो मंत्र बताया है ओम श्रीं श्रियै नमः, अगर इस मंत्र का हर शुक्रवार की शाम को जप करें तो जरूरत के वक्त पैसे की व्यवस्था जरूर हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, तनाव समाप्त हो जाएगा, रुका हुआ काम बन जाएगा, लाभकारी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, सेहत की स्थिति बेहतर होगी, धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, अनावश्यक तनाव ना पालें, वाद विवाद से बचाव करें, खान पान में सावधानी रखें, शनि मंत्र का एक बार जाप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो आज हमने आपको धन प्राप्ति के सरल उपायों के बारे में बताया। अब आपको बताते हैं भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर धन की बचत करने में समस्या आ रही है तो पीले कपड़े में हल्दी की दो गांठें बांध करके अपने धन स्थान पर रखिएगा और इसको 6 महीने या साल भर पर बदल दीजिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो धन की बचत आसानी से हो सकेगी। अब जान लेते हैं 4 जुलाई 2026 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: जुलाई के महीने में किस ग्रह का प्रभाव रहेगा? जुलाई के महीने में कौन सी राशि वाले का करियर बदलेगा? जुलाई के महीने में किस राशि के व्यक्ति को दुर्घटनाओं से सावधान रहना होगा? क्या है जुलाई के महीने का राशियों का हाल, जानिए मेरे साथ गुड लक स्पेशल में।
1: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
2: Good news today is really अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए

भक्त, एक वो भक्त है जो भगवान से चाहता, एक वो भक्त है जो भगवान को चाहता। अब आपको निर्णय लेना, आप भगवान को चाहते या भगवान से चाहते। कुछ लोग भगवान से चाहते, भगवान से चाहने का मतलब 2 रुपया का दूध चढ़ाएंगे, 1 करोड़ का पर्चा पकड़ा देंगे। हे शंकर जी, हमारी नौकरी चल लग जाए, फैक्ट्री बन जाए, लड़का की शादी हो जाए, घरवाली का दिमाग ठीक हो जाए, पति परमेश्वर सुधर जाए, बच्चों पर कृपा हो जाए। ऐसे भी भगत हैं जो भगवान से चाहते, लेकिन एक दूसरे भक्त हैं जो भगवान को प्रिय हैं। वो कौन है? बोले वो भगवान से नहीं चाहते, भगवान को ही चाहते। वो है श्री प्रहलाद जी। नासा भक्त्या सा वही बड़े का, प्रहलाद जी कहते हे भगवान ने कहा, हे प्रहलाद मांगो क्या चाहते हो? प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु अब हमको क्या चाहिए, लेने देने का काम तो व्यापारियों में होता है, भक्तों में लेने देने का काम नहीं होता। नासा भक्त्या सा वही बड़ी का, ये सब बिजनेसमैन हैं जो लेने देने की बातें भक्ति में करें। हम तो आपके चाकर हैं, हम आपसे नहीं चाहते, हम आपको ही चाहते हैं। ये भगवान को अति प्रिय हैं भगत। ऐसे भक्त भगवान को प्रिय हैं, ऐसे भक्तों पर ही दीनानाथ दयालु भगवान कृपा करते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। देखो गीता में 3 योग हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। रामायण में भी 3 योग हैं, ज्ञान योग राम जी, भक्ति योग सीता जी, कर्म योग लक्ष्मण जी। लेकिन हम जिनकी कथा सुना रहे उनमें ये 3 योग हैं। हृदय में राम जी भी हैं, सीता भी हैं, लक्ष्मण जी हैं, तो हनुमान जी में 3 योग व्याप्त हैं। 3 योग व्याप्त होने के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर

भक्ति योग, कर्म योग, और तीनों योग हनुमान जी के अंदर व्याप्त हैं। क्यों? जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप धर। जिनके हृदय में आहा श्री सीता जी और श्री राम जी विराजमान और लक्ष्मण जी भी विराजमान, तो राम जी ज्ञान योग बैठ गए, सीता जी भक्ति योग बैठ गए, और भक्ति योग अंदर बैठने के कारण ही राम

लेकिन लक्ष्मण जी कर्म योग है, तो कर्म योगी श्री जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज जब हृदय में व्याप्त भये तो हनुमान जी महाराज के अंदर एक गुण और आ गया। बोले

भक्ति भी हनुमान जी के अंदर है, भगवान भी हनुमान जी के अंदर है। अच्छा, या तो भगवान अंदर होते हैं या भक्ति अंदर होती, क्योंकि भक्ति के बस में भगवान नाचते। अच्छा, किसी के अंदर भक्त और भगवान दोनों बैठ जाए, भक्ति और भगवान, तो कर्मयोग बैठना बहुत कठिन है। पर हनुमान जी के अंदर कर्मयोग भी बैठा, जीवाचार लक्ष्मण जी। तो हनुमान जी से पूछा जाए आपको क्या पसंद है, तो गोस्वामी जी ने उत्तर

बोले भैया हमको तो केवल राम जी का काम करना पसंद है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। एक और नई बात है, हनुमान जी को राम काज करना पसंद है, हनुमान जी को राम जी का चरित्र पसंद है, हनुमान जी में तीनों योग व्याप्त हैं, लेकिन आहाहा हनुमान जी का बल कितना है। बोले अनंत बल है, पर हनुमान जी का प्रभाव कितना है।

हनुमान जी का चारों युगों में। तो तीन चार, पहले तीन से उठाया था, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग, चार पे चारों युग पर ताप तुम्हारा। अब चार के बाद कौन सा अंक आता है, बोलो बोलो। अच्छा शुरू से लो, एक, एको ब्रह्म अस्ति द्वितीयो न अस्ति, ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा नहीं है। दो, दो क्या है, जीवात्मा और परमात्मा। पर हनुमान जी जीवात्मा है क्या, नहीं नहीं हनुमान जी जीवात्मा नहीं है, हनुमान जी है महात्मा। तो महात्मा और परमात्मा, हनुमान जी महात्मा कैसे, साधु संत के तुम रखवारे, तो महात्मा हो गए। तो हनुमान जी जीवात्मा नहीं है, महात्मा है। तो महात्मा और परमात्मा दो, अगला अंक कौन सा है, तीन, ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग, ये तीनों अंदर हैं। और जय कपीस त्यूं लोक उजागर, तीनों लोकों में एकमात्र हनुमान जी हैं जिन्होंने तीनों लोकों में झंडा गाड़ा। पूछो कैसे, पूछो पूछो पूछो, पाताल लोक में अहिरावण को मार करके झंडा गाड़ा, आकाश लोक में गगन में मारी एक उछाल खाए रविभाल, गगन में उछाल मार करके बाल्यकाल में ही सूर्य भगवान को ब्रेकफास्ट में खा गए। तो आकाश लोक में भी झंडा गाड़ दिया। अब बचा कौन सा, बोले पृथ्वी, बोले पृथ्वी में तो हजारों काम किए, लंका को जलाकर राम नाम का डंका लंका में भी बजा डाला। तो हो गया जय कपीस तेहूं तेहूं लोक हो गया तीनों लोकों में। अच्छा इतना ही नहीं, तिहु लोक का एक और अर्थ है तीन अंक का। बोले क्या, बोले देखो हनुमान जी के जीवन में तीन लोग हैं, राम जी सीता माता और लक्ष्मण जी। राम जी को जीता तो राम जी कौन है, बोले राम जी हैं भगवान। भगवान का, भगवान की जगह कहाँ है, बोले आकाश की तरफ, तो वहां जीत लिया। सीता माता कहाँ से प्रकट हुई, पृथ्वी से, तो पृथ्वी को जीत लिया। और लक्ष्मण जी कहाँ हैं, लक्ष्मण जी हैं शेषा अवतार, तो पाताल लोक में जाकर वहां पर भी डंका बजा दिया। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा जय कपीस तेहूं। लेकिन अब अगला तीन के बाद कौन सा अंक है, चार, तो चारों युग परताप, चारों युगों में परताप हो गया, सतयुग में हो गया, त्रेता में हो गया, द्वापर में हो गया। सतयुग में बन गए भगवान शंकर के गण, रुद्रगण। ग्यारहवें रुद्रावतार हनुमान जी महाराज हैं, तो ग्यारहवें रुद्र के रूप में शंकर जी के पास रहे, तो सतयुग में भी इनकी पूजा हुई। अच्छा फिर ये त्रेता में हनुमान जी कैसे बने, बोले भैया रामर किसका भगत था, किसका भगत था, बोलो बोलो बोलो बोलो, भोले बाबा का, किसका भगत था, भोले बाबा का। एक दिन भोले बाबा अपनी पत्नी यानी उमा पार्वती जी से, माता पार्वती जी से बोले, देवी जी हम तो बंदर बनने जाएंगे, क्यों, राम जी अवतार लेने वाले हैं तो हम भी सेवा करने जाएंगे, और वो नर बनेंगे तो हम बानर बनेंगे, वो बनेंगे नर हम बनेंगे बानर, तभी करेंगे सेवा। पार्वती जी माता बोली कि आप बानर बनने जाओ तो आप बनो बंदर, हम बनेंगे बदरिया, आप भी चलो हम भी चलें। भगवान भोले बाबा बोले दोनों नहीं जा सकते, एक ही जा सकते हैं। तो पार्वती जी बोली कोई टेंशन की बात नहीं, आप बनो बंदर हम बनेंगे पूंछ। शंकर जी बोले क्यों, पार्वती जी बोली लंका जाकर रावण की उखाड़ेंगे मूंछ। राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है,

0: तन करहूं तजी।
1: राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है, इसलिए नाथ हमारी प्रार्थना है सर्पों का समूह राक्षसों के मेंढकों के पूरे झुंड के झुंड को खा जाएगा। हे नाथ, हे कंत, हे स्वामी, हे पतिदेव, उसी प्रकार राम जी के बाण राक्षस रूपी पूरी सेना लंका में रहने वाले जितने निशाचर हैं सबको खा जाएंगे। भला इसी में है, अब भी भला हो सकता यदि तुम जानकी माता को वापस कर दो, राम जी से कोई विरोध ना करो, उनके चरणों में जाकर के शरण हो जाओ, सरेंडर हो जाओ। लेकिन अभिमानी व्यक्ति मानता नहीं। पर एक बात याद रखना तुम लोग, मेरे प्रियजनों, मेरे आत्मियों, याद रखना, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। अहमता में मत रहना, रावण की अहमता रावण को खा गई।
0: श्रीवन सुनी सठ ताकर बानी,
1: रावण
0: बेहसा जगत विदिते अभिमान।
1: रावण ने जैसे इन बातों को सुना तो हंस पड़ा। क्या कह रही हो तुम, हमें जानती हो, हमारे स्वभाव को जानती हो, बेफिजूली में भय कर रही हो। भय करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें पता है बानरों, बानर भालू ये सब हमारा आहार है, बानर भालू आहार हमारा। तुम्हें पता है राक्षसों का भोजन क्या, मंदोदरी क्या है? मंदोदरी बोली क्या है? बोले राक्षसों का भोजन है बानर और भालू। मंदोदरी भी बुद्धिमान तो थी ही, रावण की पत्नी थी, ज्ञानी के पास। काजल की कोठरी में कोई कितनों भी जतन करे, काजल को दाग तो लागे ही लागे, काजल का दाग तो लग ही जाता। ज्ञानी के पास रहने वाला व्यक्ति ज्ञानी स्वाभाविक रूप से हो जाता। संगीत के मध्य में रहने वाला व्यक्ति संगीत की पकड़ को, ताल को, सुर को पकड़ने ही लगता, समझ ही जाता। बीड़ी पीने वाले के बगल में बैठने वाला व्यक्ति बीड़ी भले ही ना पिए पर धुआं का मजा तो लेने ही लगता है। वही मंदोदरी का हाल, मंदोदरी ज्ञानी तो नहीं थी पर रावण के साथ रहते रहते ज्ञानी बन गई। तो रावण कहता आपको पता है निशाचरों का भोजन क्या, मंदोदरी कहती क्या? मंदोदरी रावण कहता निशाचरों का भोजन बानर भालू आहार हमारा, बानर भालू ये सब हमारा भोजन है। मंदोदरी बोली एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले बानर भालू आहार है? बोले हाँ। बोले कितना? रावण बोला बंदर तो ब्रेकफास्ट में खा जाएंगे। मंदोदरी बोली जब एक बंदर आया था तब तुम लोगों का पेट खराब था क्या? यदि बानर भालू भोजन है तो अभी अभी जो बंदर आया था जिसने पूरी लंका जला दी उस समय पेट खराब था क्या? क्यों नहीं खाया? रावण बोला वो तो बात अलग हो गई, पर अब नहीं बचेगा, अब नहीं बचेगा, वो बात अलग हो गई। मंदोदरी बोली ऐसे ही बात अलग होती रहेगी, एक एक करके हम सब अलग हो जाए। अंत में गुजराती में बोले तो पति गए, काम हो जाएगा। राम नाम सत्य क्या हो जाएगा? राम नाम अच्छा अब अभिमानी आदमी मानते ही नहीं, जब तक निपटना जाए तब तक मानते ही नहीं। जो ठीक समझाने की बात करे उनसे भी वो चिढ़ने लगता है, उससे भी बुरा लगने लगता। अहंकारी व्यक्ति बहुत विचित्र होता, इसलिए हम एक प्रार्थना करना चाहेंगे समझदार व्यक्ति को, यदि किसी को समझाना हो तो एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, जब दो बार ना समझे तो खुद को समझाओ। भाई अब ये समझने वाला नहीं है, अपन ही समझ लो। बोलो सीतारा, समझ जाना ये तो कुछ दिनों बाद में पति गए हो, इसका तो काम होना है। अपन काय को बेफिजूली में माथा पच्ची करें। अच्छा घमंडी आदमी को समझा, तुमने देखा नहीं? अच्छा एक बात बताओ, गाय को भूख लगी हो, घास की जगह पिज्जा रखा जाए तो क्या खाएगी? बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। अच्छा गाय को भूख लगी हो, भोजन ना मिला हो और शेर का भोजन मांस रखा जाए तो क्या खाएगी? और शेर को मांस रखा जाए, शेर को पिज्जा रखा जाए, घास रखी जाए तो क्या शेर खाएगा? जोर से बोलो। गाय शेर का भोजन नहीं खाती, शेर गाय का भोजन नहीं खाता, लेकिन आदमी? दोनों का खा लेता, शेर का भी खा लेता। ज्यादा समझाओ तो तुम्हारा भेजा खा जाए। ज्यादा समझाओगे वो तुम्हारा दिमाग खा जाएगा, भेजा खा जाएगा। इसलिए आदमी को समझाना बड़ा कठिन है, खासकर अभिमानी को और ज्यादा समझाना कठिन। दो बार समझाओ, जब ना माना तो तीसरी बार खुद को ही समझाओ। श्रवण सुनी सटता कर वाणी, बैसा जगत विदित अभिमानी। सवय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल मऊ भय मन अति काचा। उल्टा स्त्रियों के गुणों अवगुणों को देखने लगा, स्त्रियों तो डरपोंक होती हैं ऐसा रावण कह रहा। स्त्रियां डरपोंक होती हैं ऐसा रावण कह रहा। रावण क्यों कह रहा? अभिमानी है। अब उसे कौन समझाए? स्त्रियां यदि डरपोंक होती तो बेटा तुम पैदा ही ना होते। स्त्रियां डरपोंक नहीं होती, माताएं डरपोंक नहीं होती। माता है शक्ति और शक्ति कभी डरपोंक नहीं होती। जननी जने तो दाता जन या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गबावे नूर। माताएं भी परम सूरवीर होती हैं। नारी निंदा मत करो, नारी रतन खदान। नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। बोले राम कृपा बल पाए कपिंदा, भये पच्छ जुत मनहु गिरिंदा। आगे हरस राम तब कीन पयाना। अब राम जी चले, कहां चले? लंका की तरफ। बोलो बोलो बोलो कहां चले, जोर से बोलो। और जैसे ही चले तो एक और कारण हुआ। बोले क्या? सगुन भये सुंदर शुभ नाना। सगुन हुए, ये सगुन क्या है? चलते हुए ब्राह्मण दिखाई पड़े, किसी काम को जा रहे हो, ब्राह्मण के हाथ में वेद पुस्तक दिखाई पड़े, समझना मंगल दर्शन है। गाय बछड़े को दूध पिलाती दिखाई पड़े, समझना मंगल दर्शन है। नाग सांप रास्ता कट जाए सर्प दर्शन हो, समझना मंगल दर्शन है। कोई छोटी कन्या खिलखिलाती हुई सामने से निकल जाए, समझ जाना शुभ शगुन है, मंगल दर्शन है। दूध का दर्शन हो जाए, समझ जाना शुभ शगुन मंगल दर्शन है। देवालय पर पुष्प चढ़ा हुआ दिखाई पड़ जाए, मंदिर पर, समझना शुभ सगुन मंगल दर्शन है। यही सगुन है। अब सगुन क्या है? अब सगुन कोई विधवा दिखाई पड़े, कोई टोक दे, रोता हुआ दिखाई पड़े, छींक आ जाए, ये सब अपशगुन है। पर सगुन अपशगुन में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान के काम में ना सगुन होता है ना अपशगुन होता। जो भगवान का काम करता है उसका सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। क्या होता है? मंगल ही। अच्छा, मंगल ही मंगल क्यों होता? राम जी खुद जा रहे हैं रावण को मारने, तो अब इनके यहां मंगल कैसे हो सकता? क्योंकि स्वयं ही ए हा

राम जी स्वयं मंगल है। दूसरा बात सुनो, राम जी तो मंगल है ही है, राम जी के दूत कौन है? राम जी के दूत कौन है? अरे बोलते जाओ हनुमान जी, बोलो हाँ या ना। तो राम जी हैं मंगल भवन अमंगलहारी, और हनुमान जी क्या हैं?

0: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
1: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
2: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
5: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
1: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
1: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
8: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
9: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
9: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा। अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
11: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ। अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
12: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
13: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
14: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
15: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
16: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
17: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए, अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
8: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
18: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
3: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है।

0: के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
1: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से भाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
2: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
3: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
4: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
5: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
2: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
6: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: जुलाई के महीने में किस ग्रह का प्रभाव रहेगा, जुलाई के महीने में कौन सी राशि वाले का करियर बदलेगा, जुलाई के महीने में किस राशि के व्यक्ति को दुर्घटनाओं से सावधान रहना होगा, क्या है जुलाई के महीने का राशियों का हाल, जानिए मेरे साथ गुड लक स्पेशल में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.
4: पवित्र अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन बाबा अरफानी के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह, पहले दिन करीब 20,000 भक्तों ने दर्शन किए। प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान और गुजरात को देंगे विकास की सौगात, 1 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, जोधपुर में टर्मिनल भवन का करेंगे उद्घाटन। गुजरात में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली टावर और लाइनों के जमीन देने पर मिलेगा बड़ा हुआ मुआवजा, एक साथ होगा पूरा पेमेंट। मानसूनी बारिश के बीच मुंबई में 6 जुलाई तक के लिए IMD का रेड अलर्ट, ठाणे कल्याण और डोंबिवली में स्कूल बंद, लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। मध्य प्रदेश के बालाघाट पर देवदूत बनी राहत बचाव की टीम, देव नदी में फंसे 16 ग्रामीणों का किया गया रेस्क्यू, जलस्तर बढ़ने के चलते टापू पर फंसे थे लोग। भारत और इंग्लैंड के बीच आज खेला जाएगा 5 T20 मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला, मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान में शाम 7 बजे से भिड़ंत। थ्रिलर फिल्म अल्फा ने पहले दिन किया 9 करोड़ रुपए का कलेक्शन, ये फिल्म 3 जुलाई को हुई थी रिलीज, फीमेल में आलिया भट्ट निभा रही है मुख्य भूमिका।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
4: नमस्कार, स्वागत है आपका फैक्ट चेक में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पन। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं, कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नई साजिशी रंग में भरकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच भी मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही, यहां पर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है, कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है तो कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर भी कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच के धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। जी हां, फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि 2 बड़ी बिल्डिंग्स को आपस में टकराकर नीचे गिरने का ये वीडियो हाल ही में आए वेनेजुएला के भूकंप के दौरान का है। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, ये आगे आपको बताएंगे। तो वहीं हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है, जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि इथेनॉल वाले पेट्रोल में न केवल पानी है बल्कि इथेनॉल वाले पेट्रोल के कारण मोटरसाइकिल्स की टंकी पर मधुमक्खियों का झुंड आ गया। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, ये भी आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दो बड़ी बिल्डिंग्स को आपस में टकराकर नीचे गिरते हुए देखा जा रहा है। कई लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि हाल ही में वेनेजुएला में आए भूकंप के दौरान का ये वीडियो है। वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
5: दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में 24 जून को एक मिनट के अंतराल पर 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंपों ने भारी तबाही मचा दी। इसमें सैकड़ों इमारतें मलबे में बदल गई। भूकंप से करीब 2000 लोगों की मौत हो गई। अब इसी भूकंप से जोड़कर सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दो बड़ी बिल्डिंगों को आपस में टकरा कर नीचे गिरते हुए देखा जा रहा है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया कि वेनेजुएला बहुमंजिला इमारत नहीं जैसे तेज रफ्तार ट्रेन का डब्बा हो। इतने ताकतवर भूकंप की मार कितनी देर झेलती, दोनों औंधे मुंह गिरी, लोग क्या पता। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
4: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दो बड़ी बिल्डिंग्स को आपस में टकरा कर नीचे
5: के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
4: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दो बड़ी बिल्डिंग्स को आपस में टकरा कर नीचे गिरते हुए देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि हाल ही में वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप के दौरान का ये वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी हो रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल की और पड़ताल के दौरान ये बात आई कि 24 जून 2026 को 7.2 और 7.5 की तीव्रता के भूकंपों से पूरा वेनेजुएला हिल गया। राजधानी काराकस और उसके आसपास की सैकड़ों इमारतें ढहकर कंक्रीट और स्टील के मलबे में बदल गई। कई लोग ढही हुई इमारतों के नीचे दब गए। लेकिन ये वीडियो उसी भूकंप के दौरान का है, ये जानना भी जरूरी हो गया था। तो दावे की सच्चाई जानने के लिए टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। उदाहरण के लिए दोनों इमारतों के टकराने पर इनकी खिड़कियों का आकार बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। इसके अलावा दोनों इमारतें एक ब्लॉक की तरह गिर जाती हैं, ना कि बिखर रही हैं, ना टूट रही हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। और सबसे पहला सवाल ये कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी क्यों नहीं मिली, अब तक कहीं कोई जानकारी नहीं है। और दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं की जा रही। तो आइए देखते हैं इसके पीछे का सच क्या है।

0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया, लेकिन इस दौरान हमें कहीं भी वायरल वीडियो से जुड़ी खबरें नहीं मिली। इसके बाद हमने वायरल वीडियो का सच और झूठ जानने के लिए इसके हर फ्रेम को गौर से देखा। इसमें साफ देखा जा सकता है कि दोनों इमारतों के हिलने और टकराने के बावजूद उनमें मौजूद खिड़कियों की दशा में कोई बदलाव नहीं होता है। इनकी आकृतियों में भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमें इस वीडियो के AI निर्मित होने का शक हुआ। इसलिए हमने सबसे पहले AI डिटेक्टर टूल detectvideo.ai की मदद ली। वायरल वीडियो को स्कैन करने पर इस टूल के नतीजों ने इसके AI के बने होने की 73% संभावना की पुष्टि की। जांच को आगे बढ़ाते हुए हमने इस वीडियो को एक और AI डिटेक्टर टूल हाई मॉडरेशन पर चेक किया। हाई मॉडरेशन के एनालिसिस में वीडियो के 97.8% AI से बने होने की संभावना की पुष्टि हुई। इसी तरह साइट इंजन के एनालिसिस ने भी वायरल वीडियो के 99% AI से बने होने की पुष्टि की। इस तरह हमारी जांच में वायरल पोस्ट फर्जी साबित हुई। वेनेजुएला में भूकंप के नाम पर इमारतों के टकरा कर गिरने का वायरल वीडियो फेक है, इसे AI की मदद से बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस और तस्वीरें वायरल हो रहे हैं। इनमें दावा ये किया जा रहा है कि इथेनॉल वाले पेट्रोल के कारण मोटरसाइकिल की टंकियों पर मधुमक्खियों का झुंड आ गया, जबकि एक वीडियो में इथेनॉल वाले पेट्रोल में पानी का दावा भी किया गया। क्या है दावे की पूरी सच्चाई, देखिए पड़ताल करती है रिपोर्ट।

0: देश में E85 पेट्रोल को 5 जून 2026 को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया। ये मौजूदा E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता है। पेट्रोल पंप पर किसी तरह के भ्रम की स्थिति से बचने के लिए E85 डिस्पेंसर को अलग ब्रांडिंग और स्पेशल लेबल के साथ पेश किया गया है। कम कीमत के कारण ये फ्यूल आम यूजर्स के लिए काफी आकर्षक विकल्प बन सकता है। हालांकि इसका इस्तेमाल केवल E85 कंप्लायंस व्हीकल में ही किया जा सकेगा, जिसकी संख्या अभी बहुत कम है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और तस्वीर वायरल हो रहे हैं। इनमें दावा किया जा रहा है कि इथेनॉल वाले पेट्रोल के कारण मोटरसाइकिल की फ्यूल टंकी पर मधुमक्खियों का झुंड आ गया, जबकि एक वीडियो में इथेनॉल वाले पेट्रोल में पानी का दावा किया गया है। एक एक्स यूजर ने 11 सेकंड का ये वीडियो शेयर करते हुए दावा किया, अपने बाइक में इथेनॉल मिक्स पेट्रोल डालने का ये भी एक फायदा मिल रहा है, मधुमक्खियां साथ में फ्री मिल रही है। E20 पेट्रोल में ये हाल है तो E85 पेट्रोल का क्या होगा? वहीं एक फेसबुक यूजर ने इथेनॉल वाले पेट्रोल में पानी का दावा करते हुए ये वीडियो शेयर किया। बिना सच झूठ जाने यूजर्स इन दोनों वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये दोनों वीडियोस खूब तेजी से वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो के जरिए कहा जा रहा है कि इथेनॉल वाले पेट्रोल के कारण मोटरसाइकिल की टंकी पर मधुमक्खियों का झुंड आ गया, जबकि एक वीडियो में इथेनॉल वाले पेट्रोल में पानी का दावा भी किया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किए जा रहे हैं। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना बेहद जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच की और दावे की सच्चाई के लिए हमने दोनों वीडियो को बारी बारी से इसकी पड़ताल की। पहले वीडियो को देखने से ऐसा लग रहा है कि इसे इस तरह शूट किया गया है कि देखने वाले को लगे कि मधुमक्खियां पेट्रोल में मौजूद इथेनॉल की वजह से यहां आ रही हैं। वहीं दूसरे वीडियो को देखने से ऐसा लग रहा है कि यह वीडियो हाल फिलहाल का नहीं बल्कि पुराना हो सकता है, क्योंकि सर्च के दौरान हमें इसके बारे में हालिया कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी कहीं नहीं मिली। तो सर्च के दौरान हमें यह पुख्ता जानकारी मिली कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले इथेनॉल को फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन के बेहद जटिल प्रोसेस से गुजारा जाता है। वो गुजरता है उस प्रोसेस से और इस प्रक्रिया के अंत में गन्ने या अनाज की सारी मिठास और शुगर पूरी तरह खत्म हो जाती है। ईंधन ग्रेड के इथेनॉल में विशेष प्रकार के डेन्यूट्रिएंट्स मिलाए जाते हैं। ये चींटियों और कीड़ों को आकर्षित करने के बजाय उन्हें दूर भगाने का काम करते हैं। इसके अलावा हाल फिलहाल में हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर वाकई में ऐसा कुछ हुआ होता तो इसके बारे में कहीं ना कहीं खबरें जरूर होती, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं मिला। लिहाजा ऐसे में हमने दावे को सवालों की कसौटी पर कसा और सबसे पहला सवाल ये निकल कर आया कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कहीं कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं है, कोई अपडेट क्यों नहीं है, और दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों के बीच भ्रम, लोगों के बीच अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। तो आइए देखते हैं इसके पीछे का सच और झूठ क्या है।
0: फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले मोटरसाइकिल की टंकी पर मधुमक्खियों के झुंड वाले वीडियो की तहकीकात की। यूजर के दावे के मुताबिक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल डलवाते समय मधुमक्खियों का झुंड आ गया था। सर्च के दौरान हमें एक भी ऐसी विश्वसनीय खबर नहीं मिली जिसमें ये बताया गया हो कि ऐसी कोई घटना हुई है। इसमें हमें वीडियो के AI निर्मित होने का शक हुआ। हमने वीडियो को ध्यान से देखा, इसमें हमें वीडियो के नीचे की ओर एक वाटरमार्क दिखाई दिया। ये ऐसे वीडियो में होता है जिसे गूगल जेमिनी AI टूल की मदद से तैयार किया जाता है। इसके बाद हमने वायरल वीडियो को सिंथाइडी डायरेक्टर की मदद से चेक किया। सिंथाइडी की एनालिसिस इस वायरल वीडियो के गूगल AI की मदद से बनाए जाने की पुष्टि करती है। जांच को आगे बढ़ाते हुए हमने उस तस्वीर की जांच की जिसमें एक बाइक की पेट्रोल की टंकी के ऊपर मधुमक्खियों के झुंड को दिखाया गया है। इस वायरल तस्वीर के साथ दावा किया गया है कि इथेनॉल वाला पेट्रोल भरवाने के बाद टंकी के ऊपर का ये नजारा है। हाइव मॉडरेशन टूल पर इस तस्वीर को सर्च करने पर हमें पता चला कि ये AI की मदद से बनाई गई है। हाइव मॉडरेशन की एनालिसिस इस तस्वीर के ग्रोक से बनाए जाने की अधिकतम संभावना की पुष्टि करती है। हमने इस तस्वीर को साइट इंजन डायरेक्टर टूल की मदद से भी चेक किया। इसकी एनालिसिस इन तस्वीरों के एआई क्रिएट होने की अधिकतम संभावना की पुष्टि करती है। अब बारी थी उस वायरल दावे की जांच करने की, जिसमें दावा किया गया है कि इथेनॉल पेट्रोल में पानी मिलाकर बेचा जा रहा है। सर्च के दौरान हमें कुछ पुरानी खबरों से पता चला कि वायरल वीडियो पुराना है। 13 सितंबर 2025 को छपी एक खबर में बताया गया था कि तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक शख्स को कार में पेट्रोल भरवाने के बाद अपनी कार मैकेनिक को दिखानी पड़ी, क्योंकि तेल भरवाने के बाद अगले ही दिन उसकी गाड़ी खराब हो गई। मैकेनिक के अनुसार पेट्रोल में पानी मिला हुआ था। सर्च के दौरान हमें भारत पेट्रोलियम की एक पोस्ट मिली 17 जून 2026 की। इस पोस्ट में उस दावे को फर्जी बताया गया, जिसमें दावा किया गया था कि E20 पेट्रोल के कारण टंकी के ढक्कन पर चींटियां लग रही है। सर्च के दौरान हमें PIB का 5 जून 2026 का एक प्रेस नोट भी मिला। इसके मुताबिक केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इथेनॉल मिश्रित ईंधन के बारे में गलतफहमियों को दूर करते हुए कहा था कि E85 फ्यूल विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए, न कि सामान्य पेट्रोल वाहनों के लिए। जब से E20 देश भर में मानक ईंधन बन गया है, तब से इथेनॉल समीरण की वजह से इंजन फेल होने या वाहन के खराब होने का एक भी मामला सामने नहीं आया है। E20 अनुकूल वाहन बेहतर एक्सेलरेशन और राइड क्वालिटी देते हैं, खासकर शहर में ड्राइविंग के दौरान। भारत में E20 फ्यूल के इस्तेमाल का वाहन बीमा की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता है। साफ है, इथेनॉल पेट्रोल से जुड़ी वायरल पोस्ट फर्जी साबित हुई। इथेनॉल पेट्रोल के कारण टंकी पर मधुमक्खियों के झुंड वाला वीडियो और तस्वीर AI से बनाए हुए साबित हुए, जबकि E20 पेट्रोल में पानी का दावा करने वाला वीडियो पुराना साबित हुआ। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: बिहार की कानून व्यवस्था से जोड़कर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लोगों को एक बिल्डिंग के अंदर बंदूकें लेकर घुसते हुए देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इसे शेयर कर ये दावा कर रहे हैं कि बिहार के एक स्कूल में दिन दहाड़े हथियार लेकर कुछ लोग स्कूल में घुस गए, जिससे छात्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए।
0: कुछ चेहरे ढके हुए, कुछ चेहरे बेपर्दा, हाथों में हथियार, एक स्कूल के बिल्डिंग में तेजी से ये लोग दाखिल होते हुए। डर से लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इस दौरान फायरिंग की आवाज भी सुनाई दे रही है। तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ दाखिल हुए हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक टेक्स्ट भी मौजूद है, जिसमें लिखा हुआ है पटना हाई स्कूल। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि ये कैसा बिहार है, जहां दिन दहाड़े स्कूल में हथियार लेकर घुस जाते हैं, बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल है। वीडियो करीब 22 सेकंड का है, जिसमें कई नकाबपोश लोग हाथ में हथियार लेकर इधर उधर दौड़ते नजर आ रहे हैं। इस दौरान फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। वीडियो में एक टेक्स्ट भी मौजूद है, जिसमें लिखा हुआ है पटना हाई स्कूल। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि बिहार के एक स्कूल में दिन दहाड़े हथियार लेकर कुछ लोग स्कूल में घुस गए, जिससे छात्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी हो रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। तो फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच की और ये बात निकल कर आई कि बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर उन्हें घेरने की कोशिश करता रहा है। हाल ही में भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर भी विपक्ष बिहार सरकार को घेर रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे इस वीडियो का सच और झूठ लोगों के सामने आना बेहद जरूरी है। दावे की सच्चाई जानने के लिए टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली, जिसको देखने के बाद ये इशारा मिला कि ये रियल घटना नहीं है, ये दृश्य किसी शूटिंग का हिस्सा हो सकता है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने पर हमें मूवी शूटिंग में उपयोग में लाए जाने वाले काले फ्लैग और स्किमर भी दिखाई दिए। इसके अलावा सर्च के दौरान ये भी जानकारी सामने आई कि पटना हाई स्कूल पटना के गर्दनीबाग इलाके में है, लेकिन हाल फिलहाल में वहां ऐसी कोई घटना नहीं घटी जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर वाकई में ऐसा कुछ हुआ होता तो ये अपने आप में बड़ी खबर होती है और हर मीडिया आउटलेट पर यह खबर सुर्खियों में होती, लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। ऐसे में लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा और सबसे पहला सवाल ये निकल कर आया कि अगर दावा सही है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई, और दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए किसी गलत वीडियो को सही जगह का बताकर लोगों के बीच अफवाह फैलाने की साजिश तो नहीं की जा रही।

0: का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो में कुछ की फ्रेम्स को निकाल कर उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से 25 जून 2026 को अपलोड किया गया मिला। दोनों ही वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में इसे मूवी और वेबसाइट की शूटिंग का बताया गया था। इस मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान हमें एक यूट्यूब अकाउंट से 20 जून को अपलोड किया गया वीडियो मिला। इस वीडियो में दिख रहे दृश्य वायरल वीडियो से मेल खा रहे थे। साथ ही वायरल वीडियो में दिख रहे कुछ लोगों को इस वीडियो में उन्हीं कपड़ों में देखा जा सकता है। YouTube वीडियो में हमें साफ साफ कैमरा भी दिखाई दिया और साथ ही निर्देश मिलने के बाद कलाकारों के अभिनय रोकने के दृश्य भी मिले, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि एक शूटिंग का ही दृश्य है। इस वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में भी इसे पटना के गर्दनी बाग स्थित पटना हाई स्कूल में फिल्म शूटिंग का ही बताया गया था। सर्च के दौरान ये भी जानकारी सामने आई कि एक एक्स यूजर ने भी 26 जून 2026 को इस वीडियो को समान दावे के साथ शेयर करते हुए बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया था। इसके जवाब में बिहार पुलिस ने जानकारी दी थी कि ये वायरल वीडियो फिल्म की शूटिंग का एक हिस्सा है, इसके लिए अनुमति प्रदान की गई थी। साथ ही ऐसी भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि बिहार के पटना हाई स्कूल में गोलीबारी के दावे से वायरल हुआ ये वीडियो असल में एक फिल्म की शूटिंग का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: एक वीडियो खूब तेजी के साथ सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गौ रक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के विरोध में हुए वकीलों के प्रदर्शन का वीडियो है। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।

0: किसी बड़ी सी इमारत के परिसर में इकट्ठा सैकड़ों वकीलों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर यह कहते हुए शेयर किया जा रहा है कि इन लोगों ने मध्य प्रदेश में गौ रक्षकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। दरअसल नर्मदापुर मध्य प्रदेश के सेशन कोर्ट ने 12 जून को 14 गौ रक्षकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और इसके बाद से ही देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसी संदर्भ में वकीलों वाला वीडियो भी वायरल हो रहा है। एक थ्रेड्स यूजर ने इसे शेयर करते हुए लिखा है, धन्यवाद आपको देश की न्यायपालिका, 5000 वकीलों ने 14 गौ सेवकों को दिया समर्थन, जल्द जमानत होगी। कुछ लोग तो इस वीडियो को शेयर करते हुए यहां तक दावा कर रहे हैं कि गौ रक्षकों के समर्थन में 5000 वकीलों ने प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ तेजी से वायरल हो रहा है।
1: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गौ रक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के विरोध में हुए वकीलों के प्रदर्शन का वीडियो है। वीडियो में किसी बड़ी सी इमारत के परिसर में सैकड़ों वकीलों को इकट्ठा देखा जा रहा है। साथ ही इस दौरान कुछ वकीलों को वीडियो रिकॉर्ड करते हुए भी देखा गया। सोशल मीडिया के अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी हो रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। तो फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की तहकीकात की और दावे की सच्चाई जानने के लिए टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में नजर आ रही बिल्डिंग पर गया। जब हमने इसे गौर से देखा और फिर इस इमारत के बारे में सर्च किया तो ये जानकारी सामने आई कि ये बिल्डिंग लखनऊ हाईकोर्ट की है। इसके बाद टीम ने ये जानने की कोशिश की क्या लखनऊ में वकीलों ने गौर रक्षकों को उम्र कैद सुनाए जाने के लिए कोई प्रदर्शन किया था, लेकिन कहीं भी ऐसी कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। क्योंकि अगर वाकई में कुछ हुआ होता तो कहीं ना कहीं इसके बारे में खबरें जरूर होती, लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा और सबसे पहला सवाल यह निकल कर आया कि लखनऊ हाईकोर्ट में सैकड़ों वकील क्यों जमा हुए हैं, और दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों के बीच भ्रम फैलाने की साजिश तो नहीं की जा रही। तो आइए देखते हैं हमारी टीम ने क्या सच खंगाल कर निकाला है।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। वायरल वीडियो को गौ रक्षकों से जुड़ा प्रदर्शन बताने वाले एक पोस्ट में हमें एक इंस्टाग्राम अकाउंट के हैंडल का वॉटरमार्क दिखा। इस जानकारी की मदद से सर्च करने पर हमें पता चला कि इस हैंडल से वायरल वीडियो 25 मई को शेयर किया गया था। इस पोस्ट में वीडियो की लोकेशन लखनऊ हाईकोर्ट बताई गई थी। सर्च के दौरान ये भी जानकारी सामने आई कि वीडियो लखनऊ हाईकोर्ट गोमती नगर का है और बार काउंसिल ऑफ यूपी के चुनाव से संबंधित है। ये वीडियो मार्च 2026 में बनाया गया। वीडियो में कुछ लोग नंबरों वाली तख्तियां पकड़े नजर आ रहे हैं। ये वो नंबर्स हैं जो प्रत्याशियों को अलॉट किए जाते हैं। लखनऊ हाईकोर्ट में हाल फिलहाल में गौ रक्षकों के मामले को लेकर वकीलों का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। साफ है कि लखनऊ का एक पुराना वीडियो अब मध्य प्रदेश के गौ रक्षकों को मिली सजा के विरोध में हो रहे प्रदर्शन का बताकर शेयर किया जा रहा है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर मुहर्रम के जुलूस का एक वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो में देखा यह जा सकता है कि एक ताजिया बिजली के तार से टकरा जाता है और फिर वहां अफरा तफरी मच जाती है। इस वीडियो को मध्य प्रदेश के रतलाम में हुए हालिया हादसे का बताकर लगातार शेयर किया जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
0: मध्य प्रदेश के रतलाम के हतनारा गांव में 25 जून की रात को मुहर्रम जुलूस के दौरान एक ताजिया बिजली के हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग झुलस गए। रतलाम हादसे में स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के लाइनमैन पर अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि जुलूस के दौरान हाई टेंशन लाइन बंद नहीं की गई, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई करते हुए लाइनमैन को निलंबित कर दिया गया। अब सोशल मीडिया पर इसी रतलाम हादसे का बताकर एक वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग किसी जुलूस में या हुसैन हुसैन के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं।
2: कुछ पलों के बाद एक ताजिया बिजली की तार से टकराता है, जिसके बाद लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा है, मध्य प्रदेश का रतलाम, चार तो डायरेक्ट हूरों की बाहों में चले गए, करीब दो दर्जन को बेटिंग मिला है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि वीडियो मध्य प्रदेश के रतलाम में 25 जून को हुए हादसे का है, जिसमें मुहर्रम जुलूस के दौरान एक ताजिया हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। वीडियो में एक ताजिया बिजली के तार से टकरा जाता है, जिसके बाद लोग इधर उधर भागने लगते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर हो रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो टीम ने वायरल दावे की जांच की। दावे की सच्चाई जानने के लिए टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में काफी बड़ा सा ताजिया देखने को मिल रहा है, मतलब वायरल वीडियो मुहर्रम जुलूस का ही है। इसके बाद हमें वीडियो में नजर आ रहे एक ट्रैक्टर के नंबर प्लेट पर हमारा ध्यान गया। जब हमने उसे जूम करके ध्यानपूर्वक देखा तो इस पर यूपी का नंबर प्लेट था। ऐसे में हमें दावे की असलियत पर शक हुआ। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। और सबसे पहला सवाल जो निकल कर आया वो ये कि ताजिया के बिजली के तार से टकराने के बाद हुए हादसे का ये वीडियो कब का है और कहाँ का है। और दूसरा सवाल ये कि कहीं हादसे के पुराने वीडियो को नया एंगल देकर लोगों के बीच कंफ्यूजन, लोगों के बीच भ्रम, लोगों के बीच अफवाह या गलतफहमी फैलाने की साजिश तो नहीं की जा रही। तो आइए देखते हैं इसके पीछे की आखिर कहानी क्या है।
2: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जब ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर होने लगा, तो फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें ये वायरल वीडियो एक यूट्यूब चैनल पर मिला। इस वीडियो को 29 जुलाई 2023 को शेयर किया गया था। यहाँ मौजूद जानकारी के मुताबिक वीडियो उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुए एक हादसे का है। हाई टेंशन लाइन से एक ताजिया के टकराने की वजह से धमाका हो गया था। इससे पहले वहां फैले करंट की वजह से दो और लोगों की मौत हो गई थी और 54 लोग घायल हुए थे। सर्च के दौरान हमें ये वीडियो उत्तर प्रदेश के एक और YouTube चैनल पर मिला। यहां इसे 29 जुलाई 2023 को पोस्ट किया गया था। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये वीडियो अभी का नहीं है। डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये वीडियो उत्तर प्रदेश के अमरोहा का है। सर्च के दौरान हमें इस घटना से जुड़ी कई न्यूज रिपोर्ट्स मिली। 29 जुलाई 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के अमरोहा में एक मुहर्रम जुलूस निकाले जाने के दौरान एक ताजिया हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। इससे धमाके के साथ ताजिए में आग लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरोहा हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। झुलसने वालों में ज्यादातर बच्चे थे। इस तरह ये साबित हो जाता है कि रतलाम मुहर्रम हादसे का बताकर वायरल हो रहा ये वीडियो न तो अभी का है और न ही मध्य प्रदेश का है। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो जाता है कि ताजिया के बिजली की तार से टकराने के वीडियो को भ्रामक दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। असल में ये वीडियो साल 2023 में यूपी के अमरोहा में हुए एक हादसे का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज स्टूडियो।
1: फैक्ट चेक में वक्त हो गया इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या कुछ चल रहा है। बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
4: Jack FM now playing what we want commercial free on TuneIn Premium.
5: What you got for me, Jack?
4: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़।
1: वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का, जब हम पेश करने वाले हैं कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
11: एक अतनी का अपने बच्चे के साथ प्यार भरा और लाड़ वाला पल सामने आया है। इस पल का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो के शुरू में हाथी के बच्चे को बड़े हाथियों के बीच खड़े देखा जा सकता है। वो खूब धमाल मचा रहा था, कभी इधर तो कभी उधर, शैतानी रुक ही नहीं रही थी। तो माँ ने अपनी सूंड का सही इस्तेमाल कर लिया, सूंड में उसका एक हाथ दबा लिया और चलने लगी। बच्चे को लटके हुए देखकर यही लग रहा है कि वो माँ से कह रहा हो छोड़ दो मुझे और खेलना है, पर माँ मानने को तैयार ही नहीं थी। खेल के मैदान से छोटे बच्चों को माएं ऐसे ही ले जाती हैं। वीडियो देखकर आपको ऐसा ही लगेगा। सोशल मीडिया पर एक हाथी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों का दिल छू लिया है। वीडियो में एक हाथी के बच्चे और उसकी देखभाल करने वाली केयरटेकर के बीच का बेहद अनोखा और दिल छू लेने वाला रिश्ता देखने को मिल रहा है। क्लिप में देखा जा सकता है कि केयरटेकर को पैर में चोट लगी है जिसकी वजह से वो बेचारी मुश्किल से लंगड़ा कर चल पा रही है। हाथी भी अपनी केयरटेकर को बहुत ध्यान से देखता है और फिर बिल्कुल उसी की नकल करते हुए खुद भी लंगड़ा कर चलने लगता है। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, वीडियो में आगे दिखता है कि जब केयरटेकर चलते चलते थककर जमीन पर बैठ जाती है तो उसे देखकर हाथी भी बाकायदा एक्टिंग करते हुए वहीं जमीन पर लेट जाता है। हाथी के इस प्यारे और नटखट अंदाज ने इंटरनेट की जनता का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर बाप बेटी के एक बेहद भावुक वीडियो ने इंटरनेट पर हर किसी को भावुक कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि घर में माँ मौजूद नहीं है, ऐसे में घर की छोटी सी मासूम बेटी ने अपनी माँ की कमी को बिल्कुल महसूस होने ही नहीं दिया। बच्ची ने बहुत ही प्यारे तरीके से एक प्यारी सी साड़ी पहनी हुई है और वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह घर का ख्याल रख रही है। जब उसके पापा काम कर रहे हैं तो ये नन्ही बच्ची एक प्लेट में पानी का ग्लास लेकर पापा के पास पहुंचती है। अपनी इतनी छोटी सी बेटी को साड़ी पहने और हाथ में पानी का ग्लास लिए सामने खड़ा देख पिता भावुक हो जाते हैं। पिता बेटी का ये इमोशनल बॉन्ड देख इंटरनेट यूजर्स भी भावुक हो रहे हैं। कहते हैं कि दोस्ती का रिश्ता दिल से बनता है और दिल की भाषा समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। शायद यही वजह है कि इंसान और जानवर के बीच एक ऐसा गहरा रिश्ता बन जाता है जो बड़े बड़े रिश्तों को भी पीछे छोड़ देता है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई उसे रियल लाइफ डिज्नी प्रिंसेस कह रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक हरे भरे खेत की मेड़ में एक छोटी सी बच्ची खेलती हुई चल रही होती है, लेकिन वो अकेली नहीं होती, उसकी गोद में एक ऊद बिला और उसके पीछे पीछे बड़े ही इत्मीनान से एक साही चल रहे होते हैं।
12: तीनों को देख ऐसा लग रहा है जैसे उनकी दोस्ती काफी गहरी हो। बच्ची डरने के बजाय खुश है और शाही उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय उसके साथ कदम मिलाकर चल रहा है। शाही को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो उस बच्चे से कह रहा हो, जहाँ जहाँ तुम जाओगी मैं भी पीछे पीछे आऊँगा। वीडियो में बच्ची की आवाज़ भी सुनाई दे रही है जिसमें वो सिंगली भाषा में कुछ कह रही है। उसकी बोली में जो मासूमियत है वह इस पूरी घटना को और भी जादुई बना देती है। आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल के बीच जहां बच्चे मोबाइल और वीडियो गेम में ज्यादा समय बिताते नजर आते हैं, वहीं कभी कभी सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं जो हर किसी को अपने बचपन की गलियों में वापस ले जाते हैं। इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दो छोटे बच्चे जिस अंदाज में एक ही साइकिल चलाते नजर आते हैं, उसे देखकर लोग उनकी समझदारी, बैलेंस और दोस्ती की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो बच्चे सड़क पर एक ही साइकिल चला रहे हैं। इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि दोनों बच्चे एक एक पैदल चलाते हुए साइकिल को बड़े आराम से बैलेंस करते हैं। दोनों के बीच इतना अच्छा तालमेल दिखाई देता है कि साइकिल बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ती रहती है। दोनों बच्चे पूरे रास्ते इस सवारी का आनंद लेते नजर आते हैं। उनकी अनोखी जुगलबंदी देखकर लोग हैरान भी हो रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। कहते हैं कि इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके दिल से होती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो भी यही एहसास करवा रहा है। जब एक बुजुर्ग दंपति ने ई रिक्शा चालक से कहा कि उनके पास किराया देने के पैसे नहीं हैं, तो उसने न सिर्फ उन्हें मुफ्त में मंजिल तक पहुंचाने का फैसला किया बल्कि अपने पैसों से फ्रूटी भी पिलाई। इंसानियत की ये छोटी सी मिसाल अब लाखों लोगों की आंखें नम कर रही है और इंटरनेट पर दिल जीत रही है।
13: कहाँ जा रहे हो?
14: सर महल।
13: बैठो, छोड़ देंगे।
14: पैसा नहीं है।
13: पैसा नहीं लेंगे, बैठिए, ठंडा पियेंगे, लाओ।
14: क्या हुआ?
13: मैं कहता हूँ नुकत है, कोई मुश्किल नहीं, पिए
15: मोहन करिए, भाड़ा लेके आया थे 400 लोड।
13: नहीं खुलो यार, दीजिए। ठीक है, जाइए आराम से। हाँ,
15: आप रखो ना, आप मेरा माँ जैसा बेटा समझ के रख लो। ठीक ठीक जा,
13: ठीक है आंटी, जाओ। हाँ, आप आराम आराम से जाओ।
12: कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे चौंकाती है कि आप मुस्कुराने के साथ साथ आंखों में खुशी के आंसुओं का भी अनुभव करते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर यूजर्स के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई है। वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला जिस फ्लाइट में एयर होस्टेस थी उसी में उसका पति यात्रा करने पहुंचता है और अपनी पत्नी को देखकर दंग रह जाता है। ये प्यारा सा सरप्राइज वीडियो अब इंटरनेट पर खूब पसंद किया जा रहा है। इंडोनेशिया से एक बेहद हैरान करने वाला और अनोखा मामला सामने आया है जहां बार बार होने वाली चोरियों से तंग आकर मकान मालिक और स्थानीय लोगों ने चोरों को सबक सिखाने का एक ऐसा तरीका निकाला जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में हो रही है। पुलिस की सुस्ती से परेशान होकर जब लोगों ने खुद कानून हाथ में लिया तो उन्होंने चोरों को केवल पकड़ा ही नहीं बल्कि उन्हें मम्मी की तरह डक टेप से लपेट कर रख दिया। दरअसल ये पूरी घटना इंडोनेशिया के एक रिहायशी इलाके की है जहां एक दुकान में चोरी करने के इरादे से चार चोर दाखिल हुए थे। मकान मालिक ने पड़ोसियों के साथ मिलकर पहले से ही जाल बिछा रखा था। जैसे ही चोरों ने हाथ साफ करने की कोशिश की, रात के अंधेरे में स्थानीय लोगों ने उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया। लेकिन चोरों को पकड़ने के बाद निवासियों ने जो किया उसने हर किसी को चौंका दिया। चोर भाग न सके इसलिए लोगों ने चमकीले नारंगी रंग के डक टेप से उन्हें सिर से लेकर पैर तक पूरी तरह बांध दिया। हालत ये हो गई कि चोरों का हिलना डुलना भी बंद हो गया। इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग मजाकिया लहजे में कह रहे हैं कि मकान मालिक ने चोरों को एक टीवी सीरीज के मशहूर कार्टून कैरेक्टर टिंकी विंकी और उसके दोस्तों के इंसानी रूप में बदल दिया क्योंकि टेप से उनके सिर पर नकली कान तक बना दिए गए थे। पश्चिम बंगाल के एक सिक्योरिटी गार्ड का ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। गार्ड की अद्भुत आवाज और रोटी कमाने की जद्दोजहद ने इंटरनेट को बता दिया कि किसी के कपड़ों से उसे जज नहीं करना चाहिए। बिना किसी म्यूजिक सिस्टम, बिना किसी ऑटो ट्यून या महंगे स्टूडियो के इस गार्ड ने इस गाने को इतनी शानदार अंदाज में गाया है कि सुनने वाले बस रिप्ले बटन दबाते जा रहे हैं।

देसी सूट पहनकर तीन लड़कियों ने ऐसा शानदार डांस किया कि वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। दमदार एक्सप्रेशन, जबरदस्त तालमेल और भरपूर एनर्जी ने लोगों का दिल जीत लिया। यूजर्स इस पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं और वीडियो को बार बार देख रहे हैं।

0: एक कलाकार का वीडियो इन दोनों लोगों के बीच चर्चा में है, जिसमें उसने अपनी मेहनत, धैर्य और शानदार हुनर का ऐसा नमूना पेश किया कि हर कोई उसकी तारीफ करने पर मजबूर हो गया। यही वजह है कि ये वीडियो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों तक पहुंच चुका है। वीडियो की शुरुआत में कलाकार एक पुरानी और बेकार पड़ी ट्यूबलाइट उठाता है। सबसे पहले वो बहुत सावधानी के साथ उसकी किनारे को तोड़ता है ताकि अंदर का कांच सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद वो ट्यूबलाइट के अलग अलग हिस्सों को बड़ी बारीकी से तैयार करता है, फिर आग की मदद से कांच को गर्म करके उसे धीरे धीरे मनचाहा आकार देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कलाकार हर छोटे हिस्से पर बेहद ध्यान देता है। वो पक्षी की चोंच, गर्दन, पंख और पूंछ जैसी बारीकियों को भी इतनी सफाई से बनाता है कि तैयार होने के बाद वो किसी शोपीस से कम नहीं लगता। पूरा वीडियो देखकर साफ पता चलता है कि इस कला के पीछे सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि कई सालों का अनुभव भी छुपा है। जो चीज आमतौर पर टूटने के बाद सीधे कूड़ेदान में फेंक दी जाती है, उसी से इतनी शानदार कलाकृति बनाना लोगों को काफी पसंद आ रहा है।
1: गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए, रिश्तों में लगेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज। दोपहर 1:28 से लेकर 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Hop on board and settle in for an easy going cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh, yeah, you make my dreams come true. Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज़ टुडे।

बाबा अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पूरे उत्साह से भक्तों का जत्था जम्मू में आना जारी है। शिव भक्तों का जत्था भक्ति भाव के साथ पवित्र गुफा की ओर रवाना हो रहा है और इस साल 57 दिनों तक ये पवित्र यात्रा जारी रहने वाली है। चलो बुलावा आया है, बाबा बर्फानी ने बुलाया है। हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से पूरी

0: और हर सुविधा अभी तक तो बहुत अच्छी चल रही है।
1: मौसम भी बहुत बढ़िया है, अरेंजमेंट भी बढ़िया है, तो थोड़ा रश होने के कारण थोड़ा हो जाता है, लेकिन अरेंजमेंट बढ़िया है।
2: नहीं, क्योंकि हर उत्साह जो है वो श्रद्धालुओं में। तारिक आपको दिखाएगा कि ये लाइन आप देख लीजिए, थोड़ा सा कितनी लंबी लाइन और कितना कितनी भीड़ है श्रद्धालुओं की। सुबह 4 बजे से ये लाइन लगी हुई है और ये साफ दिखा रहा है कि किस तरह से उत्साह बना हुआ है श्रद्धालुओं में। देश भर के अलग अलग हिस्सों से ये श्रद्धालु साल भर इंतजार करते हैं कि उन्हें कब ये मौका मिलेगा कि वो अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ेंगे और बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। गुड न्यूज टुडे के लिए बालटाल से तारिक रोन के साथ अशरफ पर।
3: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
10: सास बहू और बेटियां में आज देखिए रिश्तों में लगेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे,
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, जेन ज़ीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, Sage University, transforming your passion into profession.
12: जोधपुर को पीएम मोदी ने दी नई उड़ान की सौगात, नए एयरपोर्ट टर्मिनल का किया लोकार्पण, पूरे भारत में बढ़ेगी कनेक्टिविटी। पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह, पहले दिन करीब 20,000 भक्तों ने किए दर्शन। उदयपुर में अंतिम चरण में पहुंची भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां, चांदी के रथ को दिया जा रहा है भव्य रूप, हर ओर उत्सव और श्रद्धा का माहौल। गुजरात में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली टावर और लाइनों के जमीन देने पर मिलेगा बढ़ा हुआ मुआवजा, एक साथ होगा पूरा पेमेंट।

मध्य प्रदेश के बालाघाट पर देवदूत बनी राहत बचाव की टीम। देव नदी में फंसे 16 ग्रामीणों को किया गया रेस्क्यू। जलस्तर बढ़ने के चलते टापू पर फंसे थे लोग। भारत और इंग्लैंड के बीच आज खेला जाएगा 5 T20 मैचेस की सीरीज का दूसरा मुकाबला। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में शाम 7 बजे होगी भिड़ंत।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जुलाई का महीना आरंभ हो चुका है और जब कोई नई शुरुआत होती है, नया महीना, नया साल आता है तो उम्मीदें भी आती हैं कि आने वाला समय बेहतर होगा। आज हम आपको बताएंगे कि जुलाई का महीना कितना महत्वपूर्ण है और जुलाई के महीने में अलग अलग राशियों को क्या फायदा क्या नुकसान होने वाला है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि जुलाई माह के पर्व और त्योहार कौन से हैं और अपनी राशि के अनुसार आप जुलाई के महीने में कौन से उपाय कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ऐं गुरुवे नमः, ऐं गुरुवे नमः। अगर आपको जीवन में ज्ञान भी चाहिए, आध्यात्म भी चाहिए और ईश्वर की कृपा भी चाहिए तो ऐसी स्थिति में पूरे जुलाई के महीने में इस मंत्र का रोज सुबह जप करिएगा। जुलाई का महीना गुरु को समर्पित महीना है, इसीलिए इस माह में अगर आप इस मंत्र का जप करें तो एक तो आपको ज्ञान मिलेगा, विद्या बुद्धि का वरदान मिलेगा और भगवान की कृपा मिलेगी। जिनको योग्य गुरु पाने की इच्छा हो, जिनको सद्गुरु पाने की इच्छा हो, वो नित्य प्रातः इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे, उन्हें गुरु की कृपा अवश्य मिलेगी। जुलाई का महीना अभी अभी शुरू हो रहा है। जुलाई के महीने में ग्रहों का हाल और कुल मिला के स्थितियां कैसी रहने वाली हैं पहले ये जानते हैं। देखिए, साल 2026 में जुलाई के महीने में आषाढ़ का महीना रहेगा। इस महीने के अंत में सावन के महीने का आरंभ होगा। लगभग पूरे महीने आषाढ़ चलेगा। जुलाई के महीने में मध्य जुलाई से वर्षा ऋतु का आरंभ भी माना जाता है। मध्य जुलाई से लेकर मध्य सितंबर तक लगभग वर्षा ऋतु मानी जाती है और वर्षा ऋतु का संबंध होता है चंद्रमा और शुक्र के साथ। इसलिए इस महीने में चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव प्रबल होगा। जुलाई के महीने में सूर्य देव का राशि परिवर्तन भी होगा। जुलाई में सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क संक्रांति जुलाई के महीने में आएगी। जितनी महत्वपूर्ण मकर संक्रांति है, लगभग उतनी ही महत्वपूर्ण कर्क संक्रांति भी है जो जुलाई के मध्य में आएगी और सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश के अवसर पर दान पुण्य और स्नान आदि के कार्यक्रम किए जाएंगे। जुलाई के महीने में कौन से पर्व आएंगे,
कौन से त्योहार आएंगे ये भी जान लेते हैं। जुलाई के महीने में चूंकि आषाढ़ का महीना रहेगा तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जुलाई के महीने में गुप्त नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा, यानी देवी की गोपनीय और तंत्र साधना इस बार जुलाई के महीने में की जाएगी। जुलाई के महीने में विश्व विख्यात भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकाली जाएगी और जुलाई के लगभग अंतिम समय के आसपास, लगभग 25 जुलाई के आसपास देवशयनी एकादशी आएगी। भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाएंगे, देवता सोएंगे, इसलिए इस तिथि से देवशयनी एकादशी से शुभ और मंगल कार्य बंद हो जाएंगे। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का महान पर्व मनाया जाएगा। वर्ष के सारे पर्व अपने आप में अनूठे हैं, मूल्यवान हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा की बराबरी कोई नहीं है। तो जुलाई के महीने में गुरु पूर्णिमा का महान पर्व मनाएंगे और जुलाई के अंत से सावन का पवित्र महीना आरंभ होगा। यानी इस बार जुलाई के महीने में आपकी पूजा के लिए, आपकी उपासना के लिए, साधना के लिए और भगवान की कृपा पाने के लिए आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे जिनका लाभ आप जुलाई के महीने में उठा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि जो 12 राशियों के लोग हैं उनके लिए जुलाई के महीने की संभावना क्या है और जुलाई के महीने में कौन कौन सी चीजें अलग अलग राशि के लोगों के साथ होने की संभावना बनती है। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए इस महीने के परिणाम मिले जुले हैं। कुछ मामलों में जुलाई का महीना अच्छा होगा और कुछ मामलों में जुलाई का महीना अच्छा नहीं होगा। रोजगार की तमाम समस्याएं आपकी जुलाई के महीने में हल होंगी। करियर से रिलेटेड दिक्कतें आपकी इस महीने में समाप्त होंगी। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। पैसा रुपया आपके पास निरंतर आता रहेगा। पैसे का प्रेशर कम होगा। धन की स्थिति बेहतर होगी। ध्यान रखना होगा मेष राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव इस महीने में रह सकता है। छोटी मोटी चोट चपेट लग सकती है। पेट की दिक्कत और सरदर्द की दिक्कत आपको इस महीने परेशान कर सकती है। विवाह के मामलों में और रिश्तों के मामले में अभी इस महीने में विलंब दिख रहा है। रिश्तों का जुड़ना, विवाह का तय होना,
वैवाहिक जीवन का बेहतर होना ये इस महीने में उतना बेहतर दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेष वालों के करियर और पैसे का मामला बढ़िया है, लेकिन रिश्तों का मामला और स्वास्थ्य का मामला बहुत अच्छा नहीं है। क्या उपाय करेंगे? पूरे महीने में जुलाई में रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा, सादा जल प्लेन वाटर पूरे महीने चढ़ाइए, और रोज शाम को पूरे जुलाई में 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का पूरे महीने रोज शाम को जप करिएगा तो ये महीना आपके लिए अनुकूल और बेहतर बना रहेगा। अब जानते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना अच्छा दिखाई दे रहा है। इस महीने आपके जीवन की तमाम रुकावटें दूर होंगी, तमाम समस्याएं हल होंगी, चाहे वो करियर की हो, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो रिश्तों की हो। इस महीने आपकी रुकावटें दूर होंगी और आपके रुके हुए तमाम काम इस महीने पूरे होंगे, खास तौर से मध्य जुलाई के बाद। अगर आप मेहनत करें, मध्य जुलाई के बाद अगर आप फोकस करें तो आपके रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। रोजगार और करियर की तमाम मुश्किलें भी आपकी दूर होंगी, करियर का प्रेशर कम होगा, और अगर रोजगार के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं तो इस समय आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। विवाह तय करने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए उत्तम समय है। इस समय जुलाई के महीने में अगर आप विवाह के लिए और संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करें तो आपको लाभ होगा। क्या ध्यान देना है वृषभ वालों को जुलाई में? पैसा लगाने में, पैसे के इन्वेस्टमेंट करने में, पैसे का निवेश करने में ध्यान दें। प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं, मार्केट में लगा रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट पर आपको ध्यान देना चाहिए। पूरे महीने रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। रोज शाम को पूरे महीने शनि मंत्र का जप करें और हर शनिवार की शाम को पूरे जुलाई में पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर आप पूरे जुलाई में ऐसा करते हैं तो आपको लाभ होगा। आपके लिए लाभ का समय है। अपने महत्वपूर्ण काम, अपनी जिम्मेदारियां निपटाने की कोशिश करें, बुद्धिमानी से, ध्यान से बड़े निर्णय लें तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
मिथुन राशि, मिथुन वालों के लिए जुलाई का महीना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मिथुन राशि के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के इस महीने में सावधान रहेंगे और स्वास्थ्य में कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड प्रेशर का और अपनी आंखों का ध्यान देंगे। आपके परिवार के बड़े बुजुर्गों की सेहत भी इस महीने बिगड़ सकती है। अपने स्वास्थ्य के अलावा परिवार के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान दें, उनको चोट ना लगे, कोई दिक्कत ना हो। मिथुन वालों के करियर में बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है करियर में कोई बड़ा बदलाव ना भी करें तो आंतरिक रूप से इंटरनली करियर में बदलाव हो सकता है। मिथुन वालों के लिए ये समय इस मामले में अच्छा है कि अगर संपत्ति खरीदना चाहें, संपत्ति बेचना चाहें, संपत्ति का कोई काम करना चाहें तो इस समय मिथुन वालों को फायदा हो सकता है। धन की स्थिति मिथुन वालों की कुल मिला जुलाकर ठीक रहेगी। पैसे को लेकर के दिक्कतें या प्रेशर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मुख्यतः मिथुन वाले अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। धन संपत्ति का मामला अच्छा है। करियर में कोई परिवर्तन अगर होता है तो कुल मिलाकर ठीक रहेगा। आप पूरे महीने में हर रविवार को गुड़ का या मीठी चीजों का दान करिएगा। अगर आप गुड़ या मीठी चीजों का दान पूरे महीने में करेंगे तो इससे आप स्वस्थ रहेंगे, परिवार का माहौल ठीक होगा, चिंताओं की स्थिति समाप्त होगी। कर्क राशि, जुलाई का महीना आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है, क्योंकि जुलाई के महीने में बड़े परिवर्तनों के योग बन रहे हैं। इस महीने में आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे और हो सकता है कि आप इस समय में किसी नए काम का आरंभ करें, व्यापार में कोई नई चीज आप जोड़ें, या अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नई नौकरी की तरफ जाएं, ऐसी संभावना आपके लिए बन सकती है। अगर आपके परिवार में बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान इस महीने में रखिएगा। कर्क राशि वालों के परिवार के बुजुर्गों के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं, उसका ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। और अगर आपकी राशि कर्क है, आप वाहन चलाते हैं, तो वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा ताकि बेवजह दुर्घटना के या बेवजह चोट चपेट के शिकार ना हो जाएं। राहत की बात यह है कि आर्थिक स्थिति, पैसे रुपयों का मामला, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी लगातार बेहतर होती चली जाएगी।
पैसे आते जाएंगे। तो करियर में जो नया बदलाव या नई शुरुआत आप करेंगे इस समय में, उसका लाभ आपको मिलेगा, लेकिन इस महीने दुर्घटनाओं से बचिएगा और परिवार के बड़े बुजुर्गों का ज्यादा ध्यान रखिएगा। रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा पूरे महीने में। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करेंगे और जुलाई के शुरुआत में ही एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में, दाहिने या बाएं हाथ में पहन लेंगे तो आपकी रक्षा होगी, आप मुश्किलों से बचे रहेंगे। सिंह राशि वालों को इस महीने अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, तो सिंह राशि के लोग इस महीने अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दें, चोट चपेट ना लगे, यूरिन या किडनी से संबंधित कोई दिक्कत ना हो, उसका ध्यान रखेंगे। करियर में किसी तरह का जोखिम, किसी तरह का रिस्क नहीं लेंगे। जैसा काम चल रहा है, जैसा करियर चल रहा है, वैसा चलने दें। इस समय रिस्क लेने से आप मुश्किल में आ सकते हैं। देखिए, पैसे रुपए का मामला आपके लिए ठीक रहेगा, धन आपके पास निरंतर आता रहेगा, पैसे आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने खर्चों पर ध्यान दीजिएगा। पैसे जिस रफ्तार से आएंगे इस महीने में, उसी रफ्तार से आपके पैसे खर्च होंगे, ये संभावना बन रही है। परिवार के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। परिवार में छोटे छोटे विवाद होते हैं, मन मुटाव होते हैं, उनको अपने दिल से मत लगाइए, सबको साथ में लेकर आगे बढ़िए। हो सकता है इस महीने तीर्थ यात्रा पर जाएं, कोई यज्ञ हवन करें, कोई पूजा उपासना करें, धार्मिक कार्यों की तरफ आपका झुकाव काफी ज्यादा बढ़ सकता है, ये संभावना आपके लिए बन रही है। तो मुख्यतः सिंह वाले अगर परिवार में शांति रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो ज्यादा मुश्किलें उनको परेशान नहीं करेंगी। पूरे महीने अगर आप हनुमान जी की उपासना करें, कम से कम रोज सुबह एक बार अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ ही कर लें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। साथ ही साथ पूरे जुलाई में हर रविवार को गुड़ का या मिठाई का दान करने से आपको लाभ होगा। कन्या राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कुल मिला जुला के बेहतर दिखाई दे रहा है। इस महीने आपकी तमाम समस्याएं हल होंगी, चाहे वो करियर की हो, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हो।
इस महीने में तमाम समस्याएं हल होंगी और आपको इस महीने प्रमोशन मिल सकता है। करियर में बड़ी जिम्मेदारी इस महीने में आपको मिल सकती है और इस महीने में बड़ा पद मिल सकता है, बड़े पद का और प्रतिष्ठा का लाभ इस महीने में होता हुआ दिख रहा है। यानी आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर के मामले में विशेष लाभ होगा, परिवार में कोई शुभ या मंगल कार्य हो सकता है, किसी का विवाह हो, किसी का गृह प्रवेश हो, ऐसी संभावना बन सकती है। सब कुछ आपका ठीक दिख रहा है। जुलाई के महीने में बेवजह की चिंता ना करें, व्यर्थ की मानसिक चिंताओं से बचाव करें। रोज सवेरे अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चिंताओं को कम करने के लिए, तनाव को घटाने के लिए पूरे महीने रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। अब बात करते हैं तुला राशि की। जुलाई का जो महीना तुला वालों के लिए आया है, ये इनके जीवन में बड़े परिवर्तन दिखा रहा है। जुलाई के महीने में तुला वालों के जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे। परिवर्तन कुल मिला जुलाकर आपके लिए फायदेमंद बने रहेंगे। करियर और स्थान के मामले में परिवर्तन की संभावना ज्यादा दिख रही है कि आपका करियर भी बदले और आपका स्थान भी बदले, ये संभावना बन रही है। पैसे रुपए की स्थिति, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। संपत्ति की स्थिति ठीक रहेगी। हो सकता है इस महीने में आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें या कोई वाहन खरीदें, ये संभावना बन सकती है। संतान पक्ष की समस्याएं आपकी इस महीने में हल होंगी। संतान पक्ष को लेकर के चिंताएं दूर होंगी। करियर का मामला, पैसे का मामला, परिवर्तन का मामला आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में इस महीने में सावधानी रखिएगा। डाइजेशन को लेकर, पेट को लेकर और आंखों को लेकर के इस महीने में दिक्कतें हो सकती हैं। बाकी स्वास्थ्य के अलावा सारे मामले आपके लिए बेहतर दिख रहे हैं। पूरे महीने में शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें और शनिवार को खाने पीने की चीज का पूरे जुलाई में दान करें। जुलाई में जितने भी शनिवार आते हैं, हर शनिवार को खाने पीने की चीज का दान करना अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले इस सप्ताह में मेहनत करेंगे तो फायदा होगा।
ये महीना जुलाई का आपके लिए बहुत मेहनत दिखा रहा है, आपको काफी परिश्रम इस महीने में करना पड़ेगा, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो मेहनत सफल होगी और आपको लाभ होगा। जहां जहां आप मेहनत करेंगे वहां वहां पर लाभ की संभावना बन रही है। करियर में बड़ा बदलाव करें, स्थान परिवर्तन करें, मध्य जुलाई के बाद ऐसी स्थितियां भी आपके लिए बन रही हैं। संतान पक्ष की उन्नति इस महीने में होगी, संतान पक्ष की चिंताएं समाप्त होंगी और संतान अपने करियर में तरक्की करेगी। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का लाभ चाहते हैं, तो जुलाई के पहले 15 दिनों में संपत्ति संबंधी काम करने का प्रयास करिए, आपको लाभ होगा। और संपत्ति खरीदना, बेचना, बनवाना ये जुलाई के शुरुआती समय में अगर आप करें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो वृश्चिक वाले बहुत परेशान ना हो, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो कठिन से कठिन काम इस महीने में कर लेंगे। पूरे महीने हनुमान जी की उपासना करिए, जब मौका मिले हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करें और कम से कम इतना करें कि रोज सुबह एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। धनु राशि वालों को जुलाई के महीने में सावधानी रखनी है। हर छोटी छोटी बात में, करियर में, स्वास्थ्य में, फैमिली लाइफ में, हर बात में सावधानी बनाए रखना है धनु राशि वालों को। करियर के मामले में धनु राशि के लोग कोई लापरवाही नहीं करेंगे। अगर आपने करियर में कोई रिस्क लिया या कोई जोखिम लिया तो करियर के मामले में एकदम से मुसीबत आ सकती है। करियर में लापरवाही मत करिएगा।

0: इन्वेस्टमेंट करिएगा, पैसे के मामले में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। पूरी जुलाई में शांति और सावधानी रखिएगा। हालांकि महीने के अंत तक जाते जाते स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। राहत की बात यह है कि इस कठिन समय में, इस मुश्किल समय में धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। पैसा निरंतर आपके पास आता रहेगा। धनु वाले अपने स्वास्थ्य और अपने करियर को लेकर के जुलाई के महीने में सतर्क रहेंगे। रोज सुबह और शाम पूरे महीने शनि मंत्र का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे तो जुलाई का महीना कुछ बेहतर होगा, मुश्किलें कुछ कम हो जाएंगी। मकर राशि। जुलाई के महीने में काम का दबाव काफी दिख रहा है, वर्क प्रेशर बहुत रहेगा, दूसरों का काम भी इस महीने आपको करना पड़ेगा। आपके करियर में और आपके स्थान में परिवर्तन के योग इस महीने बन रहे हैं, लेकिन अगर परिवर्तन होता है तो आपके लिए राहत होगी, आपका प्रेशर कम होगा। आर्थिक स्थिति आपकी कुल मिला जुलाकर ठीक बनी रहेगी। फाइनेंशियल कंडीशन में आपके प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। मकर राशि वालों को इस महीने में संतान की शिक्षा को लेकर, उसके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन ये चिंता आप मैनेज कर लेंगे, मामला गंभीर नहीं होगा। मकर राशि वाले इस पूरे महीने में अपनी हड्डियों का ध्यान रखें, अपने रक्तचाप का, अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, क्योंकि प्रेशर की वजह से हड्डियों की दिक्कत, सर दर्द आदि की दिक्कत आपको हो सकती है। क्या उपाय करेंगे? पूरे महीने सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा, नित्य प्रातः सादा जल, और जल चढ़ाने के बाद प्रातः काल सूर्य मंत्र का जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः। अगर ऐसा करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना बेहतर दिखाई दे रहा है। करियर में तमाम सफलताएं आपको प्राप्त होंगी इस महीने में। करियर का प्रेशर, करियर का तनाव और दबाव कम होगा। धन की स्थिति में लगातार सुधार होता हुआ इस महीने में दिख रहा है, और मध्य जुलाई के बाद अगर आप प्रयास करें तो आपके रुके हुए तमाम काम भी पूरे होंगे। मध्य जुलाई के बाद प्रयास करने पर आपको ज्यादा लाभ होगा। स्वास्थ्य आपका पहले की तुलना में जुलाई के महीने में बेहतर होगा। स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा परेशानी नहीं होगी। करियर जैसा चल रहा है वैसा ही करियर चलने दीजिए। करियर में कोई बड़ा रिस्क, बड़ा जोखिम मत लीजिएगा, क्योंकि इस समय करियर में बदलाव आपको मुश्किल में, मुसीबत में डाल सकता है। तो कुंभ वालों का समय अच्छा है, बुद्धिमानी से रहें तो स्वास्थ्य और जीवन बेहतर बना रहेगा, करियर स्थिर रहेगा। पूरे महीने शिव जी की उपासना करें, रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाएं और नमः शिवाय रोज सुबह जल चढ़ाने के बाद 108 बार आपको जपना चाहिए। मीन राशि, जुलाई के महीने में आपको करियर में नए मौके मिल सकते हैं, जो आप पहले से प्रयास कर रहे थे। इस महीने शुभ सूचना और सफलता करियर के मामले में आपको मिल सकती है। करियर में नया मौका भी दिख रहा है, करियर में बदलाव भी दिख रहा है और स्थान परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान पूरे महीने बनाए रखें। पेट को लेकर, डाइजेशन को लेकर के और चोट चपेट को लेकर के मीन वाले पूरे महीने सावधानी रखेंगे। धन की स्थिति मीन वालों की कुल मिलाकर ठीक रहेगी, पैसे की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर पैसा ले रहे हैं, कर्जा लेने जा रहे हैं तो भी, कहीं पैसा दे रहे हैं या पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें सावधानी बनाए रखिएगा। तो मीन वाले अगर थोड़ा अलर्ट हो करके चलें तो उनके लिए महीना अच्छा दिख रहा है। एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में किसी भी सोमवार की रात को पहन लीजिएगा, पूरे महीने पहने रहिएगा, चिंता कम होगी। और रोज सुबह शाम पूरे जुलाई में नमः शिवाय का अगर आप जप करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो गुड लक स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। जुलाई का पूरा महीना आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: फ्यूचर वॉर से निपटने वाला सुपर प्लान तैयार। चीन पाक से निपटेंगे मल्टी डोमेन मिशन के महारथी, बैटल ब्रिगेड के सुपर अवतार। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
3: Schwarber to right field, and it will leave.
2: From the first pitch of the season to the stretch run,
3: and that's the ball game.
2: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: सोशल मीडिया की एयरहेड का डेडली एक्शन। वुमनली डिस्पाई यूनिवर्स में आलिया का धमाका। मेंटल हेल्थ से लड़कर इंडस्ट्री में बनाई पहचान। आलिया के फिल्मी सफर की अनकही दास्तान। वंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: सास बहू और बेटियां में आज देखिए रिश्तों में लगेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज। दोपहर 1:28 से लेकर 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
2: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So, you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news...
3: After multiple assassination attempts, they can't even get...
4: They're reliable.
5: Always when I need them.
2: To live sports action.
6: One-hand jam by LeBron on the break.
7: That's another three, Steph Curry.
2: And your favorite music.
8: Well, the dawn begins to crack.
2: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app. Or ask your device to play TuneIn.
9: अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे

बाबा अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पूरे उत्साह से भक्तों का जत्था जम्मू में आना जारी है। शिव भक्तों का जत्था भक्ति भाव के साथ पवित्र गुफा की ओर रवाना हो रहा है और इस साल 57 दिनों तक ये पवित्र यात्रा जारी रहने वाली है। चलो बुलावा आया है, बाबा बर्फानी ने बुलाया है। हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से पूरी घाटी गूंज रही है। यात्रा के दौरान कई श्रद्धालु पैदल तो कई घोड़ों और पालकी पर सवार होकर यात्रा की तरफ बढ़ रहे हैं। दो मार्गों बालटाल और पहलगाम से ये यात्रा अभी जारी है और कई सुविधाओं की व्यवस्था यहाँ प्रशासन की ओर से की गई है।

0: Stay in the game with TuneIn. Hear nonstop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
1: अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे।

0: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go, so you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
1: Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
2: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. Isiliye khabar ke kintu parantu ko hum sachchai ki kasauti par kaste hain. Tab lekar aate hain wo sachi khabar jo aapko achhi lage. To achhi aur sachi khabron ka waqt raat 8 baje Good News Today par.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
7: सोशल मीडिया की एयरहेड का डेडली एक्शन। वुमनली डिस्पाई यूनिवर्स में आलिया का धमाका। मेंटल हेल्थ से लड़कर इंडस्ट्री में बनाई पहचान। आलिया के फिल्मी सफर की अनकही दास्तान। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
8: फ्यूचर वॉर से निपटने वाला सुपर प्लान तैयार। चीन पाक से निपटेंगे मल्टी डोमेन मिशन के महारथी। बैटल ब्रिगेड के सुपर अवतार देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
12: टीआईटी भोपाल जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
13: सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
14: पीएम मोदी ने राजस्थान को दी विकास की सौगात। जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का किया लोकार्पण। पचपदरा रिफाइनरी का भी किया शुभारंभ। पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह। पहले दिन करीब 20,000 भक्तों ने किए दर्शन। उदयपुर में अंतिम चरण में पहुंची भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां। चांदी की रथ को दिया जा रहा भव्य रूप। हर ओर उत्सव और श्रद्धा का माहौल। गुजरात में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिजली टावर और लाइनों के जमीन देने पर मिलेगा बढ़ा हुआ मुआवजा। एक साथ होगा पूरा पेमेंट। पूर्वी कांगो में भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से किया गया सम्मानित। 651 शांति सैनिकों को मिला संयुक्त राष्ट्र मेडल। शांति व्यवस्था में

0: योगदान की हुई सराहना।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन, पहले दिन करीब 20,000 भक्तों ने किए दर्शन। प्रशासन की व्यवस्था से खुश नजर आए श्रद्धालु, कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता की भी जमकर तारीफ की। श्रद्धालुओं में दिखा आध्यात्मिकता, उत्साह और राहत का अनूठा संगम, बाबा बर्फानी के जयकारों ने माहौल में खुली दिव्यता। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के लिए स्वास्थ्य विभाग की पहल, NH-44 पर फर्स्ट एड कैंप लगाया गया और एम्बुलेंस तैनात की गई। तीर्थयात्रा के दौरान ट्रैफिक की आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए नेशनल हाईवे 44 पर बनी डिगडूल पंथियाल टनल और मगरकोट रामसू वायाडक्ट को खोला गया। उदयपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं, देखते ही बन रहा है मंदिर परिसर में भक्तों का उत्साह। चांदी के भव्य रथ को दिया जा रहा है अंतिम रूप, कारीगर फाइनल टच देकर निखार रहे हैं रथ की भव्यता। मंदिर में जगन्नाथ महाप्रभु के भजनों की मधुर गूंज दे रही है सुनाई, श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर कर रहे हैं कीर्तन। रथ यात्रा को लेकर मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है, हर ओर उत्सव और श्रद्धा का माहौल नजर आ रहा है। उदयपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, शहर भगवान जगन्नाथ के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार। उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज तड़के भव्य भस्म आरती हुई, तो वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन किए। भस्म आरती के दौरान पूरा गर्भगृह हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा, भक्तों ने आध्यात्मिक माहौल का अनुभव किया। सावन से पहले महाकाल की भस्म आरती में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है, मंदिर प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने महाकाल की अलौकिक भस्म आरती में हिस्सा लिया, इसे सनातन परंपरा का अद्भुत स्वरूप बताया। भोर में होने वाली महाकाल की भस्म आरती का दिव्य दृश्य देखकर भाव विभोर हुए श्रद्धालु, बाबा से मांगा कुशलता का आशीर्वाद।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: फ्यूचर वॉर से निपटने वाला सुपर प्लान तैयार, चीन पाक से निपटेंगे मल्टी डोमेन मिशन के महारथी, बैटल ब्रिगेड के सुपर अवतार, देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like

0: Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: साथ ही एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है। मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है, वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है। बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर। एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी, आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस। इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है, जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है, तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है, तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में, गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती। और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूल, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: सास बहू और बेटियां में आज देखिए, रिश्तों में लगेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
2: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance, and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search today's Global Hits to start listening now.
3: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: पीएम मोदी ने राजस्थान को दी विकास की सौगात, जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का किया लोकार्पण, पचपदरा रिफाइनरी का भी शुभारंभ। पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह, पहले दिन करीब 20,000 भक्तों ने किए दर्शन। उदयपुर में अंतिम चरण में पहुंची भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां, चांदी के रथ को दिया जा रहा भव्य रूप, हर ओर उत्सव और श्रद्धा का माहौल। गुजरात में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली टावर और लाइनों की जमीन देने पर मिलेगा बढ़ा हुआ मुआवजा, एक साथ होगा पूरा पेमेंट। पूर्वी कांगो में भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से किया गया सम्मानित, 651 शांति सैनिकों को मिला संयुक्त राष्ट्र मेडल, शांति व्यवस्था में उनके योगदान की हुई सराहना।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त पारुल चौधरी, लेकर हाजिर है फिर एक बार सास बहू और बेटिया का ये वीकेंड स्पेशल एपिसोड। वीकेंड है तो फन है, मस्ती है, पार्टी है, तो क्यों ना आज आप घर बैठे बैठे हो जाएं हमारी इस पार्टी में शामिल, जो है सितारों से भरपूर। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं हमारी ये पार्टी, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर।
1: एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज से सजे सास बहू और बेटिया के वीकेंड स्पेशल एपिसोड में आज देखिए घर वालों के सामने देव की एक्टिंग पर वसुधा कहेगी आई लव यू। अपने शिव प्रसाद को याद कर नाचेगी शालिनी, तड़पेगा दिल। गुंडों के बीच फंसेगी वृंदा, सहारा बनेगा संजय।
7: तुझसे मेरा जीना मरना चाहे।
1: ईशान के लिए अब धड़कने लगेगा नौनिका का दिल।
7: सौ जन्म भी कम क्यों लागे।
1: राध्या के शुभारंभ पर दादी लगाएगी ग्रहण। क्या लौट आई अभिमन्यु की याददाश्त। एक हो गए हैं विक्रांत और मन्नत।

और साथ ही करेंगे मुलाकात अंजलि ततरारी से, जो करेंगी मुंबई की सैर, घूमेंगी बीच और लेंगी स्वाद का मजा सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बिटिया में।

0: ईशान और नयनिका, वैसे पार्टी तो आप दोनों को भी करनी चाहिए, लेकिन एक दूसरे के साथ। बड़ी ही प्यारी है आपकी ये जोड़ी, ना लगे इसे किसी की भी बुरी नजर। एक्चुअली अगर नहीं है आपका कोई पार्टी प्लान, तो आप जा सकते हैं वीकेंड पर कहीं दूर भी, लाइक अ वीकेंड हॉलीडे। कितना मजा आएगा। हमारे लिए आएंगे रोमांस वाली गुड न्यूज, तो चलिए लेकर चलते हैं आपको सैर आपके सेट पर और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है कहानी में आज।
1: तुझसे मेरा जीना मरना जान तेरे हाथ में।
2: तेज धड़कती नयनिका की धड़कने,
1: सौ जन्म भी कम क्यों लागे, लागे तेरे।
2: प्यार में तड़पता ईशान का दिल,
1: मैं मुसाफिर तू मुसाफिर इस मोहब्बत के सफर में।
2: क्या एक हो पाएंगी नयनिका और ईशान की मंजिलें,
1: मिलके दोनों रब के घर में।
2: स्टार प्लस के सीरियल सैराब में नयनिका की राहों में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, ईशान हर वक्त नयनिका के साथ खड़ा है। और आज भी नयनिका परेशान है और ईशान अब भी उससे अपने प्यार का इजहार कर रहा है, भले ही नयनिका ने उसके प्यार को कबूल ना किया हो।
3: तारीफ भी रुक सकती है।

अब नौनिका का फैसला जो भी हो, ईशान ने तो फैसला कर लिया है कि वो नौनिका से प्यार करता है और करता रहेगा। खैर, नौनिका की बीमारी के चलते उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है और ईशान चाहता है कि नौनिका अच्छे से पूरी नींद ले। ऐसे में देखिए कैसे वो नौनिका को प्यार से सुलाता है और ऐसे में कहीं न कहीं नौनिका का दिल भी धड़कने लगा है, वो भी ईशान के लिए। तुम स...

0: तो ये जो सीन है ये नॉइनी का अभी ईशान के घर पर है और ऑलरेडी बहुत बेचैन है क्योंकि उसके मन में प्यार है ईशान के लिए, लेकिन वो अपने आप को बहुत दबा रही है क्योंकि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत ही ज़्यादा रिश्तों और बंधनों में बंधी हुई है। तो वो उभर के बात भी नहीं कर पा रही है, बता भी नहीं पा रही है। तो ये अभी हमने जो सीन शूट किया है उस पर आधारित है और यहाँ पे ईशान उसे बहुत अच्छे से पैम्पर कर रहा है। वो ईशान के एक एक मूव्स देख सकती है क्योंकि उसकी लाइफ में कभी उसको ये प्यार मिला नहीं, तो वो बहुत खुश है अंदर से। लेकिन अब अगले दिन उसे जाना है तो वो भी एक बेचैनी है।
1: अब एक ही घर है, हिचकिचाहट तो होगी ही। ऐसे में नॉइनिका की ये हिचकिचाहट ईशान समझ जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन नॉइनिका ईशान से बातें करना चाहती है, इसलिए देखिए कैसे दोनों अपने अपने कमरे में बैठे तो है लेकिन वहीं से ही दोनों की बातें जारी है।
2: ईशान।
3: हाँ बोलो।
2: कल मुझे पुचका खिलाओगे?
3: फिर तुम्हें पसंद है, पहले क्यों नहीं बताया, आज ही लेकर आता था।
2: नहीं नहीं वैसे नहीं, पुचका वाले के पास जाकर खड़े होकर खाना है, जैसे कॉलेज स्कूल टाइम में पढ़ते वक्त खाती थी, बिल्कुल वैसे।
3: हाँ ठीक है चलेंगे।
2: लेकिन तुम तो सेलिब्रिटी हो ना, तुम बाहर निकलोगे तो वहाँ भी भीड़ लग जाएगी।
3: उसकी टेंशन तुम मत लो।
2: ओके। मैं ना समुद्र किनारे बैठकर रेत के घर बनाऊंगी, सैंड कासल।
3: वाओ, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अगर तुम कैसल बनाओगी तो तुम्हें मिस्त्री तो चाहिए होगा ना।
1: कहते हैं बातों से रिश्ते मजबूत होते हैं और ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। और बातों ही बातों में ईशान ने नॉइनिका से गुजारिश की कि वो मुंबई में रहकर अपना इलाज कराए। इतना ही नहीं, यूरोप में जो उसका टूर है उसमें भी वो उसके साथ चले। बस फिर क्या, नॉइनिका को लगा कि बातें हद से पार हो रही हैं। ऐसे में नॉइनिका ने फिर से ईशान को आगाह कर दिया।
2: देखो ईशान, मैं प्यार में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती।
3: तुम्हारा विश्वास वापस आएगा, जरूर आएगा। सो जाओ।

0: वही नौनिका बार बार इनकार कर रही है, लेकिन ईशान को पूरा यकीन है कि आज नहीं तो कल नौनिका के दिल ईशान के लिए जरूर धड़केगा। वैसे अगले ही दिन नौनिका मुंबई जाने की तैयारी में जुटी हुई है कि तभी नौनिका को आ जाता है उसकी बेटी टीनी का कॉल, जो फोन पर अपनी माँ को खरी खोटी सुनाती है। इतना ही नहीं, उसके चरित्र पर उंगलियां भी उठाती है। ये सुनकर नौनिका हैरान है और उसे टेंशन भी हो रही है। वैसे उससे ज्यादा टेंशन ईशान को है।
1: बस सब लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ होंगे।
2: जब मेरी अपनी बेटी ही मुझे जज कर रही है तो मुझे दूसरे लोगों से क्या करना?
1: वो कल में
2: क्या? कल क्या?
1: तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ना मेरे लिए ठीक नहीं होगा।
2: प्लीज ईशान, प्लीज अभी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी लाइफ में और कॉम्प्लिकेशन मत पैदा करो प्लीज। हमारे नसीब में जो लिखा होता है ना, उसका सामना हमें करना ही पड़ता है। नसीब के लिखा नहीं टाल सकते।
3: कल अब क्योंकि आज आखिरी दिन है ईशान के घर पे, तो कल अब नौनिका जा रही है मुंबई। अब मुंबई में जो इतने यहाँ पे जितनी भी चीजें हुई हैं यहाँ पर, अब उससे जुझेगी। अपने घर में जाके उसके सवालों के जवाब देगी, क्योंकि वो टच में नहीं रह पाई है फोन पर।
0: भाई फिलहाल तो नौनिका नसीब की कितनी भी बातें कर ले, पर उसने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। ऐसे में जब नौनिका डरने और घबराने लगती है, तो ईशान उसका हाथ पकड़कर अपने दिल के पास रखता है और उसे यकीन दिलाता है। देखना होगा क्या नौनिका ईशान के प्यार को समझ पाएगी।

0: जीसस, मेरी जिंदगी में जो लोग मुझसे करीब होते हैं आप उनको हमेशा मुझसे दूर कर देते हैं। प्लीज एटलीस्ट नोनिका को मुझसे दूर मत करना।
1: ईशान कितना अच्छा लड़का है भगवान, आप प्लीज इसे एक खूबसूरत सी जिंदगी देना। बस आपसे यही मांगूंगी कि ये हमेशा खुश रहे।
2: मुंबई से नूपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर सूरज और ईशा की ये कहानी, क्या इसमें आ रहा है कोई नया ट्विस्ट, कोई नई सिचुएशन, कोई नई कॉम्प्लिकेशन, या बाय चांस आ रही है यहाँ से हमारे लिए कोई गुड न्यूज? हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि गुड न्यूज ही आए। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको बिहाइंड द सीन सीधा पति ब्रह्मचारी के सेट पर और देखते हैं किस हाल में है आज सूरज और ईशा।
2: ईशा और सूरज के नए रिश्ते

0: सूरज का डर, क्या खुल जाएगा ईशा के सामने सूरज का राज। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में ईशा आईपीएस ऑफिसर बन तो गई है, लेकिन जल्द ही वो अपना ऑफिस ज्वाइन करने वाली मिले हैं, इसीलिए वो सारा वक्त ईशा के साथ बिताना चाहते हैं। तभी तो देखिए कैसे वो ईशा के साथ पहुंच गए हैं मंदिर भगवान का आशीर्वाद लेने। पति ब्रह्मचारी में ईशा आईपीएस ऑफिसर बन तो गई है, लेकिन जल्द ही वो अपना ऑफिस ज्वाइन करने वाली है, ऐसे में सूरज को 24 घंटे मिले हैं, इसीलिए वो सारा वक्त ईशा के साथ बिताना चाहते हैं। तभी तो देखिए कैसे वो ईशा के साथ पहुंच गए हैं मंदिर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। यहां सूरज भगवान से कुछ पल मांग रहा है, तो वहीं पीछे लग रहे हैं ईशा और सूरज के पोस्टर्स, जिसमें सूरज का राज सभी के सामने आ रहा है। ऐसे में तभी पंडित जी आ जाते हैं और वो ईशा सूरज को परिक्रमा करने के लिए कहते हैं। बस फिर क्या, पंडित जी की बात मानकर ईशा आंख बंद करके परिक्रमा शुरू कर देती है, और जैसे ही सूरज परिक्रमा करता है तो उसकी नजर अपने पोस्टर्स पर पड़ जाती है और वो घबरा जाता है, क्योंकि सच वो खुद बताना चाहता है।
1: आईएएस बना है वो ईशा जी के सामने, बिकॉज ईशा जी को यही लग रहा है कि सूरज अब भी आईएएस है। ऑफ कोर्स वो आईएएस छोड़ के गई थी, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं, ना आरफ के बारे में पता है, ना ईशा जी को पापा के बारे में पता है, कुछ नहीं पता है। तो ईशा जी के स्वागत में ये सेलिब्रेशन रखा है, जहाँ पे कुछ गलतियों की वजह से पोस्टर पे सूरज ना लिखते हुए आईएएस सूरज ना लिखते हुए दादा भाई लिख दिया है मोहल्ले वालों ने, एंड बंटी की गलतियों की वजह से, एंड ईशा जी ना देख पाए उसी के चक्कर में ये
2: क्यों मच जाता है।
0: अब पोस्टर गलत छप गया है, ये बात पता चलते ही सूरज ने झटपट बंटी और सभी को कॉल लगा दिया। यहाँ ईशा परिक्रमा कर रही है और सूरज भी उसके साथ परिक्रमा कर रहा है, लेकिन डर उसके अंदर मौजूद है। तो वहीं दूसरी ओर बंटी और सूरज की बहन पहुंच गए हैं सारे पोस्टर्स हटाने के लिए, ऐसे में झटपट सारे पोस्टर्स हटा दिए गए हैं।
1: सूरज चाहता तो वो तुरंत बता सकता था, लेकिन सूरज का यही तमन्ना है कि ईशा जी जो आईपीएस बनी है उसकी खुशी कम से कम वो 24 घंटे महसूस करें दिल से, और मेरे साथ हैप्पी मोमेंट जो भी है प्यार से बैठे बातचीत करे, ईशा जी के हाथों की बनी चाय पीता है, उनसे बातें करना चाहता है, उनके साथ मंदिर में जाके बात कर रहा है, पूजा कर रहा है। सो यही सारी चीज़ें कि वो चाहता है 24 आवर्स जो हैं, जैसे आप लोगों ने फिल्म देखी होगी मुन्ना भाई MBBS फर्स्ट वाला आई थी, उसमें भी यू नो जो रात कटती नहीं है समथिंग, वैसी वाला सिचुएशन है संजय दत्त एंड दैट एक्ट्रेस, आई डोंट नो हर नेम, तो वही वाला सिचुएशन है यहाँ पे कि कैसे ये समय कटे। और सूरज को हर पल ईशा जी को देख के यही लग रहा है कि ईशा जी जब भी आपको सच्चाई पता चलेगी तो आप जिस तरह से बात कर रही हैं, प्यार भरी बातें कर रही, ये सब कुछ नहीं बच पाएगा फिर तो।
2: सूरज को सारे मोमेंट्स ऐसे लगता है ये हमारा लास्ट स्वीट मोमेंट हो, तो उस इमोशन से जी रहा है कि अब पता चल गया तो
1: मतलब वो एक मतलब कि डिलेमा में अटका हुआ है कि क्या करूँ मैं, बता दूँ या ऐसे ही चलने दूँ, बता दूँ या ऐसे ही चलने दूँ, बस इसी में फंसा हुआ है वो
0: बेचारा सूरज, उसकी तो हालत खराब हो रही है। और अब तो सिर्फ एक पोस्टर बचा है, देखना होगा कि ऑफिस ज्वाइन करने से पहले ही ईशा के सामने दादा भाई का राज खुल जाएगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: प्रांतीय और प्रथम, देखिए वीकेंड पर तो पार्टी करनी बनती है, क्योंकि पूरा हफ्ते हम काम करते हैं, काम करके थक जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, वीकेंड पर जब हम पार्टी करते हैं ना तो मिलता है हमारे दिमाग को भी एक ब्रेक, एंड ऑफ कोर्स हमारी बॉडी को भी, और फिर संडे तो होता ही है कम्प्लीटली रिलैक्स करने के लिए। अब वो अलग बात है कि हर किसी को नहीं मिलती है वीकेंड वाली छुट्टी, तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको मन अति सुंदर के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ एक्साइटिंग हो रहा है इस कहानी में आज।
0: राध्या के नए सफर पर दादी का ग्रहण, दादी के फरमान से प्रथम हुआ हैरान, राध्या के पीछे पीछे प्रथम की भागम भाग, टीवी टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में राध्या ने पहला राउंड तो पार कर लिया है और अब वो दूसरे राउंड की तैयारी के लिए घर से निकल रही है। ऐसे में राध्या की सासू माँ अपने हाथों से राध्या का मुंह मीठा कराने के लिए खीर खिला रही है, लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि दादी आकर लगा देती है ब्रेक।
4: हमारे परिवार की जो विपदा आई हुई है और तेरे ऊपर जो जान का संकट है, उसके लिए हमने पंडित जी से बात की। हाँ, पंडित जी ने कहा है उसके लिए जिला व्रत रखना, और ये व्रत तेरी पत्नी राध्या को रखना, तभी तेरी जान का आया संकट टल सके।
0: अब दादी ने तो अपना फरमान सुना दिया, लेकिन प्रथम उनका फरमान मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में दादी के पास कोई और चारा ही नहीं बचा। उन्होंने राध्या को उनका फैसला अपनाने और न अपनाने की जिम्मेदारी दे दी, लेकिन प्रथम उसमें भी आड़े आने लगा।
4: राध्या, बाकी सब कुछ तुम्हारे ऊपर, तुम अगर पति की बात डालकर बाहर जा सकती हो तो पति की मदद करने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए निर्जला व्रत तो रख ही सकती हो ना?
5: राजा, तुम्हें दादी की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं।
4: दादी आप
5: राजा, तुम्हें व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं। फिर ले जाओ और तुम्हारा जाके खा ले। ऐसे खाली पेट जाओगी तो तुम्हें मार पड़ सकती हो। तो
0: भाई प्रथम तो राध्या का ख्याल रखना चाहता है, लेकिन राध्या उसके मन में दादी की बातों ने घर कर लिया है। ऐसे में डर के मारे उसने अपना टिफिन लेने से इनकार कर दिया, और तो और दादी के साथ साथ सभी घर वालों का आशीर्वाद लेकर वो दूसरे राउंड के लिए वो घर से निकल चुकी है।

0: वहीं दूसरी ओर प्रथम राध्या के भूखे रहने पर परेशान हो रहा है, इसीलिए देखिए कैसे राध्या को वीडियो कॉल लगाकर उसे जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर राध्या ने कुछ खाया है या नहीं, लेकिन राध्या बातों को घुमा रही है।
1: राध्या मजाक, मैं कह रहा हूँ ना कुछ खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया।
2: प्रथम सर, लोग मुझे बुला रहे हैं, जाना होगा, मैं बाद में खा लूंगी, बाय।
0: फिलहाल तो राध्या ने आनाकानी कर दी और प्रथम को पूरा यकीन है कि राध्या दादी की बात जरूर मानेगी और वो कुछ भी न खाएगी न पिएगी। ऐसे में जब राध्या वापस घर में आई है तो देखिए कैसे प्रथम दूध का ग्लास लेकर राध्या के पीछे पड़ गए हैं और राध्या ने घर में भागम भाग मचा दी है क्योंकि उसे दूध पसंद नहीं है, लेकिन प्रथम भी हार मानने वालों में से नहीं। अब जैसे राध्या अपनी मनमानी करती है, प्रथम भी तो अपनी मनमानी करेगा ही। जैसे तैसे उसने राध्या को पकड़कर उसकी नाक बंद कर उसको एक गिलास पूरा दूध पिला ही दिया और राध्या चाहकर भी कुछ कर नहीं पाई। अब देखना होगा क्या वाकई में जो दादी ने कहा है कि व्रत पूरा ना होने पर प्रथम पर संकट आएगा, क्या वाकई वो आ जाएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: 30 के पार जब मिला प्यार, तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं अब आपको तन्वी और युग के पास। वैसे तन्वी और युग, अगर वीकेंड का कोई प्लान नहीं है तो हो जाएं आप दोनों भी हमारी इस पार्टी में शामिल। हम अरेंज कर देंगे आपके लिए मैचिंग पार्टी आउटफिट्स और हो जाएगा एक बॉलीवुड नंबर पर डांस, और हमारे लिए होगा यहाँ पर भरपूर एंटरटेनमेंट, क्योंकि कभी भी शो की कहानी में कोई पार्टी होती है ना तो बस मजा आ जाता है, लेकिन वो पार्टी लेकर आती है कहानी में भरपूर ड्रामा भी। लेकर चलते हैं आप सबको सीधा यहाँ।
0: तन्वी को मिली बहू की जिम्मेदारी, ढोल बजाते हुई तन्वी की माँ की एंट्री, रस्मों में अक्का साहिब चलेंगी चाल,
4: हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की दहन।
0: दंगल टीवी के सीरियल 30 के पार जब मिला प्यार में युग की माँ ने जो भी परीक्षाएं ली है तन्वी की, उसमें तन्वी पास हो गई है और ऐसे में युग की माँ ने तन्वी को अपनी बहू स्वीकार कर लिया है। तभी तो देखिए कैसे आज वो तन्वी की न सिर्फ आरती उतार रही है बल्कि उसे अपने हाथों से अपने सोने के पूर्वज वाले कंगन पहना रही है, और तन्वी जिसकी तबीयत बिगड़ी हुई है वो ये कंगन पहन तो रही है लेकिन कहीं न कहीं उसे हिचकिचाहट भी हो रही है।

0: लेकिन उसकी हिचकिचाहट तब बढ़ती है जब युग की माँ तन्वी को घर की जिम्मेदारी देती है और वो जिम्मेदारी कोई और नहीं बल्कि घर की चाबियाँ है, जिसे देखते ही तन्वी की हालत खराब हो जाती है और वो मना करने लगती है।
1: मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे नहीं लगता कि मैं इस जिम्मेदारी के लायक।
2: तन्वी, उनकी जिम्मेदारियां उठाने के सभी लक्षण, और मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये जिम्मेदारी खुद ही निभा सकती है। इसीलिए मैंने तुम्हें चुना। तुम्हें इस घर के लिए जो भी कुछ किया है, मुझे नहीं लगता तुमसे बेहतर और कोई ये जिम्मेदारी निभा सकता।
3: पहले तन्वी को मैं पसंद करती थी, लेकिन ये ही मेरी बहू है ये मैं पसंद नहीं करती थी, लेकिन अभी वो हालात की वजह से मेरी बहू हो चुकी है, तो मैंने उसको अलग अलग परीक्षाएं दी, उनके सामने कसौटी रखी, फिर उसने वो सब पार कर लिए, तो अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मेरे बेटे के लायक है, तो इसलिए मैं अभी उसे पसंद कर रही हूँ। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये जिम्मेदारी उठाने के लायक भी है।
0: अब तन्वी कसौटी पर खरी उतरी है तो भला सासू माँ प्यार कैसे ना जताए। उन्होंने तन्वी के हाथों में चाबी थमा ही दी है और अब तन्वी को घर संभालने की नई जिम्मेदारी भी मिल गई है। लेकिन अगले ही दिन आता है कहानी में नया ट्विस्ट। घर वाले करौली की रस्म की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी घर में ढोल बजाते हुए एंट्री हो गई है तन्वी की माँ की। जरा देखिए कैसे वो जमकर ढोल बजा रही है और अक्का साहिब को उनके ढोल बजाने पर गुस्सा आ रहा है।
4: बंद करो ये शोर शराबा।
5: क्या
4: हमारा मतलब है तन्वी की काकू जी, आपका स्वागत है, लेकिन हमारे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, इसलिए हमने आपसे ये शोर बंद करने के लिए। वैसे हम ये पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी बड़ी खुशखबरी है जो आप बिना इस तरीके का ढोल बजाए हुए नहीं बता सकते। खुशखबरी तो मैं आपको दूंगी, लेकिन बाद में पहले आप मुंह मीठा कीजिए। ये लीजिए मीठा करिए।
3: काकू एक अलग ही शेड कर रही है इसमें, थोड़ा मजाकिया थोड़ा विलन टाइप अलग ही शेड कर रही है, लेकिन अभी उनको ये टेंशन है कि भाई मेरे बेटी की शादी तो नहीं हुई है अभी, मतलब तन्वी की शादी हो चुकी है तो तन्वी एकदम आराम से है, लेकिन मेरी बेटी का क्या होगा, तो वो हर थोड़े दिनों के बाद कुछ ना कुछ तो शौक देती है, तो अभी आप देखेंगे कि वो क्या शौक देती है, लेकिन मजा आ रहा है।
0: अब जिस तरह से तन्वी की माँ की एंट्री हुई है और वो घर वालों को टॉफियां बांट रही है, उस तरह से तो लग रहा है कि घर में नया तमाशा होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो करौली की रस्म की बात करती है तो अक्का साहिब सभी के सामने आदेश दे देती है, जिसे सुनकर तन्वी की माँ हैरान हो जाती है और अक्का साहिब फिर बातों को संभालती है।
4: आप अपनी दोनों बेटियों को साथ ले जा सकती हैं। शादी के बाद तन्वी की घर जाने की रस्म भी पूरी हुई है ना, तो दोनों बेटियों की रस्में एक साथ ही हो जाएंगी।
1: हाँ, वैसे भी परी बहुत दिनों से बोल रही थी हमें घर की बहुत याद आ रही है, तो इसी बहाने घर भी चली जाएगी, है ना परी? घर जाना था तुमको तो,
4: और क्या।
3: अक्का साहब को थोड़ा पसंद नहीं आ रहा है, वो ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन वो थोड़े, ये जो शादी हुई है तन्वी की उम्र थोड़ी ज़्यादा है युग की उम्र से, तो थोड़ा वो उसे पसंद नहीं कर रही है और बाकी की बहुत चीज़ें हैं, तो हाँ उन्हें वो पसंद नहीं आ रहा है।
0: अब अक्का साहब की बातों को कोई समझे ना समझे, लेकिन तन्वी की माँ को डाउट हो गया है। खैर, तन्वी की सासू माँ सारी सिचुएशन संभालती है, वो ना सिर्फ तन्वी से खुश है बल्कि तन्वी की माँ का भी स्वागत करती है, और तो और करवली की रस्म के लिए अपनी तिजोरी से लेकर आ जाती है सारे गहने और दे देती है तन्वी के हाथों में। इतना ही नहीं, वो तो उसे कहती है कि इन गहनों में से जो उसे पसंद है वो पहन ले और बाकी सब तिजोरी में रख दे, क्योंकि अब घर की तिजोरी की चाबी तन्वी के हाथों में जो है। लेकिन ये बात अक्का साहिब को पसंद नहीं आती और देखिए कैसे जाते हुए तन्वी को टोकने लगती है।
4: तन्वी, ये गहने तिजोरी में रखने के बाद चाबी हमें मिल गई। तो मायके जा रही हूँ, तो घर में ध्यान रखने के लिए कोई चाहिए?
3: मतलब जब बहू पहली बार मायके जाती है तो खाली हाथ नहीं जाती, और ये तो सरपोतदार खानदान है, रईस खानदान है, कोल्हापुर का बड़ा संस्थान है, तो ऑफ कोर्स वो मायके खाली हाथ नहीं जाएगी। वो पल्लू भराई, मतलब पल्लू में कुछ ना कुछ चीज़ें, गिफ्ट्स, ये सब हम भेजते हैं, वो रस्म है।
0: अब अक्का साहब के कहने पर तन्वी अक्का साहब को चाबी तो दे देगी, लेकिन लगता है गहनों के साथ गोलमाल होने वाला है और इसका इल्जाम तन्वी और तन्वी की माँ पर लग सकता है, जो कहानी में नया ट्विस्ट लाएगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: चलिए हमारी इस पार्टी को बना देते हैं आपके लिए अब और भी एंटरटेनिंग। आप पूछेंगे कैसे? वेल, यहाँ तो है आपके लिए अगली एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबर, जो एक्चुअली जुड़ी हुई है आपके फेवरेट सितारे से। जी हाँ, गौर से देखिए जरा इन्हें, कौन है ये? इनसे ही की है हमारी टीम ने ये खास मुलाकात। आप इन्हें बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं और अब तो हम भी, क्योंकि यहाँ तो हमने जाना है इन्हें अब क्लोज एंड पर्सनल। तो चलिए फिर फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इनके पास। गेट सेट गो।

0: एयरपॉड्स हैं बिकॉज आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक. तो मुझे थोड़ा भी अगर टाइम मिल गया बीच में सेट पे तो मैं गाने सुन लेती हूँ. इनफैक्ट मेरा डे भी मैं स्टार्ट करती हूँ. मेरा एक फेवरेट भजन है, आई लव टू स्टार्ट माई डे विद दैट भजन, हे राम हे राम. तो मैं जब बहुत छोटी थी ना तब से ये भजन सुनते आ रही हूँ. तो मेरा दिन मुझे उससे स्टार्ट करना बहुत अच्छा लगता है. मैं ऐसा लगता है कि मेरी पूरी बॉडी काम डाउन हो जाती है वो सुन के. तो आई स्टार्ट माई डे विद दैट भजन. एंड हो या सैनिटाइजर, सनस्क्रीन, घर की चाबी. मेरी मम्मी बहुत रिलीजियस है तो मेरे घर का की चाबी का लॉकेट भी बालाजी हैं. और दैट्स इट. एंड देन मैं थोड़े से इयर रिंग्स, आई लव वेयरिंग लूप्स. तो बेसिक चीज़ें जो एवरी डे मुझे ज़रूरत पड़ती है वो सब है मेरे पास.
1: तो अंजलि तत्तराई आज हमें मुंबई की उस जगह पर लेकर जा रही हैं जहां उनका फेवरेट फास्ट फूड मिलता है जो है मिसल पाव. तो हम पहुंचे मुंबई के कांदिवली इलाके में जहां है अंजलि का फेवरेट मिसल पाव.
0: तो हम लोग पहुंच गए मेरी फेवरेट मिसल पाव वाली जगह में जो कांदिवली में मैंने आप लोगों को बताया था. तो मैं लेके चलती हूँ आपको पाटिल मिसल पाव जो मेरा फेवरेट है. आइए. हेलो भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया
2: बढ़िया.
0: एक अच्छा सा मिसल पाव लगा दो. द मिसल पाव इज सो यमी यहाँ का. तो मैं आज सास बहू और बेटिया की टीम को भी मिसल पाव खिलाने वाली हूँ.
1: अंजलि एक अच्छी डांसर है, साथ साथ फिटनेस का भी ख्याल रखती है. लेकिन कभी कभी होता है उनका चीट डे और आज इस चीट डे में वो हमें खिला रही हैं कुछ ऐसा जो उनके टेस्ट बड को भाता है. लेकिन फिटनेस का ख्याल वो हमेशा रखती हैं.

0: तो बन है ऑफ कोर्स, पाव है, सेव है और कांदा, मतलब भैया ने कांदा डाला है, इमेजिन कांदा। आप लोगों को पता ही वो कांदा के रेट्स बहुत एक्सपेंसिव हो रखे हैं अभी, तो अगर कांदा डाले तो मतलब इट्स एन एक्सपेंसिव रेट। लेट्स स्टार्ट। लेमन है, तो पहले आप लोग खा लो, बहुत टेस्टी।
1: खालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।
0: तो मैं एक्चुअली डाइट कॉन्शियस बिल्कुल नहीं हूँ। आई यूजली एक्टर्स बहुत डाइट कॉन्शियस होते हैं, बट मैं इतनी बड़ी फूडी हूँ, मुझे बस अच्छा खाना चाहिए। आई एम नॉट एट ऑल डाइट कॉन्शियस, मतलब ऑफकोर्स करना पड़ता है कभी कभी, लेकिन वैसे चीट मील कर लेती हूँ बीच बीच।
2: तो ये है अंजलि तत्तरारी का वो फेवरेट स्पॉट जहाँ वो खाती हैं अपना फेवरेट मिसल पाव, और अपने पाव को वो देखिए कैसे एंजॉय कर रही हैं। भाई मुंबई ने आकर इस उत्तराखंड की लड़कियों को बिल्कुल अपने जैसा बना

0: मिसल पाव तो हम लोगों ने खा लिया और मेरा पेट भर चुका है अभी, आई थिंक आई एम ऑल सेट।
1: अब बारी है मंजिल के साथ फिर से गाड़ी में सवार होने की और जाने की, जहां हमें अंजलि लेके जाएंगे मुंबई के एक ऐसे सीक्रेट कॉर्नर में जहां पर समुंदर है, बोटिंग है और जहां पर अंजलि खुलकर डांस करती है, यानी मुंबई का अक्सा बीच।

0: गिरा।
1: क्योंकि मैं पहाड़ों से हूँ तो ऑफ कोर्स पहाड़ तो मुझे बहुत पसंद ही है, लेकिन मुझे बीचेस बहुत पसंद है, तो मैं आपको अपनी सेकंड फेवरेट जगह पे लेके आई हूँ।
0: आग फैल गई।
1: एक्चुअली बोट्स मुझे ना एक चीज की याद दिलाते हैं, जो मेरी फेवरेट फिल्म भी है मसान। आई लव मसान। मसान के जो सॉन्ग है मुझे वो भी बहुत पसंद है। तो एवरी टाइम मैं बीच पे आती हूँ या ऐसे कश्ती देखती हूँ तो मुझे मसान की याद आती है। आई लव दैट फिल्म। आई लव विक्की कौशल आल्सो। और हम लोग थोड़ी सुबह सुबह की धूप ले रहे हैं।

0: मुझे फिशिंग करनी है, मतलब आई बीन प्लानिंग टू. आप लोगों को क्या ज्यादा पसंद है, माउंटेन्स या बीचेस? माउंटेन्स. मैं पहाड़ी हूँ, मुझे भी पहाड़ बहुत पसंद है, बट आई लव बीचेस. मैं ऐसा लॉस्ट हो जाती हूँ जब भी बीच आती हूँ, लाइक तेरा मेरा दोनों
1: का दिल बेसब्र. अंजलि को रील्स बनाने का बहुत शौक है, उनके सोशल मीडिया पर ढेर सारी रील्स है, तो वक्त है रील बनाने का. और देखिए अंजलि ने बीच किनारे अपना ये रंगीला मोमेंट शेयर किया.

0: आई लव वो जो बाल उड़ते ना ऐसे बीच पे. तो मुझे डांस करना भी बहुत पसंद है. इफ यू गाइस नो मी यू नो कि मुझे डांस करना बहुत पसंद है. अभी मैं ऐसा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ यहाँ पे बट ओके. किसी के पास जाके उनको नचवा देना चाहिए. सुबह सुबह इतनी एनर्जी है. इतना ही आज के लिए इतना ही मिलेगा. इतने पैसे में इतना ही मिलेगा. बाय.
1: तो ये थी अंजलि ततरानी जो सीरियल्स ओटीटी और फिल्मों की दुनिया तीनों का हिस्सा रह चुके हैं और जल्द ही अपने नए प्रोजेक्ट के साथ करेंगी वापसी. मुंबई से अनुपमा जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
2: क्या ये वीकेंड लेकर आएगा नाहर और रूही की जिंदगी में गुड न्यूज? क्या हो जाएंगी फाइनली यहाँ पर गलतफहमियां खत्म? क्या हो जाएगी सिचुएशन अंडर कंट्रोल? चलिए लेते हैं अपने सवालों के जवाब. लेकर चलते हैं आप सबको मन सुंदर के सेट पर. अब देखिए शो का नाम ही इतना प्यारा है कि हम तो चाहते हैं कि कहानी में भी हो सब कुछ सुंदर. लेकिन क्या करें आते हैं यहाँ पर भी नए नए ट्विस्ट. तो चलिए फिर पता कर कर आते हैं इस कहानी का अपडेट. लेकर चलते हैं आपको सीधा यहाँ.
3: दादी का नया ड्रामा.
4: चोरी की? आए हुए घर में 4 दिन नहीं हुए और बाप के पैसों पर हर पाना सीख गई.
3: रूही के बाद रुचिता बनी निशाना. रुचिता को दादी की धमकियां. दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में आज रूही के घर में आ गई है होम थिएटर की टीवी, जिसे देखकर सभी घर वाले हैरान हैं कि आखिर ये टीवी आया कहां से. इसी बीच नाहर को मैसेज भी आ जाता है कि उसके अकाउंट से 2 लाख रुपए कट चुके हैं, वो भी इस टीवी के लिए. बस फिर क्या, इसी बात को लेकर बवाल मचने लगता है. नाहर हैरान होता है कि आखिर ये टीवी ऑर्डर किसने की. इससे पहले कि रूही बिल देखकर सच का पता लगा पाती, दादी ने सारा इल्जाम मढ़ दिया रुचिता के ऊपर.
4: चोरी की? आए हुए घर में 4 दिन नहीं हुए और बाप के पैसों पर हर माना सीख गई.
5: अभी क्या दे रही हैं?
4: दादी, दादी मुझे तो चोर नहीं. हाँ, ना ये चोर है, ना ये झूठी है, ये तो पैदा हो गई, संस्कारी हो गई, सच बोलना चाहती है, ये तो अभी चोर नहीं है. दादी, तू देखिए ना, इस बिल पर ये नाम काटकर वाइट कलर से बनाकर इसमें दूसरा नाम लिखा गया है. हो सकता है कि किसी ने गलती से रुचिता का नाम लिख दिया हो.
6: सही है, गलती से नहीं. ये टीवी ही जहाँ से आया है उन्होंने जानबूझकर किसी और का नाम मिटा कर यहाँ रुचिता का नाम लिख दिया है ना, क्योंकि वो उसे फंसाना चाहते हैं. अरे उन्हें पता भी है रुचिता कौन है. अरे गलती से छप गया होगा किसी और का नाम, वाइट कलर लगा के सही नाम लिख दिया ना. जो ऑर्डर करेगा उसी का नाम लिख आएगा ना बिल पे.
3: अब रुचिता तो बार बार मना कर रही है, लेकिन दादी सिर्फ और सिर्फ रुचिता को ही गुनहगार बता रही है. इतना ही नहीं, उन्होंने तो गुस्से में आकर रुचिता के बाल भी खींचने शुरू कर दिए. अब नाहर ने आकर दादी को रोक लिया और अपना गुस्सा भी जता दिया. तो वहीं दूसरी ओर रूहान ऊपर से ये सारा नजारा देख रहा है, क्योंकि ये सारा किया धरा उसी का तो है. इसी बीच घर वाले ये फैसला लेते हैं कि टीवी को अब घर में ही रखा जाएगा. बस फिर क्या, जैसे ही घर वाले टीवी लेकर जाने लगे तभी रूहान आ गया और उसने सभी के सामने जिक्र किया कि ये टीवी उसके कमरे में लगाया जाए. बस फिर क्या, नाहर को शक हो गया लेकिन दादी ने सिचुएशन संभाल ली.
4: इतने बड़े टीवी को अगर तुम्हारे रूम में लगाया तो देखोगे ना तो तुम्हारी आंखों पर भी इस रुचिता की तरह चश्मा लग जाएगा.
5: वैसे तुम्हें अपने कमरे में टीवी क्यों चाहिए?
7: मुझे नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ.
3: अब रूहान ने मन मारकर अपनी बात बदल दी और खेलने चला गया. ऐसे में नाहर और उसका भाई भी टीवी लेकर चला गया और तभी रूही की सासू माँ को आ गया पंडित का कॉल, जिसने रूही और नाहर के लिए पूजा रखवाई है. ऐसे में रूही नाहर को मंदिर जाना होगा लेकिन रुचिता अपनी मम्मा को मना करती है। ऐसे में रूही अपनी बेटी को समझाती है और अपनी बेटी को अपनी मासी जूही के साथ रहने के लिए कहती है। अब जूही ने जिम्मेदारी ले तो ली है, लेकिन तभी जूही को भी घर से कॉल आ गया, जिसके चलते जूही को भी जाना पड़ रहा है। अब रूही की सासू माँ रुचिता को संभाल तो रही है, घर वाले भी अपने अपने काम के लिए निकल गए हैं और रुचिता अकेली रह गई है। ऐसे में दादी की नजर सिर्फ और सिर्फ रुचिता पर ही है, और तो और दादी ने रुचिता के करीब आकर अल्टीमेटम भी दे दिया, जिसके चलते रुचिता डरी हुई है। देखना होगा क्या रुचिता अपना ये डर किसी को बता पाएगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: वीकेंड यानी सैटरडे, सैटरडे यानी पार्टी, तभी तो सेट कर रहे हैं हम आज आपके लिए वीकेंड का फुल ऑन मोड। सास बहू और बेटिया के स्टूडियो में तो चल रही है नॉनस्टॉप पार्टी, और उसी तरह है हमारे पास आपके लिए नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट का सिलसिला। चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको हमारी इस अगली खबर की ओर, जिसमें है आपके लिए एंटरटेनमेंट का हर रंग, यानी यहाँ है एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, थ्रिल और ड्रामा, सब कुछ एक साथ। गेट सेट गो।
8: देखा तेनू पहली पहली बार वे।
3: गुरु और तेजस्वी की शादी पर हुआ गुरु और रूहानी का मिलन।
8: रब्बा मैनू की हो गया।
3: रूहानी ने किया घर वालों के सामने तेजस्वी का खुलासा। ने खुद सजाया गुरु का सेहरा। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में आज गुरु और तेजस्वी की शादी का मंडप तैयार है। तेजस्वी भी दुल्हन बनकर पहुंच गई है अपनी शादी रचाने के लिए और बेहद खुश है, लेकिन उसकी खुशियों में नजर लगती है वो भी रूहानी की, क्योंकि रूहानी लेकर पहुंच गई है वो पैसे जिसका इल्जाम रूहानी पर लगा था। ऐसे में गुरु उसे देखकर अपने गले लगा लेता है और दोनों को गले लगा देख तेजस्वी से रहा नहीं जाता।
9: मेरे होने वाले पति से छुटने का कोई मौका नहीं छोड़ती हूँ ना तो, और ये पैसे लो क्या कर दिया, मेरी शादी तोड़वाना चाहती हूँ। तुम खुद ही सोचो गुरु, कितने टाइम तक तुमने ये पैसे नहीं संभाल के रखा, एंड मौके में ये शादी में ये सारे पैसे लेकर कैसे आ गए।
3: रूहानी कोई भी काम अधूरा नहीं करती, वो तो सबूत लेकर सभी के सामने आई है। तभी तो उसने अपने मोबाइल में वो वीडियो चला दिया है जिसमें मामा चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच वहाँ पर पहुँच जाती है ललिता भी, जो अपने ही पति की बुराई करने लगती है। ऐसे में रूहानी ये देखकर हैरान है, क्योंकि उसे पता है कि मामा के साथ मामी मिली हुई है, और तो और तेजस्वी भी उनके साथ है। अब मामी तो रूहानी से दो कदम आगे निकली, जिसके चलते आज रूहानी को फिर से हार मिली है और घर वालों के सामने उसे हताश होना पड़ रहा है। ऐसे में उसने वापस जाने की तैयारी कर ही ली थी कि गुरु ने उसे रोक लिया, और तो और सभी के सामने वो सारे पैसे निकाल कर उड़ाने लगा।
10: आज भी आपके कदम झुकने नहीं देंगे मां, हमें आपके सौंपर मारिए और बताइए कि आपका बेटा बिकाऊ नहीं है, बाहू बनी है हम सुल्तान बन के। मजाक की मजाक चीज नहीं है।
3: अब गुरु तो तेजस्वी से शर्तों पर शादी कर रहा था, लेकिन आज गुरु को मौका मिला है न सिर्फ अपने पापा बल्कि तेजस्वी और उसके भाई पर भी अपना गुस्सा दिखाने का, और उसने वो दिखाया भी। लेकिन रूहानी को पता है कि गुरु के घर वाले अब भी शर्तों के चलते बंधे हुए हैं, इसलिए रूहानी गुरु का गुस्सा शांत करती है, उसे बिठाती है और उसके सिर पर सहरा खुद अपने हाथों से सजाती है। और उसका ये त्याग देख कर गुरु हैरान है, लेकिन इसी के चलते अब गुरु ने घर वालों के सामने एक शर्त और रख दी है।
10: बंटी भैया और जसवीर भाभी के बच्चे को इस खानदान के वारिस का दर्जा दिया जाए। तो मंडप पर जाएंगे।
3: अब रूहानी तो जस्टिन के साथ भी इंसाफ करवाना चाहती है, इसीलिए गुरु ने रूहानी का साथ देते हुए शर्त रखी है। खैर रूहानी तो चुपचाप वहाँ से चली गई और अब घर वालों के पास सिर्फ आधे घंटे की मोहलत है। वहीं दूसरी ओर रूहानी रोते हुए अपने घर पहुँच गई है और मायूस होकर अपना मंगलसूत्र लेकर मंदिर के पास भगवान से प्रार्थना कर रही है। अब देखना होगा क्या ऊपर वाला रूहानी की सुनेगा और क्या तेजस्वी का खुलासा सभी घर वालों के सामने होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: मन्नत आप भी लीजिए एक ब्रेक और विक्रांत को आई मीन जैसे अभिमन्यु को इस पार्टी में ले आइए। हो सकता है इस पार्टी में कुछ ऐसा हो जाए कि उनकी याददाश्त वापस आ जाए, हो सकता है, यू नेवर नो। देखिए उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, तो चलिए लेकर चलते हैं हम आपको मन्नत के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है इनकी कहानी में। आज कहानी का लेखक फिर से लेकर आया है कहानी में एक इंटरेस्टिंग ड्रामा जो लेकर आएगा हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इन टर्न लॉट्स ऑफ मनोरंजन। लेट्स चेक इट आउट।
3: कलर्स के सीरियल मन्नत में मन्नत और विक्रांत आ गए हैं फिर से एक साथ और मन्नत है विक्रांत से नाराज। तभी तो देखिए कैसे मुंह फुलाकर वो बैठी हुई है और उसका ये गुस्साना विक्रांत को समझ आ रहा है। तभी तो देखिए कैसे वो पहुंच गए हैं उसे मनाने के लिए, लेकिन मन्नत है कि मानने को तैयार ही नहीं। बस फिर क्या, उसे मनाने के लिए विक्रांत दूसरी लड़कियों के बारे में बातें करने लगता है। इतना ही नहीं, वो तो मन्नत को ये भी बताता है कि एक लड़की है जो उसके प्यार में पागल है और उससे शादी करना चाहती है। बस फिर क्या, ये सुनते के साथ ही मन्नत बौखला गई और पहुंच गई विक्रांत से लड़ने झगड़ने के लिए।
11: कौन है वो? मैंने बोला कौन है वो?
12: कोई है, कोई है। She's simple. Oh, she's so simple, yeah. And you know, understanding and sanskari. Just like, and you know what? I think मुझसे शादी भी करना चाहती है वो। I guess मैं उसे हाँ कह दूँगा।
11: Mr. Vikrant Saluja, आपकी ज़िंदगी में एक ही लड़की है, मैं मन्नत खन्ना। समझे आप? किसी और को देखने की कोशिश भी की ना तो ये आपकी नॉट सो सिंपल बेवकूफ और क्या बोला था, असंस्कारी लड़की मुंबई वाली आपको चीचा बना दे। समझे आप? चलन में, प्यारे में, आपके, समझे?
3: भाई बीवी को कैसे छेड़ना है विक्रांत को बखूबी आता है और कैसे मनाना है वो भी। तभी तो वो मन्नत के लिए लेकर आए हैं खास तोहफा जो विक्रांत की पसंद का है, जिसे पाकर मन्नत बहुत खुश है और अपने विक्रांत पर प्यार भी जता रही है। वैसे बता दे कि ये मन्नत का वो अतीत है जिसे वो याद कर रही है विक्रांत के दिए हुए कपड़ों को देखकर, क्योंकि आज मन्नत को मेजबानी जाना है अभिमन्यु से मिलने के लिए। ऐसे में आज मन्नत ने विक्रांत का दिया हुआ वही कपड़ा पहना है और वो खुश भी बहुत है, लेकिन धैर्य वो समझ गया है, इसीलिए वो मन्नत को रोकने की कोशिश करता है और तो और साथ में चलने के लिए भी कहता है कि तभी वहाँ पर आ जाते हैं रॉनी जो धैर्य को अपने साथ अस्पताल चलने को कहते हैं, लेकिन धैर्य मना कर देता है। बस फिर क्या, मन्नत पहुँच जाती है रॉनी से आशीर्वाद लेने।
13: तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था।
12: हाँ, आप बोलिए ना, क्या हुआ?
13: मैं एक्चुअली मेरे रूटीन चेकअप के लिए जाना था तो सोचा तुम भी चलोगे मेरे साथ।
12: अरे अंकल ऑफ कोर्स, आप जहाँ कहेंगे वहाँ चलूँगा, लेकिन जाने की क्या जरूरत? मैं फोन कर देता हूँ, अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, अभी घर पे आ जाएगा ना आपका चेकअप करने।
11: आशीर्वाद।
13: आशीर्वाद किसी
12: मेंटेनेंस के लिए आशीर्वाद।
14: जज्बानी की नींव मजबूतों की तभी तो सब अच्छा होता है।
3: भाई मन्नत को तो लगता है कि सिर्फ उसे ही पता है कि अभिमन्यु ही उसका विक्रांत है, पर उसे ये नहीं पता कि धैर्य ने मन्नत की सारी बातें सुन ली है और अब धैर्य ने भी रोनी को बातों में उलझा दिया है। और तो और उसने अपनी बंदूक भी तैयार कर ली है मेजबानी जाकर अभिमन्यु को अपने रास्ते से हटाने की।
15: 8 साल दिए हैं मैंने इस परिवार को मन्नत जी को अपना बनाने के लिए। वो आदमी जिससे मन्नत जी मिलने के लिए जा रही है वो वाकई विक्रांत है।
3: खैर धैर्य के तो इरादे सिर्फ और सिर्फ मन्नत को पाने के हैं और उसमें वो किसी की जान भी ले सकता है। वहीं दूसरी ओर इस बात से अनजान अभिमन्यु भी पहुंच गया है मेजबानी मन्नत से मिलने के लिए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि धैर्य भी पूरी तैयारी के साथ उसी मेजबानी में आया है। अब देखना होगा जब धैर्य और विक्रांत का आमना सामना होगा तो कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा।
2: जी हाँ वसुधा, हर ने तो सेट कर दिया है पार्टी का मूड, क्योंकि देखिए हम सब चाहते हैं कि आप भी लें वीकेंड पर एक ब्रेक और करें एक सैटरडे वाली पार्टी। वैसे वसुधा पार्टी टाइप्स लगती तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी तो एक ब्रेक डिजर्व करती है, क्योंकि हाल ही में इनकी कहानी में भी आया है ट्विस्ट का तूफान जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। तो क्या कुछ हो रहा है वसुधा और देवांश की कहानी में आज? क्या चंद्रिका जी फिर से लेकर आ रही है इस कहानी में कोई नया ड्रामा? लेट्स चेक इट आउट।
3: देव और वसुधा की हैप्पी फैमिली। खेल खेल में वसुधा ने किया प्यार का इजहार। मान गए रूठे हुए पिया। सीरियल वसुधा में आज वसुधा का पूरा परिवार एक साथ आ गया है और मना रहा है खुशियां, साथ ही सेलिब्रेट हो रही है वसुधा की पहली कामयाबी। असल में वसुधा ने देव को आई लव यू नहीं बोला है, ऐसे में सभी घर वालों के सामने वसुधा से प्यार का इजहार करवाने के लिए दिव्या ने खेल खेला, पूरे परिवार को साथ ले आई और सभी के सामने ऐलान कर दिया कि वसुधा की पहली कामयाबी पर पूरा परिवार मिलकर खेल खेलेगा, वो भी डम श्रास का। ऐसे में पूरा परिवार खुश हो गया है, तभी तो सभी मिलकर पार्टी कर रहे हैं, टेस्टी टेस्टी पकवान भी आए हैं और दमश्रास का खेल भी शुरू हो गया। और उसके लिए सभी ने अपनी अपनी पर्चियां भी उठा ली। वैसे इस खेल की शुरुआत की दादी ने और उन्होंने बुला लिया अपने बेटे प्रभात को और दे दिया उसे फिल्म का नाम। बस फिर क्या, नाम सुनते ही प्रभात की एक्टिंग शुरू हो गई और सभी घर वाले फिल्म का नाम गेस करने लगे।

0: जी दिव्या और पापा सर को ही पता चलता है कि देव और वसु बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वसु को वसु परेशान है कि देव उससे बात क्यों नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो दोनों प्लान करते हैं कि कुछ मे बी डम शरार्ट्स के थ्रू आई लव यू वसु से बुलवाएं। अभी उसी चीज़ की प्लानिंग चल रही है और उसी चीज़ का सीन शूट होने वाला है, तो लेट्स होप शायद वसु आई लव यू बोलते देव को।
1: श्रास के इस खेल में फिर बारी आई दादी की। उन्हें फिल्म का ऐसा नाम मिला कि उन्होंने बड़ी ही आसानी से वो फिल्म का नाम सभी घर वालों के सामने पेश कर दिया। पूरे परिवार को एक साथ ले आई और हाथ पकड़कर सभी के साथ झूमने लगी। ऐसे में पूरे परिवार ने मिलकर फिल्म के नाम को गैस कर लिया। खेल यूं ही चलता रहा। सारिका भी आकर सभी के सामने अपनी एक्टिंग करके दिखाने लगी और पूरे परिवार ने उसकी फिल्म को भी गेस कर लिया। फिर बारी आई देव की। बस फिर क्या, जैसे ही देव पहुंचे, उन्होंने अपनी फिल्म का नाम बताना शुरू किया और इस फिल्म का नाम को गेस किया है सिर्फ और सिर्फ वसुधा ने।
2: प्यारी माँ, लवली मदर। Flower. Someone.
0: आई थिंक बहुत दिनों से देव कोशिश कर रहा है और देव ने अपनी तरफ से आई लव यू बोल दिया है और हर तरीके से कोशिश की है कि वसु मान जाए। इंग्लिश सिखाने के बहाने कोशिश की है, ऑफिस जाते वक्त कोशिश की है, तो काफ़ी स्पेशल मोमेंट होगा और पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो गई और देव ने बोला है पूरी फैमिली के सामने बोलना होगा, तो देव के लिए और ज़्यादा अच्छा मोमेंट होगा।
1: आखिरकार देव की कोशिश रंग लाई और सभी के सामने वसुधा ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। ऐसे में देव चुपचाप पहुंच गया अपनी वसुधा के पास और देखिए कैसे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं, वो भी घर वालों से छिपते छिपाते, और घर वाले खेल खेलने में बिजी हैं। भाई इसी को तो कहते हैं असली मजा पूरे परिवार के साथ आता है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: हम तो कर रहे हैं यहाँ पर सैटरडे वाली पार्टी। वैसे पार्टी का माहौल है यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस परशुराम की कहानी में, और शालिनी कर रही हैं डांस, पुकार रही हैं अपने शिव को। क्या शिव उनकी पुकार सुन लेंगे और आ जाएंगे शालिनी के पास? क्या फाइनली इनकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएंगी दूर? वेल, हम होप तो यही कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ एंटरटेनिंग हो रहा है कहानी में आज।
1: नाचते हुए शालिनी को है शिव का इंतजार। शालिनी ने लगाई शिव को पुकार। बहरूपिया बना शिव हुआ गुमराह।

स्टार प्लस के सीरियल मिस्टर एंड मिसेस परशुराम में आज शालिनी ने कर लिया है साज श्रृंगार और कर रही है डांस, और इस डांस में दिख रही है शालिनी की मजबूरी।

0: वीकेंड पर भी आ जाता है ड्रामा, बताइए कब? वेल, जब आपने बना लिया हो फुल ऑन वीकेंड प्लान, लेकिन आपको वीकेंड पर भी करना पड़े वर्क फ्रॉम होम, ओ माय गॉड। उम्मीद करते हैं ऐसा ड्रामा किसी की जिंदगी में ना आए, लेकिन ये जो ड्रामा आया ना हमारी अगली कहानी में, ये तो है सुपर एंटरटेनिंग, क्योंकि ये तो बदल रहा है इस कहानी का मोड। अब आप मुझसे पूछेंगे कैसे, तो देख लीजिए ऐसे।
1: मुश्किल में फंसी वृंदा, मंडप में धनकोर ने मचाया हंगामा,
2: कभी कुछ नहीं आओगे तुम लोग, बद्दुआ देती हूँ मैं आपके बेटे की शादी, कभी नहीं होगी।
1: सहरा पहन नरेंद्र बन गया दूल्हा, जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में आज वृंदा बेहद खुश है, संजय से शादी होने वाली है, दुल्हन बनी हुई है, ऐसे में वृंदा की खुशी का ठिकाना नहीं है, और तो और दादी भी वृंदा की नजर उतार रही है। इतना ही नहीं, वो तो इमोशनल भी हो रही है, क्योंकि अब उनसे वृंदा दूर जो हो जाएगी।

0: वहीं दूसरी ओर शादी का मंडप तैयार है, मेहमान आने लगे हैं। धनकोर और नरेंद्र मिलकर सभी का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। अतुल को आ जाता है लड़के वालों का कॉल, जो शादी में आने से कर देते हैं मना। ऐसे में बस फिर क्या, अतुल सभी के सामने ड्रामा करना शुरू कर देता है और तो और ऐसे दिखाता है कि उसे जोरदार झटका भी लगा है। माहौल थोड़ा गर्मा जाता है कि तभी वहाँ पर खुश होती हुई धनकोर आती है और सभी का चेहरा देखकर हैरान होती है। और जैसे ही उन्हें पता चलता है तो उन्हें भी लगता है जोरदार झटका। बस फिर क्या, वो अतुल से कॉल लेकर लड़के वालों को कॉल लगाकर उनसे विनती करने लगती है। भाई मानना पड़ेगा, धनकोर तो ड्रामे में नंबर वन निकली। एक तो खुद की प्लानिंग है और खुद की ही प्लानिंग में उन्होंने लड़के वालों को ही दोषी करार दे दिया और तो और सभी बरातियों के सामने ऐसे ड्रामा किया जैसे वो अब मजबूर है। नरेंद्र अपनी माँ धनकोर को समझा रहा है, लेकिन धनकोर का ड्रामा रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में नरेंद्र फैसला लेता है कि अब वो ही दूल्हा बनेगा, क्योंकि शादी आज ही होगी, तभी वृंदा का भाग्य खुलेगा। ऐसे में बराती तो चले जाते हैं, लेकिन नरेंद्र दूल्हा बनकर मंडप में बैठ जाता है वृंदा से शादी रचाने के लिए। ऐसे में धनकोर बहुत खुश है, क्योंकि उसकी प्लानिंग रंग लाई और अब धनकोर को यकीन है कि वृंदा के चलते उसके बेटे की किस्मत खुल जाएगी। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसकी सारी बातें अतुल ने सुन ली है और देखी कैसे अतुल पहुंच गया है घबराते हुए वृंदा के कमरे में और रोते हुए उसने दादी और वृंदा को सच बता दिया।
1: तो मुझे पता चलता है कि ये सब एक प्लानिंग है जो धनकोर जी ने की थी और विपुल ने, नरेंद्र ने, सब ने मिलकर की थी कि नरेंद्र की शादी वृंदा से करवाएंगे। संजय जैसा कोई भी लड़का नहीं था, वो सिर्फ एक साजिश थी। तो पता चलता है तो वह मुझे भगा देती हैं घर से, तो भागते भागते मेरे पीछे गुंडे लग जाते हैं और वो मुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं और संजय आके मुझे बचा लेते हैं।
0: बेचारा अतुल अपनी बहन की किस्मत पर रो रहा है। उसने तो दादी और वृंदा को ये भी बता दिया कि धनकोर ने ये सारा खेल इसीलिए खेला है ताकि वो वृंदा की शादी नरेंद्र से करा सके। ऐसे में दादी की तबीयत भी खराब हो जाती है और अतुल वो फैसला लेता है अपनी बहन को भगाने का। बस फिर क्या, भाई की बात मानकर वृंदा घर से भाग तो जाती है, लेकिन बेचारी मोहल्ले के एक कोने में बैठकर अपनी किस्मत पर रो रही है। और तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। नरेंद्र के आदमी वृंदा को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं और वृंदा को जबरन उठाकर ले जाने की कोशिश करते हैं।

बेचारी वृंदा इन बदमाशों के आगे कमजोर पड़ गई है, लेकिन भगवान ने उसकी सुन ली है। तभी तो वहाँ पर संजय भी जाने अनजाने पहुँच गया है, और फोन लगाने के बहाने वो अपनी कार से बाहर तो आया, लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ गई उन बदमाशों पर जो वृंदा को ले जा रहे हैं। बस फिर क्या, संजय ने उन्हें रोकना चाहा, और जैसे ही गुंडों ने पलटकर संजय को देखा तो वो घबरा गए, क्योंकि ये तो वही दूल्हा है जिसकी शादी वृंदा से होने वाली है। इसलिए सारे बदमाश वहाँ से भाग जाते हैं, और वृंदा संजय को देखती रह जाती है।

0: हाँ, क्योंकि पहली मुलाकात है और ऊपर से हम फर्स्ट टाइम एक दूसरे को देख रहे हैं सामने, आंखों के सामने, तो बहुत ही ज्यादा मैजिकल मोमेंट था।
1: भाई मैजिकल मोमेंट के साथ साथ आ गया है मैजिकल ट्विस्ट भी, क्योंकि वृंदा से मिलकर संजय ने मंदिर के बारे में पूछा है, साथ ही उसे ये भी बताया है कि उसकी शादी होने वाली है। ये सुनकर वृंदा गलतफहमी की शिकार हो जाती है।
0: जी एक्चुअली हम सब एक्सपेक्ट तो यही कर रहे हैं कि संजय जी मुझसे शादी करेंगे, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है, पर हमें मां जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे।
1: अब वृंदा को तो लग रहा है कि मंदिर में जाकर संजय उससे शादी करेगा, इसीलिए वो संजय के साथ जाने के लिए तैयार हो गई है। देखना होगा जब संजय के सामने राज खुलेगा तो कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: हाई हील्स तो लगती हैं बहुत ही खूबसूरत और कॉम्प्लीमेंट करती हैं हर पार्टी आउटफिट को, होती हैं बहुत ही रॉकिंग। लेकिन हाई हील्स में जब करते हैं डांस और दुखते हैं पैर, तो डेफिनेटली हो जाता है हमारे पैरों के लिए शॉकिंग। कुछ ऐसी ही शॉकिंग है हमारे पास। ये सारी खबरें जिन्हें ले आए हैं हम एक साथ आपके लिए, तो चलिए फिर लेकर चलते हैं आपको एंटरटेनमेंट से भरपूर हमारे इस अगले सेगमेंट की ओर, जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
1: सास बहू और बेटियां लेकर हाजिर हैं आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। रॉकिंग तस्वीरें देख लीजिए नागिन 7 की ड्रैगन यानी कि कनिका मान की, जिनका बदल गया है अंदाज क्योंकि इन्होंने कर ली है एंट्री तेलुगु सिनेमा में। जल्दी इनकी पैन इंडिया फिल्म आने वाली है जिसका नाम है सुपर सुब्बू, और ये इनकी नई बिगनिंग है।

0: कभी कभी टेलीविजन की स्क्रीन पर नजर आने वाले कुछ किरदार सिर्फ कहानियों का हिस्सा नहीं रहते, वो इतने अपने लगने लगते हैं कि उनकी हर खुशी हर दर्द आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है।
1: देख लीजिए जी टीवी के सीरियल जगधात्री का ये प्रोमो, जहां पर जगधात्री केलवान की रस्म अदा करने के लिए पहुंच गई हैं अपने फैंस के घर, और फैंस बड़े ही प्यार से जगधात्री की आवभगत कर रहे हैं और उसे अपना प्यार तोहफे में दे रहे हैं।
2: ऐसा कहीं होता है क्या?
3: मैंने तो इसे कहा भी ना, तुम इसे जानती हो ना वो तुम्हें जानती है,
4: जगधात्री थोड़ी ना आएगी।
5: और कोई बेटी अपनी माँ की पुकार ठुकरा सकती है क्या? हाँ
3: नहीं, ये दोनों मेरे फैंस नहीं है, आज से मैं इनकी फैन हूँ। आप ये सोचिए ना, कितना प्यार होगा किसी के दिल में कि कोई टेलीविजन के किरदार की शादी पर उन्हें अपने घर बुलाकर केड़वन का इतना प्यार दे रहे हैं।
4: इस घर में रहती हैं दो अलग अलग प्रजातियां, जो माँ को लगे ठीक उस पर बच्चे बोले
1: मॉम प्लीज। जी टीवी पर जल्द ही आने वाला है नया कुकिंग रियलिटी शो माँ है ना, देख लीजिए इस शो का ये प्रोमो।
4: लगता है माँ का काम आसान, तो आओ किचन में देने असली इम्तिहान। वेलकम टू दी ओजी रसोई, यहाँ शॉर्टकट्स नहीं असली टेस्ट होगा। जेन जी के ट्रेंड्स,

0: कैसे करेंगे कुकिंग, ये जंजिस बेचारे
1: धनिया पुदीना में सब तो ना जाने बेचारे।
2: स्वागत है आप सबका एक ऐसे शो में जहाँ मुश्किलें होंगी अनेक।
3: आई एम गुल्लू फ्रॉम गोरेगांव गोगो।
4: अरे जंगली बड़े, आई डोंट नो हाउ टू कुक।
2: बट सॉल्यूशन फिर से देख लीजिए एरिका फर्नांडिस और कश्मीर महाजनी की ये BTS तस्वीरें जो इन्होंने कलर्स पर आने वाले सीरियल 108 बेस हॉस्पिटल उरी के शूटिंग के दौरान ली हैं।
5: खिलाड़ी खतरों के खिलाड़ी।
2: कलर्स पर हो गया है आगाज खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 का। सभी प्रतियोगियों के नाम सामने आ गए हैं, देख लीजिए ये प्रोमो।

0: इसी के साथ देख लीजिए कि कैसे गौरव खन्ना फराना भट्ट के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं।
1: लेकिन जब ये होती है ना तो पूरे 100 हो जाते हैं, 100। और इसीलिए खतरों के खिलाड़ी। एग्जैक्टली।
2: कभी अपनी ओपिनियन देने से नहीं डरती।
0: लॉकअप सीजन 2 में जजमेंटल डे के लिए पहुंच गई है कंगना रनौत, और पहुंचते ही उन्होंने न सिर्फ धीरज और राम की क्लास लगाई बल्कि उन्होंने हर्षद की तारीफ भी की है।
2: कभी अपनी ओपिनियन देने से नहीं डरती।
3: मुझे मिस किया आप लोगों ने।
2: आप भुलाने वाली चीज बिल्कुल नहीं हो।
3: वाह धीरज यार, तुमने तो कहा था तुम शाहरुख खान हो। तुमने तो शाहरुख खान का एस भी नहीं है यार। राम जी, अगर आपको लगता है कि यू आर टू बिग फॉर दिस जेल, तो फिर आप आए क्यों अपनी ये फूहड़पन दिखाने के लिए?
4: जब वो वक्त आएगा, आई विल ओन माय ट्रूथ एज वेल और बेटर देन एनीबॉडी हियर।
3: डोंट डिफेंड योरसेल्फ।
0: इसी के साथ बता दें कि खबरें आ रही हैं लॉकअप सीजन 2 से श्रिष्टा अय्यर एविक्ट हो चुकी हैं और जल्द ही इसका खुलासा होगा, क्योंकि तेजस्वी प्रकाश हर संडे उस प्रतियोगी से मुलाकात जो करेंगी। इसी के साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि जल्द ही इसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है और वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर एंट्री होगी शिल्पा शिंदे की।
5: तो फिर कैसा रहा हमारा ये वीकेंड स्पेशल? आज घर बैठे बैठे हमने भी करवा दी ना आपको सैटरडे वाली पार्टी। सेट हो गया है आपका पार्टी वाला मूड। अब मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए संडे स्पेशल एपिसोड। करेंगे आपके साथ फिर एक बार एंटरटेनमेंट की दुनिया की चर्चा। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: सोशल मीडिया की एयरहेड का डेडली एक्शन। ह्यूमनली डिस्पाई यूनिवर्स में आलिया का धमाका। मेंटल हेल्थ से लड़कर इंडस्ट्री में बनाई पहचान। आलिया के फिल्मी सफर की अनकही दास्तान। वंदे में है दम श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
8: Tune in how to a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, Tune in has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

0: फ्यूचर वॉर से निपटने वाला सुपर प्लान तैयार। चीन पाक से निपटेंगे मल्टी डोमेन मिशन के महारथी, बैटल ब्रिगेड के सुपर अवतार। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: पीएम मोदी ने राजस्थान को दी विकास की सौगात, जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का किया लोकार्पण, पचपदरा रिफाइनरी का भी किया शुभारंभ। भारत मंडपम में देश के सबसे बड़ा टॉय एक्सपो का शुभारंभ, वहीं 7 जुलाई तक चलेगा एक्सपो, बिजनेस के नए अवसरों को मिलेगा बड़ा मंच। पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह, पहले दिन करीब 20,000 भक्तों ने किए दर्शन। पूर्वी कांगो में भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से किया गया सम्मानित, 651 शांति सैनिकों को मिला संयुक्त राष्ट्र मेडल, शांति व्यवस्था में उनके योगदान की हुई सराहना। बीजिंग जू में स्टार पांडा मेंगलान ने मनाया 11वां जन्मदिन, तो वहीं जू प्रशासन ने खास केक काटकर जन्मदिन किया सेलिब्रेट, बड़ी संख्या में लोग इस जश्न के गवाह बने।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
4: पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन, पहले दिन करीब 20,000 भक्तों ने किए दर्शन। प्रशासन की व्यवस्था से खुश नजर आए श्रद्धालु, कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता की भी जमकर तारीफ की। श्रद्धालुओं में दिखा आध्यात्मिकता, उत्साह और राहत का अनूठा संगम, बाबा बर्फानी के जयकारों से माहौल में दिखी दिव्यता। अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए स्वास्थ्य विभाग की पहल, नेशनल हाईवे 44 पर फर्स्ट एड कैंप लगाए गए, एम्बुलेंस तैनात की गई। तीर्थयात्रा के दौरान ट्रैफिक की आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए नेशनल हाईवे 44 पर बनी डिगडूल पंथियाल टनल और मगरकोट रामसू वायाडक्ट को खोला गया। उदयपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं, देखते ही बन रहा है मंदिर परिसर में भक्तों का उत्साह। चांदी की भव्य रथ को दिया जा रहा है अंतिम रूप, कारीगर फाइनल टच देकर निखार रहे हैं रथ की भव्यता। मंदिर में जगन्नाथ महाप्रभु के भजनों की मधुर गूंज सुनाई दे रही है, श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर कर रहे हैं कीर्तन। रथ यात्रा को लेकर मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है, हर ओर उत्सव और श्रद्धा का माहौल नजर आ रहा। उदयपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, शहर भगवान जगन्नाथ के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार। उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज तड़के भव्य भस्म आरती हुई संपन्न, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन किए। भस्म आरती के दौरान पूरा गर्भगृह हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा, भक्तों ने आध्यात्मिक माहौल का अनुभव लिया। सावन से पहले महाकाल की भस्म आरती में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है, मंदिर प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने महाकाल की

0: अलौकिक भस्म आरती में हिस्सा लिया, इसे सनातन परंपरा का अद्भुत स्वरूप बताया। भोर में होने वाली महाकाल की भस्म आरती का दिव्य दृश्य देखकर भाव विभोर हुए श्रद्धालु, बाबा से मांगा कुशलता का आशीर्वाद। सावन के महीने से पहले कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर हरिद्वार में मंथन, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों से चर्चा की। कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधाओं पर हुई चर्चा, इस बार यात्रा में रोड बाइडिंग और एलिवेटेड ट्रैक का भी किया जाएगा इस्तेमाल, तो वहीं वाटर एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस भी होगी तैनात। दिल्ली सरकार ने ईवी सब्सिडी पोर्टल लॉन्च किया, पोर्टल के जरिए नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोग सब्सिडी के लिए कर पाएंगे आवेदन। 1 जुलाई 2026 के बाद नई ईवी खरीद पर मिलेगी सब्सिडी, 30 दिनों के अंदर करना होगा आवेदन। उत्तर प्रदेश में ईवी चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए सोलर आवर्स में 20% टैरिफ की छूट, सस्ती और ऊर्जा के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक छूट। पीएम मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया, 480 करोड़ रुपए की लागत से बना है अत्याधुनिक टर्मिनल। इस सौगात के साथ ही राजस्थान को मिला पहला 6 एयरब्रिज की सुविधा वाला एयरपोर्ट, इस हाईटेक टर्मिनल से जोधपुर की हवाई कनेक्टिविटी को मिलेगी नई उड़ान। यह आधुनिक टर्मिनल सालाना 20 लाख यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाओं देने में सक्षम है। इस सौगात से मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसरों को मिलेगा विस्तार। पीएम मोदी ने राज्य को करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, इन परियोजनाओं से राजस्थान को मिलेगी विकास की रफ्तार। पीएम मोदी राजस्थान के पचपदरा में पेट्रो रिफाइनरी का भी उद्घाटन कर चुके हैं, राजस्थान के बाद गुजरात जाएंगे पीएम। दिल्ली में 17वें टॉय बिजनेस फेस्टिवल B2B एक्सपो 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ, रंग बिरंगे और इनोवेटिव खिलौनों ने पहले दिन ही खींचा सभी का ध्यान। देश विदेश के खिलौना निर्माताओं का दिल्ली में संगम हुआ, बच्चों की सीख और मनोरंजन से जुड़े आधुनिक खिलौने बने आकर्षण का केंद्र। परंपरा और टेक्नोलॉजी का अनोखा मेल देखने को मिला टॉय बिजनेस एक्सपो 2026 में, स्मार्ट टॉयज की शानदार झलक देखने को मिली। मेक इन इंडिया खिलौनों को मिला बड़ा मंच, स्वदेशी खिलौनों की गुणवत्ता और रचनात्मकता ने खरीदारों को प्रभावित किया। टॉय बिजनेस इंटरनेशनल B2B एक्सपो 2026 में कारोबार के नए अवसर, खूबसूरत डिजाइन और सुरक्षित खिलौनों ने उद्योग जगत को दिखाई नई दिशा। जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का हुआ एयरपोर्ट जैसा लुक, सुविधाएं भी बढ़ी, नॉर्दर्न रेलवे के GM ने किया निरीक्षण, जल्द उद्घाटन करेंगे पीएम। यात्रियों की सुविधा के लिए लगाई गई है 10 लिफ्ट और 8 एस्केलेटर, पंजाब में भी कई रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना तहत किए जा रहे हैं तैयार। सुरक्षा को लेकर रेलवे की शानदार पहल देखने को मिली, चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्कूटर से गश्त करेंगे RPF के जवान। प्लेटफॉर्म पर निगरानी, मदद और त्वरित कार्रवाई होगी आसान, यात्रियों की सुरक्षा के लिए बेहतर ख्याल रखा जाएगा। नू में 12 जुलाई को होगा उपमंडल स्तरीय न्यायिक परिसर का शिलान्यास समारोह, तैयारी हुई पूरी, चीफ जस्टिस सूर्यकांत होंगे मुख्य अतिथि। मुंबई में झमाझम बारिश, मरीन ड्राइव आए सैलानियों के लिए खुशगवार मौसम। मुंबई में हुई बारिश ने बढ़ाई गेटवे ऑफ इंडिया पर पर्यटकों की संख्या, सुहावने मौसम का सैलानियों ने उठाया लुत्फ। मुंबई में बारिश ने कई इलाकों में जनजीवन को प्रभावित किया, किंग्स सर्कल से तेज बारिश के बीच भरा पानी। मुंबई में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति, वसई में सड़कों पर पानी भरने से लोगों का आवागमन प्रभावित हुआ। मुंबई के फोर्ट इलाके में सड़कों पर भरा पानी, लगातार बारिश से यातायात हुआ प्रभावित। मध्य प्रदेश के बालाघाट में भारी बारिश के कारण 16 ग्रामीण फंसे, प्रशासन और राहत दल ने गांव वालों का किया सफल रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के मंडला में लगातार बारिश के चलते बढ़ गया है नर्मदा नदी का जलस्तर। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कोहंगा के पास भारी बारिश से हुआ भूस्खलन। रामनगर उधमपुर रोड बंद, यातायात पूरी तरह प्रभावित। गुजरात के बनासकांठा में मॉनसून की पहली बारिश में ही जलमग्न हुआ धानेरा। कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। गुजरात के जूनागढ़ में तेज बारिश से सड़कों और निचले इलाकों में भरा पानी, कई इलाके प्रभावित हुए। गुजरात के जूनागढ़ में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 19 लोगों की जान बचाई गई। पानी के तेज बहाव से दूसरे ओर वाहनों में बैठे लोगों को रेस्क्यू किया गया। आनंद में मॉनसून ने धमाकेदार एंट्री ली। कुछ ही घंटों की बारिश में पानी पानी हुआ पूरा शहर। मेहसाणा जिले में भी जमकर बरसे बादल। एक ही रात में 8 से 9 इंच बारिश दर्ज की गई। निचले इलाकों में भरा पानी। राजकोट में भी मूसलाधार बारिश। शहर के कई इलाकों में जलभराव से लोग हुए परेशान। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश का असर देखने को मिला। नदी नालों के साथ डैम भी लबालब भरे। दिल्ली एनसीआर के आसमान में बादलों का डेरा। मौसम विभाग का येलो अलर्ट, झमाझम बारिश के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में कई और राज्यों में सक्रिय होगा मॉनसून। हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों में भी बारिश की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना। संवेदनशील इलाकों में लैंडस्लाइड, सावधान रहने की सलाह। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी। 6 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी। अगले 5 दिनों में गुजरात और गोवा में भारी बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बेल्जियम की ब्रसेल्स में ओमांग महोत्सव के दौरान घुड़सवारों ने ऐतिहासिक जॉस्टिंग का किया रोमांचक प्रदर्शन। 16वीं सदी की जंग का जीवंत प्रदर्शन। पारंपरिक कवच पहने कलाकारों ने भालों के साथ मध्यकालीन टूर्नामेंट का शानदार पुनर्निर्माण किया। यूनेस्को विरासत महोत्सव में 1200 कलाकार। 1 से 4 जुलाई तक चले इस ओमगांग फेस्टिवल में ऐतिहासिक परेड बनी आकर्षण का केंद्र। घुड़सवारी और परंपरा का अनोखा संगम। ब्रसेल्स की सड़कों पर निकली भव्य परेड में बच्चों से लेकर कई पीढ़ियों के परिवार शामिल हुए। रोमांच इतिहास और संस्कृति का उत्सव। 2019 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल ओमेगांग महोत्सव हुआ, तो वहीं यहां के लोगों में अपनी विरासत को जानने का जबरदस्त जुनून है। बीजिंग जू में स्टार पांडा मेंगलान ने मनाया अपना 11वां जन्मदिन। जू प्रशासन ने खास केक काटकर जन्मदिन किया सेलिब्रेट। 11वें बर्थडे पर मेंगलान के लिए हुई खास पार्टी। बीजिंग जू में बड़ी संख्या में लोग इस जश्न से गवाह बने। शीजी मेन के तीसरे राजकुमार के नाम से मशहूर है मेंगलान। अपनी अनोखी हरकतों और हुनर की वजह से फैंस का पसंदीदा पांडा है। पेड़ों पर चढ़ना, गड्ढे खोदना, पक्षियों को खाना खिलाना, यही है मेंगलान की खासियत। मेंगलान अपनी नटखट अदाओं की वजह से पूरे चाइना में फेमस हैं। मेंगलान को देखने के लिए चाइना के दूर दराज के हिस्सों से पर्यटक आते हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
1: खबरें तो
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: फ्यूचर वॉर से निपटने वाला सुपर प्लान तैयार, चीन पाक से निपटेंगे मल्टी डोमेन मिशन के महारथी, बैटल ब्रिगेड के सुपर अवतार, देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी धीरे पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्तर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में ये है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है। साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: TuneIn's got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
3: You know, the breaking news is, this started long before he even announced for president. It was
2: to live sports action.
4: To the near side corner, to wrap around, he scores!
2: your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
1: चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: सोशल मीडिया की एयरहेड का डेडली एक्शन। वुमनली डिस्पाई यूनिवर्स में आलिया का धमाका। मेंटल हेल्थ से लड़कर इंडस्ट्री में बनाई पहचान। आलिया के फिल्मी सफर की अनकही दास्तान। वंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: पीएम मोदी ने राजस्थान को दी विकास की सौगात। जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का किया लोकार्पण। पचपदरा रिफाइनरी का भी शुभारंभ। भारत मंडपम में देश के सबसे बड़े टॉय एक्सपो का शुभारंभ हुआ। 7 जुलाई तक चलेगा एक्सपो। बिजनेस के नए अवसरों को मिलेगा बड़ा मंच। पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह। पहले दिन करीब 20,000 भक्तों ने दर्शन किए। पूर्वी कांगो में भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से किया गया सम्मानित। 651 शांति सैनिकों को मिला संयुक्त राष्ट्र मेडल। शांति व्यवस्था में उनके योगदान की हुई सराहना। बीजिंग के जू में स्टार पांडा मेंगलान ने मनाया अपना 11वां जन्मदिन। जू प्रशासन ने खास केक काटकर जन्मदिन किया सेलिब्रेट। बड़ी संख्या में लोग इस जश्न के गवाह बने।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अध्यात्म और ईश्वर से जुड़ा हमारे खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। देखिए, ईश्वर की उपासना को लेकर बहुत सारे नियम संयम बताए गए हैं, उनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा का अलग विधान भी है। आज हम आपको महाबली हनुमान की उपासना से जुड़ी एक अनोखी बात बताने जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बजरंग बली की पूजा करना, उनकी प्रतिमा को स्पर्श करना महिलाओं के लिए वर्जित माना जाता है। ऐसे में आखिर महिलाएं कैसे पा सकती हैं बजरंग बली की असीम कृपा? किस विधि से उपासना करके महिलाएं बाल ब्रह्मचारी हनुमान को प्रसन्न कर सकती हैं? आइए हम आपको बताते हैं।

0: लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय जय जय कपि सूर पवन सुत हनुमान की जय। जिनकी उपासना से मिलता है बल बुद्धि और ज्ञान का वरदान, जो भक्तों का हर क्षण करते हैं कल्याण, जिनके पास है हर समस्या का समाधान, वही तो हैं पवन पुत्र महाबली हनुमान। अंजनी पुत्र केसरी नंदन प्रभु हनुमान भक्तों की हर समस्या का समाधान कर देते हैं। संकट मोचन हनुमान भक्तों के हर संकट हर लेते हैं। तभी तो कलयुग में प्रभु हनुमान को सबसे सिद्ध देव का दर्जा प्राप्त है। चलिए आपको बताते हैं कि कलयुग में हनुमान जी का पूजन क्यों सबसे फलकारी माना गया है।
1: कलयुग में सभी कहा जाता है कि देवी देवता धीरे धीरे लुप्त होते चले जाते हैं, परंतु दशवीर कहे गए हैं कलयुग में जो कि साक्षात फलित है, और हनुमान जी 7 कल्प तक जीवित रहने वाले देवताओं में से एक हैं। और जो व्यक्ति इनकी पूजन करे कलयुग में किसी प्रकार के कली के प्रभाव में नहीं रहता, और विशेष तौर पे चाहे कली के प्रभाव से शरीर में रोग हो या मन में मलिनता हो, धन आदि की कमी हो, हनुमान जी की कृपा से वो तुरंत दूर हो जाती है।
0: माना जाता है कि श्री राम भक्त हनुमान का पूजन करने से सभी देवी देवताओं के पूजन का फल मिल जाता है। कलयुग में हनुमान जी की पूजा अपने मनोरथों को पूर्ण करने का सबसे प्रभावकारी और सरलतम माध्यम है। धर्म ग्रंथ और पुराण कहते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी और महायोगी हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि उनकी किसी भी तरह की उपासना में वस्त्र से लेकर विचारों तक पावनता, ब्रह्मचर्य और इंद्रिय संयम को अपनाया जाए। माना जाता है कि किसी भी देवी देवता की पूजा का अधिकार महिलाओं और पुरुषों को एक समान होता है, लेकिन हनुमान जी ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा का अधिकार महिलाओं और पुरुषों को एक समान नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, वो महिलाओं को मां समान मानते हैं। कहा भी गया है, जननी समझा नहीं पर नारी, रामचरितमानस की एक प्रसिद्ध चौपाई है, जिसका अर्थ है कि जो पुरुष पराई स्त्री को अपनी माता के समान सम्मान की दृष्टि से देखता है, वो रघुवर के हृदय में स्थान

0: हम आज आपको बता रहे हैं कि हनुमान जी के पूजन में महिलाएं क्या करें और क्या ना करें। इसलिए हनुमान जी की पूजा में महिलाएं कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि हनुमान जी की पूजन में महिलाएं क्या कर सकती हैं। पहले ये जान लेते हैं। महिलाओं के लिए पूजा के नियम। महिलाएं दीप अर्पित कर सकती हैं, गूगल की धुनी रमा सकती हैं, हनुमान चालीसा संकट मोचन का पाठ कर सकती हैं, हनुमान अष्टक सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं, हनुमान जी को भोग प्रसाद अपने हाथों से बनाकर अर्पित कर सकती हैं, बाजार से भी भोग प्रसाद लाकर अर्पित कर सकती हैं।
1: हनुमान जी की पूजा करने के लिए माताओं को किसी प्रकार की है ना विशेष बाधा नहीं कही गई, परंतु भगवान हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में सौभाग्यशाली स्त्रियों को उनमें भगवान राम के भक्त के रूप में, सीतापति के भक्त के रूप में उनका पूजन करना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को हनुमान जी की हनुमान चालीसा आदि का पाठ करना चाहिए, इनकी मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी का स्वरूप बड़ा उग्र कहलाता है, और अगर किसी प्रकार की गलत भावना मन में रह जाए तो हनुमान जी विकट रूप में व्यक्ति को दंड देते हैं, ऐसा माना जाता है। पर स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा करने का विशेष विधान कहा गया, माता स्वरूप देखते हैं हर स्त्री को हनुमान जी, तो उनका आशीर्वाद हर व्यक्ति को प्राप्त होता है।
0: कई मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की पूजा आमतौर पर पुरुष करते हैं और महिलाएं हनुमान जी का पूजन वंदन नहीं करती हैं, क्योंकि हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है। हनुमान जी सभी महिलाओं को माँ समान मानते थे, उन्हें किसी भी महिला का अपने सामने शीश झुकना नहीं भाता, क्योंकि वो महिलाओं को नमन करते हैं। इसलिए हनुमान जी की पूजा में महिलाओं के लिए बंदिशें हैं। तो अब तक आपने ये जाना कि हनुमान जी की पूजा उपासना में महिलाएं क्या कर सकती हैं, लेकिन अब ये जानना भी जरूरी है कि हनुमान जी की पूजा में महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे हम आपको यही बताएंगे।
2: बाल ब्रह्मचारी हनुमान की उपासना के नियम तो आप सभी ने जान लिए। अब देखिए कि जब स्त्रियां महाबली की उपासना करें तो किन बातों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जरा सी चूक से महाबली की उपासना व्यर्थ हो सकती है। तो ध्यान से देखिए हनुमान जी के पूजन में महिलाएं किन सावधानियों का प्रयोग करें।

0: कलयुग में हनुमान जी की पूजा सबसे जल्दी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली मानी गई है। इसलिए उन्हें कलयुग का देव माना जाता है। मंगलवार को हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय करें तो कुछ ही समय में आपकी किस्मत बदल सकती है। क्योंकि संकट को हर लेते हैं संकट मोचन, दुखों को दूर करते हैं दुख भंजन। माना जाता है कि हनुमान जी शिव के 11वें रुद्रावतार हैं। ऐसे में विधि पूर्वक हनुमान जी की आराधना कई तरह के कष्टों से छुटकारा दिला सकती है। माना जाता है कि अगर आप मंगलवार को कुछ खास उपाय करें तो आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं वीर हनुमान, और सभी कष्टों का निवारण भी कर सकते हैं। लेकिन हनुमान जी की पूजा में महिलाओं के लिए कुछ बंदिशें हैं, महिलाओं के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो हनुमान जी की आराधना में नहीं करनी चाहिए।
1: पूजन शारीरिक उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसके लिए ब्रह्मचारी जो होते हैं विशेष नियत किए जाते हैं हनुमान मंदिर में, वही करते हैं। पर भगवान के निमित्त हनुमान चालीसा आदि का पाठ, सुंदर कांड आदि का पाठ करना बड़ा अच्छा कहा गया है। जो माताएं बहनें इसको करती हैं वो अपने जीवन में अपने पुत्र पौत्र परिवार की पतियों की रक्षा का उनसे आशीर्वाद लेती है।
0: यूं तो वीर बजरंगी की उपासना सभी कष्टों को दूर करने वाली मानी गई है, लेकिन अगर नियमों का पालन करते हुए बजरंग बली की उपासना की जाए तो हर मुसीबत दूर हो सकती है। मंगलवार की तिथि समर्पित है वीर हनुमान को।
2: मेरे राम जी मुक्ति के दाता है, मेरे राम जी।
0: और मंगलवार को कुछ विशेष प्रयोगों से प्रभु हनुमान की विशेष कृपा मिल सकती है। तो आइए अब आपको वो खास प्रयोग बताते हैं जिससे प्रसन्न होंगे संकट मोचन हनुमान।
1: किसी व्यक्ति को जीवन में रोग मुक्त होना हो तो वो हनुमान जी को विशेष तौर पे पूजन करके हनुमान जी को सीता राम जपते हुए तुलसी शहद में भिगो के चढ़ाए, ऐसा व्यक्ति तुरंत रोग मुक्त हो जाता है। हनुमान जी के निमित्त जो व्यक्ति बैठ के उनको चोला चढ़ाकर, उनके निमित्त दिया जलाकर बजरंग बाण का पाठ करता है, वो अपने शत्रुओं से मुक्ति पा लेता है, रोगों से मुक्ति पा लेता है।
0: मंगलवार के दिन राम मंदिर में जाएं, हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर दाहिने हाथ के अंगूठे से लें। ये सिंदूर सीता माता के श्री रूप के श्री चरणों में लगा दें। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करें, इससे हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कई मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि अगर आप हनुमान जी के साथ शिव साधना करते हैं तो भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। चलिए हम आपको ये बताते हैं, मंगलवार के दिन चोला चढ़ाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए चमेली के तेल का उपयोग करें। चमेली के तेल का एक दीपक भी हनुमान जी के सामने जलाएं। दीपक में भी चमेली के तेल का ही इस्तेमाल करें। एक साबुत पान का पत्ता लें, इस पर थोड़ा गुड़ और चना रखकर हनुमान जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उसी स्थान पर थोड़ी देर बैठ जाएं। तुलसी की माला से 5 माला मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। इस तरह आप प्रभु हनुमान के साथ भगवान शिव की कृपा पाने के पात्र बन जाएंगे, और शिव संग बजरंग की कृपा से आप तमाम कष्ट और पापों से मुक्त हो जाएंगे। श्री राम का नाम लेकर प्रभु हनुमान का गुणगान कीजिए। आपके संकटों को नष्ट कर देंगे संकट मोचन।
3: देखिए, माना जाता है कि कोई भी भक्त जो राम नाम का सुमिरन करता है उसके सारे कार्य महाबली हनुमान की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किस विधि से हनुमान जी को प्रसन्न किया जाए, जिससे ना सिर्फ आपके धन संबंधित बाधाओं का अंत हो सकता है बल्कि आपको मिलेगा बल, बुद्धि और ज्ञान का वरदान।

0: श्री हनुमान। ये नाम सुनते ही जहन में श्री राम भक्त की वो मूरत उभर आती है जो पल में भक्तों के हर संकट हर लेते हैं। श्री हनुमान का नाम सिर्फ एक नाम ही नहीं, उससे जुड़े हर एक अक्षर की अपनी एक महिमा है। प्रभु हनुमान के एक एक अक्षर में समाई है देवी और देवताओं की शक्ति। चलिए आपको बताते हैं हनुमान शब्द की महिमा।
1: जो वज्र के प्रहार भगवान के मुख पर पड़ा था तो उनका टेढ़ी हो गई ठोड़ी, अर्थात जबड़ा उनका टेढ़ा हो गया, तो हनु का अर्थ ही है तिरछी ठोड़ी वाला। भगवान की ठोड़ी पर निशान होने की, विशेष निशान होने की वजह से हनु और मान पड़ा। अहंकार से रहित लोगों के कल्याण करने वाले, ह से अहंकार रहित, नु से भगवान के अनुसरण करने वाला, मां से मातृ पितृ भक्त, और न से किसी भी प्रकार के इस नरक गामी जो व्यक्ति का संसार है, जिन दर्शन करके आशीर्वाद स्वरूप लोगों को नरक मुक्ति देने वाले हनुमान।
0: हा अक्षर ब्रह्मा का सूचक है, नु अक्षर अर्चना का घोतक है, मां लक्ष्मी का सूचक है, न अक्षर पराक्रम का घोतक है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि हनुमान शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं, परम शक्ति का प्रतीक है। इसका एक एक अक्षर एक शक्ति पुंज है। हनुमान को रुद्रावतार भी माना जाता है। महावीर हनुमान को सबसे शक्तिशाली देवता के रूप में पूजा जाता है। इस मृत्युलोक में वही एक देव हैं जिन्हें अमर और चिरंजीवी माना जाता है। माना जाता है कि प्रभु हनुमान असंभव कार्यों को चुटकी भर में हल कर देते हैं, इसलिए बजरंग बली को संकट मोचन नाम से भी पुकारा जाता है। हनुमान जी संकट मोचन कहलाते हैं। बात चाहे शत्रुओं से होने वाली परेशानी की हो, बल बुद्धि या फिर विद्या का वरदान पाने की चाहत हो, वीर हनुमान का ध्यान हर काम आसान कर सकता है। विशेष मनोकामनाओं के लिए प्रभु हनुमान का आशीर्वाद कैसे पाना है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं राम भक्त हनुमान की पूजा कैसे करनी है। सुबह स्नान करके हाथ में अक्षत, फूल, सुपारी, जल और दक्षिणा लेकर संकल्प करें। हनुमान जी की पंचोपचार पूजन करें। पूजा के बाद चमेली के तेल में इत्र सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करें। प्रभु के सामने घी का खंड दीपक जलाएं। कुशा या ऊन के आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। तीन बार आचमन कर स्वयं के ऊपर जल से छींटे दें। संभव हो तो लाल रंग का वस्त्र धारण करके पूजा करें। प्रभु हनुमान की कृपा के लिए उनकी पूजा उपासना कैसे करनी है, अब हम आपको मनोकामना पूर्ति के लिए प्रभु हनुमान की उपासना के तरीके बताने जा रहे हैं। अगर आपको धन की समस्या है तो हनुमान जी की पूजा आपको आर्थिक लाभ वरदान दे सकती है। कैसे, आइए जान लेते हैं।
1: किसी व्यक्ति को धन की इच्छा है तो हनुमान जी को लाल पुष्प या गुड़हल के पुष्पों का अर्पण करें। उनको चोला चढ़ाने के पश्चात में वहां पर चमेली के तेल का दिया जलाए और उनके निमित्त बैठ के रामचरितमानस में भगवान राम के जन्म का जो प्रसंग है वो उनको सुनाए, तो हनुमान जी अति प्रसन्न होकर मन की इच्छा पूर्ण करते हैं।
0: ओम अंजनी पुत्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। हनुमान जी को लड्डू का प्रसाद, अंजीर का फल चढ़ाएं, कनेर के पुष्पों की माला अर्पित करें, देसी घी में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, मंगलवार शनिवार को पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करें, हनुमान सहस्त्र नाम का पाठ करें, पंचमुखी दीपक में देसी घी से आरती करें। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी बल और बुद्धि के देवता हैं, इसलिए बजरंग बली की पूजा आपको विद्या और बुद्धि का भी वरदान दे सकती है। ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायु पुत्राय धीमाहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात। इस मंत्र का 1100 बार जाप करें। मंगलवार शनिवार के 13 व्रत करें। सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। चांदी के वर्क से हनुमान जी का श्रृंगार करें। हनुमान मंदिर में रामायण का पाठ करें। बर्फी अमरूद का फल चढ़ाकर भक्तों में बांटें। हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का अखंड दिया जलाएं। इस विधि विधान से आप हनुमान जी का ध्यान कीजिए। पवन पुत्र आपके हर कष्ट हर लेंगे और आपको देंगे सुखद जीवन का वरदान।
2: तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।
3: सोशल मीडिया की एयरहेड का डेडली एक्शन। वुमनली डिस्पाई यूनिवर्स में आलिया का धमाका। मेंटल हेल्थ से लड़कर इंडस्ट्री में बनाई पहचान। आलिया के फिल्मी सफर की अनकही दास्तान। वंदे में है दम श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: बाबा अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पूरे उत्साह से भक्तों का जत्था जम्मू में आना जारी है। शिव भक्तों का जत्था भक्ति भाव के साथ पवित्र गुफा की ओर रवाना हो रहा है और इस साल 57 दिनों तक ये पवित्र यात्रा जारी रहने वाली है। चलो बुलावा आया है, बाबा बर्फानी ने बुलाया है। हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से पूरी घाटी गूंज रही है। यात्रा के दौरान कई श्रद्धालु पैदल तो कई घोड़ों और पालकी पर सवार होकर यात्रा की तरफ बढ़ रहे हैं। दो मार्गों बालटाल और पहलगाम से ये यात्रा अभी जारी है और कई सुविधाओं की व्यवस्था यहाँ प्रशासन की ओर से की गई है। और अब देखते हैं अमरनाथ यात्रा को लेकर हमारे संवाददाता अशरफ वानी की खास रिपोर्ट।
1: अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। हजारों की तादाद में नुनवन पहलगाम बेस कैंप से भी और बालटाल बेस कैंप से भी अमरनाथ यात्रियों का दूसरा जत्था अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ रहा है। सुबह 4 बजे से यहां पर जो है अमरनाथ यात्रियों को अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ने की इजाजत मिल चुकी है। करीब 4 घंटे हो चुके हैं, अभी भी हजारों की तादाद में श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं। अब की बार नियम कानून जो है अमरनाथ यात्रा के वो काफी सख्त कर दिए गए हैं ताकि सुरक्षा जो है यात्रियों की बनी रहे, उनको कोई क्षति न पहुंचे। कई सारे श्रद्धालु सुबह से यहां पर लाइन में बैठे हुए हैं और ताकि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक हो के फिर वो अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ेंगे। तो कैसे रही अभी तक आपको, कैसे यात्रा? जो
2: सर यात्रा अभी शुरुआत करी है और यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। बाकी मैनेजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से चलता जा रहा है और हर सुविधा अभी तक तो बहुत अच्छी चल रही है।
3: मौसम भी बहुत बढ़िया है, अरेंजमेंट भी बढ़िया है, तो थोड़ा रश होने के कारण थोड़ा हो जाता है लेकिन अरेंजमेंट बढ़िया है।
1: है क्योंकि हर उत्साह जो है वो श्रद्धालुओं में। तारिक आपको दिखाएगा कि ये लाइन आप देख लीजिए, थोड़ा सा कितनी लंबी लाइन और कितनी भीड़ है श्रद्धालुओं की। सुबह 4 बजे से ये लाइन लगी हुई है और ये साफ दिखा रहा है कि किस तरह से उत्साह बना हुआ है श्रद्धालुओं में। देश भर के अलग अलग हिस्सों से ये श्रद्धालु साल भर इंतजार

0: इंतजार करते हैं कि उन्हें कब ये मौका मिलेगा कि वो अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ेंगे और बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। गुड न्यूज टुडे के लिए बालटाल से तारिक लोन के साथ अशरफ पर।
1: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
8: फ्यूचर वॉर से निपटने वाला सुपर प्लान तैयार। चीन पाक से निपटेंगे मल्टी डोमेन मिशन के महारथी। बैटल ब्रिगेड के सुपर अवतार देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे,
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
10: अमरनाथ यात्रा के बीच आया एक और गौरवशाली पल, पहलगाम के आसमान में लहराया तिरंगा, आस्था, दृढ़ता और वीरता का बना प्रतीक। पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह, पहले दिन करीब 20,000 भक्तों ने किए दर्शन। पूर्वी कांगो में भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से किया गया सम्मानित, 651 शांति सैनिकों को मिला संयुक्त राष्ट्र मेडल, शांति व्यवस्था में उनके योगदान की हुई सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को दी विकास की सौगात, जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का किया लोकार्पण, पचपदरा रिफाइनरी का भी किया शुभारंभ। भारत मंडपम में देश के सबसे बड़े टॉय एक्सपो का हुआ शुभारंभ, 7 जुलाई तक चलेगा ये एक्सपो, बिजनेस के नए अवसरों को मिलेगा बड़ा मंच। बीजिंग जू में स्टार पांडा मिंग लान ने मनाया 11वां जन्मदिन। जू प्रशासन ने खास केक काटकर जन्मदिन किया सेलिब्रेट। बड़ी संख्या में लोग इस

0: नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। जीएनटी पर हमारे स्पेशल शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आखिरकार वो घड़ी आ गई है, वो पल आ गया है जिसका सभी शिव भक्त को इंतजार था। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कश्मीर में चल रही पवित्र अमरनाथ धाम की तीर्थ यात्रा की खबर, और ताजा तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, और साथ ही हम आपको दिखाएंगे बाबा बर्फानी की महिमा। देखिए, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कश्मीर के पहलगाम और बालटाल बेस कैंप से तीर्थयात्रियों के जत्था आज तड़के ही पवित्र गुफा के लिए रवाना हो गया है। आप देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, और बालटाल के पास डोमेल में RFID चेक करके तीर्थयात्रियों को आगे भेजा जा रहा है, और इसी तरह पहलगाम यात्रा मार्ग पर भी तीर्थयात्री पवित्र गुफा के लिए रवाना होने लगे हैं। हालांकि आज तड़के बारिश के कारण यात्रा थोड़ी देर रोकी जरूर गई थी, लेकिन बारिश पर आस्था जो है वो भारी पड़ती हुई नजर आई, और पवित्र हिमलिंग के दर्शन के लिए तीर्थयात्री पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उत्साह चरम पर देखा जा रहा है। इस बीच जम्मू के बेस कैंप से श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था भी आज बालटाल और पहलगाम, जो कि दो रूट से अमरनाथ यात्रा के लिए, इन दोनों के लिए ही रवाना हो चुका है। और इसी बीच श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर यात्रा मार्ग पर हर दिन यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा का सुचारू संचालन किया जा सके। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अनुरोध भी किया है कि वो अपना एडवांस रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे, अपनी बारी की प्रतीक्षा करें और प्रशासन की ओर से बताई गई तिथि के अनुसार ही यात्रा करें। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज अमरनाथ जी यात्रा का शुभारंभ हो चुका है, जिसको लेकर के श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पहलगाम और बालटाल बेस कैंप से पवित्र अमरनाथ गुफा की तीर्थ यात्रा लगातार जारी है। हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर इस यात्रा में शामिल हैं। बालटाल रूट से करीब आधी दूर तय करने पर उन्होंने इस तीर्थ यात्रा की रिपोर्ट हमें भेजी है, और बताया है कि किस तरह से जोश और उत्साह से ये तीर्थयात्री लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
1: अमरनाथ यात्रा करते हुए मैं इस वक्त बरारी टॉप पहुंच गया हूं, और यहां आप देखिए कि लगातार लोग जयकारे लगा रहे हैं। बाबा बर्फानी के हर हर महादेव का यहाँ पर जयकारा लगाते हुए तमाम लोग जो हैं अलग अलग राज्यों से यहाँ पर जा रहे हैं और ऊपर की तरफ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बाबा बर्फानी की गुफा यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर अब बचता है, और आप तस्वीरों में देख रहे हैं सामने जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, इसी रास्ते से होते हुए सब लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग जो है इस रास्ते से होते हुए पूरी तरीके से पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंच रहे हैं, कोई पालकी से तो कोई खच्चर के जरिए, तो कोई पैदल ही ये पूरी यात्रा अपनी कंप्लीट कर रहा है, और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए सभी लोग यहां से ऊपर की तरफ पढ़ रहे हैं। आधी दूरी तय हो चुकी है। गुड न्यूज टुडे ने जैसा कि आपसे वादा किया था कि पवित्र अमरनाथ गुफा की हर एक तस्वीर ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएंगे, अब आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो बाबा बर्फानी के भक्त हैं वो यहां पर यात्रा करने के लिए निकले हुए हैं। पहला जत्था जो है वो लगभग आधी दूरी तक पहुंच चुका है, और अब पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए इनको कुछ ही समय बाकी है। अगले कुछ घंटे में ये लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंच जाएंगे। आप देखिए कि बहुत सारे लोग खच्चर से आ रहे हैं, तो कुछ पैदल और पालकी से भी यहां से आगे की ओर यात्रा कर रहे हैं। कठिन ऊंचाई है, लेकिन इस कठिन ऊंचाई के बीच जो तमाम श्रद्धालु हैं बाबा बर्फानी के, वो ऐसे ही ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हम वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सारे लोग जो हैं वो आगे की तरफ जा रहे हैं, और तस्वीरें यही बयां करती हैं कि लोगों के अंदर जिस तरीके की बाबा बर्फानी को लेकर के श्रद्धा है, उससे ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि इनको कोई रोक नहीं सकता। जोशो खरोश के साथ ये तमाम जो लोग हैं अलग अलग राज्यों से आकर के आज पहले जत्थे के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए लोग आगे पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, हर एक जगह जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान लगाए गए हैं, ऊंचाई वाले इलाकों में भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैनात हैं। तो दूसरी तरफ अलग अलग जगहों पर माउंटेन रेस्क्यू टीम को भी तैनात किया गया है, जिससे कि अगर किसी भी व्यक्ति को दिक्कत होती है तो वो यहां से उसको रेस्क्यू किया जा सके। और इस तरीके के पहाड़ी इलाकों में ऐसे ही लगातार यहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज और इसके साथ साथ बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले लोग यहां से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं।
0: तो पवित्र अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है और जीएनटी लगातार ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें भी दिखा रहा है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु पवित्र गुफा पहुंचने लगे हैं। तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं बाबा भोले के परम धाम श्री अमरनाथ की महिमा के बारे में। देखिए, अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव हिमलिंग स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। दुनिया में केवल अमरनाथ की गुफा को छोड़कर और कहीं भी ठोस बर्फ का शिवलिंग अपने आप प्राकृतिक तौर पर बनता ही नहीं है। अमरनाथ धाम के कण कण से जुड़ी है आस्था और चमत्कार की ऐसी सैकड़ों कहानियां।

0: अद्भुत है वो हिमलिंग, अलौकिक है बाबा बर्फानी। सनातनी आस्था की ये कथा है सदियों पुरानी, क्योंकि आरंभ ही है बाबा अमरनाथ की पावन यात्रा, जो शिव के सभी तीर्थों में महातीर्थ मानी गई है। अमरनाथ यात्रा करीब 2 महीने तक चलेगी। बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। बाबा अमरनाथ की यात्रा श्रावण पूर्णिमा तक चलेगी। यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन खत्म होगी। यात्रा की अवधि कुल 57 दिनों की होगी। इस दौरान लाखों शिव भक्त बाबा के दरबार में पहुंचते हैं और बाबा के चमत्कार के साक्षी बनते हैं। भक्तों की बस यही तमन्ना होती है कि उन्हें बस किसी तरह से बाबा बर्फानी के दर्शन हो जाएं। चलिए अब आपको अमरनाथ यात्रा के दोनों रूट के बारे में विस्तार से बताते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए 2 रूट हैं। पहला 41 किलोमीटर लंबा पारंपरिक पहलगाम रूट, दूसरा 14 किलोमीटर लंबा बालटाल रूट। पहलगाम रूट अमरनाथ यात्रा का पारंपरिक रूट है। यहाँ से पवित्र गुफा तक पहुँचने में आमतौर पर 3 से 4 दिन लगते हैं। इस मार्ग पर चढ़ाई धीरे धीरे होती है, जिससे श्रद्धालुओं का शरीर ऊंचाई और कम ऑक्सीजन वाले वातावरण के अनुकूल हो जाता है। साथ ही रास्ते में शेषनाग और पंचतरणी के दर्शन भी होते हैं। वहीं बालटाल रूट अपेक्षाकृत छोटा रास्ता है। इस मार्ग से श्रद्धालु कम समय में यात्रा पूरी कर सकते हैं। इसकी चढ़ाई काफी सीधी, खड़ी और कठिन मानी जाती है। यह रूट बुजुर्ग बच्चों के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भोले भंडारी बर्फ के शिवलिंग रूप में कब से विराज रहे हैं और भक्त उनके दर्शन करने के लिए कब से वहां पहुंच रहे हैं, इसका कोई लिखित इतिहास नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि किसी वजह से ये गुफा स्मृतियों से लुप्त हो गई थी और करीब 150 साल पहले इसे फिर से खोजा गया।
1: धार्मिक दृष्टि से ये गुफा युगों पुरानी है, वहीं शिव पार्वती कथा से भी जुड़ी मानी जाती है। ऐतिहासिक दृष्टि से इसका प्रमाण जो है वो मध्यकालीन से अधिक स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से यह हिमालय भूगर्भीय संरचना का हिस्सा है, जो बहुत ज्यादा प्राचीन है। ये गुफा जो है लगभग 3,800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और ये जो ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई पर ये जो गुफा स्थित है, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, साथ ही यात्रा को शारीरिक रूप से कठिन भी बनाती है, लेकिन अनुभव को और भी विशेष बना देती है।
0: इस यात्रा का हर पड़ाव तीर्थ के महत्व की कहानी खुद बयां करता है। हर साल प्राकृतिक तौर पर बनने वाले शिवलिंग के दर्शन करने के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु कश्मीर पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड की ओर से कई तरह की तैयारियां की जाती हैं। श्रद्धालुओं की सेवा करने वाले सेवादार भी जगह जगह लंगर का आयोजन करते हैं। बर्फ हटाने से लेकर अलग अलग पड़ाव पर श्रद्धालुओं के लिए रहने का इंतजाम किया जाता है। फिर भी चुनौतियां खत्म नहीं होती। शिव के इस दरबार में बम बम भोले के जयकारे के साथ आंखें जब भगवान शिव के हिमलिंग के साक्षी बनती हैं, तो हृदय भक्ति के भावों से भर उठता है।
2: अमरनाथ बाबा की जय, बर्फानी बाबा की जय।
1: रास्ते में भगवान शिव ने अपने साथ जितने भी उनके साथ प्रतीक चल रहे थे, उन सभी का त्याग किया। सबसे पहले उन्होंने नंदी को पहलगाम में छोड़ा, वहीं चंद्रमा को चंदनबाड़ी के पास छोड़ा, नाग को शेषनाग क्षेत्र में और गणेश जी को महागुणस के पास छोड़ा। इसके बाद वो माता पार्वती के साथ गुफा में पहुंचे। एक प्रसिद्ध मान्यता ये भी है कि गुफा में कथा सुनते समय 2 कबूतर इस रहस्य को सुन लेते हैं और वो अमर हो जाते हैं। आज भी अमरनाथ गुफा में कबूतरों का दिखना श्रद्धालुओं को इस कथा को जोड़ कर देते हैं।
0: अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। अमरनाथ में महादेव के दुर्लभ और प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन होते हैं। जब महादेव माँ पार्वती को मोक्ष की कथा सुनाने ले जा रहे थे, तो उन्होंने छोटे छोटे अनगिनत नागों को अनंत नाग में छोड़ा। अपने माथे के चंदन को महादेव ने चंदन बाड़ी में उतारा, बाकी दूसरे पिस्सुओं को पिस्सू टॉप पर छोड़ा, अपने गले के शेषनाग को शेषनाग नाम के स्थान पर छोड़ा था। ये तमाम स्थल आज भी अमरनाथ यात्रा का हिस्सा हैं।
1: जब भगवान ने माता पार्वती को अमरता का रहस्य सुनाने के लिए गुफा चुनी थी तो उन्होंने सभी प्रतीकों का त्याग किया था। इनमें चंद्रमा भी शामिल थे जिसे उन्होंने यात्रा के दौरान छोड़ दिया था, और कथाओं के अनुसार चंदन बाड़ी या आगे के मार्ग में इसका त्याग हुआ था। इसलिए शिव के मस्तक पर स्थित चंद्रमा और अमरनाथ यात्रा दोनों को जोड़कर देखा जाता है।
0: भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा ये धाम शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक है। जहां तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन जो पहुंच जाता है उसके जीवन में फिर किसी भी तीर्थ की तमन्ना नहीं रह जाती। बाबा बर्फानी तक पहुंचने के लिए दुर्गम रास्तों से गुजरना होता है, भक्तों को कड़ी परीक्षा देनी होती है, लेकिन रास्ता चाहे कितना भी लंबा हो, राह में मुश्किलें कितनी भी आ जाए, भोले के भक्तों के हौसले कोई डिगा नहीं सकता।
3: कहते हैं कि जीवन की हर बाधा हर मुश्किल बाबा अमरनाथ के दर्शन से दूर हो जाती है और भक्तों को मनोकामनाओं की पूर्ति का महावरदान मिलता है। देखिए, विज्ञान के लिए अमरनाथ की पवित्र गुफा में बनने वाला शिवलिंग बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा रहस्य है, तो वहीं श्रद्धालुओं के लिए ये आस्था का सबसे बड़ा केंद्र भी है। तो आइए जानते हैं क्या है वो रहस्य जो इस पवित्र गुफा से जुड़ा हुआ है।

0: आस्था का सबसे अद्भुत अलौकिक सफर माना जाता है कि पूरी दुनिया में ऐसा अजूबा केवल यहीं होता है। पूरी धरती पर केवल यहीं पर भगवान शंकर हिमलिंग में दर्शन देते हैं। इसे आप कैलाशपति का वादी में स्थापित हिमलिंग या हिमधाम कह सकते हैं, जो सिर्फ कुछ समय के लिए ही अपने आप प्रकट होता है और फिर अपने आप ही इसका लोप हो जाता है।
1: अमरनाथ गुफा में दिखाई देने वाला बर्फानी बाबा कोई मानव निर्मित मूर्ति नहीं है, बल्कि ये एक नेचुरल रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग माना जाता है। और ये कैसे बनता है? ये जो जितना भी प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा नेचुरल प्रोसेस होता है। गुफा के बाहर बहुत ठंड होती है और गुफा के भीतर ऊपर से जो पानी टपकता है, जो बर्फ पिघलती है, उसी की सर्दी तापमान के कारण ये पानी जो है जमकर बर्फ में बदल जाता है और धीरे धीरे उसी जगह बर्फ का एक शिवलिंग जैसा आकार बन जाता है।
0: मान्यता है कि महर्षि भगु ने अमरनाथ गुफा की पहली यात्रा की थी। अमरनाथ की गुफा में ही भगवान शिव हिमलिंग के स्वरूप में दर्शन क्यों देते हैं, इसका रहस्य कोई नहीं जानता। लेकिन जितना मुश्किल बाबा बर्फानी तक पहुंचने का सफर है, उससे ज्यादा इस यात्रा की हैरान कर देने वाली पगडंडियां। जिस पहलगाम से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, वहीं से बाबा बर्फानी से जुड़ी कहानियों का अचंभित कर देने वाला संसार शुरू हो जाता है।
1: अमरनाथ गुफा की यात्रा हिंदू धर्म की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक मानी जाती है। ये यात्रा जो है भगवान शिव की आराधना और आध्यात्मिक साधना से जुड़ी है। प्राकृतिक रूप से स्वयंभू बर्फ का शिवलिंग बनता है और यहाँ पर धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान शिव ने इसी गुफा में माता पार्वती को अमर तप का रहस्य सुनाया था, इसीलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा।
0: अमरनाथ की गुफा का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ हिम शिवलिंग का निर्माण होता है, बल्कि इस गुफा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का मंत्र सुनाया था। कहा जाता है कि यही वो तीर्थ है जहाँ भगवान शिव आज भी साक्षात विराजमान है। कथा है कि भगवान शिव माता पार्वती को अमृत की कहानी सुनाने के लिए इसी गुफा में लेकर आए थे। मान्यता है कि कहानी सुनने के दौरान माता पार्वती को नींद आ गई, लेकिन वहां मौजूद कबूतरों का एक जोड़ा भगवान शिव के कहानी सुनाने के दौरान लगातार गुटर गुटर की आवाज निकालता रहा, जिससे भगवान शिव को लगा कि पार्वती जी कहानी सुन रही है। कथा सुन लेने के चलते इन कबूतरों को भी अमृत प्राप्त हुआ और आज भी अमरनाथ गुफा के दर्शन करते वक्त कबूतर दिख जाते हैं। ये आश्चर्य ही है जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है और जहाँ दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है, वहाँ ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहाँ कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करना माना जाता है।
1: कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि सृष्टि में जीव जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद अमरत्व का क्या रहस्य है? तब भगवान शिव ने उन्हें अमरता का रहस्य बताने का निर्णय लिया, लेकिन ये ज्ञान सभी के लिए नहीं था, इसीलिए उन्होंने एक एकांत स्थान चुना, वो थी अमरनाथ गुफा।
0: माना जाता है कि इस दिव्य गुफा में हिमलिंग का बनना किसी चमत्कार से कम नहीं। वैसे तो इस पूरी गुफा में जगह जगह से पानी टपकता रहता है, लेकिन गुफा के भीतरी हिस्से के एक कोने में हर साल उसी स्थान पर हिमलिंग का बनना विज्ञान को भी चुनौती देता है। वहां पानी की बूंदें लगातार गिरती रहती हैं, जो धीरे धीरे हिमलिंग में बदलता जाता है। ये बर्फ आम बर्फ से बिल्कुल अलग होती है जो गुफा के आसपास मिलती है। हिमलिंग की बर्फ बहुत ठोस होती है जो लंबे समय तक टिकी रहती है। गुफा में बनने वाले हिमलिंग का एक संबंध चंद्रमा से भी माना जाता है। पूर्णिमा में अपने पूर्ण आकार में आ जाने वाला चांद अमावस्या तक गायब हो जाता है। गुफा में बनने वाला हिमलिंग भी चांद के साथ ही बढ़ता जाता है और पूर्णिमा को अपने वृहद आकार में होता है। उसके बाद चांद के आकार के साथ साथ हिमलिंग भी पिघलता जाता है और अमावस्या आते आते ये अंतर्धान हो जाता है। बाबा बर्फानी को लेकर मान्यताओं की कहानियां अनंत हैं। ऐसी मान्यता है कि अमरनाथ गुफा के अंदर हिम शिवलिंग के दर्शन करने भर से मनुष्य को पवित्र तीर्थों के पुण्य के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक काल से ही शिव भक्त भगवान शंकर के इस स्वरूप के दर्शन करने के लिए रास्ते की सभी पीड़ाएं सहते हैं और भगवान शिव के अनंत अलौकिक हिमलिंग के दर्शन करके चित आनंद की प्राप्ति करते हैं।
2: तो चलिए इसी के साथ पवित्र अमरनाथ गुफा से यानी ग्राउंड जीरो से जीएनटी आपको लगातार तस्वीरें जो है वो दिखाता रहेगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।
3: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away.
4: You're listening to CNBC.
5: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
6: Keep it on smooth jazz.
7: This is Roots Reggae
8: exclusively on TuneIn.
9: This is classic hip hop
10: exclusively on TuneIn.
3: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn, and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
11: संभव मुझ में ही है
12: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
2: टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती और इस नन्ही बच्ची ने इसे सच साबित कर दिखाया। सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ है लेकिन चेहरे पर मुस्कान बरकरार है। रस्सी पर संतुलन बनाते हुए वो मुश्किल करतब दिखाती है और लोगों का दिल जीत लेती है। परिवार का सहारा बनने के लिए वो मेहनत कर रही है। ये वीडियो सिर्फ उसके हुनर की नहीं बल्कि उसके संघर्ष और हौसले की कहानी भी बयां करता है। कम उम्र में बड़ा कारनामा करने वाले सोलापुर के 12 साल के छात्र अब्दुल्ला इमरान मंगलगिरी की हर तरफ चर्चा हो रही है। उसने महज 9000 रुपए की लागत से ऐसी सोलर साइकिल तैयार की है जो सौर ऊर्जा और बैटरी दोनों से चलती है। साइकिल में डिजिटल स्पीडोमीटर, जीपीएस ट्रैकिंग और वॉइस कंट्रोल जैसी आधुनिक सुविधाएं भी दी गई हैं। छात्र का यह अनोखा आविष्कार लोगों को खूब प्रेरित कर रहा है। दोस्ती और भरोसे की मिसाल बन चुके ऑफिसर ब्रायन सैंटोस और उनके K9 पार्टनर कायरा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साल 2018 से दोनों साथ मिलकर ड्यूटी निभा रहे हैं। वीडियो में ऑफिसर जो भी मूवमेंट करते हैं, कायरा भी बिल्कुल उसी अंदाज में उनका साथ देती नजर आती है। दोनों के बीच की गजब की समझ और तालमेल देखकर लोग उनके इस अनोखी जोड़ी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। हौसला अगर बुलंद हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। इसका शानदार उदाहरण एक जंगली बकरी ने पेश किया है जिसने तेज बहाव वाली उफनती रावी नदी को बेखौफ होकर पार कर लिया। नदी की रफ्तार और खतरनाक हालात के बावजूद बकरी का संतुलन देखने लायक था। ये रोमांचक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग उसकी बहादुरी और आत्मविश्वास की जमकर सराहना कर रहे हैं। छोटी सी उम्र और बड़ा टैलेंट, इस बच्ची का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर छाया है। सुरमेदानी गाने पर उसने शानदार एक्सप्रेशन और बेहतरीन डांस मूव से हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। हर स्टेप में आत्मविश्वास और चेहरे के भाव इतने शानदार हैं कि उसकी ट्रेनर भी हैरान रह गई। लोग बच्ची की मासूमियत, आत्मविश्वास और टैलेंट की खूब तारीफ कर रहे हैं और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: सोशल मीडिया की एयरहेड का डेडली एक्शन। ह्यूमनली डिस्पाई यूनिवर्स में आलिया का धमाका। मेंटल हेल्थ से लड़कर इंडस्ट्री में बनाई पहचान। आलिया के फिल्मी सफर की अनकही दास्तान। वंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh, yeah, you make my dreams come. Steely Dan, go back, Jack, do it again. Loggins and Messina, even though we ain't got money. And much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: फ्यूचर वॉर से निपटने वाला सुपर प्लान तैयार, चीन पाक से निपटेंगे मल्टी डोमेन मिशन के महारथी, बैटल ब्रिगेड के सुपर अवतार, देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: अमरनाथ यात्रा के बीच आया एक और गौरवशाली पल, पहलगाम में श्रद्धालु की मौजूदगी में फहराया गया तिरंगा, आस्था दृढ़ता और वीरता का बना प्रतीक। पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह, पहले दिन करीब 20,000 भक्तों ने किए दर्शन। पूर्वी कांगो में भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से किया गया सम्मानित, 651 शांति सैनिकों को मिला संयुक्त राष्ट्र मेडल, शांति व्यवस्था में योगदान को सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को दी विकास की सौगात, जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का किया लोकार्पण, पचपदरा रिफाइनरी का भी किया शुभारंभ। भारत मंडपम में देश के सबसे बड़े टॉय एक्सपो का हुआ शुभारंभ, 7 जुलाई तक चलेगा यह एक्सपो, बिजनेस के नए अवसरों को मिलेगा बड़ा मंच। बीजिंग जू में स्टार पांडा मिंग लान ने मनाया 11वां जन्मदिन, जू प्रशासन ने खास केक काटकर जन्मदिन किया सेलिब्रेट, बड़ी संख्या में लोग इस जश्न के गवाह बने।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन, पहले दिन करीब 20,000 भक्तों ने किए दर्शन। प्रशासन की व्यवस्था से खुश नजर आए श्रद्धालु, कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता की भी जमकर की तारीफ। श्रद्धालुओं में दिखा आध्यात्मिकता, उत्साह और राहत का अनूठा संगम, बाबा बर्फानी के जयकारों ने माहौल में घोली दिव्यता। अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए स्वास्थ्य विभाग की पहल, NH-44 पर फर्स्ट एड कैंप लगाई और एम्बुलेंस तैनात की गई। तीर्थयात्रा के दौरान ट्रैफिक की आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए NH-44 पे बनी डिगडूल पंथियाल टनल और मगरकोट रामसू वायाडक्ट को खोला गया। उदयपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है, देखते ही देखते बन गया मंदिर परिसर में भक्तों का उत्साह। चांदी के भव्य रथ को दिया जा रहा है अंतिम रूप, कारीगर फाइनल टच देकर निखार रहे हैं रथ की भव्यता। मंदिर में जगन्नाथ महाप्रभु के भजनों की मधुर गूंज दे रही है सुनाई, श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर कर रहे हैं भजन कीर्तन। रथ यात्रा को लेकर मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से खास तौर पर सजाया जा रहा है, हर ओर उत्सव और श्रद्धा का माहौल नजर आ रहा है। उदयपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, शहर भगवान जगन्नाथ के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज तड़के भव्य भस्म आरती हुई संपन्न, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन किए। इस महाआरती के दौरान पूरा गर्भगृह हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। भक्तों ने आध्यात्मिक माहौल का अनुभव किया। सावन से पहले महाकाल की भस्म आरती में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। मंदिर प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की है। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने महाकाल की अलौकिक भस्म आरती में भाग लिया। इसे सनातन परंपरा का अद्भुत स्वरूप बताया। भोर में होने वाली महाकाल की भस्म आरती का दिव्य दृश्य देख भाव विभोर हुए श्रद्धालु। बाबा से मांगा कुशल तक आशीर्वाद। सावन महीने से पहले कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर हरिद्वार में मंथन। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों से की चर्चा। कांवड़ियों की सुरक्षा सुविधाओं पर हुई चर्चा। इस बार यात्रा में रोड बाइंडिंग और एलिवेटेड ट्रैक का भी किया जाएगा इस्तेमाल। वाटर एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस भी होगी तैनात। दिल्ली सरकार ने ईवी सब्सिडी पोर्टल किया लॉन्च। पोर्टल के जरिए नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोग सब्सिडी के लिए कर पाएंगे आवेदन। 1 जुलाई 2026 के बाद नई ईवी खरीद पर मिलेगी सब्सिडी। 30 दिन के अंदर करना होगा इसके लिए आवेदन। उत्तर प्रदेश में ईवी चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए सोलर आवर्स में 20% टैरिफ छूट। सस्ती सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सुबह 9 से शाम 4 बजे तक छूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का किया उद्घाटन। 480 करोड़ रुपए की लागत से बना है अत्याधुनिक टर्मिनल। इस सौगात के साथ ही राजस्थान को मिला पहला 6 एरोब्रिज की सुविधा वाला एयरपोर्ट। इस हाईटेक टर्मिनल से जोधपुर की हवाई कनेक्टिविटी को मिलेगी नई उड़ान। यह आधुनिक टर्मिनल सालाना 20 लाख यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देने में है सक्षम। इस सौगात में मारवाड़ में पर्यटन व्यापार और रोजगार के नए अवसरों को मिलेगा विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा विकास परियोजनाओं की दी सौगात। इन परियोजनाओं से राजस्थान को मिलेगी विकास की रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के पचपदरा में पेट्रो रिफाइनरी का भी उन्होंने किया उद्घाटन। राजस्थान के बाद गुजरात जाएंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली में 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो 2026 अभा विश्वभारंभ। रंग बिरंगे और इनोवेटिव खिलौनों ने पहले दिन ही खींचा सभी का ध्यान। देश विदेश के खिलौना निर्माताओं का दिल्ली में संगम। बच्चों की सीख और मनोरंजन से जुड़े आधुनिक खिलौने बने आकर्षण का केंद्र। परंपरा और टेक्नोलॉजी का अनोखा मेल। टॉय बिज एक्सपो 2026 में स्मार्ट टॉयज की शानदार झलक देखने को मिली। मेक इन इंडिया खिलौनों को मिला बड़ा मंच। स्वदेशी खिलौनों की गुणवत्ता और रचनात्मकता ने खरीदारों को किया प्रभावित। टॉय बेस इंटरनेशनल B2B एक्सपो 2026 में कारोबार के नए अवसर। खूबसूरत डिजाइन और सुरक्षित खिलौनों ने उद्योग जगत को दिखाई नई दिशा। जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का हुआ एयरपोर्ट जैसा लुक। सुविधाएं भी बढ़ी। नॉर्दर्न रेलवे की GM ने किया इसका निरीक्षण। जल्द उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। यात्रियों की सुविधा के लिए लगाई गई है 10 लिफ्टें और 8 एक्सकलरेटर। पंजाब में भी कई रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किए जा रहे हैं तैयार। सुरक्षा को लेकर रेलवे की शानदार पहल। चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्कूटर से गश्त करेंगे RPF के जवान। प्लेटफॉर्म पर निगरानी मदद और त्वरित कार्रवाई होगी आसान। यात्रियों की सुरक्षा का बेहतर ख्याल। नू में 12 जुलाई को होगा उपमंडल स्तरीय न्यायिक परिसर का शिलान्यास समारोह। तैयारी पूरी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत होंगे मुख्य अतिथि। मुंबई में जमाजम बारिश। मरीन ड्राइव आए सैलानियों के लिए खुशगवार हुआ मौसम। मुंबई में हुई बारिश ने बढ़ाई गेटवे ऑफ इंडिया पे पर्यटकों की संख्या। सुहाने मौसम के सैलानियों ने उठाया लुत्फ। मुंबई में बारिश ने कई इलाकों में जनजीवन किया प्रभावित। किंग्स सर्कल से तेज बारिश के बीच भरा पानी। मुंबई में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। वसई में सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आने जाने में करनी पड़ रही है दिक्कतों का सामना। मुंबई के फोर्ट इलाके में सड़कों पर भरा पानी। लगातार बारिश से यातायात प्रभावित। मध्य प्रदेश के बालाघाट में भारी बारिश के कारण 16 ग्रामीण फंसे। प्रशासन और राहत दल ने गांव वालों का किया सफल रेस्क्यू। एमपी के मांडला में लगातार बारिश के चलते बढ़ गया है नर्मदा नदी का जलस्तर। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के खोंगा के पास भारी बारिश से हुआ भूस्खलन, रामनगर उधमपुर रोड बंद, यातायात पूरी तरीके से प्रभावित। गुजरात के बनासकांठा में मॉनसून की पहली बारिश में ही जलमग्न हुआ घानेरा, कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित। गुजरात के जूनागढ़ में तेज बारिश से सड़कों और निचले इलाकों में भरा पानी, कई इलाके प्रभावित। गुजरात के जूनागढ़ में रेस्क्यू अभियान चलाकर 19 लोगों की जान बचाई गई, पानी के तेज बहाव में दूसरी ओर वाहनों में बैठे लोगों को रेस्क्यू किया गया। आणंद में मॉनसून ने धमाकेदार एंट्री की, कुछ ही घंटों की बारिश में पानी पानी हुआ पूरा शहर। मेहसाणा जिले में भी जमकर बरसे बादल, एक ही रात में 8 से 9 इंच बारिश दर्ज की गई, निचले इलाकों में भरा पानी। राजकोट में भी मूसलाधार बारिश, शहर के कई इलाके जलभराव से लोग हुए परेशान। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश का असर, नदी नालों के साथ डैम भी लबालब भरे, बांध से गिरते पानी को देखने पहुंचे लोग। दिल्ली एनसीआर के आसमान में बादलों का डेरा, मौसम विभाग का येलो अलर्ट, झमाझम बारिश के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में कई और राज्यों में सक्रिय होगा मॉनसून, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों में भी बारिश की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान, संवेदनशील इलाकों में लैंडस्लाइड से सावधान रहने की सलाह। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी, 6 जुलाई तक बारिश का अलर्ट। अगले 5 दिनों में गुजरात और गोवा में भारी बारिश होने का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बेल्जियम के ब्रसेल्स में ओमेगांग महोत्सव के दौरान घुड़सवारों ने ऐतिहासिक जोस्टिंग का किया रोमांचक प्रदर्शन, 16वीं सदी की जंग का जीवंत प्रदर्शन। पारंपरिक कवच पहने कलाकारों ने भालू के साथ मध्यकालीन टूर्नामेंट का शानदार पुनर्निर्माण किया, यूनेस्को विरासत महोत्सव में 1200 कलाकार पहुंचे। 1 से 4 जुलाई तक चले इस ओमेगांग फेस्टिवल में ऐतिहासिक परेड बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, घुड़सवार और परंपरा का अनोखा संगम। ब्रसेल्स की सड़कों पर निकली भव्य परेड में बच्चों से लेकर कई पीढ़ियों के परिवार हुए शामिल, रोमांच इतिहास और संस्कृति का उत्सव। साल 2019 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल ओमेगांग महोत्सव, यहां के लोगों में अपनी विरासत को जानने का जबरदस्त जुनून। बीजिंग जू में स्टार पांडा मेंगलान ने मनाया 11वां जन्मदिन, जू प्रशासन ने खास केक काटकर जन्मदिन किया सेलिब्रेट। ग्यारहवीं बर्थडे पर मेंगलान के लिए हुई खास पार्टी, बीजिंग जू में बड़ी संख्या में लोग इस जश्न के गवाह बने। शीजेमेन के तीसरे राजकुमार के नाम से मशहूर है मेंगलान, अपनी अनोखी हरकतों और हुनर की वजह से वो फैंस के पसंदीदा पांडा। पेड़ों पर चढ़ना, गड्ढे खोदना और पक्षियों को खाना खिलाना, यही है मेंगलान की खासियत। मेंगलान अपनी नटखट अदाओं की वजह से पूरे चीन में है लोकप्रिय। मेंगलान को देखने चीन के दूर दराज के हिस्सों से आते हैं पर्यटक। अमेरिका ने आजादी के 250 साल पूरे होने का जश्न धूमधाम से मनाया, देशभर में शानदार आतिशबाजी और रंगारंग कार्यक्रमों ने लोगों का दिल जीता। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में ऐतिहासिक समारोह का हुआ आयोजन, लाखों लोगों ने आतिशबाजी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा अमेरिका का आसमान, लोगों ने आजादी का उत्सव मनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देशवासियों को 250वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, उन्होंने एकता, लोकतंत्र और देश के भविष्य को मजबूत बनाने का संदेश दिया। 250 साल पूरे होने के मौके पर पूरे अमेरिका में देशभक्ति का माहौल नजर आया। परेड, संगीत और भव्य आतिशबाजी के साथ स्वतंत्रता दिवस का ऐतिहासिक जश्न मनाया गया। अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे इस मौके पर पेरिस का आईफिल टावर यूएस 250 की रोशनी से जगमगा उठा। फ्रांस ने दिया खास सम्मान, अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आईफिल टावर को विशेष रोशनी से सजाया गया। आईफिल टावर पर दिखा यूएस 250, अमेरिका की ऐतिहासिक वर्षगांठ पर पेरिस से दोस्ती का दिया गया खास संदेश। 250 साल की दोस्ती का मनाया गया जश्न, फ्रांस ने रोशनी के जरिए अमेरिका के साथ अपने पुराने रिश्ते को सम्मान दिया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी से लेकर आईफिल टावर तक फ्रांस अमेरिका की ऐतिहासिक दोस्ती एक बार फिर रोशनी के साथ दुनिया के सामने आई। अमेरिका के कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी, तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा, लोग राहत के लिए वाटर पार्क और ठंडी जगहों का ले रहे हैं सहारा। नॉर्थ कैरोलिना में भीषण गर्मी के बीच परिवार वाटर पार्क पहुंचे, गर्मी से बचने के लिए लोग लगातार पानी पीते नजर आए। फिलाडेल्फिया में भीषण गर्मी के बावजूद ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए आयोजित, हालांकि कई स्थानीय परेड और ब्लॉक पार्टियां रद्द करनी पड़ी। अमेरिका में हीट वेव का असर जनजीवन पर साफ नजर आ रहा है, तेज गर्मी के चलते कई सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। भीषण गर्मी से जूझ रहे अमेरिकी शहरों में लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई, प्रशासन लोगों को धूप से बचने और हाइड्रेटेड रहने की सलाह दे रहा है। चीन के हेनान तट से टकराया टाइफून मिसाक, तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित। टाइफून के कारण ट्रेन और फ्लाइट सेवाएं ठप, हेनान आने जाने वाली रेल उड़ान और फेरी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। सावधानी के तहत स्कूल और चाइल्ड केयर सेंटर किए गए बंद। सानिया और लेडोंग इलाके में प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए। समुद्र में ऊंची लहरों से एक्वाकल्चर बेस को हुआ नुकसान, तेज लहरों ने गहरे समुद्र में बने मछली पालन के पिंजरों को बुरी तरीके से प्रभावित किया। अगले कुछ दिनों तक बारिश और गरज चमक का अलर्ट, मौसम विभाग ने लिंगशुई क्षेत्र में खराब मौसम जारी रहने की चेतावनी दी। ब्राजील में वर्ल्ड कप पर जुनून बालों में उतरा, रिसेंडे में हेक्सा कट बन गया नया ट्रेंड, बाबर ने बनाया झंडे वाला खास हेयर स्टाइल। ब्राजील के रंगों में से सजा फैंस के बाल, हरा पीला नीला डिजाइन बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, बच्चों और युवाओं में है कट की दीवानगी। सलून बना फुटबॉल फैन हब, बच्चों में खासा लोकप्रिय हुआ यह नया लुक, बालों में उकेरा गया वर्ल्ड कप सपना। दलास की घुड़सवार पुलिस वर्ल्ड कप के लिए तैयार, घोड़ों पर सवार पुलिस संभालेगी भीड़, वर्ल्ड कप सुरक्षा में घुड़सवार यूनिट की अहम भूमिका। घोड़े से भीड़ पर रखी जाएगी पैनी नजर, टैक्सिस की काउबॉय परंपरा देखेगी वर्ल्ड कप में, फैंस को भी भा रहा है काउबॉय अंदाज। मिनरल डेल मॉन्टे में फीफा वर्ल्ड कप का छाया उत्साह, मेक्सिको का पहाड़ी शहर फुटबॉल के रंग में रंगा, पुरानी कॉर्निश पेस्ट्री की दुकान बनी चर्चा का केंद्र। 1975 से चली आ रही है ये पारंपरिक रेसिपी आज भी कायम, फुटबॉल और खाने की परंपरा चल रही है साथ साथ, मिनरल डेल मॉन्टो में ऐतिहासिक जुड़ाव की छला। केप वर्डे की राजधानी प्राय में फीफा वर्ल्ड कप का जोश, अर्जेंटीना के खिलाफ मैच से पहले शहर में उत्साह, छोटा अफ्रीकी देश बना बड़ी फुटबॉल कहानी। प्राय में फुटबॉल बना राष्ट्रीय उत्सव, शहर की गलियों में जश्न और गूंज नारे, फैंस में अर्जेंटीना से मुकाबले को लेकर काफी उत्साह। केप वर्डे ने रचा अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, छोटे देश की बड़ी उपलब्धि ने सभी को चौंकाया, वैश्विक पहचान बना रहा अफ्रीकी द्वीपीय देश। अमेरिकी छात्र चीन में सीख रहे हैं पांडा संरक्षण, चेंगदू में विशाल पांडा बने सांस्कृतिक सेतु का प्रतीक, छात्रों ने पांडा रिसर्च बेस का किया दौरा। छात्रों को पांडा को करीब से देखने का मिला अनोखा अनुभव, भोजन तैयारी और देखभाल की प्रक्रिया समझी गई। पांडा की डाइट को लेकर गलत फहमियां भी दूर हुई, युवाओं ने अनुभव को बताया प्रेरणादायक, छात्रों में देखा जबरदस्त उत्साह। दक्षिण कोरिया से बचाए गए भालुओं को डेनमार्क में मिला नया घर, 6 एशियाई काली भालू सफारी पार्क में शिफ्ट, जानवरों को प्राकृतिक जीवन देने की पहल। नोटेनबर्ग सफारी पार्क बना भालुओं का नया ठिकाना, बाइल फार्म से रेस्क्यू के बाद शुरू हुई नई जिंदगी, भालुओं को जंगल जैसे खुले माहौल में छोड़ा गया।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: Feeling a bit nostalgic for the 90s? Tune In has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
1: दिल्ली में मानसून की दस्तक है तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में खूबसूरत वादियों में बसा नूरी चंब इन दिनों सैलानियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। देखिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बहता झरना, हरियाली और शांत वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो चलिए आपको आखिर में दिखाते हैं इस खूबसूरत तस्वीर को, जिसे निहारने के लिए गर्मियों के मौसम में बड़ी संख्या में लोकल और बाहरी सैलानी लगातार पहुंच रहे हैं।

0: जम्मू कश्मीर का हर कोना प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है और उन्हीं में से एक है पुंछ का ये नूरी चंबछी, जो इन दिनों सैलानियों को खूब आकर्षित कर रहा है, पर्यटन के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। ऊंची पहाड़ियों से गिरता झरना और उसके आसपास का मनमोहक नजारा हर किसी का दिल जीत रहा है। गर्मी से राहत पाने और कुछ पल प्रकृति के करीब बिताने के लिए रोजाना बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। दोस्तों परिवारों के साथ यादें समेट रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और यहाँ की खूबसूरती को कैमरे में कैद कर रहे हैं। सैलानियों के यहाँ पहुँचने से छोटे दुकानदारों की आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ सड़क, पार्किंग, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास जरूरी है ताकि ये देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अपनी जगह बना सके।
1: लेकिन ये है कि इसमें जो एरिया है बहुत दूर दूर से लोग आए यहाँ पिकनिक स्पॉट में, आप देख सकते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो है इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं। इतना अच्छा पिकनिक स्पॉट है और इसकी जो है इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। रास्ता बहुत ही ऐसे है कि हम वहाँ से बड़ी मुश्किल से आए हैं क्योंकि बारिश की वजह से, तो ये बहुत ही कच्चा रास्ता है और बहुत ही लोग जो है बहुत परेशान भी हो रहे हैं और साथ साथ ब्यूटी भी जो है इंजॉय कर रहे हैं।
0: स्थानीय लोगों के मुताबिक इस खूबसूरत झरने का सिरा मुगल काल से भी जुड़ता है। लोगों का कहना है कि मुगल शासक जहांगीर की पत्नी नूरजहां को ये जगह बेहद पसंद थी, लिहाजा इसका नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया गया।
2: पूंछ जिला के अंदर बैराम गले के अंदर नूरी छम नामक जो है ये झरना जो है प्राकृतिक झरना, ये बहुत ही पुराना है और इसका इतिहास जो है ये मुगलों के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि नूरजहां जब अपने साम्राज्य के साथ मुगल रास्ते की ओर से जब श्रीनगर की ओर उनका दौरा रहता था तब वो इस स्थान के ऊपर जरूर आती थी, यहाँ पर अपने केश धोया करती थी, स्नान किया करती थी और ये स्थान उन्हें इतना ज्यादा प्रिय था कि वो जब भी यहाँ से श्रीनगर गुजरती थी तो यहाँ पर जरूर आती थी। यही और उसके बाद जो उनके जो राजा थे, जो सम्राट थे मुगलों के, उन्होंने इस स्थान का नाम नूरी छम डाल दिया अपनी पत्नी के नाम पर। उनका नाम था नूरजहां, उनके नाम से यहाँ नूर छम जो है ये इस जगह का नाम पड़ गया।
0: नूरचम की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और मनमोहक झरना इसे पुंछ आने वाले हर पर्यटक के लिए एक खास आकर्षण बना रहे हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि इस पर्यटन स्थल पर बुनियादी सुविधाओं का और विस्तार किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
4: टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती और इस नन्ही बच्ची ने इसे सच साबित कर दिखाया। सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ है लेकिन चेहरे पर मुस्कान बरकरार है। रस्सी पर संतुलन बनाते हुए वो मुश्किल करतब दिखाती है और लोगों का दिल जीत लेती है। परिवार का सहारा बनने के लिए वो मेहनत कर रही है। ये वीडियो सिर्फ उसके हुनर की नहीं बल्कि उसके संघर्ष और हौसले की कहानी भी बयां करता है। कम उम्र में बड़ा कारनामा करने वाले सोलापुर के 12 साल के छात्र अब्दुल्ला इमरान मंगलगिरी की हर तरफ चर्चा हो रही है। उसने महज 9000 रुपए की लागत से ऐसी सोलर साइकिल तैयार की है जो सौर ऊर्जा और बैटरी दोनों से चलती है। साइकिल में डिजिटल स्पीडोमीटर, जीपीएस ट्रैकिंग और वॉइस कंट्रोल जैसी आधुनिक सुविधाएं भी दी गई हैं। छात्र का यह अनोखा आविष्कार लोगों को खूब प्रेरित कर रहा है। दोस्ती और भरोसे की मिसाल बन चुके ऑफिसर ब्रायन सैंटोस और उनके K9 पार्टनर कायरा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साल 2018 से दोनों साथ मिलकर ड्यूटी निभा रहे हैं। वीडियो में ऑफिसर जो भी मूवमेंट करते हैं कायरा भी बिल्कुल उसी अंदाज में उनका साथ देती नजर आती है। दोनों के बीच की गजब की समझ और तालमेल देखकर लोग उनके इस अनोखी जोड़ी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। हौसला अगर बुलंद हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। इसका शानदार उदाहरण एक जंगली बकरी ने पेश किया है जिसने तेज बहाव वाली उफनती रावी नदी को बेखौफ होकर पार कर लिया। नदी की रफ्तार और खतरनाक हालात के बावजूद बकरी का संतुलन देखने लायक था। ये रोमांचक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग उसकी बहादुरी और आत्मविश्वास की जमकर सराहना कर रहे हैं। सी उम्र और बड़ा टैलेंट। इस बच्ची का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर छाया है। सुरमेदानी गाने पर उसने शानदार एक्सप्रेशन और बेहतरीन डांस मूव से हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। हर स्टेप में आत्मविश्वास और चेहरे के भाव इतने शानदार है कि उसकी ट्रेनर भी हैरान रह गई। लोग बच्ची की मासूमियत, आत्मविश्वास और टैलेंट की खूब तारीफ कर रहे हैं और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: फ्यूचर वॉर से निपटने वाला सुपर प्लान तैयार। चीन पाक से निपटेंगे मल्टी डोमेन मिशन के महारथी। बैटल ब्रिगेड के सुपर अवतार देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
7: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का

0: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
1: Schwarber
2: to right field, and it will lead.
0: From the first pitch of the season to the stretch run.
2: And that's the ball game.
0: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
7: अमरनाथ यात्रा के बीच आया एक और गौरवशाली पल, पहलगाम में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में फहराया गया तिरंगा, आस्था, दृढ़ता और वीरता का बना प्रतीक। पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में दिख रहा जबरदस्त उत्साह, पहले दिन करीब 20,000 भक्तों ने किए दर्शन। पूर्वी कांगो में भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से किया गया सम्मानित, 651 शांति सैनिकों को मिला संयुक्त राष्ट्र मेडल, शांति व्यवस्था में योगदान को सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को दी विकास की सौगात, जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का लोकार्पण, पचपदरा रिफाइनरी का भी शुभारंभ। भारत मंडपम में देश के सबसे बड़े टॉय एक्सपो का हुआ शुभारंभ, 7 जुलाई तक चलेगा ये एक्सपो, बिजनेस के नए अवसरों को मिलेगा बड़ा मंच। बीजिंग जू में स्टार पांडा मेगलान ने मनाया 11वां जन्मदिन, जू प्रशासन ने खास केक काट कर जन्मदिन किया सेलिब्रेट, बड़ी संख्या में लोग इस जश्न के गवाह बने।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी

0: भविष्य के युद्ध छोटे, तेज और टेक्नोलॉजी आधारित होंगे, लिहाजा युद्ध जैसे हालात में बढ़त उसी को मिलेगी जो दुश्मन से 10 कदम आगे की तैयारी रखेगा। और भारत को भी ये अच्छे से पता है कि उसे खतरा दो मोर्चों से है, लिहाजा तैयारी भी जबरदस्त होनी चाहिए। बास बटालियन, रुद्र ब्रिगेड, अश्विन ड्रोन प्लाटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, ये उसी तैयारी का हिस्सा है जिनका मकसद सेना को अधिक तेज, सक्षम, सटीक और तकनीक से जुड़ा बनाना है।
1: जय यानि जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता, इनोवेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का दिया हुआ नारा, और मल्टी डोमेन ऑपरेशन की मुहिम के तहत रुद्रा ब्रिगेड, भैरव बटालियन, अश्विनी ड्रोन प्लेटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्रा बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड और IBG यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जैसे कदम इसी सोच का हिस्सा है।

0: हाल के अनुभवों ने यह साफ कर दिया है कि भविष्य में सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जानकारी, सर्विलांस वेपन, कम्युनिकेशन सिस्टम और कमांडर कितनी तेजी से एक साथ काम कर पाते हैं। इसीलिए सेना अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के बजाय अधिक समन्वित और तेज व्यवस्था की ओर बढ़ती जा रही है।
1: भविष्य में युद्ध और अधिक ज्वाइंट, इंटीग्रेटेड और थिएटर ओरिएंटेड होगा, इसलिए हमारी दिशा स्पष्ट है, साथ देखना, साथ निर्णय लेना और साथ कार्रवाई करना। भारतीय सेना में परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर चलती आ रही। इन दो वर्षों में डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग, आधुनिकीकरण, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, ज्वाइंटनेस, सिस्टम रिफॉर्म और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर तीव्र गति से काम हुआ है।
0: भारतीय सेना भविष्य की जंग के लिए खुद को तेजी से तैयार कर रही है। इसी दिशा में सेना ने बास बटालियन नाम से खास ड्रोन यूनिट बनाने का फैसला किया है। बास बटालियन में ट्रेन जवानों की एक स्पेशल टीम होगी जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम का संचालन और प्रबंधन करेगी। इन बटालियनों का काम सीमा पर लगातार निगरानी रखना, दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी जुटाना और जरूरत पड़ने पर सटीक कार्रवाई में मदद करना होगा। सूत्रों के मुताबिक बास बटालियन को आर्मी एविएशन कोर के अंतर्गत रखा जा सकता है। बास बटालियन फ्रंटलाइन यूनिट्स और खुफिया सिस्टम के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करेगी, जिससे दुश्मन का दांव धरा का धरा रह जाएगा।
2: इंडियन आर्मी में करीबन 380 इन्फेंट्री बटालियंस हैं। एक इन्फेंट्री बटालियन में करीबन 1000 जवान होते हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि इंडियन आर्मी के जो बटालियंस हैं उनको आस्ते आस्ते बास बटालियंस में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी जैसे कन्वेंशनल इन्फेंट्री बटालियन में अल्फा कंपनी, ब्रेवो कंपनी, चार्ली कंपनी, डेल्टा कंपनी होती थी, अब एक छोटी सी टुकड़ी यह भी रेज की जाएगी इन बटालियंस में, जिनके पास अलग अलग तरह के ड्रोन्स होंगे। रिकनेसेंस ड्रोन होंगे जो कि छोटी दूरी के या लंबी दूरी के होंगे। इसी तरह से उनके पास अटैक ड्रोन्स भी होंगे जो कि शत्रु के ऊपर जाके हमला करके वापस आ सकें। सबसे बड़ी बात है कि इन इन्फेंट्री बटालियंस में आस्ते आस्ते सुसाइड ड्रोन यानी कामिकाजे ड्रोन इंडक्ट किए जाएंगे जो कि शत्रु के पोजीशन के ऊपर जाके लॉयटर कर पाएंगे। यानी वहाँ पर 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट शत्रु की लोकेशन के ऊपर घूमते रहेंगे।
0: अभी सेना की अश्नी ड्रोन पलटन पैदल सेना के साथ मिलकर कम दूरी की निगरानी करती है। दिव्यास्त्र और शक्तिबाण जैसी इकाइयां हमलावर ड्रोन और लाइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल करती हैं। बास बटालियन इन सबसे ऊपर की कैटेगरी में होगी और लंबी दूरी की निगरानी, लक्ष्य पहचान और बड़े स्तर पर ड्रोन संचालन की जिम्मेदारी संभालेगी। ड्रोन्स का काम अब केवल निगरानी करना या फिर विशेष अभियानों तक सीमित नहीं, बल्कि ड्रोन की ताकत आज की तारीख में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ड्रोन न केवल दुश्मन पर हमला कर सकते हैं बल्कि साथ ही साथ जानकारी जुटा सकते हैं। इसी के साथ साथ रेकी के लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है और साथ ही साथ हमारे सैनिकों के लिए भी ड्रोन सबसे ज्यादा उपयोगी साबित हो रहा है।
3: पहले पैदल सैनिकों को दुश्मन पर हमला करने के लिए तोपखाने या वायुसेना के बैकअप का इंतजार करना होता था, लेकिन अब अश्विन प्लाटून का ऑपरेटर खुद दुश्मन को स्क्रीन पर देखता है और पलक झपकते ही ड्रोन से हमला कर देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के रण ऑफ कच्छ तक करीब 1000 ड्रोन से हमला किया था। भारतीय सेना की एंट्री एयरक्राफ्ट गन और काउंटर ड्रोन सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। इसके बाद सेना ने ड्रोन फोर्स खड़ी करने का संकल्प लिया और भैरव बटालियन, दिव्यास बैटरी और अश्नी प्लाटून जैसी नई इकाइयों की शुरुआत की। सेना के हर इन्फेंट्री बटालियन में अश्नी ड्रोन प्लाटून बनाई गई है। एक प्लाटून में 20 सैनिक हैं, जिन्हें FPV, सर्विलांस, स्वॉर्म ड्रोन और लॉयटरिंग म्यूनिशन चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। भारतीय सेना की करीब 380 इन्फेंट्री बटालियन में ऐसी इकाइयां शामिल की जा रही हैं।
2: हर इन्फेंट्री बटालियन में जब वो बाज बटालियन में कन्वर्ट होंगे तो एक एक अशनी प्लाटून डेवलप की जाएगी। इस डिप्लॉयमेंट के बाद हर इन्फेंट्री बटालियन की जो अशनी प्लाटून होगी उनको करीबन 20 सोल्जर्स ऐसे ट्रेन करने पड़ेंगे जो कि रिकनेसेंस ड्रोन को उड़ा सकें, अटैक ड्रोन को कामयाबी से अटैक करवा सकें। सबसे बड़ी बात है जो सुसाइड ड्रोन होते हैं, कामिकाजी ड्रोन, उसमें जो FPV होता है, फर्स्ट पर्सन व्यू, यानी ऑपरेटर जो है वो देख सकता है कि ड्रोन कहाँ उड़ रहा है, किस चीज़ को निशाना बना रहा है। FPV रोल में इन 20 सोल्जर्स को ट्रेन किया जाएगा। हर यूनिट में करीबन शुरुआती दौर में 10-10 ड्रोन दिए जा रहे हैं, जिसमें 4 ड्रोन तो रिकॉग्निशंस ड्रोन होंगे, यानी वो दुश्मन की टोह लेकर वो कमांडर को सूचित करेंगे कि दुश्मन का टारगेट कहां पर है।
3: सेना के भीतर अलग अलग आर्म्स, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, सिग्नल के बीच तालमेल और एकीकरण पर जोर दिया जा रहा है और इसी तैयारी का हिस्सा है शक्तिमान रेजिमेंट। ये भारतीय सेना की तोपखाना के अंडर बनाई जा रही एक विशेष और आधुनिक ड्रोन केंद्रित इकाई है जो दुश्मन की गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी और लक्ष्य निर्धारित करने में सक्षम होगी। शक्तिमान रेजिमेंट के जवान पारंपरिक तोपों के बजाय अनमैन्ड एरियल व्हीकल के जरिए दुश्मन पर सटीक और घातक हमला करेंगे। भविष्य के युद्धों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना की ओर से 15 से 20 शक्तिमान रेजिमेंट तैयार की जा रही हैं। ये रेजिमेंट स्वॉर्म ड्रोन, लॉयटरिंग म्यूनिशन और लॉन्ग रेंज UAV से लैस हैं, जिनकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक होगी।
2: हमारी आर्टिलरी के जो यूनिट्स हैं उनमें 20 एडिशनल शक्तिमान रेजिमेंट्स रेज की जा रही हैं। इन आर्टिलरी यूनिट्स में लॉन्ग रेंज UAV और लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का डिप्लॉयमेंट होगा। आमतौर पे जो ड्रोन्स इन्फेंट्री यूनिट्स के पास होंगी वो 5-10 किलोमीटर की दूरी तक ऑपरेट कर पाएंगी, लेकिन जो ड्रोन और UAV इन शक्तिमान आर्टिलरी रेजिमेंट्स को दिए जा रहे हैं उनकी रेंज 10-500 किलोमीटर तक होंगी, यानी डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए उनका इस्तेमाल किया जाएगा।
3: शक्तिमान रेजिमेंट सैनिकों को जोखिम में डाले बिना दुश्मन की सीमा के भीतर घुसकर सटीक पिन पॉइंट स्ट्राइक करने की क्षमता रखती है। आर्टिलरी में 15 शक्तिमान रेजिमेंट बनाई जा चुकी हैं और 11 बनाई जानी है। जो तोपखाना रेजिमेंट शक्तिमान में तब्दील नहीं होंगी उनमें दिव्यास्त्र बैटरी होगी। शुरू में 34 दिव्यास्त्र बैटरी बनाई जा रही है। दिव्यास्त्र बैटरी के पास ड्रोन और लाइटरिंग एम्युनिशन होंगे। पारंपरिक आर्टिलरी में केवल तोप और रॉकेट होते थे, वहीं दिव्यास्त्र की अगर बात करें तो ये तोपों को एक हाईटेक वर्जन देता है। सीधे तौर पर कहा जाए तो ये डिजिटली और मानव रहित तकनीकों से इसे जोड़ता है। पारंपरिक तोपों और आधुनिक मानव रहित प्रणालियां यानी कि ड्रोन्स का एक हाइब्रिड मिश्रण हम इसको कह सकते हैं, जो दुश्मन के इलाके में घुसकर सही और सटीक हमला कर सकता है। वैसे योजना 35 से 40 ऐसी दिव्यास्त्र बैटरियां और बनाने की भी है।
0: दिव्यास्त्र बैटरियां पारंपरिक बोफोर्स या फिर 9 वज्र जैसी तोपों के साथ लाइटिंग म्यूनिशन और निगरानी ड्रोन्स को एक साथ ऑपरेट करती हैं। दिव्यास्त्र बैटरी के ड्रोन पहले दुश्मन के बंकर, ठिकाने या आगे बढ़ते टैंकों को लाइव ट्रैक करते हैं और तुरंत उनके सटीक कोऑर्डिनेट्स तोपखाने को भेजते हैं। इस तकनीक से तोपखाने की मारक क्षमता और सटीकता कई गुना बढ़ जाती है, जिससे दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक पिन पॉइंट हमले किए जा सकते हैं।
2: इंडियन आर्मी की दिव्यास्त्र बैटरी जो हैं वो आर्मी की आर्टिलरी का एक हिस्सा होंगी। इन यूनिट्स में जो रिकनेसेंस ड्रोन होंगे वो आर्मी की जो कन्वेंशनल तोपें हैं जैसे कि बोफोर्स की गन्स, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके फायर पावर का ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगी। दिव्यास्त्र बैटरीज में रिकनेसेंस ड्रोन्स होंगे जो कि युद्ध भूमि के पीछे यानी टैक्टिकल बैटल एरिया के आगे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूरी तक रिकनेसेंस करेंगी और टो लेंगी कि दुश्मन जो है किस दिशा से हमारे ऊपर हमला करने आ रहा है।
3: भारतीय सेना ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर अपना दबदबा कायम करने और आधुनिक नेटवर्क केंद्रित युद्धों को जीतने के लिए विशेष इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड्स का गठन करने का फैसला किया है। ये सेना के आधुनिकीकरण या रीस्ट्रक्चरिंग अभियान का एक क्रांतिकारी हिस्सा है जिसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक हथियारों जैसे तोपों या टैंकों के चलने से पहले ही दुश्मन के संचार और सैन्य तंत्र को अंधा और बहरा बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड के मुख्य कार्यों में एक है स्पेक्ट्रम डोमिनेंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल, जो दुश्मन के रडार, ड्रोन, मिसाइल और वायरलेस सेट के सिग्नल्स को ब्लॉक कर पूरे स्पेक्ट्रम पर कब्जा करती है। दूसरा है दुश्मन के सिस्टम्स को जाम करना। इसमें दुश्मन के रडार नेटवर्क, एयर डिफेंस कमांड सेंटर्स और मानव रहित विमानों के डेटा लिंक को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया जाता है। अगला सिग्नल इंटेलिजेंस। इससे सैनिक दुश्मन के रेडियो सिग्नल्स और मोबाइल सैटेलाइट बातचीत को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, जिससे दुश्मन की अगली रणनीति और लोकेशन का पहले ही पता चल जाता है। किलवेव इंटीग्रेशन। ये ब्रिगेड रियल टाइम खुफिया जानकारी को तुरंत अपनी तोपखाना और एयर डिफेंस यूनिट्स के साथ साझा करती है, जिससे चिन्हित किए गए खतरों को पलक झपकते ही नष्ट किया जा सकता है।
2: भविष्य के किसी भी युद्ध में इंडियन आर्मी की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड का मुख्य काम यह होगा कि दुश्मन जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहा है अपने कमांडर्स के साथ या अपनी लोअर फॉर्मेशन के साथ, उसको मॉनिटर करना। अब दुश्मन के पास अलग अलग तरह की कम्युनिकेशन सेट होते हैं। कुछ हाई फ्रिक्वेंसी यानी HF पे काम करते हैं, कुछ VHF यानी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज पर काम करते हैं, आजकल ज़्यादातर सेट UHF यानी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं। तो इसकी जो सिग्नल इंटेलिजेंस है उसको भांप के उसको सुनना और वो जो वॉइस रिकॉर्डिंग है उसको कमांडर के सामने देना, इनका पहला काम होगा।
3: भारतीय सेना में बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण अब सिर्फ नए हथियार या उपकरण लेने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य सेना की सोच, ढांचे, प्रशिक्षण, तकनीक, कार्यप्रणाली और मानव संसाधन को एक साथ आगे बढ़ाना है। साल 2026 में भारतीय सेना में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पहली बार इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप सेना में शामिल किए जाएंगे। कुल 5 IBG बनाई गई है जो कि 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के तहत काम करेंगी। हर IBG की कमान मेजर जनरल रैंक के अधिकारी के पास होगी। इसके अलावा चीफ ऑपरेशन ऑफिसर्स का नया पद भी बनाया गया है जिसकी जिम्मेदारी होगी ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी के पास।
0: एक पारंपरिक ब्रिगेड में सिर्फ एक तरह की सेना होती है, जैसे सिर्फ पैदल सेना या फिर आर्टिलरी। उन्हें तोपखाने या फिर डिफेंस के सपोर्ट के लिए अच्छे मुख्यालयों से मंजूरी और यूनिट्स के आने का इंतजार करना पड़ता है। इसके उलट प्रत्येक IBG एक आत्मनिर्भर इकाई है जिसमें युद्ध के लिए जरूरी सभी अंग पहले से ही एक ही कमांडर के तहत एकीकृत होते हैं। IBG की संरचना क्या है वो भी आपको बताते हैं। इसमें इन्फेंट्री जमीनी मोर्चे पर कब्जा करने और लड़ने के लिए पैदल सैनिक आर्म्ड, तेजी से आगे बढ़ने और दुश्मन की रक्षा पंक्ति तोड़ने के लिए टैंक और मैकेनाइज्ड गाड़ियां, आर्टिलरी जिसमें लंबी दूरी तक भारी बमबारी के लिए दिव्यास्त्र बैटरी या फिर पारंपरिक तोपें होती हैं, एयर डिफेंस जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोन से हवा में सुरक्षा मुहैया कराता है, लॉजिस्टिक और इंजीनियर्स, इनका काम रास्ते के बारूदी सुरंगों को हटाना, पुल बनाना और गोला बारूद की त्वरित सप्लाई करना होता है। साथ ही आधुनिक विंग्स, इसमें शक्तिबान रेजिमेंट के ड्रोन दस्ते और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स भी सीधे शामिल होती हैं। ये सब मिलकर एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की संरचना करते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो IBG एक सैन्य ग्रुप है जिसमें सेना के लगभग हर प्रमुख अंग के सैनिक शामिल होंगे।
2: टैक्टिकल बैटल एरिया में आमतौर पर आर्टिलरी यूनिट्स काम करती हैं, टैंक रेजिमेंट्स काम कर रहे होते हैं, इन्फेंट्री बटालियंस आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं, और इसी तरह से उनको सपोर्ट भी मिलता है। आर्मी ऑर्डनेंस कोर्स जो है युद्धभूमि में उनको पेट्रोल, डीजल, स्पेयर पार्ट्स, अम्यूनिशन सप्लाई करती है। आर्मी सप्लाई कोर जो है वह एडवांसिंग कॉलम्स को राशन मुहैया कराती है। 10,000 ट्रुप्स एक डिवीजन के अगर आगे बढ़ रहे हैं या 30,000 ट्रुप्स एक कोर में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें दिन में 3 बार खाना भी तो खाना है। 30,000 सोल्जर्स को पानी पिलाने का काम बहुत ही मैराथन जॉब है, क्योंकि वो 30,000 सोल्जर्स जब युद्धभूमि में लड़ रहे हैं तो कोई दाएं हैं, कोई बाएं हैं, कोई सामने 100 किलोमीटर है, कोई पीछे 10 किलोमीटर है। इन सबको युद्धभूमि में पानी पिलाना, रेगिस्तान है ना, जंगल है या हिमालय की पहाड़ियां हैं, पानी आसानी से नहीं मिलता। तो ये काम सारे जितने इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मी यूनिट्स हैं और सपोर्ट सर्विसेज हैं उसको एक साथ सुचालित ढंग से आगे बढ़ाना एक ही कमांडर के नीचे होगा। इनको नाम दिया गया है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप।
0: भारतीय सेना अपनी सभी लड़ाकू कोर को धीरे धीरे छोटे, मारक और अत्यधिक आधुनिक एकीकृत समूहों में बदल रही है ताकि भविष्य के कम समय वाले युद्धों को आसानी से जीता जा सके। आईबीजी के फायदे क्या हैं ये भी जान लीजिए। सबसे पहला है अनमैच्ड स्पीड। दरअसल सभी संसाधन एक ही कमांडर के पास होते हैं और इसीलिए उन्हें लामबंद होने में कुछ हफ्तों के बजाय महज 12 से 48 घंटे का वक्त लगता है। फौरन फैसला लेने की क्षमता। कमांडर को तोप या फिर हवाई सुरक्षा के लिए कोर मुख्यालय से अनुमति नहीं मांगनी पड़ती, वो युद्ध क्षेत्र की स्थिति देखकर ऑन द स्पॉट फैसले ले सकता है। तीसरा है किल वेव से सीधा जुड़ाव। आईबीजीज पूरी तरह से डिजिटल और नेटवर्क केंद्रित हैं। इनके सेंसर और शूटर आपस में जुड़े होते हैं जिससे दुश्मन की लोकेशन मिलते ही पूरी ताकत से हमला कर दिया जाता है।
2: ये जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप होंगे ये एक युद्धभूमि में एक मेजर जनरल के तहत आएंगे और भविष्य के युद्ध में ये हाईली फ्लेक्सिबल होंगे क्योंकि इनका अपना ट्रांसपोर्ट ग्रुप होगा। यानी सडनली देखिए 10,000 ट्रुप्स को अगर लेके 200 किलोमीटर आगे ले जाना है या 10,000 ट्रुप्स को लेकर सडनली 200 किलोमीटर बाएं तरफ लेके जाना है तो आपको 100 गाड़ियां चाहिए कम से कम। तो ये जो 100 गाड़ियां हैं ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के जो कमांडर होंगे उनके डायरेक्ट कंट्रोल में होंगी। इससे जो आईबीजी के कमांडर हैं मेजर जनरल रैंक के होंगे उनकी युद्धभूमि में कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी और युद्ध लड़ने की क्षमता काफी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाएगी और ज्यादा भी हो जाएगी।
0: आसान भाषा में कहें तो आईबीजी ऐसा सैन्य ग्रुप है जिसमें सेना के लगभग हर प्रमुख अंग के सैनिक शामिल होंगे, यानी इन्फेंट्री आर्म्ड या टैंक, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इंजीनियर्स, एयर डिफेंस, सिग्नल्स, लॉजिस्टिक और मेडिकल कोर, जो जरूरत पड़ने पर बिना किसी दूसरे यूनिट का इंतजार किए तेजी से ऑपरेशन शुरू कर सकेंगे। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत है इसके जवानों की संख्या। इसमें करीब 5,000 जवान होंगे जो 12 से 13 यूनिट्स में डिवाइड होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक परंपरागत ब्रिगेड में नॉर्मली 5 से 7 हजार के करीब जवान होते हैं और अगर हम डिवीजन की बात करें तो इसमें 10,000 या फिर इससे ज्यादा जवान होते हैं। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप इसके बीच का काम करेगा, यानी जहां जरूरत होगी वहां ये सैनिक पूरी तरह से तैयार।
3: छोटी टुकड़ियों में होने की वजह से आईबीजी ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक में होने वाले युद्ध में खुद को तेजी से ढाल पाने में सक्षम हो सकते हैं। मौजूदा योजना के मुताबिक 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कोर से 4 इंटीग्रेट बैटल ग्रुप और 1 फायर सपोर्ट ग्रुप बनाए जाएंगे।
0: रणक्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाएगी।
5: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have. TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
8: अविश्वास में विश्वास बसता है.
6: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
7: गुड न्यूज टुडे.
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे. मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
4: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.

0: और बात करते हैं मॉडर्न वेलफेयर फोर्स भैरव की, जिसमें करीब 1 लाख से ज्यादा ड्रोन ऑपरेटर्स की फौज तैयार की जा रही है और इन्हें खासतौर से LOC पर तैनात किया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी खासियत यही है कि किसी भी तरह की इन्फिल्ट्रेशन पर निगरानी रखना, और ये भारतीय सेना के लिए एक सबसे बड़ा हथियार होगा। वैसे इसमें कोई दो राय है भी नहीं है कि आज की तारीख में LAC हो या फिर LOC, हमारे सैनिक अत्याधुनिक हथियारों के साथ हमारे देश की हिफाजत में लगातार जुटे हैं।
1: भारतीय सेना आधुनिक और हाइब्रिड युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को लगातार बदल रही है, और इसी कड़ी में सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी है। सेना पुराने तरीकों से हटकर टेक्नोलॉजी और स्पेशल फोर्स पर भरोसा कर रही है। भैरव जैसे कमांडो भविष्य के खतरों से निपटने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं।
2: मॉडर्न युद्ध जो है वो बहुत ही तेजी से बदल रहा है। आज के दौर का कॉन्फ्लिक्ट पहले की तरह नहीं है, हाइब्रिड है, जिसमें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस दस्तों की सख्त जरूरत है। और इसी के चलते जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी विजन था, तो इंडियन आर्मी ने ये डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का संकल्प लिया है। भैरव बटालियन भी इसी फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग का एक पार्ट है, जिसके अंदर की एक नई सोच, नई तकनीक और नए ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से इसको रेज किया जा रहा है।
1: भैरव बटालियन पैरा स्पेशल फोर्सेस और आम इन्फेंट्री बटालियन के बीच की दूरी को भी कम करेगी। इन्हें सामरिक से लेकर स्पेशल ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। भैरव बटालियन में स्नाइपर्स को भी शामिल किया गया है, ताकि सैकड़ों मीटर दूर छिपे दुश्मन को पलक झपकते ही मौत की नींद सुलाया जा सके।
2: पिछले 5 महीनों से हम लोग लगातार नए वेपन्स पे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे ट्रेन कर रहे हैं। इनफैक्ट आई फील वेरी प्राउड, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे को गर्व है इस बटालियन पे कि जिस तरीके से इन ट्रुप्स ने ट्रेनिंग के दौरान ये क्षमता हासिल की है और नए टेक्नोलॉजी को अपनाया है, वो सराहनीय है। इनफैक्ट सदर्न कमांड के एक्सरसाइज अखंड प्रहार के दौरान इस बटालियन का सक्सेसफुल ऑपरेशनल वैलिडेशन भी किया गया। एंड हम समझते हैं कि ट्रेनिंग जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, बट आज भी ये बटालियन किसी भी दिए गए टास्क के लिए पूरी तरह तैयार है और पूरी तरह टेक्नोलॉजी से सशक्त है।
1: दक्षिणी कमान के तहत काम कर रही डेजर्ट भैरव बटालियन रेगिस्तानी इलाकों की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यहाँ सहन शक्ति, हाथ स्किल्स और तकनीक का सटीक इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है। ये यूनिट स्वतंत्र रूप से काम करने और भविष्य की मल्टी डोमेन लड़ाइयों के लिए तैयार की गई है। भैरव बटालियन के जवानों को कठिन हालातों में लड़ने, तेजी से मूवमेंट और सीमित संसाधनों में मिशन को अंजाम देने की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है।
3: इस भैरव बटालियन का हिस्सा होना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इस बटालियन में आने के बाद नई टेक्नोलॉजी, नई इक्विपमेंट, स्किल वाइज ट्रेनिंग दी गई। स्किल वाइज ट्रेनिंग में मेडिकल, डेमोलेशन और कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी दी गई। यह ट्रेनिंग शुरू शुरू में मेरे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रही, लेकिन कठिन मेहनत और लगन के साथ मैंने इस ट्रेनिंग को बखूबी अंजाम दिया। इस ट्रेनिंग के बाद आज मैं नई टेक्नोलॉजी, नई इक्विपमेंट, ड्रोन्स इत्यादि को बखूबी हैंडल कर सकता हूँ। हमारी बटालियन में PT, रूट मार्च, एंडोरेंस ट्रेनिंग, डेजर्ट ट्रेनिंग पर काफ़ी जोर दिया जाता है। हमारी बटालियन की ताकत एक दूसरे का विश्वास और साथ है। आज इस भैरव बटालियन ने मुझे इतना सुदृढ़ बना दिया है कि भविष्य में आने वाली बड़ी से बड़ी और महत्वपूर्ण चुनौती को मैं बखूबी अंजाम दे सकता हूं।
1: डेजर्ट भैरव बटालियन की एक और खास बात है सन्स ऑफ द सॉयल का सिद्धांत। ज्यादातर जवान राजस्थान से लिए गए हैं, जिससे उन्हें स्थानीय भूगोल, मौसम, भाषा और संस्कृति की गहरी समझ है।
4: हमारे जवान पिछले कई महीनों से डेजर्ट सेक्टर में काफी मेहनत कर रहे हैं और दिन रात ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम नए मिशन के लिए नए टेक्नोलॉजी और नए वेपन, नए इक्विपमेंट पर काफी स्पेशल ट्रेनिंग की है। हम पूरी ट्रेनिंग कर चुके हैं, हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं।
1: भैरव बटालियन को वैश्विक युद्ध से मिले सबक और भारत के अपने ऑपरेशनल अनुभवों के आधार पर तैयार किया गया है। मकसद है एक ऐसी तेज, आक्रामक और लचीली फोर्स बनाना जो जरूरत पड़ने पर स्पेशल फोर्स जैसे मिशन को भी अंजाम दे सके।
0: सेना का मकसद एक ऐसी बटालियन तैयार करना है जो हर वक्त तैयार रहे, अलग अलग फोर्सेस में भी काम कर सके और अलग अलग मोर्चों पर दुश्मन से लोहा ले सके। भैरव यही काम करेगी। अभी तक देखा जाए तो कुल 15 भैरव बटालियन बनाई जा चुकी हैं और लक्ष्य 25 तक का है।
1: भैरव लाइट कमांडो बटालियन सेना की नई खतरनाक यूनिट है जो स्पेशल फोर्स की अत्याधुनिक और घातक यूनिट की तरह ही काम करेगी।
5: भैरव लाइट कमांडो बटालियन के रूप में एजाइल और घातक स्पेशल फोर्सेस का गठन किया गया है जो सीमाओं पर शत्रु को चौंकाने के लिए हमेशा तैयार है।
1: एक भैरव बटालियन के अंदर 800 सैनिक हो सकते हैं। भैरव लाइट कमांडो बटालियन का मेन फोकस सीमा पर अचानक हमला और दुश्मन को बैकफुट पर ढकेलना है। भैरव लाइट कमांडो बटालियन हल्के हथियार से लैस है जो पहाड़ों और जंगलों में आसानी से चल सके। इन्हें MP5 सब मशीन गन और स्वदेशी ड्रोन बम से लैस किया गया है। सीक्रेट ऑपरेशन के लिए ये हर वक्त तैयार रहते हैं। इन्हें रात में या फिर कोहरे में दुश्मन पर अचानक हमला करने की ट्रेनिंग दी गई है। ये बटालियन दुश्मन की सप्लाई लाइन तोड़ सकती है, उनके ठिकानों को तबाह कर सकती है। ये यूनिट्स LAC या LOC पर भारत को बढ़त दिलाएंगी।
6: इंडियन आर्मी अब स्पेशल फोर्सेस से और कमांडो यूनिट्स से, खास तौर से पैरा कमांडो यूनिट्स से छांट छांट कर ऐसे सोल्जर्स को जमा कर रही है जो कि एक कोर ग्रुप में काम करेंगे। इनका नाम दिया गया है भैरव कमांडो फोर्स। ये एक छोटी सी लेकिन हाईली मोबाइल और बहुत ही इफेक्टिव कमांडो यूनिट होगी। इसके जो कमांडो होंगे वो पहाड़ में, रेगिस्तान में, हवा से, पानी से, जंगल से, कहीं से भी ऑपरेट कर पाएंगे। इनके पास अपनी इंटीग्रेटेड फायर होगी, यानी इनके पास अपनी मोटर होंगी, हैवी मशीन गन होंगी, स्पेशल स्टन ग्रेनेड्स होंगे ताकि युद्ध भूमि में इन्हें फायर सपोर्ट के लिए और किसी के ऊपर निर्भर ना होना पड़े।
1: हर एक इन्फेंट्री बटालियन के अंदर खुद की एक प्लाटून होती है, उससे भैरव लाइट कमांडो बटालियन कितनी अलग है ये भी जानना बहुत जरूरी है।
0: भारतीय थलसेना की इन्फेंट्री बटालियन की अगर संगठन की बात की जाए तो कुल मिलाकर 4 बटालियन होती हैं, अल्फा, ब्रावो, चार्ली और डेल्टा। इनके अलावा हेडक्वार्टर अलग है जहां इंटेलिजेंस सिग्नल, मेडिकल लॉजिस्टिक, मोटर, असॉल्ट और MMG के सेक्शंस होते हैं। फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो अलग है। जो 4 राइफल कंपनियां हैं उनमें से 3 राइफल कैरी करती हैं और 1 RCL गन कैरी करती है।
1: अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब ये सारी कंपनी कुछ इस तरह से कंपोज होती हैं तो घातक यूनिट की प्लेसमेंट क्या होती है। तो आपको बता दें कि घातक की कोई अलग से प्लेसमेंट नहीं होती। ये अल्फा, ब्रावो, चार्ली और डेल्टा कंपनी में से कुछ लोग होते हैं।
0: अभी तक भारतीय सेना की तरफ से रेड्स या तो फिर स्पेशल फोर्सेस करती थी या फिर घातक प्लाटून करती थी, लेकिन भैरव के आ जाने के बाद ये काम और ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि ये जिम्मेदारी अब भैरव की हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ स्पेशल फोर्सेस अपने काम पर फोकस कर पाएंगी और घातक जिसके लिए उसे तैयार किया गया है वो उस पर ज्यादा फोकस करेगा।

चीन और पाकिस्तान से बढ़ते सैन्य खतरे को देखते हुए भारत अपनी सैन्य तैयारियों को धार देने में जुटा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों मोर्चों पर खतरा चिंता का विषय है। ऐसे में अब भारतीय सेना अपनी आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने और सीमाओं पर क्विक रिस्पांस देने के लिए नई रुद्र ऑल आर्म ब्रिगेड का गठन कर रही है।

0: आज की भारतीय सेना न केवल वर्तमान चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर रही, बल्कि हम नित्य प्रतिदिन एक परिवर्तनशील, आधुनिक और भविष्य उन्मुख शक्ति के रूप में तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। इसके अंतर्गत रुद्रक के रूप में नई ऑल आर्म्स ब्रिगेड का गठन किया जा रहा है।
1: ऑल आर्म ब्रिगेड क्या है, ये कैसे काम करती है, क्या होगी इसकी ताकत और ये कैसे पुरानी ब्रिगेड से अलग होगी, इसे जानना बहुत जरूरी है।

अभी तक देखा गया था कि सेना की केवल सिंगल ब्रिगेड हुआ करती थी, मतलब इन्फेंट्री ब्रिगेड में केवल पैदल सैनिक और टैंक ब्रिगेड में केवल टैंक ही हुआ करते थे। रण क्षेत्र में इमरजेंसी जैसे हालात में अगर कहीं किसी को एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ गई तो उसमें फिर डिविजन से मंजूरी मिलती थी और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा समय लग जाता था। लेकिन रुद्र इन तमाम खामियों को दूर करेगा और युद्ध में यानी कि रणक्षेत्र में हमारी फौज तत्पर निर्णय ले सकेगी।

0: रुद्र ब्रिगेड को पावर देने के लिए ताकत की कई इकाइयों को साथ जोड़ा गया है, यानी रुद्र ब्रिगेड में एक ही कमांड में इन्फेंट्री होगी, यानी पैदल सैनिक जो जमीन पर मोर्चा संभालेंगे। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को भी इसमें जोड़ा गया है, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियों से लैस सैनिक होंगे। आर्म्ड यूनिट्स होंगी जिसमें टैंक और भारी हथियार होंगे। आर्टिलरी होगी जिसमें तोपखाने की ताकत को शामिल किया जाएगा जो दूर से हमला करते हैं। स्पेशल फोर्सेस होंगी जिसमें खास मिशन के लिए ट्रेनिंग पाए सैनिक होंगे। साथ ही ड्रोन होंगे जिसके जरिए जासूसी और हमले की ताकत होगी,
1: जिसमें इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर्ड यूनिट्स, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्सेस, अनमैन्ड एरियल सिस्टम जैसे फाइटिंग कंपोनेंट्स को एक साथ रखा जाएगा और विशेष रूप से तैयार किया जाएगा, जिसमें शामिल लॉजिस्टिक सपोर्ट और कॉम्बैट सपोर्ट हो।
0: माना जा रहा है कि रुद्र ब्रिगेड में 3,000 से ज्यादा लोग होंगे और इसका मतलब खतरे से निपटने के लिए लंबा इंतजार नहीं, बल्कि दुश्मन पर बिजली की रफ्तार से एक्शन।
2: भविष्य के युद्ध में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए अब भारत की सेना रुद्र ब्रिगेड बना रही है। यह ब्रिगेड जो होंगी ये इंटीग्रेटेड ब्रिगेड होंगी, यानी इसमें 3 से 4 इन्फेंट्री बटालियन तो होंगी ही होंगी, साथ में इनका अपना इंटीग्रेटेड अपना टैंक फॉर्मेशन, बख्तरबंद गाड़ियां और अपना तोपखाना होगा। सबसे बड़ी बात है कि इन ब्रिगेड्स में अपनी ही सपोर्ट सर्विसेज जैसे कि सप्लाई लॉजिस्टिक्स चेन, कोर ऑफ एएससी, कोर ऑफ ऑर्डनेंस और अपनी ही इंटीग्रेटेड वर्कशॉप कोर ऑफ ईएमई की होगी, ताकि युद्ध भूमि में अगर कमांडर को कोई भी सपोर्ट की जरूरत पड़े तो उसे दूसरी तरफ ना देखना पड़े, पीछे ना देखना पड़े। जितनी सपोर्ट सर्विसेज हैं, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सिग्नल्स, कम्युनिकेशंस, ये सब कमांडर के पास ऑन द स्पॉट उसको अपने नीचे ही उपलब्ध होगी।
0: दुनिया के तमाम देशों के पास अपनी खास कमांडो फोर्स होती है। अमेरिका से लेकर चीन और रूस के पास अपनी कमांडो फोर्स है। वहीं भारत के पास भी ऐसे परमवीरों की टोली है जिनका सामना करना किसी के बस की बात नहीं है।

0: कमांडो एक स्पेशली ट्रेन्ड सोल्जर्स होते हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी के, इंडियन एयरफोर्स के या इंडियन नेवी के हों। इनको हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए स्पेशली ट्रेन किया जाता है, गुरीला वारफेयर, जंगल वारफेयर और हाई अल्टीट्यूड, हर तरह की टेरेन के अंदर इनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि ये मेंटली और फिजिकली बहुत टफ हो जाते हैं। आपको याद होगा कि 2016 को उड़ी अटैक के बाद भारत ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी। वो सर्जिकल स्ट्राइक 4 घंटे के अंदर भारत के स्पेशल फोर्सेस के कमांडो वो पाकिस्तान के 3 किलोमीटर तक अंदर गए। वहां पर उन्होंने 7 टेररिस्ट कैंप जो है उनको उड़ाया और तकरीबन 38-40 जो टेररिस्ट हैं उनको भी नेस्तनाबूद किया।
1: भारत के पास एक से बढ़कर एक स्पेशल फोर्सेस हैं, जो रणभूमि में शौर्य का इतिहास लिखने के लिए तैयार रहती हैं।

0: दुश्मनों की मौत का दूसरा नाम है मार्कोस, जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों की रूह कांप उठती है। इंडियन नेवी के ये मरीन कमांडोज ऐसे योद्धा हैं जो पाताल में दुश्मनों की समाधि तैयार करने की ताकत रखते हैं। लहरों पर राज करने वाले मार्कोस के महाबली चुटकियों में दुश्मन की ताबूत में आखिरी कील ठोक सकते हैं। मार्कोस या मरीन कमांडोज फोर्स भारत के सबसे खतरनाक और घातक कमांडोज हैं।
1: हिंद महासागर की निगरानी करने वाले मार्कोस कमांडोज खाली हाथ भी दुश्मन का काम तमाम कर सकते हैं। दरअसल इनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है। कठिन ट्रेनिंग के बाद मार्कोस कमांडो तैयार होते हैं। यहां तक कि एक रिकॉर्ड ये भी है कि 27 सेकंड में ये दुश्मन को मौत के घाट उतार सकते हैं।
0: मार्कोस या मरीन कमांडो फोर्स की गिनती भारत के सबसे खतरनाक कमांडोज में की जाती है। इसे भारत का नेवी सील्स भी कहा जाता है।
1: मार्कोस को भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो केवल नौसेना के लिए ही काम करते हैं, बल्कि जल थल नभ हर जगह पर मार्कोस अपनी ताकत से दुश्मन के दांत खट्टे कर सकते हैं। और यही वजह है कि हमारी सेना का सबसे अभिन्न अंग मार्कोस को माना जाता है।
0: इंडियन नेवी की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स यूनिट की ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है कि हर किसी के लिए इसे क्वालिफाई कर पाना आसान नहीं होता। पहले मार्कोस कमांडो के लिए चुने गए लोगों का 4 सप्ताह टेस्ट चलता है। टेस्ट में अगर सफलता मिली तो 1.5 साल की हार्ड तोड़ ट्रेनिंग होती है, और ये ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है कि 1000 जवानों में से कोई एक ही ट्रेनिंग पूरी कर पाता है। मार्कोस कमांडो वर्षों की ट्रेनिंग में खुद को खपाते हैं ताकि देश पर कोई आंख उठाने की हिमाकत न करे। मार्कोस कमांडो समंदर की सतह से 55 मीटर नीचे 15 मिनट तक बिना ऑक्सीजन उपकरण के रह सकते हैं और लड़ भी सकते हैं। समंदर की सतह से 35 मीटर नीचे करीब 20 मिनट तक रहने की क्षमता विकसित की जाती है। जांघों तक भरे कीचड़ में भागना होता है, कंधों पर 25 किलोग्राम का बोझ होता है, फिर 2.5 किलोमीटर की बाधा दौड़ का कोर्स भी होता है। यही नहीं, कई कमांडो सो ऐसे होते हैं जो आधे घंटे तक पानी में मुश्किल हालात से जूझ सकते हैं, फिर चाहे वो बर्फ से लबालब वुलर झील हो या फिर अरब सागर।
2: मार्कोस यानी मैरीन कमांडो फोर्स, ये भी इंडियन नेवी के कमांडोज हैं। इनको भी स्पेशल ट्रेनिंग दे के उनको तैयार किया जाता है, और ये समुन्दर के अंदर या कहीं भी ऐसी जगह पर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम करने की हालत में होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये समुन्दर के अंदर या पानी के अंदर ये काम कर सकते हैं अपना, ये हर जगह काम कर सकते हैं। इनको स्पेशल वेपन सिस्टम दिए जाते हैं, इनके लिए खास ट्रेनिंग के वेपन होते हैं जिसके ऊपर मेंटल और फिजिकल टफनेस के ऊपर इतना जोर दिया जाता है कि हर कमांडो एक इतनी बड़ी ताकत बन जाता है कि वो दुश्मन के किसी भी इरादे को नेस्तनाबूद कर सकता है।
0: मार्कोस कमांडो को सेना में मौजूद हर तरह के हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। कुकरी से लेकर सब मशीन गन तक चलाने में इन्हें महारत हासिल होती है। मार्कोस कमांडोस को 11 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदने की प्रैक्टिस कराई जाती है। 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदने के 8 सेकंड के भीतर पैराशूट खोलना होता है। ये ट्रेनिंग 40 डिग्री के तापमान पर दी जाती है। मार्कोस कमांडो का कॉम्बिनेशन बेजोड़ है। इनकी हर चाल और गोली पर दुश्मन का नाम होता है। पलक झपकते ही खेल खत्म।
2: इनकी ट्रेनिंग जो है कई जगह की जाती है, जैसे बेलगाम में जूनियर कमांडो ट्रेनिंग स्कूल है वहां पर किया जाता है, इसी तरह से राजस्थान में सोनमर्ग में जहां पर हाई अल्टीट्यूड का है वहां पर किया जाता है, और जंगल वारफेयर में अंदर हर तरह की ट्रेनिंग जो है इनको दी जाती है।
0: अमेरिका की नेवी सील से हिंद के इन सूरमाओं की तुलना की जाती है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये नेवी सील से भी ज्यादा घातक है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेवी के इन स्पेशल कमांडोज का निशाना अचूक है, वार अचूक है। दुश्मन का ऐसा कोई किला नहीं जिसे ये भेद न सके। आसमान से लेकर जमीन तक और जमीन से लेकर समंदर तक वॉरफेयर या फिर कॉम्बैट ऑपरेशन में इन्हें महारत हासिल है। फिलहाल मार्कोस फोर्स में 1200 कमांडोज हैं जो हर वक्त अलर्ट मोड पर रहते हैं।
1: मरीन कमांडोज को खुले आसमान का सरताज कहा जाता है। वैसे कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 4 दशक से अगर हमारी समुद्री सीमाएं सुरक्षित हैं तो इसका पूरा क्रेडिट मरीन कमांडोज को ही जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, तीन तरफ से समुद्री सीमाओं से भारत घिरा हुआ है, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, फिर चाहे चीन हो या फिर पाकिस्तान, लेकिन इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे कमांडोज, मरीन कमांडोज पूरी तरह से तैयार और तत्पर रहते हैं।
0: देश पर जब जब बाहरी खतरा मंडराया, मार्कोस को याद किया गया। स्पेशल फोर्स ने हर मौके पर खुद को साबित किया। मार्कोस 1987 से अब तक कई बड़े ऑपरेशंस में अपनी भूमिका निभा चुकी है और उन्हें एक सफल अंजाम तक पहुंचाया भी है। साल 1987 के पवन ऑपरेशन को मार्कोस कमांडो ने ही सफलता दिलाई थी। इसके बाद साल 1988 में कैक्टस ऑपरेशन, 1991 में ताशा ऑपरेशन, साल 1992 में जबरदस्त ऑपरेशन, 1999 में करगिल वॉर, 2008 में ब्लैक टॉर्नेडो ऑपरेशन और 2015 में हुए राहत ऑपरेशन समेत स्पेशल कमांडो फोर्स ने कई बड़े ऑपरेशन में शानदार प्रदर्शन किया है। इनके बुलंद हौसलों के सामने दुश्मन ने हमेशा घुटने टेके हैं और जिन्होंने घुटने नहीं टेके उनके कदम इन्होंने हमेशा के लिए उखाड़ दिए।

0: नेवी की तरह ही भारतीय वायुसेना की स्पेशल घातक फोर्स है गरुड़, जिनके कंधों पर आतंकवाद के खात्मे से लेकर सरहद पर दुश्मन से सीधा मुकाबला करने का जिम्मा होता है। गरुड़ कमांडोज की ट्रेनिंग नेवी के मार्कोस और आर्मी के पैरा कमांडोज की तर्ज पर होती है। वायुसेना के गरुड़ कमांडोज वॉलेंटियर नहीं होते, बल्कि उन्हें सीधे स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग के लिए ही भर्ती किया जाता है। एक बार गरुड़ कमांडो फोर्स को ज्वाइन करने के बाद ये कमांडोज अपने पूरे करियर में इस यूनिट के साथ ही रहते हैं। गरुड़ कमांडो बनना आसान नहीं होता। लगभग 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद गरुड़ कमांडोज तैयार होते हैं। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें उफनती नदियों और आग से गुजरना पड़ता है। बिना किसी सहारे पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। भारी बोझ के साथ कई किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती है और घने जंगल में रात गुजारनी होती है। गरुड़ कमांडोज बिना कुछ खाए पिए हफ्तों तक संघर्ष कर सकते हैं। गरुड़ कमांडोज के सभी रंग रूटों के लिए बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 52 सप्ताह तक चलता है। इन्हें एयरबॉर्न ऑपरेशंस, एयरफील्ड सीजर्स और काउंटर टेररिज्म का जिम्मा उठाने के लिए ट्रेन किया जाता है। गरुड़ कमांडोज की ट्रेनिंग स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इंडियन आर्मी और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ होती है। गरुड़ कमांडोज की शुरुआत के 3 महीने बेहद मुश्किल होते हैं। शुरुआत के 3 महीने के बाद रंगरूटों में जो सर्वश्रेष्ठ होता है वही ट्रेनिंग के अगले चरण में प्रवेश करता है। साल 2001 में जम्मू कश्मीर में एयरबेस पर आतंकी हमले के बाद वायुसेना को एक विशेष फोर्स की जरूरत पड़ी। इसके बाद साल 2004 में एयरफोर्स ने अपने एयरबेस की सुरक्षा के लिए गरुड़ कमांडो फोर्स की स्थापना की। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के वक्त भी आतंकियों से पहला मुकाबला गरुड़ कमांडोज ने ही किया था। मौजूदा दौर में भी कश्मीर घाटी में गरुड़ कमांडोज आतंकियों से कई मोर्चों पर मुकाबला कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने अपनी स्पेशल फोर्स को अमेरिकी 6 और असॉल्ट राइफल्स जैसे हथियारों से भी लैस किया है। इनके पास गैलिल स्नाइपर राइफल्स, इजरायली टेवर राइफल और इनके कई वेरिएंट्स के साथ साथ नेगेव लाइट मशीन गन भी मौजूद है, जो कि 800 से 1000 मीटर की रेंज से दुश्मन सैनिक को मार गिरा सकती है। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: सोशल मीडिया की एयरहेड का डेडली एक्शन। वुमनली डिस्पाई यूनिवर्स में आलिया का धमाका। मेंटल हेल्थ से लड़कर इंडस्ट्री में बनाई पहचान। आलिया के फिल्मी सफर की अनकही दास्तान। वंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: लेस इंटरप्शन, मोर लिसनिंग विथ ट्यून इन प्रीमियम। गेट लेस एड्स ऑन ऑल म्यूजिक, न्यूज एंड स्पोर्ट्स, सो यू कैन गेट बैक टू व्हाट रियली मैटर्स। लिसन टू ऑल योर फेवरेट स्टेशंस ऑन ओवर 200 डिवाइसेस, सो यू नेवर मिस अ सेकंड ऑफ एयर टाइम। Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more. With premium upgrade to TuneIn Premium, and start listening now.
1: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: सोशल मीडिया की एयरहेड का डेडली एक्शन। वुमनली डिस्पाई यूनिवर्स में आलिया का धमाका। मेंटल हेल्थ से लड़कर इंडस्ट्री में बनाई पहचान। आलिया के फिल्मी सफर की अनकही दास्तान। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, Sage University, transforming your passion into profession.
5: गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक मॉनसून दिखा रहा अपने रंग, सूरत में भारी बारिश के चलते उफान पर तापी नदी, ठाणे में सड़क से लेकर गली तक पानी से लबालब। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से उफान पर नदी नाले, पालमपुर की न्यूगल नदी में फंसे 7 पर्यटकों का हुआ सफल रेस्क्यू, पुलिस प्रशासन के सैलानियों को सतर्क रहने की अपील। बाबा बर्फ आने के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह, पवित्र यात्रा के दूसरे दिन अब तक करीब 30,000 भक्तों ने किए दर्शन, घाटी में सुनाई दे रही बम बम भोले की गूंज। अमरनाथ यात्रा के बीच आया एक और गौरवशाली पल, पहलगाम में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में फहराया गया तिरंगा, आस्था दृढ़ता और वीरता का बना प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को दी विकास की सौगात, जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल के अलावा पचपदरा रिफाइनरी का किया शुभारंभ, गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर यूनिट का उद्घाटन। भारत मंडपम में देश के सबसे बड़े टॉय एक्सपो का हुआ शुभारंभ, 7 जुलाई तक चलेगा यह एक्सपो, बिजनेस के नए अवसरों को मिलेगा बड़ा मंच। बीजिंग जू में स्टार पांडा मेंगलान ने मनाया 11वां जन्मदिन, जू प्रशासन ने खास केक काटकर जन्मदिन किया सेलिब्रेट, बड़ी संख्या में लोग इस जश्न के गवाह बने।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबर

सीक्वेंसेस तहलका मचा दिया है। जी हाँ, यूं तो इस अभिनेत्री की इमेज एक सॉफ्ट और सोबर लड़की की है, लेकिन यशराज फिल्म्स ने नारी प्रधान स्पाई थ्रिलर बनाने का फैसला किया तो दांव इसी सॉफ्ट और सोबर इमेज वाली अभिनेत्री पर लगाया। कमाल ये है कि अपनी इमेज के उलट इस अभिनेत्री ने स्पाई यूनिवर्स मूवी में भी दमदार अभिनय कर सबका दिल जीत लिया।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने यशराज फिल्म्स की पहली वुमन लीड स्पाई थ्रिलर में अपने एक्शन

0: आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि यशराज फिल्म्स की वुमन लीड स्पाई यूनिवर्स की पहली फिल्म अल्फा की सीता यानी कि आलिया भट्ट है। जी हाँ, 3 जुलाई को रिलीज हुई अल्फा को बॉक्स ऑफिस पर उस तरह की ओपनिंग नहीं मिली जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आलिया भट्ट अपने एक्शन से दर्शकों का दिल जीत रही है। साफ है कि स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर से शुरू कर आलिया ने अल्फा तक का बेमिसाल सफर तय कर लिया है। ये वही आलिया है सोशल मीडिया पर कभी जिनके मीम्स की भरमार रहती थी। एक समय आलिया की ट्रोलिंग नेटिजंस का स्ट्रगल बन गया था। हालांकि सोशल मीडिया पर आलिया का जो परसेप्शन बना, आलिया की हकीकत उससे बिल्कुल जुदा है।
1: आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी है।
2: And she's such a fine actress. और ये मूवी में भी टॉप नॉच एक्शन और फुल पैक्ड एक्शन है।
3: एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वार, पठान, टाइगर 3 और वार 2 जैसी स्पाई यूनिवर्स की धमाकेदार फिल्में दे चुके यशराज फिल्म्स ने पहली बार जब वुमन लीड स्पाई थ्रिलर अल्फा बनाई तो दांव खेला उस आलिया भट्ट पर सोशल मीडिया पर जिसकी इमेज एयरहेड की रही है। बॉक्स ऑफिस पर अल्फा की ओपनिंग बेशक उम्मीद के मुताबिक नहीं रही, लेकिन यशराज फिल्म्स की पहली वुमन लीड स्पाई यूनिवर्स मूवी में आलिया ने अपने नेल बाइटिंग एक्शन सीक्वेंस और संजीदा अदाकारी के दम पर दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म के कथानक और निर्देशन पर सवाल उठाने वाले भी आलिया की एक्टिंग की दिल खोल कर तारीफ कर रहे हैं।
1: आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी है, सरवरी बाग की एक्टिंग अच्छी है। एक्टिंग में तो दे आर बोर्न एक्टर, तो उसमें तो कोई कमी निकाल नहीं सकता है, लेकिन स्टोरी वाइज जो होनी चाहिए मूवी वो नहीं है।
4: बेसिकली आलिया मैम की जब बॉलीवुड करियर स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, तो उसमें वो काफ़ी एकदम ऐसे होते हैं ना स्वीट सी टीनेजर टाइप से रोल स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे उन्होंने लव स्टोरीज वगैरह किए, फिर हम सब सरप्राइज हो गए आलिया मैम को गंगूबाई में देख के, एकदम अलग सा रोल। एंड अभी इधर अल्फा में एक्शन वाला रोल, तो अच्छा लगा। वो अपने आप को प्रूफ कर रही है कि वो सारे कैरेक्टर्स में फिट हो सकती है।
2: अभी मुझे मूवी से काफ़ी आशाएं थी, क्योंकि इस तरह की जो स्पाई थ्रिलर मूवीज होती हैं, एक्शन मूवीज होती हैं, उसमें आलिया भट्ट की राजी मूवी याद आ जाती है हमेशा। एंड शी इज सच ए फाइन एक्ट्रेस और ये मूवी में भी टॉप नॉच एक्शन, बहुत ही फुल पैक्ड एक्शन है।
5: ये अल्फा मुझे फिल्म अच्छी लगी है। फिल्म का जो एक्शन है वो काफ़ी तगड़ा है। आलिया भट्ट ने एक्टिंग काफ़ी टॉप नॉच की है, और साथ ही साथ जो शर्वरी है उन्होंने केमिस्ट्री काफ़ी, मतलब दोनों की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी तगड़ी है, तो फिल्म देख कर अच्छा लगा है।
3: साफ है कि पर्दे पर अपनी सॉफ्ट इमेज के लिए मशहूर रही आलिया यशराज फिल्म की पहली नारी प्रधान स्पाई थ्रिलर में निर्माता निर्देशक से लेकर दर्शकों तक की उम्मीद पर 100% खरा उतरी हैं। स्पाई थ्रिलर मूवी अल्फा में अपने एक्शन सीक्वेंस से धमाल मचा रही ये वही आलिया हैं सोशल मीडिया पर जिनकी इमेज कभी अनइन्फॉर्म्ड और इग्नोरेंट यूथ की बन गई थी।
6: Who is the president of India?
7: Pranab Mukherjee.
8: Sorry, Prithviraj
3: Chauhan. एक समय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आलिया भट्ट के मीम से भरे रहते थे। आलम ये था कि किसी ने तथ्यात्मक रूप से कोई गलत बयानी की तो सोशल मीडिया पर तुरंत उसकी तुलना आलिया भट्ट से कर दी जाती थी। बहरहाल ये आलिया के बारे में सोशल मीडिया यूजर्स या नेटिजन्स का अपना परसेप्शन था। आलिया की रियलिटी नेटिजन्स के परसेप्शन से कोसों दूर है। आपको बता दें कि आलिया को लेकर इस तरह का सोशल मीडिया परसेप्शन इसलिए बन गया था क्योंकि एक बार उन्होंने देश के राष्ट्रपति का नाम गलत बता दिया था। दरअसल बतौर लीड एक्ट्रेस 2012 में आई अपनी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रमोशन के लिए आलिया करण जौहर के शो कॉफी विद करण में अपने को स्टार्स वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ पहुंची थी। करण ने लाइटर मोड में आलिया से भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया और आलिया ने उत्साह में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का नाम बता दिया था, जबकि उस समय देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे।
6: Who is the president of India?
3: आलिया की जिंदगी की गहराई में उतरे बगैर, पूरी सच्चाई जाने बगैर नेटिजन्स ने ये मान लिया कि आलिया का आईक्यू लेवल बेहद लो है और सामान्य ज्ञान तो शून्य है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है कि आलिया भट्ट अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी ADHD नामक एक रेयर डिजीज से पीड़ित हैं, जिसका पेशेंट कभी कभी जोन आउट हो जाता है। जोन आउट का मतलब ये है कि पेशेंट फिजिकली कहीं और होता है, लेकिन उसका दिमाग अचानक किसी दूसरे जोनर में चला जाता है।
7: मैं बचपन से जोन आउट करते आई हूँ, हमेशा क्लासरूम में भी जोन आउट होती थी, कॉन्वर्जेशन में जोन आउट होती हूँ। तब रिसेंटली मैंने एक पर्सनालिटी जो भी क्या होता साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और मुझे पता चला कि मैं ADHD के स्पेक्ट्रम में काफी हाई हूँ। मुझे ADHD है, तो अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर।
3: आपको बता दें कि ADHD डिजीज का IQ लेवल से कोई रिलेशन नहीं है। काफी हाई IQ वाले लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है। होता यही है कि कभी कभी इसका पेशेंट जोन आउट हो जाता है और उस दौरान कोई ऐसा बयान दे सकता है या ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकता है जिससे उसके IQ लेवल पर सवाल उठने लगे। आपको बता दें कि आलिया का न सिर्फ IQ लेवल बल्कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी नेक्स्ट लेवल का है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि साल 2012 से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी आलिया कैमरा ऑन होने के बाद कभी जोन आउट नहीं होती। अलबत्ता कैमरे के सामने आते ही आलिया इतनी फोकस्ड हो जाती हैं कि उन्हें अपने किरदार और संवाद के सिवा कुछ भी ध्यान नहीं रहता।
7: I'm so present जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ, चाहे मैं वो किरदार में प्रेजेंट हूँ, मतलब द पार्ट दैट आई एम प्लेइंग आई एम प्रेजेंट एज द कैरेक्टर, बट आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। और फिर अभी ऑफ कोर्स आफ्टर राहा, जब भी मैं उसके साथ रहती हूँ, आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। तो ये 2 आई थिंक मोमेंट्स हैं मेरी लाइफ में जहाँ पे मैं सबसे ज्यादा पीसफुल फील करती हूँ।
3: साफ है कि आलिया भट्ट अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को भली भांति पहचानती हैं। यही वजह है कि कॉफी विद करण में गलत जवाब देने के बाद जबरदस्त तरीके से ट्रोल होने पर भी आलिया पूरी तरह काम एंड कूल रहीं। काफी वक्त बाद आलिया से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने पूरे ह्यूमर के साथ जवाब देकर ट्रोलर्स को भी ट्रोल कर दिया।
9: मैं अभी ऑनेस्टली बोर हो गई उस जोक से, मेरे को एक्चुअली नया जोक चाहिए। आई वांट टू मेक अ मिस्टेक अगेन, हाँ कोई, मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं क्या गलती करूँ कि फिर से लोग उसको 1-2 साल और खींचेंगे।
3: आपको बता दें कि आलिया बॉर्न एक्ट्रेस हैं। संयोग से इनका जन्म एक ऐसे घराने में हुआ जहाँ माहौल पूरी तरह फिल्मी था। मार्च 1993 को हुए आलिया के जन्म से काफी पहले से पिता महेश भट्ट अर्थ, सारांश, नाम, आशिकी, सड़क और दिल है कि मानता नहीं जैसी कल्ट और आइकॉनिक फिल्मों का निर्देशन कर इंडस्ट्री में अलग पहचान स्थापित कर चुके थे। आलिया की मां सोनी राजदान भी 36 चौरंगी ले, मंडी, सारांश और त्रिकाल जैसी 8 फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी से क्रिटिक्स की शाबाशी हासिल कर चुकी थीं। आलिया ने भी जब से होश संभाला एक्टिंग को छोड़कर किसी दूसरे काम का तसव्वुर इनके मन में एक बार भी नहीं हुआ।
9: मैं हमेशा कहती कि मैं एक्शन पे ही पैदा हुई थी अपनी माँ की कोख से। आई डोंट थिंक देयर वाज दैट 1 सेकंड आल्सो कि मैं दुनिया में आई, मुझे उस सेकंड पे ही पता था कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है और मुझे एक्टर बनना है और मुझे एक्टिंग करनी है। आई थिंक उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था।
3: जिन लोगों ने आलिया को अनइन्फॉर्म्ड यूथ का एम्बेसडर बना दिया था, उन्हें ये जानना चाहिए कि आलिया भट्ट जब सिर्फ 4 साल की थी तभी उन्होंने श्यामक डावर डांस एकेडमी की समर क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। बात सिर्फ इतनी नहीं है, डांस एकेडमी में 4 साल की आलिया इंडस्ट्री की प्रेस्टिजियस फैमिली का तगमा लेकर नहीं बल्कि लर्निंग हंगर के साथ जाती थीं। यही वजह है कि बाकी बच्चों के मुकाबले वो ज्यादा अच्छे से चीजों को ग्रैस्प करती थीं। खुद श्यामक डावर ने आलिया की तारीफ करते हुए एक बार कहा था कि आलिया सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेती हैं।
7: श्यामक डावर जी के जो समर कैंप समर डांस क्लासेस थे यार, वो एक्चुअली मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का बहुत ही अहम हिस्सा था। एंड आई रिमेम्बर दोज मोमेंट्स वेरी क्लियरली, क्योंकि जेन्युइनली इम्पैक्ट मेरी लाइफ में काफ़ी था। क्योंकि कॉन्फिडेंस, लोगों के सामने डांस करना, फ्री बनना, ऐसे फील करना कि आप सबसे छोटे हो पर फिर भी बड़े हो और डांस करना है।
3: 4 की उम्र में श्यामक डावर की डांस क्लास ज्वाइन करने वाली आलिया 7 साल की होते होते नृत्य कला में इतनी पारंगत हो गई कि स्कूल के एक डांस कंपटीशन में श्यामक डावर ने उन्हें हायर क्लास की छात्राओं के बीच भेज दिया, क्योंकि डावर को ये भरोसा हो गया था कि हायर क्लास की छात्राओं के बीच भी आलिया बेहतर परफॉर्म करेंगी। हालांकि तब मासूम आलिया के साथ एक मजेदार वाकया भी पेश आया था।
7: क्लास में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था मेरा, तो श्यामक सर ने मुझे एक सीनियर बैच में डाल दिया। तो मैं 7 साल की थी और मैं क्लास के अंदर आई और इंस्ट्रक्टर कंफ्यूज हो गए कि आप ये क्लास में हो, क्योंकि इट वॉज देवर लिटरली अडल्ट इन दैट क्लास। और मैंने बोला हाँ श्यामक सर, लाइक आई एम सपोज टू कम इन दिस क्लास। तो पहले उनका क्वेश्चन था हाउ ओल्ड आर यू, तो मैंने बोला 7, बट देन इमीडिएटली मैंने बोला बट इट्स माई बर्थडे टुमारो, आई एम गोइंग टू बी 8 टुमारो।
3: दिलचस्प बात तो यह है कि अगले दिन आलिया का जन्मदिन नहीं था, लेकिन उन्होंने झूठ इसलिए बोल दिया क्योंकि उन्हें डर हो गया था कि कम उम्र को देखते हुए उन्हें कहीं नीचे की क्लास में न भेज दिया जाए। इस लेवल का आत्मविश्वास था आलिया के भीतर बचपन से ही। कमाल ये है कि यही आत्मविश्वास तब भी बना रहा जब आलिया ने रुपहले पर्दे पर चुनौतीपूर्ण किरदार निभाना शुरू किया। इंडस्ट्री के स्टार फैमिली से आने वाले नेपो किड्स आमतौर पर फिल्में साइन करने से पहले अपने घर के अनुभवी सदस्यों से सलाह मशविरा करते हैं, लेकिन आलिया का हिसाब अलग है। वो फिल्में साइन करने से पहले अपने पिता महेश भट्ट या माँ सोनी राजदान, यहाँ तक कि पति रणबीर कपूर से भी क्लियरेंस लेना जरूरी नहीं समझती, बल्कि इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स के आधार पर खुद ही फैसले लेती हैं।
7: मैं एक्चुअली अपना माइंड मेकअप करने के बाद डिस्कस करती हूँ, मैं बिकॉज आई एम नॉट समबडी हु नीड्स टू बी कन्विंस्ड फॉर अ फिल्म, एक तो बात यह है, और दूसरी बात यह है कि मेरा इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स ही सबसे प्योर रिस्पॉन्स होता है। तो अगर कोई, मैं इंस्टिंक्टिवली अगर एक्साइट हो जाऊंगी और किसी ने अगर बोल दिया कि मतलब ऐसे मत करो, आई एम जस्ट गिविंग इफ केस सिनेरियो, मेरे साथ हुआ नहीं है, पर अगर बोल दिया तो फिर मेरे दिमाग में डाउट पैदा हो जाएगा। तो मेरी जर्नी मेरी है और मेरी डिसीजन भी मेरी होनी चाहिए, इसलिए दैट्स द रीजन, नॉट फॉर एनी अदर रीजन।
3: आप समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया की नजर में अनइन्फॉर्म्ड सेलेब्स रही आलिया की प्रतिभा उन्हें लेकर बने परसेप्शन से बिल्कुल अलग है। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से किक हुए एकाद अपवादों को छोड़ दें तो आलिया के लेवल का आईक्यू और टैलेंट हिंदी सिनेमा के 100 साल के इतिहास में इक्का दुक्का अभिनेत्रियों में ही नजर आएगा।
0: अल्फा मूवी में अपने एक्शन से धमाल मचा रही आलिया, ये तो बॉलीवुड की एक दमदार फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। लेकिन रुपहले पर्दे के अपने यादगार सफर में आलिया ने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साए का सहारा कभी नहीं लिया। आलिया के पिता महेश भट्ट बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा निर्देशकों में शुमार है, जबकि माँ सोनी राजदान आज फिल्मों की आइकन रही है। लेकिन आलिया ने अपने फिल्मी सफर में आगे बढ़ने के लिए कभी अपने माता पिता से मदद की उम्मीद नहीं की। शुरू से ही उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट पर भरोसा किया और इसका असर ये है कि आलिया आज बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेट अभिनेत्रियों की फेहरिस्त में काफी ऊंचा मकाम हासिल कर चुकी है।
3: इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नेपो किड्स के सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक मिलने की रवायत नई नहीं है। हालांकि ज्यादातर नेपो किड्स अपने पारिवारिक वटवृक्ष के घने साए में अंकुरित होकर फलते फूलते हैं और उसी साए में फना भी हो जाते हैं, पर कुछ नेपो किड्स ऐसे भी हैं जो मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर अपनी पारिवारिक लिगेसी से निकलकर अलग साम्राज्य स्थापित करते हैं। आलिया भट्ट दूसरी कैटेगरी की नेपो किड हैं। बतौर लीड हीरोइन अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने अगर प्रतिभा नहीं तो जुनून, लगन और मेहनत की तो मुनादी कर ही दी थी। तनुजा चंद्रा के निर्देशन में बनी और 1999 में रिलीज हुई आइकॉनिक मूवी संघर्ष में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू करने वाली आलिया भट्ट को हीरोइन के तौर पर डेब्यू करने का मौका बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के जरिए दिया था। आलिया की उम्र तब महज 18 साल थी, लेकिन उनका फिगर फिल्म के किरदार के लिहाज से फिट नहीं था। ऑडिशन के दौरान करण जौहर ने आलिया के लिए कड़ी शर्त रख दी कि उन्हें अपना वेट लॉस करना होगा। आलिया टीनेज में ही अपने करियर को लेकर कितनी संजीदा थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 3 महीने के भीतर उन्होंने अपना वेट 68 किलो से कम करके 51-52 किलो कर लिया, क्योंकि बचपन से बस एक ही तो सपना था आलिया का, सितारा बनकर सिल्वर स्क्रीन पर चमकने का। इसीलिए शूटिंग के दौरान सेट पर पहली बार जब कैमरा ऑन हुआ तो उनका उत्साह चरम पर पहुंच गया।
7: वो कहते हैं ना, एक्सट्रीम जॉय फीलिंग आता है कि कैमरा के सामने वो शूटिंग हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, बट यू फील के अंदर से कुछ। इवन दो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाज अ ब्लर, जो पहला गाना जो मेरी लाइफ की पहली दिन थी शूटिंग की, वो राधा के लिए थी। तो एक शॉट था, मेरे को नीचे आना था, टर्न करके ऐसा कुछ करना था, फिर दुपट्टा उठा के कैमरा में देखना था और ब्लोअर फैन आ रहा था, उसी में ही मेरे को ऐसे बहुत मजा आ गया।
3: पहली बार कैमरे के सामने आने के बाद आलिया बेशक उत्साहित थी, लेकिन फिल्म साइन करने के बाद वो फेल्योर के फियर साइकोसिस का शिकार हो गई थी। आलिया को ये डर सताने लगा कि अगर वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाई या फिल्म फिट गई तो आगे करेंगी क्या। पिता महेश भट्ट को जब बेटी के फियर साइकोसिस के बारे में पता चला तो उन्होंने अलहदा तरीके से आलिया को उससे बाहर निकालने की कोशिश की। महेश भट्ट ने बेटी को विशेष फिल्म्स के अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि मन में जो भी डर है, आशंका है, उसका इजहार सबके सामने करो।
7: For some reason, my father is outstanding in a crisis situation. जब भी आप क्राइसिस में हो, आप उनको फोन करो, he has the most calm tone and he'll deal with the situation in the best way. In this particular situation, उन्होंने decide किया, ऑफिस आ जाओ, सबके सामने बोलो तुम कैसे फील कर रही हो। जो एक्चुअली एक बहुत अजीब सीक्वेंस सिचुएशन है, क्योंकि आप पहले तो इतना वल्नरेबल फील करो, सबके सामने उठ के बोलना है कि मैं ऐसे फील कर रही हूँ।
3: महेश भट्ट ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने का कोई मनोवैज्ञानिक अनुभव था, ये तो नहीं पता, लेकिन उनका ये अनोखा फॉर्मूला आलिया के लिए क्लिक जरूर कर गया। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डर का डंका बज जाने के बाद आलिया के अंदर की घुटन कम हो गई। वैसे 19 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर बॉक्स ऑफिस पर तो कामयाब रही, लेकिन आलिया की इमेज बॉर्बी डॉल से कुछ ज्यादा नहीं बन पाई। उधर क्रिटिक्स ने भी आलिया के डेब्यू को महेश भट्ट के प्रभाव से जोड़ दिया। लेकिन फिल्म हिट होने के बाद बड़े पर्दे पर बड़ा मकाम हासिल करने के आलिया के संकल्प के साथ उनका आत्मविश्वास भी जुड़ गया। अगली ही फिल्म हाईवे में अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर आलिया ने क्रिटिक्स को पहले से तय परसेप्शन को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। 21 फरवरी 2014 को रिलीज हुई हाईवे में वीरा त्रिपाठी के डी ग्लैमरस किरदार में बेहतरीन अभिनय का तड़का मारकर आलिया ने उन्हें बॉर्बी डॉल कहने वालों का मुंह बंद कर दिया। दरअसल अभिनय को लेकर आलिया का फलसफा शुरू से ही कन्वेंशनल नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिव रहा है।
9: कैमरे के सामने का जो एक फीलिंग होता है ना, उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता है। एट द एंड ऑफ द डे मैं जितना भी चाहे डायलॉग सीख लूँ या कुछ रट्टा मार लूँ, फिजिकल ट्रेनिंग कर लूँ, अपने आप को कमरे में बंद करके मेथड एक्टिंग भी कर लूँ, अगर कैमरे के सामने मुझे फीलिंग नहीं आ रही है तो कैमरा पकड़ लेगा और मेरी परफॉर्मेंस जो है उसमें दिख जाएगी। तो तैयारी जारी रहती है फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं कैमरे के सामने सिर्फ फील करने की कोशिश करती हूँ।
3: हाईवे के बाद आलिया ने इंडस्ट्री में मुनादी कर दी कि मीना कुमारी और मधुबाला की खींची हुई अदाकारी की लीक इस युग में भी मिटी नहीं है। 2016 में आई उड़ता पंजाब के बाद तो क्रिटिक्स ने भी स्वीकार कर लिया कि आलिया की अदाकारी किसी एक जोनर तक महदूद नहीं है। उड़ता पंजाब के एक मैले कुचैले भोजपुरी लड़की के किरदार में आलिया ऐसे गुम हो गई कि पहचानना मुश्किल हो गया कि ये वही राधा हैं जिसने डिस्को दीवाने पर ठुमके लगाए थे। उड़ता पंजाब के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। ...2018 में आई राजी में एक कश्मीरी जासूस के किरदार में आलिया ने अपने अभिनय से इतनी जान फूंक दी कि 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली कुछ एक महिला प्रधान फिल्मों में शुमार हो गई। वहीं 2019 में आई गली बॉय में सफीना के किरदार को आलिया ने अपनी एक्टिंग से जीवंत कर दिया। गली बुआए में नारी को प्रकृति से सहज प्राप्त कोमलता और जरूरत पड़ने पर प्रकट होने वाली आक्रामकता के मिश्रण को आलिया ने इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद तो आलिया बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइनों की फेहरिस्त में शुमार हो गईं। 25 फरवरी 2022 को रिलीज हुई गंगूबाई काठियावाड़ी आलिया के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में आलिया ने एक वेश्यालय की मालकिन और माफिया क्वीन के चुनौतीपूर्ण किरदार को सहजता के आईने में उतार कर सबको हतप्रभ कर दिया। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया को सबसे प्रेस्टीजियस माने जाने वाले नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया।
10: गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं अभिनेत्री आलिया भट्ट।
3: 2022 आलिया के लिए बहुत इवेंटफुल साल साबित हुआ। साल 2022 में कोरोना की मार से पस्त हो चुकी फिल्म इंडस्ट्री दोबारा उठ खड़े होने की जद्दोजहद कर रही थी और इसी साल आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी के अलावा RRR और ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जैसी फिल्में रिलीज हुईं। 2022 में ही उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर किस्मत आजमाई और डार्लिंग्स प्रोड्यूस की, जो OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और सफल भी रही। 2023 में आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और 2024 में आई जिगरा ने भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया। साल 2027 में आलिया संजय लीला भंसाली के एक और शाहकार लव एंड वार में भी नजर आने वाली हैं। साफ है कि आलिया बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट अभिनेत्रियों की सूची में शुमार हो चुकी हैं। आज आलिया अपनी एक फिल्म के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस लेती हैं।
0: तो बंदे में दम में आज आपने आलिया भट्ट के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
11: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
12: Schwarber to right field, and it will leave.
11: from the first pitch of the season to the stretch run.
12: That's the ball game.
11: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen. Today.
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
16: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
17: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
16: अविश्वास में विश्वास बसता है
13: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
11: गुड न्यूज टुडे.
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को

0: all sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
1: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
0: Big 12 Radio.
2: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
0: and
2: down.
0: And talk sports.
3: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
0: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
6: गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक मॉनसून दिखा रहा अपने रंग। सूरत में भारी बारिश के चलते उफान पर तापी नदी, ठाणे में सड़क से लेकर गली तक पानी से लबालब। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से उफान पर नदी नाले, पालमपुर की न्यूगल नदी में फंसे 60 पर्यटकों का रेस्क्यू, पुलिस प्रशासन के सैलानियों को सतर्क रहने की अपील। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह, पवित्र यात्रा के दूसरे दिन अब तक करीब 30,000 भक्तों ने किए दर्शन, घाटी में सुनाई दे रही बम बम भोले की गूंज। अमरनाथ यात्रा के बीच आया एक और गौरवशाली पल, पहलगाम में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में फहराया गया तिरंगा, आस्था दृढ़ता और वीरता का बना प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को दी विकास की सौगात, जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल के अलावा पचपदरा रिफाइनरी का शुभारंभ, गुजरात के सालंद में सेमीकंडक्टर यूनिट का उद्घाटन। भारत मंडपम में देश के सबसे बड़े टॉय एक्सपो का हुआ शुभारंभ, 7 जुलाई तक चलेगा यह एक्सपो, बिजनेस के नए अवसरों को मिलेगा बड़ा मंच।

0: इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को मिला मौका। सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले बने खिलाड़ी। टॉस जीतकर टीम इंडिया ने चुनी बल्लेबाजी।
1: गुड न्यूज चुनी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से सड़कें बनी सैलाब। वसई में पानी के बीच मस्ती करते दिखे लोग। वसई में वाटर लॉगिंग के बीच राहत बचाव कार्य जारी। सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी। वसई विरार में भारी बारिश से आम जनजीवन हुआ प्रभावित। निचले इलाके में पानी भरा। मुंबई में मरीन ड्राइव पर देखा गया हाई टाइड। तटीय इलाके में लोगों से सतर्क रहने की सलाह। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर समंदर में उठी ऊंची लहरें। हाई टाइड देखने उमड़ी लोगों की भीड़। मुंबई के घाटकोपर में भारी बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग। मुंबई पुलिस वाहन चालकों की मदद करती नजर आई। लगातार बारिश की वजह से वसई सन सिटी रोड पानी में डूबा। वाहन चालकों और राहगीरों को हो रही है परेशानी। मुंबई के एन टॉप हिल इलाके में बारिश और तेज हवा की वजह से घर पर गिरा पेड़, मकान हुआ क्षतिग्रस्त। मुंबई के अंधेरी इलाके में घरों और दुकानों में घुसा बारिश का पानी। अंधेरी सबवे को किया गया बंद। भारी बारिश के बीच अंधेरी में कोटेश्वर नगर बिल्डिंग में जल भरा। परिसर में कई फीट भरा पानी। पालघर में सड़कों के दोनों ओर 3 से 4 फीट तक भरा पानी। लोगों को अपने घरों तक पहुंचने में भी हो रही है कठिनाई। पालघर में भारी बारिश का ज्यादा असर। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर 10 ट्रक पानी में फंसे। मूसलाधार बारिश के कारण नाला सुपारा में रेलवे ट्रैक पानी में डूबे। वाटर लॉगिंग की तस्वीरें आई सामने। नाला सुपारा में सैलाब में फंसे 25 लोगों का किया गया सफल रेस्क्यू। जल भराव की वजह से पानी में फंस गए थे लोग। भारी बारिश के कारण मुंबई के भाडुप में फुटपाथ का छोटा सा हिस्सा धंसा। पानी में सामने आया लाइव वीडियो। नवी मुंबई में लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में भरा पानी। वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को हो रही दिक्कतें। नवी मुंबई में भारी बारिश के कारण जल भराव। तुर्बे रेलवे स्टेशन के पास ठाणे बेलापुर रोपट पर भरा पानी। भारी बारिश की वजह से ठाणे के भिवंडी भाजी मार्केट में वाटर लॉगिंग। बाजार पर पड़ा इसका असर। कमर तक पानी में डूबे लोग। भिवंडी में लगातार बारिश की वजह से सड़कें बनी सैलाब। जल भराव के कारण आम जनजीवन हुआ प्रभावित। सतारा में महाबलेश्वर के पास नावली गांव में धसी जमीन। भारी बारिश के कारण घरों खेतों और सड़कों में आई दरारें। मुंबई में झमाझम बारिश। मरीन ड्राइव आए सैलानियों के लिए खुशगवार हुआ मौसम। मुंबई में हुई बारिश ने बढ़ाई गेटवे ऑफ इंडिया पे पर्यटकों की संख्या। सुहाने मौसम के सैलानियों ने उठाया लुत्फ। मुंबई में बारिश ने कई इलाकों में जनजीवन किया प्रभावित। किंग सर्कल से तेज बारिश के बीच भरा पानी। मुंबई में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। वसई में सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आने जाने में हो रही दिक्कत। मुंबई के फोर्ट इलाके में सड़कों पर भरा पानी। लगातार बारिश से यातायात हुआ प्रभावित। मध्य प्रदेश के बालाघाट में भारी बारिश के कारण 16 ग्रामीण फंसे। प्रशासन और राहत दल ने गांव वालों का किया सफल रेस्क्यू। एमपी के मंडला में लगातार बारिश के चलते बढ़ गया है नर्मदा नदी का जलस्तर। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के खोंगा के पास भारी बारिश से हुआ भूस्खलन। रामनगर उधमपुर रोड बंद। यातायात पूरी तरीके से हुआ प्रभावित। गुजरात के बनासकांठा में मानसून की पहली बारिश में ही जलमग्न हुआ घानेरा। कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित। गुजरात के जूनागढ़ में तेज बारिश से सड़कों और निचले इलाकों में भरा पानी। कई इलाके इससे बुरी तरीके से प्रभावित। पवित्र अमरनाथ यात्रा दूसरे दिन भी जारी। 2 दिन में अब तक 30,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ यात्रा को लेकर बाबा के भक्तों का जोश हाई। बम भोले के जय घोष से गूंज रहा अमरनाथ यात्रा मार्ग। यात्रा मार्ग पर अमरनाथ तीर्थयात्रियों की सुविधा का रखा जा रहा है पूरा ख्याल। अभी तो सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा जारी। कड़ी सुरक्षा के बीच करीब 6400 अमरनाथ श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था हुआ रवाना। लगाए हर हर महादेव के जयकारे। खराब मौसम के बावजूद भारी पड़ा शिव भक्तों का उत्साह। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। उदयपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंची। देखते ही देखते बन गया है मंदिर परिसर में भक्तों का उत्साह। चांदी के भव्य रथ को दिया जा रहा है अंतिम रूप। कारीगर फाइनल टच देकर निखार रहे हैं रथ की भव्यता। मंदिर में जगन्नाथ महाप्रभु के भजनों की मधुर गूंज दे रही है सुनाई। श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर कर रहे हैं भजन कीर्तन। रथ यात्रा को लेकर मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। हर उत्सव और श्रद्धा का माहौल नजर आ रहा है। उदयपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। शहर भगवान जगन्नाथ के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार। उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज तड़के भव्य भस्म आरती का हुआ संपन्न। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन किए। भस्म आरती के दौरान पूरा गर्भगृह हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। भक्तों ने आध्यात्मिक माहौल का अनुभव किया। सावन से पहले महाकाल की भस्म आरती में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। मंदिर प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की है।

0: देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने महाकाल के लौकिक भस्म आरती में भाग लिया, इस सनातन परंपरा का अद्भुत स्वरूप बताया। भोर में होने वाली महाकाल की भस्म आरती का दिव्य दृश्य देख भाव विभोर हुए श्रद्धालु, बाबा से मांगा कुशलता का आशीर्वाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का किया उद्घाटन, 480 करोड़ रुपए की लागत से बना है अत्याधुनिक टर्मिनल। इस सौगात के साथ ही राजस्थान को मिला पहला 6 एरो ब्रिज की सुविधा वाला एयरपोर्ट, इस हाईटेक टर्मिनल से जोधपुर की हवाई कनेक्टिविटी को मिलेगी नई उड़ान। ये आधुनिक टर्मिनल सालाना 20 लाख यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देने में है सक्षम, इस सौगात से मारवाड़ में पर्यटन व्यापार और रोजगार के नए अवसरों को मिलेगा विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा विकास परियोजनाओं की दी सौगात, इन परियोजनाओं से राजस्थान को मिलेगी विकास की रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के पचपदरा में पेट्रोल रिफाइनरी का भी उन्होंने किया उद्घाटन, हर दिन 1.8 लाख बैरल कच्चे तेल को रिफाइन किया जाएगा। दिल्ली में 17वें टॉय विज इंटरनेशनल B2B एक्सपो 2026 का भव्य शुभारंभ, रंग बिरंगे और इनोवेटिव खिलौनों ने पहले ही दिन खींचा सभी का ध्यान। देश विदेश के खिलौना निर्माताओं का दिल्ली में संगम, बच्चों की सीख और मनोरंजन से जुड़े आधुनिक खिलौने बने आकर्षण का मुख्य केंद्र। परंपरा और टेक्नोलॉजी का अनोखा मेल, टॉय बिज एक्सपो 2026 में स्मार्ट टॉयज की शानदार झलक देखने को मिली। मेक इन इंडिया खिलौनों को मिला बड़ा मंच, स्वदेशी खिलौनों की गुणवत्ता और रचनात्मकता ने खरीदारों को किया प्रभावित। टॉय विज इंटरनेशनल B2B एक्सपो 2026 में कारोबार के नए अवसर, खूबसूरत डिजाइन और सुरक्षित खिलौनों ने उद्योग जगत को दिखाई नई दिशा। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में उमिंगांग महोत्सव के दौरान घुड़सवारों ने ऐतिहासिक जॉस्टिंग का किया रोमांचक प्रदर्शन, 16वीं सदी की जंग का जीवंत प्रदर्शन। पारंपरिक कवच पहने कलाकारों ने भालू के साथ मध्यकालीन टूर्नामेंट का शानदार पुनर्निर्माण किया, यूनेस्को विरासत महोत्सव में 1200 कलाकार शामिल। एक से 4 जुलाई तक चले इस उमिंगांग फेस्टिवल में ऐतिहासिक परेड बने आकर्षण का मुख्य केंद्र, घुड़सवारी और परंपरा का अनोखा संगम। ब्रुसेल्स की सड़कों पर निकली भव्य परेड में बच्चों से लेकर कई पीढ़ियों के परिवार हुए शामिल, रोमांच इतिहास और संस्कृति का उत्सव। साल 2019 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल उमिंगांग महोत्सव, यहां के लोगों में अपनी विरासत को जानने का जबरदस्त जुनून। बीजिंग जू में स्टार पांडा मेंगलान ने मनाया 11वां जन्मदिन, जू प्रशासन ने खास केक काटकर जन्मदिन किया सेलिब्रेट। ग्यारहवें बर्थडे पर मेंगलान के लिए हुई खास पार्टी, बीजिंग जू में बड़ी संख्या में लोग इस जश्न के गवाह बने। शी जिनपिंग के तीसरे राजकुमार के नाम से मशहूर है मेंगलान, अपनी अनोखी हरकतों और हुनर की वजह से वो फैंस के पसंदीदा पांडा है। पेड़ों पर चढ़ना, गड्ढे खोदना और पक्षियों को खाना खिलाना, यही है मेंगलान की खासियत। मेंगलान अपनी नटखट अदाओं की वजह से पूरे चीन में है काफी लोकप्रिय है, मेंगलान को देखने चीन के दूर दराज के हिस्सों से आते हैं पर्यटक। अमेरिका ने आजादी के 250 साल पूरे होने का जश्न धूमधाम से मनाया, देश भर में शानदार आतिशबाजी और रंगारंग कार्यक्रमों ने लोगों को जीता दिया। राजधानी वॉशिंगटन DC में ऐतिहासिक समारोह का हुआ आयोजन, लाखों लोगों ने आतिशबाजी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा अमेरिका का आसमान, लोगों ने आजादी का उत्सव मनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देशवासियों को 250वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने एकता, लोकतंत्र और देश के भविष्य को मजबूत बनाने का संदेश दिया। 250 साल पूरे होने के मौके पर पूरे अमेरिका में देशभक्ति का माहौल नजर आया। परेड, संगीत और भव्य आतिशबाजी के साथ स्वतंत्रता दिवस का ऐतिहासिक जश्न मनाया गया। अमेरिका की आजादी के 250 साल हुए पूरे, इस मौके पर पेरिस का आईफिल टावर यूएस 250 की रोशनी से जगमगा उठा। फ्रांस ने अमेरिका को दिया खास सम्मान। अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आईफिल टावर को विशेष रोशनी से विशेष तौर पर सजाया गया। आईफिल टावर पर दिखा यूएस 250 अमेरिका के ऐतिहासिक वर्षगांठ पर पेरिस से दोस्ती का दिया गया खास संदेश। स्टैचू ऑफ लिबर्टी से लेकर आईफिल टावर तक फ्रांस अमेरिका की ऐतिहासिक दोस्ती एक बार फिर रोशनी के साथ दुनिया के सामने आई। 250 साल की दोस्ती का मनाया गया जश्न। फ्रांस ने रोशनी के जरिए अमेरिका के साथ अपने पुराने रिश्ते को सम्मान दिया। अमेरिका के कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर, तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। लोग राहत के लिए वाटर पार्क और ठंडी जगहों का ले रहे हैं सहारा। नॉर्थ कैरोलिना में भीषण गर्मी के बीच परिवार वाटर पार्क पहुंचे। गर्मी से बचने के लिए लोग लगातार पानी पीते हुए नजर आए। फिलाडेल्फिया में भीषण गर्मी के बावजूद ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए आयोजित, हालांकि कई स्थानीय परेड और ब्लॉक पार्टियां रद्द करनी पड़ी। अमेरिका में हीट वेव का असर जनजीवन पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तेज गर्मी के चलते कई सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। भीषण गर्मी से जूझ रहे अमेरिकी शहर में लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई। प्रशासन लोगों को धूप से बचने और हाइड्रेटेड रहने की सलाह दे रहा है। चीन के हेनान तट से टकराया टाइफून मैसाक, तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित। टाइफून के कारण ट्रेन और फ्लाइट सेवाएं हुई ठप। हेनान आने जाने वाली रेल, उड़ान और फेरी सेवाएं स्थायी रूप से बंद कर दी गई। सावधानी के तहत स्कूल और चाइल्ड केयर सेंटर किए गए बंद। सान्या और लेडोंग इलाके में प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए। समुद्र में ऊंची लहरों से एक्वा कल्चर बेस को हुआ नुकसान। तेज लहरों ने गहरे समुद्र में बने मछली पालन के पिंजरों को बुरी तरीके से प्रभावित किया। अगले कुछ दिनों तक बारिश और गरज चमक का अलर्ट। मौसम विभाग ने लिंगशुई क्षेत्र में खराब मौसम जारी रहने की चेतावनी दी। ब्राजील में वर्ल्ड कप का जुनून बालों में उतरा। रिसेंडे में हेक्सा कट बना नया ट्रेंड। बार्बर ने बनाया झंडे वाला खास हेयर स्टाइल। ब्राजील के रंगों में सजे फैंस के बाल, हरा पीला नीला डिजाइन बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। बच्चों और युवाओं में हेयर कट की दीवानगी। सैलून बना फुटबॉल फैन हब। बच्चों में खासा लोकप्रिय हुआ यह नया लुक। बालों में उकेरा गया वर्ल्ड कप का सपना। दलास के घुड़सवार पुलिस वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरीके से तैयार। घोड़ों पर सवार पुलिस संभालेगी भीड़। वर्ल्ड कप सुरक्षा में घुड़सवार यूनिट की अहम भूमिका। घोड़े से भीड़ पर रखी जाएगी पैनी नजर। टेक्सास की काउबॉय परंपरा दिखेगी वर्ल्ड कप में। फैंस को भा रहा है काउबॉय अंदाज। मिनरल डेल मोंटे में फीफा वर्ल्ड कप का छाया उत्साह। मेक्सिको का पहाड़ी शहर फुटबॉल के रंग में रंगा। पुरानी कॉर्निश पेस्ट्री की दुकान बनी चर्चा का मुख्य केंद्र। 1975 से चली आ रही पारंपरिक रेसिपी आज भी कायम। फुटबॉल और खाने की परंपरा चल रही साथ साथ। मिनरल डेल मोंटे में ऐतिहासिक जुड़ाव की झलक। केप वर्ड की राजधानी प्राय में फीफा वर्ल्ड कप का जोश। अर्जेंटीना के खिलाफ मैच से पहले शहर में उत्साह। छोटा अफ्रीकी देश बना बड़ी फुटबॉल कहानी। प्राय में फुटबॉल बना राष्ट्रीय उत्सव। शहर की गलियों में जश्न और गूंज नारे। फैंस में अर्जेंटीना के मुकाबले को लेकर काफी उत्साह। केप वर्डे ने रचा अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। छोटे देश की बड़ी उपलब्धि ने सभी को चौंकाया। वैश्विक पहचान बना रहा अफ्रीकी द्वितीय देश। अमेरिकी छात्र चीन में सीख रहे हैं पांडा संरक्षण। चेंगदू में विशाल पांडा बने सांस्कृतिक सेतु का प्रतीक, छात्रों ने पांडा रिसर्च बेस का किया दौरा। छात्रों को पांडा को करीब से देखने का मिला अनोखा अनुभव, भोजन तैयारी और देखभाल की प्रक्रिया भी समझी गई। पांडा की डाइट को लेकर गलत फहमियां हुई दूर, युवाओं ने अनुभव को बताया प्रेरणादायक, छात्रों में देखा जबरदस्त उत्साह। दक्षिण कोरिया से बचाए गए भालियों को डेनमार्क में मिला नया घर, 6 एशियाई काले भालू सफारी पार्क में शिफ्ट, जानवरों को प्राकृतिक जीवन देने की पहल। नूटेनबर्ग सफारी पार्क बना भालुओं का नया ठिकाना, बायल फार्म से रेस्क्यू के बाद शुरू हुई उनकी नई जिंदगी, भालुओं को जंगल जैसे खुले माहौल में छोड़ा गया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
3: What you got for me, Jack?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
12: टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती और इस नन्ही बच्ची ने इसे सच साबित कर दिखाया। सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ है लेकिन चेहरे पर मुस्कान बरकरार है। रस्सी पर संतुलन बनाते हुए वो मुश्किल करतब दिखाती है और लोगों का दिल जीत लेती है। परिवार का सहारा बनने के लिए वो मेहनत कर रही है। ये वीडियो सिर्फ उसके हुनर की नहीं बल्कि उसके संघर्ष और हौसले की कहानी भी बयां करता है। कम उम्र में बड़ा कारनामा करने वाले सोलापुर के 12 साल के छात्र अब्दुल्ला इमरान मंगलगिरी की हर तरफ चर्चा हो रही है। उसने महज 9000 रुपए की लागत से ऐसी सोलर साइकिल तैयार की है जो सौर ऊर्जा और बैटरी दोनों से चलती है। साइकिल में डिजिटल स्पीडोमीटर, जीपीएस ट्रैकिंग और वॉइस कंट्रोल जैसी आधुनिक सुविधाएं भी दी गई हैं। छात्र का यह अनोखा आविष्कार लोगों को खूब प्रेरित कर रहा है। दोस्ती और भरोसे की मिसाल बन चुके ऑफिसर ब्रायन सैंटोस और उनके K9 पार्टनर कायरा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साल 2018 से दोनों साथ मिलकर ड्यूटी निभा रहे हैं। वीडियो में ऑफिसर जो भी मूवमेंट करते हैं, कायरा भी बिल्कुल उसी अंदाज में उनका साथ देती नजर आती है। दोनों के बीच की गजब की समझ और तालमेल देखकर लोग उनकी इस अनोखी जोड़ी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। हौसला अगर बुलंद हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। इसका शानदार उदाहरण एक जंगली बकरी ने पेश किया है, जिसने तेज बहाव वाली उफनती रावी नदी को बेखौफ होकर पार कर लिया। नदी की रफ्तार और खतरनाक हालात के बावजूद बकरी का संतुलन देखने लायक था। ये रोमांचक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग उसकी बहादुरी और आत्मविश्वास की जमकर सराहना कर रहे हैं। छोटी सी उम्र और बड़ा टैलेंट, इस बच्ची का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर छाया है। सुरमेदानी गाने पर उसने शानदार एक्सप्रेशन और बेहतरीन डांस मूव से हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। हर स्टेप में आत्मविश्वास और चेहरे के भाव इतने शानदार हैं कि उसकी ट्रेनर भी हैरान रह गई। लोग बच्ची की मासूमियत, आत्मविश्वास और टैलेंट की खूब तारीफ कर रहे हैं और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सोशल मीडिया की एयरहेड का डेडली एक्शन, वुमनली डिस्पाई यूनिवर्स में आलिया का धमाका, मेंटल हेल्थ से लड़कर इंडस्ट्री में बनाई पहचान, आलिया के फिल्मी सफर की अनकही दास्तान। वंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ Good News Today पर।
13: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
14: I have no idea how this election is going to play out,
13: or want to catch up on your team's live play-by-plays, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: दार्शनिक सेवा का और ग्रहों का क्या है कनेक्शन, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक मॉनसून दिखा रहा अपने रंग, सूरत में भारी बारिश के चलते उफान पर तापी नदी, ठाणे में सड़क से लेकर गली तक पानी से लबालब। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले लबालब, पालमपुर की न्यूगल नदी में फंसे 7 पर्यटकों का रेस्क्यू, पुलिस प्रशासन के सैलानियों को सतर्क रहने की अपील। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह, पवित्र यात्रा के दूसरे दिन अब तक करीब 30,000 भक्तों ने किए दर्शन, घाटी में सुनाई दे रही बम बम भोले की गूंज।

0: गौरवशाली पल पहलगाम में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में फहराया गया तिरंगा, आस्था दृढ़ता और वीरता का बना प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को दी विकास की सौगात, जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल के अलावा पचपदरा रिफाइनरी का किया शुभारंभ, गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर यूनिट का किया उद्घाटन। भारत मंडपम में देश के सबसे बड़े टॉय एक्सपो का हुआ शुभारंभ, 7 जुलाई तक चलेगा ये एक्सपो, बिजनेस के नए अवसरों को मिलेगा बड़ा मंच। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को मिला मौका, सबसे कम उम्र में डेब्यू कर तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, टॉस जीतकर टीम इंडिया ने चुनी बल्लेबाजी।
1: गुड न्यूज चुनी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला

डीयू में मिशन एडमिशन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। तो उम्मीदों की उड़ान, सपनों की नई शुरुआत, करियर को नई दिशा देने का सबसे अहम पड़ाव और देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में दाखिले की दौड़ और इसकी शुरुआत। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अनग्रेजुएट कोर्सेज के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक हजारों छात्र छात्राएं अपने सपनों को साकार करने की ओर पहला कदम बढ़ा चुके हैं। किसी की चाहत देश के नामी कॉलेज में पढ़ने की है तो कोई अपने पसंदीदा कोर्स के जरिए बेहतर भविष्य और मजबूत करियर की नींव रखना चाहता है। और यही वजह है कि हर साल दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की जबरदस्त होड़ देखने को मिलती है। और इस बार भी सीयूईटी यूजी 2026 के नतीजों के बाद अब एडमिशन की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। पहले चरण में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। साथ ही साथ सबकी नजरें आगे के प्रोसेस पर हैं। कॉलेज का चुनाव सबसे अहम, पसंदीदा कोर्स मिल जाए क्या बात है, मेरिट सीट अलॉटमेंट और सबसे बड़ी बात कि यही से होगी नई शुरुआत। हर कदम छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। मिशन एडमिशन में छोटी से छोटी जानकारी बहुत अहम होती है क्योंकि छोटी छोटी बातों का आपको बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ता है। कहीं जरा सी त्रुटि हुई नहीं कि आपको आगे जाकर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हो सकता है आपका फॉर्म कैंसिल हो जाए, हो सकता है आपको अपना पसंदीदा कॉलेज ना मिले। इसलिए बारीकी से हमारे इस शो को देखिए क्योंकि हम एक एक पॉइंट पर डिस्कशन आगे करने वाले हैं। आज एडमिशन से जुड़े तमाम पहलू

0: मुद्दों पर तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे अगले घंटे में। हम ड्यू में एडमिशन से लेकर रजिस्ट्रेशन तक की पूरी प्रक्रिया की डिटेल जानकारी आपको आगे देंगे। तो हम अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ तफसील से चर्चा करेंगे, ड्यू में दाखिले का पूरा फॉर्मूला क्या है ये भी आपको समझाएंगे, आपको कैसे पता करना है कि किस कॉलेज किस कोर्स में आपको एडमिशन मिल सकता है, पहले राउंड में किन किन बातों का खास ख्याल रखना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिशन एडमिशन से जुड़े हर पहलू पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम उन तमाम बड़ी बातों का ब्यौरा आपको बता देते हैं जिन्हें मिशन एडमिशन के जरिए जानना जरूरी है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भले ही दिल्ली में है लेकिन देश भर से लोग इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, देश की नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज में इनका नाम आता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साल 2026-27 के सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस साल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की करीब 71,000 सीटों पर एडमिशन होना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 67 कॉलेजेस में चलने वाले 73 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, 100 से ज्यादा बीए प्रोग्राम में दाखिला होगा। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पोर्टल पर जाकर छात्र रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सीयूईटी यूजी 2026 के स्कोर के आधार पर ही आपको एडमिशन मिलेगा। लिहाजा जिन उम्मीदवारों ने इस साल सीयूईटी यूजी परीक्षा दी है वो सीएसीएस पोर्टल पर जाकर admissions.uod.ac.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और यहां यह भी जान लेना बहुत जरूरी है कि एडमिशन की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले चरण में रजिस्ट्रेशन होता है जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से उस फॉर्म को भरना है। दूसरा चरण ये होता है कि आपको कोर्स और कॉलेज कौन सा सेलेक्ट करना है, ये भी आप बहुत गौर से बहुत ध्यान से चुनिएगा। और जो तीसरा चरण है उसमें सीट अलॉटमेंट और एडमिशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना होता है। यानी एक बार अगर आपको किसी कॉलेज से में आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर उसके बाद आपको उस प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा, लेकिन ये थर्ड फेज आता है, सबसे लास्ट वाला। हालांकि ये भी जानना बहुत जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन से पहले छात्र अंडरग्रेजुएट बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइंस ध्यान से पढ़ ले। इसलिए बार बार हर बार ये बात कही जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से भी, वहां के जो एडमिशन स्टाफ है उनकी तरफ से भी, और जितने भी करियर काउंसलर है वो ये बताते हैं कि जब भी आप अपना फॉर्म भरने लगे सबसे पहले डूज एंड डोंट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि इस पूरे फॉर्म में एक एक जानकारी आपको वहां पर देनी है और वो जानकारी पूरी ऑथेंटिक होनी चाहिए। आगे के स्केड्यूल और जानकारी के लिए एडमिशन पोर्टल लगातार चेक आपको करते रहना होगा। इस बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि दूसरा चरण अगले हफ्ते से शुरू हो सकता है। तो चलिए, खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त डॉक्टर शिखा दरबारी हैं, फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन से, एजुकेशनिस्ट भी हैं। जतिन चावला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करियर काउंसलर हैं। सार्थक शर्मा हमारे साथ हैं, स्टेट सेक्रेटरी हैं एबीवीपी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी हैं। सार्थक, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी, इस बार कुछ बदलाव पहले तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बता दीजिए, इस बार कोई नया रूल कोई पुराना रूल बदल गया हो, इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी हैं जिसका बहुत खास ख्याल रखना है इस वक्त आज की डेट में बच्चे जब अपना पोर्टल पर पूरा फॉर्म भरने जा रहे हैं सीएसीएस पोर्टल पर।
1: नमस्ते सभी को, और इस वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में और देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय का जो यूजी का सीएसएस पोर्टल है वो लाइव हो चुका है और विद्यार्थियों से प्रोसीजर लगभग उसके अंदर हमें अपना रजिस्ट्रेशन जो बेसिक डिटेल्स हैं अभी फर्स्ट फेज में बेसिक डिटेल्स हमारी नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड या फिर जो भी हमारा आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है, साथ ही साथ क्लास 12th के जो मार्क्स आए हैं हमारे क्लास 10th, इस प्रकार की डिटेल्स अभी फर्स्ट फेज में मांगी गई है। साथ ही साथ जो सीयूटी में हमारा स्कोर है वो उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हुआ है। विशेषकर जो छात्रों से आग्रह है वो ये है कि बहुत से छात्रों की जो अभी हमें ऑन ग्राउंड समस्या देखने में आ रही है कि जो ओबीसी एनसीएल का विद्यार्थी होता है, जो नॉन क्रीमी लेयर लिस्ट का विद्यार्थी होता है, उनके पास कई बार सेंट्रल लिस्ट का सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो उन विद्यार्थियों से आग्रह है कि वो अपना केंद्र सरकार वाला ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट उसमें अपलोड करें, साथ ही साथ वो सर्टिफिकेट 31 मार्च के बाद का होना चाहिए क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलता है। साथ ही ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स का, उनका भी 31 मार्च के बाद का बना हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ ही साथ जो प्रवेश प्रक्रिया अभी शुरू हुई है तो बहुत सारे प्रश्न भी हम लोगों के कोर्स को लेके कैंपस को लेके विद्यार्थियों के मन में है, तो मेरा यही आग्रह है कि आप लोग अपने कोर्स को प्रायोरिटाइज कीजिए, और अगर आपका स्कोर 750 से अबव है और अच्छा है तो कैंपस भी आपको मिलेगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। जो नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस बड़े हब है एजुकेशन के दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो उसमें भी आपकी तरफ से
0: चलिए मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर सतीन कुमार भी जुड़ चुके हैं। सर आपके पास यही सवाल लेकर आऊं क्योंकि आप खुद केरोडिमल कॉलेज से हैं और डीयू एडमिशन की प्रक्रिया को बहुत बारीकी से आप देखते भी हैं, पिछले साल भी आपने स्टूडेंट्स को काफी गाइड किया था, हर साल करते हैं। सर इस बार कुछ बदलाव, और दूसरी बात, जब स्टूडेंट पोर्टल पर अपना फॉर्म भरने जा रहा है किन किन अहम बातों का खास ख्याल उनको रखना होगा? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर सार्थक एक बात समझा रहे थे कि ओबीसी या फिर किसी भी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, बहुत से स्टूडेंट्स के पास सर्टिफिकेट नहीं होता लेकिन वो भर देते हैं और फिर उसके बाद कंफ्यूजन भी शुरू होता है। सर ये सारी चीजें जो इस वक्त गुड न्यूज टुडे पर स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उनके लिए जरा बता दीजिए, फॉर्म भरने से पहले गाइडलाइंस डूज एंड डोंट्स कौन से हैं?
2: सबसे पहले तो मैं आज तक के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे उन्होंने सीयूटी कर लिया है, उसके स्कोर कार्ड उनको मिल चुके हैं, तो उसके बाद अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन लेना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, जो भी आपने इंट्रो में बताया कि उस पोर्टल पे जाकर के एडमिशन पोर्टल पे उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में बेसिक डिटेल्स होते हैं, अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस, ये सब उनको देना होता है। उसके बाद होता है कि उनको फिर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना होता है। लेकिन सबसे अहम चीज जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, अभी किरोडीमल कॉलेज में एडमिशन कमिटी में हूँ, अभी दो फेज का एडमिशन पीजी का हो चुका है, उसमें भी मैं था, तो उसमें बच्चों का जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, डिग्री का सर्टिफिकेट है, वो अपडेटेड होना चाहिए, वो 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए। और उसमें कई सारे कास्ट में इतना होता है कि कोई भी कास्ट जो है वो अपने स्टेट में ओबीसी कैटेगरी में, सेंट्रल में वो यूआर में है, तो ये सब का ध्यान रखना होता है कि जो सेंट्रल डोमिसाइल में उनके कास्ट का कैटेगरी है उसका अपडेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। कई बार होता है कि वो और एससी एसटी के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो उनके लिए ईयर नहीं होता, किसी भी साल का, 5 साल 10 साल पहले का भी उनका बना हो तो वो चलता है, पर ओबीसी के ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो अपडेटेड होना चाहिए, तो उनको वो देख लेना चाहिए, नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना चाहिए, नहीं भी रेडी है तो प्रोसेस कर देना चाहिए। अगर हमें नोटिस में आता है कि किसी बच्चे का जो बाद सर्टिफिकेट है वो अपडेटेड है तो हम उनको टाइम भी देते हैं, हम जब एडमिशन के पोर्टल पे जब हम खुद एक्सेस करते हैं तो उनको मैसेज हम करते हैं कि आपका ये है, इतने समय तक आप इतने बजे तक दे दो, तो हम कर देते हैं एडमिशन। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही होती है। फिर दूसरे फेज में उसके बाद होता है कि लिस्ट आती है, यूनिवर्सिटी लिस्ट निकालेगी कॉलेज को, बच्चे को अपने कोर्स का चॉइस बहुत केयरफुल होकर करना चाहिए, क्योंकि जिस कोर्स को आप पढ़ना चाहते हो तो दो ऑप्शन होते हैं कि आपको कोई ऐसे कॉलेज में एडमिशन, आपको मान लो कि किरोडीमल हंसराज या हिंदू कॉलेज में एडमिशन आपको फिलोसफी में मिल रहा है, बंगला में मिल रहा है, उर्दू ऑनर्स में, लेकिन आपके चॉइस का नहीं है वो, और कोई ऑफ कैंपस कॉलेज जो है उसमें आपके मन के कोर्स का मिल रहा है, तो उन्हें देखना होगा, बच्चे को देखना होगा। मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूंगा कि आप उसको प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि पुरुष ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉमन सिलेबस है, फैकल्टी लगभग बराबर ही मिलित है, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, तो आप उसमें केयरफुल होकर कॉलेज का सिलेक्शन करिए, कोर्स का सिलेक्शन करिए, और टाइमली चेक करते रहिए डीयू एडमिशन पोर्टल को, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देखते रहिए। लिस्ट आजकल जो आ रहा है रात में शाम में शुरू होता है या रात में आता है एडमिशन, हम उसके बाद तुरंत शुरू कर देते हैं, तो एकदम केयरफुल रहिए। अब जो पेपर हमें चाहिए होता है अगर आपने नहीं जमा किया तो समय पे जमा करिए, नहीं तो हम आपको एडमिशन नहीं दे पाएंगे।
0: बिल्कुल, यानी कि आज के ये शो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है डीयू में एडमिशन, क्योंकि हमारे पास दो ऐसे लोग हैं जो सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, फॉर्म भरने से लेकर एडमिशन प्रक्रिया तक की तमाम टेक्निकलिटीज आपको बता रहे हैं। दो और खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शिखा दरबारी एजुकेशनिस्ट भी हैं, हमारे साथ जतिन चावला भी हैं, जो आपको गाइड करेंगे कि आपको किस तरीके से कौन से कोर्स में सिलेक्शन आपका हो सकता है, कैसे उसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मन में ये कंफ्यूजन होता है कि क्या हम अच्छे कॉलेज में जाएं या फिर हमें अच्छा कोर्स चुनना है। इस पर डॉक्टर जतिन मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर शिखा दरबारी आपके पास आते हुए, जो प्रेशर होता है वो पेरेंट्स का बहुत ज्यादा होता है। अब आप लगाइए, नाइन्थ से शुरुआत हो जाती है प्लानिंग की, घर वाले भी प्लानिंग उस हिसाब से करने लग जाते हैं, नीट में जाएंगे या फिर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या फिर कोई और कोर्स लेंगे या जो ये करेंगे, ये सब प्रेशर पेरेंट्स का भी रहता है। और यहाँ पर भी मैंने देखा है जब कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी या इस तरह की यूनिवर्सिटीज में जाता है, उसके बाद भी पेरेंट्स का प्रेशर रहता है कि आप फला सब्जेक्ट लीजिए, उसकी ज्यादा वैल्यू है, फला सब्जेक्ट लीजिए। यहाँ पर आप गाइड पेरेंट्स को क्या कहेंगे और स्टूडेंट्स के लिए क्या करेंगे?
3: मैं सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को गाइड करूंगी कि आपको क्या पढ़ाई करनी है, इट शुड बी योर ओन चॉइस, क्योंकि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, वो आपको फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। पर लेकिन ये भी बात सही है कि किसी कॉलेज का एक बहुत अच्छा वो होता है कि हर आदमी से रेपुटेशन होता है कि सेंट स्टीफन्स में जाना चाहता है या इसमें जाना चाहता है, तो उसमें यह है कि हाँ, अगर आपको कट ऑफ उतनी नहीं है तो आपको वो कॉलेज नहीं मिल सकता। ऐसे में मेरी गाइडेंस बच्चों के लिए यही रहेगी कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते थे, आप हमेशा उसको ऑप्ट करिए, चाहे उसको फिर कोई भी कॉलेज आपको मिल रहा हो। और पेरेंट्स को भी अननेसेसरी प्रेशर बच्चों के ऊपर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि नाइन्थ से लेकर हम लोग अपने बच्चों के लिए भी ऐसे ही करते हैं कि नाइन्थ से शुरू हो जाता है कि अच्छा अभी तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, और फिर बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है कि अच्छा आप ट्वेल्थ तक तुम कुछ नहीं कर, क्योंकि अगर आप बीए और बीएससी देखिए तो जो बच्चे नीट में नहीं निकल पाए या इंजीनियरिंग में नहीं निकल पाए वो जाके वहां पे बीएससी में जाते हैं। तो उनके लिए एक मेरी गाइडेंस ये मैं कहूंगी कि आपको दोबारा नीट देना है या दोबारा इंजीनियरिंग का एग्जाम देना है तो बी केयरफुल कि आप वहां पे फिर ऐसा सब्जेक्ट लो कि एक साल जो आपको फर्दर कंपटीशन की कोई पढ़ाई करनी है वो सब्जेक्ट आपको उस पढ़ाई में हेल्प कर पाए। उससे क्या है ना कि आपकी जो एक पूरा साल है वो आपका एक बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा, आपको एक नया जो आपके लिए यूजफुल है सब्जेक्ट आप वही पढ़ेंगे। जैसे इंजीनियरिंग करना है तो आप बीएससी में एडमिशन ले लीजिए जहां पे कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स और फिजिक्स बेस्ड आपका नीट क्वेश्चन आता है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके लिए बहुत एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी कि आप अच्छे से अपना कैरियर पाथ अच्छे से ले पाएंगे।
0: अब पूरा दारोमदार आप पर है, इस बार क्या गाइड करेंगे, कौन सा हिट कोर्स जा रहा है, चॉइसेस बहुत ज्यादा होती हैं, और भाई ट्वेल्थ कर लिया है, इस बार तो सेंट स्टीफन, इस बार तो केएमसी, इस बार तो एलएसआर, हर किसी की चॉइस होती है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेज देख के ही अपना फॉर्म भरते हैं, आप क्या गाइड करेंगे, कॉलेज या कोर्स किस तरीके से बैलेंस इसमें बनाया जाए?
1: बेसिकली मैम कैंपस प्रायोरिटी होना भी चाहिए कई चीजों को लेके, जब आपको लगता है कि आपको वैसा इन्वायरमेंट चाहिए, जैसे कम बेसिक कह देते हैं कि एसआरसीसी वाले थोड़ा यूपीएससी में अच्छा परफॉर्म करते हैं या उधर से जनरली ज्यादा टॉपर्स दिखते हैं हमें, साल दर साल एक या दो उधर से होते ही होते हैं दो तीन। लेकिन जो बड़े कोर्सेज हैं, सपोज आपको इकोनॉमिक ऑनर्स करना है, आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, आपका साइकोलॉजी ऑनर्स है, तो वहां क्या है कि कंपटीशन बहुत हाई है कैंपस के कॉलेजेस में, तो आपको अगर अपने कोर्स वो ही पढ़ना है तो फिर आपको अपना कोर्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेबस सभी कॉलेजेस का सेम है, सिलेबस में कहीं कोई चेंज नहीं है, सिलेबस पूरा आपको वही पढ़ाया जाता है, पूरी फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकदम अप टू द मार्क है, वो अच्छा पढ़ाते हैं। तो मेरा मत तो ये है कि अगर आपका बहुत अच्छा हाई स्कोर है तो बिल्कुल डेफिनेटली और कैंपस की ओर जाना चाहिए, नहीं तो अपने कोर्स को प्रायोरिटाइज हमें करना चाहिए।
0: कैंपस इज इम्पोर्टेंट, जाहिर सी बात है कि वो एक मन में रहते हैं कि हम नॉर्थ कैंपस में पढ़े और साउथ में, या चॉइसेस रहती है। जितिन जी मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, बिकॉज मैं चाहूंगी इस पर आपसे बेहतर क्लैरिटी कोई और दे नहीं सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप गाइड करते हैं।
4: तो मैं ये कहना चाह रहा था कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जैसे आया था उससे हमारी चॉइसेस इंपैक्ट होती हैं। एनईपी के अंडर ये चालू हुआ था 2022 में, आज की डेट में बीए प्रोग्राम ऑप्शन वीक ऑप्शन नहीं है, और काफ़ी बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं भाई हमें अगर अच्छा कॉलेज चाहिए क्या हम मिल सकता है, मिल सकता है, आप स्ट्रेटेजाइज करो। जैसे एलएसआर में बीए प्रोग्राम में साइकोलॉजी भी है और सोशोलॉजी भी है, 874 पे मिला है लास्ट टाइम। हंसराज में बीए कॉमर्स भी है, इको भी है, वेंकी में हिस्ट्री या पॉल साइंस है, ऐसे कुछ जगह मैंने अभी देखा, जेएमसी में एक प्रोग्राम है जिसमें स्पेनिश है और एडवर्टाइजिंग है, जो कि काफ़ी कम नंबरों पे मिला है। तो आप ना इस तरह से स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो, क्योंकि फोर्थ ईयर में फिर आप उस पर मेजर कर सकते हो। तो एक ये है कि बीए प्रोग्राम बहुत 20 साल पहले एक वीक ऑप्शन माना जाता था, और बच्चे जो सबसे कम नंबर आए उनको मिलता था, तो उस तरह से सोचते थे। आज की डेट में वैसा नहीं है, और मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोग्राम करके आप फोर्थ ईयर में ऑनर्स डिग्री में उसे कन्वर्ट कर सकते हो, फोर्थ ईयर में आप मेजर कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है, ड्रीम प्रेफरेंस जो बनाए तो आप मतलब एक लंबी लिस्ट बनाओ, खाली ये नहीं कि 5 कॉलेज भर दिए, 10 कॉलेज भेज दिए, उसके भी बियॉन्ड बनाओ। कॉलेज कोर्स की जो आपको लिस्ट सबमिट करनी है तो एक लंबी लिस्ट बनाओ, जिससे कि क्योंकि आपने जो भरा हुआ होगा उसी के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा, उससे उसके उस पर नहीं होगा, उसके बियॉन्ड नहीं होगा। तीसरी चीज है, मेरे हिसाब से काफी लोगों को करियर्स के हिसाब से चूज नहीं करते। अगर मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, डीओ में कई अच्छे ऑप्शन है जैसे पॉलीमर साइंस, या तो ये मैंने कम से कम नहीं तो स्कूलों में पूछा, और मैं सीबीएसई के साथ भी ऑनलाइन प्रोग्राम करता हूँ, तो मैंने प्रिंसिपल से भी पूछा ये क्वेश्चन कि भाई बताओ पॉलीमर साइंस किस कॉलेज में है। तो कई लोगों को पता ही नहीं है कि भाई हाँ बीएससी पॉलीमर साइंस का कोर्स है। डीयू में फूड टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा कोर्स है, भास्कराचार्य कॉलेज में है, राजगुरु कॉलेज में, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स में है। तो कुछ नए कोर्सेज हैं, ऐसे ही सीआईसी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। सो सीआईसी में बीए सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज है, तो सीआईसी का भी बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेंट सीआईसी में उतना ज़्यादा है ही नहीं, उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, और बहुत अच्छा नॉर्थ कैंपस में है। लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अशोका में कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, लेकिन सीआईसी में भी आप 6 महीने में अपना कोर्स और कॉलेज चेंज कर सकते हैं। इट वॉज डेवलप्ड अंडर द मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट, तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद अपने अप्रोप्रिएट कोटाज, क्या हम ईसीए कोटा में अप्लाई कर रहे हैं, क्या हम स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई कर रहे हैं, क्या हम सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा में अप्लाई कर रहे हैं, उसका भी एक कोटा है। हर कॉलेज में आपको एक पर कॉलेज पर कोर्स एक सीट आपको रिजर्व मिलेगी सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के लिए, तो उसको भी अपन देख सकते हैं। तो इस तरह कोटाज को भी अंडरस्टैंड करके फिर हमें पूरा अपना स्ट्रैटेजी बनानी होगी। इट इज मोर अबाउट स्ट्रैटेजाइजिंग रादर देन ओनली जस्ट फिलिंग अप प्रेफरेंसेस। ऑल्सो मिक्स देख लीजिए कि भाई जरूरी नहीं कि आप इकोनॉमर्स, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं इकोनॉमर्स अच्छा कोर्स है, आप उसमें फिलअप करेंगे, हो सकता है आप इको और कॉमर्स का चीज कोर्स फिलअप कर रहे हैं। ऑल्सो इको के लिए भाई मैथ्स अच्छा चाहिए, मैथ्स अच्छा नहीं है तो इको प्लीज मत करना। दूसरी बात, हमने साइंस लिया तो जरूरी नहीं कि साइंस के कोर्सेज कर रहे हैं, यू कैन डू एनीथिंग। तो यू हैव टेकन साइंस बट नाउ यू वॉन्ट टू टेक अप इंग्लिश ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, आप ऐसे अलग अलग चीज करना चाहते तो कर सकते हैं। तो आप उसी हिसाब से सोच के और फिलअप करो। अगर एक ऑनर्स में आपको लगता है नहीं मिल रहा तो बीए प्रोग्राम सबसे अच्छा ऑप्शन है, उसमें आप मिक्स लो और फोर्थ ईयर में स्पेशलाइज करके उसी में मेजर ले लो, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म अपने करियर पे पिच करना है, नॉट कि मेरे को कोई भी डिग्री करके किसी भी कॉलेज से निकलना है।
0: बिल्कुल, ये कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये तो आपने बीए प्रोग्रामिंग की बात की, लेकिन आगे इसको लेकर चर्चा करेंगे कि कोई मेडिकल का स्टूडेंट है या फिर कोई नॉन मेडिकल का है या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन प्रोफेसर सत्येंद्र, आपके पास आना चाहूंगी अब, क्योंकि इंतजार जाहिर सी बात है कि पहली कट ऑफ का रहेगा, वहां तक पहुंचते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अगर पहली कट ऑफ में उनका नाम आ गया, क्या उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए पहली अलॉटमेंट लिस्ट में, सीट को स्वीकार करना चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए, इस पर भी थोड़ी क्लैरिटी दीजिए।
2: जी मैडम, स्टूडेंट को अगर अपने चॉइस का कॉलेज या कोर्स नहीं मिलता है फर्स्ट लिस्ट में तो उन्हें इंतजार करना चाहिए। सेकेंड लिस्ट आते हैं, थर्ड लिस्ट आते हैं, कई सारे सब्सिक्वेंट लिस्ट आते हैं, उनको उनकी प्रायोरिटी क्या है। हर एक बच्चे का प्रायोरिटी होता है कि मुझे इसी कॉलेज में चाहिए, मुझे नॉर्थ कैंपस भी चाहिए। तो अगर उनका नॉर्थ कैंपस में शुरू में नहीं हो रहा है, उनके कोई ऑफ कैंपस कॉलेज में हो रहा है, तो उनको ये प्रायोरिटाइज तो खुद ही करना होगा कि मैं पहले एडमिशन ले लूँ। एडमिशन लेने के बाद फिर उनके चांसेस डाइल्यूट हो जाते हैं, अगर आप नहीं लेते हैं तो अगले लिस्ट में आपके दाखिले के चांसेस होते हैं। तो वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, पर एक वाइज डिसीजन ये होता है कि आपका जहाँ एडमिशन हो रहा है तो आप वहाँ ले लो और आगे के लिस्ट का ट्राई करो, अगर सीट खाली हो गई तो मिलेगी आपको। लेकिन सेकेंड लिस्ट में उन बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाएगा जो जिनका एडमिशन फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ है, जिन्होंने एडमिशन लेके छोड़ा है तो फिर उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है।
0: अच्छा, इसी से जुड़ा एक और सवाल है, अगर एक्सेप्ट कर ले तो क्या अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं आगे, क्या उसमें ऑप्शन बनती है कोई? प्रोफेसर सतीन,
2: एक बार एडमिशन ले लेने के बाद,
0: जी
2: एडमिशन ले लेने के बाद
0: आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आपका नाम आ गया और आप उस सीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं,
2: नहीं, उसके बाद एप्लीकेशन आपने एक्सेप्ट किया तो आप एडमिशन दीजिए, और एडमिशन अगर आप नहीं लेते हैं तो वो फिर वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि एडमिशन एक्सेप्टेंस तो एक प्रक्रिया, आपने एक्सेप्ट किया तो पोर्टल पे हम एडमिशन कमिटी में सब उसको प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आपके सारे डॉक्यूमेंट जो रिक्विजिट चाहिए वो आपने अपलोड किया, नहीं किया तो आपने सबमिट किया कॉलेज को एडमिशन की प्रक्रिया के दौरान, और फीस जमा किया अगर फीस, तभी वो एडमिशन पूरी मानी जाएगी। मेयरली एक्सेप्टेंस इज नॉट गारंटिंग एडमिशन।
0: सार्थक, एक कॉमन मिस्टेक जो हर बार स्टूडेंट्स करते हैं जिसको आप यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहेंगे एक बार उनको बताते हुए।
1: एक कॉमन प्रेफरेंस फिलिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि हमारा कई बार ध्यान नहीं होता और वो अनचाहा कोर्स या फिर जिसे हम लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं वो गलती से ऊपर सेलेक्ट हो जाता है, और उसके बाद उसमें जब अलॉटमेंट होती है तो वो प्रेफरेंस लिस्ट के आधार पे होती है, तो वो कोर्स हमें मिल जाता है, फिर हम ऐसी स्थिति में रहते हैं कि हम चेंज भी नहीं कर पाते उसको, क्योंकि वो हमारे टॉप में या टॉप 5 में या 6 में होता है। तो प्रेफरेंस लिस्ट को भरते समय बहुत सावधानी पूर्वक उसे भरना चाहिए, ये मेरी सभी स्टूडेंट्स का एडवाइस।
0: अच्छा, एक चीज और, क्या एक बार प्रेफरेंस लिस्ट भर दी क्या उसमें चेंजेस कर सकते हैं हम, क्योंकि एक बार विंडो शायद खुलती है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो।
1: रेफरेंस लिस्ट भर दी उसके बाद हम उसको रिव्यू भी कर सकते हैं जब तक विंडो बंद नहीं होती, फिर एक करेक्शन विंडो भी आता है 2 दिन का, लेकिन अब भी बहुत बार होता है कि स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, ये जो हमें 2-3 साल से देखने में आ रहा है,
0: ठीक है,
1: तो उसको कभी अवॉइड करें तो ठीक रहेगा।
0: ठीक है, इसी से जुड़ा एक सवाल जल्दी से, फिर उसके बाद मुझे ब्रेक लेना है। प्रोफेसर सत्येंद्र आपी से, क्या हर लिस्ट के बाद अगर पहली कट ऑफ आ गई क्या उसके बाद प्रेफरेंस विंडो चेंज होती है, या दूसरी तीसरी कट ऑफ के बाद कोई ऑप्शन देता है डीयू?
2: वो दे सकता है, नहीं दे सकता है मैम, लेकिन जो प्रेफरेंस दिन का जो टाइम होता है अगर आप उसमें कर दे तो अच्छा है, आगे यूनिवर्सिटी की मर्जी है, वो दे सकते नहीं दे सकते। आपने जो सार्थक जी से सवाल पूछा उसमें कुछ मैं ऐड करना चाहता हूँ, स्टूडेंट को बहुत ही केयरफुल होकर के सब्जेक्ट मैपिंग करनी चाहिए। आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हो, कॉमर्स बी कॉम करना चाहते हो, आपने साइंस की आर्ट्स की पढ़ाई की है तो मैथमेटिक्स का उसमें बैकग्राउंड होना चाहिए, तो आप अपनी देखो कि जिस कोर्स के लिए ऑनर्स के लिए या बी ए प्रोग्राम के लिए या आर्ट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं है, खास करके कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें उसका कुछ बैकग्राउंड चाहिए, तो वो सब्जेक्ट मैपिंग का जो जो जो एडमिशन का पोर्टल है उसमें सारे डिटेल्स है। आप सब्जेक्ट मैपिंग जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं, प्रीफ्रेंस भर रहे होते हैं कोर्सेज का, तो आपको केयरफुल होकर देखना चाहिए कि आप एलिजिबल भी हो भी या नहीं हो। आपने अप्लाई कर दिया और आप सब्जेक्ट के हिसाब से एलिजिबिलिटी नहीं तो आपका तो एडमिशन नहीं दे पाएंगे।
0: बिल्कुल, चलिए इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी आप अपना, पहली बात तो जब भी आप अपना कोर्स अप्लाई कर रहे हैं, भर रहे हैं, कॉलेज हो या कोर्स हो, ये क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको तय करना है। हालांकि हर बार ये कहा गया है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि आप हमेशा कोर्स को प्रायोरिटी दीजिए, लेकिन साथ ही साथ आपको अपना प्लान बी भी तैयार रखना होगा, और वो प्लान बी क्या है इसी पर हम चर्चा इस ब्रेक के बाद करेंगे। रहिए हमारे साथ।

0: all sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
1: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
0: Big 12 Radio.
2: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
0: and
2: down.
0: Talk sports.
3: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
0: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे

0: तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की दौड़ शुरू हो चुकी है और इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा आज की इसलिए भी अहम है क्योंकि दो खास मेहमान हमारे साथ हैं जो आपको टेक्निकली बताएंगे कि कहां किस तरह की गलतियां आप करते हैं जिसको आपको अवॉइड करना है जब आप अपना पोर्टल भर रहे हैं, जब आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं। और दूसरे दो ऐसे खास मेहमान हमारे साथ करियर काउंसलर्स हैं जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपना भविष्य बना सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आपकी सोच है कि आप एक पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करेंगे, लेकिन फर्ज कीजिए कि आपको वहां पर वो सब्जेक्ट नहीं मिलता है, लेकिन वही ऑप्शन आप कहां किस कॉलेज में ले सकते हैं या किन किन कोर्सेज के साथ आप उस सेम तरह का सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, इसकी पूरी डिटेलिंग आपको देंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि इस समय स्टूडेंट्स का प्लान बी रेडी होना चाहिए। जितिन जी, आप ही के पास आना चाहूंगी इन तमाम सवालों का जवाब, क्योंकि हमेशा प्लान बी रेडी होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम जिस कॉलेज में, जिस कोर्स में चाहे वहां एडमिशन मिल जाए। चलिए यहां पर हम कोर्स को भी प्रायोरिटी कर देते हैं। हमारा प्रायोरिटी एक कोर्स है, फर्ज कीजिए कि हमें नहीं मिलता है उसमें एडमिशन, तो हमारा प्लान बी क्या होना चाहिए?
1: तो प्लान बी में मैंने पहले ही बताया, जैसे सपोज मैं एक स्टूडेंट हूँ जिसे इकोनॉमिक्स में चाहिए, मेरे को इको करना है। अब मुझे समझ में आया कि इको में तो मुझे नहीं मिल रहा एडमिशन, तो मैं क्या करूँगा, मैं बीए प्रोग्राम करूँगा जिसमें कि इको इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, और फोर्थ ईयर में फिर मेजर कर लूँगा। ऐसे ही मेरा अगर मन है कि भाई मुझे साइकोलॉजी करना है या पॉल साइंस करना है, तो वेंकी में जैसे बीए करूँ उसमें हिस्ट्री और पॉल साइंस कर लूँगा बीए प्रोग्राम में, और बाद में मैं पॉल साइंस में उसे आगे बढ़ा दूँगा, मतलब उसका फाइनल वो कर लूँगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जो अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि बच्चे एक तो खाली फेमस कॉलेजेस फिलअप करते हैं, उनका उन्होंने सुने नहीं होते कोई कॉलेज, जबकि वो अच्छा कॉलेज होता है। जैसे साइंस के लिए भास्कराचार्य काफ़ी अच्छा कॉलेज है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने, पेरेंट्स ने, कई बार टीचर्स ने भी नहीं सुना है। तो दैट्स अ चैलेंज, मतलब इट वॉज सेटअप एज अ कॉलेज विच इज़ मोर ऑफ एन अप्लाइड साइंसेज कॉलेज। ऐसे ही काफ़ी बार सोचते हैं कि कोई भी बीए प्रोग्राम इक्वल है, नहीं, अरे बैठ के रिसर्च तो करो यार, बैठ के थोड़ा उसको रिसर्च करो, देखो कैसे है। और कई बार अनएक्सेप्टेबल चॉइस ले लेते हैं, बहुत सारे बच्चे फिलोसफी ऑनर्स लेते हैं बिना सोचे हुए कि उसके आगे क्या करेंगे, मतलब आप क्यों ले रहे हो, संस्कृत ऑनर्स है तो संस्कृत ऑनर्स आपको सबसे वन ऑफ द लोएस्ट कट ऑफ मिलेगा, लेकिन आगे आप क्यों लेना चाहते हो, आप उसको कैसे यूज करोगे ये भी तो सोचो। खाली कॉलेज में हमें 3 साल या 4 साल पढ़ना ही नहीं है, उसके आगे करियर का क्या प्लान है वो भी आप सोचो। दूसरी बात, कई बार हम एलिजिबिलिटी चेक नहीं करते अपनी, भाई क्या एलिजिबिलिटी है हमारी, किस तरह से करने वाले हैं। तो अलग अलग कॉलेजेस में अगर आप देखेंगे और DU.AC.IN पे बहुत सारे चॉइसेस हैं, जैसे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के कोर्स DC AC में अवेलेबल है कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कोर्स रामानुजन कॉलेज में अवेलेबल है, जीएस एंड मेरी कॉलेज में एडवर्टाइजिंग काफ़ी पुराना है, मतलब काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स एडवर्टाइजिंग के लिए गए हैं तो GMC में जाते हैं क्योंकि GMC का वो अच्छा माना जाता है। कमला नेहरू कॉलेज में भी एडवर्टाइजिंग का कोर्स भी है, कुछ कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी के साथ भी है उनके पास। इसी तरह से सत्यवती कॉलेज देखेंगे तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के साथ इकोनॉमिक्स का है। तो ये BA प्रोग्राम के हैं जो कि ईजिली एक्सेसिबल हैं। अगर मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैं देखूंगा क्या मैं बिल्कुल स्पेशलाइज कोर्स करूँ, जैसे फूड टेक्नोलॉजी। हमारा प्रोसेस फूड का कंजम्पशन इतना बढ़ गया है कि 225,000 करोड़ से ज़्यादा की इंडस्ट्री है। तो BSc फूड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप खाली BSc फिजिकल साइंसेज भर रहे हो या फिर आपको स्पेसिफिक आप लाइफ साइंसेज भर रहे हो, लेकिन क्या आप ये सोच भी रहे हो कि फूड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है? इसी तरीके से क्या मैं साइंसेज में कुछ कॉम्बिनेशन देखूं जिससे आगे के करियर, तो आगे का क्या करियर प्लान है वो आपको सोच के फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो आप ऐसे ही चूज करके और मतलब बाद में टाइम वेस्ट करोगे या सोचोगे अब मैं क्या करूं, और बाद में बहुत सारे लोग ऐसे ही MBA के लिए बैठने लग जाते हैं। उस टाइम पर भी ये कि भाई क्या प्लान है, आपने कैसी इंटर्नशिप करी, किस साइड में डाल रहे हैं, हो सकते हैं आप पब्लिक पॉलिसी करके सेम कंसल्टिंग कंपनी में चले जाओ जो एक बहुत अच्छा MBA IIM अहमदाबाद या IIM बैंगलोर का जाता है। हो सकते हैं आप पॉल साइंस करके पॉलिटिकल कंसल्टिंग में चले जाओ, जैसे IPAC कंपनी है, पॉल स्ट्रैट, सी वोटर, ऐसी काफ़ी कंपनीज हैं। सो दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल कंसल्टिंग। पॉल साइंस करके IR में जाते हैं। तो अगेन आपका इंटरेस्ट एक चीज़ है कि मेरा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आगे ये 5 करियर्स खुलते हैं, उनमें से ये 3 में मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो ये रोड मैप चाहिए, उसके हिसाब से इंटर्नशिप्स करनी है। मुझे थोड़ा लोअर कॉलेज में मिला कोई बात नहीं, आप अच्छी इंटर्नशिप करेंगे, आप ऑनलाइन कोर्सेज करेंगे कोर्सेरा से, यूडेसिटी से, अच्छी अच्छी जगहों से, वर्ल्ड के बेस्ट यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर कोई साइंस का बच्चा है तो गवर्नमेंट ने पोर्टल्स बनाए हुए हैं यहाँ पर इंडिया में, जिससे आप IIT के प्रोफेसर के लेक्चर्स अटेंड करके और वो कोर्सेज कर सकते हैं। आप बाहर से टेक्नोलॉजी के कोर्सेज जैसे ड्यूकैट जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां से कर सकते हैं, या गीक्स फॉर गीक्स एक बहुत अच्छा वेबसाइट है, गीक्स फॉर गीक्स। तो आप चाहे मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं, फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, साथ में इस तरह के वेबसाइट से आप ऑनलाइन जो लेटेस्ट चीजें हैं, जैसे AI की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी है, जैसे डेटा वेयर हाउसिंग करनी है, तो ये चीजें साथ साथ करेंगे तो बिल्डअप हो सकते हैं। आप ये मत सोचो कि मेरा अब बहुत सबको कॉलेज में टॉप के 5-6 कॉलेज सबको तो मिलेंगे नहीं,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: आपको
0: हाँ
1: 10वां कॉलेज मिला, 12वां मिला, आप
0: ठीक
1: सोचो
0: है
1: उसके साथ क्या करके मैं आगे कैसे सक्सेसफुल करियर बनाऊं। सो
0: बिल्कुल।
1: दैट्स
0: यानी
1: जी
0: ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आपको अपना पूरा फ्रेमवर्क रेडी करना होगा। मैम आपसे जानना चाहूंगी प्लान बी के बारे में, क्या बताएंगे आप?
2: मैं बिल्कुल यही जो नितिन जी कह रहे थे
0: जतिन
2: कि
0: जी
2: जतिन जी कि ये बिल्कुल सही बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हर स्टूडेंट को लॉन्ग टर्म में अपना देखना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, और फिर जब जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उसमें फिर क्या होता है ना कि आप बहुत आराम से अपना एक ब्लूप्रिंट और अपना एक रोड मैप बना पाते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट को लेके आगे कहाँ जाना चाहता हूँ। अब देखिए, नॉट ओनली आपको साइंस में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको BSc ऑनर्स ही करना है या कुछ करना है, आपके पास हेल्थ सेक्टर के AI के कोर्सेज भी होते हैं। वी ऑल नो आजकल जो है, अगर आप AI में थोड़ा सा एक्सपर्ट हैं तो आपके लिए बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो ये भी जो है, ये कोर्सेज कभी भी बच्चे देखते नहीं, वो क्या होता है एक जनरल देखते रहते हैं कि अच्छा हमें ये स्पेसिफिक ये कोर्स है कि मुझे हिस्ट्री लेना है, मुझे पॉल साइंस लेना है, या मुझे इकोनॉमिक्स में जाना है। उसके बाद जो एक अप्लाइड चीज़ होती है, जैसे स्किल डेवलपमेंट तक के कोर्सेज हैं यहाँ पे, आपके पास फूड जैसे बता रहे थे फूड प्रोसेसिंग के कोर्सेज हैं, पॉलीमर्स के कोर्सेज हैं, AI से रिलेटेड हेल्थ के कोर्सेज हैं, AI से रिलेटेड कैसे मशीन लर्निंग करनी होती है वो कोर्सेज हैं। तो अगर हम इस तरह के कोर्सेज को भी अपने दिमाग में रखेंगे तो आप देखिए कॉलेजेस में तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है ना कि उनकी एक कट ऑफ है, तो कुछ जो स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं अगर आप उस कट ऑफ में नहीं आ रहे हैं तो यू हैव टू कीप योर प्लान भी रेडी। और वो प्लान भी आपको कैसे बनाना चाहिए कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, तो वो जो आपका बेसिक इंटरेस्ट है, क्योंकि कोई भी आप अपना कैरियर जैसे कहते हैं ना कि आप उसी को अपना कैरियर बनाइए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जबरदस्ती कोई चीज आप मत पढ़िए, तो उसको आपको एक सेग्रीगेट करना ही पड़ेगा। एंड जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि यस दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स में सभी प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में वही सिलेबस है। तो इट्स लाइक दिस कि आप किसी भी कॉलेज में जाइए, अगर वो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो आपको अच्छा सिलेबस और अच्छा टीचर हर जगह मिलेगा। नाउ यू हैव टू जस्ट मेक योर रोड मैप कि मैं प्लान बी में मेरा क्या ऑप्शन हो सकता है। तो वो जो ऑप्शन है वो आपको जब आप सारे कोर्सेज और सारे कॉलेजेस को देखेंगे, सारे कॉलेजेस इतने तरह तरह के कोर्सेज आपको दे रहे हैं जो कि अनकन्वेंशनल कोर्सेज भी हैं, तो वो जो अनकन्वेंशनल कोर्सेज में आप अपना 2-3 कोर्सेज जरूर देखिए, क्योंकि उसमें एडमिशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आप एक बहुत ही आसानी से एक अच्छा कैरियर ऑप्शन अपने लिए चूज कर पाएंगे।
0: बिल्कुल। एक एक चीज और एक क्वेरी एक स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स की होती है, प्रोफेसर सत्येंद्र आपके पास आना चाहूंगी कि अगर किसी एप्लीकेंट का गैप ईयर है तो क्या एडमिशन में दिक्कत आती है, अगर हाँ तो उसके लिए बताइए, और अगर नहीं तो क्या उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए या फिर उनके लिए क्या स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं?
3: एडमिशन गैप में रहने से कोई दिक्कत नहीं आती, उनको एक अंडरटेकिंग देना होता है और उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं होती है। वो तो एलिजिबल होते ही, उनके ना कोई परसेंटाइल काटे जाते हैं, वो अगर उन्होंने कॉमन एडमिशन टेस्ट दिया है, टीवीटी किया हुआ है, तो उसी के बेसिस पे हो जाएगा उनका, एक अंडरटेकिंग दे देंगे अपने पासिंग ईयर का
0: जी,
3: कोई प्रॉब्लम नहीं।
0: एक और सवाल सर, स्पॉट एडमिशन क्या होता है?
3: स्पॉट एडमिशन मैम वो तब होता है जब जो कट ऑफ 3, 4, 5 कट ऑफ जो आते हैं उसमें सीट फुल नहीं हुए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे कई सालों से हो रहा है जिसमें कि 71,000 सीट है पर वो फुल नहीं हो पाते। जनरली जो जो कोर्सेज उतने पॉपुलर नहीं होते, जैसे उर्दू ऑनर्स है, फिलोसफी ऑनर्स है, बंगला ऑनर्स है, संस्कृत ऑनर्स है, बहुत सारे ऑफ बीट कोर्सेज हैं, या बहुत सारे कोर्सेज तो बहुत अच्छे हैं पर बच्चों की जानकारी है, बच्चे ने अप्लाई ही ज्यादा नहीं किया है, तो वो फिर ऑन स्पॉट एडमिशन होता है कि आप उसके लिए भी विंडो खोलता है, कि आप कॉलेज जाओ आपको एडमिशन हम दे देंगे, आपको भी उसी पोर्टल के थ्रू आना होगा, ऑन स्पॉट स्पॉट एडमिशन राउंड में अप्लाई करना होगा, प्रेफरेंस देना होगा और उसके हिसाब से फिर यूनिवर्सिटी आपको आपके चॉइस के हिसाब से कॉलेज अलाउड करेगी, कोर्स अलाउड करेगी और फिर कॉलेज आपको एडमिशन दे देगा जहां भी होता है।
0: बिल्कुल। एक और सवाल सर आपसे, ईसी और स्पोर्ट्स कोटा के तहत अगर कोई जा रहा है एडमिशन के लिए तो किन बातों का ख्याल उनको रखना है?
3: अगर ईसी और स्पोर्ट्स कोटा में है तो सबसे पहले उसका सर्टिफिकेट उनको रेडी रखना चाहिए, अलग अलग अप्लाई करना होता है। मान लीजिए कि ईसी एक कोटा है, बहुत सारे 30-32 तरह के ज्यादा उसमें आइटम्स हैं, कोई ड्रामेटिक्स में है, कोई म्यूजिक में है, कोई डांस में है, तो वो दो तीन कोर्सेज में आपको दो तीन ईसी कोटा में आप कर सकते हो। उसके अलग अलग आपको फीस देने होंगे और उसका ट्रायल होता है, उसका एडमिशन बाद में होता है। और वैसे बच्चे जो ज्यादा स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं, ईसी में ड्रामेटिक्स में म्यूजिक में या जो ईसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड बनाना चाहते हैं तो उनको बीए प्रोग्राम या वैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहिए जिसमें क्लासेज वो कम भी करें तो काम चल जाए, क्योंकि अगर ऑनर्स वाले कोर्सेज होते हैं तो बहुत ही रिग्रेस होता है वो। वैसे तो सारे ही रिग्रेस होते हैं, तो कई सारे बच्चे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में स्पोर्ट्स में आते हैं जनरली वो कोर्सेज बीए प्रोग्राम बीकॉम प्रोग्राम कुछ वैसे हल्के कोर्सेज में ले लेते हैं और ज्यादा फोकस वो अपने जो उनकी एक्सपर्टीज स्पोर्ट्स में इसलिए उसमें करते हैं, तो उसका भी ध्यान प्रैक्टिकली रखना चाहिए। थियोरेटिकली है तो आप अप्लाई करो, क्लासेज का जितना अटेंडेंस चाहिए वो सबके लिए होता है। जो ईसीए कोटा के बच्चे उनको 33% अटेंडेंस का रिबेट दिया जाता है, मतलब वो 33% कम क्लासेज भी करेंगे तो उनका उनको मार्क्स मिल जाएंगे अटेंडेंस।
0: ठीक है।
3: और एक बात और मैडम, एक बात और मैडम, यूनिवर्सिटी में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, बहुत सारे जैसे कॉलेज अभी बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज हैं, तो अगर वोकेशनल की पढ़ाई करनी है तो कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी जो शेख सराय में बहुत ही अच्छा कॉलेज है, उनको साइंस की पढ़ाई करनी है तो साइंस में भास्कर आचार्य कॉलेज द्वारका में वो बहुत अच्छा कॉलेज है। अब मिरांडा हाउस तो वैसे तो बहुत नाम है लेकिन वहाँ कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है, तो कॉमर्स की पढ़ाई के लिए अब बच्चे होता है कि मुझे मिरांडा में लेना है, उनको कॉमर्स पढ़ना है तो उनको कॉमर्स तो मिल नहीं पाएगा, तो आप और एक लेडी इरविन कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है वो, विमेन्स कॉलेज है, वहाँ पे बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज न्यूट्रिशन से रिलेटेड फूड टेक्नोलॉजी से, तो उसका भी ध्यान रखना है। वो विमेन्स कॉलेज है वहाँ पे बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज न्यूट्रिशन से रिलेटेड फूड टेक्नोलॉजी से, तो उसका भी ध्यान रखे, बहुत सारे कोर्सेज फेमस आप कोर्सेज देखना चाहिए बच्चों को।
0: बिल्कुल सर, इतनी बड़ी डिस्कशन है ना, मुझे
3: वो विमेन्स कॉलेज है वहाँ पे बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज न्यूट्रिशन से रिलेटेड फूड टेक्नोलॉजी से, तो उसका भी ध्यान रखे, बहुत सारे कोर्सेज फेमस आप कोर्सेज देखना चाहिए बच्चों को।
0: बिल्कुल सर, इतनी बड़ी डिस्कशन है ना, मुझे लगता है कि इसके लिए एक घंटा कम पड़ जाता है, इसको लेकर हमें रेगुलर डिस्कशन करनी होगी जब तक एटलीस्ट बच्चों की कंफ्यूजन हम दूर ना कर दे, क्योंकि मेरे पास सही मायने में बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं। लेकिन चलते चलते जितिन जी आपसे जानना चाहूंगी, वोकेशनल कोर्सेज की ही बात की, आजकल प्रायोरिटी बच्चों की यही रहती है कि हम कुछ इस तरह का प्रोफेशनल कोर्स कर ले या वोकेशनल कोर्स कर ले और हमारा 3 साल में हमारी डिग्री भी पूरी हो जाए और साथ ही साथ हमारे पास एक प्रोफेशनल डिग्री भी मिल जाए, उसमें ऑप्शन क्या क्या है?
1: जैसे CBS शेख सराय है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी इसीलिए बनाया गया कि साथ साथ बच्चे वोकेशनल कोर्सेज कर लें, तो उसमें सेल्स प्रोसेस के ऊपर है, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के ऊपर है, अकाउंटिंग फाइनेंस के साइड में कोर्सेज है, एक HR का भी कोर्स आता है, तो लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि वो कोर्स केवल वो कोर्स सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ आपको बाहर से भी करना पड़ेगा और साथ साथ इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी। बहुत एक इम्पॉर्टेंट है कि सब बच्चों को इंटर्नशिप करनी चाहिए, अगर आप ध्यान से देखें तो इवन हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रेंटिसशिप की स्कीम निकाली है, तो वो भी इसीलिए कि बच्चों को प्रैक्टिकल, जब तक प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिलेगा तुम्हें जॉब मिलना मुश्किल है, जब तक जाके हाथ एक तरह से डिप करके काम नहीं करोगे आप समझोगे नहीं और आप चूज नहीं करोगे मुझे इस साइड में करना है या कुछ और करना चाहिए। उसी तरीके से कुछ और जैसे एडवर्टाइजिंग का मैंने पहले ही बताया, JMC में, कमला नेहरू में, ऐसे कई जगह अवेलेबल है एडवर्टाइजिंग के कोर्स, एक तरह से स्पेशलाइजेशन है। और अगर मुझे जैसे पूरा नहीं है कि मेरे को ये वाला चीज़ करना है, तो आप छुट्टियों में उस चीज़ में काम कर सकते हैं जिससे कि आपको एक्सपोजर मिले और फिर आप आगे चले। कई लोग होटल मैनेजमेंट के एरिया, काम करना चाहते हैं, ये सब भी इसके कोर्सेज भी
0: हैं। बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पर हैं स्टूडेंट्स के पास, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाह रहे हैं तो सबसे पहले फॉर्म को बहुत ध्यान से पढ़िए, डूज एंड डोंट्स के बारे में जान लीजिए। अगर आप किसी कोटा के तहत अप्लाई कर रहे हैं तो वो तमाम सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। कोर्स जरूरी है या कॉलेज जरूरी है, इसकी क्लैरिटी मन में रख के चलिएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपका पसंदीदा कॉलेज ना मिले, तो उसका प्लान बी भी आपका रेडी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।

0: कौन से ग्रह व्यक्ति को प्रशासनिक सेवा में ले जाते हैं? किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति प्रशासन में या फोर्स में जाता है? और अगर प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल रही है तो क्या उपाय करने चाहिए? प्रशासनिक सेवा का और ग्रहों का क्या है कनेक्शन, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
1: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
2: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
1: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
3: ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
2: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे,
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
1: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
0: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
2: You're listening to MSNBC.
0: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
3: कौन से ग्रह व्यक्ति को प्रशासनिक सेवा में ले जाते हैं? किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति प्रशासन में या फोर्स में जाता है? और अगर प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल रही है तो क्या उपाय करने चाहिए? प्रशासनिक सेवा का और ग्रहों का क्या है कनेक्शन, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good news today.
6: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
7: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
8: Sage University, transforming your passion into profession.
9: गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक मॉनसून दिखा रहा अपने रंग। सूरत में भारी बारिश के चलते उफान पर तापी नदी। थाड़े में सड़क से लेकर गली तक पानी से लबा। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले लबालब। पालमपुर की न्यूगल नदी में फंसे 7 पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू। पुलिस प्रशासन की सैलानियों को सतर्क रहने की अपील। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह। पवित्र यात्रा के दूसरे दिन अब तक करीब 30,000 भक्तों ने किए दर्शन। घाटी में सुनाई दे रही बम बम भोले की गूंज। अमरनाथ यात्रा के बीच आया एक और गौरवशाली पल। पहलगाम में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में फहराया गया तिरंगा। आस्था, दृढ़ता और वीरता का बना प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को दी विकास की सौगात। जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल के अलावा पचपदरा रिफाइनरी का किया उन्होंने शुभारंभ। गुजरात के सारंड में सेमीकंडक्टर यूनिट का उद्घाटन। भारत मंडपम में देश के सबसे बड़े टॉय एक्सपो का हुआ शुभारंभ। 7 जुलाई तक चलेगा ये एक्सपो। बिजनेस के नए अवसरों को मिलेगा बड़ा मंच।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके।
9: नमस्कार, मैं

0: महादेव, बम बम भोले, जय बाबा बर्फानी का जय घोष, कठिन रहा लेकिन आस्था पर, जुबां पर शिव का नाम,
1: नमः पार्वती पदे,
0: और दिल में बस एक ही अरमान, बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन। पूरे उत्साह और कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा जारी है।
2: बाबा बर्फानी की,
0: भोले के भक्त जयकारे लगाते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
2: हर हर हर महादेव।
0: यात्रा के दूसरे दिन 15,000 के करीब तीर्थ यात्रियों ने पवित्र बर्फानी के हिमलिंग के दर्शन किए। यानी यात्रा के शुरुआती दो दिनों में ही गुफा मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 30,000 के पार पहुंच गई है।
3: अमरनाथ यात्रा के पहले दो दिन काफी सफल रहे। करीब 30,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। कई सारे श्रद्धालु हैं जो अमरनाथ यात्रा करके आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। आप, मैं,
4: मुझे दर्शन करके इतना हुआ, जितनी भी सारी थकान थी बाबा को दर्शन करके सारी थकान मिट गई। ऐसा लगा कि हर साल आती रहूं। मैं पहली बार आई थी लेकिन पहली बार में ऐसा लगा हर साल आती रहूं।
5: मैं तीसरी बार आई हूं और मैं तो हमेशा कहूंगी बाबा हर साल बुलाएं और हर साल अपने दर्शन हमें ऐसे ही दें, क्योंकि उनके दर्शन करके लगता है कि हमने सब कुछ निभा लिया, सब कुछ पा लिया।
3: कहीं ना कहीं ऐसी ही मुस्कान और ऐसी ही खुशी उन सभी श्रद्धालुओं के बीच में दिख रही है जो अमरनाथ यात्रा करके वापस लौट चुके हैं। ये सफर जो है 57 दिन तक जारी रहेगा और उम्मीद जताई जा रही है कि अब की बार रिकॉर्ड तादाद में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा करेंगे। व्यापक इंतजाम किए गए हैं यात्रियों के रहने के, यात्रियों की सुरक्षा के, और किसी हद तक मौसम भी काफी मेहरबान दिख रहा है फिलहाल पहले दो दिनों के दौरान, और आने वाले दिनों में भी इसी तरह यात्रा में श्रद्धालुओं की जोश की उम्मीद जताई जा रही है।
0: तीर्थ यात्रियों के लिए प्रशासन ने सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 5,000 से ज्यादा यात्रियों का तीसरा जत्था अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हो चुका है। यात्रियों का उत्साह देखते ही बन रहा है।
3: कितना उत्साह और कितनी भीड़ अब की बार अमरनाथ यात्रा में है। रात के 2 बजे से लाइन में श्रद्धालु लगे हुए हैं। इस वक्त करीब 8 बज चुके हैं और अभी भी ये लाइन जो है ये चल रही है, क्योंकि कार्ड्स, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है यहाँ पर इसी जगह इन सभी श्रद्धालुओं के चेक किए जाते हैं और उसके बाद ही उनको आगे जाने की इजाजत है। दरअसल अब की बार जो है अमरनाथ यात्रा में प्रशासन और श्राइन बोर्ड ने ये साफ किया है कि नियमों के तहत ही, प्रशासन के तहत ही श्रद्धालुओं को अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ने की इजाजत मिलेगी, ताकि यात्रियों की यात्रा जो है वो सुरक्षित भी रहे और उनके लिए यादगार भी रहे। तो यही कारण है कि व्यवस्था के तहत अमरनाथ यात्रा जो है अभी जारी है।
0: बालटाल बेस कैंप में देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। यहां RFID रजिस्ट्रेशन, लंगर, ठहरने की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाओं के साथ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, ताकि हर श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के बाबा के दर्शन कर सके। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने भी यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए हैं, जिससे यात्रियों में खुशी है।
6: सुविधा अभी तक तो बहुत अच्छी चल रही है, आगे चल के प्रभु के दर्शन जैसे होंगे उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे।
0: 57 दिनों तक चलने वाली यह पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को औपचारिक रूप से शुरू हुई थी। यह यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन अवसर पर समाप्त होगी। प्रशासन ने दोनों रूटों बालटाल और पहलगाम पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और लंगर के पुख्ता इंतजाम किए हैं।

0: ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। पहलगाम मार्ग करीब 46 किलोमीटर लंबा है, जो प्रकृति की अद्भुत छटा के बीच 3 से 4 दिन में पूरा होता है। वही बालटाल रूट छोटा है, यह सिर्फ 14 किलोमीटर लंबा है, लेकिन ज्यादा कठिन है। जो श्रद्धालु पैदल यात्रा नहीं कर सकते, उनके लिए टट्टू और पालकी का भी इंतजाम है। अशरफ वानी, बालटाल, गुड न्यूज टुडे।
1: अमरनाथ यात्रा के दौरान भारतीय सेना ने पहलगाम जिले के चंदनवाड़ी में एक हाई मास्ट राष्ट्रीय ध्वज लगाया है, ताकि यात्रियों में राष्ट्रीयता का भी एहसास बना रह सके। चंदनवाड़ी पारंपरिक पहलगाम रूट पर अमरनाथ यात्रा का मुख्य बेस स्टेशन है। अमरनाथ यात्री चंदनवाड़ी तक गाड़ियों से पहुंचते हैं और वहां से आगे की यात्रा पैदल या टट्टू पर करते हैं और अमरनाथ की गुफा तक पहुंचते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब आपको कश्मीर से आई एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो किसी मिसाल से कम नहीं है। मिलिए कश्मीर के शोपिया के रहने वाले रऊफ से, जो पिछले 5 सालों से कश्मीर के उन तमाम पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं जहां सैलानियों की वजह से कचरा जमा हो जाता है।
2: बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी मखमली घास से सजे मैदान और दिल को छू लेने वाले नजारे, कुछ ऐसा है हमारा कश्मीर। वो कश्मीर जहां कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती का खजाना बिखेर रखा है। तभी तो हर साल लाखों सैलानी कश्मीर की इन बेहद हसीन वादियों को देखने के लिए उमड़ते हैं। लेकिन कभी कभी सैलानियों की ये रौनक इस हसीन और खूबसूरत घाटी के लिए चुनौती बन जाती है। जैसे जैसे पर्यटकों की तादाद बढ़ती है, कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट पर गंदगी और कचरा भी बढ़ने लगता है। और इसी चुनौतियों से निपटने के लिए कश्मीर के ही रहने वाले रऊफ ने एक बेहतरीन पहल की है।
3: लोग आते हैं, लोगों को आना चाहिए, ये आपके लिए ही है। तो मैं चाहता हूं कि ये लोगों का एसेट है, ठीक है, ये हर किसी बंदे का एसेट है और आप इसको उसी तरह से ले लो ताकि आपको अपना है, उसी हिसाब से इसको मेंटेन रखिए ताकि जो आपकी अपना जो सर्टिफिकेशन है, आपको ये हर तरह का पीस दे रहा है। ये नेचर आपको हार्म नहीं कर रहा है, आप नेचर को हार्म कर रहे हो यहाँ पे। और जो है इसको हमें इसकी ज़रूरत है, नेचर को हमारी ज़रूरत नहीं है। अगर ये 100 साल 50 साल भी ऐसे ही रहेगा तो इसको हमारी ज़रूरत नहीं है, ग्रो बाई डिफ़ॉल्ट करेगा। बट जो हमारी प्रॉब्लम है, हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है। अगर हम इसी को तबाह करेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि हमारी अपकमिंग जनरेशन इसका मज़ा उठाएगी और इसका ये नज़ारा देख पाएगी।
2: कश्मीर की जन्नत को बेदाग रखने के लिए दक्षिण कश्मीर के शोपियां का एक युवा एक बेहतरीन मिसाल बनकर उभरा है। मिलिए केलर इलाके के रहने वाले रऊफ से, जो पिछले 5 सालों से उन सभी पर्यटक स्थलों पर लगातार स्वच्छता अभियान चला रहे हैं जहां सैलानियों की वजह से कचरा जमा हो जाता है।
4: केलर के रहने वाले रऊफ ने एक प्रेरणा जरूर दी है उन लोगों के लिए, उन छात्रों के लिए जो पिकनिक के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें जब बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक की वजह से हमारी जो सरसब्ज ज़मीन है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। अगर इंसान में अच्छा इखलाक हो, अच्छा सोच हो, तो बंजर को आबाद कर सकता है, और अगर इंसान में गलत सोच हो, वो सरसब्ज ज़मीन को बंजर करने में कोई कसर बाकी पीछे नहीं रह सकता है।
2: रऊफ की इस पहल का असर भी हुआ। जो काफिला रऊफ ने शुरू किया उसमें धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। युवाओं के साथ ही आज इस अभियान में रिटायर्ड पेशेवर और बुजुर्ग भी पूरे उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं। रऊफ सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए मेहनत नहीं कर रहे, बल्कि उसकी अनदेखी खूबसूरती को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमालयन एलिगेंस नाम की एक किताब भी लिखी है। इस किताब में दक्षिण कश्मीर के उन खूबसूरत लेकिन अनदेखे पर्यटक स्थलों का जिक्र है जो अब तक आधिकारिक टूरिज्म मैप से गायब है। शोपियां के इन खूबसूरत और मनमोहक वादियों के बीच रऊफ की ये पहल साबित करती है कि जब युवा अपने समाज और पर्यावरण की जिम्मेदारी उठाते हैं तो तस्वीर यकीनन बदलती है। रऊफ की ये कोशिश न सिर्फ कश्मीर को साफ रख रही है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा संदेश भी है। शोपियां से इरशाद मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: भारत मंडपम में आज से 7 जुलाई 2026 तक देश का सबसे बड़ा टॉय एक्सपो उसकी शुरुआत हो गई है। इसका उद्घाटन वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया, टॉय बिज एक्सपो 2026 को लेकर ई कॉमर्स और रिटेल कारोबारियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। देखिए, खिलौना इंडस्ट्री से जुड़े मैन्युफैक्चरर्स, थोक विक्रेता, इम्पोर्टर्स, ब्रांड ओनर्स और नए सप्लायर्स को एक बड़ा मंच मिला है। ये एक्सपो न सिर्फ बड़े ब्रांड्स के लिए बल्कि छोटे कारोबारी और नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी एक बड़ा अवसर माना जा रहा है। और यही नहीं, एक्सपो ऑनलाइन बिजनेस में काम करने वाले कारोबारियों के लिए भी बड़ा अवसर दे रहा है। पेश है हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया की एक खास रिपोर्ट।
5: दिल्ली के भारत मंडपम में टॉय बिज एग्जीबिशन की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर देश भर के वो व्यापारी पहुंचे हैं जो खिलौनों का निर्माण करते हैं, उनका प्रोडक्शन करते हैं। हालांकि ये एक B2B एग्जीबिशन है, मतलब इसमें सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस की बात होगी। वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, वो व्यापारी जो खिलौने बनाते हैं, उनका उत्पादन करते हैं, और वो लोग जो लोकल मार्केट में जाकर खिलौने को बेचते हैं, जिनके छोटे छोटे स्टोर हैं, छोटे छोटे टॉय की शॉप है, वो सब आज यहाँ एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं। आपको बता दें कि एक वक्त ऐसा था जब भारत में भारतीय खिलौनों की मौजूदगी महज 20% हुआ करती थी। बाकी 80% जो खिलौने थे वो विदेशों से आते थे, उनका कब्जा रहता था भारतीय बाजार पर। लेकिन 2020 के बाद से तस्वीर बदली है और आज के वक्त में भारत के टॉय मार्केट में 80% से ज़्यादा, या आप यूं कहें कि उसके आसपास की जो बिक्री है वो सिर्फ भारतीय खिलौनों की ही होती है, यानी कि विदेशी ब्रांड पर निर्भरता बहुत कम हो गई है। और या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि भारतीय ब्रांड्स ने किस तरह से विदेशी टॉयज़ को, विदेशी ब्रांड को टक्कर दी है कि आज वो डोमिनेट करते हैं अपने बाज़ार में। सिर्फ इतना ही नहीं, 150 से ज़्यादा देशों में भारत के खिलौने भेजे जाते हैं। दूसरे देश हमसे खिलौना खरीदते हैं, इनमें गल्फ कंट्रीज सबसे आगे हैं। बहुत सारी बातें आज इस टॉय B2B एग्जीबिशन में होने वाली हैं। तमाम सारे वो लोग यहाँ पहुँचेंगे जो या तो पहले से ही खिलौनों के व्यापार में लगे हुए हैं, या फिर वो लोग जो कुछ यहाँ से सीख कर, समझ कर आगे जाकर अपना बिजनेस शुरू करने के मूड में हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर 300 मैन्युफैक्चरर्स पहुँचे हैं और 400 ब्रांड जो भारतीय ब्रांड हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर एक भी विदेशी ब्रांड आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर इस एग्जीबिशन के ज़रिए कोशिश ये की जा रही है कि जो लोकल दुकानदार है, जो लोकल स्टोर कीपर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीधे मैन्युफैक्चरर से जुड़े, ताकि वो बजाय इसके कि विदेशी ब्रांड खरीदने जाए, अपने ही देश के खिलौनों को खरीदे और बेचे। लगातार भारतीय बाजार अपने खिलौनों की गुणवत्ता पर, उसकी क्वालिटी पर, उसके डिज़ाइन पर काम करते आए हैं और आगे भी वो लगातार इस पर काम करने की बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो कोशिश है वो यही कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए और ये बिजनेस जो इवेंट है B2B का, वो भी इसी तरफ एक बेहतरीन कदम बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ता है।
6: इस इवेंट का पर्पज़ है मैन्युफैक्चरर्स को कस्टमर के साथ जोड़ना और ये अपने कस्टमर को दिखाना या बताना कि हिंदुस्तान में कितना अच्छा खिलौना बनने लगा है कि आप विदेशों से ना मंगवाओ और हिंदुस्तान के बने हुए खिलौनों को ही डिस्ट्रीब्यूट करो, उसी को बेचो और उसी को प्रमोट करो। तो ये सबसे बड़ा मकसद है हमारा यहाँ पर।
1: देखिए, भोपाल के रानी कमलावती रेलवे स्टेशन की तरह ही उसके तर्ज पर ही जयपुर में स्थित 151 साल पुराने रेलवे स्टेशन गांधीनगर का कायाकल्प किया जा रहा है। और देखिए, उम्मीद ये है कि आने वाले 2-3 महीनों में इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी हो जाएगा, जिससे यहां आने वाले यात्रियों को एक नया एहसास होगा, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त होगा। वैसे आपको बता दें कि जयपुर का गांधीनगर पिछले करीब 8 वर्षों से देश का दूसरा ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन है और अब इसके ऐतिहासिक पहचान को बरकरार रखते हुए इसे विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है।

0: जयपुर का 151 साल पुराना गांधीनगर रेलवे स्टेशन इतिहास को समेटे इस स्टेशन को अब आधुनिक बनाया जा रहा है। 211 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। 3 साल से चल रहे इस प्रोजेक्ट में स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाएं, अत्याधुनिक तकनीक और जयपुर की सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप बनाया जा रहा है।
1: जयपुर का गांधीनगर स्टेशन एक बड़ी सौगात लेकर आया है जयपुर वासियों के लिए भी और देश भर से जो भी लोग जयपुर में ट्रैवल कर रहे हैं उन सभी के लिए, क्योंकि इसका जो रीडेवलपमेंट है उसका काम पूरा हो चुका है। पूरे 3 साल का समय लगा है इसका ये पूरा रीडेवलपमेंट होने में और अब ये समय है कि इसका सिर्फ फिनिशिंग टच चल रहा है और जल्द ही पूरा काम खत्म हो चुका होगा और ये जितने भी नई चीजें हैं, नई फैसिलिटीज हैं, उन सभी का फायदा यहाँ पे आने वाले और जितने भी पैसेंजर्स हैं वो सभी उठा पाएंगे।
0: अपने ऐतिहासिक स्वरूप के जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन आधुनिकता का ऐसा संगम बनने जा रहा है जो यात्रियों के सफर का अनुभव पूरी तरह बदल देगा। स्टेशन पर मुख्य और द्वितीय प्रवेश द्वार की नई G+2 इमारतें लगभग तैयार हो चुकी हैं और फिलहाल फिनिशिंग का काम तेजी से जारी है। दोनों भवनों को जोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म के ऊपर 72 मीटर चौड़ा और करीब 2700 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला विशाल एयर कॉनकोर्स बनाया गया है। यही कॉनकोर्स स्टेशन की सबसे बड़ी खासियत होगा, जहां यात्रियों के लिए 2 आधुनिक सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन सिटिंग एरिया तैयार किए गए हैं। इनमें एक पेड लाउंज और दूसरा अनपेड वेटिंग एरिया होगा ताकि हर वर्ग के यात्रियों को सुविधा मिल सके। इसके अलावा यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कैफेटेरिया, गेम जोन और अन्य व्यवसायिक सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर 8 लिफ्ट, 4 एस्केलेटर और दिव्यांगजन अनुकूल व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से पूरे स्टेशन परिसर में 217 हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमराज लगाए गए हैं।
1: तो सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे चारों तरफ हम देख सकते हैं कि चारों तरफ कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं। यहाँ पे पूरे स्टेशन में एक भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कैमरास ना लगे हों। तो पूरी सिक्योरिटी की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पे की गई है। सेफ्टी पर्पस से जगह जगह पे यहाँ पे फायर हाउसेस लगाए हुए हैं। तो यहाँ उससे बहुत ज्यादा फायदा सभी को होगा कि कोई भी अगर आग लगने की या चिंगारी भी आती है तो वो बुझाई जा सकती है। और साथ में ही जगह जगह अलार्म्स सेट किए गए हैं और साथ ही में जितने भी रूफ्स हैं वहां पे स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं। तो जैसे ही वो अलार्म बजेगा वैसे वो स्प्रिंकलर्स चल जाएंगे तो जितने भी जो भी फायर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनसे बचा जा सकता है ऐसे में। तो ये पूरा जो कॉनकोर्स एरिया है ये दिखाता है कि कोई भी आने वाले समय में जो भी प्रॉब्लम होंगी उससे ज्यादा बचा जा सकता है, कवर्ड है। और सिर्फ यहाँ कवर्ड नहीं है, दूसरी तरफ अगर मैं आपको नीचे की साइड प्लेटफॉर्म दिखाऊंगी तो प्लेटफॉर्म तक ये टॉप रूफ जो है वो जाती है, क्योंकि वहां पे भी जो लोग डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पे खड़े हो रहे हैं तो उनको भी धूप का सामना ना करना पड़े, बारिश में भीगना ना पड़े, तो इसलिए पूरी तैयारियां की गई है। यहाँ पे अब डबल बेसमेंट पार्किंग का इंतजाम कर दिया गया है जिसकी वजह से 7000 स्क्वायर मीटर की पार्किंग जो है वो भी 2 बेसमेंट में लोगों को मिल पाएगी। अपनी गाड़ियां वो यहाँ खड़ी कर पाएंगे। करीब करीब 800 टू व्हीलर्स और 100 करीब 4 व्हीलर्स यहाँ पे एक बार में खड़ी हो सकती है। तो ये सारे कुछ फायदे हैं, कुछ सुविधाएं हैं जो ये रेलवे स्टेशन अब लेके आए सभी पैसेंजर्स के लिए। और बहुत सुंदर तरीके से ये हेरिटेज लुक में बनाया गया है। अगर इसको बाहर की तरफ से देखेंगे तो जयपुर का और राजस्थान का जो हेरिटेज है, जो कल्चर है, वो ये रेलवे स्टेशन रिफ्लेक्ट करेगा। तो जितने भी पैसेंजर्स हैं जो बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं,
0: रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आधुनिक कचरा प्रबंधन और ऊर्जा दक्ष तकनीकों के कारण इस परियोजना को ग्रीन बिल्डिंग की प्रतिष्ठित प्लैटिनम रेटिंग भी मिली है। स्टेशन की पूरी वास्तुकला जयपुर की गुलाबी नगरी की हेरिटेज थीम और स्थानीय कला से प्रेरित रखी गई है, जिससे यहां पहुंचते ही यात्रियों को राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान का एहसास होगा। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात फिल्मों की कर लेते हैं। तो सनी देओल की मच अवेटेड फिल्म बंटवारा 1947 का टीजर फाइनली रिलीज हो गया है, जिसे फैंस काफी पसंद भी कर रहे हैं। बात इस फिल्म की करें तो ये फिल्म 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी, क्योंकि इसी दिन भारत का बंटवारा हुआ था।
3: हिंदुस्तान, जिसे बड़े संघर्ष और कुर्बानियां देने के बाद 200 साल की गुलामी से आजादी तो मिली, लेकिन अफसोस मुल्क का बंटवारा हो गया।
0: बंटवारा 1947। अपने शानदार मोशन पोस्टर और किरदारों के दम पर सबका ध्यान खींचने वाली फिल्म का इंतजार काफी समय से फैंस कर रही
4: है।
0: अब इसके टीजर के रिलीज होने के साथ ही फिल्म को लेकर बना हुआ एक्साइटमेंट एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। भारत के बंटवारे पर बनी फिल्म बंटवारा 1947 का ये दिलचस्प और इंटेंस टीजर दर्शकों को इतिहास के सबसे बड़े मोमेंट्स में से एक में ले जाता है। भारत की आजादी और बंटवारे का भयानक मंजर जिसने एक देश को बांट दिया और हमेशा के लिए करोड़ों जिंदगियों को बदल कर रख दिया।
3: मजहब के नाम पर इंसानियत की हत्या हो रही थी।
0: दमदार डायलॉग्स और दिल को छू लेने वाले इमोशनल बैकग्राउंड स्कोर से भरा ये टीजर इतिहास के सबसे उथल पुथल भरे चैप्टर के दौरान उम्मीद और लचीलेपन के जज्बे को दिखाता है। फिल्म की कहानी के केंद्र में एक ऐसा हीरो है जो डर और नफरत से ऊपर उठकर असाधारण बहादुरी की मिसाल बनता है।
3: हिंदुस्तान, जिसे बड़े संघर्ष और कुर्बानियां देने के बाद 200 साल की गुलामी से आजादी तो मिली, लेकिन अफसोस मुल्क का बंटवारा हो गया।
0: बंटवारा 1947 के टीजर की शुरुआत एक आवाज से होती है जिसमें बताया जाता है कि हिंदुस्तान को बड़े संघर्ष और कुर्बानियां देने के बाद 200 साल की आजादी से गुलामी तो मिली, लेकिन मुल्क का बंटवारा हो गया। मजहब के नाम पर इंसानियत की हत्या हो रही थी। फिर टीजर में दिखाया जाता है कि विभाजन के वक्त किस कदर दंगे फसाद हुए और लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए थे।
5: इरादा तो नहीं है पर इतराज भी नहीं है।
0: सनी देओल की एंट्री और उनके साथ ही फिल्म के बाकी किरदारों को भी दिखाया जाता है। शबाना आजमी से लेकर बन गए थे।
5: इरादा तो नहीं है पर इतराज भी नहीं है।
0: सनी देओल की एंट्री और उनके साथ ही फिल्म के बाकी किरदारों को भी दिखाया जाता है। शबाना आजमी से लेकर प्रीति जिंटा, अली फजल और करण देओल। फिर आता है वो सीन जब सनी देओल का किरदार यानी देओल सिकंदर मिर्जा अभिमन्यु सिंह के किरदार याकूब खान से टकराता है।
5: मंगा लेना है, इरादा तो नहीं है पर इतराज भी नहीं है।
0: फिल्म के टीजर रिलीज होने पर एक्टर बॉबी देओल ने इंस्टाग्राम पर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने टीजर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, आप सबसे अच्छे हैं भैया। बॉबी ने आगे लिखा, मैं इस फिल्म को लेकर बहुत उत्साहित हूं और इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। इसके साथ ही बॉबी ने बंटवारा 1947 की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। बंटवारा 1947 को आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म 14 अगस्त को उसी दिन रिलीज होगी जिस दिन भारत का विभाजन हुआ था। इसमें शबाना आजमी, सनी देओल, प्रीति जिंटा, करण देओल, अली फजल और अभिमन्यु सिंह जैसे शानदार कलाकारों की फौज है।
3: हिंदुस्तान, जिसे बड़े संघर्ष और कुर्बानियां देने के बाद
0: ये फिल्म करीब 3 दशकों के बाद राजकुमार संतोषी और सनी देओल को साथ ला रही है।
3: मुल्क का बंटवारा।
0: इसका म्यूजिक AR रहमान ने तैयार किया है, गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए अब बात राघव जुआल की फिल्म भाई तेरा स्टार है की कर लेते हैं। बैट्स ऑफ बॉलीवुड और किल फिल्म से नाम कमाने वाले राघव जुआल की फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है। ये फिल्म 30 जुलाई को सुनहरे पर्दे पर दस्तक देगी। फिल्म एक्शन कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर होगी।
6: रॉकिंग रिबेल आइकॉन सुपर अल्ट्रा फ्यूचर सेक्सी स्टार अजय सिंह।
7: व्हाट अ वियर्डो यार।
8: रॉकिंग रिबेल आइकॉन सुपर अल्ट्रा फ्यूचर। टीजर की शुरुआत इन्हीं दमदार शब्दों से होती है। फिल्म का नाम है भाई तेरा स्टार है और लीड रोल में है राघव जुयाल। वही राघव जुयाल जिन्हें बैट्स ऑफ बॉलीवुड और किल फिल्म के लिए जाना जाता है।
7: हाँ मैंने झूठ बोला।
9: करेक्ट।
8: टीजर में कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन और राघव की शानदार कॉमिक टाइमिंग का जबरदस्त मिक्स देखने को मिलता है।
7: हाँ मैंने झूठ बोला,
9: लाउड हो रहा है।
7: हाँ मैंने झूठ बोला।
8: इससे पहले फिल्म का पहला मोशन पोस्टर भी रिलीज हुआ था, जिसमें अजय के किरदार को टैलेंट लोडिंग टैगलाइन के साथ दिखाया गया था। अब टीजर उसी कहानी को आगे बढ़ाता नजर आता है।
3: बॉलीवुड तैयार हो जाओ, एक नया स्टार आ रहा है।

0: इस टीजर में एक ऐसे लड़के की कहानी दिखाई गई है जो पूरी तरह से यकीन करता है कि वह सुपरस्टार बनने के लिए ही पैदा हुआ है। फिल्म में राघव जुएल अजय सिंह के रोल में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर टीजर शेयर करते हुए लिखा, हीरो की एंट्री लेट हो सकती है लेकिन निराश करने वाली कभी नहीं। फैंस को भी फिल्म भाई तेरा स्टार है का टीजर पसंद आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनपी के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
3: कौन से ग्रह व्यक्ति को प्रशासनिक सेवा में ले जाते हैं? किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति प्रशासन में या फोर्स में जाता है? और अगर प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल रही है तो क्या उपाय करने चाहिए? प्रशासनिक सेवा का और ग्रहों का क्या है कनेक्शन, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
4: It's Stormy, and previously on my show, Carly Pearce shared why she loves award show season.
5: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
4: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: We'll be right back.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

आपका आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पढ़ाई पूरी करने के बाद या बहुत बार पढ़ाई के दौरान हम अलग अलग नौकरियों की तैयारी करते हैं। कोई बैंक में जाना चाहता है, कोई टीचिंग में जाना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रशासनिक सेवा में एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरियों में जाना चाहते हैं। तो प्रशासनिक सेवा के योग क्या होते हैं और प्रशासनिक सेवा में सफलता कब मिलती है, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 1:30 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र दोपहर 3:12 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार का ग्रहों का हाल क्या है, क्या है ग्रहों की चाल। सूर्य विद्यमान है मिथुन राशि में, बुध और बृहस्पति कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, चंद्रमा और राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। देखिए, हर साल लाखों लोग प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की, पीसीएस की, एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरियों की, लेकिन हर आदमी प्रशासनिक सेवा में नहीं जा पाता। कौन से ग्रह प्रशासनिक सेवा में ले जाते हैं? देखिए, प्रशासन के दो प्रमुख ग्रह हैं सूर्य और मंगल। इनको आप परफेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेनेट या प्रशासन के ग्रह कह सकते हैं। सूर्य की मजबूती से राज्य का, गवर्नमेंट का उच्च पद मिलता है और मंगल की मजबूती से सेना में, पुलिस में या फोर्स में उच्च पद मिलता है। चंद्रमा भी राजसिक प्लेनेट है, गवर्नमेंट का प्लेनेट है, इसीलिए इसके अलावा चंद्रमा भी उच्च पद दिलाने में सहायता करता है। कुंडली में अगर अग्नि तत्व मजबूत हो, अग्नि की राशियां प्रबल हो या पृथ्वी तत्व मजबूत हो तो भी व्यक्ति प्रशासन में जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरियां करता है। तो मुख्य रूप से किसी कुंडली में करियर से अगर सूर्य का
मंगल का या चंद्र का संबंध बनता हो पॉजिटिवली, तो निश्चित रूप से व्यक्ति प्रशासन में या प्रशासनिक क्षेत्र में नौकरी करता है। प्रशासनिक सेवा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर के नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, परिवार में खुशहाली आएगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, रोजगार में सफलता मिलेगी, नया काम शुरू होगा, खान पान का ध्यान रखें, अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, चोट चपेट से बचाव करें, धन खर्च पर ध्यान दें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि कब ऐसा होता है कि प्रशासनिक सेवा में एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाने में समस्या होती है। अगर किसी कुंडली में सूर्य और मंगल दोनों कमजोर हो गए तो लाख प्रयास करने पर भी आप प्रशासनिक क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे। अगर कुंडली में जल तत्व की प्रधानता हो तो आप मेडिकल में जाएंगे, आप एजुकेशन में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जाएंगे। और या वायु तत्व की प्रधानता हो तो लिखने पढ़ने वाला, टेक्नोलॉजी का, इंजीनियरिंग का, ऐसा काम करेंगे। अगर कुंडली में बृहस्पति मुख्य ग्रह हो जाए तो न्याय के क्षेत्र में जा सकते हैं, प्रशासन में नहीं। और अगर शुक्र मुख्य ग्रह हो जाए तो भी प्रशासन में जाना मुश्किल होगा। अगर शनि की साढ़े साती का या ढैया का अंतिम समय चल रहा हो तो बहुत प्रयास करने के बावजूद 60-70% तक ये संभावना बनती है कि आप प्रशासनिक क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे, मार्जिन से आप असफल हो सकते हैं। यानी कुंडली में ग्रहों का योग भी होना चाहिए और ग्रहों की सही दशा भी मिलनी चाहिए। जब योग भी सही होंगे और दशा भी सही मिलेगी तब आप प्रशासनिक सेवा में जा पाएंगे। आगे प्रशासनिक सेवा पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी, करियर में सफलता मिलेगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, सेहत अच्छी रहेगी, धन की प्राप्ति होगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, वाहन सावधानी से चलाएं, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अगर आपकी कुंडली में प्रशासनिक सेवा में जाने के योग हैं लेकिन प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिल पा रही है तो क्या उपाय करेंगे? देखिए, मेष, सिंह और धनु या तो राशि हो या तो लग्न हो, प्रशासन में जाने की संभावना मजबूत होती है। कुंडली में अगर प्रशासनिक सेवा में जाने के योग हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं तो नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। प्रातः काल आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। वृषभ, कन्या, मकर राशि में प्रशासन के गुण बहुत होते हैं लेकिन संघर्ष भी इनको ज्यादा करना होता है। अगर इनको प्रशासनिक सेवा में जाना है तो हनुमान जी की बहुत उपासना इनको करनी चाहिए। मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोग चंचल दिमाग के होते हैं, एक लक्ष्य पर ध्यान नहीं लगा पाते। अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें तो आपको लाभ होगा। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोग शासन करते हैं लेकिन ज्यादातर इन राशियों के लोग राजनीति से या सोशल वर्क के माध्यम से शासन करते हैं। अगर ये प्रशासन में सफलता चाहते हैं तो इनको चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में प्रशासनिक सेवा में जाने के योग हैं और प्रयास करने के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और संघर्ष ज्यादा है तो रोज शाम को 108 बार शनि का मंत्र ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा,
रिश्तों की समस्या हल होगी, करियर में सफलता मिलेगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान की प्राप्ति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, नौकरी में लापरवाही ना करें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। घर के मुख्य द्वार पर बेल का पौधा गमले या जमीन में लगाएं और घर के पीछे की तरफ केले का पौधा लगाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो धन का आगमन सरलता से होता रहेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल सूर्य देव को जल अर्पित करें, इसके बाद 9 बार ओम आदित्याय नमः का जप करें। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
1: परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
8: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
9: टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती और इस नन्ही बच्ची ने इसे सच साबित कर दिखाया। सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ है लेकिन चेहरे पर मुस्कान बरकरार है। रस्सी पर संतुलन बनाते हुए वो मुश्किल करतब दिखाती है और लोगों का दिल जीत लेती है। परिवार का सहारा बनने के लिए वो मेहनत कर रही है। ये वीडियो सिर्फ उसके हुनर की नहीं बल्कि उसके संघर्ष और हौसले की कहानी भी बयां करता है। कम उम्र में बड़ा कारनामा करने वाले सोलापुर के 12 साल के छात्र अब्दुल्ला इमरान मंगलगिरी की हर तरफ चर्चा हो रही है। उसने महज 9000 रुपए की लागत से ऐसी सोलर साइकिल तैयार की है जो सौर ऊर्जा और बैटरी दोनों से चलती है। साइकिल में डिजिटल स्पीडोमीटर, जीपीएस ट्रैकिंग और वॉइस कंट्रोल जैसी आधुनिक सुविधाएं भी दी गई हैं। छात्र का यह अनोखा आविष्कार लोगों को खूब प्रेरित कर रहा है। दोस्ती और भरोसे की मिसाल बन चुके ऑफिसर ब्रायन सैंटोस और उनके K9 पार्टनर कायरा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साल 2018 से दोनों साथ मिलकर ड्यूटी निभा रहे हैं। वीडियो में ऑफिसर जो भी मूवमेंट करते हैं कायरा भी बिल्कुल उसी अंदाज में उनका साथ देती नजर आती है। दोनों के बीच की गजब की समझ और तालमेल देखकर लोग उनकी इस अनोखी जोड़ी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। हौसला अगर बुलंद हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। इसका शानदार उदाहरण एक जंगली बकरी ने पेश किया है जिसने तेज बहाव वाली उफनती रावी नदी को बेखौफ होकर पार कर लिया। नदी की रफ्तार और खतरनाक हालात के बावजूद बकरी का संतुलन देखने लायक था। ये रोमांचक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग उसकी बहादुरी और आत्मविश्वास की जमकर सराहना कर रहे हैं। छोटी सी उम्र और बड़ा टैलेंट, इस बच्ची का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर छाया है। सुर में दानी गाने पर उसने शानदार एक्सप्रेशन और बेहतरीन डांस मूव से हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। हर स्टेप में आत्मविश्वास और चेहरे के भाव इतने शानदार हैं कि उसकी ट्रेनर भी हैरान रह गई। लोग बच्ची की मासूमियत आत्मविश्वास और टैलेंट की खूब तारीफ कर रहे हैं और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
8: गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक मॉनसून दिखा रहा अपने रंग। सूरत में भारी बारिश के चलते उफान पर तापी नदी, ठाणे में सड़क से लेकर गली तक पानी से लबा। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले लबालब। पालमपुर की न्यूगल नदी में फंसे 7 पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू। पुलिस प्रशासन के सैलानियों को सतर्क रहने की अपील। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह। पवित्र यात्रा के दूसरे दिन अब तक करीब 30,000 भक्तों ने किए दर्शन। घाटी में सुनाई दे रही

0: भविष्य के युद्ध छोटे, तेज और टेक्नोलॉजी आधारित होंगे, लिहाजा युद्ध जैसे हालात में बढ़त उसी को मिलेगी जो दुश्मन से 10 कदम आगे की तैयारी रखेगा। और भारत को भी ये अच्छे से पता है कि उसे खतरा दो मोर्चों से है, लिहाजा तैयारी भी जबरदस्त होनी चाहिए। बास बटालियन, रुद्र ब्रिगेड, अश्विन ड्रोन प्लाटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, ये उसी तैयारी का हिस्सा है जिनका मकसद सेना को अधिक तेज, सक्षम, सटीक और तकनीक से जुड़ा बनाना है।
1: जय यानी जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता, इनोवेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का दिया हुआ नारा, और मल्टी डोमेन ऑपरेशन की मुहिम के तहत रुद्रा ब्रिगेड, भैरव बटालियन, अश्विनी ड्रोन प्लेटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्रा बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड और आईबीजी यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जैसे कदम इसी सोच का हिस्सा है।
0: हाल के अनुभवों ने यह साफ कर दिया है कि भविष्य में सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जानकारी, सर्विलांस वेपन, कम्युनिकेशन सिस्टम और कमांडर कितनी तेजी से एक साथ काम कर पाते हैं। इसीलिए सेना अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के बजाय अधिक समन्वित और तेज व्यवस्था की ओर बढ़ती जा रही है।
1: भविष्य में युद्ध और अधिक ज्वाइंट, इंटीग्रेटेड और थिएटर ओरिएंटेड होगा, इसलिए हमारी दिशा स्पष्ट है, साथ देखना, साथ निर्णय लेना और साथ कार्रवाई करना। भारतीय सेना में परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर चलती आ रही। इन दो वर्षों में डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग, आधुनिकीकरण, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, जॉइंटनेस, सिस्टम रिफॉर्म और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर तीव्र गति से काम हुआ है।
0: भारतीय सेना भविष्य की जंग के लिए खुद को तेजी से तैयार कर रही है। इसी दिशा में सेना ने बास बटालियन नाम से खास ड्रोन यूनिट बनाने का फैसला किया है। बास बटालियन में ट्रेन जवानों की एक स्पेशल टीम होगी जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम का संचालन और प्रबंधन करेगी। इन बटालियनों का काम सीमा पर लगातार निगरानी रखना, दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी जुटाना और जरूरत पड़ने पर सटीक कार्रवाई में मदद करना होगा। सूत्रों के मुताबिक बास बटालियन को आर्मी एविएशन कोर के अंतर्गत रखा जा सकता है। बास बटालियन फ्रंटलाइन यूनिट्स और खुफिया सिस्टम के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करेगी जिससे दुश्मन का दांव धरा का धरा रह जाएगा।
2: इंडियन आर्मी में करीबन 380 इन्फेंट्री बटालियंस हैं। एक इन्फेंट्री बटालियन में करीबन 1000 जवान होते हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि इंडियन आर्मी के जो बटालियंस हैं उनको आस्ते आस्ते बास बटालियंस में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी जैसे कन्वेंशनल इन्फेंट्री बटालियन में अल्फा कंपनी, ब्रेवो कंपनी, चार्ली कंपनी, डेल्टा कंपनी होती थी, अब एक छोटी सी टुकड़ी यह भी रेज की जाएगी इन बटालियंस में, जिनके पास अलग अलग तरह के ड्रोन्स होंगे, रिकनेसेंस ड्रोन होंगे जो कि छोटी दूरी के या लंबी दूरी की होंगे। इसी तरह से उनके पास अटैक ड्रोन्स भी होंगे जो कि शत्रु के ऊपर जाके हमला करके वापस आ सकें। सबसे बड़ी बात है कि इन इन्फेंट्री बटालियंस में आस्ते आस्ते सुसाइड ड्रोन यानी कामिकाजे ड्रोन इंडक्ट किए जाएंगे जो कि शत्रु के पोजीशन के ऊपर जाके लॉयटर कर पाएंगे। यानी वहां पर 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट शत्रु की लोकेशन के ऊपर घूमते रहेंगे।

0: अभी सेना की अश्नि ड्रोन पलटन पैदल सेना के साथ मिलकर कम दूरी की निगरानी करती है। दिव्यास्त्र और शक्तिबाण जैसी इकाइयां हमलावर ड्रोन और लाइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल करती हैं। बास बटालियन इन सबसे ऊपर की कैटेगरी में होगी और लंबी दूरी की निगरानी, लक्ष्य पहचान और बड़े स्तर पर ड्रोन संचालन की जिम्मेदारी संभालेगी। ड्रोन्स का काम अब केवल निगरानी करना या फिर विशेष अभियानों तक सीमित नहीं, बल्कि ड्रोन की ताकत आज की तारीख में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ड्रोन न केवल दुश्मन पर हमला कर सकते हैं बल्कि साथ ही साथ जानकारी जुटा सकते हैं। इसी के साथ साथ रेकी के लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है और साथ ही साथ हमारे सैनिकों के लिए भी ड्रोन सबसे ज्यादा उपयोगी साबित हो रहा है।
1: पहले पैदल सैनिकों को दुश्मन पर हमला करने के लिए तोपखाने या वायुसेना के बैकअप का इंतजार करना होता था, लेकिन अब अश्विन प्लाटून का ऑपरेटर खुद दुश्मन को स्क्रीन पर देखता है और पलक झपकते ही ड्रोन से हमला कर देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के रण ऑफ कच्छ तक करीब 1000 ड्रोन से हमला किया था। भारतीय सेना की एंट्री एयरक्राफ्ट गन और काउंटर ड्रोन सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। इसके बाद सेना ने ड्रोन फोर्स खड़ी करने का संकल्प लिया और भैरव बटालियन, दिव्यास बैटरी और अश्नि प्लाटून जैसी नई इकाइयों की शुरुआत की। सेना के हर इन्फेंट्री बटालियन में अश्नि ड्रोन प्लाटून बनाई गई है। एक प्लाटून में 20 सैनिक हैं जिन्हें FPV, सर्वेलांस, स्वॉर्म ड्रोन और लॉयटरिंग म्यूनिशन चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। भारतीय सेना की करीब 380 इन्फेंट्री बटालियन में ऐसी इकाइयां शामिल की जा रही हैं।
2: हर इन्फेंट्री बटालियन में जब वो बाज बटालियन में कन्वर्ट होंगे तो एक एक अश्नि प्लाटून डेवलप की जाएगी। इस डिप्लॉयमेंट के बाद हर इन्फेंट्री बटालियन की जो अश्नि प्लाटून होगी उनको करीबन 20 सोल्जर्स ऐसे ट्रेन करने पड़ेंगे जो कि रिकनेसेंस ड्रोन को उड़ा सकें, अटैक ड्रोन को कामयाबी से अटैक करवा सकें। सबसे बड़ी बात है जो सुसाइड ड्रोन होते हैं, कामिकाजी ड्रोन, उसमें जो FPV होता है, फर्स्ट पर्सन व्यू, यानी ऑपरेटर जो है वो देख सकता है कि ड्रोन कहाँ उड़ रहा है, किस चीज़ को निशाना बना रहा है। FPV रोल में इन 20 सोल्जर्स को ट्रेन किया जाएगा। हर यूनिट में करीबन शुरुआती दौर में 10-10 ड्रोन दिए जा रहे हैं, जिसमें 4 ड्रोन तो रिकॉग्निशंस ड्रोन होंगे, यानी वो दुश्मन की टोह लेकर वो कमांडर को सूचित करेंगे कि दुश्मन का टारगेट कहां पर है।
1: सेना के भीतर अलग अलग आर्म्स, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, सिग्नल के बीच तालमेल और एकीकरण पर जोर दिया जा रहा है और इसी तैयारी का हिस्सा है शक्तिमान रेजिमेंट। ये भारतीय सेना की तोपखाना के अंडर बनाई जा रही एक विशेष और आधुनिक ड्रोन केंद्रित इकाई है जो दुश्मन की गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी और लक्ष्य निर्धारित करने में सक्षम होगी। शक्तिमान रेजिमेंट के जवान पारंपरिक तोपों के बजाय अनमैन्ड एरियल व्हीकल के जरिए दुश्मन पर सटीक और घातक हमला करेंगे। भविष्य के युद्धों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना की ओर से 15 से 20 शक्तिमान रेजिमेंट तैयार की जा रही हैं। ये रेजिमेंट स्वॉर्म ड्रोन, लॉयटरिंग म्यूनिशन और लॉन्ग रेंज UAV से लैस हैं, जिनकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक होगी।
2: हमारी आर्टिलरी के जो यूनिट्स हैं उनमें 20 एडिशनल शक्तिमान रेजिमेंट्स रेज की जा रही हैं। इन आर्टिलरी यूनिट्स में लॉन्ग रेंज UAV और लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का डिप्लॉयमेंट होगा। आमतौर पे जो ड्रोन्स इन्फेंट्री यूनिट्स के पास होंगी वो 5-10 किलोमीटर की दूरी तक ऑपरेट कर पाएंगी, लेकिन जो ड्रोन और UAV इन शक्तिमान आर्टिलरी रेजिमेंट्स को दिए जा रहे हैं उनकी रेंज 10-500 किलोमीटर तक होंगी, यानी डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए उनका इस्तेमाल किया जाएगा।
1: शक्तिमान रेजिमेंट सैनिकों को जोखिम में डाले बिना दुश्मन की सीमा के भीतर घुसकर सटीक पिन पॉइंट स्ट्राइक करने की क्षमता रखती है। आर्टिलरी में 15 शक्तिमान रेजिमेंट बनाई जा चुकी हैं और 11 बनाई जानी है, जो तोपखाना रेजिमेंट शक्तिबाण में तब्दील नहीं होंगी उनमें दिव्यास्त्र बैटरी होगी। शुरू में 34 दिव्यास्त्र बैटरी बनाई जा रही है। दिव्यास्त्र बैटरी के पास ड्रोन और लाइटरिंग एम्यूनिशन होंगे। पारंपरिक आर्टिलरी में केवल तोप और रॉकेट होते थे, वहीं दिव्यास्त्र की अगर बात करें तो ये तोपों को एक हाईटेक वर्जन देता है। सीधे तौर पर कहा जाए तो ये डिजिटली और मानव रहित तकनीकों से इसे जोड़ता है। पारंपरिक तोपों और आधुनिक मानव रहित प्रणालियां यानी कि ड्रोन्स का एक हाइब्रिड मिश्रण हम इसको कह सकते हैं, जो दुश्मन के इलाके में घुसकर सही और सटीक हमला कर सकता है। वैसे योजना 35 से 40 ऐसी दिव्यास्त्र बैटरियां और बनाने की भी है। दिव्यास्त्र बैटरियां पारंपरिक बोफोर्स या फिर 9 वज्र जैसी तोपों के साथ लाइटिंग म्यूनिशन और निगरानी ड्रोन्स को एक साथ ऑपरेट करती हैं। दिव्यास्त्र बैटरी के ड्रोन पहले दुश्मन के बंकर, ठिकाने या आगे बढ़ते टैंकों को लाइव ट्रैक करते हैं और तुरंत उनके सटीक कोऑर्डिनेट्स तोपखाने को भेजते हैं। इस तकनीक से तोपखाने की मारक क्षमता और सटीकता कई गुना बढ़ जाती है, जिससे दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक पिन पॉइंट हमले किए जा सकते हैं।
2: इंडियन आर्मी की दिव्यास्त्र बैटरी जो है वो आर्मी की आर्टिलरी का एक हिस्सा होंगी। इन यूनिट्स में जो रिकनेसेंस ड्रोन होंगे वो आर्मी की जो कन्वेंशनल तोपे हैं जैसे कि बोफोर्स की गन्स, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके फायर पावर का ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगी। दिव्यास्त्र बैटरीज में रिकनेसेंस ड्रोन होंगे जो कि युद्ध भूमि के पीछे यानी टैक्टिकल बैटल एरिया के आगे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूरी तक रिकनेसेंस करेंगी और टोह लेंगी कि दुश्मन जो है किस दिशा से हमारे ऊपर हमला करने आ रहा है।
1: भारतीय सेना ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर अपना दबदबा कायम करने और आधुनिक नेटवर्क केंद्रित युद्धों को जीतने के लिए विशेष इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड्स का गठन करने का फैसला किया है। ये सेना के आधुनिकीकरण या रीस्ट्रक्चरिंग अभियान का एक क्रांतिकारी हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक हथियारों जैसे तोपों या टैंकों के चलने से पहले ही दुश्मन के संचार और सैन्य तंत्र को अंधा और बहरा बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड के मुख्य कार्यों में एक है स्पेक्ट्रम डोमिनेंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल, जो दुश्मन के रडार, ड्रोन, मिसाइल और वायरलेस सेट के सिग्नल्स को ब्लॉक कर पूरे स्पेक्ट्रम पर कब्जा करती है। दूसरा है दुश्मन के सिस्टम्स को जाम करना। इसमें दुश्मन के रडार नेटवर्क, एयर डिफेंस कमांड सेंटर्स और मानव रहित विमानों के डेटा लिंक को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया जाता है। अगला सिग्नल इंटेलिजेंस, इससे सैनिक दुश्मन के रेडियो सिग्नल्स और मोबाइल सैटेलाइट बातचीत को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, जिससे दुश्मन की अगली रणनीति और लोकेशन का पहले ही पता चल जाता है। किलवेव इंटीग्रेशन, ये ब्रिगेड रियल टाइम खुफिया जानकारी को तुरंत अपनी तोपखाना और एयर डिफेंस यूनिट्स के साथ साझा करती है, जिससे चिन्हित किए गए खतरों को पलक झपकते ही नष्ट किया जा सकता है।
2: भविष्य के किसी भी युद्ध में इंडियन आर्मी की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड का मुख्य काम ये होगा कि दुश्मन जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहा है अपने कमांडर्स के साथ या अपनी लोअर फॉर्मेशन के साथ, उसको मॉनिटर करना। अब दुश्मन के पास अलग अलग तरह की कम्युनिकेशन सेट होते हैं, कुछ हाई फ्रिक्वेंसी यानी HF पे काम करते हैं, कुछ VHF यानी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज पर काम करते हैं, आजकल ज़्यादातर सेट UHF यानी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं। तो इसकी जो सिग्नल इंटेलिजेंस है उसको भांप के उसको सुनना और वो जो वॉइस रिकॉर्डिंग है उसको कमांडर के सामने देना, इनका पहला काम होगा।
1: भारतीय सेना में बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण अब सिर्फ नए हथियार या उपकरण लेने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य सेना की सोच, ढांचे, प्रशिक्षण, तकनीक, कार्यप्रणाली और मानव संसाधन को एक साथ आगे बढ़ाना है। साल 2026 में भारतीय सेना में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पहली बार इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप सेना में शामिल किए जाएंगे। कुल 5 IBG बनाई गई है, जो कि 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के तहत काम करेंगी। हर आईबीजी की कमान मेजर जनरल रैंक के अधिकारी के पास होगी। इसके अलावा चीफ ऑपरेशन ऑफिसर्स का नया पद भी बनाया गया है, जिसकी जिम्मेदारी होगी ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी के पास। एक पारंपरिक ब्रिगेड में सिर्फ एक तरह की सेना होती है, जैसे सिर्फ पैदल सेना या फिर आर्टिलरी। उन्हें तोपखाने या फिर डिफेंस के सपोर्ट के लिए अच्छे मुख्यालयों से मंजूरी और यूनिट्स के आने का इंतजार करना पड़ता है। इसके उलट प्रत्येक आईबीजी एक आत्मनिर्भर इकाई है, जिसमें युद्ध के लिए जरूरी सभी अंग पहले से ही एक ही कमांडर के तहत एकीकृत होते हैं। आईबीजी की संरचना क्या है वो भी आपको बताते हैं। इसमें इन्फेंट्री जमीनी मोर्चे पर कब्जा करने और लड़ने के लिए पैदल सैनिक आर्म्ड, तेजी से आगे बढ़ने और दुश्मन की रक्षा पंक्ति तोड़ने के लिए टैंक और मैकेनाइज्ड गाड़ियां, आर्टिलरी जिसमें लंबी दूरी तक भारी बमबारी के लिए दिव्यास्त्र बैटरी या फिर पारंपरिक तोपें होती हैं, एयर डिफेंस जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोन से हवा में सुरक्षा मुहैया कराता है, लॉजिस्टिक और इंजीनियर्स इनका काम रास्ते के बारूदी सुरंगों को हटाना, पुल बनाना और गोला बारूद की त्वरित सप्लाई करना होता है। साथ ही आधुनिक विंग्स, इसमें शक्तिबान रेजिमेंट के ड्रोन दस्ते और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स भी सीधे शामिल होती हैं। ये सब मिलकर एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की संरचना करते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो आईबीजी एक सैन्य ग्रुप है, जिसमें सेना के लगभग हर प्रमुख अंग के सैनिक शामिल होंगे।
2: टैक्टिकल बैटल एरिया में आमतौर पर आर्टिलरी यूनिट्स काम करती हैं, टैंक रेजिमेंट्स काम कर रहे होते हैं, इन्फेंट्री बटालियंस आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं और इसी तरह से उनको सपोर्ट भी मिलता है। आर्मी ऑर्डनेंस कोर्स जो है युद्धभूमि में उनको पेट्रोल, डीजल, स्पेयर पार्ट्स, अम्यूनिशन सप्लाई करती है। आर्मी सप्लाई कोर जो है वह एडवांसिंग कॉलम्स को राशन मुहैया कराती है। 10,000 ट्रुप्स एक डिवीजन के अगर आगे बढ़ रहे हैं या 30,000 ट्रुप्स एक कोर में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें दिन में 3 बार खाना भी तो खाना है। 30,000 सोल्जर्स को पानी पिलाने का काम बहुत ही मैराथन जॉब है, क्योंकि वो 30,000 सोल्जर्स जब युद्धभूमि में लड़ रहे हैं तो कोई दाएं हैं, कोई बाएं हैं, कोई सामने 100 किलोमीटर है, कोई पीछे 10 किलोमीटर है। इन सबको युद्धभूमि में पानी पिलाना, रेगिस्तान है ना, जंगल है या हिमालय की पहाड़ियां हैं, पानी आसानी से नहीं मिलता। तो ये काम सारे जितने इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मी यूनिट्स हैं और सपोर्ट सर्विसेज हैं उसको एक साथ सुचालित ढंग से आगे बढ़ाना एक ही कमांडर के नीचे होगा। इनको नाम दिया गया है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप।
1: भारतीय सेना अपनी सभी लड़ाकू कोर को धीरे धीरे छोटे, मारक और अत्यधिक आधुनिक एकीकृत समूहों में बदल रही है, ताकि भविष्य के कम समय वाले युद्धों को आसानी से जीता जा सके। आईबीजी के फायदे क्या हैं ये भी जान लीजिए। सबसे पहला है अनमैच स्पीड। दरअसल सभी संसाधन एक ही कमांडर के पास होते हैं और इसीलिए उन्हें लामबंद होने में कुछ हफ्तों के बजाय महज 12 से 48 घंटे का वक्त लगता है। फौरन फैसला लेने की क्षमता, कमांडर को तोप या फिर हवाई सुरक्षा के लिए कोर मुख्यालय से अनुमति नहीं मांगनी पड़ती, वो युद्ध क्षेत्र की स्थिति देखकर ऑन द स्पॉट फैसले ले सकता है। तीसरा है किल वेव से सीधा जुड़ाव। आईबीजीज पूरी तरह से डिजिटल और नेटवर्क केंद्रित हैं। इनके सेंसर और शूटर आपस में जुड़े होते हैं, जिससे दुश्मन की लोकेशन मिलते ही पूरी ताकत से हमला कर दिया जाता है।
2: ये जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप होंगे ये एक युद्धभूमि में एक मेजर जनरल के तहत आएंगे और भविष्य के युद्ध में ये हाईली फ्लेक्सिबल होंगे, क्योंकि इनका अपना ट्रांसपोर्ट ग्रुप होगा। यानी सडनली देखिए 10,000 ट्रुप्स को अगर लेके 200 किलोमीटर आगे ले जाना है या 10,000 ट्रुप्स को लेकर सडनली 200 किलोमीटर बाएं तरफ लेके जाना है तो आपको 100 गाड़ियां चाहिए कम से कम। तो ये जो 100 गाड़ियां हैं ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के जो कमांडर होंगे उनके डायरेक्ट कंट्रोल में होंगी। इससे जो आईबीजी के कमांडर हैं मेजर जनरल रैंक के होंगे उनकी युद्धभूमि में कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी और युद्ध लड़ने की क्षमता काफी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाएगी और ज्यादा भी हो जाएगी।
1: आसान भाषा में कहें तो आईबीजी ऐसा सैन्य ग्रुप है जिसमें सेना के लगभग हर प्रमुख अंग के सैनिक शामिल होंगे, यानी इन्फेंट्री आर्म्ड या टैंक, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इंजीनियर्स, एयर डिफेंस, सिग्नल्स, लॉजिस्टिक और मेडिकल कोर, जो जरूरत पड़ने पर बिना किसी दूसरी यूनिट का इंतजार किए तेजी से ऑपरेशन शुरू कर सकेंगे। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत है इसके जवानों की संख्या। इसमें करीब 5,000 जवान होंगे जो 12 से 13 यूनिट्स में डिवाइड होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक परंपरागत ब्रिगेड में नॉर्मली 5 से 7 हजार के करीब जवान होते हैं, और अगर हम डिवीजन की बात करें तो इसमें 10,000 या फिर इससे ज्यादा जवान होते हैं। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप इसके बीच का काम करेगा, यानी जहां जरूरत होगी वहां ये सैनिक पूरी तरह से तैयार रहेंगे।
0: छोटी टुकड़ियों में होने की वजह से आईबीजी ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक में होने वाले युद्ध में खुद को तेजी से ढाल पाने में सक्षम हो सकते हैं। मौजूदा योजना के मुताबिक 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कोर से 4 इंटीग्रेट बैटल ग्रुप और 1 फायर सपोर्ट ग्रुप बनाए जाएंगे।
1: रणक्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
5: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: और बात करते हैं मॉडर्न वेलफेयर फोर्स भैरव की, जिसमें करीब 1,00,000 से ज्यादा ड्रोन ऑपरेटर्स की फौज तैयार की जा रही है और इन्हें खासतौर से LOC पर तैनात किया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी खासियत यही है कि किसी भी तरह की इन्फिल्ट्रेशन पर निगरानी रखना, और ये भारतीय सेना के लिए एक सबसे बड़ा हथियार होगा। वैसे इसमें कोई दो राय है भी नहीं है कि आज की तारीख में LAC हो या फिर LOC, हमारे सैनिक अत्याधुनिक हथियारों के साथ हमारे देश की हिफाजत में लगातार जुटे हैं।
1: भारतीय सेना आधुनिक और हाइब्रिड युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को लगातार बदल रही है, और इसी कड़ी में सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 1,00,000 से ज्यादा सैनिकों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी है। सेना पुराने तरीकों से हटकर टेक्नोलॉजी और स्पेशल फोर्स पर भरोसा कर रही है। भैरव जैसे कमांडो भविष्य के खतरों से निपटने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं।
2: मॉडर्न युद्ध जो है वो बहुत ही तेजी से बदल रहा है। आज के दौर का कॉन्फ्लिक्ट पहले की तरह नहीं है, हाइब्रिड है, जिसमें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस दस्तों की सख्त जरूरत है। और इसी के चलते जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी विजन था, तो इंडियन आर्मी ने ये डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का संकल्प लिया है। भैरव बटालियन भी इसी फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग का एक पार्ट है, जिसके अंदर की एक नई सोच, नई तकनीक और नए ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से इसको रेस किया जा रहा है।
1: भैरव बटालियन पैरा स्पेशल फोर्सेस और आम इन्फेंट्री बटालियन के बीच की दूरी को भी कम करेगी। इन्हें सामरिक से लेकर स्पेशल ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। भैरव बटालियन में स्नाइपर्स को भी शामिल किया गया है, ताकि सैकड़ों मीटर दूर छिपे दुश्मन को पलक झपकते ही मौत की नींद सुलाया जा सके।
2: पिछले 5 महीनों से हम लोग लगातार नए वेपन्स पे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे ट्रेन कर रहे हैं। इनफैक्ट आई फील वेरी प्राउड, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे को गर्व है इस बटालियन पे कि जिस तरीके से इन ट्रुप्स ने ट्रेनिंग के दौरान ये क्षमता हासिल की है और नए टेक्नोलॉजी को अपनाया है, वो सराहनीय है। इनफैक्ट सदन कमांड के एक्सरसाइज अखंड प्रहार के दौरान इस बटालियन का सक्सेसफुल ऑपरेशनल वैलिडेशन भी किया गया। एंड हम समझते हैं कि ट्रेनिंग जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, बट आज भी ये बटालियन किसी भी दिए गए टास्क के लिए पूरी तरह तैयार है और पूरी तरह टेक्नोलॉजी से सशक्त है।
1: दक्षिणी कमान के तहत काम कर रही डेजर्ट भैरव बटालियन रेगिस्तानी इलाकों की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यहाँ सहन शक्ति, खास स्किल्स और तकनीक का सटीक इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है। ये यूनिट स्वतंत्र रूप से काम करने और भविष्य की मल्टी डोमेन लड़ाइयों के लिए तैयार की गई है। भैरव बटालियन के जवानों को कठिन हालातों में लड़ने, तेजी से मूवमेंट और सीमित संसाधनों में मिशन को अंजाम देने की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है।
3: इस भैरव बटालियन का हिस्सा होना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इस बटालियन में आने के बाद नई टेक्नोलॉजी, नई इक्विपमेंट, स्किल वाइज ट्रेनिंग दी गई। स्किल वाइज ट्रेनिंग में मेडिकल, डेमोलेशन और कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी दी गई। यह ट्रेनिंग शुरू में मेरे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रही, लेकिन कठिन मेहनत और लगन के साथ मैंने इस ट्रेनिंग को बखूबी अंजाम दिया। इस ट्रेनिंग के बाद आज मैं नई टेक्नोलॉजी, नई इक्विपमेंट, ड्रोन्स इत्यादि को बखूबी हैंडल कर सकता हूँ। हमारी बटालियन में PT, रूट मार्च, एंडोरेंस ट्रेनिंग, डेजर्ट ट्रेनिंग पर काफ़ी जोर दिया जाता है। हमारी बटालियन की ताकत एक दूसरे का विश्वास और साथ है। आज इस भैरव बटालियन ने मुझे इतना सुदृढ़ बना दिया है कि भविष्य में आने वाली बड़ी से बड़ी और महत्वपूर्ण चुनौती को मैं बखूबी अंजाम दे सकता हूँ।
1: डेजर्ट भैरव बटालियन की एक और खास बात है सन्स ऑफ द सॉयल का सिद्धांत। ज्यादातर जवान राजस्थान से लिए गए हैं, जिससे उन्हें स्थानीय भूगोल, मौसम, भाषा और संस्कृति की गहरी समझ है।
4: हमारे जवान पिछले कई महीनों से डेजर्ट सेक्टर में काफी मेहनत कर रहे हैं और दिन रात ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम नए मिशन के लिए नए टेक्नोलॉजी और नए वेपन, नए इक्विपमेंट पर काफी स्पेशल ट्रेनिंग की है। हम पूरी ट्रेनिंग कर चुके हैं, हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं।
1: भैरव बटालियन को वैश्विक युद्ध से मिले सबक और भारत के अपने ऑपरेशनल अनुभवों के आधार पर तैयार किया गया है। मकसद है एक ऐसी तेज, आक्रामक और लचीली फोर्स बनाना जो जरूरत पड़ने पर स्पेशल फोर्स जैसे मिशन को भी अंजाम दे सके।
0: सेना का मकसद एक ऐसी बटालियन तैयार करना है जो हर वक्त तैयार रहे, अलग अलग फोर्सेस में भी काम कर सके और अलग अलग मोर्चों पर दुश्मन से लोहा ले सके। भैरव यही काम करेगी। अभी तक देखा जाए तो कुल 15 भैरव बटालियन बनाई जा चुकी हैं और लक्ष्य 25 तक का है।
1: भैरव लाइट कमांडो बटालियन सेना की नई खतरनाक यूनिट है जो स्पेशल फोर्स की अत्याधुनिक और घातक यूनिट्स की तरह ही काम करेगी।
5: भैरव लाइट कमांडो बटालियन के रूप में एजाइल और घातक स्पेशल फोर्सेस का गठन किया गया है जो सीमाओं पर शत्रु को चौंकाने के लिए हमेशा तैयार है।
1: एक भैरव बटालियन के अंदर 800 सैनिक हो सकते हैं। भैरव लाइट कमांडो बटालियन का मेन फोकस सीमा पर अचानक हमला और दुश्मन को बैकफुट पर ढकेलना है। भैरव लाइट कमांडो बटालियन हल्के हथियार से लैस है जो पहाड़ों और जंगलों में आसानी से चल सके। इन्हें MP5 सब मशीन गन और स्वदेशी ड्रोन बम से लैस किया गया है। सीक्रेट ऑपरेशन के लिए ये हर वक्त तैयार रहते हैं। इन्हें रात में या फिर कोहरे में दुश्मन पर अचानक हमला करने की ट्रेनिंग दी गई है। ये बटालियन दुश्मन की सप्लाई लाइन तोड़ सकती है, उनके ठिकानों को तबाह कर सकती है। ये यूनिट्स LAC या LOC पर भारत को बढ़त दिलाएंगी।
6: इंडियन आर्मी अब स्पेशल फोर्सेस से और कमांडो यूनिट्स से, खास तौर से पैरा कमांडो यूनिट्स से छांट छांट कर ऐसे सोल्जर्स को जमा कर रही है जो कि एक कोर ग्रुप में काम करेंगे। इनका नाम दिया गया है भैरव कमांडो फोर्स। ये एक छोटी सी लेकिन हाईली मोबाइल और बहुत ही इफेक्टिव कमांडो यूनिट होगी। इसके जो कमांडो होंगे वो पहाड़ में, रेगिस्तान में, हवा से, पानी से, जंगल से, कहीं से भी ऑपरेट कर पाएंगे। इनके पास अपनी इंटीग्रेटेड फायर होगी, यानी इनके पास अपनी मोटर होंगी, हैवी मशीन गन होंगी, स्पेशल स्टन ग्रेनेड्स होंगे ताकि युद्ध भूमि में इन्हें फायर सपोर्ट के लिए और किसी के ऊपर निर्भर ना होना पड़े।
1: हर एक इन्फेंट्री बटालियन के अंदर खुद की एक प्लाटून होती है, उससे भैरव लाइट कमांडो बटालियन कितनी अलग है ये भी जानना बहुत जरूरी है।
0: भारतीय थलसेना की इन्फेंट्री बटालियन की अगर संगठन की बात की जाए तो कुल मिलाकर 4 बटालियन होती हैं, अल्फा, ब्रावो, चार्ली और डेल्टा। इनके अलावा हेडक्वार्टर अलग है जहां इंटेलिजेंस सिग्नल, मेडिकल लॉजिस्टिक, मोटर, असॉल्ट और MMG के सेक्शंस होते हैं। फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो अलग है। जो 4 राइफल कंपनियां हैं उनमें से 3 राइफल कैरी करती हैं और 1 RCL गन कैरी करती है।
1: अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब ये सारी कंपनी कुछ इस तरह से कंपोज होती हैं तो घातक यूनिट की प्लेसमेंट क्या होती है। तो आपको बता दें कि घातक की कोई अलग से प्लेसमेंट नहीं होती, ये अल्फा, ब्रावो, चार्ली और डेल्टा कंपनी में से कुछ लोग होते हैं।
0: अभी तक भारतीय सेना की तरफ से रेड्स या तो फिर स्पेशल फोर्सेस करती थी या फिर घातक प्लाटून करती थी, लेकिन भैरव के आ जाने के बाद ये काम और ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि ये जिम्मेदारी अब भैरव की हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ स्पेशल फोर्सेस अपने काम पर फोकस कर पाएंगी और घातक जिसके लिए उसे तैयार किया गया है वो उस पर ज्यादा फोकस करेगा।

चीन और पाकिस्तान से बढ़ते सैन्य खतरे को देखते हुए भारत अपनी सैन्य तैयारियों को धार देने में जुटा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों मोर्चों पर खतरा चिंता का विषय है। ऐसे में अब भारतीय सेना अपनी आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने और सीमाओं पर क्विक रिस्पांस देने के लिए नई रुद्र ऑल आर्म ब्रिगेड का गठन कर रही है।

0: आज की भारतीय सेना न केवल वर्तमान चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर रही, बल्कि हम नित्य प्रतिदिन एक परिवर्तनशील, आधुनिक और भविष्य उन्मुख शक्ति के रूप में तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। इसके अंतर्गत रुद्रक के रूप में नई ऑल आर्म्स ब्रिगेड का गठन किया जा रहा है।
1: ऑल आर्म ब्रिगेड क्या है, ये कैसे काम करती है, क्या होगी इसकी ताकत और ये कैसे पुरानी ब्रिगेड से अलग होगी, इसे जानना बहुत जरूरी है।

अभी तक देखा गया था कि सेना की केवल सिंगल ब्रिगेड हुआ करती थी, मतलब इन्फेंट्री ब्रिगेड में केवल पैदल सैनिक और टैंक ब्रिगेड में केवल टैंक ही हुआ करते थे। रण क्षेत्र में इमरजेंसी जैसे हालात में अगर कहीं किसी को एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ गई तो उसमें फिर डिविजन से मंजूरी मिलती थी और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा समय लग जाता था। लेकिन रुद्र इन तमाम खामियों को दूर करेगा और युद्ध में यानी कि रणक्षेत्र में हमारी फौज तत्पर निर्णय ले सकेगी।

0: रुद्र ब्रिगेड को पावर देने के लिए ताकत की कई इकाइयों को साथ जोड़ा गया है। यानी रुद्र ब्रिगेड में एक ही कमांड में इन्फेंट्री होगी, यानी पैदल सैनिक जो जमीन पर मोर्चा संभालेंगे। मैकेनाइज इन्फेंट्री को भी इसमें जोड़ा गया है, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियों से लैस सैनिक होंगे। आर्म्ड यूनिट्स होंगी जिसमें टैंक और भारी हथियार होंगे। आर्टिलरी होगी जिसमें तोपखाने की ताकत को शामिल किया जाएगा जो दूर से हमला करते हैं। स्पेशल फोर्सेस होंगी जिसमें खास मिशन के लिए ट्रेनिंग पाए सैनिक होंगे। साथ ही ड्रोन होंगे जिसके जरिए जासूसी और हमले की ताकत होगी,
1: जिसमें इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर्ड यूनिट्स, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्सेस, अनमैन्ड एरियल सिस्टम जैसे फाइटिंग कंपोनेंट्स को एक साथ रखा जाएगा और विशेष रूप से तैयार किया जाएगा, जिसमें शामिल लॉजिस्टिक सपोर्ट और कॉम्बैट सपोर्ट हो।
0: माना जा रहा है कि रुद्र ब्रिगेड में 3,000 से ज्यादा लोग होंगे और इसका मतलब खतरे से निपटने के लिए लंबा इंतजार नहीं, बल्कि दुश्मन पर बिजली की रफ्तार से एक्शन।
2: भविष्य के युद्ध में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए अब भारत की सेना रुद्र ब्रिगेड बना रही है। यह ब्रिगेड जो होंगी, ये इंटीग्रेटेड ब्रिगेड होंगी, यानी इसमें 3 से 4 इन्फेंट्री बटालियन तो होंगी ही होंगी, साथ में इनका अपना इंटीग्रेटेड अपना टैंक फॉर्मेशन, बख्तरबंद गाड़ियां और अपना तोपखाना होगा। सबसे बड़ी बात है कि इन ब्रिगेड्स में अपनी ही सपोर्ट सर्विसेज जैसे कि सप्लाई लॉजिस्टिक्स चेन, कोर ऑफ एएससी, कोर ऑफ ऑर्डिनेंस और अपनी ही इंटीग्रेटेड वर्कशॉप कोर ऑफ ईएमई की होगी, ताकि युद्ध भूमि में अगर कमांडर को कोई भी सपोर्ट की जरूरत पड़े तो उसे दूसरी तरफ ना देखना पड़े, पीछे ना देखना पड़े। जितनी सपोर्ट सर्विसेज हैं, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सिग्नल्स, कम्युनिकेशंस, ये सब कमांडर के पास ऑन द स्पॉट उसको अपने नीचे ही उपलब्ध होगी।
0: दुनिया के तमाम देशों के पास अपनी खास कमांडो फोर्स होती है। अमेरिका से लेकर चीन और रूस के पास अपनी कमांडो फोर्स है। वहीं भारत के पास भी ऐसे परमवीरों की टोली है जिनका सामना करना किसी के बस की बात नहीं है।

0: कमांडो एक स्पेशली ट्रेन्ड सोल्जर्स होते हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी के, इंडियन एयरफोर्स के या इंडियन नेवी के हों। इनको हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए स्पेशली ट्रेन किया जाता है, गुरीला वारफेयर, जंगल वारफेयर और हाई अल्टीट्यूड, हर तरह की टेरेन के अंदर इनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि ये मेंटली और फिजिकली बहुत टफ हो जाते हैं। आपको याद होगा कि 2016 को उड़ी अटैक के बाद भारत ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी। वो सर्जिकल स्ट्राइक 4 घंटे के अंदर भारत के स्पेशल फोर्सेस के कमांडो वो पाकिस्तान के 3 किलोमीटर तक अंदर गए। वहां पर उन्होंने 7 टेररिस्ट कैंप जो है उनको उड़ाया और तकरीबन 38-40 जो टेररिस्ट हैं उनको भी नेस्तनाबूद किया।
1: भारत के पास एक से बढ़कर एक स्पेशल फोर्सेस हैं, जो रणभूमि में शौर्य का इतिहास लिखने के लिए तैयार रहती हैं।

0: दुश्मनों की मौत का दूसरा नाम है मार्कोस, जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों की रूह कांप उठती है। इंडियन नेवी के ये मरीन कमांडोज ऐसे योद्धा हैं जो पाताल में दुश्मनों की समाधि तैयार करने की ताकत रखते हैं। लहरों पर राज करने वाले मार्कोस के महाबली चुटकियों में दुश्मन की ताबूत में आखिरी कील ठोक सकते हैं। मार्कोस या मरीन कमांडोज फोर्स भारत के सबसे खतरनाक और घातक कमांडोज हैं। हिंद महासागर की निगरानी करने वाले मार्कोस कमांडोज खाली हाथ भी दुश्मन का काम तमाम कर सकते हैं। दरअसल इनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है। कठिन ट्रेनिंग के बाद मार्कोस कमांडो तैयार होते हैं। यहां तक कि एक रिकॉर्ड ये भी है कि 27 सेकंड में ये दुश्मन को मौत के घाट उतार सकते हैं। मार्कोस या मरीन कमांडो फोर्स की गिनती भारत के सबसे खतरनाक कमांडोज में की जाती है। इसे भारत का नेवी सील्स भी कहा जाता है। मार्कोस को भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो केवल नौसेना के लिए ही काम करते हैं, बल्कि जल थल नभ हर जगह पर मार्कोस अपनी ताकत से दुश्मन के दांत खट्टे कर सकते हैं। और यही वजह है कि हमारी सेना का सबसे अभिन्न अंग मार्कोस को माना जाता है। इंडियन नेवी की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स यूनिट की ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है कि हर किसी के लिए इसे क्वालिफाई कर पाना आसान नहीं होता। पहले मार्कोस कमांडो के लिए चुने गए लोगों का 4 सप्ताह टेस्ट चलता है। टेस्ट में अगर सफलता मिली तो 1.5 साल की हार्ड तोड़ ट्रेनिंग होती है, और ये ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है कि 1000 जवानों में से कोई एक ही ट्रेनिंग पूरी कर पाता है। मार्कोस कमांडो वर्षों की ट्रेनिंग में खुद को खपाते हैं ताकि देश पर कोई आंख उठाने की हिमाकत न करे। मार्कोस कमांडो समंदर की सतह से 55 मीटर नीचे 15 मिनट तक बिना ऑक्सीजन उपकरण के रह सकते हैं और लड़ भी सकते हैं। समंदर की सतह से 35 मीटर नीचे करीब 20 मिनट तक रहने की क्षमता विकसित की जाती है। जांघों तक भरे कीचड़ में भागना होता है, कंधों पर 25 किलोग्राम का बोझ होता है, फिर 2.5 किलोमीटर की बाधा दौड़ का कोर्स भी होता है। यही नहीं, कई कमांडो सो ऐसे होते हैं जो आधे घंटे तक पानी में मुश्किल हालात से जूझ सकते हैं, फिर चाहे वो बर्फ से लबालब वुलर झील हो या फिर अरब सागर।
1: मार्कोस यानी मरीन कमांडो फोर्स, ये भी इंडियन नेवी के कमांडोज हैं। इनको भी स्पेशल ट्रेनिंग दे के उनको तैयार किया जाता है, और ये समुन्दर के अंदर या कहीं भी ऐसी जगह पर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम करने की हालत में होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये समुन्दर के अंदर या पानी के अंदर ये काम कर सकते हैं अपना, ये हर जगह काम कर सकते हैं। इनको स्पेशल वेपन सिस्टम दिए जाते हैं, इनके लिए खास ट्रेनिंग के वेपन होते हैं जिसके ऊपर मेंटल और फिजिकल टफनेस के ऊपर इतना जोर दिया जाता है कि हर कमांडो एक इतनी बड़ी ताकत बन जाता है कि वो दुश्मन के किसी भी इरादे को नेस्तनाबूद कर सकता है।
0: मार्कोस कमांडो को सेना में मौजूद हर तरह के हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। कुकरी से लेकर सब मशीन गन तक चलाने में इन्हें महारत हासिल होती है। मार्कोस कमांडोस को 11 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदने की प्रैक्टिस कराई जाती है। 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदने के 8 सेकंड के भीतर पैराशूट खोलना होता है। ये ट्रेनिंग 40 डिग्री के तापमान पर दी जाती है। मार्कोस कमांडो का कॉम्बिनेशन बेजोड़ है। इनकी हर चाल और गोली पर दुश्मन का नाम होता है। पलक झपकते ही खेल खत्म।
1: इनकी ट्रेनिंग जो है कई जगह की जाती है, जैसे बेलगाम में जूनियर कमांडो ट्रेनिंग स्कूल है वहां पर किया जाता है, इसी तरह से राजस्थान में सोनमर्ग में जहां पर हाई अल्टीट्यूड का है वहां पर किया जाता है, और जंगल वारफेयर में अंदर हर तरह की ट्रेनिंग जो है इनको दी जाती है।
0: अमेरिका की नेवी सील से हिंद के इन सूरमाओं की तुलना की जाती है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये नेवी सील से भी ज्यादा घातक है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेवी के इन स्पेशल कमांडोज का निशाना अचूक है, वार अचूक है। दुश्मन का ऐसा कोई किला नहीं जिसे ये भेद न सके। आसमान से लेकर जमीन तक और जमीन से लेकर समंदर तक वॉरफेयर या फिर कॉम्बैट ऑपरेशन में इन्हें महारत हासिल है। फिलहाल मार्कोस फोर्स में 1200 कमांडोज हैं जो हर वक्त अलर्ट मोड पर रहते हैं। मरीन कमांडोज को खुले आसमान का सरताज कहा जाता है। वैसे कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 4 दशक से अगर हमारी समुद्री सीमाएं सुरक्षित हैं तो इसका पूरा क्रेडिट मरीन कमांडोज को ही जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, तीन तरफ से समुद्री सीमाओं से भारत घिरा हुआ है, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, फिर चाहे चीन हो या फिर पाकिस्तान, लेकिन इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे कमांडोज, मरीन कमांडोज, पूरी तरह से तैयार और तत्पर रहते हैं। देश पर जब जब बाहरी खतरा मंडराया, मार्कोस को याद किया गया। स्पेशल फोर्स ने हर मौके पर खुद को साबित किया। मार्कोस 1987 से अब तक कई बड़े ऑपरेशंस में अपनी भूमिका निभा चुकी है और उन्हें एक सफल अंजाम तक पहुंचाया भी है। साल 1987 के पवन ऑपरेशन को मार्कोस कमांडो ने ही सफलता दिलाई थी। इसके बाद साल 1988 में कैक्टस ऑपरेशन, 1991 में ताशा ऑपरेशन, साल 1992 में जबरदस्त ऑपरेशन, 1999 में करगिल वॉर, 2008 में ब्लैक टॉर्नेडो ऑपरेशन और 2015 में हुए राहत ऑपरेशन समेत स्पेशल कमांडो फोर्स ने कई बड़े ऑपरेशन में शानदार प्रदर्शन किया है। इनके बुलंद हौसलों के सामने दुश्मन ने हमेशा घुटने टेके हैं और जिन्होंने घुटने नहीं टेके उनके कदम इन्होंने हमेशा के लिए उखाड़ दिए।

0: नेवी की तरह ही भारतीय वायुसेना की स्पेशल घातक फोर्स है गरुड़, जिनके कंधों पर आतंकवाद के खात्मे से लेकर सरहद पर दुश्मन से सीधा मुकाबला करने का जिम्मा होता है। गरुड़ कमांडोज की ट्रेनिंग नेवी के मार्कोस और आर्मी के पैरा कमांडोज की तर्ज पर होती है। वायुसेना के गरुड़ कमांडोज वॉलेंटियर नहीं होते, बल्कि उन्हें सीधे स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग के लिए ही भर्ती किया जाता है। एक बार गरुड़ कमांडो फोर्स को ज्वाइन करने के बाद ये कमांडोज अपने पूरे करियर में इस यूनिट के साथ ही रहते हैं। गरुड़ कमांडो बनना आसान नहीं होता। लगभग 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद गरुड़ कमांडोज तैयार होते हैं। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें उफनती नदियों और आग से गुजरना पड़ता है। बिना किसी सहारे पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। भारी बोझ के साथ कई किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती है और घने जंगल में रात गुजारनी होती है। गरुड़ कमांडोज बिना कुछ खाए पिए हफ्तों तक संघर्ष कर सकते हैं। गरुड़ कमांडोज के सभी रंगरूटों के लिए बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 52 सप्ताह तक चलता है। इन्हें एयरबॉर्न ऑपरेशंस, एयरफील्ड सीजर्स और काउंटर टेररिज्म का जिम्मा उठाने के लिए ट्रेन किया जाता है। गरुड़ कमांडोज की ट्रेनिंग स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इंडियन आर्मी और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ होती है। गरुड़ कमांडोज की शुरुआत के 3 महीने बेहद मुश्किल होते हैं। शुरुआत के 3 महीने के बाद रंगरूटों में जो सर्वश्रेष्ठ होता है वही ट्रेनिंग के अगले चरण में प्रवेश करता है। साल 2001 में जम्मू कश्मीर में एयरबेस पर आतंकी हमले के बाद वायुसेना को एक विशेष फोर्स की जरूरत पड़ी। इसके बाद साल 2004 में एयरफोर्स ने अपने एयरबेस की सुरक्षा के लिए गरुड़ कमांडो फोर्स की स्थापना की। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के वक्त भी आतंकियों से पहला मुकाबला गरुड़ कमांडोज ने ही किया था। मौजूदा दौर में भी कश्मीर घाटी में गरुड़ कमांडोज आतंकियों से कई मोर्चों पर मुकाबला कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने अपनी स्पेशल फोर्स को अमेरिकी 6 और असॉल्ट राइफल्स जैसे हथियारों से भी लैस किया है। इनके पास गैलिल स्नाइपर राइफल्स, इजरायली टेवर राइफल और इनके कई वेरिएंट्स के साथ साथ नेगेव लाइट मशीन गन भी मौजूद है, जो कि 800 से 1000 मीटर की रेंज से दुश्मन सैनिक को मार गिरा सकती है। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रण क्षेत्र में मेरी यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
2: कौन सा तेल शनि ग्रह की समस्याओं को दूर कर देता है? किस तेल के प्रयोग से कर्जे उतर जाते हैं? और कौन से तेल का प्रयोग करने से डायबिटीज में सुधार होता है? क्या है ज्योतिष में तेल का महत्व और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच।
1: इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
8: बाबा भोले की नगरी काशी हर दिन अपने पुरातन गौरव को हासिल कर रही है, और इसी कड़ी में अब आनंद कानन कला गुरुकुल का नाम जुड़ गया है। भारतीय गुरु शिष्य परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण की शानदार पहल है। काशी के संत रविदास पार्क स्थित आनंद कानन में आनंद कानन कला गुरुकुल की स्थापना होगी। ये गुरुकुल केवल एक प्रशिक्षण संस्थान नहीं होगा, बल्कि सांस्कृतिक मूल्यों और कला साधना पर आधारित एक समग्र सांस्कृतिक केंद्र के रूप में से स्थापित किया जाएगा, जहां संगीत, नृत्य, वादन, नाट्य एवं चित्रकला जैसी विविध भारतीय कलाओं का प्रशिक्षण प्राचीन भारतीय परंपरा के तहत दिया जाएगा। देखिए, आनंद कानन कला गुरुकुल भविष्य में न सिर्फ काशी बल्कि संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक पहचान का प्रमुख केंद्र भी बनेगा, जो देश विदेश के विद्यार्थियों, कलाकारों एवं शोधार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। प्राचीन ऋषि आश्रमों के तर्ज पर विकसित होने वाले इस गुरुकुल का डिजाइन तैयार कर लिया गया है, तथा परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी बन चुकी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अगर हम बात करें तो इस पर करीब 1,96,87,668 रुपए खर्च किए जाएंगे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।
2: कौन सा तेल शनि ग्रह की समस्याओं को दूर कर देता है? किस तेल के प्रयोग से कर्जे उतर जाते हैं और कौन से तेल का प्रयोग करने से डायबिटीज में सुधार होता है? क्या है ज्योतिष में तेल का महत्व और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
9: A burst pipe, a dead water heater, the AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price. Void in Florida.
10: TuneIn Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।

0: करीब 30,000 भक्तों ने किए दर्शन, घाटी में सुनाई दे रही बम बम भोले की गूंज। अमरनाथ यात्रा के बीच आया एक और गौरवशाली पल, पहलगाम में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में फहराया गया तिरंगा, आस्था दृढ़ता और वीरता का बना प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को दी विकास की सौगात, जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल के अलावा पचपदरा रिफाइनरी का किया उन्होंने शुभारंभ, गुजरात के सारंड में सेमीकंडक्टर यूनिट का उद्घाटन। भारत मंडपम में देश के सबसे बड़े टॉय एक्सपो का हुआ शुभारंभ, 7 जुलाई तक चलेगा ये एक्सपो, बिजनेस के नए अवसरों को मिलेगा बड़ा मंच।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की
2: नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने यशराज फिल्म्स की पहली वुमन लीड स्पाई थ्रिलर में अपने एक्शन सीक्वेंस से तहलका मचा दिया है। जी हाँ, यूं तो इस अभिनेत्री की इमेज एक सॉफ्ट और सोबर लड़की की है, लेकिन यशराज फिल्म्स ने नारी प्रधान स्पाई थ्रिलर बनाने का फैसला किया तो दाव इसी सॉफ्ट और सोबर इमेज वाली अभिनेत्री पर लगाया। कमाल ये है कि अपनी इमेज के उलट इस अभिनेत्री ने स्पाई यूनिवर्स मूवी में भी दमदार अभिनय कर सबका दिल जीत लिया।

0: आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि यशराज फिल्म्स की वुमन लीड स्पाई यूनिवर्स की पहली फिल्म अल्फा की सीता यानी कि आलिया भट्ट है। जी हाँ, 3 जुलाई को रिलीज हुई अल्फा को बॉक्स ऑफिस पर उस तरह की ओपनिंग नहीं मिली जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आलिया भट्ट अपने एक्शन से दर्शकों का दिल जीत रही है। साफ है कि स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर से शुरू कर आलिया ने अल्फा तक का बेमिसाल सफर तय कर लिया है। ये वही आलिया है सोशल मीडिया पर कभी जिनके मीम्स की भरमार रहती थी। एक समय आलिया की ट्रोलिंग नेटिजंस का स्ट्रगल बन गया था। हालांकि सोशल मीडिया पर आलिया का जो परसेप्शन बना, आलिया की हकीकत उससे बिल्कुल जुदा है।
1: आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी है।
2: And she's such a fine actress. So ये मूवी में भी टॉप नॉच एक्शन, बहुत ही फुल पैक्ड एक्शन है।
3: एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वार, पठान, टाइगर 3 और वार 2 जैसी स्पाई यूनिवर्स की धमाकेदार फिल्में दे चुके यशराज फिल्म्स ने पहली बार जब वुमन लीड स्पाई थ्रिलर अल्फा बनाई तो दांव खेला उस आलिया भट्ट पर सोशल मीडिया पर जिसकी इमेज एयरहेड की रही है। बॉक्स ऑफिस पर अल्फा की ओपनिंग बेशक उम्मीद के मुताबिक नहीं रही, लेकिन यशराज फिल्म्स की पहली वुमन लीड स्पाई यूनिवर्स मूवी में आलिया ने अपने नेल बाइटिंग एक्शन सीक्वेंस और संजीदा अदाकारी के दम पर दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म के कथानक और निर्देशन पर सवाल उठाने वाले भी आलिया की एक्टिंग की दिल खोल कर तारीफ कर रहे हैं।
1: आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी है, सरवरी बाग की एक्टिंग अच्छी है। एक्टिंग में तो दे आर बोर्न एक्टर, तो उसमें तो कोई कमी निकाल नहीं सकता है, लेकिन स्टोरी वाइज जो होनी चाहिए मूवी वो नहीं है।
4: बेसिकली आलिया मैम की जब बॉलीवुड करियर स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, तो उसमें वो काफी एकदम ऐसे होते हैं ना स्वीट सी टीनेजर टाइप से रोल स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे उन्होंने लव स्टोरीज वगैरह किए, फिर हम सब सरप्राइज हो गए आलिया मैम को गंगूबाई में देख के, एकदम अलग सा रोल। एंड अभी इधर अल्फा में एक्शन वाला रोल, तो अच्छा लगा, वो अपने आप को प्रूव कर रही है कि वो सारे कैरेक्टर्स में फिट हो सकती है।
2: अभी मुझे मूवी से काफ़ी आशाएं थी, क्योंकि इस तरह की जो स्पाई थ्रिलर मूवीज होती हैं, एक्शन मूवीज होती हैं, उसमें आलिया भट्ट की राजी मूवी याद आ जाती है हमेशा। एंड शी इज सच ए फाइन एक्ट्रेस, और ये मूवी में भी टॉप नॉच एक्शन, बहुत

0: फुल पैक्ड एक्शन है
1: ये अल्फा, मुझे फिल्म अच्छी लगी है। फिल्म का जो एक्शन है वो काफी तगड़ा है, आलिया भट्ट ने एक्टिंग काफी टॉप नॉच की है, और साथ ही साथ जो शर्वरी है उन्होंने केमिस्ट्री काफी, मतलब दोनों की जो बॉन्डिंग है वो काफी तगड़ी है, तो फिल्म देख कर अच्छा लगा है।
2: साफ है कि पर्दे पर अपनी सॉफ्ट इमेज के लिए मशहूर रही आलिया। यशराज फिल्म की पहली नारी प्रधान स्पाई थ्रिलर में निर्माता निर्देशक से लेकर दर्शकों तक की उम्मीद पर 100% खरा उतरी हैं। स्पाई थ्रिलर मूवी अल्फा में अपने एक्शन सीक्वेंस से धमाल मचा रही ये वही आलिया हैं, सोशल मीडिया पर जिनकी इमेज कभी अनइन्फॉर्म्ड और इग्नोरेंट यूथ की बन गई थी।
3: Who is the president of India?
4: Pranab Mukherjee.
2: एक समय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आलिया भट्ट के मीम से भरे रहते थे। आलम ये था कि किसी ने तथ्यात्मक रूप से कोई गलत बयानी की तो सोशल मीडिया पर तुरंत उसकी तुलना आलिया भट्ट से कर दी जाती थी। बहरहाल ये आलिया के बारे में सोशल मीडिया यूजर्स या नेटिजन्स का अपना परसेप्शन था। आलिया की रियलिटी नेटिजन्स के परसेप्शन से कोसों दूर है। आपको बता दें कि आलिया को लेकर इस तरह का सोशल मीडिया परसेप्शन इसलिए बन गया था क्योंकि एक बार उन्होंने देश के राष्ट्रपति का नाम गलत बता दिया था। दरअसल बतौर लीड एक्ट्रेस 2012 में आई अपनी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रमोशन के लिए आलिया करण जौहर के शो कॉफी विद करण में अपने को स्टार्स वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ पहुंची थी। करण ने लाइटर मोड में आलिया से भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया और आलिया ने उत्साह में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का नाम बता दिया था, जबकि उस समय देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे।
3: Who is the president of India?
2: आलिया की जिंदगी की गहराई में उतरे बगैर, पूरी सच्चाई जाने बगैर नेटिजन्स ने ये मान लिया कि आलिया का आईक्यू लेवल बेहद लो है और सामान्य ज्ञान तो शून्य है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है कि आलिया भट्ट अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी ADHD नामक एक रेयर डिजीज से पीड़ित हैं, जिसका पेशेंट कभी कभी जोन आउट हो जाता है। जोन आउट का मतलब ये है कि पेशेंट फिजिकली कहीं और होता है लेकिन उसका दिमाग अचानक किसी दूसरे जोनर में चला जाता है।
5: मैं बचपन से जोन आउट करते आई हूँ, हमेशा क्लासरूम में भी जोन आउट होती थी, कॉन्वर्जेशन में जोन आउट होती हूँ। तब रिसेंटली मैंने एक पर्सनैलिटी जो भी क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और मुझे पता चला कि मैं ADHD के स्पेक्ट्रम में काफ़ी हाई हूँ। मुझे ADHD है, तो अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर।
2: आपको बता दें कि ADHD डिजीज का IQ लेवल से कोई रिलेशन नहीं है। काफी हाई IQ वाले लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है। होता यही है कि कभी कभी इसका पेशेंट जोन आउट हो जाता है और उस दौरान कोई ऐसा बयान दे सकता है या ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकता है जिससे उसके IQ लेवल पर सवाल उठने लगे। आपको बता दें कि आलिया का न सिर्फ IQ लेवल बल्कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी नेक्स्ट लेवल का है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि साल 2012 से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी आलिया कैमरा ऑन होने के बाद कभी जोन आउट नहीं होती। अलबत्ता कैमरे के सामने आते ही आलिया इतनी फोकस्ड हो जाती हैं कि उन्हें अपने किरदार और संवाद के सिवा कुछ भी ध्यान नहीं रहता।
5: I'm so present जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ, चाहे मैं वो किरदार में प्रेजेंट हूँ, मतलब द पार्ट दैट आई एम प्लेइंग, आई एम प्रेजेंट एज द कैरेक्टर, बट आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। और फिर अभी ऑफ कोर्स आफ्टर राहा, जब भी मैं उसके साथ रहती हूँ, आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। तो ये 2 आई थिंक मोमेंट्स हैं मेरी लाइफ में जहाँ पे मैं सबसे ज्यादा पीसफुल फील करती हूँ।
2: साफ है कि आलिया भट्ट अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को भली भांति पहचानती हैं। यही वजह है कि कॉफी विद करण में गलत जवाब देने के बाद जबरदस्त तरीके से ट्रोल होने पर भी आलिया पूरी तरह काम एंड कूल रहीं। काफी वक्त बाद आलिया से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने पूरे ह्यूमर के साथ जवाब देकर ट्रोलर्स को भी ट्रोल कर दिया।
5: मैं अब ऑनेस्टली बोर हो गई उस जोक से, मेरे को एक्चुअली नया जोक चाहिए। आई वांट टू मेक अ मिस्टेक अगेन, हाँ कोई, मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं क्या गलती करूँ कि फिर से लोग उसको एक दो साल और खींचेंगे।
2: आपको बता दें कि आलिया बॉर्न एक्ट्रेस हैं। संयोग से इनका जन्म एक ऐसे घराने में हुआ जहां माहौल पूरी तरह फिल्मी था। मार्च 1993 को हुए आलिया के जन्म से काफी पहले से पिता महेश भट्ट अर्थ, सारांश, नाम, आशिकी, सड़क और दिल है कि मानता नहीं जैसी कल्ट और आइकॉनिक फिल्मों का निर्देशन कर इंडस्ट्री में अलग पहचान स्थापित कर चुके थे। आलिया की मां सोनी राजदान भी 36 चौरंगी लेन, मंडी, सारांश और त्रिकाल जैसी 8 फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी से क्रिटिक्स की शाबाशी हासिल कर चुकी थीं। आलिया ने भी जब से होश संभाला एक्टिंग को छोड़कर किसी दूसरे काम का तसव्वुर इनके मन में एक बार भी नहीं हुआ।
5: हाँ, आई थिंक मैं हमेशा कहती कि मैं एक्शन पे ही पैदा हुई थी, अपनी माँ की कोख से। आई डोंट थिंक देयर वाज दैट वन सेकंड आल्सो कि मैं दुनिया में आई, मुझे उस सेकंड पे ही पता था कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है और मुझे एक्टर बनना है और मुझे एक्टिंग करनी है। आई थिंक उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था।
2: जिन लोगों ने आलिया को अनइन्फॉर्म्ड यूथ का एम्बेसडर बना दिया था उन्हें ये जानना चाहिए कि आलिया भट्ट जब सिर्फ 4 साल की थी तभी उन्होंने श्यामक डावर डांस एकेडमी की समर क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। बात सिर्फ इतनी नहीं है, डांस एकेडमी में 4 साल की आलिया इंडस्ट्री की प्रेस्टिजियस फैमिली का तगमा लेकर नहीं बल्कि लर्निंग हंगर के साथ जाती थी। यही वजह है कि बाकी बच्चों के मुकाबले वो ज्यादा अच्छे से चीजों को ग्रैस्प करती थी। खुद श्यामक डावर ने आलिया की तारीफ करते हुए एक बार कहा था कि आलिया सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेती है।
5: श्यामक डावर जी के जो समर कैंप, समर डांस क्लासेस थे यार, वो एक्चुअली मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का बहुत ही अहम हिस्सा था। एंड आई रिमेम्बर दोज मोमेंट्स वेरी क्लियरली, क्योंकि जेन्युइनली इम्पैक्ट मेरी लाइफ में काफी था। क्योंकि कॉन्फिडेंस, लोगों के सामने डांस करना, फ्री बनना, ऐसे फील करना कि आप सबसे छोटे हो पर फिर भी बड़े हो और डांस करना है।
2: 4 की उम्र में श्यामक डावर की डांस क्लास ज्वाइन करने वाली आलिया 7 साल की होते होते नृत्य कला में इतनी पारंगत हो गई कि स्कूल के एक डांस कंपटीशन में श्यामक डावर ने उन्हें हायर क्लास की छात्राओं के बीच भेज दिया। क्योंकि डावर को ये भरोसा हो गया था कि हायर क्लास की छात्राओं के बीच भी आलिया बेहतर परफॉर्म करेंगी। हालांकि तब मासूम आलिया के साथ एक मजेदार वाकया भी पेश आया था।
5: क्लास में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था मेरा, तो श्यामक सर ने मुझे एक सीनियर बैच में डाल दिया। तो मैं 7 साल की थी और मैं क्लास के अंदर आई और इंस्ट्रक्टर कंफ्यूज हो गए कि आप ये क्लास में हो, क्योंकि इट वॉज देवर लिटरली अडल्ट इन दैट क्लास। और मैंने बोला हाँ श्यामक सर, लाइक आई एम सपोज टू कम इन दिस क्लास। तो पहले उनका क्वेश्चन था हाउ ओल्ड आर यू, तो मैंने बोला 7, but then immediately मैंने बोला but it's my birthday tomorrow, I'm going to be 8 tomorrow.
2: दिलचस्प बात तो यह है कि अगले दिन आलिया का जन्मदिन नहीं था, लेकिन उन्होंने झूठ इसलिए बोल दिया क्योंकि उन्हें डर हो गया था कि कम उम्र को देखते हुए उन्हें कहीं नीचे की क्लास में न भेज दिया जाए। इस लेवल का आत्मविश्वास था आलिया के भीतर बचपन से ही। कमाल ये है कि यही आत्मविश्वास तब भी बना रहा जब आलिया ने रुपहले पर्दे पर चुनौतीपूर्ण किरदार निभाना शुरू किया। इंडस्ट्री के स्टार फैमिली से आने वाले नेपो किड्स आमतौर पर फिल्में साइन करने से पहले अपने घर के अनुभवी सदस्यों से सलाह मशविरा करते हैं, लेकिन आलिया का हिसाब अलग है। वो फिल्में साइन करने से पहले अपने पिता महेश भट्ट या माँ सोनी राजदान, यहाँ तक कि पति रणबीर कपूर से भी क्लियरेंस लेना जरूरी नहीं समझती, बल्कि इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स के आधार पर खुद ही फैसले लेती हैं।
5: मैं एक्चुअली अपना माइंड मेकअप करने के बाद डिस्कस करती हूँ मैं, बिकॉज आई एम नॉट समबडी हु नीड्स टू बी कन्विंस्ड फॉर अ फिल्म. एक तो बात ये है, और दूसरी बात ये है कि मेरा इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स ही सबसे प्योर रिस्पॉन्स होता है. तो अगर कोई, मैं इंस्टिंक्टिवली अगर एक्साइट हो जाऊंगी और किसी ने अगर बोल दिया कि मतलब ऐसे मत करो, आई एम जस्ट गिविंग इफ केस सिनेरियो, मेरे साथ हुआ नहीं है, पर अगर बोल दिया तो फिर मेरे दिमाग में डाउट पैदा हो जाएगा. तो मेरी जर्नी मेरी है और मेरी डिसीजन भी मेरी होनी चाहिए, इसलिए दैट्स द रीजन, नॉट फॉर एनी अदर रीजन.
2: आप समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया की नजर में अनइन्फॉर्म्ड सेलेब्स रही आलिया की प्रतिभा उन्हें लेकर बने परसेप्शन से बिल्कुल अलग है. अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से किक हुए एकाध अपवादों को छोड़ दें तो आलिया के लेवल का आईक्यू और टैलेंट हिंदी सिनेमा के 100 साल के इतिहास में इक्का दुक्का अभिनेत्रियों में ही नजर आएगा.
0: अल्फा मूवी में अपने एक्शन से धमाल मचा रही आलिया यू तो बॉलीवुड की एक दमदार फैमिली से ताल्लुक रखती हैं. लेकिन रुपहले पर्दे के अपने यादगार सफर में आलिया ने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साए का सहारा कभी नहीं लिया. आलिया के पिता महेश भट्ट बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा निर्देशकों में शुमार है, जबकि माँ सोनी राजदान आज फिल्मों की आइकन रही है. लेकिन आलिया ने अपने फिल्मी सफर में आगे बढ़ने के लिए कभी अपने माता पिता से मदद की उम्मीद नहीं की. शुरू से ही उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट पर भरोसा किया, और इसका असर ये है कि आलिया आज बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेट अभिनेत्रियों की फेहरिस्त में काफी ऊंचा मकाम हासिल कर चुकी है.
2: इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नेपो किड्स के सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक मिलने की रवायत नई नहीं है. हालांकि ज्यादातर नेपो किड्स अपने पारिवारिक वट वृक्ष के घने साए में अंकुरित होकर फलते फूलते हैं और उसी साए में फना भी हो जाते हैं. पर कुछ नेपो किड्स ऐसे भी हैं जो मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर अपनी पारिवारिक लिगेसी से निकलकर अलग साम्राज्य स्थापित करते हैं. आलिया भट्ट दूसरी कैटेगरी की नेपो किड हैं. बतौर लीड हीरोइन अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने अगर प्रतिभा नहीं तो जुनून, लगन और मेहनत की तो मुनादी कर ही दी थी. तनुजा चंद्रा के निर्देशन में बनी और 1999 में रिलीज हुई आइकॉनिक मूवी संघर्ष में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू करने वाली आलिया भट्ट को हीरोइन के तौर पर डेब्यू करने का मौका बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के जरिए दिया था. आलिया की उम्र तब महज 18 साल थी, लेकिन उनका फिगर फिल्म के किरदार के लिहाज से फिट नहीं था. ऑडिशन के दौरान करण जौहर ने आलिया के लिए कड़ी शर्त रख दी कि उन्हें अपना वेट लॉस करना होगा. आलिया टीनेज में ही अपने करियर को लेकर कितनी संजीदा थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 3 महीने के भीतर उन्होंने अपना वेट 68 किलो से कम करके 51-52 किलो कर लिया. क्योंकि बचपन से बस एक ही तो सपना था आलिया का, सितारा बनकर सिल्वर स्क्रीन पर चमकने का. इसीलिए शूटिंग के दौरान सेट पर पहली बार जब कैमरा ऑन हुआ तो उनका उत्साह चरम पर पहुंच गया.
5: वो कहते हैं ना, एक्सट्रीम जॉय फीलिंग आता है कि कैमरा के सामने हो, शूटिंग हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, बट यू फील के अंदर से कुछ. इवन दो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाज अ ब्लर, जो पहला गाना जो मेरी लाइफ की पहली दिन थी शूटिंग की, वो राधा के लिए थी. तो एक शॉट था, मेरे को नीचे आना था, टर्न करके ऐसा कुछ करना था, फिर दुपट्टा उठा के कैमरा में देखना था और ब्लोअर फैन आ रहा था, उसी में ही मेरे को ऐसे बहुत मजा आ गया.
2: पहली बार कैमरे के सामने आने के बाद आलिया बेशक उत्साहित थी, लेकिन फिल्म साइन करने के बाद वो फेल्योर के फियर साइकोसिस का शिकार हो गई थी. आलिया को ये डर सताने लगा कि अगर वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाई या फिल्म पिट गई तो आगे करेंगी क्या. पिता महेश भट्ट को जब बेटी के फियर साइकोसिस के बारे में पता चला तो उन्होंने अलहदा तरीके से आलिया को उससे बाहर निकालने की कोशिश की. महेश भट्ट ने बेटी को विशेष फिल्म्स के अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि मन में जो भी डर है, आशंका है, उसका इजहार सबके सामने करो।
5: For some reason, my father is outstanding in a crisis situation. जब भी आप क्राइसिस में आप उनको फोन करो, he has the most calm tone and he'll deal with the situation in the best way. In this particular situation, उन्होंने डिसाइड किया ऑफिस आ जाओ, सबके सामने बोलो तुम कैसे फील कर रही हो। जो एक्चुअली एक बहुत अजीब सीक्वेंस सिचुएशन है, क्योंकि आप पहले तो इतना वल्नरेबल फील करो, सबके सामने उठ के बोलना है कि मैं ऐसे फील कर रही हूं।
2: महेश भट्ट ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने का कोई मनोवैज्ञानिक अनुभव था? ये तो नहीं पता, लेकिन उनका ये अनोखा फॉर्मूला आलिया के लिए क्लिक जरूर कर गया। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डर का डंका बज जाने के बाद आलिया के अंदर की घुटन कम हो गई। वैसे 19 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर बॉक्स ऑफिस पर तो कामयाब रही, लेकिन आलिया की इमेज बॉर्बी डॉल से कुछ ज्यादा नहीं बन पाई। उधर क्रिटिक्स ने भी आलिया के डेब्यू को महेश भट्ट के प्रभाव से जोड़ दिया। लेकिन फिल्म हिट होने के बाद बड़े पर्दे पर बड़ा मकाम हासिल करने के आलिया के संकल्प के साथ उनका आत्मविश्वास भी जुड़ गया। अगली ही फिल्म हाईवे में अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर आलिया ने क्रिटिक्स को पहले से तय परसेप्शन को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। 21 फरवरी 2014 को रिलीज हुई हाईवे में वीरा त्रिपाठी के डी ग्लैमरस किरदार में बेहतरीन अभिनय का तड़का मारकर आलिया ने उन्हें बॉर्बी डॉल कहने वालों का मुंह बंद कर दिया। दरअसल अभिनय को लेकर आलिया का फलसफा शुरू से ही कन्वेंशनल नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिव रहा है।
5: कैमरे के सामने का जो एक फीलिंग होता है ना, उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता है। एट द एंड ऑफ द डे मैं जितना भी चाहे डायलॉग सीख लूँ या कुछ रट्टा मार लूँ, फिजिकल ट्रेनिंग कर लूँ, अपने आप को कमरे में बंद करके मेथड एक्टिंग भी कर लूँ, अगर कैमरे के सामने मुझे फीलिंग नहीं आ रही है तो कैमरा पकड़ लेगा और मेरी परफॉर्मेंस जो है उसमें दिख जाएगी। तो तैयारी जारी रहती है फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं कैमरे के सामने सिर्फ फील करने की कोशिश करती हूँ।
2: हाईवे के बाद आलिया ने इंडस्ट्री में मुनादी कर दी कि मीना कुमारी और मधुबाला की खींची हुई अदाकारी की लीक इस युग में भी मिटी नहीं है। 2016 में आई उड़ता पंजाब के बाद तो क्रिटिक्स ने भी स्वीकार कर लिया कि आलिया की अदाकारी किसी एक जोनर तक महदूद नहीं है। उड़ता पंजाब के एक मैले कुचैले भोजपुरी लड़की के किरदार में आलिया ऐसे गुम हो गई कि पहचानना मुश्किल हो गया कि ये वही राधा हैं जिसने डिस्को दीवाने पर ठुमके लगाए थे। उड़ता पंजाब के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। ২০১৮ में आई राजी में एक कश्मीरी जासूस के किरदार में आलिया ने अपने अभिनय से इतनी जान फूंक दी कि 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली कुछ एक महिला प्रधान फिल्मों में शुमार हो गई। वहीं 2019 में आई गली बॉय में सफीना के किरदार को आलिया ने अपनी एक्टिंग से जीवंत कर दिया। गली बॉय में नारी को प्रकृति से सहज प्राप्त कोमलता और जरूरत पड़ने पर प्रकट होने वाली आक्रामकता के मिश्रण को आलिया ने इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद तो आलिया बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइनों की फेहरिस्त में शुमार हो गईं। 25 फरवरी 2022 को रिलीज हुई गंगूबाई काठियावाड़ी आलिया के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में आलिया ने एक वेश्यालय की मालकिन और माफिया क्वीन के चुनौतीपूर्ण किरदार को सहजता के आईने में उतारकर सबको हतप्रभ कर दिया। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया को सबसे प्रेस्टीजियस माने जाने वाले नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया।
4: गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं अभिनेत्री आलिया भट्ट।
2: 2022 आलिया के लिए बहुत इवेंटफुल साल साबित हुआ। साल 2022 में कोरोना की मार से पस्त हो चुकी फिल्म इंडस्ट्री दोबारा उठ खड़े होने की जद्दोजहद कर रही थी और इसी साल आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी के अलावा RRR और ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जैसी फिल्में रिलीज हुईं। 2022 में ही उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर किस्मत आजमाई और डार्लिंग्स प्रोड्यूस की, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और सफल भी रही। 2023 में आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और 2024 में आई जिगरा ने भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया। साल 2027 में आलिया संजय लीला भंसाली के एक और शाहकार लव एंड वार में भी नजर आने वाली हैं। साफ है कि आलिया बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट अभिनेत्रियों की सूची में शुमार हो चुकी हैं। आज आलिया अपनी एक फिल्म के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस लेती हैं।
0: तो बंदे में है दम में आज आपने आलिया भट्ट के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: कौन सा तेल शनि ग्रह की समस्याओं को दूर कर देता है? किस तेल के प्रयोग से कर्जे उतर जाते हैं? और कौन से तेल का प्रयोग करने से डायबिटीज में सुधार होता है? क्या है ज्योतिष में तेल का महत्व और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: A burst pipe, a dead water heater, the AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price. Void in Florida.
2: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go, so you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
3: देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे,
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक मॉनसून दिखा रहा अपने रंग। सूरत में भारी बारिश के चलते उफान पर तापी नदी, ठाणे में सड़क से लेकर गली तक पानी से लबालब। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले लबालब। पालमपुर की न्यूगल नदी में फंसे 7 पर्यटकों का रेस्क्यू, पुलिस प्रशासन के सैलानियों को सतर्क रहने की अपील। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह। पवित्र यात्रा के दूसरे दिन अब तक करीब 30,000 भक्तों ने किए दर्शन। घाटी में सुनाई दे रही बम बम भोले की गूंज। अमरनाथ यात्रा के बीच आया एक और गौरवशाली पल। पहलगाम में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में फहराया गया तिरंगा, आस्था, दृढ़ता और वीरता का बना प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को दी विकास की सौगात। जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल के अलावा पचपदरा रिफाइनरी का शुभारंभ। गुजरात के सारंग में सेमीकंडक्टर यूनिट का उद्घाटन।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों
10: पवित्र अमरनाथ यात्रा दूसरे दिन भी जारी। 2 दिन में अब तक 30,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ यात्रा को लेकर बाबा के भक्तों का जोश हाई। बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहा अमरनाथ यात्रा मार्ग। यात्रा मार्ग पर अमरनाथ तीर्थ यात्रियों की सुविधा का रखा जा रहा है पूरा ख्याल। अभेद सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा जारी। कड़ी सुरक्षा के बीच करीब 6400 अमरनाथ श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था हुआ रवाना। लगाए हर हर महादेव के जयकारे। खराब मौसम के बावजूद भारी पड़ा शिव भक्तों का उत्साह। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था सफल दर्शन के बाद बनिहाल के रास्ते लौटा। बोले श्रद्धालु, बाबा बर्फानी के दर्शन से मन हुआ धन्य। जय बोले के जयकारों के साथ लौटा पहला जत्था। श्रद्धालुओं के चेहरे पर दिखी खुशी और आस्था। श्रद्धालुओं में दिखा खासा उत्साह। अमरनाथ यात्रा के बीच गौरव का पल। पहलगाम में लहराया तिरंगा। चंदनवाड़ी बेस कैंप पे भारतीय सेना ने फहराया विशाल तिरंगा। श्रद्धालुओं की मौजूदगी में शान से लहराया गया राष्ट्र ध्वज। आस्था की राह पर देशभक्ति का भव्य संदेश। चंदनवाड़ी में भारत माता की जय की गूंज। तिरंगा बना आस्था, दृढ़ता और वीरता का प्रतीक। सेना और श्रद्धालुओं ने बढ़ाया राष्ट्रभक्ति का मान। दिखा शानदार नजारा। उदयपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। देखते ही बन रहा है मंदिर परिसर में भक्तों का उत्साह। चांदी के भव्य रथ को दिया जा रहा है अंतिम रूप। कारीगर फाइनल टच देकर निखार रहे हैं रथ की भव्यता। मंदिर में जगन्नाथ महाप्रभु के भजनों की मधुर गूंज दे रही है सुनाई। श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर कर रहे हैं कीर्तन। रथ यात्रा को लेकर मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। हर ओर उत्सव और श्रद्धा का माहौल दिखाई दे रहा है। उदयपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। शहर भगवान जगन्नाथ के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भव्य भस्म आरती हुई संपन्न। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन किए। भस्म आरती के दौरान पूरा गर्भगृह हर हर महादेव की जयघोष से गूंज उठा। भक्तों ने आध्यात्मिक माहौल का अनुभव किया। सावन से पहले महाकाल की भस्म आरती में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। मंदिर प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की है। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने महाकाल के अलौकिक भस्म आरती में भाग लिया। इसे सनातन परंपरा का अद्भुत स्वरूप बताया। भोर में होने वाली महाकाल की भस्म आरती का दिव्य दृश्य देख भाव विभोर हुए श्रद्धालु। बाबा से मांगा कुशलता का आशीर्वाद। गुजरात को प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों की सौगात। सालंड में GC सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्लांट का किया उद्घाटन। CG सेमी के प्लांट में हर साल 20 करोड़ से ज्यादा चिप्स का होगा निर्माण। भविष्य में 500 करोड़ से ज्यादा चिप्स बनाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारंड में CG सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का लिया जायजा। संयंत्र को 7600 करोड़ रुपए के निवेश से किया गया है स्थापित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर प्लांट के कर्मचारियों से की मुलाकात। मेक इन इंडिया के तहत काम करने वाले युवाओं का बढ़ाया हौसला। भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम। बोले प्रधानमंत्री, 5 साल पहले लिया संकल्प आज हुआ पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का किया उद्घाटन। 480 करोड़ रुपए की लागत से बना है अत्याधुनिक टर्मिनल। इस सौगात के साथ ही राजस्थान को मिला पहला 6 एरो ब्रिज की सुविधा वाला एयरपोर्ट। इस हाईटेक टर्मिनल से जोधपुर के हवाई कनेक्टिविटी को मिलेगी नई उड़ान। ये आधुनिक टर्मिनल सालाना 20 लाख यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देने में है सक्षम। इस सौगात से मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसरों को मिलेगा विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा विकास परियोजनाओं की दी सौगात। इन परियोजनाओं से राजस्थान को मिलेगी विकास की रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के पचपदरा में पेट्रोल रिफाइनरी का भी उन्होंने किया उद्घाटन। हर दिन 1.8 लाख बैरल कच्चे तेल को रिफाइन किया जाएगा। दिल्ली में 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो 2026 का भव्य शुभारंभ, रंग बिरंगे और इनोवेटिव खिलौनों ने पहले दिन ही खींचा सभी का ध्यान। देश विदेश के खिलौना निर्माताओं का दिल्ली में संगम, बच्चों की सीख और मनोरंजन से जुड़े आधुनिक खिलौने बने आकर्षण का केंद्र। परंपरा और टेक्नोलॉजी का अनोखा मेल, टॉय बिज एक्सपो 2026 में स्मार्ट टॉयज का शानदार झलक देखने को मिला। मेक इन इंडिया खिलौने को मिला बड़ा मंच, स्वदेशी खिलौनों की गुणवत्ता और रचनात्मकता ने खरीदारों को किया प्रभावित। टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो 2026 में कारोबार के नए अवसर, खूबसूरत डिजाइन और सुरक्षित खिलौनों ने उद्योग जगत को दिखाई नई दिशा। वैभव सूर्यवंशी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर रचा इतिहास, 15 साल 99 दिन की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 में किया डेब्यू। बेबी बॉस वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड, भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले क्रिकेटर बने। वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल डेब्यू पर BCCI का पास पोस्ट, BCCI ने ट्वीट कर इसे ऐतिहासिक दिन बताया। लखनऊ में BJP अध्यक्ष नितिन नबीन ने लिया शर्मा की चाय, समोसा और बन मक्खन का स्वाद, हनुमान सेतु मंदिर में की पूजा अर्चना। नितिन नबीन और CM योगी आदित्यनाथ ने BJP कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, प्रदेश और जिला अध्यक्षों को संगठन मजबूत करने के दिए निर्देश। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से सड़कें बनी सैलाब, वसई में पानी के बीच मस्ती करते दिखे लोग। वसई में वाटर लॉगिंग के बीच राहत बचाव का कार्य लगातार जारी, सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी। वसई विरार में भारी बारिश से आम जनजीवन हुआ प्रभावित, निचले इलाके पानी में डूबे। मुंबई में मरीन ड्राइव पर देखा गया हाई टाइड, तटीय इलाकों में लोगों से सतर्क रहने की सलाह। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर समंदर में ऊंची उठी लहरें, हाई टाइड देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। मुंबई के घाट कोपर में भारी बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग, मुंबई पुलिस वाहन चालकों की मदद करती नजर आई। लगातार बारिश की वजह से वसई सन सिटी रोड पानी में डूबा, वाहन चालकों और राहगीरों को हो रही है परेशानी। मुंबई के टॉप हिल इलाके में बारिश और तेज हवा की वजह से घर पर गिरा पेड़, मकान हुआ क्षतिग्रस्त। मुंबई के अंधेरे इलाके में घरों और दुकानों में घुसा बारिश का पानी, अंधेरी सबवे को किया गया बंद। भारी बारिश के बीच अंधेरी में कोटेश्वर नगर बिल्डिंग में जल भराव, परिसर में कई फीट भरा पानी। पालघर में सड़कों के दोनों ओर 3 से 4 फीट तक भरा पानी, लोगों को अपने घरों तक पहुंचने में हो रही कठिनाई। पालघर में भारी बारिश का ज्यादा असर, मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर 10 ट्रक पानी में फंसे। मूसलाधार बारिश के कारण नाला सपोरा में रेलवे ट्रैक पानी में डूबा, वाटर लॉगिंग की तस्वीर आई सामने। नाला सुपारा में सैलाब में फंसे 25 लोगों का किया गया सफल रेस्क्यू, जल भराव की वजह से पानी में फंस गए थे लोग। भारी बारिश के कारण मुंबई के भांडुप में फुटपाथ का छोटा सा हिस्सा धंसा, पानी में समाने का लाइव वीडियो आया सामने। नवी मुंबई में लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में भरा पानी, वाहन चालकों पैदल यात्रियों को हो रही दिक्कतें। नवी मुंबई में भारी बारिश के कारण जल भराव, तुर्बे रेलवे स्टेशन के पास थाड़े बेलापुर रोड पर भरा पानी। भारी बारिश की वजह से थाने के भिवंडी भाजी मार्केट में वाटर लॉगिंग, बाजार पे पड़ा इसका असर, कमर तक पानी में डूब गए। भिवंडी में लगातार बारिश की वजह से सड़कें बनी सैलाब, जल भराव के कारण आम जनजीवन हुआ प्रभावित। सतारा में महाबलेश्वर के पास नावली गांव में धसी जमीन, भारी बारिश के कारण घरों खेतों और सड़कों में आई दरारें। मध्य प्रदेश के बालाघाट में भारी बारिश के कारण 16 ग्रामीण फंसे, प्रशासन और राहत दल ने गांव वालों का किया सफल रेस्क्यू। एमपी के मंडला में लगातार बारिश के चलते बढ़ गया है नर्मदा नदी का जलस्तर, प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के खोंगा के पास भारी बारिश से हुआ भूस्खलन, रामनगर उधमपुर रोड बंद, यातायात पूरी तरीके से प्रभावित। गुजरात के बनासकांठा में मॉनसून की पहली बारिश में ही जलमग्न हुआ धानेरा, कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित। गुजरात के जूनागढ़ में तेज बारिश से सड़कों और निचले इलाकों में भरा पानी, कई इलाके प्रभावित। मुंबई में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव, अंधेरी वेस्ट के वीरा देसाई रोड से वाटर लॉगिंग की तस्वीरें आई सामने। मध्य प्रदेश के सीहोर में तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर, पुल के ऊपर बह रहा है पानी, कई गांव का टूटा संपर्क। इंदौर में मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों हुई जलमग्न, आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहने की संभावना। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भी मॉनसून ने दे दी है दस्तक, अंडरपास में पानी भरने की कार में पानी में फंसी कार। लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी उफान पर, डूबा जोबरंग पुल, 300 से ज्यादा आबादी वाले तीन गांवों की आवाजाही प्रभावित। बेल्जियम के ब्रसेल्स में ओमिंगांग महोत्सव के दौरान घुड़सवारों ने ऐतिहासिक जॉस्टिंग का किया रोमांचक प्रदर्शन, 16वीं सदी की जंग का जीवंत प्रदर्शन। पारंपरिक कवच पहने कलाकारों ने भालू के साथ मध्यकालीन टूर्नामेंट का शानदार पुनर्निर्माण किया, यूनेस्को विरासत महोत्सव में 1200 कलाकार। 1 से 4 जुलाई तक चले इस ओमिंगांग फेस्टिवल में ऐतिहासिक परेड बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, घुड़सवारी और परंपरा का अनोखा संगम। ब्रसेल्स की सड़कों पर निकली भव्य परेड में बच्चों से लेकर कई पीढ़ियों के परिवार शामिल हुए, रोमांच इतिहास और संस्कृति का उत्सव। साल 2019 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल ओमिंगांग महोत्सव यहां के लोगों में अपनी विरासत को जानने का जबरदस्त जुनून। बीजिंग जू में स्टार पांडा मेगलान ने मनाया 11वां जन्मदिन, जू प्रशासन ने खास केक काटकर जन्मदिन किया सेलिब्रेट। 11वें बर्थडे पर मेगलान के लिए हुई खास पार्टी, बीजिंग जू में बड़ी संख्या में लोग इस जश्न के गवाह बने। शी जिनपिंग के तीसरे राजकुमार के नाम से मशहूर है मेगलान, अपनी अनोखी हरकतों और हुनर की वजह से वो है फैंस के पसंदीदा पांडा। पेड़ों पर चढ़ना, गड्ढे खोदना और पक्षियों को खाना खिलाना, यही है मेगलान की खासियत। मेगलान अपनी नटखट अदाओं की वजह से पूरे चीन में है काफी लोकप्रिय। मेगलान को देखने के लिए चीन के दूर दराज के हिस्सों से आते हैं पर्यटक। अमेरिका ने आजादी के 250 साल पूरे होने का जश्न धूमधाम से मनाया, देश भर में शानदार आतिशबाजी और रंगारंग कार्यक्रमों ने लोगों का दिल जीता। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में ऐतिहासिक समारोह का हुआ आयोजन, लाखों लोगों ने आतिशबाजी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा अमेरिका का आसमान, लोगों ने आजादी का उत्सव मनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देशवासियों को 250वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, उन्होंने एकता, लोकतंत्र और देश के भविष्य को मजबूत बनाने का संदेश दिया। 250 साल पूरे होने के मौके पर पूरे अमेरिका में देशभक्ति का माहौल दिखा, परेड, संगीत और भव्य आतिशबाजी के साथ स्वतंत्रता दिवस का ऐतिहासिक जश्न मनाया गया। अमेरिका की आजादी के 250 साल हुए पूरे, इस मौके पर पेरिस का आईफिल टावर यूएस 250 की रोशनी से जगमगा उठा। फ्रांस ने दिया खास सम्मान, अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आईफिल टावर को विशेष रोशनी से खास तौर पर सजाया गया। आईफिल टावर पर दिखा यूएस 250 अमेरिका के ऐतिहासिक वर्षगांठ पर पेरिस से दोस्ती का दिया गया खास संदेश। स्टैचू ऑफ लिबर्टी से आईफिल टावर तक फ्रांस अमेरिका की ऐतिहासिक दोस्ती एक बार फिर रोशनी के साथ दुनिया के सामने आई। 250 साल की दोस्ती का जश्न, फ्रांस ने रोशनी के जरिए अमेरिका के साथ अपने पुराने रिश्ते को सम्मान दिया। अमेरिका के कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर, तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। लोग राहत के लिए वाटर पार्क और ठंडी जगहों का ले रहे हैं सहारा। नॉर्थ कैरोलिना में भीषण गर्मी के बीच परिवार वाटर पार्क पहुंचे। गर्मी से बचने के लिए लोग लगातार पानी पीते हुए नजर आए। फिलाडेल्फिया में भीषण गर्मी के बावजूद ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए आयोजित, हालांकि कई स्थानीय परेड और ब्लॉक पार्टियां रद्द करनी पड़ी। अमेरिका में हीटवेव का असर जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। तेज गर्मी के चलते कई सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। भीषण गर्मी से जूझ रहे अमेरिकी शहरों में लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई। प्रशासन लोगों को धूप से बचने और हाइड्रेटेड रहने की सलाह दे रहा है। चीन के हेनान तट से टकराया टाइफून मेसाक, तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित। टाइफून के कारण ट्रेन और फ्लाइट सेवाएं ठप, हेनान आने जाने वाली रेल उड़ान और फेरी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। सावधानी के तहत स्कूल और चाइल्ड केयर सेंटर किए गए हैं बंद। सानिया और लेडोंग इलाके में प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। समुद्र में ऊंची लहरों से एक्वा कल्चर बेस को हुआ नुकसान, तेज लहरों ने गहरे समुद्र में बने मछली पालन के पिंजरों को बुरी तरीके से प्रभावित किया। अगले कुछ दिनों तक बारिश और गरज चमक का अलर्ट, मौसम विभाग ने लिंगशुई क्षेत्र में खराब मौसम जारी रहने की चेतावनी दी।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
12: Third period comes to an end, game two, headed to overtime.
11: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
12: They score!
11: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: तो चलिए अब बात राघव जुआल की फिल्म भाई तेरा स्टार है की कर लेते हैं। बैग्स ऑफ बॉलीवुड और किल फिल्म से नाम कमाने वाले राघव जुआल की फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है। ये फिल्म 30 जुलाई को सुनहरे पर्दे पर दस्तक देगी। फिल्म एक्शन कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर होगी।
13: Rocking rebel icon super ultra future sexy star Ajay Singh.
14: What a weirdo yaar.
15: Rocking rebel icon super ultra future. Teaser की शुरुआत इन्हीं दमदार शब्दों से होती है। फिल्म का नाम है भाई तेरा स्टार है और लीड रोल में है राघव जुयाल। वही राघव जुयाल जिन्हें बैड्स ऑफ बॉलीवुड और किल फिल्म के लिए जाना जाता है।
16: हाँ मैंने झूठ बोला, करेक्ट।
15: टीजर में कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन और राघव की शानदार कॉमिक टाइमिंग का जबरदस्त मिक्स देखने को मिलता है।
16: हाँ मैंने झूठ बोला,
17: लाउड हो रहा है।
16: हाँ मैंने झूठ बोला।
15: इससे पहले फिल्म का पहला मोशन पोस्टर भी रिलीज हुआ था जिसमें अजय के किरदार को टैलेंट लोडिंग टैगलाइन के साथ दिखाया गया था। अब टीजर उसी कहानी को आगे बढ़ाता नजर आता है।
18: बॉलीवुड तैयार हो जाओ, एक नया स्टार आ रहा है।

0: इस टीजर में एक ऐसे लड़के की कहानी दिखाई गई है जो पूरी तरह से यकीन करता है कि वह सुपरस्टार बनने के लिए ही पैदा हुआ है। फिल्म में राघव जुएल अजय सिंह के रोल में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर टीजर शेयर करते हुए लिखा, हीरो की एंट्री लेट हो सकती है लेकिन निराश करने वाली कभी नहीं। फैंस को भी फिल्म भाई तेरा स्टार है का टीजर पसंद आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: कौन सा तेल शनि ग्रह की समस्याओं को दूर कर देता है? किस तेल के प्रयोग से कर्जे उतर जाते हैं? और कौन से तेल का प्रयोग करने से डायबिटीज में सुधार होता है? क्या है ज्योतिष में तेल का महत्व और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime, and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits, or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession।
3: गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक मॉनसून दिखा रहा अपने रंग, सूरत में भारी बारिश के चलते उफान पर तापी नदी, ठाणे में सड़क से लेकर गली तक पानी से लबालब। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले लबालब, पालमपुर की न्यूगल नदी में फंसे 7 पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू, पुलिस प्रशासन के सैलानियों को सतर्क रहने की अपील। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह, पवित्र यात्रा के दूसरे दिन अब तक करीब 30,000 भक्तों ने किए दर्शन, घाटी में सुनाई दे रही बम बम भोले की गूंज। अमरनाथ यात्रा के बीच आया एक और गौरवशाली पल, पहलगाम में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में फहराया गया तिरंगा, आस्था दृढ़ता और वीरता का बना प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को दी विकास की सौगात, जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल के अलावा पचपदरा रिफाइनरी का किया उन्होंने शुभारंभ, गुजरात के सारंड में सेमीकंडक्टर यूनिट का उद्घाटन। भारत मंडपम में देश के सबसे बड़े टॉय एक्सपो का हुआ शुभारंभ, 7 जुलाई तक चलेगा ये एक्सपो, बिजनेस के नए अवसरों को मिलेगा बड़ा मंच।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: तो देखिए, आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं तेल की। तो देखिए, तेल तो कई तरह के होते हैं, जैतून का तेल, नारियल का तेल, मस्टर्ड ऑयल भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम तेल के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। हम तेल के बारे में इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज पंडित जी बताने वाले हैं कि आखिरकार तेल का ज्योतिषीय कनेक्शन क्या है और इसके चमत्कारी प्रयोग से आपके जीवन को किस तरीके से बदला जा सकता है, इसके बारे में जानकारी जो है पंडित जी से लेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: देखिए, आपको किसी के विवाह का कार्ड मिले, कोई निमंत्रण पत्र मिले, उसका कार्ड आप पढ़ते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं, तो विवाह के और निमंत्रण के कार्ड नहीं फाड़ने चाहिए। उस पर देवी देवताओं के चित्र होते हैं, श्लोक लिखा होता है, हल्दी लगी होती है। अगर आप इसको फाड़ कर या इधर उधर फेंकेंगे तो इससे बृहस्पति कमजोर होगा और आपके घर में जो शुभता है, जो शुभ चीजें हैं, वो घटनी शुरू हो जाएंगी। तो निमंत्रण पत्रों को या तो जल प्रवाहित कर दें या इनको मिट्टी में दबा दें, इधर उधर फाड़ कर कूड़े में फेंकना उचित नहीं है।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं 5 जुलाई 2026 यानी कि दिन रविवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, दोपहर 1:30 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, दोपहर 3:12 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 तक। और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना अनुकूल नहीं होगा।
0: तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत करते हैं।

0: संबंध रखता है। अलग अलग तरीके के तेल उनके गुणों की वजह से, उनके सुगंध की वजह से और रंगों के आधार पर अन्य ग्रहों से भी संबंध रखते हैं। तेल के विभिन्न प्रयोगों से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और तेल का प्रयोग करके अपनी कामनाओं को पूरा कर सकते हैं और विभिन्न समस्याओं से बच सकते हैं। अलग अलग तरीके के जो तेल होते हैं उसका कंपोनेंट, उसका प्रभाव आपके जीवन पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। खाने पीने से लेकर के पूजा पाठ तक में तेल का अलग अलग प्रयोग होता है और ये अलग अलग तरीके के तेल आपके जीवन पर गहरा असर डालते हैं।
1: तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सरसों के तेल की, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इंडियन हाउसहोल्ड्स में। तो सरसों के तेल का इस्तेमाल करके किस तरीके से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, क्या कुछ अचूक उपाय किए जा सकते हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: देखिए, अगर हम सरसों के तेल की बात करें, मस्टर्ड ऑयल की बात करें, तो ऐसा तेल जो हर तरीके से प्रयोग में लाया जा सके वो सरसों का तेल ही है। खाने में, लगाने में, दीपक जलाने में, मालिश करने में, हर चीज में सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है। सरसों के तेल का सीधा संबंध होता है शनि देव के साथ। शनि संबंधी समस्याओं के निवारण में इसका प्रयोग अद्भुत लाभकारी होता है। शनि की अगर जीवन में समस्या है तो सरसों के तेल के विशेष प्रयोग किए जाते हैं। शनि के कारण अगर शारीरिक कष्ट है तो शरीर और बालों में सरसों का तेल लगाना चाहिए। लेकिन अगर कुंडली में मंगल मजबूत है तो सरसों का तेल लगाने से बचना चाहिए। अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही है तो पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अगर आपका बृहस्पति गड़बड़ है तो भोजन में अन्य तेलों के बजाय अगर सरसों के तेल का प्रयोग करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। अगर शनि के कारण रोजगार की समस्या है जीवन में तो शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करना चाहिए। दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं सरसों के तेल के बारे में। एक तो अगर आपकी शनि की 7.5 या शनि की ढैया चल रही है तो शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। सामान्य दशाओं में घर में जो दीपक जलाते हैं उसमें सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कहता है।
0: मेष राशि, मानसिक चिंता

0: की समाप्त होंगी, करियर के नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, परिवार में खुशहाली आएगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रोजगार में सफलता मिलेगी, नया काम शुरू होगा, खान पान का ध्यान बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए, बात तेलों की हो रही है, ऐसे में अब बात कर लेते हैं बादाम के तेल के बारे में। बादाम के तेल का एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन क्या है आपकी कुंडली से, इसका क्या कनेक्शन है, और साथ ही में बादाम के तेल से जुड़े कौन से छोटे छोटे उपाय करके आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, आइए जानते हैं।
0: अब बात करते हैं बादाम के तेल की, यानी एलमंड ऑयल की। बादाम का तेल खाद्य पदार्थ भी है, सौंदर्य प्रसाधन भी है और औषधि यानी मेडिसिन भी है। बादाम का तेल शुक्र और बुध दोनों से संबंध रखता है। ये चेहरे को अत्यंत चमकदार और अत्यंत सुंदर बना देता है और बादाम का तेल बुद्धि और याददाश्त को बहुत तेज कर देता है। अगर कुंडली में बुध कमजोर है तो इस तेल को खाना भी चाहिए और लगाना भी चाहिए ताकि बुध प्रबल हो, दिमाग तेज हो। राहु के प्रभाव को कम करने में भी ये तेल अद्भुत भूमिका निभाता है, राहु के प्रभाव को कम करता है। जो इडेबल बादाम का तेल है, अगर उसको दूध में कुछ बूंदें डालकर ग्रहण किया जाए तो दिमाग बहुत तेज हो जाता है, दिमाग शार्प हो जाता है। जो इडेबल आलमंड ऑयल है, उसको दूध में दो चार बूंदें डाल करके पीने से, ग्रहण करने से दिमाग बहुत तीव्र होता है, दिमाग का प्रेशर कम हो जाता है।
1: तो चलिए, बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है।
0: कर्क राशि, चोट चपेट से इस समय बचाव करिएगा, धन खर्च पर ध्यान दें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, सेहत में सुधार होगा, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी, करियर में सफलता मिलेगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल कार्यक्रम में समय हो गया है आपके सवाल का, तो बिना देर के पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न अभिनव जी ने हमें लिखा है और अभिनव जी हमें इंदौर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 मार्च 2002। जन्म का समय सुबह के 9:45 और जन्म का स्थान है इंदौर। अभिनव कह रहे हैं कि मैं आगे MBA करने जा रहा हूं, तो MBA करने के बाद मुझे नौकरी करनी चाहिए या मुझे व्यापार में जाना चाहिए, क्योंकि मैं व्यापार करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। अभिनव, आपके लिए MBA करना कुछ बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, और अगर आपको व्यापार में ही जाना है जैसा आपकी कुंडली कहती है तो MBA करने से कोई बहुत लाभ होगा ऐसा भी मुझे नहीं लगता। हाँ, व्यापार करने का उपयुक्त समय चल रहा है, अगर आप व्यापार करना चाहें तो इस साल के आखिरी से 2026 के अक्टूबर के बाद आप व्यापार में एंट्री करिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और MBA में समय नष्ट ना करें, व्यापार में जाएं, व्यापार में आपको बेहतर सफलता मिलेगी। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह और शाम एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप हमारा ये कार्यक्रम रोज देखते हैं, इसे काफी पसंद करते हैं और पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ये बिल्कुल संभव है। इस वक्त आप देखेंगे कि टीवी स्क्रीन पर हमारी जो ईमेल आईडी है वो फ्लैश हो रही है। इसी ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। ध्यान रखें कि साथ में अपनी बर्थ डिटेल्स आप हमें जरूर लिख दें। तो चलिए, इसी के साथ पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अगला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, अगला प्रश्न गुरुदयाल जी ने हमें लिखा है, पंजाब से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 अगस्त 1965, रात के 8:15, जन्म स्थान है खन्ना, पंजाब। गुरदयाल जी कह रहे हैं कि संपत्ति को लेकर एक विवाद काफी समय से चला आ रहा है, ये विवाद कब तक हल होगा और कब तक सफलता मिलेगी, इस बारे में जानना चाहते हैं। गुरदयाल जी, आपकी कुंडली देख करके लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी का जो विवाद है वो पारिवारिक है, और आपकी कुंडली के हिसाब से ये संभावना लगती है कि आपसी सुलह समझौते से ये मामला हल होगा, उसका समय चल रहा है, इस साल के आखिरी में आपसी सुलह समझौते से मामले के हल होने की संभावना दिखाई दे रही है। आप ऐसा करिए, एक तो हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ा करके प्रार्थना करिएगा कि आपकी संपत्ति का विवाद हल हो जाए। दूसरे नंबर पर एक मूंगा बनवा लीजिएगा, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं चमेली के तेल के एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन के बारे में। तो चमेली के तेल के उपयोग से किस तरीके से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, आइए जानते हैं।
0: देखिए, सामान्य जीवन में हम चमेली के तेल का उतना प्रयोग नहीं करते। चमेली का तेल शुद्ध रूप से शुक्र और मंगल से संबंध रखता है, और चमेली का तेल ज्यादातर सुगंध के कारण और जलाने के काम में आता है। मंगल से संबंध रखने की वजह से इस तेल को हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। हनुमान जी को चमेली के तेल में मिला करके सिंदूर लगाया जाता है। अगर कर्ज परेशान कर रहे हों, कर्जों से बहुत दिक्कत हो रही हो, तो आप नियमित पूजा में हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक रोज शाम को जलाइए, और चमेली के तेल का दीपक जला करके रोज अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा ना हो तो बहुत जरा सा चमेली का तेल, मामूली सा, नहाने के बाद शरीर में या बालों में लगा सकते हैं। चमेली के तेल की जो खुशबू होती है वो थोड़ी मादक होती है, इसलिए युवावस्था में और शिक्षा काल में चमेली के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपका मंगल खराब है, मंगल आपका निगेटिव है, तो हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को चमेली के तेल का दान करिएगा। ऐसा अगर हर मंगलवार को करें तो आपको विशेष लाभ अवश्य होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला वृषभ और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: तुला राशि, सेहत की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, धन की प्राप्ति होगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, वाहन सावधानी से चलाएं, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, करियर में सफलता मिलेगी। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए इसी क्रम में अब बात कर लेते हैं जैतून के तेल यानी ऑलिव ऑयल के बारे में। तो किस ग्रह से इसका संबंध है और किस तरीके से जैतून के तेल के इस्तेमाल से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, आइए जानते हैं।
0: जैतून के तेल की यानी ऑलिव ऑयल की बात करें, ऑलिव ऑयल जैतून का तेल शुद्ध रूप से शुक्र से संबंध रखता है। इसको प्रयोग करने से शुक्र बहुत शक्तिशाली हो जाता है, शुक्र को ताकत मिलती है। अगर आपको डायबिटीज हो गई है या डायबिटीज होने की संभावना है तो भोजन में ऑलिव ऑयल का, जैतून के तेल का प्रयोग करें। अगर व्यक्तित्व को आकर्षक बनाना है तो जैतून के तेल की मालिश कराने से लाभ होगा। छोटे बच्चों की मालिश अगर जैतून के तेल से की जाए तो बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर आर्थिक रूप से दिक्कतें ज्यादा हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस ज्यादा है, तो घर में कम से कम शुक्रवार की शाम को जैतून के तेल का दीपक जलाइए, घर में समृद्धि बनी रहेगी। डायबिटीज की समस्या है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, पेट में दिक्कतें ज्यादा परेशान करती हैं, ऐसी स्थिति में अगर जैतून का तेल भोजन में प्रयोग करें तो स्वास्थ्य में सुधार होगा।
1: तो बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान की प्राप्ति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, नौकरी में लापरवाही ना करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब तीसरा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं।
0: जी, आज का तीसरा प्रश्न दीपक जी ने हमें लिखा है और दीपक जी हमें वाराणसी उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। 16 नवंबर 1994 का जन्म है, शाम के 6:51, जन्म स्थान है भदोही। मेल लिखते हैं वाराणसी से। ये कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। दीपक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में आपकी शादी होगी वाराणसी या वाराणसी के आसपास। लेकिन जब भी विवाह करिएगा, कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, तो कुंडली मिला करके ही निर्णय लेना ठीक रहेगा। आपका विवाह शीघ्र हो, बेहतर हो, इसके लिए एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती बनवा के धारण करें। रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चौथा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस ईमेल आईडी को आप नोट कर सकते हैं और अपने सवाल इस पर लिख करके हमें भेज सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अंतिम सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न इंद्रनील मुखर्जी जी ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 जुलाई 1961, जन्म का समय सुबह के 8 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। इंद्रनील जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य को लेकर मुझे परेशानी है, मुझे अच्छा नहीं लगता, बेवजह की चिंताएं परेशान करती हैं। हालांकि रिपोर्ट में ऐसा कुछ निगेटिव नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। इंद्रनील जी, आपकी कुंडली के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आप अपने परिवार को लेके, खास तौर से संतान को लेकर के ज़्यादा परेशान हैं और संतान की चिंताएं आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। संभवतः तनाव की वजह से आप बीमार पड़ गए हैं, मामला इतना गंभीर नहीं है। आपकी जो मुश्किलें हैं वो मुझे लगता है कि जनवरी 2027 से कम होंगी और उसके बाद आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आप दो काम करिए, एक ओपल बनवा के पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहनिएगा। रोज सुबह एक बार देवी कवच का, जिसको दुर्गा कवच भी कहते हैं, इसका पाठ करिएगा। ये दो उपाय करिए, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अर्जुन का जन्मदिन है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। तो चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल, आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 5 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा, धन और कर्ज की समस्या दूर होगी, करियर में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन अभी भी विवाह और संतान के मामलों में विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
0: बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ज्यादा पूजा पाठ करने वालों को जीवन में ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है, ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है। क्या ऐसा है? देखिए, पूजा उपासना अपने मन की शांति के लिए और ईश्वर की कृपा उनसे संबंध के लिए की जाती है, इसका कष्ट भोगने से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब आप पूजा उपासना करते हैं तो आपके कष्ट बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएं, इसलिए कभी कभी बहुत तेजी से कष्ट आने लगते हैं, लेकिन वो दरअसल बहुत जल्दी खत्म होते हैं और आपको उससे मुक्ति मिले इसलिए ऐसा हो जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में जो कष्ट भोगता है वो अपने कर्मों की वजह से और अपने मना स्थिति के कारण भोगता है।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं शुभ पहर का समय और उसका उपाय।
0: दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में एक बार सुंदर कांड का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपके करियर की बाधाएं दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 5 जुलाई रविवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
1: तो चलिए अब कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वर्तमान समय कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है कर्क। इस समय आपके विवाह होने के और संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। हालांकि कर्क वालों को इस समय अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज हमने तेल के बारे में बात की है, तो आपको एक ऐसा तेल बनाने के बारे में बताते हैं जिससे आपको शरीर दर्द से छुटकारा मिलेगा। नीले कांच की बोतल ले लें, नीले रंग का ग्लास होना चाहिए। इसमें सरसों का तेल भर दें, थोड़ी सी ऊपर जगह छोड़ दीजिएगा। इस तेल को धूप में लगभग 7 दिनों तक रखें और 7 दिनों में इस तेल के अंदर गुण आ जाएंगे। जब भी कहीं दर्द हो, नींद आने की दिक्कत हो, इस तेल को लगाइए, आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theatre documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
1: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: तो चलिए बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा की। तो अमरनाथ यात्रा के दूसरे दिन भी शिव भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। आज तड़के पहलगाम से यात्रियों का तीसरा जत्था पूरे धूमधाम से रवाना किया गया। तो आज दूसरे दिन को मिलाकर अब तक 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं।

0: महादेव, बम बम भोले, जय बाबा बर्फानी का जय घोष, कठिन राह लेकिन आस्था पर, जुबां पर शिव का नाम,
1: नमः पार्वती पदे हर हर, नमः शिवाय पदे हर,
0: और दिल में बस एक ही अरमान, बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन। पूरे उत्साह और कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा जारी है।
2: बाबा बर्फानी की,
0: भोले के भक्त जयकारे लगाते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
2: हर हर हर महादेव।
0: यात्रा के दूसरे दिन 15,000 के करीब तीर्थयात्रियों ने पवित्र बर्फानी के हिमलिंग के दर्शन किए। यानी यात्रा के शुरुआती दो दिनों में ही गुफा मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 30,000 के पार पहुंच गई है।
3: अमरनाथ यात्रा के पहले दो दिन काफी सफल रहे। करीब 30,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। कई सारे श्रद्धालु हैं जो अमरनाथ यात्रा करके आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। आप मैं
4: मुझे दर्शन करके इतना हुआ, जितनी भी सारी थकान थी बाबा को दर्शन करके सारी थकान मिट गई। ऐसा लगा कि हर साल आती रहूं मैं। पहली बार आई थी लेकिन पहली बार में ऐसा लगा हर साल आती रहूं मैं
5: तीसरी बार आई हूँ और मैं तो हमेशा कहूंगी बाबा हर साल बुलाएं और हर साल अपने दर्शन हमें ऐसे ही दें, क्योंकि उनके दर्शन करके लगता है कि हमने सब कुछ निभा लिया, सब कुछ पा लिया।
3: कहीं ना कहीं ऐसी ही मुस्कान और ऐसी ही खुशी उन सभी श्रद्धालुओं के बीच में दिख रही है जो अमरनाथ यात्रा करके वापस लौट चुके हैं। ये सफर जो है 57 दिन तक जारी रहेगा और उम्मीद जताई जा रही है कि अब की बार रिकॉर्ड तादाद में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा करेंगे। व्यापक इंतजाम किए गए हैं यात्रियों के रहने के, यात्रियों की सुरक्षा के, और किसी हद तक मौसम भी काफी मेहरबान दिख रहा है फिलहाल पहले दो दिनों के दौरान, और आने वाले दिनों में भी इसी तरह यात्रा में श्रद्धालुओं की जोश की उम्मीद जताई जा रही है।
0: तीर्थ यात्रियों के लिए प्रशासन ने सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 5,000 से ज्यादा यात्रियों का तीसरा जत्था अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हो चुका है। यात्रियों का उत्साह देखते ही बन रहा है।
3: कितना उत्साह और कितनी भीड़ अब की बार अमरनाथ यात्रा में है। रात के 2 बजे से लाइन में श्रद्धालु लगे हुए हैं। इस वक्त करीब 8 बज चुके हैं और अभी भी ये लाइन जो है ये चल रही है, क्योंकि कार्ड रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है यहाँ पर इसी जगह इन सभी श्रद्धालुओं के चेक किए जाते हैं और उसके बाद ही उनको आगे जाने की इजाजत है। दरअसल अब की बार जो है अमरनाथ यात्रा में प्रशासन और श्राइन बोर्ड ने ये साफ किया है कि नियमों के तहत ही, प्रशासन के तहत ही श्रद्धालुओं को अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ने की इजाजत मिलेगी, ताकि यात्रियों की यात्रा जो है वो सुरक्षित भी रहे और उनके लिए यादगार भी रहे। तो यही कारण है कि व्यवस्था के तहत अमरनाथ यात्रा जो है अभी जारी है।
0: बालटाल बेस कैंप में देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। यहां RFID रजिस्ट्रेशन, लंगर, ठहरने की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाओं के साथ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, ताकि हर श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के बाबा के दर्शन कर सके। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने भी यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए हैं, जिससे यात्रियों में खुशी है।
6: सुविधा अभी तक तो बहुत अच्छी चल रही है, आगे चल के प्रभु के दर्शन जैसे होंगे उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे।
0: 57 दिनों तक चलने वाली यह पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को औपचारिक रूप से शुरू हुई थी। यह यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन अवसर पर समाप्त होगी। प्रशासन ने दोनों रूटों बालटाल और पहलगाम पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और लंगर के पुख्ता इंतजाम किए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुँचने के दो रास्ते हैं, पहलगाम मार्ग करीब 46 किलोमीटर लंबा है, जो प्रकृति की अद्भुत छटा के बीच 3 से 4 दिन में पूरा होता है। वहीं बालटाल रूट छोटा है, यह सिर्फ 14 किलोमीटर लंबा है, लेकिन ज्यादा कठिन है। जो श्रद्धालु पैदल यात्रा नहीं कर सकते, उनके लिए टट्टू और पालकी का भी इंतजाम है। अशरफ वानी, बालटाल, गुड न्यूज टुडे।
7: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब आपको कश्मीर से आई एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो किसी मिसाल से कम नहीं है। मिलिए कश्मीर के शोपिया के रहने वाले रऊफ से, जो पिछले 5 सालों से कश्मीर के उन तमाम पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं जहां सैलानियों की वजह से कचरा जमा हो जाता है।
8: बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी मखमली घास से सजे मैदान और दिल को छू लेने वाले नजारे, कुछ ऐसा है हमारा कश्मीर। वो कश्मीर जहां कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती का खजाना बिखेर रखा है। तभी तो हर साल लाखों सैलानी कश्मीर की इन बेहद हसीन वादियों को देखने के लिए उमड़ते हैं। लेकिन कभी कभी सैलानियों की ये रौनक इस हसीन और खूबसूरत घाटी के लिए चुनौती बन जाती है। जैसे जैसे पर्यटकों की तादाद बढ़ती है, कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट पर गंदगी और कचरा भी बढ़ने लगता है। और इसी चुनौतियों से निपटने के लिए कश्मीर के ही रहने वाले रऊफ ने एक बेहतरीन पहल की है।
9: लोग आते हैं, लोगों को आना चाहिए, ये आपके लिए ही है। तो मैं चाहता हूं कि ये लोगों का एसेट है, ठीक है, ये हर किसी बंदे का एसेट है और आप इसको उसी तरह से ले लो ताकि आपको अपना है, उसी हिसाब से इसको मेंटेन रखिए ताकि जो आपकी अपना जो सर्टिफिकेशन है, आपको ये हर तरह का पीस दे रहा है। ये नेचर आपको हार्म नहीं कर रहा है, आप नेचर को हार्म कर रहे हो यहाँ पे। और जो है इसको हमें इसकी ज़रूरत है, नेचर को हमारी ज़रूरत नहीं है। अगर ये 100 साल 50 साल भी ऐसे ही रहेगा तो इसको हमारी ज़रूरत नहीं है, ग्रो बाई डिफ़ॉल्ट करेगा। बट जो हमारी प्रॉब्लम है, हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है। अगर हम इसी को तबाह करेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि हमारी अपकमिंग जनरेशन इसका मज़ा उठाएगी और इसका ये नज़ारा देख पाएगी।
8: कश्मीर की जन्नत को बेदाग रखने के लिए दक्षिण कश्मीर के शोपियां का एक युवा एक बेहतरीन मिसाल बनकर उभरा है। मिलिए केलर इलाके के रहने वाले रऊफ से, जो पिछले 5 सालों से उन सभी पर्यटक स्थलों पर लगातार स्वच्छता अभियान चला रहे हैं जहां सैलानियों की वजह से कचरा जमा हो जाता है।
10: केलर के रहने वाले रऊफ ने एक प्रेरणा जरूर दी है उन लोगों के लिए, उन छात्रों के लिए जो पिकनिक के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें जब बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक की वजह से हमारी जो सरसब्ज ज़मीन है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। अगर इंसान में अच्छे इखलाक हो, अच्छा सोच हो, तो बंजर को आबाद कर सकता है, और अगर इंसान में गलत सोच हो, वो सरसब्ज ज़मीन को बंजर करने में कोई कसर बाकी पीछे नहीं रह सकता है।
8: रऊफ की इस पहल का असर भी हुआ। जो काफिला रऊफ ने शुरू किया उसमें धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। युवाओं के साथ ही आज इस अभियान में रिटायर्ड पेशेवर और बुजुर्ग भी पूरे उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं। रऊफ सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए मेहनत नहीं कर रहे, बल्कि उसकी अनदेखी खूबसूरती को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमरलैंड एलिगेंस नाम की एक किताब भी लिखी है। इस किताब में दक्षिण कश्मीर के उन खूबसूरत लेकिन अनदेखे पर्यटक स्थलों का जिक्र है जो अब तक आधिकारिक टूरिज्म मैप से गायब है। शोपियां की इन खूबसूरत और मनमोहक वादियों के बीच रऊफ की ये पहल साबित करती है कि जब युवा अपने समाज और पर्यावरण की जिम्मेदारी उठाते हैं तो तस्वीर यकीनन बदलती है। रऊफ की ये कोशिश न सिर्फ कश्मीर को साफ रख रही है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा संदेश भी है। शोपियां से इरशाद मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात फिल्मों की कर लेते हैं। तो सनी देओल की मच अवेटेड फिल्म बंटवारा 1947 का टीजर फाइनली रिलीज हो गया है, जिसे फैंस काफी पसंद भी कर रहे हैं। बात इस फिल्म की करें तो ये फिल्म 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी, क्योंकि इसी दिन भारत का बंटवारा हुआ था।
11: हिंदुस्तान, जिसे बड़े संघर्ष और कुर्बानियां देने के बाद 200 साल की गुलामी से आजादी तो मिली, लेकिन अफसोस मुल्क का बंटवारा हो गया।
12: बंटवारा 1947।
11: मजहब
12: अपने शानदार मोशन पोस्टर और किरदारों के दम पर सबका ध्यान खींचने वाली फिल्म का इंतजार काफी समय से फैंस कर रही
13: होएगा तो जाएगा।
12: अब इसके टीजर के रिलीज होने के साथ ही फिल्म को लेकर बना हुआ एक्साइटमेंट एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। भारत के बंटवारे पर बनी फिल्म बंटवारा 1947 का ये दिलचस्प और इंटेंस टीजर दर्शकों को इतिहास के सबसे बड़े मोमेंट्स में से एक मिले जाता है। भारत की आजादी और बंटवारे का भयानक मंजर जिसने एक देश को बांट दिया और हमेशा के लिए करोड़ों जिंदगियों को बदल कर रख दिया।
11: मजहब के नाम पर इंसानियत की हत्या हो रही थी।
12: दमदार डायलॉग्स और दिल को छू लेने वाले इमोशनल बैकग्राउंड स्कोर से भरा ये टीजर इतिहास के सबसे उथल पुथल भरे चैप्टर के दौरान उम्मीद और लचीलेपन के जज्बे को दिखाता है। फिल्म की कहानी के केंद्र में एक ऐसा हीरो है जो डर और नफरत से ऊपर उठकर असाधारण बहादुरी की मिसाल बनता है।
11: हिंदुस्तान, जिसे बड़े संघर्ष और कुर्बानियां देने के बाद 200 साल की गुलामी से आजादी तो मिली, लेकिन अफसोस मुल्क का बंटवारा हो गया।
12: बंटवारा 1947 के टीजर की शुरुआत एक आवाज से होती है जिसमें बताया जाता है कि हिंदुस्तान को बड़े संघर्ष और कुर्बानियां देने के बाद 200 साल की आजादी से गुलामी तो मिली लेकिन मुल्क का बंटवारा हो गया। मजहब के नाम पर इंसानियत की हत्या हो रही थी। फिर टीजर में दिखाया जाता है कि विभाजन के वक्त किस कदर दंगे फसाद हुए और लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए थे।
13: इरादा तो नहीं है पर इतराज भी नहीं है।
12: सनी देओल की एंट्री और उनके साथ ही फिल्म के बाकी किरदारों को भी दिखाया जाता है। शबाना आजमी से लेकर प्रीति जिंटा, अली फजल और करण देओल। फिर आता है वो सीन जब सनी देओल का किरदार यानी देओल सिकंदर मिर्जा अभिमन्यु सिंह के किरदार याकूब खान से टकराता है।
13: मंगा लेना है?
14: इरादा तो नहीं है पर इतराज भी नहीं है।
12: फिल्म के टीजर रिलीज होने पर एक्टर बॉबी देओल ने इंस्टाग्राम पर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने टीजर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, आप सबसे अच्छे हैं भैया। बॉबी ने आगे लिखा, मैं इस फिल्म को लेकर बहुत उत्साहित हूं और इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। इसके साथ ही बॉबी ने बंटवारा 1947 की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। बंटवारा 1947 को आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म 14 अगस्त को उसी दिन रिलीज होगी जिस दिन भारत का विभाजन हुआ था। इसमें शबाना आजमी, सनी देओल, प्रीति जिंटा, करण देओल, अली फजल और अभिमन्यु सिंह जैसे शानदार कलाकारों की फौज है।
11: हिंदुस्तान, जिसे बड़े संघर्ष और कुर्बानियां देने के बाद
12: ये फिल्म करीब 3 दशकों के बाद राजकुमार संतोषी और सनी देओल को साथ ला रही है।
11: मुल्क का बंटवारा।
12: इसका म्यूजिक AR रहमान ने तैयार किया है, गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: तो चलिए अब बात राघव जुआल की फिल्म भाई तेरा स्टार है की कर लेते हैं। बैग्स ऑफ बॉलीवुड और किल फिल्म से नाम कमाने वाले राघव जुआल की फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है। ये फिल्म 30 जुलाई को सुनहरे पर्दे पर दस्तक देगी। फिल्म एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर होगी।
15: रॉकिंग रिबेल आईकॉन सुपर अल्ट्रा फ्यूचर सेक्सी स्टार अजय सिंह।
16: What a weirdo यार।
17: रॉकिंग रेबल आईकॉन सुपर अल्ट्रा फ्यूचर। टीजर की शुरुआत इन्हीं दमदार शब्दों से होती है। फिल्म का नाम है भाई तेरा स्टार है और लीड रोल में है राघव जुआल। वही राघव जुआल जिन्हें बैड्स ऑफ बॉलीवुड और किल फिल्म के लिए जाना जाता है।
18: हाँ, मैंने झूठ बोला। करेक्ट।
17: टीजर में कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन और राघव की शानदार कॉमिक टाइमिंग का जबरदस्त मिक्स देखने को मिलता है।
19: हाँ, मैंने झूठ बोला।
18: लाउड हो रहा है।
19: हाँ, मैंने झूठ बोला।
17: इससे पहले फिल्म का पहला मोशन पोस्टर भी रिलीज हुआ था जिसमें अजय के किरदार को टैलेंट लोडिंग टैगलाइन के साथ दिखाया गया था। अब टीजर उसी कहानी को आगे बढ़ाता नजर आता है।
11: बॉलीवुड तैयार हो जाओ, एक नया स्टार आ रहा है।

0: इस टीजर में एक ऐसे लड़के की कहानी दिखाई गई है जो पूरी तरह से यकीन करता है कि वह सुपरस्टार बनने के लिए ही पैदा हुआ है। फिल्म में राघव जुएल अजय सिंह के रोल में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर टीजर शेयर करते हुए लिखा, हीरो की एंट्री लेट हो सकती है लेकिन निराश करने वाली कभी नहीं। फैंस को भी फिल्म भाई तेरा स्टार है का टीजर पसंद आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब खबर जम्मू से, जहां एसडीआरएफ की टीम ने तवी नदी के तेज बहाव में फंसे 4 बच्चों का रेस्क्यू किया है। पुलिस के मुताबिक पीरखो मंदिर के पास ये 4 बच्चे नदी में नहाने के लिए गए थे, तभी अचानक तवी नदी का जलस्तर बढ़ गया। सूचना के बाद जम्मू पुलिस और एसडीआरएफ की टीम हरकत में आई और एक सफल रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी 4 बच्चों को बिना किसी चोट के सुरक्षित बचा लिया गया। स्थानीय प्रशासन पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए लोगों से अपील कर रहा है कि वो तवी नदी के किनारों से दूर रहे, खासकर तब जब पानी का स्तर घट बढ़ रहा हो।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: You're listening Uninterrupted with TuneIn Premium. Enjoy commercial-free news and music plus ad-free ESPN Radio and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
4: Social media ki airhead ka deadly action. Womanly Despair Universe mein Alia ka dhamaka. मेंटल हेल्थ से लड़कर इंडस्ट्री में बनाई पहचान। आलिया के फिल्मी सफर की अनकही दास्तान। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच

0: भविष्य के युद्ध छोटे, तेज और टेक्नोलॉजी आधारित होंगे, लिहाजा युद्ध जैसे हालात में बढ़त उसी को मिलेगी जो दुश्मन से 10 कदम आगे की तैयारी रखेगा। और भारत को भी ये अच्छे से पता है कि उसे खतरा दो मोर्चों से है, लिहाजा तैयारी भी जबरदस्त होनी चाहिए। बास बटालियन, रुद्र ब्रिगेड, अश्विन ड्रोन प्लाटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, ये उसी तैयारी का हिस्सा है जिनका मकसद सेना को अधिक तेज, सक्षम, सटीक और तकनीक से जुड़ा बनाना है।
1: जय यानी जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता, इनोवेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का दिया हुआ नारा, और मल्टी डोमेन ऑपरेशन की मुहिम के तहत रुद्रा ब्रिगेड, भैरव बटालियन, अश्नि ड्रोन प्लेटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्रा बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड और आईबीजी यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जैसे कदम इसी सोच का हिस्सा है।
0: अनुभवों ने यह साफ कर दिया है कि भविष्य में सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जानकारी, सर्विलांस, वेपन, कम्युनिकेशन सिस्टम और कमांडर कितनी तेजी से एक साथ काम कर पाते हैं। इसीलिए सेना अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के बजाय अधिक समन्वित और तेज व्यवस्था की ओर बढ़ती जा रही है।
1: भविष्य में युद्ध और अधिक ज्वाइंट, इंटीग्रेटेड और थिएटर ओरिएंटेड होगा, इसलिए हमारी दिशा स्पष्ट है, साथ देखना, साथ निर्णय लेना और साथ कार्रवाई करना। भारतीय सेना में परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर चलती आ रही। इन दो वर्षों में डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग, आधुनिकीकरण, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, ज्वाइंटनेस, सिस्टम रिफॉर्म और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर तीव्र गति से काम हुआ है।
0: भारतीय सेना भविष्य की जंग के लिए खुद को तेजी से तैयार कर रही है। इसी दिशा में सेना ने बास बटालियन नाम से खास ड्रोन यूनिट बनाने का फैसला किया है। बास बटालियन में ट्रेन जवानों की एक स्पेशल टीम होगी जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम का संचालन और प्रबंधन करेगी। इन बटालियनों का काम सीमा पर लगातार निगरानी रखना, दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी जुटाना और जरूरत पड़ने पर सटीक कार्रवाई में मदद करना होगा। सूत्रों के मुताबिक बास बटालियन को आर्मी एविएशन कोर के अंतर्गत रखा जा सकता है। बास बटालियन फ्रंटलाइन यूनिट्स और खुफिया सिस्टम के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करेगी जिससे दुश्मन

0: लिया गया है कि इंडियन आर्मी के जो बटालियंस हैं उनको आस्ते आस्ते बाज बटालियंस में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी जैसे कन्वेंशनल इन्फेंट्री बटालियन में अल्फा कंपनी, ब्रेवो कंपनी, चार्ली कंपनी, डेल्टा कंपनी होती थी, अब एक छोटी सी टुकड़ी यह भी रेज की जाएगी इन बटालियंस में, जिनके पास अलग अलग तरह के ड्रोन्स होंगे, रिकनेसेंस ड्रोन होंगे जो कि छोटी दूरी के या लंबी दूरी की होंगे। इसी तरह से उनके पास अटैक ड्रोन्स भी होंगे जो कि शत्रु के ऊपर जाके हमला करके वापस आ सकें। सबसे बड़ी बात है कि इन इन्फेंट्री बटालियंस में आस्ते आस्ते सुसाइड ड्रोन यानी कामिकाजे ड्रोन इंडक्ट किए जाएंगे जो कि शत्रु के पोजिशन के ऊपर जाके लॉयटर कर पाएंगे। यानी वहाँ पर 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट शत्रु की लोकेशन के ऊपर घूमते रहेंगे।
1: अभी सेना की अश्नि ड्रोन पलटन पैदल सेना के साथ मिलकर कम दूरी की निगरानी करती है। दिव्यास्त्र और शक्तिबाण जैसी इकाइयां हमलावर ड्रोन और लाइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल करती हैं। बाज बटालियन इन सबसे ऊपर की कैटेगरी में होगी और लंबी दूरी की निगरानी, लक्ष्य पहचान और बड़े स्तर पर ड्रोन संचालन की जिम्मेदारी संभालेगी। ड्रोन्स का काम अब केवल निगरानी करना या फिर विशेष अभियानों तक सीमित नहीं, बल्कि ड्रोन की ताकत आज की तारीख में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ड्रोन न केवल दुश्मन पर हमला कर सकते हैं बल्कि साथ ही साथ जानकारी जुटा सकते हैं। इसी के साथ साथ रेकी के लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है और साथ ही साथ हमारे सैनिकों के लिए भी ड्रोन सबसे ज्यादा उपयोगी साबित हो रहा है। पहले पैदल सैनिकों को दुश्मन पर हमला करने के लिए तोपखाने या वायुसेना के बैकअप का इंतजार करना होता था, लेकिन अब अश्विन प्लाटून का ऑपरेटर खुद दुश्मन को स्क्रीन पर देखता है और पलक झपकते ही ड्रोन से हमला कर देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के रण ऑफ कच्छ तक करीब 1000 ड्रोन से हमला किया था। भारतीय सेना की एंट्री एयरक्राफ्ट गन और काउंटर ड्रोन सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। इसके बाद सेना ने ड्रोन फोर्स खड़ी करने का संकल्प लिया और भैरव बटालियन, दिव्यास बैटरी और अश्नि प्लाटून जैसी नई इकाइयों की शुरुआत की। सेना के हर इन्फेंट्री बटालियन में अश्नि ड्रोन प्लाटून बनाई गई है। एक प्लाटून में 20 सैनिक हैं जिन्हें FPV, सर्विलांस, स्वॉर्म ड्रोन और लॉयटरिंग म्यूनिशन चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। भारतीय सेना की करीब 380 इन्फेंट्री बटालियन में ऐसी इकाइयां शामिल की जा रही हैं।
0: हर इन्फेंट्री बटालियन में जब वो बाज बटालियन में कन्वर्ट होंगे तो एक एक अश्नि प्लाटून डेवलप की जाएगी। इस डिप्लॉयमेंट के बाद हर इन्फेंट्री बटालियन की जो अश्नि प्लाटून होगी उनको करीबन 20 सोल्जर्स ऐसे ट्रेन करने पड़ेंगे जो कि रिकनेसेंस ड्रोन को उड़ा सकें, अटैक ड्रोन को कामयाबी से अटैक करवा सकें। सबसे बड़ी बात है जो सुसाइड ड्रोन होते हैं, कामिकाजी ड्रोन, उसमें जो FPV होता है, फर्स्ट पर्सन व्यू, यानी ऑपरेटर जो है वो देख सकता है कि ड्रोन कहाँ उड़ रहा है, किस चीज़ को निशाना बना रहा है। FPV रोल में इन 20 सोल्जर्स को ट्रेन किया जाएगा। हर यूनिट में करीबन शुरुआती दौर में 10-10 ड्रोन दिए जा रहे हैं, जिसमें 4 ड्रोन तो रिकॉग्निशंस ड्रोन होंगे, यानी वो दुश्मन की टोह लेकर वो कमांडर को सूचित करेंगे कि दुश्मन का टारगेट कहां पर है।
1: सेना के भीतर अलग अलग आर्म्स, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, सिग्नल के बीच तालमेल और एकीकरण पर जोर दिया जा रहा है और इसी तैयारी का हिस्सा है शक्तिमान रेजिमेंट। ये भारतीय सेना की तोपखाना के अंडर बनाई जा रही एक विशेष और आधुनिक ड्रोन केंद्रित इकाई है जो दुश्मन की गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी और लक्ष्य निर्धारित करने में सक्षम होगी। शक्तिमान रेजिमेंट के जवान पारंपरिक तोपों के बजाय अनमैन्ड एरियल व्हीकल के जरिए दुश्मन पर सटीक और घातक हमला करेंगे। भविष्य के युद्धों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना की ओर से 15 से 20 शक्तिमान रेजिमेंट तैयार की जा रही हैं। ये रेजिमेंट स्वॉर्म ड्रोन, लॉयटरिंग म्यूनिशन और लॉन्ग रेंज UAV से लैस हैं, जिनकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक होगी।

0: हमारी आर्टिलरी के जो यूनिट्स हैं उनमें 20 एडिशनल शक्तिवान रेजिमेंट्स रेज की जा रही हैं। इन आर्टिलरी यूनिट्स में लॉन्ग रेंज यूएवी और लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का डिप्लॉयमेंट होगा। आमतौर पे जो ड्रोन्स इन्फेंट्री यूनिट्स के पास होंगी वो 5 से 10 किलोमीटर की दूरी तक ऑपरेट कर पाएंगी, लेकिन जो ड्रोन और यूएवी इन शक्तिवान आर्टिलरी रेजिमेंट्स को दिए जा रहे हैं उनकी रेंज 10 से 500 किलोमीटर तक होंगी, यानी डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए उनका इस्तेमाल किया जाएगा।
1: शक्तिवान रेजिमेंट सैनिकों को जोखिम में डाले बिना दुश्मन की सीमा के भीतर घुसकर सटीक पिन पॉइंट स्ट्राइक करने की क्षमता रखती है। आर्टिलरी में 15 शक्तिवान रेजिमेंट बनाई जा चुकी हैं और 11 बनाई जानी है। जो तोपखाना रेजिमेंट शक्तिबाण में तब्दील नहीं होंगी उनमें दिव्यास्त्र बैटरी होगी। शुरू में 34 दिव्यास्त्र बैटरी बनाई जा रही है। दिव्यास्त्र बैटरी के पास ड्रोन और लाइटरिंग एम्यूनिशन होंगे। पारंपरिक आर्टिलरी में केवल तोप और रॉकेट होते थे, वहीं दिव्यास्त्र की अगर बात करें तो ये तोपों को एक हाईटेक वर्जन देता है। सीधे तौर पर कहा जाए तो ये डिजिटली और मानव रहित तकनीकों से इसे जोड़ता है। पारंपरिक तोपों और आधुनिक मानव रहित प्रणालियां यानी कि ड्रोन्स का एक हाइब्रिड मिश्रण हम इसको कह सकते हैं, जो दुश्मन के इलाके में घुसकर सही और सटीक हमला कर सकता है। वैसे योजना 35 से 40 ऐसी दिव्यास्त्र बैटरियां और बनाने की भी है। दिव्यास्त्र बैटरियां पारंपरिक बोफोर्स या फिर 9 वज्र जैसी तोपों के साथ लाइटिंग म्यूनिशन और निगरानी ड्रोन्स को एक साथ ऑपरेट करती हैं। दिव्यास्त्र बैटरी के ड्रोन पहले दुश्मन के बंकर ठिकाने या आगे बढ़ते टैंकों को लाइव ट्रैक करते हैं और तुरंत उनके सटीक कोऑर्डिनेट्स तोपखाने को भेजते हैं। इस तकनीक से तोपखाने की मारक क्षमता और सटीकता कई गुना बढ़ जाती है, जिससे दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक पिन पॉइंट हमले किए जा सकते हैं।
0: इंडियन आर्मी की दिव्यास्त्र बैटरी जो हैं वो आर्मी की आर्टिलरी का एक हिस्सा होंगी। इन यूनिट्स में जो रिकनेसेंस ड्रोन होंगे वो आर्मी की जो कन्वेंशनल तोपे हैं जैसे कि बोफोर्स की गन्स उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके फायर पावर का ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगी। दिव्यास्त्र बैटरीज में रिकनेसेंस ड्रोन्स होंगे जो कि युद्ध भूमि के पीछे यानी टैक्टिकल बैटल एरिया के आगे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूरी तक रिकनेसेंस करेंगी और टोह लेंगी कि दुश्मन जो है किस दिशा से हमारे ऊपर हमला करने आ रहा है।
1: भारतीय सेना ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर अपना दबदबा कायम करने और आधुनिक नेटवर्क केंद्रित युद्धों को जीतने के लिए विशेष इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड्स का गठन करने का फैसला किया है। ये सेना के आधुनिकीकरण या रीस्ट्रक्चरिंग अभियान का एक क्रांतिकारी हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक हथियारों जैसे तोपों या टैंकों के चलने से पहले ही दुश्मन के संचार और सैन्य तंत्र को अंधा और बहरा बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड के मुख्य कार्यों में एक है स्पेक्ट्रम डोमिनेंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल, जो दुश्मन के रडार, ड्रोन, मिसाइल और वायरलेस सेट के सिग्नल्स को ब्लॉक कर पूरे स्पेक्ट्रम पर कब्जा करती है। दूसरा है दुश्मन के सिस्टम्स को जाम करना। इसमें दुश्मन के रडार नेटवर्क, एयर डिफेंस कमांड सेंटर्स और मानव रहित विमानों के डेटा लिंक को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया जाता है। अगला सिग्नल इंटेलिजेंस, इससे सैनिक दुश्मन के रेडियो सिग्नल्स और मोबाइल सैटेलाइट बातचीत को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, जिससे दुश्मन की अगली रणनीति और लोकेशन का पहले ही पता चल जाता है। किलवेव इंटीग्रेशन, ये ब्रिगेड रियल टाइम खुफिया जानकारी को तुरंत अपनी तोपखाना और एयर डिफेंस यूनिट्स के साथ साझा करती है, जिससे चिन्हित किए गए खतरों को पलक झपकते ही नष्ट किया जा सकता है।
0: भविष्य के किसी भी युद्ध में इंडियन आर्मी की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड का मुख्य काम ये होगा कि दुश्मन जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहा है अपने कमांडर्स के साथ या अपनी लोअर फॉर्मेशन के साथ, उसको मॉनिटर करना। अब दुश्मन के पास अलग अलग तरह की कम्युनिकेशन सेट होते हैं, कुछ हाई फ्रिक्वेंसी यानी HF पे काम करते हैं, कुछ VHF यानी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज पर काम करते हैं, आजकल ज़्यादातर सेट UHF यानी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं। तो इसकी जो सिग्नल इंटेलिजेंस है उसको भांप के उसको सुनना और वो जो वॉइस रिकॉर्डिंग है उसको कमांडर के सामने देना, इनका पहला काम होगा।
1: भारतीय सेना में बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण अब सिर्फ नए हथियार या उपकरण लेने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य सेना की सोच, ढांचे, प्रशिक्षण, तकनीक, कार्यप्रणाली और मानव संसाधन को एक साथ आगे बढ़ाना है। साल 2026 में भारतीय सेना में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पहली बार इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप सेना में शामिल किए जाएंगे। कुल 5 IBG बनाई गई है जो कि 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के तहत काम करेंगी। हर IBG की कमान मेजर जनरल रैंक के अधिकारी के पास होगी। इसके अलावा चीफ ऑपरेशन ऑफिसर्स का नया पद भी बनाया गया है जिसकी जिम्मेदारी होगी ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी के पास। एक पारंपरिक ब्रिगेड में सिर्फ एक तरह की सेना होती है, जैसे सिर्फ पैदल सेना या फिर आर्टिलरी। उन्हें तोपखाने या फिर डिफेंस के सपोर्ट के लिए अच्छे मुख्यालयों से मंजूरी और यूनिट्स के आने का इंतजार करना पड़ता है। इसके उलट प्रत्येक IBG एक आत्मनिर्भर इकाई है जिसमें युद्ध के लिए जरूरी सभी अंग पहले से ही एक ही कमांडर के तहत एकीकृत होते हैं। IBG की संरचना क्या है वो भी आपको बताते हैं। इसमें इन्फेंट्री जमीनी मोर्चे पर कब्जा करने और लड़ने के लिए पैदल सैनिक आर्म्ड, तेजी से आगे बढ़ने और दुश्मन की रक्षा पंक्ति तोड़ने के लिए टैंक और मैकेनाइज्ड गाड़ियां, आर्टिलरी जिसमें लंबी दूरी तक भारी बमबारी के लिए दिव्यास्त्र बैटरी या फिर पारंपरिक तोपें होती हैं, एयर डिफेंस जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोन से हवा में सुरक्षा मुहैया कराता है, लॉजिस्टिक और इंजीनियर्स इनका काम रास्ते के बारूदी सुरंगों को हटाना, पुल बनाना और गोला बारूद की त्वरित सप्लाई करना होता है। साथ ही आधुनिक विंग्स, इसमें शक्तिबान रेजिमेंट के ड्रोन दस्ते और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स भी सीधे शामिल होती हैं। ये सब मिलकर एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की संरचना करते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो IBG एक सैन्य ग्रुप है जिसमें सेना के लगभग हर प्रमुख अंग के सैनिक शामिल होंगे।
0: टैक्टिकल बैटल एरिया में आमतौर पर आर्टिलरी यूनिट्स काम करती हैं, टैंक रेजिमेंट्स काम कर रहे होते हैं, इन्फेंट्री बटालियंस आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं और इसी तरह से उनको सपोर्ट भी मिलता है। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स जो है युद्ध भूमि में उनको पेट्रोल, डीजल, स्पेयर पार्ट्स, अम्यूनिशन सप्लाई करती है। आर्मी सप्लाई कोर जो है वह एडवांसिंग कॉलम्स को राशन मुहैया कराती है। 10,000 ट्रुप्स एक डिवीजन के अगर आगे बढ़ रहे हैं या 30,000 ट्रुप्स एक कोर में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें दिन में 3 बार खाना भी तो खाना है। 30,000 सोल्जर्स को पानी पिलाने का काम बहुत ही मैराथन जॉब है क्योंकि वो 30,000 सोल्जर्स जब युद्ध भूमि में लड़ रहे हैं तो कोई दाएं हैं, कोई बाएं हैं, कोई सामने 100 किलोमीटर है, कोई पीछे 10 किलोमीटर है। इन सबको युद्ध भूमि में पानी पिलाना, रेगिस्तान है ना, जंगल है या हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, पानी आसानी से नहीं मिलता। तो ये काम सारे जितने इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मी यूनिट्स हैं और सपोर्ट सर्विसेज हैं उसको एक साथ सुचालित ढंग से आगे बढ़ाना एक ही कमांडर के नीचे होगा। इनको नाम दिया गया है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप।
1: भारतीय सेना अपनी सभी लड़ाकू कोर को धीरे धीरे छोटे, मारक और अत्यधिक आधुनिक एकीकृत समूहों में बदल रही है ताकि भविष्य के कम समय वाले युद्धों को आसानी से जीता जा सके। IBG के फायदे क्या हैं ये भी जान लीजिए। सबसे पहला है अनमैच्ड स्पीड। दरअसल सभी संसाधन एक ही कमांडर के पास होते हैं और इसीलिए उन्हें लामबंद होने में कुछ हफ्तों के बजाय महज 12 से 48 घंटे का वक्त लगता है। फौरन फैसला लेने की क्षमता, कमांडर को तोप या फिर हवाई सुरक्षा के लिए कोर मुख्यालय से अनुमति नहीं मांगनी पड़ती, वो युद्ध क्षेत्र की स्थिति देखकर ऑन द स्पॉट फैसले ले सकता है। तीसरा है किल वेव से सीधा जुड़ाव। IBGs पूरी तरह से डिजिटल और नेटवर्क केंद्रित हैं। इनके सेंसर और शूटर आपस में जुड़े होते हैं, जिससे दुश्मन की लोकेशन मिलते ही पूरी ताकत से हमला कर दिया जाता है।
0: ये जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप होंगे, ये एक युद्ध भूमि में एक मेजर जनरल के तहत आएंगे और भविष्य के युद्ध में ये हाईली फ्लेक्सिबल होंगे, क्योंकि इनका अपना ट्रांसपोर्ट ग्रुप होगा। यानी सडनली देखिए, 10,000 ट्रूप्स को अगर लेके 200 किलोमीटर आगे ले जाना है, या 10,000 ट्रूप्स को लेकर सडनली 200 किलोमीटर बाएं तरफ लेके जाना है, तो आपको 100 गाड़ियां चाहिए कम से कम। तो ये जो 100 गाड़ियां हैं, ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के जो कमांडर होंगे उनके डायरेक्ट कंट्रोल में होंगी। इससे जो आईबीजी के कमांडर हैं, मेजर जनरल रैंक के होंगे, उनकी युद्ध भूमि में कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी और युद्ध लड़ने की क्षमता काफी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाएगी और ज्यादा भी हो जाएगी।
1: आसान भाषा में कहें तो आईबीजी ऐसा सैन्य ग्रुप है जिसमें सेना के लगभग हर प्रमुख अंग के सैनिक शामिल होंगे, यानी इन्फेंट्री आर्म्ड या टैंक, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इंजीनियर्स, एयर डिफेंस, सिग्नल्स, लॉजिस्टिक और मेडिकल कोर, जो जरूरत पड़ने पर बिना किसी दूसरी यूनिट का इंतजार किए तेजी से ऑपरेशन शुरू कर सकेंगे। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत है इसके जवानों की संख्या। इसमें करीब 5,000 जवान होंगे जो 12 से 13 यूनिट्स में डिवाइड होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक परंपरागत ब्रिगेड में नॉर्मली 5 से 7,000 के करीब जवान होते हैं, और अगर हम डिवीजन की बात करें तो इसमें 10,000 या फिर इससे ज्यादा जवान होते हैं। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप इसके बीच का काम करेगा, यानी जहां जरूरत होगी वहां ये सैनिक पूरी तरह से तैयार रहेंगे।
2: छोटी टुकड़ियों में होने की वजह से आईबीजी ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक में होने वाले युद्ध में खुद को तेजी से ढाल पाने में सक्षम हो सकते हैं। मौजूदा योजना के मुताबिक 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कोर से 4 इंटीग्रेट बैटल ग्रुप और 1 फायर सपोर्ट ग्रुप बनाए जाएंगे।
1: रणक्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और अब आपको कश्मीर से आई एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो किसी मिसाल से कम नहीं है। मिलिए कश्मीर के शोपिया के रहने वाले रऊफ से, जो पिछले 5 सालों से कश्मीर के उन तमाम पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं जहां सैलानियों की वजह से कचरा जमा हो जाता है।
6: बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी मखमली घास से सजे मैदान और दिल को छू लेने वाले नजारे, कुछ ऐसा है हमारा कश्मीर। वो कश्मीर जहां कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती का खजाना बिखेर रखा है, तभी तो हर साल लाखों सैलानी कश्मीर की इन बेहद हसीन वादियों को देखने के लिए उमड़ते हैं। लेकिन कभी कभी सैलानियों की ये रौनक इस हसीन और खूबसूरत घाटी के लिए चुनौती बन जाती है। जैसे जैसे पर्यटकों की तादाद बढ़ती है, कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट पर गंदगी और कचरा भी बढ़ने लगता है, और इसी चुनौतियों से निपटने के लिए कश्मीर के ही रहने वाले रऊफ ने एक बेहतरीन पहल की है।
7: तो लोग आते हैं, लोगों को आना चाहिए, ये आपके लिए ही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये लोगों का एसेट है, ठीक है, ये हर किसी बंदे का एसेट है, और आप इसको उसी तरह से ले लो ताकि ये आपको अपना है, उसी हिसाब से इसको मेंटेन रखिए, ताकि जो आपकी अपना जो सर्टिफिकेशन है, आपको ये हर तरह का पीस दे रहा है, ये नेचर आपको हार्म नहीं कर रहा है, आप नेचर को हार्म कर रहे हो यहाँ पे। और जो है इसको हमें इसकी ज़रूरत है, नेचर को हमारी ज़रूरत नहीं है। अगर ये 100 साल 50 साल भी ऐसे ही रहेगा तो इसको हमारी ज़रूरत नहीं है, ग्रो बाय डिफ़ॉल्ट करेगा। बट जो हमारी प्रॉब्लम है, हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है। अगर हम इसी को तबाह करेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि हमारी अपकमिंग जनरेशन इसका मज़ा उठाएगी और इसका ये नज़ारा देख पाएगी।
6: कश्मीर की जन्नत को बेदाग रखने के लिए दक्षिण कश्मीर के शोपियां का एक युवा एक बेहतरीन मिसाल बनकर उभरा है। मिलिए केलर इलाके के रहने वाले रऊफ से, जो पिछले 5 सालों से उन सभी पर्यटक स्थलों पर लगातार स्वच्छता अभियान चला रहे हैं जहां सैलानियों की वजह से कचरा जमा हो जाता है।
8: केलर के रहने वाले रऊफ ने एक प्रेरणा जरूर दी है उन लोगों के लिए, उन छात्रों के लिए जो पिकनिक के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें जब बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक की वजह से हमारी जो सरसब्ज ज़मीन है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। अगर इंसान में अच्छे इखलाक हो, अच्छा सोच हो, तो बंजर को आबाद कर सकता है, और अगर इंसान में गलत सोच हो, वो सरसब्ज ज़मीन को बंजर करने में कोई कसर बाकी पीछे नहीं रह सकता है।
6: रऊफ की इस पहल का असर भी हुआ। जो काफिला रऊफ ने शुरू किया उसमें धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। युवाओं के साथ ही आज इस अभियान में रिटायर्ड पेशेवर और बुजुर्ग भी पूरे उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं। रऊफ सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए मेहनत नहीं कर रहे, बल्कि उसकी अनदेखी खूबसूरती को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमरलैंड एलिगेंस नाम की एक किताब भी लिखी है। इस किताब में दक्षिण कश्मीर के उन खूबसूरत लेकिन अनदेखे पर्यटक स्थलों का जिक्र है जो अब तक आधिकारिक टूरिज्म मैप से गायब है। शोपियां की इन खूबसूरत और मनमोहक वादियों के बीच रऊफ की ये पहल साबित करती है कि जब युवा अपने समाज और पर्यावरण की जिम्मेदारी उठाते हैं तो तस्वीर यकीनन बदलती है। रऊफ की ये कोशिश न सिर्फ कश्मीर को साफ रख रही है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा संदेश भी है। शोपियां से इरशाद मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
9: कौन सा तेल शनि ग्रह की समस्याओं को दूर कर देता है? किस तेल के प्रयोग से कर्जे उतर जाते हैं? और कौन से तेल का प्रयोग करने से डायबिटीज में सुधार होता है? क्या है ज्योतिष में तेल का महत्व और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
10: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
11: What about me, Jack? What about me?
10: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
12: Well played, Jack. Well played.
10: Jack FM, playing what we want.
13: सोशल मीडिया की एयर हेड का डेडली एक्शन। वुमनली डिस्पाई यूनिवर्स में आलिया का धमाका। मेंटल हेल्थ से लड़कर इंडस्ट्री में बनाई पहचान। आलिया के फिल्मी सफर की अनकही दास्तान। वंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
5: गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक मॉनसून दिखा रहा अपने रंग। सूरत में भारी बारिश के चलते उफान पर तापी नदी, थाड़े में सड़क से लेकर गली तक पानी से लबालब। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले लबालब। पालमपुर की न्यूगल नदी में फंसे 7 पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू। पुलिस प्रशासन के सैलानियों को सतर्क रहने की अपील। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह। पवित्र यात्रा के दूसरे दिन अब तक करीब 30,000 भक्तों ने किए दर्शन। घाटी में सुनाई दे रही बम बम होली की गूंज। अमरनाथ यात्रा के बीच आया एक और गौरवशाली पल। पहलगाम में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में फहराया गया तिरंगा। आस्था, दृढ़ता और वीरता का बना प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को दी विकास की सौगात। जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल के अलावा पचपदरा रिफाइनरी का किया उन्होंने शुभारंभ। गुजरात के सारंड में सेमीकंडक्टर यूनिट का उद्घाटन। भारत मंडपम में देश के सबसे बड़े टॉय एक्सपो का हुआ शुभारंभ। 7 जुलाई तक चलेगा ये एक्सपो। बिजनेस के नए अवसरों को मिलेगा बड़ा मंच।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने यशराज फिल्म्स की पहली वुमन लीड स्पाई थ्रिलर में अपने एक्शन सीक्वेंस से तहलका मचा दिया है। जी हाँ, यूं तो इस अभिनेत्री की इमेज एक सॉफ्ट और सोबर लड़की की है, लेकिन यशराज फिल्म्स ने नारी प्रधान स्पाई थ्रिलर बनाने का फैसला किया तो दाव इसी सॉफ्ट और सोबर इमेज वाली अभिनेत्री पर लगाया। कमाल यह है कि अपनी इमेज के उलट इस अभिनेत्री ने स्पाई यूनिवर्स मूवी में भी दमदार अभिनय कर सबका दिल जीत लिया।

0: आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि यशराज फिल्म्स की वुमन लीड स्पाई यूनिवर्स की पहली फिल्म अल्फा की सीता यानी कि आलिया भट्ट है। जी हाँ, 3 जुलाई को रिलीज हुई अल्फा को बॉक्स ऑफिस पर उस तरह की ओपनिंग नहीं मिली जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आलिया भट्ट अपने एक्शन से दर्शकों का दिल जीत रही है। साफ है कि स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर से शुरू कर आलिया ने अल्फा तक का बेमिसाल सफर तय कर लिया है। ये वही आलिया है सोशल मीडिया पर कभी जिनके मीम्स की भरमार रहती थी। एक समय आलिया की ट्रोलिंग नेटिजंस का स्ट्रगल बन गया था। हालांकि सोशल मीडिया पर आलिया का जो परसेप्शन बना, आलिया की हकीकत उससे बिल्कुल जुदा है।
1: आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी है।
2: And she's such a fine actress. So, ये मूवी में भी टॉप नॉच एक्शन है, बहुत ही फुल पैक्ड एक्शन है।
3: एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वार, पठान, टाइगर 3 और वार 2 जैसी स्पाई यूनिवर्स की धमाकेदार फिल्में दे चुके यशराज फिल्म्स ने पहली बार एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वार, पठान, टाइगर 3 और वार 2 जैसी स्पाई यूनिवर्स की धमाकेदार फिल्में दे चुके यशराज फिल्म्स ने पहली बार जब वुमन लीड स्पाई थ्रिलर अल्फा बनाई तो दांव खेला उस आलिया भट्ट पर सोशल मीडिया पर जिसकी इमेज एयरहेड की रही है। बॉक्स ऑफिस पर अल्फा की ओपनिंग बेशक उम्मीद के मुताबिक नहीं रही, लेकिन यशराज फिल्म्स की पहली वुमन लीड स्पाई यूनिवर्स मूवी में आलिया ने अपने नेल बाइटिंग एक्शन सीक्वेंस और संजीदा अदाकारी के दम पर दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म के कथानक और निर्देशन पर सवाल उठाने वाले भी आलिया की एक्टिंग की दिल खोल कर तारीफ कर रहे हैं।
1: आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी है, सरवरी बाग की एक्टिंग अच्छी है। एक्टिंग में तो दे आर बोर्न एक्टर, तो उसमें तो कोई कमी निकाल नहीं सकता है, लेकिन स्टोरी वाइज जो होनी चाहिए मूवी वो नहीं है।
4: बेसिकली आलिया मैम की जब बॉलीवुड करियर स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, तो उसमें वो काफ़ी एकदम ऐसे होते हैं ना, स्वीट सी टीनेजर टाइप से रोल स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे उन्होंने लव स्टोरीज वगैरह किए, फिर हम सब सरप्राइज हो गए आलिया मैम को गंगूबाई में देख के, एकदम अलग सा रोल। एंड अभी इधर अल्फा में एक्शन वाला रोल, तो अच्छा लगा, वो अपने आप को प्रूव कर रही है कि वो सारे कैरेक्टर्स में फिट हो सकती है।
2: अभी मुझे मूवी से काफ़ी आशाएं थी, क्योंकि इस तरह की जो स्पाई थ्रिलर मूवीज होती हैं, एक्शन मूवीज होती हैं, उसमें आलिया भट्ट की राजी मूवी याद आ जाती है हमेशा। एंड शी इज सच ए फाइन एक्ट्रेस, और ये मूवी में भी टॉप नॉच एक्शन, बहुत ही फुल पैक्ड एक्शन है।
5: ये अल्फा मुझे फिल्म अच्छी लगी है, फिल्म का जो एक्शन है वो काफ़ी तगड़ा है, आलिया भट्ट ने एक्टिंग काफ़ी टॉप नॉच की है, और साथ ही साथ जो शर्वरी है उन्होंने केमिस्ट्री काफ़ी, मतलब दोनों की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी तगड़ी है, तो फिल्म देख कर अच्छा लगा है।
3: साफ है कि पर्दे पर अपनी सॉफ्ट इमेज के लिए मशहूर रही आलिया यशराज फिल्म की पहली नारी प्रधान स्पाई थ्रिलर में निर्माता निर्देशक से लेकर दर्शकों तक की उम्मीद पर 100% खरा उतरी हैं। स्पाई थ्रिलर मूवी अल्फा में अपने एक्शन सीक्वेंस से धमाल मचा रही ये वही आलिया हैं सोशल मीडिया पर जिनकी इमेज कभी अनइन्फॉर्म्ड और इग्नोरेंट यूथ की बन गई थी।
6: Who is the president of India?
7: Pranab Mukherjee.
8: Sorry, sorry.
3: एक समय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आलिया भट्ट के मीम से भरे रहते थे। आलम यह था कि किसी ने तथ्यात्मक रूप से कोई गलत बयानी की तो सोशल मीडिया पर तुरंत उसकी तुलना आलिया भट्ट से कर दी जाती थी। बहरहाल ये आलिया के बारे में सोशल मीडिया यूजर्स या नेटिजन्स का अपना परसेप्शन था। आलिया की रियलिटी नेटिजन्स के परसेप्शन से कोसों दूर है। आपको बता दें कि आलिया को लेकर इस तरह का सोशल मीडिया परसेप्शन इसलिए बन गया था क्योंकि एक बार उन्होंने देश के राष्ट्रपति का नाम गलत बता दिया था। दरअसल बतौर लीड एक्ट्रेस 2012 में आई अपनी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रमोशन के लिए आलिया करण जौहर के शो कॉफी विद करण में अपने को स्टार्स वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ पहुंची थी। करण ने लाइटर मोड में आलिया से भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया और आलिया ने उत्साह में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का नाम बता दिया था, जबकि उस समय देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे।
6: Who is the president of India?
7: आलिया की जिंदगी की गहराई में उतरे बगैर, पूरी सच्चाई जाने बगैर, उस समय देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। आलिया की जिंदगी की गहराई में उतरे बगैर, पूरी सच्चाई जाने बगैर, नेटिजन्स ने ये मान लिया कि आलिया का आईक्यू लेवल बेहद लो है और सामान्य ज्ञान तो शून्य है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है कि आलिया भट्ट अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी ADHD नामक एक रेयर डिजीज से पीड़ित हैं, जिसका पेशेंट कभी कभी जोन आउट हो जाता है। जोन आउट का मतलब ये है कि पेशेंट फिजिकली कहीं और होता है, लेकिन उसका दिमाग अचानक किसी दूसरे जोनर में चला जाता है।
9: मैं बचपन से जोन आउट करते आई हूँ, हमेशा क्लासरूम में भी जोन आउट होती थी, कॉन्वर्जेशन में जोन आउट होती हूँ। तब रिसेंटली मैंने एक पर्सनैलिटी जो भी क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और मुझे पता चला कि मैं ADHD के स्पेक्ट्रम में काफ़ी हाई हूँ। मुझे ADHD है, तो अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर।
7: आपको बता दें कि ADHD डिजीज का IQ लेवल से कोई रिलेशन नहीं है। काफी हाई IQ वाले लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है। होता यही है कि कभी कभी इसका पेशेंट जोन आउट हो जाता है और उस दौरान कोई ऐसा बयान दे सकता है या ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकता है जिससे उसके IQ लेवल पर सवाल उठने लगे। आपको बता दें कि आलिया का न सिर्फ IQ लेवल बल्कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी नेक्स्ट लेवल का है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि साल 2012 से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी आलिया कैमरा ऑन होने के बाद कभी जोन आउट नहीं होती। अलबत्ता कैमरे के सामने आते ही आलिया इतनी फोकस्ड हो जाती हैं कि उन्हें अपने किरदार और संवाद के सिवा कुछ भी ध्यान नहीं रहता।
9: I'm so present जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ, चाहे मैं वो किरदार में प्रेजेंट हूँ, मतलब द पार्ट दैट आई एम प्लेइंग, आई एम प्रेजेंट एज द कैरेक्टर, बट आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। और फिर अभी ऑफ कोर्स आफ्टर रहा, जब भी मैं उसके साथ रहती हूँ, आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। तो ये 2 आई थिंक मोमेंट्स है मेरी लाइफ में जहाँ पे मैं सबसे ज्यादा पीसफुल फील करती हूँ।
7: साफ है कि आलिया भट्ट अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को भली भांति पहचानती हैं। यही वजह है कि कॉफी विद करण में गलत जवाब देने के बाद जबरदस्त तरीके से ट्रोल होने पर भी आलिया पूरी तरह काम एंड कूल रहीं। काफी वक्त बाद आलिया से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने पूरे ह्यूमर के साथ जवाब देकर ट्रोलर्स को भी ट्रोल कर दिया।
10: मैं अभी ऑनेस्टली बोर हो गई उस जोक से, मेरे को एक्चुअली नया जोक चाहिए। आई वांट टू मेक अ मिस्टेक अगेन, हाँ कोई, मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं क्या गलती करूँ कि फिर से लोग उसको 1-2 साल और खींचेंगे।
7: आपको बता दें कि आलिया बॉर्न एक्ट्रेस हैं। संयोग से इनका जन्म एक ऐसे घराने में हुआ जहाँ माहौल पूरी तरह फिल्मी था। मार्च 1993 को हुए आलिया के जन्म से काफी पहले से पिता महेश भट्ट अर्थ, सारांश, नाम, आशिकी, सड़क और दिल है कि मानता नहीं जैसी कल्ट और आइकॉनिक फिल्मों का निर्देशन कर इंडस्ट्री में अलग पहचान स्थापित कर चुके थे। आलिया की मां सोनी राजदान भी 36 चौरंगी लेन, मंडी, सारांश और त्रिकाल जैसी 8 फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी से क्रिटिक्स की शाबाशी हासिल कर चुकी थीं। आलिया ने भी जब से होश संभाला एक्टिंग को छोड़कर किसी दूसरे काम का तसव्वुर इनके मन में एक बार भी नहीं हुआ।
10: हाँ, आई थिंक मैं हमेशा कहती कि मैं एक्शन पे ही पैदा हुई थी, अपनी माँ की कोक से। आई डोंट थिंक देयर वाज दैट 1 सेकंड आल्सो कि मैं दुनिया में आई, मुझे उस सेकंड पे ही पता था कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है और मुझे एक्टर बनना है और मुझे एक्टिंग करनी है। आई थिंक उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था।
7: जिन लोगों ने आलिया को अनइन्फॉर्म्ड यूथ का एम्बेसडर बना दिया था, उन्हें ये जानना चाहिए कि आलिया भट्ट जब सिर्फ 4 साल की थी तभी उन्होंने श्यामक डावर डांस एकेडमी की समर क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। बात सिर्फ इतनी नहीं है, डांस एकेडमी में 4 साल की आलिया इंडस्ट्री की प्रेस्टिजियस फैमिली का तगमा लेकर नहीं बल्कि लर्निंग हंगर के साथ जाती थी। यही वजह है कि बाकी बच्चों के मुकाबले वो ज्यादा अच्छे से चीजों को ग्रैस्प करती थी। खुद श्यामक डावर ने आलिया की तारीफ करते हुए एक बार कहा था कि आलिया सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेती हैं।
9: श्यामक डावर जी के जो समर कैंप समर डांस क्लासेस थे या वो एक्चुअली मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का बहुत ही अहम हिस्सा था एंड आई रिमेम्बर दोज मोमेंट्स वेरी क्लियरली क्योंकि जेन्युइनली इम्पैक्ट मेरी लाइफ में काफी था क्योंकि कॉन्फिडेंस लोगों के सामने डांस करना फ्री बनना ऐसे फील करना कि आप सबसे छोटे हो पर फिर भी बड़े हो और डांस करना है।
7: 4 की उम्र में श्यामक डावर की डांस क्लास ज्वाइन करने वाली आलिया 7 साल की होते होते नृत्य कला में इतनी पारंगत हो गई कि स्कूल के एक डांस कंपटीशन में श्यामक डावर ने उन्हें हायर क्लास की छात्राओं के बीच भेज दिया क्योंकि डावर को ये भरोसा हो गया था कि हायर क्लास की छात्राओं के बीच भी आलिया बेहतर परफॉर्म करेंगी। हालांकि तब मासूम आलिया के साथ एक मजेदार वाकया भी पेश आया था।
9: क्लास में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था मेरा तो श्यामक सर ने मुझे एक सीनियर बैच में डाल दिया तो मैं 7 साल की थी और मैं क्लास के अंदर आई और इंस्ट्रक्टर कंफ्यूज हो गए कि आप ये क्लास में हो क्योंकि इट वॉज देवर लिटरली अडल्ट्स इन दैट क्लास और मैंने बोला हाँ श्यामक सर लाइक आई एम सपोज टू कम इन दिस क्लास तो पहले उनका क्वेश्चन था हाउ ओल्ड आर यू तो मैंने बोला 7 But then immediately मैंने बोला, but it's my birthday tomorrow. I'm going to be 8 tomorrow.
7: दिलचस्प बात तो यह है कि अगले दिन आलिया का जन्मदिन नहीं था, लेकिन उन्होंने झूठ इसलिए बोल दिया क्योंकि उन्हें डर हो गया था कि कम उम्र को देखते हुए उन्हें कहीं नीचे की क्लास में न भेज दिया जाए। इस लेवल का आत्मविश्वास था आलिया के भीतर बचपन से ही। कमाल ये है कि यही आत्मविश्वास तब भी बना रहा जब आलिया ने रुपहले पर्दे पर चुनौतीपूर्ण किरदार निभाना शुरू किया। इंडस्ट्री के स्टार फैमिली से आने वाले नेपो किड्स आमतौर पर फिल्में साइन करने से पहले अपने घर के अनुभवी सदस्यों से सलाह मशविरा करते हैं, लेकिन आलिया का हिसाब अलग है। वो फिल्में साइन करने से पहले अपने पिता महेश भट्ट या माँ सोनी राजदान यहाँ तक कि पति रणबीर कपूर से भी क्लियरेंस लेना जरूरी नहीं समझती बल्कि इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स के आधार पर खुद ही फैसले लेती हैं।
9: मैं एक्चुअली अपना माइंड मेकअप करने के बाद डिस्कस करती हूँ मैं बिकॉज आई एम नॉट समबडी हु नीड्स टू बी कन्विंस्ड फॉर अ फिल्म एक तो बात यह है और दूसरी बात यह है कि मेरा इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स ही सबसे प्योर रिस्पॉन्स होता है तो अगर कोई मैं इंस्टिंक्टिवली अगर एक्साइट हो जाऊंगी और किसी ने अगर बोल दिया कि मतलब ऐसे मत करो आई एम जस्ट गिविंग इफ केस सिनेरियो मेरे साथ हुआ नहीं है बट अगर बोल दिया तो फिर मेरे दिमाग में डाउट पैदा हो जाएगा तो मेरी जर्नी मेरी है और मेरी डिसीजन भी मेरी होनी चाहिए इसलिए दैट्स द रीजन नॉट फॉर एनी अदर रीजन।
7: आप समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया की नजर में अनइन्फॉर्म्ड सेलेब्स रही आलिया की प्रतिभा उन्हें लेकर बने परसेप्शन से बिल्कुल अलग है। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से किक हुए एकाद अपवादों को छोड़ दें तो आलिया के लेवल का आईक्यू और टैलेंट हिंदी सिनेमा के 100 साल के इतिहास में इक्का दुक्का अभिनेत्रियों में ही नजर आएगा।
0: अल्फा मूवी में अपने एक्शन से धमाल मचा रही आलिया यू तो बॉलीवुड की एक दमदार फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। लेकिन रुपहले पर्दे के अपने यादगार सफर में आलिया ने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साए का सहारा कभी नहीं लिया। आलिया के पिता महेश भट्ट बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा निर्देशकों में शुमार है जबकि माँ सोनी राजदान आज फिल्मों की आइकन रही है। लेकिन आलिया ने अपने फिल्मी सफर में आगे बढ़ने के लिए कभी अपने माता पिता से मदद की उम्मीद नहीं की। शुरू से ही उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट पर भरोसा किया और इसका असर ये है कि आलिया आज बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेट अभिनेत्रियों की फेहरिस्त में काफी ऊंचा मकाम हासिल कर चुकी है।
3: इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नेपो किड्स के सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक मिलने की रवायत नई नहीं है। हालांकि ज्यादातर नेपो किड्स अपने पारिवारिक वटवृक्ष के घने साय में अंकुरित होकर फलते फूलते हैं और उसी साय में फना भी हो जाते हैं, पर कुछ नेपो किड्स ऐसे भी हैं जो मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर अपनी पारिवारिक लिगेसी से निकलकर अलग साम्राज्य स्थापित करते हैं। आलिया भट्ट दूसरी कैटेगरी की नेपो किड हैं। बतौर लीड हीरोइन अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने अगर प्रतिभा नहीं तो जुनून, लगन और मेहनत की तो मुनादी कर ही दी थी। तनुजा चंद्रा के निर्देशन में बनी और 1999 में रिलीज हुई आइकॉनिक मूवी संघर्ष में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू करने वाली आलिया भट्ट को हीरोइन के तौर पर डेब्यू करने का मौका बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के जरिए दिया था। आलिया की उम्र तब महज 18 साल थी, लेकिन उनका फिगर फिल्म के किरदार के लिहाज से फिट नहीं था। ऑडिशन के दौरान करण जौहर ने आलिया के लिए कड़ी शर्त रख दी कि उन्हें अपना वेट लॉस करना होगा। आलिया टीनेज में ही अपने करियर को लेकर कितनी संजीदा थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 3 महीने के भीतर उन्होंने अपना वेट 68 किलो से कम करके 51-52 किलो कर लिया। क्योंकि बचपन से बस एक ही तो सपना था आलिया का, सितारा बनकर सिल्वर स्क्रीन पर चमकने का। इसीलिए शूटिंग के दौरान सेट पर पहली बार जब कैमरा ऑन हुआ तो उनका उत्साह चरम पर पहुंच गया।
9: वो कहते हैं ना, एक्सट्रीम जॉय फीलिंग आता है कि कैमरा के सामने वो शूटिंग हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, बट यू फील के अंदर से कुछ। इवन दो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाज अ ब्लर, जो पहला गाना जो मेरी लाइफ की पहली दिन थी शूटिंग की, वो राधा के लिए थी। तो एक शॉट था, मेरे को नीचे आना था, टर्न करके ऐसा कुछ करना था, फिर दुपट्टा उठा के कैमरा में देखना था और ब्लोअर फैन आ रहा था, उसी में ही मेरे को ऐसे बहुत मजा आ गया।
3: पहली बार कैमरे के सामने आने के बाद आलिया बेशक उत्साहित थी, लेकिन फिल्म साइन करने के बाद वो फेल्योर के फियर साइकोसिस का शिकार हो गई थी। आलिया को ये डर सताने लगा कि अगर वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाई या फिल्म पिट गई तो आगे करेंगी क्या। पिता महेश भट्ट को जब बेटी के फियर साइकोसिस के बारे में पता चला तो उन्होंने अलहदा तरीके से आलिया को उससे बाहर निकालने की कोशिश की। महेश भट्ट ने बेटी को विशेष फिल्म्स के अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि मन में जो भी डर है, आशंका है, उसका इजहार सबके सामने करो।
9: For some reason, my father is outstanding in a crisis situation. जब भी आप क्राइसिस में हो, आप उनको फोन करो, he has the most calm tone and he'll deal with the situation in the best way. In this particular situation, उन्होंने decide किया, office आ जाओ, सबके सामने बोलो तुम कैसे फील कर रही हो। जो एक्चुअली एक बहुत अजीब सीक्वेंस सिचुएशन है, क्योंकि आप पहले तो इतना वल्नरेबल फील करो, सबके सामने उठ के बोलना है कि मैं ऐसे फील कर रही हूँ।
3: महेश भट्ट ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने का कोई मनोवैज्ञानिक अनुभव था, ये तो नहीं बता, लेकिन उनका ये अनोखा फॉर्मूला आलिया के लिए क्लिक जरूर कर गया। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डर का डंका बज जाने के बाद आलिया के अंदर की घुटन कम हो गई। वैसे 19 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर बॉक्स ऑफिस पर तो कामयाब रही, लेकिन आलिया की इमेज बॉर्बी डॉल से कुछ ज्यादा नहीं बन पाई। उधर क्रिटिक्स ने भी आलिया के डेब्यू को महेश भट्ट के प्रभाव से जोड़ दिया। लेकिन फिल्म हिट होने के बाद बड़े पर्दे पर बड़ा मकाम हासिल करने के आलिया के संकल्प के साथ उनका आत्मविश्वास भी जुड़ गया। अगली ही फिल्म हाईवे में अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर आलिया ने क्रिटिक्स को पहले से तय परसेप्शन को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। 21 फरवरी 2014 को रिलीज हुई हाईवे में वीरा त्रिपाठी के डी ग्लैमरस किरदार में
7: बेहतरीन अभिनय का तड़का मारकर आलिया ने उन्हें बॉर्बी डॉल कहने वालों का मुंह बंद कर दिया। दरअसल अभिनय को लेकर आलिया का फलसफा शुरू से ही कन्वेंशनल नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिव रहा है।
10: कैमरे के सामने का जो एक फीलिंग होता है ना, उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता है। एट द एंड ऑफ द डे मैं जितना भी चाहे डायलॉग सीख लूँ या कुछ रट्टा मार लूँ, फिजिकल ट्रेनिंग कर लूँ, अपने आप को कमरे में बंद करके मेथड एक्टिंग भी कर लूँ, अगर कैमरे के सामने मुझे फीलिंग नहीं आ रही है तो कैमरा पकड़ लेगा और मेरी परफॉर्मेंस जो है उसमें दिख जाएगी। तो तैयारी जारी रहती है फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं कैमरे के सामने सिर्फ फील करने की कोशिश करती हूँ।
7: हाईवे के बाद आलिया ने इंडस्ट्री में मुनादी कर दी कि मीना कुमारी और मधुबाला की खींची हुई अदाकारी की लीक इस युग में भी मिटी नहीं है। 2016 में आई उड़ता पंजाब के बाद तो क्रिटिक्स ने भी स्वीकार कर लिया कि आलिया की अदाकारी किसी एक जोनर तक महदूद नहीं है। उड़ता पंजाब के एक महले कुचैले भोजपुरी लड़की के किरदार में आलिया ऐसे गुम हो गई कि पहचानना मुश्किल हो गया कि ये वही राधा हैं जिसने डिस्को दीवाने पर ठुमके लगाए थे। उड़ता पंजाब के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। ২০১৮ में आई राजी में एक कश्मीरी जासूस के किरदार में आलिया ने अपने अभिनय से इतनी जान फूंक दी कि 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली कुछ एक महिला प्रधान फिल्मों में शुमार हो गई। वहीं 2019 में आई गली बॉय में सफीना के किरदार को आलिया ने अपनी एक्टिंग से जीवंत कर दिया। गली बॉय में नारी को प्रकृति से सहज प्राप्त कोमलता और जरूरत पड़ने पर प्रकट होने वाली आक्रामकता के मिश्रण को आलिया ने इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद तो आलिया बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइनों की फेहरिस्त में शुमार हो गईं। 25 फरवरी 2022 को रिलीज हुई गंगूबाई काठियावाड़ी आलिया के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। संजय लीला भंसाले की इस फिल्म में आलिया ने एक वेश्यालय की मालकिन और माफिया क्वीन के चुनौतीपूर्ण किरदार को सहजता के आईने में उतार कर सबको हतप्रभ कर दिया। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया को सबसे प्रेस्टीजियस माने जाने वाले नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया।
11: गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं अभिनेत्री आलिया भट्ट।
7: 2022 आलिया के लिए बहुत इवेंटफुल साल साबित हुआ। साल 2022 में कोरोना की मार से पस्त हो चुकी फिल्म इंडस्ट्री दोबारा उठ खड़े होने की जद्दोजहद कर रही थी और इसी साल आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी के अलावा RRR और ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जैसी फिल्में रिलीज हुईं। 2022 में ही उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर किस्मत आजमाई और डार्लिंग्स प्रोड्यूस की, जो OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और सफल भी रही। 2023 में आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और 2024 में आई जिगरा ने भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया। साल 2027 में आलिया संजय लीला भंसाली के एक और शाहकार लव एंड वार में भी नजर आने वाली हैं। साफ है कि आलिया बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट अभिनेत्रियों की सूची में शुमार हो चुकी हैं। आज आलिया अपनी एक फिल्म के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस लेती हैं।
0: तो बंदे में दम में आज आपने आलिया भट्ट के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
1: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
2: कौन सा तेल शनि ग्रह की समस्याओं को दूर कर देता है? किस तेल के प्रयोग से कर्जे उतर जाते हैं? और कौन से तेल का प्रयोग करने से डायबिटीज में सुधार होता है? क्या है ज्योतिष में तेल का महत्व और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: सोशल मीडिया की एयरहेड का डेडली एक्शन। वुमनली डिस्पाई यूनिवर्स में आलिया का धमाका। मेंटल हेल्थ से लड़कर इंडस्ट्री में बनाई पहचान। आलिया के फिल्मी सफर की अनकही दास्तान। वंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: सोच दिखाती
2: है गुड न्यूज टुडे, इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक मॉनसून दिखा रहा अपने रंग। सूरत में भारी बारिश के चलते उफान पर तापी नदी। ठाणे में सड़क से लेकर गली तक पानी से लबालब। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले लबालब। पालमपुर की न्यूगल नदी में फंसे 7 पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू। पुलिस प्रशासन की सैलानियों को सतर्क रहने की अपील। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह। पवित्र यात्रा के दूसरे दिन अब तक करीब 30,000 भक्तों ने किए दर्शन। घाटी में सुनाई दे रही बम बम भोले की गूंज। अमरनाथ यात्रा के बीच आया एक और गौरवशाली पल। पहलगाम में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में फहराया गया तिरंगा। आस्था दृढ़ता और वीरता का बना प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को दी विकास की सौगात। जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल के अलावा पचपदरा रिफाइनरी का किया उन्होंने शुभारंभ। गुजरात के सारंड में सेमीकंडक्टर यूनिट का उद्घाटन। भारत मंडपम में देश के सबसे बड़े टॉय एक्सपो का हुआ शुभारंभ। 7 जुलाई तक चलेगा ये एक्सपो। बिजनेस के नए अवसरों को मिलेगा बड़ा मंच।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: भविष्य के युद्ध छोटे देश और टेक्नोलॉजी आधारित होंगे, लिहाजा युद्ध जैसे हालात में बढ़त उसी को मिलेगी जो दुश्मन से 10 कदम आगे की तैयारी रखेगा। और भारत को भी ये अच्छे से पता है कि उसे खतरा दो मोर्चों से है, लिहाजा तैयारी भी जबरदस्त होनी चाहिए। बास बटालियन, रुद्र ब्रिगेड, अश्विन ड्रोन प्लाटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, ये उसी तैयारी का हिस्सा है जिनका मकसद सेना को अधिक तेज, सक्षम, सटीक और तकनीक से जुड़ा बनाना है।
1: जय यानी जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता, इनोवेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का दिया हुआ नारा, और मल्टी डोमेन ऑपरेशन की मुहिम के तहत रुद्रा ब्रिगेड, भैरव बटालियन, अश्नि ड्रोन प्लेटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्रा बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड और आईबीजी यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जैसे कदम इसी सोच का हिस्सा है।
0: हाल के अनुभवों ने यह साफ कर दिया है कि भविष्य में सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जानकारी, सर्विलांस वेपन, कम्युनिकेशन सिस्टम और कमांडर कितनी तेजी से एक साथ काम कर पाते हैं। इसीलिए सेना अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के बजाय अधिक समन्वित और तेज व्यवस्था की ओर बढ़ती जा रही है।
1: भविष्य में युद्ध और अधिक ज्वाइंट, इंटीग्रेटेड और थिएटर ओरिएंटेड होगा, इसलिए हमारी दिशा स्पष्ट है, साथ देखना, साथ निर्णय लेना और साथ कार्रवाई करना। भारतीय सेना में परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर चलती आ रही। इन दो वर्षों में डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग, आधुनिकीकरण, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, जॉइंटनेस, सिस्टम रिफॉर्म और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर तीव्र गति से काम हुआ है।
0: भारतीय सेना भविष्य की जंग के लिए खुद को तेजी से तैयार कर रही है। इसी दिशा में सेना ने बास बटालियन नाम से खास ड्रोन यूनिट बनाने का फैसला किया है। बास बटालियन में ट्रेन जवानों की एक स्पेशल टीम होगी जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम का संचालन और प्रबंधन करेगी। इन बटालियनों का काम सीमा पर लगातार निगरानी रखना, दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी जुटाना और जरूरत पड़ने पर सटीक कार्रवाई में मदद करना होगा। सूत्रों के मुताबिक बास बटालियन को आर्मी एविएशन कोर के अंतर्गत रखा जा सकता है। बास बटालियन फ्रंटलाइन यूनिट्स और खुफिया सिस्टम के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करेगी जिससे दुश्मन का दाव धरा का धरा रह जाएगा।
2: इंडियन आर्मी में करीबन 380 इन्फेंट्री बटालियंस हैं। एक इन्फेंट्री बटालियन में करीबन 1000 जवान होते हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि इंडियन आर्मी के जो बटालियंस हैं उनको आस्ते आस्ते बास बटालियन

0: लॉयटर कर पाएंगे, यानी वहां पर 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट शत्रु की लोकेशन के ऊपर घूमते रहेंगे।
1: अभी सेना की अश्नी ड्रोन पलटन पैदल सेना के साथ मिलकर कम दूरी की निगरानी करती है। दिव्यास्त्र और शक्तिबाण जैसी इकाइयां हमलावर ड्रोन और लाइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल करती हैं। बास बटालियन इन सबसे ऊपर की कैटेगरी में होगी और लंबी दूरी की निगरानी, लक्ष्य पहचान और बड़े स्तर पर ड्रोन संचालन की जिम्मेदारी संभालेगी। ड्रोन्स का काम अब केवल निगरानी करना या फिर विशेष अभियानों तक सीमित नहीं, बल्कि ड्रोन की ताकत आज की तारीख में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ड्रोन न केवल दुश्मन पर हमला कर सकते हैं बल्कि साथ ही साथ जानकारी जुटा सकते हैं। इसी के साथ साथ रेकी के लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है और साथ ही साथ हमारे सैनिकों के लिए भी ड्रोन सबसे ज्यादा उपयोगी साबित हो रहा है। पहले पैदल सैनिकों को दुश्मन पर हमला करने के लिए तोपखाने या वायुसेना के बैकअप का इंतजार करना होता था, लेकिन अब अश्वन प्लाटून का ऑपरेटर खुद दुश्मन को स्क्रीन पर देखता है और पलक झपकते ही ड्रोन से हमला कर देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के रण ऑफ कच्छ तक करीब 1000 ड्रोन से हमला किया था। भारतीय सेना की एंट्री एयरक्राफ्ट गन और काउंटर ड्रोन सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। इसके बाद सेना ने ड्रोन फोर्स खड़ी करने का संकल्प लिया और भैरव बटालियन, दिव्यास बैटरी और अश्नी प्लाटून जैसी नई इकाइयों की शुरुआत की। सेना के हर इन्फेंट्री बटालियन में अश्नी ड्रोन प्लाटून बनाई गई है। एक प्लाटून में 20 सैनिक हैं जिन्हें FPV, सर्विलांस, स्वॉर्म ड्रोन और लॉयटरिंग म्यूनिशन चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। भारतीय सेना की करीब 380 इन्फेंट्री बटालियन में ऐसी इकाइयां शामिल की जा रही हैं।
0: हर इन्फेंट्री बटालियन में जब वो बाज बटालियन में कन्वर्ट होंगे तो एक एक अश्नी प्लाटून डेवलप की जाएगी। इस डिप्लॉयमेंट के बाद हर इन्फेंट्री बटालियन की जो अश्नी प्लाटून होगी उनको करीबन 20 सोल्जर्स ऐसे ट्रेन करने पड़ेंगे जो कि रिकनेसेंस ड्रोन को उड़ा सकें, अटैक ड्रोन को कामयाबी से अटैक करवा सकें। सबसे बड़ी बात है जो सुसाइड ड्रोन होते हैं, कामिकाजी ड्रोन, उसमें जो FPV होता है, फर्स्ट पर्सन व्यू, यानी ऑपरेटर जो है वो देख सकता है कि ड्रोन कहाँ उड़ रहा है, किस चीज़ को निशाना बना रहा है। FPV रोल में इन 20 सोल्जर्स को ट्रेन किया जाएगा। हर यूनिट में करीबन शुरुआती दौर में 10-10 ड्रोन दिए जा रहे हैं, जिसमें 4 ड्रोन तो रिकॉग्निशंस ड्रोन होंगे, यानी वो दुश्मन की टोह लेकर वो कमांडर को सूचित करेंगे कि दुश्मन का टारगेट कहां पर है।
1: सेना के भीतर अलग अलग आर्म्स, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, सिग्नल के बीच तालमेल और एकीकरण पर जोर दिया जा रहा है और इसी तैयारी का हिस्सा है शक्तिमान रेजिमेंट। ये भारतीय सेना की तोपखाना के अंडर बनाई जा रही एक विशेष और आधुनिक ड्रोन केंद्रित इकाई है जो दुश्मन की गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी और लक्ष्य निर्धारित करने में सक्षम होगी। शक्तिमान रेजिमेंट के जवान पारंपरिक तोपों के बजाय अनमैन्ड एरियल व्हीकल के जरिए दुश्मन पर सटीक और घातक हमला करेंगे। भविष्य के युद्धों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना की ओर से 15 से 20 शक्तिमान रेजिमेंट तैयार की जा रही हैं। ये रेजिमेंट स्वॉर्म ड्रोन, लॉयटरिंग म्यूनिशन और लॉन्ग रेंज UAV से लैस हैं, जिनकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक होगी।
0: हमारी आर्टिलरी के जो यूनिट्स हैं उनमें 20 एडिशनल शक्तिमान रेजिमेंट्स रेज की जा रही हैं। इन आर्टिलरी यूनिट्स में लॉन्ग रेंज UAV और लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का डिप्लॉयमेंट होगा। आमतौर पे जो ड्रोन्स इन्फेंट्री यूनिट्स के पास होंगी वो 5-10 किलोमीटर की दूरी तक ऑपरेट कर पाएंगी, लेकिन जो ड्रोन और UAV इन शक्तिमान आर्टिलरी रेजिमेंट्स को दिए जा रहे हैं उनकी रेंज 10-500 किलोमीटर तक होंगी, यानी डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए उनका इस्तेमाल किया जाएगा।
1: शक्तिवान रेजिमेंट सैनिकों को जोखिम में डाले बिना दुश्मन की सीमा

0: के भीतर घुसकर सटीक पिन पॉइंट स्ट्राइक करने की क्षमता रखती है। आर्टिलरी में 15 शक्तिबाण रेजिमेंट बनाई जा चुकी हैं और 11 बनाई जानी है। जो तोपखाना रेजिमेंट शक्तिबाण में तब्दील नहीं होंगी उनमें दिव्यास्त्र बैटरी होगी। शुरू में 34 दिव्यास्त्र बैटरी बनाई जा रही है। दिव्यास्त्र बैटरी के पास ड्रोन और लाइटरिंग एम्यूनिशन होंगे।
1: पारंपरिक आर्टिलरी में केवल तोप और रॉकेट होते थे, वहीं दिव्यास्त्र की अगर बात करें तो ये तोपों को एक हाईटेक वर्जन देता है। सीधे तौर पर कहा जाए तो ये डिजिटली और मानव रहित तकनीकों से इसे जोड़ता है। पारंपरिक तोपों और आधुनिक मानव रहित प्रणालियां यानी कि ड्रोन्स का एक हाइब्रिड मिश्रण हम इसको कह सकते हैं, जो दुश्मन के इलाके में घुसकर सही और सटीक हमला कर सकता है। वैसे योजना 35 से 40 ऐसी दिव्यास्त्र बैटरियां और बनाने की भी है।
0: दिव्यास्त्र बैटरियां पारंपरिक बोफोर्स या फिर 9 वज्र जैसी तोपों के साथ लाइटिंग म्यूनिशन और निगरानी ड्रोन्स को एक साथ ऑपरेट करती हैं। दिव्यास्त्र बैटरी के ड्रोन पहले दुश्मन के बंकर, ठिकाने या आगे बढ़ते टैंकों को लाइव ट्रैक करते हैं और तुरंत उनके सटीक कोऑर्डिनेट्स तोपखाने को भेजते हैं। इस तकनीक से तोपखाने की मारक क्षमता और सटीकता कई गुना बढ़ जाती है, जिससे दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक पिन पॉइंट हमले किए जा सकते हैं।
2: इंडियन आर्मी की दिव्यास्त्र बैटरी जो हैं वो आर्मी की आर्टिलरी का एक हिस्सा होंगी। इन यूनिट्स में जो रिकनेसेंस ड्रोन होंगे वो आर्मी की जो कन्वेंशनल तोपे हैं जैसे कि बोफोर्स की गन्स, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके फायर पावर का ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगी। दिव्यास्त्र बैटरीज में रिकनेसेंस ड्रोन्स होंगे जो कि युद्ध भूमि के पीछे यानी टैक्टिकल बैटल एरिया के आगे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूरी तक रिकनेसेंस करेंगी और टोह लेंगी कि दुश्मन जो है किस दिशा से हमारे ऊपर हमला करने आ रहा है।
0: भारतीय सेना ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर अपना दबदबा कायम करने और आधुनिक नेटवर्क केंद्रित युद्धों को जीतने के लिए विशेष इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड्स का गठन करने का फैसला किया है। ये सेना के आधुनिकीकरण या रीस्ट्रक्चरिंग अभियान का एक क्रांतिकारी हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक हथियारों जैसे तोपों या टैंकों के चलने से पहले ही दुश्मन के संचार और सैन्य तंत्र को अंधा और बहरा बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड के मुख्य कार्यों में एक है स्पेक्ट्रम डोमिनेंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल, जो दुश्मन के रडार, ड्रोन, मिसाइल और वायरलेस सेट के सिग्नल्स को ब्लॉक कर पूरे स्पेक्ट्रम पर कब्जा करती है। दूसरा है दुश्मन के सिस्टम्स को जाम करना। इसमें दुश्मन के रडार नेटवर्क, एयर डिफेंस कमांड सेंटर्स और मानव रहित विमानों के डेटा लिंक को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया जाता है। अगला सिग्नल इंटेलिजेंस, इससे सैनिक दुश्मन के रेडियो सिग्नल्स और मोबाइल सैटेलाइट बातचीत को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, जिससे दुश्मन की अगली रणनीति और लोकेशन का पहले ही पता चल जाता है। किलवेव इंटीग्रेशन, ये ब्रिगेड रियल टाइम खुफिया जानकारी को तुरंत अपनी तोपखाना और एयर डिफेंस यूनिट्स के साथ साझा करती है, जिससे चिन्हित किए गए खतरों को पलक झपकते ही नष्ट किया जा सकता है।
2: भविष्य के किसी भी युद्ध में इंडियन आर्मी की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड का मुख्य काम ये होगा कि दुश्मन जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहा है अपने कमांडर्स के साथ या अपनी लोअर फॉर्मेशन के साथ, उसको मॉनिटर करना। अब दुश्मन के पास अलग अलग तरह की कम्युनिकेशन सेट होते हैं, कुछ हाई फ्रिक्वेंसी यानी HF पे काम करते हैं, कुछ VHF यानी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज पर काम करते हैं, आजकल ज़्यादातर सेट UHF यानी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं। तो इसकी जो सिग्नल इंटेलिजेंस है उसको भांप के उसको सुनना और वो जो वॉइस रिकॉर्डिंग है उसको कमांडर के सामने देना, इनका पहला काम होगा।
0: भारतीय सेना में बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण अब सिर्फ नए हथियार या उपकरण लेने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य सेना की सोच, ढांचे, प्रशिक्षण, तकनीक, कार्यप्रणाली और मानव संसाधन को एक साथ आगे बढ़ाना है।
1: साल 2026 में भारतीय सेना में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पहली बार इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप सेना में शामिल किए जाएंगे। कुल 5 आईबीजी बनाई गई है जो कि 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के तहत काम करेंगी। हर आईबीजी की कमान मेजर जनरल रैंक के अधिकारी के पास होगी। इसके अलावा चीफ ऑपरेशन ऑफिसर्स का नया पद भी बनाया गया है जिसकी जिम्मेदारी होगी ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी के पास।
0: एक पारंपरिक ब्रिगेड में सिर्फ एक तरह की सेना होती है, जैसे सिर्फ पैदल सेना या फिर आर्टिलरी। उन्हें तोपखाने या फिर डिफेंस के सपोर्ट के लिए अच्छे मुख्यालयों से मंजूरी और यूनिट्स के आने का इंतजार करना पड़ता है। इसके उलट प्रत्येक आईबीजी एक आत्मनिर्भर इकाई है जिसमें युद्ध के लिए जरूरी सभी अंग पहले से ही एक ही कमांडर के तहत एकीकृत होते हैं। आईबीजी की संरचना क्या है वो भी आपको बताते हैं। इसमें इन्फेंट्री जमीनी मोर्चे पर कब्जा करने और लड़ने के लिए पैदल सैनिक, आर्म्ड तेजी से आगे बढ़ने और दुश्मन की रक्षा पंक्ति तोड़ने के लिए टैंक और मैकेनाइज्ड गाड़ियां, आर्टिलरी जिसमें लंबी दूरी तक भारी बमबारी के लिए दिव्यास्त्र बैटरी या फिर पारंपरिक तोपें होती हैं, एयर डिफेंस जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोन से हवा में सुरक्षा मुहैया कराता है, लॉजिस्टिक और इंजीनियर्स इनका काम रास्ते के बारूदी सुरंगों को हटाना, पुल बनाना और गोला बारूद की त्वरित सप्लाई करना होता है। साथ ही आधुनिक विंग्स इसमें शक्तिबान रेजिमेंट के ड्रोन दस्ते और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स भी सीधे शामिल होती हैं। ये सब मिलकर एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की संरचना करते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो आईबीजी एक सैन्य ग्रुप है जिसमें सेना के लगभग हर प्रमुख अंग के सैनिक शामिल होंगे।
2: टैक्टिकल बैटल एरिया में आमतौर पर आर्टिलरी यूनिट्स काम करती हैं, टैंक रेजिमेंट्स काम कर रहे होते हैं, इन्फेंट्री बटालियंस आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं और इसी तरह से उनको सपोर्ट भी मिलता है। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स जो है युद्ध भूमि में उनको पेट्रोल, डीजल, स्पेयर पार्ट्स, अम्यूनिशन सप्लाई करती है। आर्मी सप्लाई कोर जो है वह एडवांसिंग कॉलम्स कोर राशन मुहैया कराती है। 10,000 ट्रुप्स एक डिवीजन के अगर आगे बढ़ रहे हैं या 30,000 ट्रुप्स एक कोर में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें दिन में 3 बार खाना भी तो खाना है। 30,000 सोल्जर्स को पानी पिलाने का काम बहुत ही मैराथन जॉब है क्योंकि वो 30,000 सोल्जर्स जब युद्धभूमि में लड़ रहे हैं तो कोई दाएं हैं, कोई बाएं हैं, कोई सामने 100 किलोमीटर है, कोई पीछे 10 किलोमीटर है। इन सबको युद्धभूमि में पानी पिलाना, रेगिस्तान है ना, जंगल है या हिमालय की पहाड़ियां हैं, पानी आसानी से नहीं मिलता। तो ये काम सारे जितने इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मी यूनिट्स हैं और सपोर्ट सर्विसेज हैं उसको एक साथ सुचालित ढंग से आगे बढ़ाना एक ही कमांडर के नीचे होगा। इनको नाम दिया गया है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप।
0: भारतीय सेना अपनी सभी लड़ाकू कोर को धीरे धीरे छोटे, मारक और अत्यधिक आधुनिक एकीकृत समूहों में बदल रही है ताकि भविष्य के कम समय वाले युद्धों को आसानी से जीता जा सके। आईबीजी के फायदे क्या हैं ये भी जान लीजिए। सबसे पहला है अनमैच स्पीड। दरअसल सभी संसाधन एक ही कमांडर के पास होते हैं और इसीलिए उन्हें लामबंद होने में कुछ हफ्तों के बजाय महज 12 से 48 घंटे का वक्त लगता है। फौरन फैसला लेने की क्षमता, कमांडर को तोप या फिर हवाई सुरक्षा के लिए कोर मुख्यालय से अनुमति नहीं मांगनी पड़ती, वो युद्ध क्षेत्र की स्थिति देखकर ऑन द स्पॉट फैसले ले सकता है। तीसरा है किल वेव से सीधा जुड़ाव। आईबीजीज पूरी तरह से डिजिटल और नेटवर्क केंद्रित हैं। इनके सेंसर और शूटर आपस में जुड़े होते हैं जिससे दुश्मन की लोकेशन मिलते ही पूरी ताकत से हमला कर दिया जाता है।
2: ये जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप होंगे ये एक युद्ध भूमि में एक मेजर जनरल के तहत आएंगे और भविष्य के युद्ध में ये हाईली फ्लेक्सिबल होंगे क्योंकि इनका अपना ट्रांसपोर्ट ग्रुप होगा। यानी सडनली देखिए 10,000 ट्रुप्स को अगर लेके 200 किलोमीटर आगे ले जाना है या 10,000 ट्रुप्स को लेकर सडनली 200 किलोमीटर बाएं तरफ लेके जाना है तो आपको 100 गाड़ियां चाहिए कम से कम। तो ये जो 100 गाड़ियां हैं ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के जो कमांडर होंगे उनके डायरेक्ट कंट्रोल में होंगी। इससे जो आईबीजी के कमांडर हैं मेजर जनरल रैंक के होंगे उनकी युद्ध भूमि में कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी और युद्ध लड़ने की क्षमता काफी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाएगी और ज्यादा भी हो जाएगी।
0: आसान भाषा में कहें तो आईबीजी ऐसा सैन्य ग्रुप है जिसमें सेना के लगभग हर प्रमुख अंग के सैनिक शामिल होंगे, यानी इन्फेंट्री आर्म्ड या टैंक, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इंजीनियर्स, एयर डिफेंस, सिग्नल्स, लॉजिस्टिक और मेडिकल कोर, जो जरूरत पड़ने पर बिना किसी दूसरी यूनिट का इंतजार किए तेजी से ऑपरेशन शुरू कर सकेंगे।
1: इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत है इसके जवानों की संख्या। इसमें करीब 5,000 जवान होंगे जो 12 से 13 यूनिट्स में डिवाइड होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक परंपरागत ब्रिगेड में नॉर्मली 5 से 7 हजार के करीब जवान होते हैं, और अगर हम डिवीजन की बात करें तो इसमें 10,000 या फिर इससे ज्यादा जवान होते हैं। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप इसके बीच का काम करेगा, यानी जहां जरूरत होगी वहां ये सैनिक पूरी तरह से तैयार।
0: छोटी टुकड़ियों में होने की वजह से आईबीजी ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक में होने वाले युद्ध में खुद को तेजी से ढाल पाने में सक्षम हो सकते हैं। मौजूदा योजना के मुताबिक 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कोर से 4 इंटीग्रेट बैटल ग्रुप और 1 फायर सपोर्ट ग्रुप बनाए जाएंगे।
1: रणक्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: Tune in is bringing together your music, news, sports and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
5: continue to face political pressure to reach a peace deal,
4: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
3: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और अब आपको कश्मीर से आई एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो किसी मिसाल से कम नहीं है। मिलिए कश्मीर के शोपिया के रहने वाले रऊफ से, जो पिछले 5 सालों से कश्मीर के उन तमाम पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं जहां सैलानियों की वजह से कचरा जमा हो जाता है।
7: बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी मखमली घास से सजे मैदान और दिल को छू लेने वाले नजारे, कुछ ऐसा है हमारा कश्मीर। वो कश्मीर जहां कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती का खजाना बिखेर रखा है, तभी तो हर साल लाखों सैलानी कश्मीर की इन बेहद हसीन वादियों को देखने के लिए उमड़ते हैं। लेकिन कभी कभी सैलानियों की ये रौनक इस हसीन और खूबसूरत घाटी के लिए चुनौती बन जाती है। जैसे जैसे पर्यटकों की तादाद बढ़ती है, कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट पर गंदगी और कचरा भी बढ़ने लगता है, और इसी चुनौतियों से निपटने के लिए कश्मीर के ही रहने वाले रऊफ ने एक बेहतरीन पहल की है।
8: तो लोग आते हैं, लोगों को आना चाहिए, ये आपके लिए ही है, तो मैं चाहता हूँ कि ये लोगों का एसेट है, ठीक है, ये हर किसी बंदे का एसेट है, और आप इसको उसी तरह से ले लो ताकि ये आपको अपना है, उसी हिसाब से इसको मेंटेन रखिए, ताकि जो आपकी अपना जो सर्टिफिकेशन है, आपको ये हर तरह का पीस दे रहा है, ये नेचर आपको हार्म नहीं कर रहा है, आप नेचर को हार्म कर रहे हो यहाँ पे, और जो है इसको हमें इसकी ज़रूरत है, नेचर को हमारी ज़रूरत नहीं है। अगर ये 100 साल 50 साल भी ऐसे ही रहेगा तो इसको हमारी ज़रूरत नहीं है, ग्रो बाय डिफ़ॉल्ट करेगा, बट जो हमारी प्रॉब्लम है हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है। अगर हम इसी को तबाह करेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि हमारी अपकमिंग जनरेशन इसका मज़ा उठाएगी और इसका ये नज़ारा देख पाएगी।
7: कश्मीर की जन्नत को बेदाग रखने के लिए दक्षिण कश्मीर के शोपियां का एक युवा एक बेहतरीन मिसाल बनकर उभरा है। मिलिए केलर इलाके के रहने वाले रऊफ से, जो पिछले 5 सालों से उन सभी पर्यटक स्थलों पर लगातार स्वच्छता अभियान चला रहे हैं जहां सैलानियों की वजह से कचरा जमा हो जाता है।
9: केलर के रहने वाले रऊफ ने एक प्रेरणा जरूर दी है उन लोगों के लिए, उन छात्रों के लिए जो पिकनिक के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें जब बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक की वजह से हमारी जो सरसब्ज ज़मीन है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। अगर इंसान में अच्छे इखलाक हो, अच्छा सोच हो, तो बंजर को आबाद कर सकता है, और अगर इंसान में गलत सोच हो वो सरसब्ज जमीन को बंजर करने में कोई कसर बाकी पीछे नहीं रह सकता है।
7: रऊफ की इस पहल का असर भी हुआ। जो काफिला रऊफ ने शुरू किया उसमें धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। युवाओं के साथ ही आज इस अभियान में रिटायर्ड पेशेवर और बुजुर्ग भी पूरे उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं। रऊफ सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए मेहनत नहीं कर रहे बल्कि उसकी अनदेखी खूबसूरती को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमरलैंड एलिगेंस नाम की एक किताब भी लिखी है। इस किताब में दक्षिण कश्मीर के उन खूबसूरत लेकिन अनदेखे पर्यटक स्थलों का जिक्र है जो अब तक आधिकारिक टूरिज्म मैप से गायब है। शोपियां की इन खूबसूरत और मनमोहक वादियों के बीच रऊफ की ये पहल साबित करती है कि जब युवा अपने समाज और पर्यावरण की जिम्मेदारी उठाते हैं तो तस्वीर यकीनन बदलती है। रऊफ की ये कोशिश न सिर्फ कश्मीर को साफ रख रही है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा संदेश भी है। शोपियां से इरशाद मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: कौन सा तेल शनि ग्रह की समस्याओं को दूर कर देता है? किस तेल के प्रयोग से कर्जे उतर जाते हैं और कौन से तेल का प्रयोग करने से डायबिटीज में सुधार होता है? क्या है ज्योतिष में तेल का महत्व और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
11: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
12: Right field, and it will...
11: From the first pitch of the season to the stretch run.
12: And that's the ball game.
11: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
13: सोशल मीडिया की एयरहेड का डेडली एक्शन। ह्यूमनली डिस्पाई यूनिवर्स में आलिया का धमाका। मेंटल हेल्थ से लड़कर इंडस्ट्री में बनाई पहचान। आलिया के फिल्मी सफर की अनकही दास्तान। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक मॉनसून दिखा रहा अपने रंग। सूरत में भारी बारिश के चलते उफान पर तापी नदी। थाड़े में सड़क से लेकर गली तक पानी से लबालब। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले लबालब। पालमपुर की न्यूगल नदी में फंसे 7 पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू। पुलिस प्रशासन की सैलानियों को सतर्क रहने की अपील। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह। पवित्र यात्रा के दूसरे दिन अब तक करीब 30,000 भक्तों ने किए दर्शन। घाटी में सुनाई दे रही बम बम भोले की गूंज। अमरनाथ यात्रा के बीच आया एक और गौरवशाली पल। पहलगाम में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में पहरा। अमरनाथ यात्रा के बीच आया एक और गौरवशाली पल। पहलगाम में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में फहराया गया तिरंगा। आस्था, दृढ़ता और वीरता का बना प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को दी विकास की सौगात। जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल के अलावा पचपदरा रिफाइनरी का किया उन्होंने शुभारंभ। गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर यूनिट का उद्घाटन। भारत मंडपम में देश के सबसे बड़े टॉय एक्सपो का हुआ शुभारंभ। 7 जुलाई तक चलेगा ये एक्सपो। बिजनेस के नए अवसरों को मिलेगा बड़ा मंच।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने यशराज फिल्म्स की पहली वुमन लीड स्पाई थ्रिलर में अपने एक्शन सीक्वेंस से तहलका मचा दिया है। जी हाँ, यूं तो इस अभिनेत्री की इमेज एक सॉफ्ट और सोबर लड़की की है, लेकिन यशराज फिल्म्स ने नारी प्रधान स्पाई थ्रिलर बनाने का फैसला किया तो दांव इसी सॉफ्ट और सोबर इमेज वाली अभिनेत्री पर लगाया। कमाल यह है कि अपनी इमेज के उलट इस अभिनेत्री ने स्पाई यूनिवर्स मूवी में भी दमदार अभिनय कर सबका दिल जीत लिया।

0: आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि यशराज फिल्म्स की वुमन लीड स्पाई यूनिवर्स की पहली फिल्म अल्फा की सीता यानी कि आलिया भट्ट है। जी हाँ, 3 जुलाई को रिलीज हुई अल्फा को बॉक्स ऑफिस पर उस तरह की ओपनिंग नहीं मिली जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आलिया भट्ट अपने एक्शन से दर्शकों का दिल जीत रही है। साफ है कि स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर से शुरू कर आलिया ने अल्फा तक का बेमिसाल सफर तय कर लिया है। ये वही आलिया है सोशल मीडिया पर कभी जिनके मीम्स की भरमार रहती थी। एक समय आलिया की ट्रोलिंग नेटिजंस का स्ट्रगल बन गया था। हालांकि सोशल मीडिया पर आलिया का जो परसेप्शन बना, आलिया की हकीकत उससे बिल्कुल जुदा है।
1: आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी है।
2: And she's such a fine actress. और ये मूवी में भी टॉप नॉच एक्शन, बहुत ही फुल पैक्ड एक्शन है।
3: एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वार, पठान, टाइगर 3 और वार 2 जैसी स्पाई यूनिवर्स की धमाकेदार फिल्में दे चुके यशराज फिल्म्स ने पहली बार जब वुमन लीड स्पाई थ्रिलर अल्फा बनाई तो दांव खेला उस आलिया भट्ट पर सोशल मीडिया पर जिसकी इमेज एयरहेड की रही है। बॉक्स ऑफिस पर अल्फा की ओपनिंग बेशक उम्मीद के मुताबिक नहीं रही, लेकिन यशराज फिल्म्स की पहली वुमन लीड स्पाई यूनिवर्स मूवी में आलिया ने अपने नेल बाइटिंग एक्शन सीक्वेंस और संजीदा अदाकारी के दम पर दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म के कथानक और निर्देशन पर सवाल उठाने वाले भी आलिया की एक्टिंग की दिल खोल कर तारीफ कर रहे हैं।
1: आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी है, सरवरी बाग की एक्टिंग अच्छी है। एक्टिंग में तो दे आर बोर्न एक्टर, तो उसमें तो कोई कमी निकाल नहीं सकता, लेकिन स्टोरी वाइज जो होनी चाहिए मूवी वो नहीं है।
4: बेसिकली आलिया मैम की जब बॉलीवुड करियर स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, तो उसमें वो काफी एकदम ऐसे होते हैं ना, स्वीट सी टीनेजर टाइप से रोल स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे उन्होंने लव स्टोरीज वगैरह किए, फिर हम सब सरप्राइज हो गए आलिया मैम को गंगूबाई में देख के, एकदम अलग सा रोल। एंड अभी इधर अल्फा में एक्शन वाला रोल, तो अच्छा लगा, वो अपने आप को प्रूफ कर रही है कि वो सारे कैरेक्टर्स में फिट हो सकती है।
2: अभी मुझे मूवी से काफ़ी आशाएं थी, क्योंकि इस तरह की जो स्पाई थ्रिलर मूवीज होती हैं, एक्शन मूवीज होती हैं, उसमें आलिया भट्ट की राजी मूवी याद आ जाती है हमेशा। एंड शी इज सच ए फाइन एक्ट्रेस, और ये मूवी में भी टॉप नॉच एक्शन, बहुत ही फुल पैक्ड एक्शन है।
5: ये अल्फा मुझे फिल्म अच्छी लगी है, फिल्म का जो एक्शन है वो काफ़ी तगड़ा है, आलिया भट्ट ने एक्टिंग काफ़ी टॉप नॉच की है, और साथ ही साथ जो शर्वरी है उन्होंने केमिस्ट्री काफ़ी, मतलब दोनों की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी तगड़ी है, तो फिल्म देख कर अच्छा लगा है।
3: साफ है कि पर्दे पर अपनी सॉफ्ट इमेज के लिए मशहूर रही आलिया यशराज फिल्म की पहली नारी प्रधान स्पाई थ्रिलर में निर्माता निर्देशक से लेकर दर्शकों तक की उम्मीद पर 100% खरा उतरी हैं। स्पाई थ्रिलर मूवी अल्फा में अपने एक्शन सीक्वेंस से धमाल मचा रही ये वही आलिया हैं सोशल मीडिया पर जिनकी इमेज कभी अनइन्फॉर्म्ड और इग्नोरेंट यूथ की बन गई थी।
6: Who is the president of India?
7: Pranab Mukherjee.
3: एक समय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आलिया भट्ट के मीम से भरे रहते थे। आलम ये था कि किसी ने तथ्यात्मक रूप से कोई गलत बयानी की तो सोशल मीडिया पर तुरंत उसकी तुलना आलिया भट्ट से कर दी जाती थी। बहरहाल ये आलिया के बारे में सोशल मीडिया यूजर्स या नेटिजन्स का अपना परसेप्शन था। आलिया की रियलिटी नेटिजन्स के परसेप्शन से कोसों दूर है। आपको बता दें कि आलिया को लेकर इस तरह का सोशल मीडिया परसेप्शन इसलिए बन गया था क्योंकि एक बार उन्होंने देश के राष्ट्रपति का नाम गलत बता दिया था। दरअसल बतौर लीड एक्ट्रेस 2012 में आई अपनी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रमोशन के लिए आलिया करण जौहर के शो कॉफी विद करण में अपने को स्टार्स वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ पहुंची थी। करण ने लाइटर मोड में आलिया से भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया और आलिया ने उत्साह में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का नाम बता दिया था, जबकि उस समय देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे।
6: Who is the president of India?
3: आलिया की जिंदगी की गहराई में उतरे बगैर, पूरी सच्चाई जाने बगैर नेटिजन्स ने ये मान लिया कि आलिया का आईक्यू लेवल बेहद लो है और सामान्य ज्ञान तो शून्य है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है कि आलिया भट्ट अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी ADHD नामक एक रेयर डिजीज से पीड़ित हैं, जिसका पेशेंट कभी कभी जोन आउट हो जाता है। जोन आउट का मतलब ये है कि पेशेंट फिजिकली कहीं और होता है लेकिन उसका दिमाग अचानक किसी दूसरे जोनर में चला जाता है।
7: मैं बचपन से जोन आउट करते आई हूँ, हमेशा क्लासरूम में भी जोन आउट होती थी, कॉन्वर्जेशंस में जोन आउट होती हूँ। तब रिसेंटली मैंने एक पर्सनालिटी जो भी क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और मुझे पता चला कि मैं ADHD के स्पेक्ट्रम में काफ़ी हाई हूँ। मुझे ADHD है, तो अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर।
3: आपको बता दें कि ADHD डिजीज का IQ लेवल से कोई रिलेशन नहीं है। काफी हाई IQ वाले लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है। होता यही है कि कभी कभी इसका पेशेंट जोन आउट हो जाता है और उस दौरान कोई ऐसा बयान दे सकता है या ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकता है जिससे उसके IQ लेवल पर सवाल उठने लगे। आपको बता दें कि आलिया का न सिर्फ IQ लेवल बल्कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी नेक्स्ट लेवल का है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि साल 2012 से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी आलिया कैमरा ऑन होने के बाद कभी जोन आउट नहीं होती। अलबत्ता कैमरे के सामने आते ही आलिया इतनी फोकस्ड हो जाती हैं कि उन्हें अपने किरदार और संवाद के सिवा कुछ भी ध्यान नहीं रहता।
7: I'm so present जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ, चाहे मैं वो किरदार में प्रेजेंट हूँ, मतलब द पार्ट दैट आई एम प्लेइंग आई एम प्रेजेंट एज द कैरेक्टर, बट आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। और फिर अभी ऑफ कोर्स आफ्टर राहा, जब भी मैं उसके साथ रहती हूँ, आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। तो ये 2 आई थिंक मोमेंट्स हैं मेरी लाइफ में जहाँ पे मैं सबसे ज्यादा पीसफुल फील करती हूँ।
3: साफ है कि आलिया भट्ट अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को भली भांति पहचानती हैं। यही वजह है कि कॉफी विद करण में गलत जवाब देने के बाद जबरदस्त तरीके से ट्रोल होने पर भी आलिया पूरी तरह काम एंड कूल रहीं। काफी वक्त बाद आलिया से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने पूरे ह्यूमर के साथ जवाब देकर ट्रोलर्स को भी ट्रोल कर दिया।
8: मैं अब ऑनेस्टली बोर हो गई हूँ उस जोक से, मेरे को एक्चुअली नया जोक चाहिए। आई वांट टू मेक अ मिस्टेक अगेन। हाँ, वही मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं क्या गलती करूँ कि फिर से लोग उसको 1-2 साल और खींचेंगे।
3: आपको बता दें कि आलिया बॉर्न एक्ट्रेस हैं। संयोग से इनका जन्म एक ऐसे घराने में हुआ जहाँ माहौल पूरी तरह फिल्मी था। मार्च 1993 को हुए आलिया के जन्म से काफी पहले से पिता महेश भट्ट अर्थ, सारांश, नाम, आशिकी, सड़क और दिल है कि मानता नहीं जैसी कल्ट और आइकॉनिक फिल्मों का निर्देशन कर इंडस्ट्री में अलग पहचान स्थापित कर चुके थे। आलिया की मां सोनी राजदान भी 36 चौरंगी ले, मंडी, सारांश और त्रिकाल जैसी 8 फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी से क्रिटिक्स की शाबाशी हासिल कर चुकी थीं। आलिया ने भी जब से होश संभाला एक्टिंग को छोड़कर किसी दूसरे काम का तसव्वुर इनके मन में एक बार भी नहीं हुआ।
8: मैं हमेशा कहती कि मैं एक्शन पे ही पैदा हुई थी, अपनी माँ की कोख से। आई डोंट थिंक देयर वाज दैट 1 सेकंड आल्सो कि मैं दुनिया में आई, मुझे उस सेकंड पे ही पता था कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है और मुझे एक्टर बनना है और मुझे एक्टिंग करनी है। आई थिंक उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था।
3: जिन लोगों ने आलिया को अनइन्फॉर्म्ड यूथ का एम्बेसडर बना दिया था, उन्हें ये जानना चाहिए कि आलिया भट्ट जब सिर्फ 4 साल की थी तभी उन्होंने श्यामक डावर डांस एकेडमी की समर क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। बात सिर्फ इतनी नहीं है, डांस एकेडमी में 4 साल की आलिया इंडस्ट्री की प्रेस्टीजियस फैमिली का तगमा लेकर नहीं बल्कि लर्निंग हंगर के साथ जाती थी। यही वजह है कि बाकी बच्चों के मुकाबले वो ज्यादा अच्छे से चीजों को ग्रैस्प करती थी। खुद श्यामक डावर ने आलिया की तारीफ करते हुए एक बार कहा था कि आलिया सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेती हैं।
7: श्यामक डावर जी के जो समर कैंप समर डांस क्लासेस थे यार, वो एक्चुअली मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का बहुत ही अहम हिस्सा था एंड आई रिमेम्बर दोज मोमेंट्स वेरी क्लियरली, क्योंकि जेन्युइनली इम्पैक्ट मेरी लाइफ में काफी था, क्योंकि कॉन्फिडेंस, लोगों के सामने डांस करना, फ्री बनना, ऐसे फील करना कि आप सबसे छोटे हो पर फिर भी बड़े हो और डांस करना है।
3: 4 की उम्र में श्यामक डावर की डांस क्लास ज्वाइन करने वाली आलिया 7 साल की होते होते नृत्य कला में इतनी पारंगत हो गई कि स्कूल के एक डांस कंपटीशन में श्यामक डावर ने उन्हें हायर क्लास की छात्राओं के बीच भेज दिया, क्योंकि डावर को ये भरोसा हो गया था कि हायर क्लास की छात्राओं के बीच भी आलिया बेहतर परफॉर्म करेंगी। हालांकि तब मासूम आलिया के साथ एक मजेदार वाकया भी पेश आया था।
7: क्लास में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था मेरा, तो श्यामक सर ने मुझे एक सीनियर बैच में डाल दिया। तो मैं 7 साल की थी और मैं क्लास के अंदर आई और इंस्ट्रक्टर कंफ्यूज हो गए कि आप ये क्लास में हो, क्योंकि इट वॉज देवर लिटरली अडल्ट इन दैट क्लास। और मैंने बोला हाँ श्यामक सर, लाइक आई एम सपोज टू कम इन दिस क्लास। तो पहले उनका क्वेश्चन था हाउ ओल्ड आर यू, तो मैंने बोला 7, पर देन इमीडिएटली मैंने बोला बट इट्स माय बर्थडे टुमारो, आई एम गोइंग टू बी 8 टुमारो।
3: दिलचस्प बात तो यह है कि अगले दिन आलिया का जन्मदिन नहीं था, लेकिन उन्होंने झूठ इसलिए बोल दिया क्योंकि उन्हें डर हो गया था कि कम उम्र को देखते हुए उन्हें कहीं नीचे की क्लास में न भेज दिया जाए। इस लेवल का आत्मविश्वास था आलिया के भीतर बचपन से ही। कमाल ये है कि यही आत्मविश्वास तब भी बना रहा जब आलिया ने रुपहले पर्दे पर चुनौतीपूर्ण किरदार निभाना शुरू किया। इंडस्ट्री के स्टार फैमिली से आने वाले नेपो किड्स आमतौर पर फिल्में साइन करने से पहले अपने घर के अनुभवी सदस्यों से सलाह मशविरा करते हैं, लेकिन आलिया का हिसाब अलग है। वो फिल्में साइन करने से पहले अपने पिता महेश भट्ट या माँ सोनी राजदान, यहाँ तक कि पति रणबीर कपूर से भी क्लियरेंस लेना जरूरी नहीं समझती, बल्कि इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स के आधार पर खुद ही फैसले लेती हैं।
7: मैं एक्चुअली अपना माइंड मेकअप करने के बाद डिस्कस करती हूँ, मैं बिकॉज आई एम नॉट समबडी हु नीड्स टू बी कन्विंस्ड फॉर अ फिल्म, एक तो बात यह है, और दूसरी बात यह है कि मेरा इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स ही सबसे प्योर रिस्पॉन्स होता है। तो अगर कोई, मैं इंस्टिंक्टिवली अगर एक्साइट हो जाऊंगी और किसी ने अगर बोल दिया कि मतलब ऐसे मत करो, आई एम जस्ट गिविंग इफ केस सिनेरियो, मेरे साथ हुआ नहीं है, पर अगर बोल दिया तो फिर मेरे दिमाग में डाउट पैदा हो जाएगा। तो मेरी जर्नी मेरी है और मेरी डिसीजन भी मेरी होनी चाहिए, इसलिए दैट्स द रीजन, नॉट फॉर एनी अदर रीजन।
3: आप समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया की नजर में अनइन्फॉर्म्ड सेलेब्स रही आलिया की प्रतिभा उन्हें लेकर बने परसेप्शन से बिल्कुल अलग है। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से किक हुए एकाध अपवादों को छोड़ दें तो आलिया के लेवल का आईक्यू और टैलेंट हिंदी सिनेमा के 100 साल के इतिहास में इक्का दुक्का अभिनेत्रियों में ही नजर आएगा।
0: अल्फा मूवी में अपने एक्शन से धमाल मचा रही आलिया यू तो बॉलीवुड की एक दमदार फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन रुपहले पर्दे के अपने यादगार सफर में आलिया ने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साए का सहारा कभी नहीं लिया। आलिया के पिता महेश भट्ट बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा निर्देशकों में शुमार है, जबकि माँ सोनी राजदान आज फिल्मों की आइकन रही है, लेकिन आलिया ने अपने फिल्मी सफर में आगे बढ़ने के लिए कभी अपने माता पिता से मदद की उम्मीद नहीं की। शुरू से ही उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट पर भरोसा किया और इसका असर यह है कि आलिया आज बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेट अभिनेत्रियों की फेहरिस्त में काफी ऊंचा मकाम हासिल कर चुकी है।
3: एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नेपो किड्स के सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक मिलने की रवायत नई नहीं है। हालांकि ज्यादातर नेपो किड्स अपने पारिवारिक वट वृक्ष के घने साए में अंकुरित होकर फलते फूलते हैं और उसी साए में फना भी हो जाते हैं, पर कुछ नेपो किड्स ऐसे भी हैं जो मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर अपनी पारिवारिक लिगेसी से निकलकर अलग साम्राज्य स्थापित करते हैं। आलिया भट्ट दूसरी कैटेगरी की नेपो किड हैं। बतौर लीड हीरोइन अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने अगर प्रतिभा नहीं तो जुनून, लगन और मेहनत की तो मुनादी कर ही दी थी। तनुजा चंद्रा के निर्देशन में बनी और 1999 में रिलीज हुई आइकॉनिक मूवी संघर्ष में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू करने वाली आलिया भट्ट को हीरोइन के तौर पर डेब्यू करने का मौका बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के जरिए दिया था। आलिया की उम्र तब महज 18 साल थी, लेकिन उनका फिगर फिल्म के किरदार के लिहाज से फिट नहीं था। ऑडिशन के दौरान करण जौहर ने आलिया के लिए कड़ी शर्त रख दी कि उन्हें अपना वेट लॉस करना होगा। आलिया टीनेज में ही अपने करियर को लेकर कितनी संजीदा थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 3 महीने के भीतर उन्होंने अपना वेट 68 किलो से कम करके 51-52 किलो कर लिया, क्योंकि बचपन से बस एक ही तो सपना था आलिया का, सितारा बनकर सिल्वर स्क्रीन पर चमकने का। इसीलिए शूटिंग के दौरान सेट पर पहली बार जब कैमरा ऑन हुआ तो उनका उत्साह चरम पर पहुंच गया।
7: वो कहते हैं ना, एक्सट्रीम जॉय फीलिंग आता है कि कैमरा के सामने वो शूटिंग हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, बट यू फील के अंदर से कुछ। इवन दो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाज अ ब्लर, जो पहला गाना जो मेरी लाइफ की पहली दिन थी शूटिंग की, वो राधा के लिए थी। तो वो एक शॉट था, मेरे को नीचे आना था, टर्न करके ऐसा कुछ करना था, फिर दुपट्टा उठा के कैमरा में देखना था और ब्लोअर फैन आ रहा था, उसी में ही मेरे को ऐसे बहुत मजा आ गया।
3: पहली बार कैमरे के सामने आने के बाद आलिया बेशक उत्साहित थी, लेकिन फिल्म साइन करने के बाद वो फेल्योर के फियर साइकोसिस का शिकार हो गई थी। आलिया को ये डर सताने लगा कि अगर वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाई या फिल्म पिट गई तो आगे करेंगी क्या। पिता महेश भट्ट को जब बेटी के फियर साइकोसिस के बारे में पता चला तो उन्होंने अलहदा तरीके से आलिया को उससे बाहर निकालने की कोशिश की। महेश भट्ट ने बेटी को विशेष फिल्म्स के अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि मन में जो भी डर है, आशंका है, उसका इजहार सबके सामने करो।
7: For some reason, my father is outstanding in a crisis situation. जब भी आप क्राइसिस में हो, आप उनको फोन करो, he has the most calm tone and he'll deal with the situation in the best way. In this particular situation, उन्होंने decide किया, ऑफिस आ जाओ, सबके सामने बोलो तुम कैसे फील कर रही हो। जो एक्चुअली एक बहुत अजीब सीक्वेंस सिचुएशन है, क्योंकि आप पहले तो इतना वल्नरेबल फील करो, सबके सामने उठ के बोलना है कि मैं ऐसे फील कर रही हूँ।
3: महेश भट्ट ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने का कोई मनोवैज्ञानिक अनुभव था, ये तो नहीं बता, लेकिन उनका ये अनोखा फॉर्मूला आलिया के लिए क्लिक जरूर कर गया। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डर का डंका बज जाने के बाद आलिया के अंदर की घुटन कम हो गई। वैसे 19 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर बॉक्स ऑफिस पर तो कामयाब रही, लेकिन आलिया की इमेज बॉर्बी डॉल से कुछ ज्यादा नहीं बन पाई। उधर क्रिटिक्स ने भी आलिया के डेब्यू को महेश भट्ट के प्रभाव से जोड़ दिया। लेकिन फिल्म हिट होने के बाद बड़े पर्दे पर बड़ा मकाम हासिल करने के आलिया के संकल्प के साथ उनका आत्मविश्वास भी जुड़ गया। अगली ही फिल्म हाईवे में अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर आलिया ने क्रिटिक्स को पहले से तय परसेप्शन को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। 21 फरवरी 2014 को रिलीज हुई हाईवे में वीरा त्रिपाठी के डी ग्लैमरस किरदार में बेहतरीन अभिनय का तड़का मारकर आलिया ने उन्हें बॉर्बी डॉल कहने वालों का मुंह बंद कर दिया। दरअसल अभिनय को लेकर आलिया का फलसफा शुरू से ही कन्वेंशनल नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिव रहा है।
8: कैमरे के सामने का जो एक फीलिंग होता है ना, उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता है। एट द एंड ऑफ द डे मैं जितना भी चाहे डायलॉग सीख लूँ या कुछ रट्टा मार लूँ, फिजिकल ट्रेनिंग कर लूँ, अपने आप को कमरे में बंद करके मेथड एक्टिंग भी कर लूँ, अगर कैमरे के सामने मुझे फीलिंग नहीं आ रही है तो कैमरा पकड़ लेगा और मेरी परफॉर्मेंस जो है उसमें दिख जाएगी। तो तैयारी जारी रहती है फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं कैमरे के सामने सिर्फ फील करने की कोशिश करती हूँ।
3: हाईवे के बाद आलिया ने इंडस्ट्री में मुनादी कर दी कि मीना कुमारी और मधुबाला की खींची हुई अदाकारी की लीक इस युग में भी मिटी नहीं है। 2016 में आई उड़ता पंजाब के बाद तो क्रिटिक्स ने भी स्वीकार कर लिया कि आलिया की अदाकारी किसी एक जोनर तक महदूद नहीं है। उड़ता पंजाब के एक मैले कुचैले भोजपुरी लड़की के किरदार में आलिया ऐसे गुम हो गई कि पहचानना मुश्किल हो गया कि ये वही राधा हैं जिसने डिस्को दीवाने पर ठुमके लगाए थे। उड़ता पंजाब के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। ...2018 में आई राजी में एक कश्मीरी जासूस के किरदार में आलिया ने अपने अभिनय से इतनी जान फूंक दी कि 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली कुछ एक महिला प्रधान फिल्मों में शुमार हो गई। वहीं 2019 में आई गली बॉय में सफीना के किरदार को आलिया ने अपनी एक्टिंग से जीवंत कर दिया। गली बॉय में नारी को प्रकृति से सहज प्राप्त कोमलता और जरूरत पड़ने पर प्रकट होने वाली आक्रामकता के मिश्रण को आलिया ने इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद तो आलिया बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइनों की फेहरिस्त में शुमार हो गईं। 25 फरवरी 2022 को रिलीज हुई गंगूबाई काठियावाड़ी आलिया के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। संजय लीला भंसाले की इस फिल्म में आलिया ने एक वेश्यालय की मालकिन और माफिया क्वीन के चुनौतीपूर्ण किरदार को सहजता के आईने में उतार कर सबको हतप्रभ कर दिया। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया को सबसे प्रेस्टीजियस माने जाने वाले नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया।
9: गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं अभिनेत्री आलिया भट्ट।
3: 2022 आलिया के लिए बहुत इवेंटफुल साल साबित हुआ। साल 2022 में कोरोना की मार से पस्त हो चुकी फिल्म इंडस्ट्री दोबारा उठ खड़े होने की जद्दोजहद कर रही थी और इसी साल आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी के अलावा आरआरआर और ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जैसी फिल्में रिलीज हुई। 2022 में ही उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर किस्मत आजमाई और डार्लिंग्स प्रोड्यूस की, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और सफल भी रही। 2023 में आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और 2024 में आई जिगरा ने भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया। साल 2027 में आलिया संजय लीला भंसाली के एक और शाहकार लव एंड वार में भी नजर आने वाली हैं। साफ है कि आलिया बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट अभिनेत्रियों की सूची में शुमार हो चुकी हैं। आज आलिया अपनी एक फिल्म के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस लेती हैं।
0: तो बंदे में दम में आज आपने आलिया भट्ट के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
10: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
11: Right field, and it will...
10: From the first pitch of the season to the stretch run.
11: And that's the ball game.
10: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
12: कौन सा तेल शनि ग्रह की समस्याओं को दूर कर देता है? किस तेल के प्रयोग से कर्जे उतर जाते हैं? और कौन से तेल का प्रयोग करने से डायबिटीज में सुधार होता है? क्या है ज्योतिष में तेल का महत्व और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में.
13: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: सोशल मीडिया की एयर हेड का डेडली एक्शन. वुमनली डिस्पाई यूनिवर्स में आलिया का धमाका. मेंटल हेल्थ से लड़कर इंडस्ट्री में बनाई पहचान. आलिया के फिल्मी सफर की अनकही दास्तान. वंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर.
14: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
16: गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक मॉनसून दिखा रहा अपने रंग. सूरत में भारी बारिश के चलते उफान पर तापी नदी. ठाणे में सड़क से लेकर गली तक पानी से लबा. पुलिस प्रशासन की सैलानियों को सतर्क रहने की अपील. बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह. पवित्र यात्रा के दूसरे दिन अब तक करीब 30,000 भक्तों ने किए दर्शन. घाटी में सुनाई दे रही बम बम भोली की गूंज. अमरनाथ यात्रा के बीच आया एक और गौरवशाली पल. पहलगाम में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में फहराया गया तिरंगा. आस्था, दृढ़ता और वीरता का बना प्रतीक. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को दी विकास की सौगात. जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल के अलावा पचपदरा रिफाइनरी का किया उन्होंने शुभारंभ. गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर यूनिट का उद्घाटन. भारत मंडपम में देश के सबसे बड़े टॉय एक्सपो का हुआ शुभारंभ. 7 जुलाई तक चलेगा ये एक्सपो. बिजनेस के नए अवसरों को मिलेगा बड़ा मंच.
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.

0: भविष्य के युद्ध छोटे, तेज और टेक्नोलॉजी आधारित होंगे, लिहाजा युद्ध जैसे हालात में बढ़त उसी को मिलेगी जो दुश्मन से 10 कदम आगे की तैयारी रखेगा। और भारत को भी ये अच्छे से पता है कि उसे खतरा दो मोर्चों से है, लिहाजा तैयारी भी जबरदस्त होनी चाहिए। बास बटालियन, रुद्र ब्रिगेड, अश्विन ड्रोन प्लाटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, ये उसी तैयारी का हिस्सा है जिनका मकसद सेना को अधिक तेज, सक्षम, सटीक और तकनीक से जुड़ा बनाना है।
1: जय यानी जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता, इनोवेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का दिया हुआ नारा, और मल्टी डोमेन ऑपरेशन की मुहिम के तहत रुद्रा ब्रिगेड, भैरव बटालियन, अश्नि ड्रोन प्लेटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्रा बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड और आईबीजी यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जैसे कदम इसी सोच का हिस्सा है।
0: हाल के अनुभवों ने यह साफ कर दिया है कि भविष्य में सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जानकारी, सर्विलांस वेपन, कम्युनिकेशन सिस्टम और कमांडर कितनी तेजी से एक साथ काम कर पाते हैं। इसीलिए सेना अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के बजाय अधिक समन्वित और तेज व्यवस्था की ओर बढ़ती जा रही है।
1: भविष्य में युद्ध और अधिक ज्वाइंट, इंटीग्रेटेड और थिएटर ओरिएंटेड होगा, इसलिए हमारी दिशा स्पष्ट है, साथ देखना, साथ निर्णय लेना और साथ कार्रवाई करना। भारतीय सेना में परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर चलती आ रही। इन दो वर्षों में डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग, आधुनिकीकरण, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, जॉइंटनेस, सिस्टम रिफॉर्म और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर तीव्र गति से काम हुआ है।
0: भारतीय सेना भविष्य की जंग के लिए खुद को तेजी से तैयार कर रही है। इसी दिशा में सेना ने बास बटालियन नाम से खास ड्रोन यूनिट बनाने का फैसला किया है। बास बटालियन में ट्रेन जवानों की एक स्पेशल टीम होगी जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम का संचालन और प्रबंधन करेगी। इन बटालियनों का काम सीमा पर लगातार निगरानी रखना, दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी जुटाना और जरूरत पड़ने पर सटीक कार्रवाई में मदद करना होगा। सूत्रों के मुताबिक बास बटालियन को आर्मी एविएशन कोर के अंतर्गत रखा जा सकता है। बास बटालियन फ्रंटलाइन यूनिट्स और खुफिया सिस्टम के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करेगी जिससे दुश्मन का दांव धरा का धरा रह जाएगा।
2: इंडियन आर्मी में करीबन 380 इन्फेंट्री बटालियंस हैं। एक इन्फेंट्री बटालियन में करीबन 1000 जवान होते हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि इंडियन आर्मी के जो बटालियंस हैं उनको आस्ते आस्ते बास बटालियंस में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी जैसे कन्वेंशनल इन्फेंट्री बटालियन में अल्फा कंपनी, ब्रेवो कंपनी, चार्ली कंपनी, डेल्टा कंपनी होती थी, अब एक छोटी सी टुकड़ी यह भी रेज की जाएगी इन बटालियंस में, जिनके पास अलग अलग तरह के ड्रोन्स होंगे, रिकनेसेंस ड्रोन होंगे जो कि छोटी दूरी के या लंबी दूरी के होंगे। इसी तरह से उनके पास अटैक ड्रोन्स भी होंगे जो कि शत्रु के ऊपर जाके हमला करके वापस आ सकें। सबसे बड़ी बात है कि इन इन्फेंट्री बटालियंस में आस्ते आस्ते सुसाइड ड्रोन यानी कामिकाजे ड्रोन इंडक्ट किए जाएंगे जो कि शत्रु के पोजिशन के ऊपर जाके लॉयटर कर पाएंगे। यानी वहाँ पर 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट शत्रु की लोकेशन के ऊपर घूमते रहेंगे।
0: अभी सेना की अश्नि ड्रोन पलटन पैदल सेना के साथ मिलकर कम दूरी की निगरानी करती है। दिव्यास्त्र और शक्तिबाण जैसी इकाइयां हमलावर ड्रोन और लाइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल करती हैं। बाज बटालियन इन सबसे ऊपर की कैटेगरी में होगी और लंबी दूरी की निगरानी, लक्ष्य पहचान और बड़े स्तर पर ड्रोन संचालन की जिम्मेदारी संभालेगी।

0: इसी के साथ साथ रेकी के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है और साथ ही साथ हमारे सैनिकों के लिए भी ड्रोन सबसे ज्यादा उपयोगी साबित हो रहा है।
1: पहले पैदल सैनिकों को दुश्मन पर हमला करने के लिए तोपखाने या वायुसेना के बैकअप का इंतजार करना होता था, लेकिन अब आश्रम प्लाटून का ऑपरेटर खुद दुश्मन को स्क्रीन पर देखता है और पलक झपकते ही ड्रोन से हमला कर देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के रण ऑफ कच्छ तक करीब 1000 ड्रोन से हमला किया था। भारतीय सेना की एंट्री एयरक्राफ्ट गन और काउंटर ड्रोन सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। इसके बाद सेना ने ड्रोन फोर्स खड़ी करने का संकल्प लिया और भैरव बटालियन, दिव्यास बैटरी और अश्नी प्लाटून जैसी नई इकाइयों की शुरुआत की। सेना के हर इन्फेंट्री बटालियन में अश्नी ड्रोन प्लाटून बनाई गई है। एक प्लाटून में 20 सैनिक हैं, जिन्हें FPV, सर्विलांस, स्वॉर्म ड्रोन और लॉयटरिंग म्यूनिशन चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। भारतीय सेना की करीब 380 इन्फेंट्री बटालियन में ऐसी इकाइयां शामिल की जा रही हैं।
2: हर इन्फेंट्री बटालियन में जब वो बाज बटालियन में कन्वर्ट होंगे तो एक एक अश्नी प्लाटून डेवलप की जाएगी। इस डिप्लॉयमेंट के बाद हर इन्फेंट्री बटालियन की जो अश्नी प्लाटून होगी उनको करीबन 20 सोल्जर्स ऐसे ट्रेन करने पड़ेंगे जो कि रिकनेसेंस ड्रोन को उड़ा सकें, अटैक ड्रोन को कामयाबी से अटैक करवा सकें। सबसे बड़ी बात है जो सुसाइड ड्रोन होते हैं, कामिकाजी ड्रोन, उसमें जो FPV होता है, फर्स्ट पर्सन व्यू, यानी ऑपरेटर जो है वो देख सकता है कि ड्रोन कहाँ उड़ रहा है, किस चीज़ को निशाना बना रहा है। FPV रोल में इन 20 सोल्जर्स को ट्रेन किया जाएगा। हर यूनिट में करीबन शुरुआती दौर में 10-10 ड्रोन दिए जा रहे हैं, जिसमें 4 ड्रोन तो रिकॉग्निशंस ड्रोन होंगे, यानी वो दुश्मन की टोह लेकर वो कमांडर को सूचित करेंगे कि दुश्मन का टारगेट कहां पर है।
1: सेना के भीतर अलग अलग आर्म्स, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, सिग्नल के बीच तालमेल और एकीकरण पर जोर दिया जा रहा है और इसी तैयारी का हिस्सा है शक्तिमान रेजिमेंट। ये भारतीय सेना की तोपखाना के अंडर बनाई जा रही एक विशेष और आधुनिक ड्रोन केंद्रित इकाई है जो दुश्मन की गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी और लक्ष्य निर्धारित करने में सक्षम होगी। शक्तिमान रेजिमेंट के जवान पारंपरिक तोपों के बजाय अनमैन्ड एरियल व्हीकल के जरिए दुश्मन पर सटीक और घातक हमला करेंगे। भविष्य के युद्धों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना की ओर से 15 से 20 शक्तिमान रेजिमेंट तैयार की जा रही हैं। ये रेजिमेंट स्वॉर्म ड्रोन, लॉयटरिंग म्यूनिशन और लॉन्ग रेंज UAV से लैस हैं, जिनकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक होगी।
2: हमारी आर्टिलरी के जो यूनिट्स हैं उनमें 20 एडिशनल शक्तिमान रेजिमेंट्स रेज की जा रही हैं। इन आर्टिलरी यूनिट्स में लॉन्ग रेंज UAV और लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का डिप्लॉयमेंट होगा। आमतौर पे जो ड्रोन्स इन्फेंट्री यूनिट्स के पास होंगी वो 5-10 किलोमीटर की दूरी तक ऑपरेट कर पाएंगी, लेकिन जो ड्रोन और UAV इन शक्तिमान आर्टिलरी रेजिमेंट्स को दिए जा रहे हैं उनकी रेंज 10-500 किलोमीटर तक होंगी, यानी डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए उनका इस्तेमाल किया जाएगा।
1: शक्तिमान रेजिमेंट सैनिकों को जोखिम में डाले बिना दुश्मन की सीमा के भीतर घुसकर सटीक पिन पॉइंट स्ट्राइक करने की क्षमता रखती है। आर्टिलरी में 15 शक्तिमान रेजिमेंट बनाई जा चुकी हैं और 11 बनाई जानी है। जो तोपखाना रेजिमेंट शक्तिमान में तब्दील नहीं होंगी उनमें दिव्यास बैटरी होगी। शुरू में 34 दिव्यास बैटरी बनाई जा रही है। दिव्यास बैटरी के पास ड्रोन और लाइटरिंग एम्युनिशन होंगे।
0: पारंपरिक आर्टिलरी में केवल तोप और रॉकेट होते थे, वहीं दिव्यास्ट की अगर बात करें तो ये तोपों को एक हाईटेक वर्जन देता है। सीधे तौर पर कहा जाए तो ये डिजिटली और मानव रहित तकनीकों से इसे जोड़ता है। पारंपरिक तोपों और आधुनिक मानव रहित प्रणालियां यानी कि ड्रोन्स का एक हाइब्रिड मिश्रण हम इसको कह सकते हैं, जो दुश्मन के इलाके में घुसकर सही और सटीक हमला कर सकता है। वैसे योजना 35 से 40 ऐसी दिव्यास्ट बैटरियां और बनाने की भी है।

0: दिव्यास्त्र बैटरियां पारंपरिक बोफोर्स या फिर 9 वज्र जैसी तोपों के साथ लाइटिंग म्यूनिशन और निगरानी ड्रोन्स को एक साथ ऑपरेट करती हैं। दिव्यास्त्र बैटरी के ड्रोन पहले दुश्मन के बंकर, ठिकाने या आगे बढ़ते टैंकों को लाइव ट्रैक करते हैं और तुरंत उनके सटीक कोऑर्डिनेट्स तोपखाने को भेजते हैं। इस तकनीक से तोपखाने की मारक क्षमता और सटीकता कई गुना बढ़ जाती है, जिससे दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक पिन पॉइंट हमले किए जा सकते हैं।
1: इंडियन आर्मी की दिव्यास्त्र बैटरी जो हैं, वो आर्मी की आर्टिलरी का एक हिस्सा होंगी। इन यूनिट्स में जो रिकनेसेंस ड्रोन होंगे, वो आर्मी की जो कन्वेंशनल तोपे हैं जैसे कि बोफोर्स की गन्स, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके फायर पावर का ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगी। दिव्यास्त्र बैटरीज में रिकनेसेंस ड्रोन्स होंगे जो कि युद्ध भूमि के पीछे यानी टैक्टिकल बैटल एरिया के आगे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूरी तक रिकनेसेंस करेंगी और टोह लेंगी कि दुश्मन जो है किस दिशा से हमारे ऊपर हमला करने आ रहा है।
0: भारतीय सेना ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर अपना दबदबा कायम करने और आधुनिक नेटवर्क केंद्रित युद्धों को जीतने के लिए विशेष इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड्स का गठन करने का फैसला किया है। ये सेना के आधुनिकीकरण या रीस्ट्रक्चरिंग अभियान का एक क्रांतिकारी हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक हथियारों जैसे तोपों या टैंकों के चलने से पहले ही दुश्मन के संचार और सैन्य तंत्र को अंधा और बहरा बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड के मुख्य कार्यों में एक है स्पेक्ट्रम डोमिनेंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल, जो दुश्मन के रडार, ड्रोन, मिसाइल और वायरलेस सेट के सिग्नल्स को ब्लॉक कर पूरे स्पेक्ट्रम पर कब्जा करती है। दूसरा है दुश्मन के सिस्टम्स को जाम करना। इसमें दुश्मन के रडार नेटवर्क, एयर डिफेंस कमांड सेंटर्स और मानव रहित विमानों के डेटा लिंक को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया जाता है। अगला सिग्नल इंटेलिजेंस। इससे सैनिक दुश्मन के रेडियो सिग्नल्स और मोबाइल सैटेलाइट बातचीत को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, जिससे दुश्मन की अगली रणनीति और लोकेशन का पहले ही पता चल जाता है। किलवेव इंटीग्रेशन। ये ब्रिगेड रियल टाइम खुफिया जानकारी को तुरंत अपनी तोपखाना और एयर डिफेंस यूनिट्स के साथ साझा करती है, जिससे चिन्हित किए गए खतरों को पलक झपकते ही नष्ट किया जा सकता है।
1: भविष्य के किसी भी युद्ध में इंडियन आर्मी की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड का मुख्य काम ये होगा कि दुश्मन जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहा है अपने कमांडर्स के साथ या अपनी लोअर फॉर्मेशन के साथ, उसको मॉनिटर करना। अब दुश्मन के पास अलग अलग तरह की कम्युनिकेशन सेट होते हैं। कुछ हाई फ्रिक्वेंसी यानी HF पे काम करते हैं, कुछ VHF यानी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज पर काम करते हैं, आजकल ज़्यादातर सेट UHF यानी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं। तो इसकी जो सिग्नल इंटेलिजेंस है उसको भांप के उसको सुनना और वो जो वॉइस रिकॉर्डिंग है उसको कमांडर के सामने देना, इनका पहला काम होगा।
0: भारतीय सेना में बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण अब सिर्फ नए हथियार या उपकरण लेने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य सेना की सोच, ढांचे, प्रशिक्षण, तकनीक, कार्यप्रणाली और मानव संसाधन को एक साथ आगे बढ़ाना है। साल 2026 में भारतीय सेना में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पहली बार इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप सेना में शामिल किए जाएंगे। कुल 5 IBG बनाई गई है, जो कि 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के तहत काम करेंगी। हर IBG की कमान मेजर जनरल रैंक के अधिकारी के पास होगी। इसके अलावा चीफ ऑपरेशन ऑफिसर्स का नया पद भी बनाया गया है, जिसकी जिम्मेदारी होगी ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी के पास। एक पारंपरिक ब्रिगेड में सिर्फ एक तरह की सेना होती है, जैसे सिर्फ पैदल सेना या फिर आर्टिलरी। उन्हें तोपखाने या फिर एयर डिफेंस के सपोर्ट के लिए अच्छे मुख्यालयों से मंजूरी और यूनिट्स के आने का इंतजार करना पड़ता है। इसके उलट प्रत्येक IBG एक आत्मनिर्भर इकाई है, जिसमें युद्ध के लिए जरूरी सभी अंग पहले से ही एक ही कमांडर के तहत एकीकृत होते हैं। IBG की संरचना क्या है वो भी आपको बताते हैं। इसमें इन्फेंट्री जमीनी मोर्चे पर कब्जा करने और लड़ने के लिए पैदल सैनिक आर्म्ड, तेजी से आगे बढ़ने और दुश्मन की रक्षा पंक्ति तोड़ने के लिए टैंक और मैकेनाइज्ड गाड़ियां, आर्टिलरी, जिसमें लंबी दूरी तक भारी बमबारी के लिए दिव्यास्त्र बैटरी या फिर पारंपरिक तोपें होती हैं। एयर डिफेंस, जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोन से हवा में सुरक्षा मुहैया कराता है। लॉजिस्टिक और इंजीनियर्स, इनका काम रास्ते के बारूदी सुरंगों को हटाना, पुल बनाना और गोला बारूद की त्वरित सप्लाई करना होता है। साथ ही आधुनिक विंग्स, इसमें शक्तिबान रेजिमेंट के ड्रोन दस्ते और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स भी सीधे शामिल होती हैं। ये सब मिलकर एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की संरचना करते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो IBG एक सैन्य ग्रुप है जिसमें सेना के लगभग हर प्रमुख अंग के सैनिक शामिल होंगे।
1: टैक्टिकल बैटल एरिया में आमतौर पर आर्टिलरी यूनिट्स काम करती हैं, टैंक रेजिमेंट्स काम कर रहे होते हैं, इन्फेंट्री बटालियंस आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं और इसी तरह से उनको सपोर्ट भी मिलता है। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स जो है युद्ध भूमि में उनको पेट्रोल, डीजल, स्पेयर पार्ट्स, अम्यूनिशन सप्लाई करती है। आर्मी सप्लाई कोर जो है वह एडवांसिंग कॉलम्स को राशन मुहैया कराती है। 10,000 ट्रुप्स एक डिवीजन के अगर आगे बढ़ रहे हैं या 30,000 ट्रुप्स एक कोर में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें दिन में 3 बार खाना भी तो खाना है। 30,000 सोल्जर्स को पानी पिलाने का काम बहुत ही मैराथन जॉब है, क्योंकि वो 30,000 सोल्जर्स जब युद्धभूमि में लड़ रहे हैं तो कोई दाएं हैं, कोई बाएं हैं, कोई सामने 100 किलोमीटर है, कोई पीछे 10 किलोमीटर है। इन सबको युद्धभूमि में पानी पिलाना, रेगिस्तान है ना, जंगल है या हिमालय की पहाड़ियां हैं, पानी आसानी से नहीं मिलता। तो ये काम सारे जितने इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मी यूनिट्स हैं और सपोर्ट सर्विसेज हैं उसको एक साथ सुचालित ढंग से आगे बढ़ाना एक ही कमांडर के नीचे होगा। इनको नाम दिया गया है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप।
0: भारतीय सेना अपनी सभी लड़ाकू कोर को धीरे धीरे छोटे, मारक और अत्यधिक आधुनिक एकीकृत समूहों में बदल रही है ताकि भविष्य के कम समय वाले युद्धों को आसानी से जीता जा सके। IBG के फायदे क्या हैं ये भी जान लीजिए। सबसे पहला है अनमैच्ड स्पीड। दरअसल सभी संसाधन एक ही कमांडर के पास होते हैं और इसीलिए उन्हें लामबंद होने में कुछ हफ्तों के बजाय महज 12 से 48 घंटे का वक्त लगता है। फौरन फैसला लेने की क्षमता, कमांडर को तोप या फिर हवाई सुरक्षा के लिए कोर मुख्यालय से अनुमति नहीं मांगनी पड़ती, वो युद्ध क्षेत्र की स्थिति देखकर ऑन द स्पॉट फैसले ले सकता है। तीसरा है किल वेव से सीधा जुड़ाव। IBGs पूरी तरह से डिजिटल और नेटवर्क केंद्रित हैं। इनके सेंसर और शूटर आपस में जुड़े होते हैं जिससे दुश्मन की लोकेशन मिलते ही पूरी ताकत से हमला कर दिया जाता है।
1: ये जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप होंगे ये एक युद्ध भूमि में एक मेजर जनरल के तहत आएंगे और भविष्य के युद्ध में ये हाईली फ्लेक्सिबल होंगे क्योंकि इनका अपना ट्रांसपोर्ट ग्रुप होगा। यानी सडनली देखिए 10,000 ट्रुप्स को अगर लेके 200 किलोमीटर आगे ले जाना है या 10,000 ट्रुप्स को लेकर सडनली 200 किलोमीटर बाएं तरफ लेके जाना है तो आपको 100 गाड़ियां चाहिए कम से कम। तो ये जो 100 गाड़ियां हैं ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के जो कमांडर होंगे उनके डायरेक्ट कंट्रोल में होंगी। इससे जो IBG के कमांडर हैं मेजर जनरल रैंक के होंगे उनकी युद्ध भूमि में कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी और युद्ध लड़ने की क्षमता काफी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाएगी और ज्यादा भी हो जाएगी।
0: आसान भाषा में कहें तो IBG ऐसा सैन्य ग्रुप है जिसमें सेना के लगभग हर प्रमुख अंग के सैनिक शामिल होंगे, यानी इन्फेंट्री आर्म्ड या टैंक, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इंजीनियर्स, एयर डिफेंस, सिग्नल्स, लॉजिस्टिक और मेडिकल कोर, जो जरूरत पड़ने पर बिना किसी दूसरी यूनिट का इंतजार किए तेजी से ऑपरेशन शुरू कर सकेंगे। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत है इसके जवानों की संख्या। इसमें करीब 5,000 जवान होंगे जो 12 से 13 यूनिट्स में डिवाइड होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक परंपरागत ब्रिगेड में नॉर्मली 5 से 7 हजार के करीब जवान होते हैं, और अगर हम डिवीजन की बात करें तो इसमें 10 हजार या फिर इससे ज्यादा जवान होते हैं। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप इसके बीच का काम करेगा, यानी जहां जरूरत होगी वहां ये सैनिक पूरी तरह से तैयार। छोटी टुकड़ियों में होने की वजह से आईबीजी ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक में होने वाले युद्ध में खुद को तेजी से ढाल पाने में सक्षम हो सकते हैं। मौजूदा योजना के मुताबिक 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कोर से 4 इंटीग्रेट बैटल ग्रुप और 1 फायर सपोर्ट ग्रुप बनाए जाएंगे। क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn, a carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus, featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar, plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
2: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और अब आपको कश्मीर से आई एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो किसी मिसाल से कम नहीं है। मिलिए कश्मीर के शोपिया के रहने वाले रऊफ से, जो पिछले 5 सालों से कश्मीर के उन तमाम पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं जहां सैलानियों की वजह से कचरा जमा हो जाता है।
5: बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी मखमली घास से सजे मैदान और दिल को छू लेने वाले नजारे, कुछ ऐसा है हमारा कश्मीर। वो कश्मीर जहां कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती का खजाना बिखेर रखा है, तभी तो हर साल लाखों सैलानी कश्मीर की इन बेहद हसीन वादियों को देखने के लिए उमड़ते हैं। लेकिन कभी कभी सैलानियों की ये रौनक इस हसीन और खूबसूरत घाटी के लिए चुनौती बन जाती है। जैसे जैसे पर्यटकों की तादाद बढ़ती है, कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट पर गंदगी और कचरा भी बढ़ने लगता है, और इसी चुनौतियों से निपटने के लिए कश्मीर के ही रहने वाले रऊफ ने एक बेहतरीन पहल की है।
6: लोग आते हैं, लोगों को आना चाहिए, ये आपके लिए ही है, तो मैं चाहता हूँ कि ये लोगों का एसेट है, ठीक है, ये हर किसी बंदे का एसेट है, और आप इसको उसी तरह से ले लो ताकि ये आपको अपना है, उसी हिसाब से इसको मेंटेन रखिए, ताकि जो आपकी अपना जो सर्टिफिकेशन है, आपको ये हर तरह का पीस दे रहा है, ये नेचर आपको हार्म नहीं कर रहा है, आप नेचर को हार्म कर रहे हो यहाँ पे, और जो है इसको हमें इसकी ज़रूरत है, नेचर को हमारी ज़रूरत नहीं है। अगर ये 100 साल 50 साल भी ऐसे ही रहेगा तो इसको हमारी ज़रूरत नहीं है, ग्रो बाय डिफ़ॉल्ट करेगा, बट जो हमारी प्रॉब्लम है हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है। अगर हम इसी को तबाह करेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि हमारी अपकमिंग जनरेशन इसका मज़ा उठाएगी और इसका ये नज़ारा देख पाएगी।
5: कश्मीर की जन्नत को बेदाग रखने के लिए दक्षिण कश्मीर के शोपियां का एक युवा एक बेहतरीन मिसाल बनकर उभरा है। मिलिए केलर इलाके के रहने वाले रऊफ से, जो पिछले 5 सालों से उन सभी पर्यटक स्थलों पर लगातार स्वच्छता अभियान चला रहे हैं जहां सैलानियों की वजह से कचरा जमा हो जाता है।
7: केलर के रहने वाले रऊफ ने एक प्रेरणा जरूर दी है उन लोगों के लिए, उन छात्रों के लिए जो पिकनिक के लिए आते हैं, लेकिन उन्हीं जगह बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक की वजह से हमारी जो सरसब्ज ज़मीन है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। अगर इंसान में अच्छे इखलाक हो, अच्छा सोच हो, तो बंजर को आबाद कर सकता है, और अगर इंसान में गलत सोच हो, वो सरसब्ज ज़मीन को बंजर करने में कोई कसर बाकी पीछे नहीं रह सकता है।
5: रऊफ की इस पहल का असर भी हुआ। जो काफिला रऊफ ने शुरू किया उसमें धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। युवाओं के साथ ही आज इस अभियान में रिटायर्ड पेशेवर और बुजुर्ग भी पूरे उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं। रऊफ सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी अनदेखी खूबसूरती को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमरलैंड एलिगेंस नाम की एक किताब भी लिखी है। इस किताब में दक्षिण कश्मीर के उन खूबसूरत लेकिन अनदेखे पर्यटक स्थलों का जिक्र है जो अब तक आधिकारिक टूरिज्म मैप से गायब है। शोपियां की इन खूबसूरत और मनमोहक वादियों के बीच रऊफ की ये पहल साबित करती है कि जब युवा अपने समाज और पर्यावरण की जिम्मेदारी उठाते हैं तो तस्वीर यकीनन बदलती है। रऊफ की ये कोशिश न सिर्फ कश्मीर को साफ रख रही है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा संदेश भी है। शोपियां से इरशाद मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: कौन सा तेल शनि ग्रह की समस्याओं को दूर कर देता है? किस तेल के प्रयोग से कर्जे उतर जाते हैं? और कौन से तेल का प्रयोग करने से डायबिटीज में सुधार होता है? क्या है ज्योतिष में तेल का महत्व और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
9: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
10: Social media ki head card, deadly action. Womanly Despai Universe mein, Alia ka dhamaka. मेंटल हेल्थ से लड़कर इंडस्ट्री में बनाई पहचान। आलिया के फिल्मी सफर की अनकही दास्तान। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
4: गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक मॉनसून दिखा रहा अपने रंग, सूरत में भारी बारिश के चलते उफान पर तापी नदी, थाड़े में सड़क से लेकर गली तक पानी से लबा। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले लबालब, पालमपुर की न्यूगल नदी में फंसे 7 पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू, पुलिस प्रशासन के सैलानियों को सतर्क रहने की अपील। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह, पवित्र यात्रा के दूसरे दिन अब तक करीब 30,000 भक्तों ने किए दर्शन, घाटी में सुनाई दे रही बम बम भोले की गूंज। अमरनाथ यात्रा के बीच आया एक और गौरवशाली पल, पहलगाम में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में फहराया गया तिरंगा, आस्था दृढ़ता और वीरता का बना प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को दी विकास की सौगात, जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल के अलावा पचपदरा रिफाइनरी का किया उन्होंने शुभारंभ, गुजरात के सारंड में सेमीकंडक्टर यूनिट का उद्घाटन। भारत मंडपम में देश के सबसे बड़े टॉय एक्सपो का हुआ शुभारंभ, 7 जुलाई तक चलेगा ये एक्सपो, बिजनेस के नए अवसरों को मिलेगा बड़ा मंच।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने यशराज फिल्म्स की पहली वुमन लीड स्पाई थ्रिलर में अपने एक्शन सीक्वेंस से तहलका मचा दिया है। जी हाँ, यूं तो इस अभिनेत्री की इमेज एक सॉफ्ट और सोबर लड़की की है, लेकिन यशराज फिल्म्स ने नारी प्रधान स्पाई थ्रिलर बनाने का फैसला किया तो दाव इसी सॉफ्ट और सोबर इमेज वाली अभिनेत्री पर लगाया। कमाल यह है कि अपनी इमेज के उलट इस अभिनेत्री ने स्पाई यूनिवर्स मूवी में भी दमदार अभिनय कर सबका दिल जीत लिया।

0: आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि यशराज फिल्म्स की वुमन लीड स्पाई यूनिवर्स की पहली फिल्म अल्फा की सीता यानी कि आलिया भट्ट है। जी हाँ, 3 जुलाई को रिलीज हुई अल्फा को बॉक्स ऑफिस पर उस तरह की ओपनिंग नहीं मिली जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आलिया भट्ट अपने एक्शन से दर्शकों का दिल जीत रही है। साफ है कि स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर से शुरू कर आलिया ने अल्फा तक का बेमिसाल सफर तय कर लिया है। ये वही आलिया है सोशल मीडिया पर कभी जिनके मीम्स की भरमार रहती थी। एक समय आलिया की ट्रोलिंग नेटिजंस का स्ट्रगल बन गया था। हालांकि सोशल मीडिया पर आलिया का जो परसेप्शन बना, आलिया की हकीकत उससे बिल्कुल जुदा है।
1: आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी है।
2: And she's such a fine actress. और ये मूवी में भी टॉप नॉच एक्शन, बहुत ही फुल पैक्ड एक्शन है।
3: एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वार, पठान, टाइगर 3 और वार 2 जैसी स्पाई यूनिवर्स की धमाकेदार फिल्में दे चुके यशराज फिल्म्स ने पहली बार जब वुमन लीड स्पाई थ्रिलर अल्फा बनाई तो दांव खेला उस आलिया भट्ट पर सोशल मीडिया पर जिसकी इमेज एयरहेड की रही है। बॉक्स ऑफिस पर अल्फा की ओपनिंग बेशक उम्मीद के मुताबिक नहीं रही, लेकिन यशराज फिल्म्स की पहली वुमन लीड स्पाई यूनिवर्स मूवी में आलिया ने अपने नेल बाइटिंग एक्शन सीक्वेंस और संजीदा अदाकारी के दम पर दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म के कथानक और निर्देशन पर सवाल उठाने वाले भी आलिया की एक्टिंग की दिल खोल कर तारीफ कर रहे हैं।
1: आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी है, सरवरी बाग की एक्टिंग अच्छी है। एक्टिंग में तो दे आर बोर्न एक्टर, तो उसमें तो कोई कमी निकाल नहीं सकता, लेकिन स्टोरी वाइज जो होनी चाहिए मूवी वो नहीं है।
4: बेसिकली आलिया मैम की जब बॉलीवुड करियर स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, तो उसमें वो काफी एकदम ऐसे होते हैं ना, स्वीट सी टीनेजर टाइप से रोल स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे उन्होंने लव स्टोरीज वगैरह किए, फिर हम सब सरप्राइज हो गए आलिया मैम को गंगूबाई में देख के, एकदम अलग सा रोल। एंड अभी इधर अल्फा में एक्शन वाला रोल, तो अच्छा लगा, वो अपने आप को प्रूफ कर रही है कि वो सारे कैरेक्टर्स में फिट हो सकती है।
2: अभी मुझे मूवी से काफ़ी आशाएं थी, क्योंकि इस तरह की जो स्पाई थ्रिलर मूवीज होती हैं, एक्शन मूवीज होती हैं, उसमें आलिया भट्ट की राजी मूवी याद आ जाती है हमेशा। एंड शी इज सच ए फाइन एक्ट्रेस, और ये मूवी में भी टॉप नॉच एक्शन, बहुत ही फुल पैक्ड एक्शन है।
5: ये अल्फा मुझे फिल्म अच्छी लगी है, फिल्म का जो एक्शन है वो काफ़ी तगड़ा है, आलिया भट्ट ने एक्टिंग काफ़ी टॉप नॉच की है, और साथ ही साथ जो शर्वरी है उन्होंने केमिस्ट्री काफ़ी, मतलब दोनों की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी तगड़ी है, तो फिल्म देखकर अच्छा लगा है।
3: साफ है कि पर्दे पर अपनी सॉफ्ट इमेज के लिए मशहूर रही आलिया यशराज फिल्म की पहली नारी प्रधान स्पाई थ्रिलर में निर्माता निर्देशक से लेकर दर्शकों तक की उम्मीद पर 100% खरा उतरी हैं। स्पाई थ्रिलर मूवी अल्फा में अपने एक्शन सीक्वेंस से धमाल मचा रही ये वही आलिया हैं सोशल मीडिया पर जिनकी इमेज कभी अनइन्फॉर्म्ड और इग्नोरेंट यूथ की बन गई थी।
6: Who is the president of India?
7: Pranab Mukherjee.
3: एक समय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आलिया भट्ट के मीम से भरे रहते थे। आलम ये था कि किसी ने तथ्यात्मक रूप से कोई गलत बयानी की तो सोशल मीडिया पर तुरंत उसकी तुलना आलिया भट्ट से कर दी जाती थी। बहरहाल ये आलिया के बारे में सोशल मीडिया यूजर्स या नेटिजन्स का अपना परसेप्शन था। आलिया की रियलिटी नेटिजन्स के परसेप्शन से कोसों दूर है। आपको बता दें कि आलिया को लेकर इस तरह का सोशल मीडिया परसेप्शन इसलिए बन गया था क्योंकि एक बार उन्होंने देश के राष्ट्रपति का नाम गलत बता दिया था। दरअसल बतौर लीड एक्ट्रेस 2012 में आई अपनी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रमोशन के लिए आलिया करण जौहर के शो कॉफी विद करण में अपने को स्टार्स वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ पहुंची थी। करण ने लाइटर मोड में आलिया से भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया और आलिया ने उत्साह में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का नाम बता दिया था, जबकि उस समय देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे।
6: Who is the president of India?
3: आलिया की जिंदगी की गहराई में उतरे बगैर, पूरी सच्चाई जाने बगैर नेटिजन्स ने ये मान लिया कि आलिया का आईक्यू लेवल बेहद लो है और सामान्य ज्ञान तो शून्य है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है कि आलिया भट्ट अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी ADHD नामक एक रेयर डिजीज से पीड़ित हैं, जिसका पेशेंट कभी कभी जोन आउट हो जाता है। जोन आउट का मतलब ये है कि पेशेंट फिजिकली कहीं और होता है लेकिन उसका दिमाग अचानक किसी दूसरे जोनर में चला जाता है।
7: मैं बचपन से जोन आउट करते आई हूँ, हमेशा क्लासरूम में भी जोन आउट होती थी, कॉन्वर्जेशंस में जोन आउट होती हूँ। तब रिसेंटली मैंने एक पर्सनालिटी जो भी क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और मुझे पता चला कि मैं ADHD के स्पेक्ट्रम में काफ़ी हाई हूँ। मुझे ADHD है, तो अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर।
3: आपको बता दें कि ADHD डिजीज का IQ लेवल से कोई रिलेशन नहीं है। काफी हाई IQ वाले लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है। होता यही है कि कभी कभी इसका पेशेंट जोन आउट हो जाता है और उस दौरान कोई ऐसा बयान दे सकता है या ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकता है जिससे उसके IQ लेवल पर सवाल उठने लगे। आपको बता दें कि आलिया का न सिर्फ IQ लेवल बल्कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी नेक्स्ट लेवल का है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि साल 2012 से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी आलिया कैमरा ऑन होने के बाद कभी जोन आउट नहीं होती। अलबत्ता कैमरे के सामने आते ही आलिया इतनी फोकस्ड हो जाती हैं कि उन्हें अपने किरदार और संवाद के सिवा कुछ भी ध्यान नहीं रहता।
7: आई एम सो प्रेजेंट जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ, चाहे मैं वो किरदार में प्रेजेंट हूँ, मतलब द पार्ट दैट आई एम प्लेइंग आई एम प्रेजेंट एज द कैरेक्टर, बट आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। और फिर अभी ऑफकोर्स आफ्टर राहा, जब भी मैं उसके साथ रहती हूँ, आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। तो ये 2 आई थिंक मोमेंट्स हैं मेरी लाइफ में जहाँ पे मैं सबसे ज्यादा पीसफुल फील करती हूँ।
3: साफ है कि आलिया भट्ट अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को भली भांति पहचानती हैं। यही वजह है कि कॉफी विद करण में गलत जवाब देने के बाद जबरदस्त तरीके से ट्रोल होने पर भी आलिया पूरी तरह काम एंड कूल रही। काफी वक्त बाद आलिया से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने पूरे ह्यूमर के साथ जवाब देकर ट्रोलर्स को भी ट्रोल कर दिया।
8: मैं अब ऑनेस्टली बोर हो गई हूँ उस जोक से, मेरे को एक्चुअली नया जोक चाहिए। आई वांट टू मेक अ मिस्टेक अगेन, हाँ कोई, मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं क्या गलती करूँ कि फिर से लोग उसको 1-2 साल और खींचेंगे।
3: आपको बता दें कि आलिया बॉर्न एक्ट्रेस हैं। संयोग से इनका जन्म एक ऐसे घराने में हुआ जहां माहौल पूरी तरह फिल्मी था। मार्च 1993 को हुए आलिया के जन्म से काफी पहले से पिता महेश भट्ट अर्थ, सारांश, नाम, आशिकी, सड़क और दिल है कि मानता नहीं जैसी कल्ट और आइकॉनिक फिल्मों का निर्देशन कर इंडस्ट्री में अलग पहचान स्थापित कर चुके थे। आलिया की मां सोनी राजदान भी 36 चौरंगी लेन, मंडी, सारांश और त्रिकाल जैसी 8 फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी से क्रिटिक्स की शाबाशी हासिल कर चुकी थीं। आलिया ने भी जब से होश संभाला एक्टिंग को छोड़कर किसी दूसरे काम का तसव्वुर इनके मन में एक बार भी नहीं हुआ।
8: मैं हमेशा कहती कि मैं एक्शन पे ही पैदा हुई थी, अपनी माँ की कोख से। आई डोंट थिंक देयर वाज दैट 1 सेकंड आल्सो कि मैं दुनिया में आई, मुझे उस सेकंड पे ही पता था कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है और मुझे एक्टर बनना है और मुझे एक्टिंग करनी है। आई थिंक उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था।
3: जिन लोगों ने आलिया को अनइन्फॉर्म्ड यूथ का एम्बेसडर बना दिया था उन्हें ये जानना चाहिए कि आलिया भट्ट जब सिर्फ 4 साल की थी तभी उन्होंने श्यामक डावर डांस एकेडमी की समर क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। बात सिर्फ इतनी नहीं है, डांस एकेडमी में 4 साल की आलिया इंडस्ट्री की प्रेस्टिजियस फैमिली का तगमा लेकर नहीं बल्कि लर्निंग हंगर के साथ जाती थी। यही वजह है कि बाकी बच्चों के मुकाबले वो ज्यादा अच्छे से चीजों को ग्रैस्प करती थी। खुद श्यामक डावर ने आलिया की तारीफ करते हुए एक बार कहा था कि आलिया सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेती हैं।
7: श्यामक डावर जी के जो समर कैंप समर डांस क्लासेस थे यार वो एक्चुअली मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का बहुत ही अहम हिस्सा था एंड आई रिमेम्बर दोज मोमेंट्स वेरी क्लियरली क्योंकि जेन्युइनली इम्पैक्ट मेरी लाइफ में काफ़ी था क्योंकि कॉन्फिडेंस लोगों के सामने डांस करना फ्री बनना ऐसे फील करना कि आप सबसे छोटे हो पर फिर भी बड़े हो और डांस करना है।
3: 4 की उम्र में श्यामक डावर की डांस क्लास ज्वाइन करने वाली आलिया 7 साल की होते होते नृत्य कला में इतनी पारंगत हो गई कि स्कूल के एक डांस कंपटीशन में श्यामक डावर ने उन्हें हायर क्लास की छात्राओं के बीच भेज दिया क्योंकि डावर को ये भरोसा हो गया था कि हायर क्लास की छात्राओं के बीच भी आलिया बेहतर परफॉर्म करेंगी। हालांकि तब मासूम आलिया के साथ एक मजेदार वाकया भी पेश आया था।
7: क्लास में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था मेरा तो श्यामक सर ने मुझे एक सीनियर बैच में डाल दिया तो मैं 7 साल की थी और मैं क्लास के अंदर आई और इंस्ट्रक्टर कंफ्यूज हो गए कि आप ये क्लास में हो क्योंकि इट वॉज देवर लिटरली अडल्ट इन दैट क्लास और मैंने बोला हाँ श्यामक सर लाइक आई एम सपोज टू कम इन दिस क्लास तो पहले उनका क्वेश्चन था हाउ ओल्ड आर यू तो मैंने बोला 7 But then immediately मैंने बोला, but it's my birthday tomorrow. I'm going to be 8 tomorrow.
3: दिलचस्प बात तो ये है कि अगले दिन आलिया का जन्मदिन नहीं था, लेकिन उन्होंने झूठ इसलिए बोल दिया क्योंकि उन्हें डर हो गया था कि कम उम्र को देखते हुए उन्हें कहीं नीचे की क्लास में न भेज दिया जाए। इस लेवल का आत्मविश्वास था आलिया के भीतर बचपन से ही। कमाल ये है कि यही आत्मविश्वास तब भी बना रहा जब आलिया ने रुपहले पर्दे पर चुनौतीपूर्ण किरदार निभाना शुरू किया। इंडस्ट्री के स्टार फैमिली से आने वाले नेपो किड्स आमतौर पर फिल्में साइन करने से पहले अपने घर के अनुभवी सदस्यों से सलाह मशविरा करते हैं, लेकिन आलिया का हिसाब अलग है। वो फिल्में साइन करने से पहले अपने पिता महेश भट्ट या माँ सोनी राजदान यहाँ तक कि पति रणबीर कपूर से भी क्लियरेंस लेना जरूरी नहीं समझती बल्कि इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स के आधार पर खुद ही फैसले लेती हैं।
7: मैं एक्चुअली अपना माइंड मेकअप करने के बाद डिस्कस करती हूँ मैं बिकॉज आई एम नॉट समबडी हु नीड्स टू बी कन्विंस्ड फॉर अ फिल्म एक तो बात यह है और दूसरी बात यह है कि मेरा इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स ही सबसे प्योर रिस्पॉन्स होता है तो अगर कोई मैं इंस्टिंक्टिवली अगर एक्साइट हो जाऊंगी और किसी ने अगर बोल दिया कि ये मतलब ऐसे मत करो आई एम जस्ट गिविंग इफ केस सिनेरियो मेरे साथ हुआ नहीं है बट अगर बोल दिया तो फिर मेरे दिमाग में डाउट पैदा हो जाएगा तो मेरी जर्नी मेरी है और मेरी डिसीजन भी मेरी होनी चाहिए इसलिए दैट्स द रीजन नॉट फॉर एनी अदर रीजन।
3: आप समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया की नजर में अनइन्फॉर्म्ड सेलेब्स रही आलिया की प्रतिभा उन्हें लेकर बने परसेप्शन से बिल्कुल अलग है। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से किक हुए एकाध अपवादों को छोड़ दें तो आलिया के लेवल का आईक्यू और टैलेंट हिंदी सिनेमा के 100 साल के इतिहास में इक्का दुक्का अभिनेत्रियों में ही नजर आएगा।
0: अल्फा मूवी में अपने एक्शन से धमाल मचा रही आलिया यूं तो बॉलीवुड की एक दमदार फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। लेकिन रुपहले पर्दे के अपने यादगार सफर में आलिया ने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साए का सहारा कभी नहीं लिया। आलिया के पिता महेश भट्ट बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा निर्देशकों में शुमार है जबकि माँ सोनी राजदान आज फिल्मों की आइकन रही है। लेकिन आलिया ने अपने फिल्मी सफर में आगे बढ़ने के लिए कभी अपने माता पिता से मदद की उम्मीद नहीं की। शुरू से ही उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट पर भरोसा किया और इसका असर ये है कि आलिया आज बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेट अभिनेत्रियों की फेहरिस्त में काफी ऊंचा मकाम हासिल कर चुकी है।
3: इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नेपो किड्स के सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक मिलने की रवायत नई नहीं है। हालांकि ज्यादातर नेपो किड्स अपने पारिवारिक वट वृक्ष के घने साए में अंकुरित होकर फलते फूलते हैं और उसी साए में फना भी हो जाते हैं। पर कुछ नेपो किड्स ऐसे भी हैं जो मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर अपनी पारिवारिक लिगेसी से निकलकर अलग साम्राज्य स्थापित करते हैं। आलिया भट्ट दूसरी कैटेगरी की नेपो किड हैं। बतौर लीड हीरोइन अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने अगर प्रतिभा नहीं तो जुनून, लगन और मेहनत की तो मुनादी कर ही दी थी। तनुजा चंद्रा के निर्देशन में बनी और 1999 में रिलीज हुई आइकॉनिक मूवी संघर्ष में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू करने वाली आलिया भट्ट को हीरोइन के तौर पर डेब्यू करने का मौका बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के जरिए दिया था। आलिया की उम्र तब महज 18 साल थी, लेकिन उनका फिगर फिल्म के किरदार के लिहाज से फिट नहीं था। ऑडिशन के दौरान करण जौहर ने आलिया के लिए कड़ी शर्त रख दी कि उन्हें अपना वेट लॉस करना होगा। आलिया टीनेज में ही अपने करियर को लेकर कितनी संजीदा थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 3 महीने के भीतर उन्होंने अपना वेट 68 किलो से कम करके 51-52 किलो कर लिया। क्योंकि बचपन से बस एक ही तो सपना था आलिया का, सितारा बनकर सिल्वर स्क्रीन पर चमकने का। इसीलिए शूटिंग के दौरान सेट पर पहली बार जब कैमरा ऑन हुआ तो उनका उत्साह चरम पर पहुंच गया।
7: वो कहते हैं ना, एक्सट्रीम जॉय फीलिंग आता है कि कैमरा के सामने वो शूटिंग हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, बट यू फील के अंदर से कुछ। इवन दो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाज अ ब्लर, जो पहला गाना जो मेरी लाइफ की पहली दिन थी शूटिंग की, वो राधा के लिए थी। तो एक शॉट था, मेरे को नीचे आना था, टर्न करके ऐसा कुछ करना था, फिर दुपट्टा उठा के कैमरा में देखना था और ब्लोअर फैन आ रहा था, उसी में ही मेरे को ऐसे बहुत मजा आ गया।
3: पहली बार कैमरे के सामने आने के बाद आलिया बेशक उत्साहित थी, लेकिन फिल्म साइन करने के बाद वो फेल्योर के फियर साइकोसिस का शिकार हो गई थी। आलिया को ये डर सताने लगा कि अगर वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाई या फिल्म पिट गई तो आगे करेंगी क्या। पिता महेश भट्ट को जब बेटी के फियर साइकोसिस के बारे में पता चला तो उन्होंने अलहदा तरीके से आलिया को उससे बाहर निकालने की कोशिश की। महेश भट्ट ने बेटी को विशेष फिल्म्स के अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि मन में जो भी डर है, आशंका है, उसका इजहार सबके सामने करो।
7: For some reason, my father is outstanding in a crisis situation. जब भी आप crisis में हो, आप उनको phone करो, he has the most calm tone and he'll deal with the situation in the best way. In this particular situation, उन्होंने decide किया, office आ जाओ, सबके सामने बोलो, तुम कैसे feel कर रही हो? जो actually एक बहुत अजीब sequence situation है, क्योंकि आप पहले तो इतना vulnerable feel करो, अब सबके सामने उठ के बोलना है कि मैं ऐसे feel कर रही हूँ।
3: महेश भट्ट ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने का कोई मनोवैज्ञानिक अनुभव था, ये तो नहीं बता, लेकिन उनका ये अनोखा फॉर्मूला आलिया के लिए क्लिक जरूर कर गया। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डर का डंका बज जाने के बाद आलिया के अंदर की घुटन कम हो गई। वैसे 19 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर बॉक्स ऑफिस पर तो कामयाब रही, लेकिन आलिया की इमेज बॉर्बी डॉल से कुछ ज्यादा नहीं बन पाई। उधर क्रिटिक्स ने भी आलिया के डेब्यू को महेश भट्ट के प्रभाव से जोड़ दिया। लेकिन फिल्म हिट होने के बाद बड़े पर्दे पर बड़ा मकाम हासिल करने के आलिया के संकल्प के साथ उनका आत्मविश्वास भी जुड़ गया। अगली ही फिल्म हाईवे में अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर आलिया ने क्रिटिक्स को पहले से तय परसेप्शन को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। 21 फरवरी 2014 को रिलीज हुई हाईवे में वीरा त्रिपाठी के डी ग्लैमरस किरदार में बेहतरीन अभिनय का तड़का मारकर आलिया ने उन्हें बॉर्बी डॉल कहने वालों का मुंह बंद कर दिया। दरअसल अभिनय को लेकर आलिया का फलसफा शुरू से ही कन्वेंशनल नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिव रहा है।
8: कैमरे के सामने का जो एक फीलिंग होता है ना, उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता है। एट द एंड ऑफ द डे मैं जितना भी चाहे डायलॉग सीख लूँ या कुछ रट्टा मार लूँ, फिजिकल ट्रेनिंग कर लूँ, अपने आप को कमरे में बंद करके मेथड एक्टिंग भी कर लूँ, अगर कैमरे के सामने मुझे फीलिंग नहीं आ रही है तो कैमरा पकड़ लेगा और मेरी परफॉर्मेंस जो है उसमें दिख जाएगी। तो तैयारी जारी रहती है फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं कैमरे के सामने सिर्फ फील करने की कोशिश करती हूँ।
3: हाईवे के बाद आलिया ने इंडस्ट्री में मुनादी कर दी कि मीना कुमारी और मधुबाला की खींची हुई अदाकारी की लीक इस युग में भी मिटी नहीं है। 2016 में आई उड़ता पंजाब के बाद तो क्रिटिक्स ने भी स्वीकार कर लिया कि आलिया की अदाकारी किसी एक जोनर तक महदूद नहीं है। उड़ता पंजाब के एक महले कुचैले भोजपुरी लड़की के किरदार में आलिया ऐसे गुम हो गई कि पहचानना मुश्किल हो गया कि ये वही राधा है जिसने डिस्को दीवाने पर ठुमके लगाए थे। उड़ता पंजाब के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। दो हजार 2018 में आई राजी में एक कश्मीरी जासूस के किरदार में आलिया ने अपने अभिनय से इतनी जान फूंक दी कि 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली कुछ एक महिला प्रधान फिल्मों में शुमार हो गई। वहीं 2019 में आई गली बॉय में सफीना के किरदार को आलिया ने अपनी एक्टिंग से जीवंत कर दिया। गली बॉय में नारी को प्रकृति से सहज प्राप्त कोमलता और जरूरत पड़ने पर प्रकट होने वाली आक्रामकता के मिश्रण को आलिया ने इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद तो आलिया बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइनों की फेहरिस्त में शुमार हो गईं। 25 फरवरी 2022 को रिलीज हुई गंगूबाई काठियावाड़ी आलिया के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। संजय लीला भंसाले की इस फिल्म में आलिया ने एक वेश्यालय की मालकिन और माफिया क्वीन के चुनौतीपूर्ण किरदार को सहजता के आईने में उतार कर सबको हतप्रभ कर दिया। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया को सबसे प्रेस्टीजियस माने जाने वाले नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया।
9: गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं अभिनेत्री आलिया भट्ट।
3: 2022 आलिया के लिए बहुत इवेंटफुल साल साबित हुआ। साल 2022 में कोरोना की मार से पस्त हो चुकी फिल्म इंडस्ट्री दोबारा उठ खड़े होने की जद्दोजहद कर रही थी और इसी साल आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी के अलावा आरआरआर और ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जैसी फिल्में रिलीज हुई। 2022 में ही उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर किस्मत आजमाई और डार्लिंग्स प्रोड्यूस की, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और सफल भी रही। 2023 में आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और 2024 में आई जिगरा ने भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया। साल 2027 में आलिया संजय लीला भंसाली के एक और शाहकार लव एंड वार में भी नजर आने वाली हैं। साफ है कि आलिया बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट अभिनेत्रियों की सूची में शुमार हो चुकी हैं। आज आलिया अपनी एक फिल्म के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस लेती हैं।
0: तो बंदे में दम में आज आपने आलिया भट्ट के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
10: कौन सा तेल शनि ग्रह की समस्याओं को दूर कर देता है? किस तेल के प्रयोग से कर्जे उतर जाते हैं और कौन से तेल का प्रयोग करने से डायबिटीज में सुधार होता है? क्या है ज्योतिष में तेल का महत्व और क्या हैं इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
11: Hi everyone, Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
12: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
13: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
10: कौन सा तेल शनि ग्रह की समस्याओं को दूर कर देता है? किस तेल के प्रयोग से कर्जे उतर जाते हैं? और कौन से तेल का प्रयोग करने से डायबिटीज में सुधार होता है? क्या है ज्योतिष में तेल का महत्व और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
14: Jazz fans, rejoice! Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
3: Social media ki airhead ka deadly action. Womanly Despise Universe में आलिया का धमाका। मेंटल हेल्थ से लड़कर इंडस्ट्री में बनाई पहचान। आलिया के फिल्मी सफर की अनकही दास्तान। वंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ Good News Today.
15: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
16: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
15: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
16: They score!
15: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
17: और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यार।
18: Good News Today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
19: गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक मानसून दिखा रहा अपने रंग, सूरत में भारी बारिश के चलते उफान पर तापी नदी, थाड़े में सड़क से लेकर गली तक पानी से लबालब। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले लबालब, पालमपुर की न्यूगल नदी में फंसे 7 पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू, पुलिस प्रशासन के सैलानियों को सतर्क रहने की अपील। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह, पवित्र यात्रा के दूसरे दिन अब तक करीब 30,000 भक्तों ने किए दर्शन, घाटी में सुनाई दे रही बम बम भोले की गूंज। अमरनाथ यात्रा के बीच आया एक और गौरवशाली पल, पहलगाम में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में फहराया गया तिरंगा, आस्था दृढ़ता और वीरता का बना प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को दी विकास की सौगात, जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल के अलावा पचपदरा रिफाइनरी का किया उन्होंने शुभारंभ, गुजरात के सारंड में सेमीकंडक्टर यूनिट का उद्घाटन। भारत मंडपम में देश के सबसे बड़े टॉय एक्सपो का हुआ शुभारंभ, 7 जुलाई तक चलेगा ये एक्सपो, बिजनेस के नए अवसरों को मिलेगा बड़ा मंच।
18: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: भविष्य के युद्ध छोटे, तेज और टेक्नोलॉजी आधारित होंगे, लिहाजा युद्ध जैसे हालात में बढ़त उसी को मिलेगी जो दुश्मन से 10 कदम आगे की तैयारी रखेगा। और भारत को भी ये अच्छे से पता है कि उसे खतरा दो मोर्चों से है, लिहाजा तैयारी भी जबरदस्त होनी चाहिए। बास बटालियन, रुद्र ब्रिगेड, अश्विन ड्रोन प्लाटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, ये उसी तैयारी का हिस्सा है जिनका मकसद सेना को अधिक तेज, सक्षम, सटीक और तकनीक से जुड़ा बनाना है।
1: जय यानी जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता, इनोवेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का दिया हुआ नारा, और मल्टी डोमेन ऑपरेशन की मुहिम के तहत रुद्रा ब्रिगेड, भैरव बटालियन, अश्नि ड्रोन प्लेटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्रा बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड और आईबीजी यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जैसे कदम इसी सोच का हिस्सा है।
0: अनुभवों ने यह साफ कर दिया है कि भविष्य में सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जानकारी, सर्विलांस, वेपन, कम्युनिकेशन सिस्टम और कमांडर कितनी तेजी से एक साथ काम कर पाते हैं। इसीलिए सेना अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के बजाय अधिक समन्वित और तेज व्यवस्था की ओर बढ़ती जा रही है।
1: भविष्य में युद्ध और अधिक ज्वाइंट, इंटीग्रेटेड और थिएटर ओरिएंटेड होगा, इसलिए हमारी दिशा स्पष्ट है, साथ देखना, साथ निर्णय लेना और साथ कार्रवाई करना। भारतीय सेना में परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर चलती आ रही है। इन दो वर्षों में डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग, आधुनिकीकरण, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, ज्वाइंटनेस, सिस्टम रिफॉर्म और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर तीव्र गति से काम हुआ है।
0: भारतीय सेना भविष्य की जंग के लिए खुद को तेजी से तैयार कर रही है। इसी दिशा में सेना ने बास बटालियन नाम से खास ड्रोन यूनिट बनाने का फैसला किया है। बास बटालियन में ट्रेन जवानों की एक स्पेशल टीम होगी जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम का संचालन और प्रबंधन करेगी। इन बटालियनों का काम सीमा पर लगातार निगरानी रखना, दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी जुटाना और जरूरत पड़ने पर सटीक कार्रवाई में मदद करना होगा। सूत्रों के मुताबिक बास बटालियन को आर्मी एविएशन कोर के अंतर्गत रखा जा सकता है। बास बटालियन फ्रंटलाइन यूनिट्स और खुफिया सिस्टम के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करेगी जिससे दुश्मन का दाव धरा का धरा रह जाएगा।
2: इंडियन आर्मी में करीबन 380 इन्फेंट्री बटालियंस हैं। एक इन्फेंट्री बटालियन में करीबन 1000 जवान होते हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि इंडियन आर्मी के जो बटालियंस हैं उनको आस्ते आस्ते बास बटालियंस में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी जैसे कन्वेंशनल इन्फेंट्री बटालियन में अल्फा कंपनी, ब्रेवो कंपनी, चार्ली कंपनी, डेल्टा कंपनी होती थी, अब एक छोटी सी टुकड़ी यह भी रेज की जाएगी इन बटालियंस में, जिनके पास अलग अलग तरह के ड्रोन्स होंगे, रिकनेसेंस ड्रोन होंगे जो कि छोटी दूरी के या लंबी दूरी के होंगे। इसी तरह से उनके पास अटैक ड्रोन्स भी होंगे जो कि शत्रु के ऊपर जाके हमला करके वापस आ सकें। सबसे बड़ी बात है कि इन इन्फेंट्री बटालियंस में आस्ते आस्ते सुसाइड ड्रोन यानी कामिकाजे ड्रोन इंडक्ट किए जाएंगे जो कि शत्रु के पोजीशन के ऊपर जाके लॉयटर कर पाएंगे। यानी वहाँ पर 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट शत्रु की लोकेशन के ऊपर घूमते रहेंगे।
0: अभी सेना की अश्नि ड्रोन पलटन पैदल सेना के साथ मिलकर कम दूरी की निगरानी करती है। दिव्यास्त्र और शक्तिबाण जैसी इकाइयाँ हमलावर ड्रोन और लाइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल करती हैं। बास बटालियन इन सबसे ऊपर की कैटेगरी में होगी और लंबी दूरी की निगरानी, लक्ष्य पहचान और बड़े स्तर पर ड्रोन संचालन की जिम्मेदारी संभालेगी। ड्रोन्स का काम अब केवल निगरानी करना या फिर विशेष अभियानों तक सीमित नहीं, बल्कि ड्रोन की ताकत आज की तारीख में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ड्रोन न केवल दुश्मन पर हमला कर सकते हैं बल्कि साथ ही साथ जानकारी जुटा सकते हैं। इसी के साथ साथ रेकी के लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है और साथ ही साथ हमारे

0: दौरान पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के रण ऑफ कच्छ तक करीब 1000 ड्रोन से हमला किया था। भारतीय सेना की एंट्री एयरक्राफ्ट गन और काउंटर ड्रोन सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। इसके बाद सेना ने ड्रोन फोर्स खड़ी करने का संकल्प लिया और भैरव बटालियन, दिव्यास बैटरी और अश्नि प्लाटून जैसी नई इकाइयों की शुरुआत की। सेना के हर इन्फेंट्री बटालियन में अश्नि ड्रोन प्लाटून बनाई गई है। एक प्लाटून में 20 सैनिक हैं, जिन्हें FPV, सर्विलांस, स्वॉर्म ड्रोन और लॉयटरिंग म्यूनिशन चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। भारतीय सेना की करीब 380 इन्फेंट्री बटालियन में ऐसी इकाइयां शामिल की जा रही हैं।
1: हर इन्फेंट्री बटालियन में जब वो बाज बटालियन में कन्वर्ट होंगे तो एक एक अश्नि प्लाटून डेवलप की जाएगी। इस डिप्लॉयमेंट के बाद हर इन्फेंट्री बटालियन की जो अश्नि प्लाटून होगी उनको करीबन 20 सोल्जर्स ऐसे ट्रेन करने पड़ेंगे जो कि रिकनेसेंस ड्रोन को उड़ा सकें, अटैक ड्रोन को कामयाबी से अटैक करवा सकें। सबसे बड़ी बात है जो सुसाइड ड्रोन होते हैं, कामिकाजी ड्रोन, उसमें जो FPV होता है, फर्स्ट पर्सन व्यू, यानी ऑपरेटर जो है वो देख सकता है कि ड्रोन कहाँ उड़ रहा है, किस चीज़ को निशाना बना रहा है। FPV रोल में इन 20 सोल्जर्स को ट्रेन किया जाएगा। हर यूनिट में करीबन शुरुआती दौर में 10-10 ड्रोन दिए जा रहे हैं, जिसमें 4 ड्रोन तो रिकॉग्निशंस ड्रोन होंगे, यानी वो दुश्मन की टोह लेकर वो कमांडर को सूचित करेंगे कि दुश्मन का टारगेट कहां पर है।
0: सेना के भीतर अलग अलग आर्म्स, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, सिग्नल के बीच तालमेल और एकीकरण पर जोर दिया जा रहा है और इसी तैयारी का हिस्सा है शक्तिमान रेजिमेंट। ये भारतीय सेना की तोपखाना के अंदर बनाई जा रही एक विशेष और आधुनिक ड्रोन केंद्रित इकाई है जो दुश्मन की गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी और लक्ष्य निर्धारित करने में सक्षम होगी। शक्तिमान रेजिमेंट के जवान पारंपरिक तोपों के बजाय अनमैन्ड एरियल व्हीकल के जरिए दुश्मन पर सटीक और घातक हमला करेंगे। भविष्य के युद्धों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना की ओर से 15 से 20 शक्तिमान रेजिमेंट तैयार की जा रही हैं। ये रेजिमेंट स्वॉर्म ड्रोन, लॉयटरिंग म्यूनिशन और लॉन्ग रेंज UAV से लैस हैं, जिनकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक होगी।
1: हमारी आर्टिलरी के जो यूनिट्स हैं उनमें 20 एडिशनल शक्तिमान रेजिमेंट्स रेज की जा रही हैं। इन आर्टिलरी यूनिट्स में लॉन्ग रेंज UAV और लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का डिप्लॉयमेंट होगा। आमतौर पे जो ड्रोन्स इन्फेंट्री यूनिट्स के पास होंगी वो 5-10 किलोमीटर की दूरी तक ऑपरेट कर पाएंगी, लेकिन जो ड्रोन और UAV इन शक्तिमान आर्टिलरी रेजिमेंट्स को दिए जा रहे हैं उनकी रेंज 10-500 किलोमीटर तक होंगी, यानी डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए उनका इस्तेमाल किया जाएगा।
0: शक्तिमान रेजिमेंट सैनिकों को जोखिम में डाले बिना दुश्मन की सीमा के भीतर घुसकर सटीक पिन पॉइंट स्ट्राइक करने की क्षमता रखती है। आर्टिलरी में 15 शक्तिमान रेजिमेंट बनाई जा चुकी हैं और 11 बनाई जानी है। जो तोपखाना रेजिमेंट शक्तिमान में तब्दील नहीं होंगी उनमें दिव्यास बैटरी होगी। शुरू में 34 दिव्यास बैटरी बनाई जा रही है। दिव्यास बैटरी के पास ड्रोन और लाइटरिंग एम्यूनिशन होंगे। पारंपरिक आर्टिलरी में केवल तोप और रॉकेट होते थे, वहीं दिव्यास की अगर बात करें तो ये तोपों को एक हाईटेक वर्जन देता है। सीधे तौर पर कहा जाए तो ये डिजिटली और मानव रहित तकनीकों से इसे जोड़ता है। पारंपरिक तोपों और आधुनिक मानव रहित प्रणालियां यानी कि ड्रोन्स का एक हाइब्रिड मिश्रण हम इसको कह सकते हैं, जो दुश्मन के इलाके में घुसकर सही और सटीक हमला कर सकता है। वैसे योजना 35 से 40 ऐसी दिव्यास बैटरियां और बनाने की भी है। दिव्यास बैटरियां पारंपरिक बोफोर्स या फिर 9 वज्र जैसी तोपों के साथ लाइटिंग म्यूनिशन और निगरानी ड्रोन्स को एक साथ ऑपरेट करती हैं। दिव्यास बैटरी के ड्रोन पहले दुश्मन के बंकर, ठिकाने या आगे बढ़ते टैंकों को लाइव ट्रैक करते हैं। और तुरंत उनके सटीक कोऑर्डिनेट्स तोपखाने को भेजते हैं। इस तकनीक से तोपखाने की मारक क्षमता और सटीकता कई गुना बढ़ जाती है, जिससे दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक

0: पिन पॉइंट हमले किए जा सकते हैं।
1: इंडियन आर्मी की दिव्यास्त्र बैटरी जो हैं, वो आर्मी की आर्टिलरी का एक हिस्सा होंगी। इन यूनिट्स में जो रेकनेसेंस ड्रोन होंगे, वो आर्मी की जो कन्वेंशनल तोपे हैं जैसे कि बोफोर्स की गन्स, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके फायर पावर का ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगी। दिव्यास्त्र बैटरीज में रेकनेसेंस ड्रोन्स होंगे जो कि युद्ध भूमि के पीछे यानी टैक्टिकल बैटल एरिया के आगे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूरी तक रेकनेसेंस करेंगी और टोह लेंगी कि दुश्मन जो है किस दिशा से हमारे ऊपर हमला करने आ रहा है।
0: भारतीय सेना ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर अपना दबदबा कायम करने और आधुनिक नेटवर्क केंद्रित युद्धों को जीतने के लिए विशेष इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड्स का गठन करने का फैसला किया है। ये सेना के आधुनिकीकरण या रीस्ट्रक्चरिंग अभियान का एक क्रांतिकारी हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक हथियारों जैसे तोपों या टैंकों के चलने से पहले ही दुश्मन के संचार और सैन्य तंत्र को अंधा और बहरा बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड के मुख्य कार्यों में एक है स्पेक्ट्रम डोमिनेंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल, जो दुश्मन के रडार, ड्रोन, मिसाइल और वायरलेस सेट के सिग्नल्स को ब्लॉक कर पूरे स्पेक्ट्रम पर कब्जा करती है। दूसरा है दुश्मन के सिस्टम्स को जाम करना। इसमें दुश्मन के रडार नेटवर्क, एयर डिफेंस कमांड सेंटर्स और मानव रहित विमानों के डेटा लिंक को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया जाता है। अगला सिग्नल इंटेलिजेंस, इससे सैनिक दुश्मन के रेडियो सिग्नल्स और मोबाइल सैटेलाइट बातचीत को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, जिससे दुश्मन की अगली रणनीति और लोकेशन का पहले ही पता चल जाता है। किलवेव इंटीग्रेशन, ये ब्रिगेड रियल टाइम खुफिया जानकारी को तुरंत अपनी तोपखाना और एयर डिफेंस यूनिट्स के साथ साझा करती है, जिससे चिन्हित किए गए खतरों को पलक झपकते ही नष्ट किया जा सकता है।
1: भविष्य के किसी भी युद्ध में इंडियन आर्मी की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड का मुख्य काम ये होगा कि दुश्मन जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहा है अपने कमांडर्स के साथ या अपनी लोअर फॉर्मेशन के साथ, उसको मॉनिटर करना। अब दुश्मन के पास अलग अलग तरह की कम्युनिकेशन सेट होते हैं, कुछ हाई फ्रिक्वेंसी यानी HF पे काम करते हैं, कुछ VHF यानी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज पर काम करते हैं, आजकल ज़्यादातर सेट UHF यानी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं। तो इसकी जो सिग्नल इंटेलिजेंस है उसको भांप के उसको सुनना और वो जो वॉइस रिकॉर्डिंग है उसको कमांडर के सामने देना, इनका पहला काम होगा।
0: भारतीय सेना में बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण अब सिर्फ नए हथियार या उपकरण लेने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य सेना की सोच, ढांचे, प्रशिक्षण, तकनीक, कार्यप्रणाली और मानव संसाधन को एक साथ आगे बढ़ाना है। साल 2026 में भारतीय सेना में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पहली बार इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप सेना में शामिल किए जाएंगे। कुल 5 IBG बनाई गई है, जो कि 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के तहत काम करेंगी। हर IBG की कमान मेजर जनरल रैंक के अधिकारी के पास होगी। इसके अलावा चीफ ऑपरेशन ऑफिसर्स का नया पद भी बनाया गया है, जिसकी जिम्मेदारी होगी ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी के पास। एक पारंपरिक ब्रिगेड में सिर्फ एक तरह की सेना होती है, जैसे सिर्फ पैदल सेना या फिर आर्टिलरी। उन्हें तोपखाने या फिर एयर डिफेंस के सपोर्ट के लिए अच्छे मुख्यालयों से मंजूरी और यूनिट्स के आने का इंतजार करना पड़ता है। इसके उलट प्रत्येक IBG एक आत्मनिर्भर इकाई है, जिसमें युद्ध के लिए जरूरी सभी अंग पहले से ही एक ही कमांडर के तहत एकीकृत होते हैं। IBG की संरचना क्या है वो भी आपको बताते हैं। इसमें इन्फेंट्री जमीनी मोर्चे पर कब्जा करने और लड़ने के लिए पैदल सैनिक आर्म्ड, तेजी से आगे बढ़ने और दुश्मन की रक्षा पंक्ति तोड़ने के लिए टैंक और मैकेनाइज्ड गाड़ियां, आर्टिलरी जिसमें लंबी दूरी तक भारी बमबारी के लिए दिव्यास्त्र बैटरी या फिर पारंपरिक तोपें होती हैं, एयर डिफेंस जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोन से हवा में सुरक्षा मुहैया कराता है, लॉजिस्टिक और इंजीनियर्स, इनका काम रास्ते के बारूदी सुरंगों को हटाना, पुल बनाना और गोला बारूद की त्वरित सप्लाई करना होता है। साथ ही आधुनिक विंग्स, इसमें शक्ति बाण रेजिमेंट के ड्रोन दस्ते और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स भी सीधे शामिल होती हैं। ये सब मिलकर एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की संरचना करते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो IBG एक सैन्य ग्रुप है जिसमें सेना के लगभग हर प्रमुख अंग के सैनिक शामिल होंगे।
1: टैक्टिकल बैटल एरिया में आमतौर पर आर्टिलरी यूनिट्स काम करती हैं, टैंक रेजिमेंट्स काम कर रहे होते हैं, इन्फेंट्री बटालियंस आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं और इसी तरह से उनको सपोर्ट भी मिलता है। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स जो है युद्धभूमि में उनको पेट्रोल, डीजल, स्पेयर पार्ट्स, अम्यूनिशन सप्लाई करती है। आर्मी सप्लाई कोर जो है वह एडवांसिंग कॉलम्स को राशन मुहैया कराती है। 10,000 ट्रुप्स एक डिवीजन के अगर आगे बढ़ रहे हैं या 30,000 ट्रुप्स एक कोर में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें दिन में 3 बार खाना भी तो खाना है। 30,000 सोल्जर्स को पानी पिलाने का काम बहुत ही मैराथन जॉब है क्योंकि वो 30,000 सोल्जर्स जब युद्धभूमि में लड़ रहे हैं तो कोई दाएं हैं, कोई बाएं हैं, कोई सामने 100 किलोमीटर है, कोई पीछे 10 किलोमीटर है। इन सबको युद्धभूमि में पानी पिलाना, रेगिस्तान है ना, जंगल है या हिमालय की पहाड़ियां हैं, पानी आसानी से नहीं मिलता। तो ये काम सारे जितने इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मी यूनिट्स हैं और सपोर्ट सर्विसेज हैं उसको एक साथ सुचालित ढंग से आगे बढ़ाना एक ही कमांडर के नीचे होगा। इनको नाम दिया गया है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप।
0: भारतीय सेना अपनी सभी लड़ाकू कोर को धीरे धीरे छोटे, मारक और अत्यधिक आधुनिक एकीकृत समूहों में बदल रही है ताकि भविष्य के कम समय वाले युद्धों को आसानी से जीता जा सके। IBG के फायदे क्या हैं ये भी जान लीजिए। सबसे पहला है अनमैच्ड स्पीड। दरअसल सभी संसाधन एक ही कमांडर के पास होते हैं और इसीलिए उन्हें लामबंद होने में कुछ हफ्तों के बजाय महज 12 से 48 घंटे का वक्त लगता है। फौरन फैसला लेने की क्षमता, कमांडर को तोप या फिर हवाई सुरक्षा के लिए कोर मुख्यालय से अनुमति नहीं मांगनी पड़ती, वो युद्ध क्षेत्र की स्थिति देखकर ऑन द स्पॉट फैसले ले सकता है। तीसरा है किल वेव से सीधा जुड़ाव। IBGs पूरी तरह से डिजिटल और नेटवर्क केंद्रित हैं। इनके सेंसर और शूटर आपस में जुड़े होते हैं जिससे दुश्मन की लोकेशन मिलते ही पूरी ताकत से हमला कर दिया जाता है।
1: ये जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप होंगे ये एक युद्ध भूमि में एक मेजर जनरल के तहत आएंगे और भविष्य के युद्ध में ये हाईली फ्लेक्सिबल होंगे क्योंकि इनका अपना ट्रांसपोर्ट ग्रुप होगा। यानी सडनली देखिए 10,000 ट्रुप्स को अगर लेके 200 किलोमीटर आगे ले जाना है या 10,000 ट्रुप्स को लेकर सडनली 200 किलोमीटर बाएं तरफ लेके जाना है तो आपको 100 गाड़ियां चाहिए कम से कम। तो ये जो 100 गाड़ियां हैं ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के जो कमांडर होंगे उनके डायरेक्ट कंट्रोल में होंगे। इससे जो IBG के कमांडर हैं मेजर जनरल रैंक के होंगे उनकी युद्ध भूमि में कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी और युद्ध लड़ने की क्षमता काफी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाएगी और ज्यादा भी हो जाएगी।
0: आसान भाषा में कहें तो IBG ऐसा सैन्य ग्रुप है जिसमें सेना के लगभग हर प्रमुख अंग के सैनिक शामिल होंगे, यानी इन्फेंट्री आर्म्ड या टैंक, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इंजीनियर्स, एयर डिफेंस, सिग्नल्स, लॉजिस्टिक और मेडिकल कोर, जो जरूरत पड़ने पर बिना किसी दूसरी यूनिट का इंतजार किए तेजी से ऑपरेशन शुरू कर सकेंगे। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत है इसके जवानों की संख्या। इसमें करीब 5,000 जवान होंगे जो 12 से 13 यूनिट्स में डिवाइड होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक परंपरागत ब्रिगेड में नॉर्मली 5 से 7 हजार के करीब जवान होते हैं और अगर हम डिवीजन की बात करें तो इसमें 10,000 या फिर इससे ज्यादा जवान होते हैं। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप इसके बीच का काम करेगा, यानी जहां जरूरत होगी वहां ये सैनिक पूरी तरह से तैयार रहे।
2: छोटी टुकड़ियों में होने की वजह से IBG ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक में होने वाले युद्ध में खुद को तेजी से ढाल पाने में सक्षम हो सकते हैं। मौजूदा योजना के मुताबिक 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कोर से 4 इंटीग्रेट बैटल ग्रुप और 1 फायर सपोर्ट ग्रुप बनाए जाएंगे। क्षेत्र में। फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
4: जाती है। TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
5: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब आपको कश्मीर से आई एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो किसी मिसाल से कम नहीं है। मिलिए कश्मीर के शोपिया के रहने वाले रऊफ से, जो पिछले 5 सालों से कश्मीर के उन तमाम पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं जहां सैलानियों की वजह से कचरा जमा हो जाता है।
6: बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी मखमली घास से सजे मैदान और दिल को छू लेने वाले नजारे, कुछ ऐसा है हमारा कश्मीर। वो कश्मीर जहां कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती का खजाना बिखेर रखा है, तभी तो हर साल लाखों सैलानी कश्मीर की इन बेहद हसीन वादियों को देखने के लिए उमड़ते हैं। लेकिन कभी कभी सैलानियों की ये रौनक इस हसीन और खूबसूरत घाटी के लिए चुनौती बन जाती है। जैसे जैसे पर्यटकों की तादाद बढ़ती है, कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट पर गंदगी और कचरा भी बढ़ने लगता है। और इसी चुनौतियों से निपटने के लिए कश्मीर के ही रहने वाले रऊफ ने एक बेहतरीन पहल की है।
7: लोग आते हैं, लोगों को आना चाहिए, ये आपके लिए ही है। तो मैं चाहता हूं कि ये लोगों का एसेट है, ठीक है, ये हर किसी बंदे का एसेट है और आप इसको उसी तरह से ले लो ताकि ये आपको अपना है, उसी हिसाब से इसको मेंटेन रखिए ताकि जो आपकी अपना जो सर्टिफिकेशन है, आपको ये हर तरह का पीस दे रहा है, ये नेचर आपको हार्म नहीं कर रहा है, आप नेचर को हार्म कर रहे हो यहाँ पे। और जो है इसको हमें इसकी ज़रूरत है, नेचर को हमारी ज़रूरत नहीं है। अगर ये 100 साल 50 साल भी ऐसे ही रहेगा तो इसको हमारी ज़रूरत नहीं है, ग्रो बाय डिफ़ॉल्ट करेगा। बट जो हमारी प्रॉब्लम है, हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है। अगर हम इसी को तबाह करेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि हमारी अपकमिंग जनरेशन इसका मज़ा उठाएगी और इसका ये नज़ारा देख पाएगी।
6: कश्मीर की जन्नत को बेदाग रखने के लिए दक्षिण कश्मीर के शोपियां का एक युवा एक बेहतरीन मिसाल बनकर उभरा है। मिलिए केलर इलाके के रहने वाले रऊफ से, जो पिछले 5 सालों से उन सभी पर्यटक स्थलों पर लगातार स्वच्छता अभियान चला रहे हैं जहां सैलानियों की वजह से कचरा जमा हो जाता है।
8: केलर के रहने वाले रऊफ ने एक प्रेरणा जरूर दी है उन लोगों के लिए, उन छात्रों के लिए जो पिकनिक के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें जब बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक की वजह से हमारी जो सरसब्ज ज़मीन है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। अगर इंसान में अच्छे इखलाक हो, अच्छा सोच हो, तो बंजर को आबाद कर सकता है, और अगर इंसान में गलत सोच हो, वो सरसब्ज ज़मीन को बंजर करने में कोई कसर बाकी पीछे नहीं रह सकता है।
6: रऊफ की इस पहल का असर भी हुआ। जो काफिला रऊफ ने शुरू किया उसमें धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। युवाओं के साथ ही आज इस अभियान में रिटायर्ड पेशेवर और बुजुर्ग भी पूरे उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं। रऊफ सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी अनदेखी खूबसूरती को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमालयन एलिगेंस नाम की एक किताब भी लिखी है। इस किताब में दक्षिण कश्मीर के उन खूबसूरत लेकिन अनदेखे पर्यटक स्थलों का जिक्र है जो अब तक आधिकारिक टूरिज्म मैप से गायब है। शोपियां की इन खूबसूरत और मनमोहक वादियों के बीच रऊफ की ये पहल साबित करती है कि जब युवा अपने समाज और पर्यावरण की जिम्मेदारी उठाते हैं तो तस्वीर यकीनन बदलती है। रऊफ की ये कोशिश न सिर्फ कश्मीर को साफ रख रही है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा संदेश भी है। शोपियां से इरशाद मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
9: कौन सा तेल शनि ग्रह की समस्याओं को दूर कर देता है? किस तेल के प्रयोग से कर्जे उतर जाते हैं और कौन से तेल का प्रयोग करने से डायबिटीज में सुधार होता है, क्या है ज्योतिष में तेल का महत्व और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
10: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
11: सोशल मीडिया की एयरहेड का डेडली एक्शन। वुमनली डिस्पाई यूनिवर्स में आलिया का धमाका। मेंटल हेल्थ से लड़कर इंडस्ट्री में बनाई पहचान। आलिया के फिल्मी सफर की अनकही दास्तान। वंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक मॉनसून दिखा रहा अपने रंग। सूरत में भारी बारिश के चलते उफान पर तापी नदी। ठाणे में सड़क से लेकर गली तक पानी से लबालब। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले लबालब। पालमपुर की न्यूगल नदी में फंसे 7 पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू। पुलिस प्रशासन की सैलानियों को सतर्क रहने की अपील। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह। पवित्र यात्रा के दूसरे दिन अब तक करीब 30,000 भक्तों ने किए दर्शन। घाटी में सुनाई दे रही बम बम भोले की गूंज। अमरनाथ यात्रा के बीच आया एक और गौरवशाली पल। पहलगाम में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में फहराया गया तिरंगा। आस्था, दृढ़ता और वीरता का बना प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को दी विकास की सौगात। जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल के अलावा पचपदरा रिफाइनरी का किया उन्होंने शुभारंभ। गुजरात के सारंड में सेमीकंडक्टर यूनिट का उद्घाटन। भारत मंडपम में देश के सबसे बड़े टॉय एक्सपो का हुआ शुभारंभ। 7 जुलाई तक चलेगा ये एक्सपो। बिजनेस के नए अवसरों को मिलेगा बड़ा मंच।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने यशराज फिल्म्स की पहली वुमन लीड स्पाई थ्रिलर में अपने एक्शन सीक्वेंस से तहलका मचा दिया है। जी हाँ, यूं तो इस अभिनेत्री की इमेज एक सॉफ्ट और सोबर लड़की की है, लेकिन यशराज फिल्म्स ने नारी प्रधान स्पाई थ्रिलर बनाने का फैसला किया तो दांव इसी सॉफ्ट और सोबर इमेज वाली अभिनेत्री पर लगाया। कमाल यह है कि अपनी इमेज के उलट इस अभिनेत्री ने स्पाई यूनिवर्स मूवी में भी दमदार अभिनय कर सबका दिल जीत लिया।

0: आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि यशराज फिल्म्स की वुमन लीड स्पाई यूनिवर्स की पहली फिल्म अल्फा की सीता यानी कि आलिया भट्ट है। जी हाँ, 3 जुलाई को रिलीज हुई अल्फा को बॉक्स ऑफिस पर उस तरह की ओपनिंग नहीं मिली जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आलिया भट्ट अपने एक्शन से दर्शकों का दिल जीत रही है। साफ है कि स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर से शुरू कर आलिया ने अल्फा तक का बेमिसाल सफर तय कर लिया है। ये वही आलिया है सोशल मीडिया पर कभी जिनके मीम्स की भरमार रहती थी। एक समय आलिया की ट्रोलिंग नेटिजंस का स्ट्रगल बन गया था। हालांकि सोशल मीडिया पर आलिया का जो परसेप्शन बना, आलिया की हकीकत उससे बिल्कुल जुदा है।
1: आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी है।
2: And she's such a fine actress. So ये मूवी में भी टॉप नॉच एक्शन और फुल पैक्ड एक्शन है।
3: एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वार, पठान, टाइगर 3 और वार 2 जैसी स्पाई यूनिवर्स की धमाकेदार फिल्में दे चुके यशराज फिल्म्स ने पहली बार जब वुमन लीड स्पाई थ्रिलर अल्फा बनाई तो दांव खेला उस आलिया भट्ट पर सोशल मीडिया पर जिसकी इमेज एयरहेड की रही है। बॉक्स ऑफिस पर अल्फा की ओपनिंग बेशक उम्मीद के मुताबिक नहीं रही, लेकिन यशराज फिल्म्स की पहली वुमन लीड स्पाई यूनिवर्स मूवी में आलिया ने अपने नेल बाइटिंग एक्शन सीक्वेंस और संजीदा अदाकारी के दम पर दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म के कथानक और निर्देशन पर सवाल उठाने वाले भी आलिया की एक्टिंग की दिल खोल कर तारीफ कर रहे हैं।
1: आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी है, सरवरी बाघ की एक्टिंग अच्छी है। एक्टिंग में तो दे आर बोर्न एक्टर, तो उसमें तो कोई कमी निकाल नहीं सकता है, लेकिन स्टोरी वाइज जो होनी चाहिए मूवी वो नहीं है।
4: बेसिकली आलिया मैम की जब बॉलीवुड करियर स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, तो उसमें वो काफ़ी एकदम ऐसे होते हैं ना स्वीट सी टीनेजर टाइप से रोल स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे उन्होंने लव स्टोरीज वगैरह किए, फिर हम सब सरप्राइज हो गए आलिया मैम को गंगूबाई में देख के, एकदम अलग सा रोल। एंड अभी इधर अल्फा में एक्शन वाला रोल, तो अच्छा लगा, वो अपने आप को प्रूव कर रही है कि वो सारे कैरेक्टर्स में फिट हो सकती है।
2: अभी मुझे मूवी से काफ़ी आशाएं थी, क्योंकि इस तरह की जो स्पाई थ्रिलर मूवीज होती हैं, एक्शन मूवीज होती हैं, उसमें आलिया भट्ट की राजी मूवी याद आ जाती है हमेशा। एंड शी इज सच ए फाइन एक्ट्रेस, और ये मूवी में भी टॉप नॉच एक्शन, बहुत ही फुल पैक्ड एक्शन है।
5: ये अल्फा मुझे फिल्म अच्छी लगी है, फिल्म का जो एक्शन है वो काफ़ी तगड़ा है, आलिया भट्ट ने एक्टिंग काफ़ी टॉप नॉच की है, और साथ ही साथ जो शर्वरी है उन्होंने केमिस्ट्री काफ़ी, मतलब दोनों की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी तगड़ी है, तो फिल्म देख कर अच्छा लगा है।
3: साफ है कि पर्दे पर अपनी सॉफ्ट इमेज के लिए मशहूर रही आलिया यशराज फिल्म की पहली नारी प्रधान स्पाई थ्रिलर में निर्माता निर्देशक से लेकर दर्शकों तक की उम्मीद पर 100% खरा उतरी हैं। स्पाई थ्रिलर मूवी अल्फा में अपने एक्शन सीक्वेंस से धमाल मचा रही ये वही आलिया हैं सोशल मीडिया पर जिनकी इमेज कभी अनइन्फॉर्म्ड और इग्नोरेंट यूथ की बन गई थी।
6: Who is the president of India?
7: Pranab Mukherjee.
3: एक समय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आलिया भट्ट के मीम से भरे रहते थे। आलम यह था कि किसी ने तथ्यात्मक रूप से कोई गलत बयानी की तो सोशल मीडिया पर तुरंत उसकी तुलना आलिया भट्ट से कर दी जाती थी। बहरहाल ये आलिया के बारे में सोशल मीडिया यूजर्स या नेटिजन्स का अपना परसेप्शन था। आलिया की रियलिटी नेटिजन्स के परसेप्शन से कोसों दूर है। आपको बता दें कि आलिया को लेकर इस तरह का सोशल मीडिया परसेप्शन इसलिए बन गया था क्योंकि एक बार उन्होंने देश के राष्ट्रपति का नाम गलत बता दिया था। दरअसल बतौर लीड एक्ट्रेस 2012 में आई अपनी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रमोशन के लिए आलिया करण जौहर के शो कॉफी विद करण में अपने को स्टार्स वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ पहुंची थी। करण ने लाइटर मोड में आलिया से भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया और आलिया ने उत्साह में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का नाम बता दिया था, जबकि उस समय देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे।
6: Who is the president of India?
3: आलिया की जिंदगी की गहराई में उतरे बगैर, पूरी सच्चाई जाने बगैर नेटिजन्स ने ये मान लिया कि आलिया का आईक्यू लेवल बेहद लो है और सामान्य ज्ञान तो शून्य है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है कि आलिया भट्ट अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी ADHD नामक एक रेयर डिजीज से पीड़ित हैं, जिसका पेशेंट कभी कभी जोन आउट हो जाता है। जोन आउट का मतलब ये है कि पेशेंट फिजिकली कहीं और होता है, लेकिन उसका दिमाग अचानक किसी दूसरे जोनर में चला जाता है।
7: मैं बचपन से जोन आउट करते आई हूँ, हमेशा क्लासरूम में भी जोन आउट होती थी, कॉन्वर्जेशंस में जोन आउट होती हूँ। तब रिसेंटली मैंने एक पर्सनालिटी जो भी क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और मुझे पता चला कि मैं ADHD के स्पेक्ट्रम में काफ़ी हाई हूँ। मुझे ADHD है, तो अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर।
3: आपको बता दें कि ADHD डिजीज का IQ लेवल से कोई रिलेशन नहीं है। काफी हाई IQ वाले लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है। होता यही है कि कभी कभी इसका पेशेंट जोन आउट हो जाता है और उस दौरान कोई ऐसा बयान दे सकता है या ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकता है जिससे उसके IQ लेवल पर सवाल उठने लगे। आपको बता दें कि आलिया का न सिर्फ IQ लेवल बल्कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी नेक्स्ट लेवल का है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि साल 2012 से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी आलिया कैमरा ऑन होने के बाद कभी जोन आउट नहीं होती। अलबत्ता कैमरे के सामने आते ही आलिया इतनी फोकस्ड हो जाती हैं कि उन्हें अपने किरदार और संवाद के सिवा कुछ भी ध्यान नहीं रहता।
7: I'm so present जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ, चाहे मैं वो किरदार में प्रेजेंट हूँ, मतलब द पार्ट दैट आई एम प्लेइंग आई एम प्रेजेंट एज द कैरेक्टर, बट आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। और फिर अभी ऑफ कोर्स आफ्टर राहा, जब भी मैं उसके साथ रहती हूँ, आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। तो ये 2 आई थिंक मोमेंट्स है मेरी लाइफ में जहाँ पे मैं सबसे ज्यादा पीसफुल फील करती हूँ।
3: साफ है कि आलिया भट्ट अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को भली भांति पहचानती हैं। यही वजह है कि कॉफी विद करण में गलत जवाब देने के बाद जबरदस्त तरीके से ट्रोल होने पर भी आलिया पूरी तरह काम एंड कूल रहीं। काफी वक्त बाद आलिया से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने पूरे ह्यूमर के साथ जवाब देकर ट्रोलर्स को भी ट्रोल कर दिया।
8: मैं अभी ऑनेस्टली बोर हो गई हूँ उस जोक से, मेरे को एक्चुअली नया जोक चाहिए। आई वांट टू मेक अ मिस्टेक अगेन, हाँ कोई, मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं क्या गलती करूँ कि फिर से लोग उसको 1-2 साल और खींचेंगे।
3: आपको बता दें कि आलिया बॉर्न एक्ट्रेस हैं। संयोग से इनका जन्म एक ऐसे घराने में हुआ जहाँ माहौल पूरी तरह फिल्मी था। मार्च 1993 को हुए आलिया के जन्म से काफी पहले से पिता महेश भट्ट अर्थ, सारांश, नाम, आशिकी, सड़क और दिल है कि मानता नहीं जैसी कल्ट और आइकॉनिक फिल्मों का निर्देशन कर इंडस्ट्री में अलग पहचान स्थापित कर चुके थे। आलिया की मां सोनी राजदान भी 36 चौरंगी लेन, मंडी, सारांश और त्रिकाल जैसी 8 फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी से क्रिटिक्स की शाबाशी हासिल कर चुकी थीं। आलिया ने भी जब से होश संभाला एक्टिंग को छोड़कर किसी दूसरे काम का तसव्वुर इनके मन में एक बार भी नहीं हुआ।
8: हाँ, आई थिंक मैं हमेशा कहती कि मैं एक्शन पे ही पैदा हुई थी, अपनी माँ की कोक से। आई डोंट थिंक देयर वाज दैट 1 सेकंड आल्सो कि मैं दुनिया में आई, मुझे उस सेकंड पे ही पता था कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है और मुझे एक्टर बनना है और मुझे एक्टिंग करनी है। आई थिंक उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था।
3: जिन लोगों ने आलिया को अनइन्फॉर्म्ड यूथ का एम्बेसडर बना दिया था उन्हें ये जानना चाहिए कि आलिया भट्ट जब सिर्फ 4 साल की थी तभी उन्होंने श्यामक डावर डांस एकेडमी की समर क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। बात सिर्फ इतनी नहीं है, डांस एकेडमी में 4 साल की आलिया इंडस्ट्री की प्रेस्टिजियस फैमिली का तगमा लेकर नहीं बल्कि लर्निंग हंगर के साथ जाती थी। यही वजह है कि बाकी बच्चों के मुकाबले वो ज्यादा अच्छे से चीजों को ग्रैस्प करती थी। खुद श्यामक डावर ने आलिया की तारीफ करते हुए एक बार कहा था कि आलिया सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेती हैं।
7: श्यामक डावर जी के जो समर कैंप समर डांस क्लासेस थे यार, वो एक्चुअली मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का बहुत ही अहम हिस्सा था एंड आई रिमेम्बर दोज मोमेंट्स वेरी क्लियरली, क्योंकि जेन्युइनली इम्पैक्ट मेरी लाइफ में काफी था, क्योंकि कॉन्फिडेंस, लोगों के सामने डांस करना, फ्री बनना, ऐसे फील करना कि आप सबसे छोटे हो पर फिर भी बड़े हो और डांस करना है।
3: 4 की उम्र में श्यामक डावर की डांस क्लास ज्वाइन करने वाली आलिया 7 साल की होते होते नृत्य कला में इतनी पारंगत हो गई कि स्कूल के एक डांस कंपटीशन में श्यामक डावर ने उन्हें हायर क्लास की छात्राओं के बीच भेज दिया, क्योंकि डावर को ये भरोसा हो गया था कि हायर क्लास की छात्राओं के बीच भी आलिया बेहतर परफॉर्म करेंगी। हालांकि तब मासूम आलिया के साथ एक मजेदार वाकया भी पेश आया था।
7: क्लास में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था मेरा, तो श्यामक सर ने मुझे एक सीनियर बैच में डाल दिया, तो मैं 7 साल की थी और मैं क्लास के अंदर आई और इंस्ट्रक्टर कंफ्यूज हो गए कि आप ये क्लास में हो, क्योंकि इट वॉज देवर लिटरली अडल्ट्स इन दैट क्लास। और मैंने बोला हाँ श्यामक सर, लाइक आई एम सपोज टू कम इन दिस क्लास। तो पहले उनका क्वेश्चन था हाउ ओल्ड आर यू, तो मैंने बोला 7, बट देन इमीडिएटली मैंने बोला बट इट्स माई बर्थडे टुमारो, आई एम गोइंग टू बी 8 टुमारो।
3: दिलचस्प बात तो यह है कि अगले दिन आलिया का जन्मदिन नहीं था, लेकिन उन्होंने झूठ इसलिए बोल दिया क्योंकि उन्हें डर हो गया था कि कम उम्र को देखते हुए उन्हें कहीं नीचे की क्लास में न भेज दिया जाए। इस लेवल का आत्मविश्वास था आलिया के भीतर बचपन से ही। कमाल ये है कि यही आत्मविश्वास तब भी बना रहा जब आलिया ने रुपहले पर्दे पर चुनौतीपूर्ण किरदार निभाना शुरू किया। इंडस्ट्री के स्टार फैमिली से आने वाले नेपो किड्स आमतौर पर फिल्में साइन करने से पहले अपने घर के अनुभवी सदस्यों से सलाह मशविरा करते हैं, लेकिन आलिया का हिसाब अलग है। वो फिल्में साइन करने से पहले अपने पिता महेश भट्ट या माँ सोनी राजदान, यहाँ तक कि पति रणबीर कपूर से भी क्लियरेंस लेना जरूरी नहीं समझती, बल्कि इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स के आधार पर खुद ही फैसले लेती हैं।
7: मैं एक्चुअली अपना माइंड मेकअप करने के बाद डिस्कस करती हूँ, मैं बिकॉज आई एम नॉट समबडी हु नीड्स टू बी कन्विंस्ड फॉर अ फिल्म, एक तो बात यह है, और दूसरी बात यह है कि मेरा इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स ही सबसे प्योर रिस्पॉन्स होता है। तो अगर कोई, मैं इंस्टिंक्टिवली अगर एक्साइट हो जाऊंगी और किसी ने अगर बोल दिया कि मतलब ऐसे मत करो, आई एम जस्ट गिविंग इफ केस सिनेरियो, मेरे साथ हुआ नहीं है, पर अगर बोल दिया तो फिर मेरे दिमाग में डाउट पैदा हो जाएगा। तो मेरी जर्नी मेरी है और मेरी डिसीजन भी मेरी होनी चाहिए, इसलिए दैट्स द रीजन, नॉट फॉर एनी अदर रीजन।
3: आप समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया की नजर में अनइन्फॉर्म्ड सेलेब्स रही आलिया की प्रतिभा उन्हें लेकर बने परसेप्शन से बिल्कुल अलग है। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से किक हुए एकाद अपवादों को छोड़ दें तो आलिया के लेवल का आईक्यू और टैलेंट हिंदी सिनेमा के 100 साल के इतिहास में इक्का दुक्का अभिनेत्रियों में ही नजर आएगा।
0: अल्फा मूवी में अपने एक्शन से धमाल मचा रही आलिया यूं तो बॉलीवुड की एक दमदार फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन रुपहले पर्दे के अपने यादगार सफर में आलिया ने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साए का सहारा कभी नहीं लिया। आलिया के पिता महेश भट्ट बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा निर्देशकों में शुमार है, जबकि माँ सोनी राजदान आज फिल्मों की आइकन रही है, लेकिन आलिया ने अपने फिल्मी सफर में आगे बढ़ने के लिए कभी अपने माता पिता से मदद की उम्मीद नहीं की। शुरू से ही उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट पर भरोसा किया और इसका असर ये है कि आलिया आज बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेट अभिनेत्रियों की फेहरिस्त में काफी ऊंचा मकाम हासिल कर चुकी है।
3: इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नेपो किड्स के सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक मिलने की रवायत नई नहीं है। हालांकि ज्यादातर नेपो किड्स अपने पारिवारिक वटवृक्ष के घने साय में अंकुरित होकर फलते फूलते हैं और उसी साय में फना भी हो जाते हैं, पर कुछ नेपो किड्स ऐसे भी हैं जो मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर अपनी पारिवारिक लिगेसी से निकलकर अलग साम्राज्य स्थापित करते हैं। आलिया भट्ट दूसरी कैटेगरी की नेपो किड हैं। बतौर लीड हीरोइन अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने अगर प्रतिभा नहीं तो जुनून, लगन और मेहनत की तो मुनादी कर ही दी थी। तनुजा चंद्रा के निर्देशन में बनी और 1999 में रिलीज हुई आइकॉनिक मूवी संघर्ष में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू करने वाली आलिया भट्ट को हीरोइन के तौर पर डेब्यू करने का मौका बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के जरिए दिया था। आलिया की उम्र तब महज 18 साल थी, लेकिन उनका फिगर फिल्म के किरदार के लिहाज से फिट नहीं था। ऑडिशन के दौरान करण जौहर ने आलिया के लिए कड़ी शर्त रख दी कि उन्हें अपना वेट लॉस करना होगा। आलिया टीनेज में ही अपने करियर को लेकर कितनी संजीदा थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 3 महीने के भीतर उन्होंने अपना वेट 68 किलो से कम करके 51-52 किलो कर लिया। क्योंकि बचपन से बस एक ही तो सपना था आलिया का, सितारा बनकर सिल्वर स्क्रीन पर चमकने का। इसीलिए शूटिंग के दौरान सेट पर पहली बार जब कैमरा ऑन हुआ तो उनका उत्साह चरम पर पहुंच गया।
7: वो कहते हैं ना, एक्सट्रीम जॉय फीलिंग आता है कि कैमरा के सामने हो, शूटिंग हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, बट यू फील के अंदर से कुछ। इवन दो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाज अ ब्लर, जो पहला गाना जो मेरी लाइफ की पहली दिन थी शूटिंग की, वो राधा के लिए थी। तो एक शॉट था, मेरे को नीचे आना था, टर्न करके ऐसा कुछ करना था, फिर दुपट्टा उठा के कैमरा में देखना था और ब्लोअर फैन आ रहा था, उसी में ही मेरे को ऐसे बहुत मजा आ गया।
3: पहली बार कैमरे के सामने आने के बाद आलिया बेशक उत्साहित थी, लेकिन फिल्म साइन करने के बाद वो फेल्योर के फियर साइकोसिस का शिकार हो गई थी। आलिया को ये डर सताने लगा कि अगर वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाई या फिल्म पिट गई तो आगे करेंगी क्या। पिता महेश भट्ट को जब बेटी के फियर साइकोसिस के बारे में पता चला तो उन्होंने अलहदा तरीके से आलिया को उससे बाहर निकालने की कोशिश की। महेश भट्ट ने बेटी को विशेष फिल्म्स के अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि मन में जो भी डर है, आशंका है, उसका इजहार सबके सामने करो।
7: For some reason, my father is outstanding in a crisis situation. जब भी आप क्राइसिस में हो, आप उनको फोन करो, he has the most calm tone and he'll deal with the situation in the best way. In this particular situation, उन्होंने decide किया, ऑफिस आ जाओ, सबके सामने बोलो तुम कैसे फील कर रही हो। जो एक्चुअली एक बहुत अजीब सीक्वेंस सिचुएशन है, क्योंकि आप पहले तो इतना वल्नरेबल फील करो, सबके सामने उठ के बोलना है कि मैं ऐसे फील कर रही हूँ।
3: महेश भट्ट ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने का कोई मनोवैज्ञानिक अनुभव था, ये तो नहीं पता, लेकिन उनका ये अनोखा फॉर्मूला आलिया के लिए क्लिक जरूर कर गया। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डर का डंका बज जाने के बाद आलिया के अंदर की घुटन कम हो गई। वैसे 19 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर बॉक्स ऑफिस पर तो कामयाब रही, लेकिन आलिया की इमेज बॉर्बी डॉल से कुछ ज्यादा नहीं बन पाई। उधर क्रिटिक्स ने भी आलिया के डेब्यू को महेश भट्ट के प्रभाव से जोड़ दिया। लेकिन फिल्म हिट होने के बाद बड़े पर्दे पर बड़ा मकाम हासिल करने के आलिया के संकल्प के साथ उनका आत्मविश्वास भी जुड़ गया। अगली ही फिल्म हाईवे में अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर आलिया ने क्रिटिक्स को पहले से तय परसेप्शन को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। 21 फरवरी 2014 को रिलीज हुई हाईवे में वीरा त्रिपाठी के डी ग्लैमरस किरदार में बेहतरीन अभिनय का तड़का मारकर आलिया ने उन्हें बॉर्बी डॉल कहने वालों का मुंह बंद कर दिया। दरअसल अभिनय को लेकर आलिया का फलसफा शुरू से ही कन्वेंशनल नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिव रहा है।
8: कैमरे के सामने का जो एक फीलिंग होता है ना, उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता है। एट द एंड ऑफ द डे मैं जितना भी चाहे डायलॉग सीख लूँ या कुछ रट्टा मार लूँ, फिजिकल ट्रेनिंग कर लूँ, अपने आप को कमरे में बंद करके मेथड एक्टिंग भी कर लूँ, अगर कैमरे के सामने मुझे फीलिंग नहीं आ रही है तो कैमरा पकड़ लेगा और मेरी परफॉर्मेंस जो है उसमें दिख जाएगी। तो तैयारी जारी रहती है फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं कैमरे के सामने सिर्फ फील करने की कोशिश करती हूँ।
3: हाईवे के बाद आलिया ने इंडस्ट्री में मुनादी कर दी कि मीना कुमारी और मधुबाला की खींची हुई अदाकारी की लीक इस युग में भी मिटी नहीं है। 2016 में आई उड़ता पंजाब के बाद तो क्रिटिक्स ने भी स्वीकार कर लिया कि आलिया की अदाकारी किसी एक जोनर तक महदूद नहीं है। उड़ता पंजाब के एक महले कुचैले भोजपुरी लड़की के किरदार में आलिया ऐसे गुम हो गई कि पहचानना मुश्किल हो गया कि ये वही राधा हैं जिसने डिस्को दीवाने पर ठुमके लगाए थे। उड़ता पंजाब के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। ২০১৮ में आई राजी में एक कश्मीरी जासूस के किरदार में आलिया ने अपने अभिनय से इतनी जान फूंक दी कि 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली कुछ एक महिला प्रधान फिल्मों में शुमार हो गई। वहीं 2019 में आई गली बॉय में सफीना के किरदार को आलिया ने अपनी एक्टिंग से जीवंत कर दिया। गली बॉय में नारी को प्रकृति से सहज प्राप्त कोमलता और जरूरत पड़ने पर प्रकट होने वाली आक्रामकता के मिश्रण को आलिया ने इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद तो आलिया बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइनों की फेहरिस्त में शुमार हो गईं। 25 फरवरी 2022 को रिलीज हुई गंगूबाई काठियावाड़ी आलिया के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। संजय लीला भंसाले की इस फिल्म में आलिया ने एक वेश्यालय की मालकिन और माफिया क्वीन के चुनौतीपूर्ण किरदार को सहजता के आईने में उतारकर सबको हतप्रभ कर दिया। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया को सबसे प्रेस्टीजियस माने जाने वाले नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया।
9: गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं अभिनेत्री आलिया भट्ट।
3: 2022 आलिया के लिए बहुत इवेंटफुल साल साबित हुआ। साल 2022 में कोरोना की मार से पस्त हो चुकी फिल्म इंडस्ट्री दोबारा उठ खड़े होने की जद्दोजहद कर रही थी और इसी साल आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी के अलावा RRR और ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जैसी फिल्में रिलीज हुईं। 2022 में ही उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर किस्मत आजमाई और डार्लिंग्स प्रोड्यूस की, जो OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और सफल भी रही। 2023 में आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और 2024 में आई जिगरा ने भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया। साल 2027 में आलिया संजय लीला भंसाली के एक और शाहकार लव एंड वार में भी नजर आने वाली हैं। साफ है कि आलिया बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट अभिनेत्रियों की सूची में शुमार हो चुकी हैं। आज आलिया अपनी एक फिल्म के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस लेती हैं।
0: तो बंदे में दम में आज आपने आलिया भट्ट के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
10: कौन सा तेल शनि ग्रह की समस्याओं को दूर कर देता है? किस तेल के प्रयोग से कर्जे उतर जाते हैं और कौन से तेल का प्रयोग करने से डायबिटीज में सुधार होता है? क्या है ज्योतिष में तेल का महत्व और क्या हैं इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
11: Hi everyone, Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
12: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
10: कौन सा तेल शनि ग्रह की समस्याओं को दूर कर देता है? किस तेल के प्रयोग से कर्जे उतर जाते हैं? और कौन से तेल का प्रयोग करने से डायबिटीज में सुधार होता है? क्या है ज्योतिष में तेल का महत्व और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
11: Hi everyone, Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
12: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
3: सोशल मीडिया की एयरहेड का डेडली एक्शन। वुमन लीड स्पाई यूनिवर्स में आलिया का धमाका। मेंटल हेल्थ से लड़कर इंडस्ट्री में बनाई पहचान। आलिया के फिल्मी सफर की अनकही दास्तान। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
8: और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके